0: छोटा सा पार्ट हो, तना हो, अगर कोई भी एक हम प्लांट का एक छोटा सा पार्ट ले, अंग ले, और उसको अगर हम इस न्यूट्रिएंट मीडियम पर रखें और एक कंट्रोल एनवायरनमेंट में रखें और चार से पाँच महीने तक अगर हम उसमें रखें, तो ये हमारा हम उससे एक कंप्लीट प्लांट बना सकते हैं। और यह छोटा सा पार्ट प्लांट का कुछ भी हो सकता है, जैसे हमने बताया सकर भी हो सकते हैं, सॉफ्ट तना हो सकते हैं, पत्ते हो सकते हैं, कोई भाग, उत्तक और कोई भी अंग, कुछ भी हो सकता है।
1: तो ये कुछ तकनीक है जिससे कि आप प्लांट टिश्यू कल्चर तकनीक को अपना कर पौधे तैयार कर सकते हैं। और जब अब हमारा जो विषय है जो है कि इस टेक्निक को अपनाने से क्या फ़ायदे मिलेंगे हमारे सभी किसान भाइयों को, तो इसके बारे में डॉक्टर साहब बता दें कि प्लांट टिश्यू कल्चर वो अपनाते हैं, इससे पौधे अगर विकसित करते हैं तो क्या फ़ायदे मिल सकते हैं।
0: हाँ जी, अगर प्लांट टिश्यू कल्चर से तैयार किए गए पौधे की बात हम करें, अभी हमारी बिहार सरकार या फिर भारत सरकार सब लोग बिकॉज हमारी यहाँ अगर देखें तो जलवायु काफ़ी बहुत ही तेज़ी से परिवर्तन हो रहा है, तो इस जलवायु परिवर्तन की दौर में जो भी टिश्यू कल्चर तकनीक से विकसित किए गए पौधे होते हैं वो किसानों के लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होते हैं। अगर हम फायदे की बात करें तो प्रायः टिश्यू कल्चर से जो भी पौधे बनाए जाते हैं
1: जी,
0: वो डिजीज से फ्री होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं रोग मुक्त होते हैं। ऐसे पौधे प्रायः वायरस, बैक्टीरिया और फंजाई से कम्प्लीटली फ्री होते हैं। अगर हम रोग की बात करें तो पौधे में रोग बेसिकली तीन चीज़ों से होती है, बैक्टीरिया से होती है, फंजाई से होती है और वायरस से होती है। तो जो भी हमारे टिश्यू कल्चर विधि या तकनीक से पौधे तैयार होते हैं ये पौधे कम्प्लीटली डिजीज से फ्री होते हैं। अगर बात बीमारी की उठी है तो मैं एक बात बता दूं, यहाँ पर केले की एक बहुत प्रमुख बीमारी है जिसे हम पनामा विल्ट बोलते हैं।
1: अच्छा।
0: और ये फ्यूजेरियम नामक फंजाई से होता है, और ये फंजाई प्लांट के रूट से होते हुए बेसिकली ये सॉयल में ये आपके ये फंजाई प्रेजेंट होते हैं, पाए जाते हैं, ये सॉयल से होते हुए आपके रूट से होते हुए पौधे के तना तक पहुंच जाते हैं। और आपको पता है कि जो प्लांट्स होते हैं उनको सॉयल से न्यूट्रिएंट मिलती है, तो जो और इनको न्यूट्रिएंट प्लांट्स को कहाँ से मिलती है, सॉयल से मिलती है। तो ये फंजाई क्या करते हैं, प्लांट्स को सॉयल से न्यूट्रिएंट अपटेक करने में बाधा डालते हैं।
1: अच्छा।
0: और अंततः पौधा मर जाता है। तो अगर हमारे किसान बंधु अगर शक्कर का यूज़ करते हैं, जो कि नॉर्मली अगर बात करेंगे कि अगर हम लोग टिश्यू कल्चर तो अभी आए हैं और हमारे किसान बंधु बहुत केले की खेती बहुत पहले से होती आ रही है, तो पहले कन्वेंशनल अगर फार्मिंग कन्वेंशनल खेती की बात करें तो पहले किसान हमारे शक्कर आप देखते होंगे केले के बगल से जो निकलता है एक छोटा सा, उसको हम लोग शक्कर बोलते हैं। तो अगर किसान बंधु इस शक्कर का यूज करते हो और शक्कर में खुदा ना खास्ता अगर वैसे फंजाई प्रेजेंट हो, उसे कोई बीमारी या कोई भी चाहे वो फंजाई हो, बैक्टीरिया हो, वायरस हो, कुछ भी प्रेजेंट हो, और किसान बंधु अगर वैसे शक्कर का यूज करें तो आगे चलकर हमारा जो पौधा होगा वो हमारा सही पौधा, हेल्दी पौधा नहीं होगा
1: जी।
0: तो यही मैं इस चीज़ पर मैं बार बार जोर देना चाहता हूँ कि जो हमारे यहाँ जो भी इस टेक्निक प्लांट टिश्यू कल्चर से जो भी पौधे तैयार किए जाते हैं केले के, वो बेसिकली डिजीज फ्री होते हैं।
1: अच्छा,
0: ठीक है, ये तो रही एक फायदे की बात। अगर दूसरे फायदे की हम बात करें तो इस विधि से तैयार किए गए सारे पौधे समान कुल एवं एक समान होते हैं।
1: अच्छा।
0: जिसमें वेरिएशन की संभावनाएं कम होती है। तो वेरिएशन अगर हमारे किसान बंधु शक्कर लेंगे, अगर आप देखेंगे शक्कर कोई बड़ा होता है, कोई छोटा होता है, तो अगर उसको किसान बंधु डायरेक्ट लगाएंगे तो उसमें वेरिएशन होने की चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। बट हमारे तकनीक जो टिश्यू कल्चर से जो हम लोग पौधे तैयार करते हैं उसमें वेरिएशन की संभावनाएं ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होती है, जीरो के बराबर की तरह होती है। तो इससे फायदे क्या होते हैं, सारे पौधे एक ही साथ फूल देते हैं और एक ही साथ फल देते हैं, मीन्स फ्रूटिंग एक साथ होती है, फ्लावरिंग एक साथ होती है, जिससे किसान बंधुओं को नुकसान होने की संभावनाएं बहुत कम रहती है। इससे प्रायः ऐसा देखा गया है टिश्यू कल्चर विधि से तैयार किए गए पौधे कम समय में मैच्योर एवं जल्दी ही फूल फल देता है, अतः इसकी तुलना अगर हम कन्वेंशनल खेती से करें तो ये सारे के सारे पौधे ये सारे फायदे हैं जो कि किसान बंधुओं के इनकम को दोगुनी कर सकती है। साथ ही साथ अगर टिश्यू कल्चर द्वारा विकसित पौधे जो हमने बताया कि ये रोग मुक्त होने के कारण अधिक मात्रा में अधिक शाखा, जिसको हम लोग ब्रांचेज बोलते हैं, अधिक शाखा फूल एवं फल का उत्पादन करते हैं, और इस तकनीक के द्वारा हम किसान बंधुओं में प्लांटिंग मटेरियल बहुत ही बड़ी मात्रा में प्रदान कर सकते हैं या उपलब्ध करा सकते हैं। अगर हम जैसे हमने बताया कि अगर हम कन्वेंशनल खेती की बात करें जहाँ किसान बंधु केले की खेती शक्कर से करते हैं, तो शक्कर में आप ये एक लिमिटेशन हो जाती है फार्मर्स के लिए कि कहाँ से इतना शक्कर मिलेगा, इतनी शक्कर कहाँ से मिलेगी। तो जो हमारी ये तकनीक है, इस तकनीक से हम जैसा कि हमने बताया एक तो बहुत कम समय लगते हैं हमें, और हमें हमारे पास हम ढेर सारा प्लांटिंग मटेरियल हम लोग इस तकनीक से हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं
1: जी। तो एक बात और मुझे पूछना था डॉक्टर साहब कि जब आपने कहा कि किसी एक पर्टिकुलर पौधे के हम तने या फिर पत्ते उसे चूज़ करके हम उस पर ही एक नया पौधा विकसित कर सकते, तो क्या वो जो पर्टिकुलर पौधा जो हम चूज़ करें तो उसमें भी कुछ चीज़ें देखनी होती है कि उसमें एक पर्टिकुलर फीचर्स होना चाहिए, या फिर आपने कहा कि रोग मुक्त, अगर हम कहते हैं ना कि बीज अगर हमारा सही होगा तभी हमारे पौधे अच्छे होंगे, तो क्या कुछ उसमें कुछ चीज़ें देखी जाती हैं?
0: जी बिल्कुल सही बोला आपने। हमें जो हम लोग जो पर्टिकुलर एक कोई पार्ट लेते हैं पौधे का, जो भी एक अंग लेते हैं हम लोग, जो भी सकर यूज करते हैं या लीफ जो भी हम लोग यूज करते हैं, तो हम लोग वो सिलेक्शन के टाइम चूज करने के टाइम हम लोगों को ये सावधानी बरतनी होती है कि ये सकर उस पौधे में किसी भी तरह की बीमारी ना हो।
1: अगर तो ये वो क्या आपके मतलब लैब में टेस्टिंग की जाती है उस?
0: हाँ जी, हमारे पास जो प्लांट बनाए जाते हैं हम लोग, प्लांट अगर जो भी इस टिश्यू कल्चर विधि से जो भी हमारे प्लांट तैयार होते हैं हम लोग उसकी जेनेटिक फर्टिलिटी करते हैं, और जेनेटिक फर्टिलिटी करके हम लोग टेस्ट करके बताते हैं कि हमारा ये जो भी हमारे लैब से जो भी प्लांट्स निकल रहे हैं इसको टेस्ट बोलते हैं, जेनेटिक फर्टिलिटी टेस्ट। इस टेस्ट में एक्चुअली क्या होता है कि अगर जो भी प्लांट हमने टिश्यू कल्चर से बनाया हुआ है अगर उसमें किसी प्रकार की बैक्टीरिया वायरस या फंजाई किसी भी टाइप का अगर उसमें डिजीज लगा हुआ है तो ये फर्टिलिटी टेस्ट के, जेनेटिक फर्टिलिटी टेस्ट के थ्रू वो हमें कन्फर्म करती है। तो हमारे पास जो भी प्लांट निकलते हैं वो जेनेटिकली फर्टिलिटी इस टेस्ट से ये सर्टिफाइड होते हैं और कि इसमें किसी तरह के डिजीज नहीं है।
1: तो इतने सारे प्रोसेस से गुजरना होता है तब जाकर के प्लांट टिश्यू कल्चर विधि से एक पौधा तैयार होता है। तो इसलिए हमारे सभी किसान भाइयों को, हमारे सभी श्रोता जो इस विधि से अपने पौधे लगाना चाहते हैं तो बिल्कुल आप निश्चिंत रहें, बिल्कुल रोग मुक्त होगा। और भी डॉक्टर साहब ने आपको बहुत सारी बातें बताई हैं इससे जुड़ी फ़ायदों के बारे में, तो आराम से आप इस विधि को अपना सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, अगले दिन आपसे और भी बातें होंगी इसी फ्रिक्वेंसी 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। नमस्कार। उन्नत कृषि
2: अटेंशन अटेंशन अटेंशन ऑल द लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज टू रिमाइंड यू ऑल अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ इम्यूनाइजेशन। इफ योर किड्स आर 5 और लेस हु हैव मिस्ड अ वैक्सीन, हियर दिस अपील। Getting them vaccinated immediately is the key. For their safety and health, it is a wise request. Protecting them from illness to be their best. And remember, vaccination is safe and it saves your children from deadly diseases. So, see you at the vaccination center soon.
3: To get more information about vaccination, visit your nearest health facility center.
4: अरे यार फिर पिट गया। बेल देना। इसको आउटसाइड द ऑफ टाइम डालना चाहिए था, इसकी यही प्रॉब्लम है।
5: कब से?
4: जब से क्रिकेट खेल रहा है तभी से।
5: अरे भाई साहब क्रिकेट की नहीं हो, आपकी खांसी की बात कर रहे हैं बुड़बक।
4: खांसी?
5: हाँ।
4: इसको तो एक आध महीना हो गया,
5: खुद की खांसी को एक आध महीने हो गए हैं और यहाँ क्रिकेट पर अपने ही गुगली फेंक रहे हैं आप। चलिए चलिए चलिए
4: डॉक्टर, खांसी तो है।
5: देखिए भाई साहब इसे हल्का मत लीजिए, 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी रहे तो टीबी हो सकता है।
4: टीबी?
5: हाँ। तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए।
4: ठीक है।
5: टीबी किसी को भी हो सकता है, अगर हो गया तो बिना भूले पूरा कोर्स करिए और फिट हो जाइए, नहीं किया तो इसका इलाज बहुत मुश्किल है। समझ गए भाई साहब आप? आइए, 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। टीबी हारेगा देश जीतेगा।
2: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 ग्रीन FM। उन्नत कृषि।
1: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है किसान भाई बहनों को संबोधित हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। उन्नत कृषि में आज हम बात करने वाले हैं मखाना में पत्तियों पर खाद का छिड़काव एवं ड्रोन आधारित फोलियर स्प्रे तकनीक के बारे में। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर भवानी प्रसाद मंडल। सर आप हैं असिस्टेंट प्रोफेसर कम जूनियर साइंटिस्ट, आप हैं डिपार्टमेंट ऑफ सॉइल साइंस बिहार एग्रीकल्चर कॉलेज सबौर भागलपुर से। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
6: धन्यवाद मैम।
1: सर आपसे सबसे पहला सवाल कि मखाना में फोलियर स्प्रे की जरूरत क्यों पड़ती है?
6: हाँ मैम, बहुत अच्छा प्रश्न है। सभी किसान भाई बहनों को मेरे तरफ से नमस्कार। पहले ये जो मैम ने क्वेश्चन मुझे पूछे, फोलियर स्प्रे या पत्ती के ऊपर छिड़काव क्यों जरूरत होता है। मखाना एक ऐसी फसल है जिस जो तालाब या कोई जल भराव वाली जमीन में उगाया जाती है, और इसी समय अगर कोई खाद डाला जाए तो उसका बहुत सा हिस्सा पानी में बह जाता है या कोई दूसरा जगह चला जाता है तो नुकसान होता है। इसीलिए हम अगर देखा जाए जो मखाना का पत्तिया है वो बहुत बड़ा बड़ा होता है, तैरती होता है पानी के ऊपर, तो उसके ऊपर अगर हम मतलब डायरेक्ट छिड़काव करें खाद का, तो वो बड़ा बड़ा पत्ती तेजी से उस खाद का जो पोषक तत्व है उसको अवशोषित करती है और इससे नुकसान नहीं होता है। इसीलिए छिड़काव करना पत्ती के ऊपर सबसे बेहतर टेक्निक माना जाता है।
1: सर अगर हम ये सवाल करें कि स्प्रे कब करना चाहिए?
6: जी मैम, ये भी बहुत अच्छी प्रश्न है कि कब करना चाहिए स्प्रे। देखिए मखाना का कोई भी क्रॉप का हो, खासकर मखाना की, अलग अलग वृद्धि अवस्थाओं में अलग अलग पोषक तत्वों का छिड़काव करना चाहिए। इसीलिए लगभग ऐसे देखा गया है रिसर्च में कि मखाना लगाने की 35 से 40 दिन के बाद 1% यूरिया का सॉल्यूशन और साथ में 0.5% जिंक सल्फेट का अगर छिड़काव किया जाएगा, ये उसके ग्रोथ के लिए मतलब वृद्धि के लिए, मखाना की वृद्धि के लिए अच्छी होती है।
1: और जब पौधे में फूल आने लगते हैं तब भी किसान भाई बहन बड़े चिंतित रहते हैं कि अब क्या करें, आगे क्या करना चाहिए, तो ऐसे में जब पौधे में फूल आए तो किसान भाई बहनों को क्या कदम उठाने चाहिए, उन्हें क्या करना चाहिए?
6: जी मैम, फूल आने के समय कोई भी फसल के लिए सबसे बड़ा महत्वपूर्ण होता है, और उस समय पौधे को खास करके मखाना को पोटाश और बोरोन का आवश्यकता होता है। इसीलिए पोटाश का कोई मतलब सॉल्यूशन फॉर्म में मिलता है, जैसे पोटाशियम नाइट्रेट, उसका 1% सॉल्यूशन और 0.1% बोरिक एसिड, खास करके बोरिक एसिड बहुत मतलब फायदेमंद होता है, इसी को स्प्रे किया जाए 1% पोटाशियम नाइट्रेट के साथ 0.1% बोरिक एसिड सॉल्यूशन, तो इससे क्या होता है फूल झड़ने का जो समस्या है वो कम हो जाता है और दाना बनने का प्रक्रिया और बेहतर हो जाती है।
1: यस सर, और अभी आपने दाना बनने की बात की, तो दाना बनने की जब अवस्था होती है तो ऐसे में आप किसान भाई बहनों को क्या सलाह देंगे?
6: दाना बनने के समय चाहिए उसको मैग्नीशियम, मतलब एक सेकेंडरी न्यूट्रिएंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो 1% मैग्नीशियम सल्फेट का सॉल्यूशन और साथ में कोई भी सूक्ष्म पोषक तत्व, चाहे जिंक हो, मैंगनीज हो, उसका 0.5% सॉल्यूशन बना के पत्ती के ऊपर छिड़काव किया जा सकता है। इससे दाने का भराव जो है वो अच्छा होता है, गुणवत्ता भी बढ़ती है।
1: सर आजकल ड्रोन तकनीक के बारे में काफी जोरों शोरों से बात चल रही है, तो ऐसे में क्या मखाना में भी ड्रोन स्प्रे फायदेमंद साबित होता है?
6: हाँ मैम, जी मैम, क्योंकि आजकल कृषि में हर क्षेत्र में इसको ड्रोन को उपयोग किया जा रहा है। मखाना के लिए तो ये सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मखाना जो है वो तालाब के होती है और नहीं तो कोई जल भराव वाली जमीन में होता है, कभी बार क्या होता है उसी जगह पर जाना मुश्किल हो जाता है खाद को छिड़काव करने के लिए, तो उस समय अगर हम ड्रोन को उपयोग करें, ड्रोन कम समय में खेत का हर हिस्से पर समान मात्रा में उस खाद का छिड़काव कर सकते हैं, इससे कम लागत लगता है, कम खर्चा होता है और समय भी बचता है, इसीलिए ड्रोन काफी फायदेमंद है।
1: सर अगर नैनो यूरिया की बात करें तो नैनो यूरिया की क्या आवश्यकता होती है मखाना की खेती में?
6: नैनो यूरिया जो है आजकल जो फर्टिलाइजर का टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो भी एडवांसमेंट हुआ है उसमें सबसे ज़्यादा जो अभी चल रहा है नैनो यूरिया, और इपको के नैनो यूरिया बाजार में मतलब किसान भाई के लिए आसानी से मिल जाएगा। वो अगर 125 ml 10 से 15 लीटर पानी में घुल के 1 एकड़ जमीन में हम स्प्रे कर सकते हैं, और इसमें ड्रोन को भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं स्प्रे के लिए, और इससे क्या होता है वो पौधे के पत्ती के ऊपर आता है और छोटा छोटा होने के कारण मतलब वो बहुत तेजी से मखाना पत्ती उनको ले लेता है और इससे हरा भरा रहता है जो हमारे पत्तियाँ।
1: और अगर हम सावधानियों की बात करें तो किसान भाई बहनों को मखाना की खेती के दौरान किस तरह की सावधानी बरतनी चाहिए?
6: जी मैम, इसमें बहुत अच्छा है कि हमको स्प्रे कब करना चाहिए, मतलब कौन सा समय को चुनना चाहिए, सावधानी क्या है, तो हम ये बोले कि जैसे अभी बहुत धूप है, इस धूप के बहुत ज्यादा धूप में छिड़काव करना ठीक नहीं होता है, बहुत तेजी से हवा चल रहा है, उस समय भी किसान भाई लोग उसमें स्प्रे ना करें, और जो बारिश होते हैं तब भी स्प्रे ना करें, और सबसे उपयुक्त समय होता है स्प्रे करने के लिए वो है सुबह या शाम, इस समय करेंगे तो वो पौधे पत्ते के ऊपर रहने का टाइम मिलता है और पौधा उसको तेजी से अवशोषित कर लेते हैं।
1: सर अगर हम देखें तो आजकल हमारी जो खेती गृहस्थी है वो काफी आधुनिक हो रही है, तो ऐसे में भविष्य में क्या मखाना खेती भी आधुनिक हो सकती है और कितनी आधुनिक हो सकती है?
6: बिल्कुल मैम, ये आधुनिक होने का ही बात है कि अगर हम लोग भविष्य में सेंसर आधारित, बहुत सारे सेंसर है, IoT बेस्ड सेंसर और सेंसर आधारित पोषक तत्व प्रबंधन, प्रिसिशन एग्रीकल्चर,

0: बहनों को कोई संदेश देना चाहेंगे?
1: जी मैम, मैं बस जो जितना जानते थे उतना किसान भाइयों के लिए हम बताएं, अभी सिर्फ एक और दो लाइन बताएंगे उनको, उनके लिए यह है कि सही समय पर सही पोषण पत्ती बने उत्पादन का कारण, सही समय पर सही पोषण हर पत्ती बने उत्पादन का कारण, और आखिर में ड्रोन भी यूज कीजिए, ड्रोन से पोषण हर पत्ती में जान, खुशहाल किसान बड़े सम्मान। नमस्कार।
0: थैंक यू सो मच सर। उम्मीद है किसान भाई बहनों हमारी आज की ये चर्चा आपके लिए काफी उपयोगी साबित होगी और आपको काफी कुछ जानने को समझने के लिए मिला होगा। अभी के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, लेकिन जाने से पहले खास बात की अपना और अपनी फसलों का रखें विशेष ध्यान और अपनी मिट्टी से करें ढेर सारा प्यार। नमस्कार।
2: उन्नत कृषि

0: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं? हाँ या ना?
1: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
2: हाँ।
0: इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
1: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
2: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
0: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
3: क्या क्या क्या?
1: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
3: अच्छा,
4: तो सबकी समझ में आ गया ना? खसरा रूबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाएं जड़ तक।
1: टीकू, तेरे कितने दोस्त है?
5: टीनू, मीनू, राजू, पिन्नी
1: और तुम्हारी वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
5: 11 दोस्त?
1: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
5: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
1: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
5: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
5: टीकी, तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
4: याद रखो,
5: आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
6: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 22 से 26 जुलाई के दौरान आसमान में घने बादल छाए रहेंगे और जिले में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी चलने और हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 26 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 90 प्रतिशत और दोपहर में 70 से 80 प्रतिशत रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए, जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दे, पिछले कुछ दिनों में हुई वर्षा का लाभ उठाइए और आगे भी संभावना है कि वर्षा होगी, तो ऐसी स्थिति में धान की रोपाई के लिए व्यवस्था सुनिश्चित कर ले। रोपाई से पहले प्रति हेक्टेयर 25 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस, 30 किलोग्राम पोटाश और 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट का प्रयोग करें। आपको बता दें कि निचली जमीन के चारों ओर

मजबूत मेड़ यानी कि बांध बनाकर वर्षा जल का संचयन कर ले ताकि जरूरत पड़ने पर आप वर्षा के जल का सिंचाई में उपयोग कर सके। जो किसान भाई बहन श्री अन्न की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दे, मोटे अनाजों की खेती के लिए उचास भूमि का चयन करें। मड़वा की वकुला KMR 316 GPU 67 और VL 379 राजेंद्र मड़वा RU 8 और RU 3। और आपको बता दे कौनी की अनुशंसित किस्में हैं राजेंद्र कौनी 1। आप इन किस्मों की बुआई कर सकते हैं। मक्का की खेती करने वाले किसान भाई बहन ध्यान दे, खरीफ मक्का की बुआई आसमान साफ रहने पर ही करें। खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और ध्यान रखें कि बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नेत्रजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश जरूर डालें। अनुशंसित मक्का की किस्में जैसे सुवान देव की शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, राजेंद्र संकर मक्का 3, गंगा 11 है। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दे, मिर्च, अगाध गोभी, टमाटर जैसी सब्जियों की नर्सरी तभी तैयार करें जब आसमान साफ हो। और बागवानी करने वाले भाई बहन ध्यान दें, जुलाई अगस्त आम के पौधों के रोपण के लिए सबसे उपयुक्त समय होता है। कलमी पौधों की रोपाई 10x10 मीटर और बीजू पौधों की रोपाई 12x12 मीटर की दूरी पर करें। सघन बागवानी के लिए 5x5 मीटर और आम्रपाली के लिए 2.5x2.5 मीटर की दूरी रखें। फलदार वृक्षों में प्रति वर्ष 1 किलोग्राम नाइट्रोजन, 30 किलोग्राम फास्फोरस, 700 किलोग्राम पोटाश और 80 से 100 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद जरूर डालें। आपको बता दें इस समय केला के स्वस्थ सकर्स की रोपाई करें। लंबी किस्मों जैसे अल्पान, कंथली, मालभोग, चिनिया, G9 और बॉनी किस्में जैसे ग्रैंड नेन, रोबस्टा, बसराई का चयन करना सबसे फायदेमंद होता है। लंबी किस्मों के लिए 2x2 मीटर और बॉनी किस्मों के लिए 1.5x1.5 मीटर की दूरी रखें। प्रत्येक गड्ढे में 5 किलोग्राम गोबर की खाद, 500 ग्राम अरंडी की खली, 300 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट, 100 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश और 10 ग्राम कार्बोफ्यूरान मिलाना ना भूलें। रोपाई से पहले सकर्स को कार्बन डाइजिंग 2 ग्राम प्रति लीटर पानी से उपचारित करें। किसान भाई बहनों, टिश्यू कल्चर पौधे का उपयोग अधिक उत्पादन के लिए लाभकारी होता है। पशुपालक भाई बहन ध्यान दें, पशुओं में PPR, MFD यानी कि खुरपका मुंहपका और HS यानी कि गला घोटू, इन रोगों का खतरा अधिक है। इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण करवाएं, उन्हें साफ और सूखा रखें और बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। रोग के लक्षण अगर दिखाई दे तो तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें और ध्यान रखें कि पशुओं की बिना जरूरत के आवाजाही पर नियंत्रण रखें। गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए जून माह में अगर टीके नहीं लगाए गए हों तो इस महीने में टीके जरूर लगवा दें। पशुओं को संतुलित और पौष्टिक आहार दें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

0: स्वागत है दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो 90.8 FM ग्रीन, और मैं हूं आपका दोस्त, आपका साथी शुभम गौरव। सेहत सही लाभ कई की श्रृंखला में हम आज बहुत खास प्रोग्राम लेके आए हैं। आज का कार्यक्रम बहुत खास है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे दिन की जो सिर्फ किसी एक देश का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का दिन है। एक ऐसा दिन जो हमें याद दिलाता है कि हमारी सबसे बड़ी पूंजी क्या है, हमारा स्वास्थ्य। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे विश्व स्वास्थ्य दिवस की। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हम अपने स्वास्थ्य को कितनी गंभीरता से लेते हैं? क्या हम सही जानकारी के आधार पर अपने फैसले लेते हैं या फिर सुनी सुनाई बातों पर भरोसा कर लेते हैं? इन सभी सवालों के जवाब देने के लिए आज अपने साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारी अपनी गांव-गांव में स्वास्थ्य की बातें पहुंचाने वाली सबकी चहेती टीकन देवी।
1: धन्यवाद आरजे बाबू और मेरे सभी प्यारे श्रोताओं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
0: टीकन भाभी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सब अपने साथ मिलकर समझाना चाहते हैं कि ये विश्व स्वास्थ्य दिवस आखिर है क्या और क्यों इतना जरूरी है।
1: देखिए, विश्व स्वास्थ्य दिवस हर साल 7 अप्रैल को मनाया जाता है। यह दिन इसलिए चुना गया है क्योंकि इस दिन 1948 में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की स्थापना हुई थी। अब आप ही सोचिए, जब पूरी दुनिया एक साथ किसी एक दिन को स्वास्थ्य के नाम करती है तो इसका मतलब कितना बड़ा और जरूरी है। इस दिन का मुख्य उद्देश्य यही है कि लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हों, अपनी जीवन शैली पर ध्यान दें और यह समझे कि हर व्यक्ति को अच्छी सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं मिलना उसका अधिकार है।
0: भाभी, हर साल इस दिन की कोई थीम भी होती है, तो इस साल की थीम क्या है?
1: हाँ बिल्कुल होती है, और 2026 की थीम बहुत ही खास और समय की जरूरत को समझने वाली है। इस साल दो मुख्य संदेश दिए गए हैं, टुगेदर फॉर हेल्थ, स्टैंड विद साइंस और ग्लोबल एक्शन फॉर यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज।
0: भाभी, ये तो बहुत भारी भरकम अंग्रेजी लग रही है, हमारे गांव के लोग इसे कैसे समझेंगे?
1: अरे, इसे समझना बहुत आसान है। जब हम कहते हैं स्टैंड विद साइंस, तो इसका मतलब होता है कि हम अपने स्वास्थ्य से जुड़े फैसले किसी भी अफवाह यानी सुनी सुनाई बातों पर नहीं बल्कि सही और वैज्ञानिक जानकारी के आधार पर ले। आजकल मोबाइल और इंटरनेट के ज़माने में हर कोई डॉक्टर बन जाता है। कोई कहता है ये दवा खा लो, कोई कहता है घरेलू नुस्खा अपनाओ, लेकिन हर बात सही नहीं होती। और दूसरी बात, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज यानी हर व्यक्ति को इलाज मिले, चाहे वो अमीर हो या गरीब, शहर में रहता हो या गाँव में, और इलाज इतना महंगा ना हो कि उसे अपनी जमीन या जेवर बेचने पड़े।
0: अरे भाभी, स्मार्ट संस्था दिल्ली के सौजन्य से चलाए जा रहे हमारे प्रोग्राम सेहत सही लाभ कई का भी तो यही उद्देश्य है कि लोग सरकारी योजनाओं और सुविधाओं का भी लाभ उठाएं और लोगों की जेब पर भी स्वास्थ्य पर खर्चा कम हो, उनके सेविंग बचे और बाकी जरूरतों के लिए इस्तेमाल हो। पर भाभी, आपने एक और शब्द बोला, वन हेल्थ, ये क्या होता है?
1: ये बहुत जरूरी सोच है। इसका मतलब है कि इंसान अपना स्वास्थ्य सिर्फ और उसके शरीर तक सीमित नहीं है। हमारे आसपास के वातावरण, जानवर, पेड़ पौधे सब हमारे स्वास्थ्य से जुड़े हुए हैं। अगर पानी गंदा होगा, हवा खराब होगी या जानवरों में बीमारी फैलेगी तो उसका असर इंसान पर भी पड़ेगा। इसलिए हमें अपने आसपास के पर्यावरण को भी ध्यान रखना चाहिए।
0: भाभी, आज के समय में ये दिन इतना जरूरी क्यों हो गया है?
1: क्योंकि आजकल जानकारी तो बहुत है लेकिन सही जानकारी कम है। लोग इंटरनेट पर कुछ पढ़ लेते हैं और खुद ही इलाज कर लेते हैं। कई बार छोटी छोटी बीमारी बड़ी बन जाती है क्योंकि सही समय पर डॉक्टर के पास नहीं जा पाते हैं। दूसरी तरफ कई तरह की अफवाहें फैली रहती हैं, जैसे वैक्सीन के नुकसान होते हैं या कुछ बीमारियों का इलाज घर पर ही हो सकता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस पर हमें यह याद दिलाया जाता है कि हमें सही जानकारी पर भरोसा करना चाहिए, सही समय पर डॉक्टर के से सलाह लेनी चाहिए।
0: भाभी, ये यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की बात आपने की, इसे थोड़ा और समझाइए।
1: इसका मतलब बहुत साफ है, हर व्यक्ति को इलाज मिलनी चाहिए और वो भी बिना आर्थिक बोझ के। इसमें क्या क्या शामिल है? रोकथाम, जाँच, इलाज और बाद की देखभाल भी, सब कुछ। लेकिन सिर्फ अस्पताल बन जाने से काम नहीं चलता, जरूरी यह है कि वहाँ डॉक्टर हों, दवाइयाँ हों और लोगों को उन सेवाओं पर भरोसा करें।
0: आज के समय में सबसे बड़ी समस्याएं कौन कौन सी हैं?
1: देखिए, आज दुनिया में कई तरह की स्वास्थ्य चुनौतियाँ हैं। सबसे पहले आती हैं जीवन शैली से जुड़ी बीमारियाँ, जैसे डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारी। यह इसलिए बढ़ रही हैं क्योंकि हमारे सही खान पान एवं व्यायाम पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। दूसरी, मानसिक स्वास्थ्य। पहले लोग इस पर बात नहीं करते थे, लेकिन अब समझ बढ़ रही है कि मानसिक स्वास्थ्य उतना ही जरूरी है जितना शारीरिक स्वास्थ्य। तीसरा है सांक्रामक बीमारियाँ, जैसे निमोनिया, मलेरिया, दस्त। इससे बचने के लिए साफ सफाई, टीकाकरण या सही जानकारी बहुत जरूरी है। और चौथी सबसे बड़ी समस्या है जलवायु परिवर्तन।
0: जलवायु का स्वास्थ्य से क्या संबंध है?
1: बहुत गहरा संबंध है। जैसे मौसम बदलता है, बाढ़ या सूखा आता है, तो पानी की कमी हो जाती है, खाने की दिक्कत होती है और बीमारियां फैलती हैं। बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं, कुपोषण, कमजोरी और बीमारियां बढ़ जाती हैं।
0: अब अगर हम अपने देश की बात करें तो भारत में क्या स्थिति है?
1: भारत ने बहुत प्रगति की है, लेकिन चुनौतियां अभी भी है। सरकार की योजनाएं जैसे आयुष्मान भारत, आयुष्मान आरोग्य मंदिर लोगों तक सेवाएं पहुंचा रहे हैं, लेकिन अभी भी टीबी जैसी बीमारी भारत में बहुत ज़्यादा है। और जीवन शैली की बीमारियाँ तो 60% मौत के कारण बन चुकी है। माँ और बच्चे के स्वास्थ्य में सुधार हुआ, लेकिन हर राज्य में समान ये नहीं है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में भी अंतर है और कई दूर दराज इलाकों में अभी भी स्वास्थ्य सेवाएं तक पहुंचना मुश्किल है। सबसे बड़ी समस्या है जेब से खर्च। कई लोगों को इलाज के लिए बहुत पैसे खर्च करना पड़ता है।
0: इस दिन लोग क्या क्या करते हैं?
1: बहुत सारी गतिविधियाएं होती हैं। गांव में स्वास्थ्य शिविर लगाए जाते हैं जहां मुफ्त जांच होती है। टीकाकरण अभियान चलाए जाते हैं। रक्तदान शिविर होता है। लोग योग, दौड़ और फिटनेस गतिविधियों में हिस्सा लेते हैं। इस सब का मकसद है लोगों को जागरूक करना और उन्हें स्वस्थ रहने के लिए प्रेरित करना।
0: भाभी, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं की क्या भूमिका होती है?
1: सबसे अहम भूमिका होती है। हर गाँव में आयुष्मान आरोग्य मंदिर होते हैं, जहाँ HHO होते हैं, जहाँ रोज़मर्रा की बीमारियों का इलाज मुफ्त में होता है, बहुत ही दवाइयाँ मिलती हैं और बहुत सी जांचें होती हैं। इसके बाद प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यानी PHC पहला संपर्क बिंदु होते हैं। वहाँ अच्छे डॉक्टर, दवाइयाँ और जांच की सुविधाएं होती हैं। साथ ही इलाज सस्ता और सबके लिए उपलब्ध होना चाहिए, लेकिन सबसे जरूरी है भरोसा। अगर लोग सिस्टम पर भरोसा होगा तब वो समय पर इलाज करवाएंगे।
0: टीकन भाभी, आपने बहुत सही बात कही कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यानी PHC सबसे पहला संपर्क बिंदु होता है, लेकिन कई बार लोगों को लगता है कि वह सुविधाएं पूरी नहीं मिलती या भरोसा कम होता है। ऐसे में लोग सीधे बड़े अस्पताल जाने की सोचते हैं या फिर इलाज टाल देते हैं। इस स्थिति में कैसे समझा जाए?
1: देखिए, यह बात पूरी तरह गलत भी नहीं है और पूरी तरह सही भी नहीं है। असल में हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था एक सीढ़ी की तरह है। सबसे नीचे यानी सबसे पहले स्तर पर होता है सब सेंटर, आयुष्मान आरोग्य मंदिर और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। यही वह जगह है जहां एक सामान्य व्यक्ति को अपनी पहली समस्या लेकर जानी चाहिए। यहाँ ANM, आशा कार्यकर्ता और सभी कभी कभी डॉक्टर भी होते हैं, जो बुनियादी जांच करते हैं, दवाइयाँ देते हैं और ज़रूरत पड़ने पर आगे रेफर भी करते हैं। इसके बाद आता है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, जहाँ थोड़ी ज़्यादा सुविधाएं होती हैं, और फिर आता है जिला अस्पताल और बड़े मेडिकल कॉलेज। अगर हर व्यक्ति सीधे बड़ा अस्पताल जाएगा तो भीड़ बढ़ जाएगी और जिनको सच में गंभीर इलाज की ज़रूरत है उन्हें समय पर सेवा नहीं मिल पाएगी।
0: तो क्या समस्या सिर्फ सुविधा की है या भरोसे की भी है? इस स्थिति को कैसे समझा जाए?
1: देखिए, यह बात पूरी तरह गलत भी नहीं है और पूरी तरह सही भी नहीं है। असल में हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था एक सीढ़ी की तरह है। सबसे नीचे यानी सबसे पहले स्तर पर होता है सब सेंटर, आयुष्मान आरोग्य मंदिर और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। यह वही जगह है जहाँ एक सामान्य व्यक्ति को अपनी पहली समस्या लेकर जानी चाहिए। यहाँ ANM, आशा कार्यकर्ता, कभी कभी डॉक्टर भी होते हैं, जो बुनियादी जांच करते हैं, दवाइयाँ देते हैं और ज़रूरत पड़ने पर लोगों को रेफर करते हैं। इसके बाद आता है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, जहाँ थोड़ी ज़्यादा सुविधाएं होती है, और फिर जिला अस्पताल और बड़े मेडिकल कॉलेज। अगर हर व्यक्ति सीधे बड़े अस्पताल जाएगा तो वहाँ भीड़ बढ़ेगी और जिन्हें सच में गंभीर इलाज की ज़रूरत होती है उन्हें समय पर सेवा नहीं मिल पाएगी।
0: तो क्या समस्या सिर्फ सुविधा की है या भरोसे की भी है?
1: बहुत अच्छा सवाल है। सच कहूँ तो समस्या दोनों की है, सुविधा भी और भरोसा भी। कई जगह पर अभी भी डॉक्टरों की कमी है, दवाइयां समय पर नहीं पहुंचती, जहां जांच की सुविधाएं सीमित होती हैं, लेकिन सरकार लगातार इन चीज़ों को सुधारने की कोशिश कर रही है। साथ ही कई बार लोगों में पहले से ही धारणा बन जाती है कि सरकारी अस्पताल में कुछ नहीं होता है, वे बिना कोशिश किए वहां जाना ही बंद कर देते हैं, जबकि हकीकत यह है कि आजकल बहुत सी सेवाएं पहले से बेहतर हुई हैं, बस हमें उन्हें इस्तेमाल करने और उन पर भरोसा करने की ज़रूरत है।
0: भाभी, आपने कहा कि सरकार कई योजनाओं के जरिए सुधार कर रही है, थोड़ा इनके बारे में भी बताइए ना, ताकि लोगों को सही जानकारी मिल सके।
1: हाँ बिल्कुल, सबसे पहले बात करते हैं आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना की। यह योजना उन परिवारों के लिए है जिनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है। इसके तहत एक परिवार को सालाना 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलता है, वो भी बड़े अस्पतालों में। इसके लिए एक आयुष्मान कार्ड बनाना पड़ता है, जिसको दिखाकर आप इलाज करवा सकते हैं। इसके अलावा आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनाए जा रहे हैं, जो पुराने सब सेंटर और PHC को मजबूत बनाकर वहाँ और सेवाएँ जोड़ रहे हैं। अब वहाँ सिर्फ दवा ही नहीं बल्कि ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, मानसिक स्वास्थ्य जैसी जानकारी और सलाह भी मिलती है। और एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है प्रधानमंत्री व्यय वंदन योजना PMVVY, जो इसी आयुष्मान भारत का हिस्सा है।
0: आजकल डिजिटल चीज़ों की भी बहुत चर्चा है, क्या स्वास्थ्य में भी इसका इस्तेमाल हो रहा है?
1: हाँ, और बहुत तेज़ी से हो रहा है। अब आभा ID बनाई जा रही है, जिसमें आपका पूरा स्वास्थ्य रिकॉर्ड डिजिटल रूप में रहता है। इसका फायदा यह होता है कि आप कहीं भी जाएं, डॉक्टर आपके पुराना इलाज का रिपोर्ट देख सकते हैं। इसके अलावा UVN जैसे प्लेटफॉर्म बनाए जा रहे हैं, जिसका टीकाकरण का रिकॉर्ड रखा जाता है और लोग समय पर याद दिलाया जाता है कि अगला टीका कब लगवाना है।
0: भाभी, आपने पहले भी कहा था कि आजकल गलत जानकारियाँ बहुत फैलती है, क्या आप कुछ उदाहरण दे सकती हैं?
1: हाँ, और यह बहुत चिंताजनक बात है। गांव में कई बार यह अफवाह फैलाई जाती है कि टीका लगवाने से बुखार आता है, कमजोरी होती है या बच्चों को नुकसान होता है। कुछ लोग यह कहते हैं कि हमारे ज़माने में टीका तो लगाया ही नहीं, फिर भी हम ठीक हैं, इसलिए आज के बच्चों को भी ज़रूरत नहीं है। इसी तरह कई लोग छोटी छोटी बीमारियों के लिए इंटरनेट या पड़ोसी की सलाह पर दवा लेने लगते हैं बिना डॉक्टर से पूछे।
0: तो इन बातों का सच क्या है?
1: सच यह है कि टीका शरीर को बीमारी से बचाने के लिए होता है। हाँ, कभी कभी हल्का बुखार या दर्द तो हो सकता है, लेकिन वह सामान्य है और यह दिखाता है कि शरीर अंदर से मजबूत बन रहा है। और जहाँ तक हमारे ज़माने की बात है, तो उस समय बहुत से लोग बीमारी से मर जाते थे, बस हमें पता नहीं चलता था और हम उस सामान्य मान लेते थे। आज विज्ञान ने हमें यह ताकत दी है कि हम बीमारियों को पहले ही से बचाव कर सकें।
0: तो फिर लोगों को क्या करना चाहिए ताकि वे इन अफवाहों से बच सकें?
1: सबसे पहले किसी भी स्वास्थ्य जानकारी के लिए सिर्फ भरोसेमंद स्रोत पर विश्वास करें, जैसे डॉक्टर, ANM, आशा दीदी या सरकारी स्वास्थ्य केंद्र। दूसरी बात, अगर कोई नई बात सुनते हैं तो उसे तुरंत सच ना माने, पहले पूछे, समझे, फिर निर्णय लें। तीसरी बात, अपने आसपास के लोगों को भी सही जानकारी दें। कई बार एक व्यक्ति समझदारी रूप से पूरे गांव को सही दिशा दे सकता है।
0: भाभी, आपने बहुत गहरी बात कही, क्या आप हमारे श्रोताओं के लिए कोई अंतिम संदेश देना चाहेंगी?
1: मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि स्वास्थ्य सिर्फ बीमारी का इलाज नहीं है, बल्कि एक जिम्मेदारी है, अपने लिए, अपने परिवार के लिए और अपने समाज के लिए। स्वास्थ्य सबसे बड़ी संपत्ति है। नियमित जांच कराते रहें, बीमारी होने का इंतजार मत करें, बचाव करें, सही खानपान और व्यायाम अपनाएं, और सबसे जरूरी, सही जानकारी पर भरोसा करें। जब हम अपने बच्चों को टीका लगवाते हैं, जब हम समय पर डॉक्टर के पास जाते हैं, जब हम कहीं सही जानकारी को अपनाते हैं, तब हम सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए सुरक्षित भविष्य का बना रहे होते हैं।
0: दोस्तों, आज की बातचीत से एक बात तो साफ हो गई, स्वास्थ्य कोई विकल्प नहीं है, स्वास्थ्य हमारा अधिकार भी है और हमारी जिम्मेदारी भी। और अगर हमें एक स्वस्थ समाज बनाना है तो हमें विज्ञान के साथ खड़ा होना होगा, सही जानकारी को अपनाना होगा और मिलकर आगे बढ़ना होगा। और जब हम विज्ञान के साथ खड़े होते हैं, सही जानकारी अपनाते हैं और एक दूसरे का साथ देते हैं, तभी हम एक स्वस्थ समाज बना सकते हैं। तो इसी के साथ आज का शो खत्म होता है। पर जाने से पहले हम सब मिलकर आज यह शपथ लेते हैं कि हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे, अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है। सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों की जागरूक करेंगे। साफ सफाई और स्वच्छता पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके। नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को इसी प्रेरित करेंगे। संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे। महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे। जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा। सेहत स...

0: फिर पिट गया। बिल देना। इसको आउटसाइड द ऑफ टाइम डालना चाहिए था, इसकी यही प्रॉब्लम है।
1: कब से?
0: जब से क्रिकेट खेल रहा है तभी से।
1: अरे भाई साहब, क्रिकेट की नहीं, हो आपकी खांसी की बात कर रहे हैं। बुड़बक
0: खांसी?
1: हाँ।
0: इसको तो एक आध महीना हो गया।
1: खुद की खांसी को एक आध महीने हो गए हैं और यहाँ क्रिकेट पर अपनी ही गुगली फेंक रहे हैं आप। चलिए चलिए चलिए।
0: डॉक्टर, खांसी तो है।
1: देखिए भाई साहब, इसे हल्का मत लीजिए। 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी रहे तो टीबी हो सकता है।
0: टीबी?
1: हाँ। तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए।
0: ठीक है।
1: टीबी किसी को भी हो सकता है, अगर हो गया तो बिना भूले पूरा कोर्स करिए, अब फिट हो जाइए। नहीं किया तो इसका इलाज बहुत मुश्किल है। समझ गए भाई साहब आप? आइए। 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
2: Attention, attention, attention, all the ladies and gentlemen. This is to remind you all about the importance of immunization. If your kids are 5 or less who have missed a vaccine, hear this appeal. Getting them vaccinated immediately is the key. For their safety and health, it is a wise request. Protecting them from illness to be their best. And remember, vaccination is safe and it saves your children from deadly diseases. So, see you at the vaccination center soon.
3: To get more information about vaccination, visit your nearest health facility center.
4: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
5: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
4: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
5: आपकी सेहत की बातें,
4: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
5: युवाओं के रोजगार करियर की बातें,
4: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
5: वो कहाँ पर?
4: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
5: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
4: उन्नत कृषि। नमस्कार, आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो 90.8 FM ग्रीन, और मैं हूँ आरजे अनु, और आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ हमारे हर रोज के इस खास कार्यक्रम उन्नत कृषि कार्यक्रम में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे कार्यक्रम का नाम उन्नत कृषि है। इसमें हम बातें करते हैं उन्नत बातें खेती बाड़ी की, और आज एक ऐसा ही खास विषय जिसे जानकर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, वो विषय है हमारा आज का, सुगंधित धान की वैज्ञानिक खेती। जी हाँ, सुगंधित धान का नाम सुनते ही कुछ ऐसे चावल आपके दिमाग में उसके नाम आ रहे होंगे जिसकी खुशबू आपको यूं ही अपनी ओर खींचती होगी कि चलो हम इसे पकाएं घर में और खाएं। तो कुछ ऐसे ही सुगंधित धान की बात करेंगे हम, और उसकी वैज्ञानिक खेती की बात करेंगे। तो चलिए आज मैं आपको बता दूँ कि इस विषय को लेकर हमारे बीच हैं डॉक्टर शंभू प्रसाद जी। मैं आपको बता दूं, ये असिस्टेंट प्रोफेसर कम जूनियर साइंटिस्ट हैं सस्य विज्ञान विभाग बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
6: धन्यवाद मैडम।
4: सर, अगर हम सुगंधित धान की बात करें तो इसकी क्या खासियत है और इसकी खेती कहाँ होती है?
6: मैडम, धान की विभिन्न किस्मों में सुगंधित धान का विशिष्ट स्थान है, जो उसमें विद्यमान खास गुणों के कारण है। यूँ तो सुगंधित धान की किस्मों में भी काफ़ी विविधताएं हैं, परंतु इसके चावल की क्वालिटी, खुशबू और महक लोगों के आकर्षण का मुख्य वजह बन जाता है। वैश्विक स्तर पर सुगंधित धान के उत्पादन एवं निर्यात में भारत का प्रमुख स्थान है, और उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर अधिकांश सुगंधित धान का मूल स्थान भारतीय उपमहाद्वीप है। भारत में सुगंधित धान की खेती कहाँ होती है, जैसा कि आपने प्रश्न किया है, तो मैं ये आपको जानकारी देना चाहूँगा कि भारत में सुगंधित धान की खेती प्रायः हिमालय के तराई क्षेत्रों में, उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ भागों में की जाती है, और खासकर ये सुगंधित धान जो है ये अपनी खुशबू के कारण काफी
4: प्रसिद्ध है,
6: प्रचलित है, और इसी खुशबू के वजह से ये लोगों की चाहत भी बनी हुई है, और हर लोग चाहते हैं कि कुछ ना कुछ इसकी हम खेती करें।
4: बिल्कुल। सर, आपने कहा कि इसकी खुशबू जो है वो आकर्षित करती है लोगों को, और इसकी खुशबू ही इसे अन्य धानों से अलग करती है, तो वो किस वजह से है इस सुगंधित धान में खुशबू?
6: ये बहुत अच्छा प्रश्न है, चूंकि खुशबू से तो लोग वाकिफ हैं, लेकिन शायद बहुत कम लोगों को पता होगा कि इसमें खुशबू क्यों होती है।
4: जी,
6: तो मैं आपको और किसान भाइयों को ये बताना चाहूँगा कि सुगंधित धान में महक या खुशबू का होना ही उसका सबसे प्रमुख गुण है, और इस खुशबू के लिए बहुत सारे वोलेटाइल कंपाउंड्स उत्तरदायी होते हैं, जिनमें 2-एसिटाइल 1-पाइरोलिन कंपाउंड काफ़ी महत्वपूर्ण है। वैसे तो इसके अलावा बहुत सारे वोलेटाइल कंपाउंड्स हैं जो लगभग 12-13 की संख्या में हैं, लेकिन 2-एसिटाइल 1-पाइरोलिन, जिसको संक्षेप में 2-AP भी कहते हैं, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और आपको मैं जानकारी देना चाहूँगा कि सुगंधित धान में इस 2-AP की मात्रा असुगंधित धान से लगभग 15 गुना ज़्यादा होती है।
4: अच्छा,
6: और सुगंधित धान में यह 2-AP 0.14 PPM होती है, जबकि असुगंधित धान में इसकी मात्रा 0.009 PPM होती है।
4: जी।
6: और अच्छी मात्रा में ये 2-AP का निर्माण हो, इसके लिए धान की खेती, खासकर सुगंधित धान की खेती का जो उपयुक्त तापक्रम है और उसका रेंज है, वो 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस है।
4: तो सर, अगर किस्मों की बात करें हम, कि सुगंधित धान की हम अच्छी किस्म लगाना चाहते हैं, तो इन किस्मों के हम नाम जानना चाहेंगे और साथ ही हम उसे कब लगाएं ये भी जानना चाहेंगे सर।
6: जी हाँ, तो मैं बताना चाहूँगा कि हमारे बिहार कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा सुगंधित धान की जो अनुशंसित किस्में हैं, प्रभेद हैं, उसमें सुगंधा टाइप 3, भागलपुर कतरनी जैसी अच्छी प्रभेद है जो प्रकाश संवेदी है, और इनमें एक खासियत है कि इनका जो पुष्पन होता है वो खास तापक्रम आने पर ही होता है, और ये किस्में लंबाई में ज़्यादा होती है, मतलब इनकी लंबाई, ये लंबी लंबे पौधे वाली किस्में हैं। और दूसरे किस्म हैं जो प्रकाश असंवेदी हैं, और उन किस्मों में राजेंद्र सुभाषिनी, राजेंद्र कस्तूरी, सबौर सुरभित आदि श्रेष्ठ हैं, जिनके पौधे बौना किस्म के होते हैं।
4: तो सर, अगर स्वस्थ बिचड़े की हम बात करें, तो इसकी तैयारी हमें किस तरीके से करनी चाहिए?
6: देखिए, सुगंधित धान को खासकर खुशबू के मकसद से ही लगाते हैं, तो उसका बिचड़ा तैयार करने के लिए भी किसान भाई को काफ़ी सावधानी की काफ़ी सावधानी बरतनी चाहिए, और किसान भाइयों को चाहिए कि सुगंधित धान की खुशबू का संबंध जो है, चूंकि वायुमंडलीय तापमान के साथ है, इसलिए उनको ये चाहिए कि अच्छी खुशबू या सुगंध के लिए पुष्पन का समय जो तापक्रम होता है वायुमंडल का, वह 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच हो। इसके लिए सुगंधित धान के बिचड़ा हेतु बीज की नर्सरी में बुआई को सोच समझ कर करनी चाहिए, और सुगंधित धान के बीजों की बुआई नर्सरी में जून के अंतिम सप्ताह से 10 जुलाई तक करना ज़्यादा अच्छा होता है, और ख़ासकर भागलपुर कतरनी का जो बिचड़ा डालना है उसके लिए थोड़ा आगे का समय आपको लेना है, और भागलपुर कतरनी का बिचड़ा आप या हमारे किसान भाई 15 जुलाई से 30 जुलाई तक अगर डालते हैं तो उसमें अच्छी खुशबू प्राप्त होती है।
4: तो कितने दिनों के बिचड़ों की हमें रोपाई करनी चाहिए और कितने दूरी पर?
6: मैडम, यहाँ मैं एक और चीज़ जोड़ना चाहूँगा कि बिचड़ा को रोपने से पहले हमें ये प्रयास करना चाहिए कि बिचड़े की तैयारी हम अच्छी से करें।
4: अच्छा।
6: और बिचड़ा स्वस्थ हो तभी हमको फसल अच्छा मिल सकता है। तो स्वस्थ बिचड़ा तैयार करने के लिए पहले हमको नर्सरी में बीज को बोना है, और बीज को बोने से पहले उससे हम बीज से उपचारित करेंगे। और किसान भाई को मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर 1 एकड़ में आपको धान की रोपाई करनी है, सुगंधित धान की रोपाई करनी है, तो उसके लिए नर्सरी का जो एरिया होगा वो लगभग 400 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में होगा, और इसमें बीज बोने से पहले आपको लगभग 2 क्विंटल सरी गोबर की खाद को 10 से 15 दिन पूर्व खेत में डालकर अच्छी तरह से मिला देना होगा, और अंतिम कदवा के समय आपको खेत में यानी 400 वर्ग मीटर की नर्सरी वाले प्लॉट में 3 किलो यूरिया, 2 किलो DAP एवं 1.5 किलो MOP यानी पोटास को समान रूप से छींट देना है। अगर आपके खेत में जिंक की कमी है तो 1 किलोग्राम जिंक सल्फेट को मिट्टी या राख में मिलाकर नर्सरी प्लॉट में आपको डालना है। और यहाँ मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि बिचरा जब लगभग 15 दिनों का हो जाए तो उस समय फिर आपको उसमें एक बार यूरिया की टॉप ड्रेसिंग करनी पड़ेगी, और उसके लिए आपको नर्सरी वाले प्लॉट में लगभग 2 से 3 किलो यूरिया का टॉप ड्रेसिंग करना है। और बिचरा उखाड़ने से पहले यानी जब बिचरा आप उखाड़ने जा रहे हैं तो उसके पहले आपको नर्सरी वाले प्लॉट में पानी लगा देना चाहिए, ताकि उखाड़ते समय बिचरे के जड़ को किसी तरह का नुकसान नहीं हो। तो ये सावधानी आपको स्वस्थ बिचरा तैयार करने के लिए बरतनी है। अब प्रश्न ये उठता है कि बिचरे की रोपाई कब करेंगे और कितनी दूरी पर करेंगे। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि सुगंधित धान का बिचरा जब 20 से 25 दिनों का हो जाए तब उसकी रोपाई करनी चाहिए। और जैसा कि हमने बताया कि बिचरा उखाड़ने से पूर्व नर्सरी वाले प्लॉट में पानी लगा देना चाहिए, ताकि बिचरा आसानी से उखड़ जाए और जड़ को किसी तरह का नुकसान नहीं हो। और बिचरा की रोपाई आप 20 सेंटीमीटर पंक्ति से पंक्ति तथा 15 सेंटीमीटर पौधा से पौधा की दूरी पर लगाएं, और एक स्थान पर 1 से 2 बिचरा को ही लगाएं, इससे ज़्यादा बिचरा नहीं लगाएं, अन्यथा फिर टिलरिंग में कमी आ जाएगी। और बिचरे को रोपने से पूर्व उसकी जड़ों को जैव उर्वरक जैसे एजोस्पिरिलम, PSB और KSV कल्चर के घोल में 15 से 20 मिनट तक आप डुबो कर रखें, यानी धान के बिचरे के जड़ों को इन जैव उर्वरक दवा के कल्चर के घोल से उपचारित करके ही रोपाई करें, तो ये आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा।
4: सुगंधित धान के लिए ज़रूरी है खाद और उर्वरक की मात्रा जानना, तो कितनी मात्रा दें और इन्हें हम कब डालें?
6: तो किसान भाई को मैं बताना चाहूँगा कि सुगंधित धान में जैसे आप राजेंद्र सुवासिनी या सवोर सुरभित जैसे प्रभेद को लगा रहे हैं, यानी सुगंधित बौनी किस्मों को लगा रहे हैं, तो उसके लिए आपको जो उर्वरक डालना है उसे अंतिम कदवा के समय 1 एकड़ खेत में 25 किलोग्राम यूरिया, 35 किलोग्राम DAP, 15 किलोग्राम पोटास को मिलाकर समान रूप से आपको खेत में बराबर रूप से छींट देना है। अगर आपके खेत में जिंक की कमी है तो उसके लिए 10 किलोग्राम जिंक सल्फेट को राख या मिट्टी में मिलाकर अकेले DAP के साथ नहीं मिलाना है, इसको अकेले इस्तेमाल करना है, तो मिट्टी या राख में मिलाकर उसको कदवा के समय खेत में समान रूप से छींट देना है। और जब फसल 25 दिनों का हो जाए मतलब रोपनी के 25 दिनों बाद आपको पुनः 20 किलोग्राम यूरिया प्रति एकड़ के हिसाब से पहला टॉप ड्रेसिंग करना है, और दूसरा टॉप ड्रेसिंग करना है जब गाभा निकलने की अवस्था आवे तो उस समय फिर 20 किलोग्राम यूरिया का टॉप ड्रेसिंग करना है। और यूरिया के टॉप ड्रेसिंग के समय कोशिश ये करना चाहिए कि खेत में पानी लगा हुआ नहीं रहे, और बेहतर हो कि खेत में अगर पानी ज़्यादा लगा है तो पानी को निकाल दें, टॉप ड्रेसिंग करें, और टॉप ड्रेसिंग करने के तीसरे दिन फिर खेत में पुनः पानी लगा दें। यहाँ मैं किसान भाइयों का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि ये जो पूर्व में जो हमने बताया है उर्वरक की मात्रा, वो राजेंद्र सुवासिनी और सवोर सुरभित के लिए था, लेकिन अगर आप भागलपुर कतरनी लगाने जा रहे हैं तो उसके लिए कदवा के समय आपको DAP देना है 25 किलोग्राम, यूरिया देना है 10 किलोग्राम और पोटास देना है 15 किलोग्राम। और जब इसकी टॉप ड्रेसिंग प्रथम टॉप ड्रेसिंग करेंगे 25 दिनों के बाद तो उसमें मात्र 10 किलोग्राम यूरिया से टॉप ड्रेसिंग करना है पहला, और दूसरा जो टॉप ड्रेसिंग फिर गाभा वाली अवस्था में करेंगे तो उसमें भी मात्र 10 किलोग्राम यूरिया का ही टॉप ड्रेसिंग करेंगे। अगर ज़्यादा यूरिया का इस्तेमाल करेंगे तो धान में लॉजिंग का प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि इसकी लंबाई ज़्यादा होती है तो धान के गिरने की संभावना प्रबल हो जाएगी, तो ये सावधानी आपको बरतनी है।
4: तो ये बातें हो गई सावधानियों की, और डॉक्टर साहब अब ये जानेंगे हम, सिंचाई प्रबंधन भी बहुत ज़रूरी होती है, तो किस तरह हमें सिंचाई प्रबंधन की व्यवस्था करनी चाहिए सुगंधित धान की खेती में?
6: मैडम ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, और जैसा कि हम जानते हैं कि धान को कहते हैं कि जल ज़्यादा प्रिय होता है, धान के लिए जल प्यारा होता है, और एक कहावत भी है कि धान के खेत में दरार नहीं पड़ना चाहिए। तो धान के खेतों की सिंचाई में ये किसानों को पहले से पता है और उन्हें सावधानी भी बरतनी है। तो किसान भाइयों से मेरी सलाह है कि रोपाई के बाद लगातार 2 सप्ताह तक खेत में पानी लगाकर रखें ताकि खरपतवार का अंकुरण ना हो, और अगर आप खरपतवार नाशी दवा का इस्तेमाल किए हैं तो उस दवा का भी प्रभाव सही ढंग से हो सके। उसके बाद यह ध्यान रखें कि 2 दिनों से ज़्यादा खेत पानी के बिना ना रहे, अर्थात किसी भी परिस्थिति में खेत में दरार ना पड़ने पाए। और यहाँ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि पुष्पन के समय मतलब फ्लावरिंग के समय खेत में पानी की बिल्कुल कमी ना हो, और धान कटाई के 2 सप्ताह पूर्व यानी 15 दिन पहले अगर खेत में ज़्यादा पानी है तो उस पानी को आप बाहर निकाल दें, और ऐसा करने से बाद की जो रबी फसल की बुआई आप करने जा रहे हैं उसकी बुआई भी समय से संभव हो पाएगी। बस सावधानी ये बरतनी है कि आपके खेतों में किसी भी परिस्थिति में दरार न पड़े। पानी मतलब अगर 2 दिन तक अगर खेत खाली है तो आपको 3रे दिन हर हाल में पानी खेत में डाल देना अनिवार्य है।
4: तो इस प्रकार से सिंचाई प्रबंधन की व्यवस्था आपको रखनी चाहिए। और डॉक्टर साहब, अगर खरपतवार की समस्या हो जाती है तो उसका निदान कैसे करेंगे?
6: जी ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, और खरपतवार की समस्या से हर किसान रूबरू होते हैं। तो किसान भाई को मैं बताना चाहूँगा कि खरपतवार को नियंत्रित करने के लिए आपको प्रारंभ से ही तैयारी करनी चाहिए, और इसके लिए सबसे पहले आपको सावधानी ये बरतनी है कि अगर खेत में आप गोबर की खाद या FYM डाल रहे हैं तो ये ध्यान रहे कि गोबर की जो खाद आप डाल रहे हैं वह पूर्ण रूपेण सड़ा हुआ हो, ताकि उसमें खरपतवार के बीज जीवंत रूप में ना रहे, वो बिल्कुल गोबर के साथ ही वो भी सड़ जाएं। तो आपको पूर्ण रूपेण सड़े हुए गोबर की खाद का इस्तेमाल करना है। दूसरा कि आप जो बिचरा डाले हैं या बीज का इस्तेमाल कर रहे हैं वो बीज भी जो है खरपतवार से मुक्त हो, तो आपको ऐसे संस्थान से बीज लेना चाहिए जो रजिस्टर्ड हो और उसमें खरपतवार के बीज ना हो। तीसरी बात कि कदवा के समय बहुत किसान भाई लापरवाही बरत जाते हैं, जैसे तैसे कदवा कर देते हैं, तो उस वजह से भी बहुत सारे खरपतवार खेतों में जिंदा रह जाते हैं। तो कदवा करते समय किसान भाई को चाहिए कि हम कदवा ठीक से करें ताकि खेत में जो भी खरपतवार हैं वो अच्छी तरह से उनका जड़ उखड़ जाए और मिट्टी में पूरा लिपट के वो सड़ जाए। तो कदवा की तैयारी भी आपको ठीक से करनी है। और इसके अलावे अगर आपके खेतों में खरपतवार की समस्या आती है तो धान रोपाई के 2रे या 3रे दिन ब्यूटा क्लोर 50 EC या प्रेटिला क्लोर 50 EC का 1 से 1.25 लीटर दवा को आप 15 से 20 किलोग्राम बालू में मिलाकर 1 एकड़ खेत में समान रूप से छींट दें। और कंडीशन ये है कि जिस समय आप इस दवा का इस्तेमाल कर रहे हों उस समय आपके खेत में कम से कम 1 से 1.5 इंच पानी लगा हुआ रहे, ताकि पानी के लेयर के ऊपर ये दवा का लेयर आ जाए और जो भी नीचे से खरपतवार निकलने वाले हों उसको निकलने ना दे, वो खरपतवार नाशी दवा के संपर्क में आकर वहीं मर जाए।
4: जी
6: तो ये सावधानी बरतनी है। और अगर उसके बाद भी आपको या किसान भाई को खरपतवार की समस्या नजर आती है तो धान की रोपाई के 20 से 25 दिनों के बाद पुनः 20 पायरीवैक सोडियम नाम 10% के नाम से दवा आती है और इस दवा का 80 से 100 ग्राम मात्रा को 200 लीटर पानी में घोलकर एक एकड़ में छिड़काव अगर किसान भाई करते हैं तो उनको खरपतवार से निजात मिल जाएगी और फिर उनका फसल स्वस्थ हो जाएगा और अच्छी टिलरिंग जब हो जाएगी, उसके पौधे जब घने हो जाएंगे तो फिर उसके फसल को कोई तरह का नुकसान नहीं होगा।
4: जी, तो ये तो बातें हो गई खरपतवार की जो समस्या उसका निदान कैसे करें। और डॉक्टर साहब, अगर कीट और रोगों की बात करें तो कौन कौन से प्रमुख कीट और रोग हैं जो धान सुगंधित धान में लग सकते हैं और उनका हम नियंत्रण कैसे कर सकते हैं?
6: देखा जाए सुगंधित धान, जैसा नाम है सुगंध, तो सुगंध सबको प्यारा होता है
4: जी,
6: तो सुगंधित धान में कीट और रोग के प्रकोप भी काफ़ी होते हैं और खासकर यह देखा जाता है कि सुगंधित धान में धर छेदक जो कीट हैं उसका ज़्यादा प्रभाव देखा गया है और इसके लिए फसल की देखभाल किसान भाई को नियमित रूप से करनी चाहिए और जैसे ही उनको ये नज़र आए कि 2% से ज़्यादा मृत मूल कल्ले अथवा सफ़ेद बालियां नज़र आ रही है खेत में तो शीघ्र उन्हें उचित कीटनाशी दवा का प्रयोग अपने खेतों में करना चाहिए। इसके लिए किसान भाई आप क्लोरपाइरीफॉस 20 EC की 1 लीटर मात्रा को अथवा फिप्रोनिल 80% WG की 15 ग्राम मात्रा को 100 लीटर पानी में घोलकर एक एकड़ में छिड़काव करेंगे तो धर छेदक कीट से फसल का बचाव हो जाएगा। इसके अलावे किसान भाई अपने खेतों में फेरोमन ट्रैप 5 फेरोमन ट्रैप प्रति एकड़ के हिसाब से लगा सकते हैं या ट्रैको कार्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और बर्ड पर्चर का भी प्रयोग कर सकते हैं जो कीड़े के प्रवेश को या कीड़े के भक्षण में या कीड़े को मारने में ये कारगर सिद्ध होगा। और दूसरा कीट है गंधी कीट। दूध बनने की अवस्था में गंधी कीट दानों से रस चूस लेते हैं जिस कारण दाने खखरी हो जाते हैं, तो इससे बचाव के लिए किसान भाइयों को मैं ये सलाह देना चाहूँगा कि मालाथियान 5% धूल या मिथाइल पाराथियान 2% धूल की 10 किलोग्राम मात्रा को प्रति एकड़ के हिसाब से सुबह के समय जिस समय पौधे पर ओस होते हैं उस समय इसका अगर भुड़काव करेंगे तो ये गंधी कीट जो हैं आपके खेतों से भाग जाएंगे और फिर आपके फसल को किसी तरह का नुकसान नहीं होगा। तो इस तरह से आप कीट से अपने फसलों की बचाव कर सकते हैं। और रोग भी सुगंधित धान में लगते हैं जिसमें खास करके पत्र लांछन जिसे लीफ स्पॉट कहते हैं, झोंका जिसे ब्लास्ट भी कहते हैं और जीवाणु पत्र झुलसा जिसे BL भी कहते हैं और आवरण झुलसा जिसे शीत ब्लाइट कहते हैं, ये काफ़ी नुकसानदायक है सुगंधित धान के लिए। तो किसान भाइयों इन रोगों से बचाव हेतु सबसे पहले तो बीजोपचार और बिचरा उपचार करें, अपने खेतों का नियमित रूप से निरीक्षण करते रहें और रोग के लक्षण दिखते ही उपचार हेतु संबंधित विभाग के वैज्ञानिकों से अथवा विश्वविद्यालय के किसान हेल्पलाइन से संपर्क करें। फिर भी मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आपके फसल में पत्र लांछन रोग लगा है तो इसे बचाव हेतु आप डाइथेन Z78 या मैनकोजेब की 2 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में घोलकर 10 से 12 दिनों के अंतराल पर खरीफ फसल में 3 से 4 बार छिड़काव करें और शीथ ब्लाइट से बचाव के लिए वेलिडामाइसिन नाम की दवा का 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोलकर 10 से 12 दिनों के अंतराल पर 3 बार खरी फसल में छिड़काव करें और BLB से बचाव के लिए स्ट्रेप्टोसाइक्लिन नाम की दवा की 20 ग्राम मात्रा के साथ कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 1 किलो को 400 लीटर पानी में घोलकर 1 एकड़ में 12 दिनों के अंतराल पर खरी फसल में 2 बार छिड़काव करेंगे तो BLB से भी आपके फसल का बचाव हो जाएगा। इसके अलावा मैं किसान भाइयों को कुछ और बताना चाहूँगा। चूंकि फसल की कटाई और तैयारी भी सुगंधित धान के लिए बहुत महत्वपूर्ण एक विषय होता है, तो सुगंधित धान की गुणवत्ता, खुशबू और उत्पादन पर कटनी के समय का काफ़ी असर पड़ता है। और विलंब से कटाई करने से दाने झड़ जाते हैं, चावल की मात्रा में और उसकी खुशबू में भी कमी आती है। अतः किसान भाइयों से अनुरोध है कि सुगंधित धान के फसल की कटाई 50% फूल आने के 30 से 35 दिनों बाद, जिस समय दाना में लगभग 20-24% नमी हो, उसी समय उसकी कटाई कर लें। और खेत का पानी कटाई के 10 से 15 दिनों पूर्व बाहर निकाल दें। कटाई के दूसरे दिन ही कोशिश करें कि उसकी हम थ्रेसिंग कर लें, और जो थ्रेसिंग करने के बाद आपको धान मिला है उसको सीधा धूप में ना सुखाकर उसको छाया में तब तक सुखाएं जब तक कि उसमें 12-14% नमी ना आ जाए। ऐसा करने से मिलिंग क्वालिटी भी इम्प्रूव कर जाती है और भंडारण क्षमता में भी वृद्धि होती है। और जब इसका भंडारण आप करेंगे तो भंडारण करने से पूर्व आपको ये एश्योर कर लेना चाहिए कि सुगंधित धान का भंडारण हम उस समय करें जब धान में नमी का स्तर 12-14% तक आ जाए, और भंडारण गृह की सही ढंग से सफाई और कीटनाशक दवा से अच्छी तरह से वो उपचारित हो, तभी आपको भंडारण करना चाहिए। और इस प्रकार से अगर सारे सही तरीके को अपनाकर किसान भाई अगर सुगंधित धान की खेती करते हैं तो उन्हें अच्छी पैदावार प्राप्त होगी, और ये पैदावार लगभग 30 से 40 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक की हो सकती है, और जिसका बाजार भाव भी उनको अच्छा मिल सकता है।
4: तो जैसा कि किसान भाइयों और श्रोताओं, डॉक्टर साहब ने आपको बताया कि अगर इस तरीके से आप सही तरीके से सुगंधित धान की खेती करते हैं तो आपको अच्छी पैदावार और बाज़ार में इसका अच्छा मूल्य भी मिल सकता है। तो ये वैज्ञानिक खेती और इसकी तैयारियां पूरी यहां पर बताई गई हैं, आपको किस तरीके से बिचड़े को तैयार करना है और इसके साथ ही खाद और उर्वरक की मात्रा कितनी होनी चाहिए और इसे कब लगाना चाहिए, कौन सी किस्में सही हैं, और सिंचाई प्रबंधन के साथ साथ डॉक्टर साहब ने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई हैं खरपतवार प्रबंधन के बारे में, कीट और रोग नियंत्रण के बारे में। तो वैज्ञानिक खेती आपको यहाँ पर बताई गई पूरी की पूरी सुगंधित धान की। तो आशा करते हैं कि आप इन बातों को सुने और ज़रूर इसे अपनाएं, और जब आप खेती कर रहे हैं तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए खेती करेंगे तो आपको अच्छी पैदावार ज़रूर मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही, सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर उन्नत कृषि कार्यक्रम। नमस्कार। उन्नत कृषि

0: देखो नाटक देखो।
1: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं, हाँ या ना?
2: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
1: हाँ। इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
2: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
3: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
1: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
4: क्या क्या क्या?
2: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
4: अच्छा,
0: तो सबकी समझ में आ गया ना, खसरा रूबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाए जड़ तक।
2: टीकू, तेरे कितने दोस्त है?
5: तीनू, मीनू, राजू, पिन्नी
2: और तुम्हारी वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
5: 11 दोस्त?
2: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
5: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
2: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
5: लेकिन ऐसा क्यों?
2: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
5: टीकी, तो इसका हल क्या है?
2: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
0: याद रखो,
1: आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
6: Yo, what's up?
7: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 ग्रीन FM।
8: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार और आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई में। दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि सरकार ने HPV का टीका सभी 14 साल से ऊपर के बच्चियों के लिए मुफ्त कर दिया है। HPV का टीका लगाना शुरू तो हो गया है, लेकिन अभी भी बहुत सारे हमारे श्रोताओं के मन में बहुत सारे सवाल हैं। तो आज हम बात करेंगे HPV टीके की और कोशिश रहेगी कि आपके मन में जो भी सवाल हैं उनके जवाब भी हम दे सके। जब भी कोई पहल होती है, खास तौर पर सेहत के मामले में, तो हमारे परिवारजनों के मन में डर रहता है और कई सारे सवाल भी रहते हैं, खासकर जब सोशल मीडिया हमारे पास है और सोशल मीडिया और मोबाइल पर चल रही बहुत सी बातें होती है, बहुत सी अफवाहें होती है। तो उन अफवाहों से लोगों के मन में उलझन और सवाल दोनों ही पैदा होते हैं। इसलिए आज हम कुछ आम सवाल उठाएंगे और आसान भाषा में उनके जवाब देंगे। तो बस आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए, आपको आज HPV टीकाकरण से जुड़े ढेर सारे सवाल मिलने वाले हैं। इसलिए, क्योंकि हमने बहुत से सवाल इकट्ठे किए हैं और एक के बाद एक हम उन सवालों को पढ़ेंगे और जवाब भी देंगे। तो पहला सवाल है, HPV टीका किस लिए लगाया जाता है? दोस्तों, HPV टीका सर्वाइकल कैंसर यानी बच्चेदानी के मुंह के कैंसर से बचाव में मदद करता है। ये कैंसर महिलाओं में होने वाली गंभीर बीमारियों में से एक है। अगर समय पर बचाव हो जाए तो बीमारी का खतरा काफी कम किया जा सकता है। इसलिए बहुत जरूरी होता है कि महिलाएं HPV टीका जरूर लगाएं। और दूसरा सवाल है कि क्या HPV टीका सुरक्षित है? जी हाँ, बिल्कुल सुरक्षित है। HPV टीका सुरक्षित माना जाता है और ये दुनिया के कई देशों में लगाया जा रहा है। ये कोई नई बात नहीं है। टीका लगने के बाद हाथ में हल्का दर्द, सूजन, हल्का बुखार, सिर दर्द या चक्कर आ सकते हैं और ये सामान्य बातें हैं। आमतौर पर जल्दी ठीक हो जाती है और कोई भी टीका आप लेते हैं तो ऐसी परेशानी थोड़ी बहुत होती है जो कि कुछ दिनों में ठीक भी हो जाती है। अब तीसरा सवाल, क्या इसका कोई बड़ा दुष्प्रभाव होता है? गंभीर दुष्प्रभाव बहुत दुर्लभ है, यानी कि गंभीर दुष्प्रभाव ना के बराबर होते हैं। इसलिए आप अफवाहों पर भरोसा ना करें कि अगर आप HPV टीका अपनी बच्ची को लगवाएंगे तो उन्हें कोई परेशानी हो जाएगी। और अगर आपके मन में फिर भी कोई सवाल बचते हैं, कोई चिंता होती है, तो आप आशा दीदी, ANM CHO या फिर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में भी आप बात कर सकते हैं। वो आपको और भी अच्छी तरीके से समझाएंगे कि इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है और बहुत रेयर होता है। चौथा सवाल कि ये टीका बच्चियों को ही क्यों लगाया जाए?

0: एक एक क्षमता पर कोई असर नहीं डालता। ये कैंसर से बचाव के लिए है। बांझपन या कमजोरी से इसका कोई संबंध नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ आपको कैंसर से बचाता है, सर्वाइकल कैंसर से बचाता है। छठा सवाल ये है कि क्या मोबाइल और सोशल मीडिया पर चल रही बातें सही है। बस यही बात तो आपको हम बताने आए हैं कि हर बात जो मोबाइल और सोशल मीडिया पर चल रही है वो सही नहीं होती। कई बार बिना जांचे परखे डर फैलाया जाता है और कई बार कुछ बातें ऐसी होती है जो किन्हीं तक एक पहुंची और उसने अपने पास वाले को दो बातें पहुंचाई, फिर तीन बातें, चार बातें, इस तरीके से बहुत बड़ी चढ़ी बात हम तक पहुंचती है। इसलिए कोई भी बात आप तक सोशल मीडिया या मोबाइल के जरिए पहुंचे तो उसे बिना जांचे परखे उस पर भरोसा ना करें। स्वास्थ्य से जुड़ी जो भी जानकारी होती है वो हमेशा आपको चाहिए कि प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मी या सरकारी स्वास्थ्य केंद्र से ही ले। आपको इन्हीं जगहों से सबसे भरोसेमंद जानकारी मिल सकती है। अब सातवां सवाल कि टीका कब और कहां लगेगा। जी हां, अगर आपके मन के जो भी सवाल हैं और जो उलझन है वो दूर हो गए हैं तो सबसे जरूरी सवाल कि टीका कब और कहां लगेगा। इसके लिए आप अपनी आशा, ANM या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। वहीं आपको सही तारीख, जगह और पात्र उम्र की जानकारी देंगे। तो साथियों याद रखिए, अफवाह से नहीं सही जानकारी से फैसला लें। HPV टीका बेटियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाने की दिशा में एक बहुत जरूरी कदम है। सेहत सही लाभ कई की ओर से ये संदेश जनहित में जारी है। आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें। फिलहाल मुझे यानी कि आपकी होस्ट और दोस्त उमा को दीजिए इजाजत। लेकिन जाने से पहले खास बात की, स्वस्थ रहें, खुश रहें और अफवाहों से बचें। नमस्कार।
1: Attention, attention, attention, all the ladies and gentlemen. This is to remind you all about the importance of immunization. If your kids are 5 or less who have missed a vaccine, hear this appeal. Getting them vaccinated immediately is the key. For their safety and health, it is a wise request. Protecting them from illness to be their best. And remember, vaccination is safe and it saves your children from deadly diseases. So, see you at the vaccination center soon.
2: To get more information about vaccination, visit your nearest health facility center.
3: अरे यार फिर पिट गया। बेल देना। इसको आउटसाइड द ऑफ टाइम डालना चाहिए था। इसकी यही प्रॉब्लम है।
4: कब से?
3: जब से क्रिकेट खेल रहा है तभी से।
4: अरे भाई साहब क्रिकेट की नहीं, हम आपकी खांसी की बात कर रहे हैं। बुड़बक
3: खांसी?
4: हाँ।
3: इसको तो एक आध महीना हो गया।
4: खुद की खांसी को एक आध महीने हो गए हैं और यहाँ क्रिकेट पर अपने ही गुगली फेंक रहे हैं आप। चलिए चलिए चलिए।
3: डॉक्टर खांसी तो है।
4: देखिए भाई साहब इसे हल्का मत लीजिए। दो हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी रहे तो TB हो सकता है।
3: TB?
4: हाँ। तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए।
3: ठीक है।
4: TB किसी को भी हो सकता है, अगर हो गया तो बिना भूले पूरा कोर्स करिए और फिट हो जाइए। नहीं किया तो इसका इलाज बहुत मुश्किल है। समझ गए भाई साहब आप? आइए। दो हफ्ते से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। TB हारेगा, देश जीतेगा।
0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 22 से 26 जुलाई के दौरान आसमान में घने बादल छाए रहेंगे और जिले में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी चलने और हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 26 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 90% और दोपहर में 70 से 80% रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 10 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पे किसान भाई बहनों के लिए, जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दें, पिछले कुछ दिनों में हुई वर्षा का लाभ उठाइए और आगे भी संभावना है कि

वर्षा होगी तो ऐसी स्थिति में धान की रोपाई के लिए व्यवस्था सुनिश्चित कर ले। रोपाई से पहले प्रति हेक्टेयर 25 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस, 30 किलोग्राम पोटाश और 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट का प्रयोग करें। आपको बता दें कि निचली जमीन के चारों ओर मजबूत मेड़ यानी कि बांध बनाकर वर्षा जल का संचयन कर ले, ताकि जरूरत पड़ने पर आप वर्षा के जल का सिंचाई में उपयोग कर सके। जो किसान भाई बहन श्री अन्न की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दे, मोटे अनाजों की खेती के लिए उचास भूमि का चयन करें। मड़वा की वकुला KMR 316 GPU 67 और VL 379 राजेंद्र मड़वा RU 8 और RU 3। और आपको बता दें कौनी की अनुशंसित किस्में हैं राजेंद्र कौनी 1। आप इन किस्मों की बुआई कर सकते हैं। मक्का की खेती करने वाले किसान भाई बहन ध्यान दें, खरीफ मक्का की बुआई आसमान साफ रहने पर ही करें। खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और ध्यान रखें कि बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नेत्रजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश जरूर डालें। अनुशंसित मक्का की किस्में जैसे सुवान, देवकी, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, राजेंद्र संकर मक्का 3, गंगा 11 है। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, मिर्च, अगाध गोभी, टमाटर जैसी सब्जियों की नर्सरी तभी तैयार करें जब आसमान साफ हो। और बागवानी करने वाले भाई बहन ध्यान दें, जुलाई अगस्त आम के पौधों के रोपण के लिए सबसे उपयुक्त समय होता है। कलमी पौधों की रोपाई 10x10 मीटर और बीजू पौधों की रोपाई 12x12 मीटर की दूरी पर करें। सघन बागवानी के लिए 5x5 मीटर और अम्रपाली के लिए 2.5x2.5 मीटर की दूरी रखें। फलदार वृक्षों में प्रति वर्ष 1 किलोग्राम नाइट्रोजन, 30 किलोग्राम फास्फोरस, 700 किलोग्राम पोटाश और 80 से 100 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद जरूर डालें। आपको बता दें इस समय केला के स्वस्थ सकर्स की रोपाई करें। लंबी किस्मों जैसे अल्पान, कंथली, मालभोग, चिनिया, G9 और बॉनी किस्में जैसे ग्रैंड नेन, रोबस्टा, बसराई का चयन करना सबसे फायदेमंद होता है। लंबी किस्मों के लिए 2x2 मीटर और बॉनी किस्मों के लिए 1.5x1.5 मीटर की दूरी रखें। प्रत्येक गड्ढे में 5 किलोग्राम गोबर की खाद, 500 ग्राम अरंडी की खली, 300 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट, 100 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश और 10 ग्राम कार्बोफ्यूरान मिलाना ना भूलें। रोपाई से पहले सकर्स को कार्बन डाइजिंग 2 ग्राम प्रति लीटर पानी से उपचारित करें। किसान भाई बहनों, टिश्यू कल्चर पौधे का उपयोग अधिक उत्पादन के लिए लाभकारी होता है। पशुपालक भाई बहन ध्यान दें, पशुओं में PPR, MFD यानी कि खुरपका मुंहपका और HS यानी कि गला घोटू, इन रोगों का खतरा अधिक है। इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण करवाएं, उन्हें साफ और सूखा रखें और बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। रोग के लक्षण अगर दिखाई दे तो तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें और ध्यान रखें कि पशुओं की बिना जरूरत के आवाजाही पर नियंत्रण रखें। गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए जून माह में अगर टीके नहीं लगाए गए हों तो इस महीने में टीके जरूर लगवा दें। पशुओं को संतुलित और पौष्टिक आहार दें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जाँच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।
0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
2: CIET NCERT presents ऑडियो बुक संतूर, टेक्स्ट बुक ऑफ इंग्लिश फॉर ग्रेड 5,
3: पेज 105, यूनिट 5, वर्क इज वर्शिप, चैप्टर 9, वोकेशन। देयर इज अ QR कोड गिवन एट द टॉप राइट साइड ऑफ द पेज। Clicking on the QR code will take you to additional information about this chapter. Let us recite. When the gong sounds 10 in the morning and I walk to school by our lane, every day I met the hawker crying, "Bangles, crystal bangles." There's nothing to hurry him on. There is no road he must take, no place he must go to, no time when he must come home. I wish I were a hawker, spending my day in the road, crying bangles, crystal bangles. The image on this page illustrates a cartoon scene of a boy walking home from school with a backpack. He is walking alongside a man carrying bangles on his head in a purple tray. The man is wearing a pink shirt and white dhoti. They are on a road with houses and trees around. The scene depicts a morning moment with sun shining through clouds. Page 106. When at 4 in the afternoon, I come back from the school, I can see through the gate of that house, the gardener digging the ground. He does what he likes with his spade. He soils his clothes with dust. Nobody takes him to task if he gets baked in the sun or gets wet. I wish I were a gardener digging away at the garden with nobody to stop me from digging. The image on this page depicts a boy coming back from school on a sunny day. While walking on a path beside a garden, he saw a gardener who is digging the ground with a spade. The gardener is wearing a white shirt. His clothes are muddy as he is digging the soil. The boy is walking past. He has a backpack and a water bottle. There are trees on the right side of the path. There are flowers in the garden. Sky is partly cloudy. Page 107. Just as it gets dark in the evening and my mother sends me to bed, I can see through my open window the watchman walking up and down. The lane is dark and lonely, and the street lamp stands like a giant with one red eye in its head. The watchman swings his lantern and walks with his shadow at his side and never once goes to bed in his life. I wish I were a watchman walking the streets all night, chasing the shadows with my lantern, by Rabindranath Tagore. The image on this page illustrates a man walking down the lane at night. He is a watchman carrying a lantern in one hand and a stick in the other. He's wearing a brown shirt. A boy is looking out of a window. The lane is dark with the street lamp casting a glow. Page 108. New words. वोकेशन, गोंग, लेन, जायंट, स्पेड, लैंटर्न. लेट अस थिंक. पार्ट ए. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. फर्स्ट, हु इज द स्पीकर इन द पोएम? सेकंड, व्हाई डज द स्पीकर वांट टू बी अ हॉकर? थर्ड, what does he like about the gardener? Fourth, what does the speaker compare the street lamp to? Fifth, on the basis of the poem that you have read, share the daily schedule of the speaker. Part B, think and discuss. First, why does the speaker admire people with different vocations? Second, what are the things that you observe on your way to school and your way back home? There's an image at the bottom right side of the page where a boy dressed up in school uniform carrying a backpack is going to his school. Page 109. Let us learn. Part A. Here are some of the words from vocation. Read the poem and match each word with its meaning. The first word is gong. Second, spade. Third, lane. Fourth, giant. Fifth, lantern. The meanings are as follow. First, a tool used for gardening. Second, an imaginary man-like creature of great height and strength. Third, a case that holds a candle or light in any form and can be easily carried. Fourth, a metal disc that produces a loud sound when hit with a small hammer. Fifth, a narrow path. Part B, there is one mistake in each sentence given below. Underline the mistakes and rewrite the correct sentences in the given space. One example has been done for you. First, I has recently read a new book. The word has been highlighted. I have recently read a new book. Second, the speaker goes for school at 10 in the morning. Blank space is provided for students to fill the answer. Page 110. Third, the fox ran fast than the others. Blank space is provided for students to fill the answer. Fourth, Meeta was slept when the doorbell rang. Blank space is provided for students to fill the answer. Fifth, the old elephant walked slow to the river. Blank space is provided for students to fill the answer. Sixth, Radhika is tall than Suman. Blank space is provided for students to fill the answer. Seventh, Sudhanshu ran faster of all the runners. Blank spaces provided for students to fill the answer. Eighth, my mother are cooking. Blank spaces provided for students to fill the answer. Ninth, he go to school every day. Blank spaces provided for students to fill the answer. Tenth, the birds is flying. Blank space is provided for students to fill the answer. Note to the teacher. Point 1. This activity includes errors related to different parts of speech. Point 2. Encourage the learners to work in pairs or groups and find the errors. Point 3. Provide more such sentences to learners. Page 111, Part C. Here are some pictures. Listen to their names carefully. First, telescope. Second, hammer. Third, camera. Fourth, stethoscope. Fifth, screwdriver. Sixth, sickle. Seventh, grater. Eighth, tongs. Ninth, compass. Tenth, mouse. 11th, saw. Have you ever heard of these objects? Where have you heard about them? What are they used for? Page 112. Let us listen. Point 1. Sit in groups of 5. Point 2. Each group will discuss and create two questions on the poem Vocation using the question words from the WH family. Note down the questions. Point 3. Now put your textbooks back in your bags. Point 4. Each group will get to share their questions with the class. Point 5. One group will present their questions and the remaining groups will answer the questions. This will continue till all the groups have shared their questions. Note to the teacher. Point 1. Revisit the types of question words with learners. Point 2. Allot 25 to 40 minutes to this activity, depending on the strength of the class. Point 3. This activity may be conducted with other texts as well. Let us speak. Part A. Listen and repeat. Your teacher will say aloud the following words. Listen carefully and repeat after the teacher. First, cushion, ration. Second, fashion, tension. Third, mention, attention. Fourth, nation, vocation. Page 113. Note to the teacher. Point 1. Say aloud each pair of words. Ensure that learners pronounce it correctly. Point 2. Do this exercise at regular and frequent intervals. Part B. Listen and speak. The speaker of the poem wants to do many things. Point 1. Think of a time when you wanted to do many things but could not. Point 2. What were the things you wanted to do? Point 3. What difficulties did you face in doing many things at once? Point 4. How did it make you feel? Point 5. Share your views with your classmates. Note to the teacher. Point 1. Give the learners ample time to ponder over the questions. Point 2. Encourage them to write their answers before sharing them with the class. Point 3. Teachers are also encouraged to share their answers with the learners. Page 114. Let us write. The child thought of only the fun part of each job. What do you think might be the difficult or boring part of being a hawker, a gardener, or a watchman? Write a paragraph to express your thoughts. Second, in the poem, the speaker tells us about the vocation of different people. Write the vocations of any three of your family members in 50 to 60 words each from the given list. Mother, grandfather, grandmother, aunt, sister, father, brother, uncle. Third, what vocations are the following people associated with? First, APJ Abdul Kalam. Second, M. Vishveshwaraiya. Third, Janaki Ammal. Fourth, M. S. Subbulakshmi. Fifth, Saleem Ali. Note to the teacher. First, talk about the meaning of vocation and work. For example, is household work paid? Second, this activity should be used to prompt discussion on what is considered as work and on gender roles. Third, encourage learners to share their write-ups with the class. Page 115. Let us do. Job mix-up. There is something unusual in the given pictures. Notice carefully the things that you find strange. One has been done for you. There are 6 images on this page. First, fire engine on the road. A red fire engine is being driven by a chef. Second, a police officer is checking a patient. Third, a firefighter is teaching children at school. Fourth, a doctor is managing traffic on the road. Fifth, a lawyer is making construction plan at a desk. Sixth, A construction worker is mending shoes. For example, a chef's job is to cook delicious meals, not to drive a fire engine. That's something firefighters do. Write two sentences in your notebook for each picture, following the example provided for you. Page 116. Let us explore. There are four images on this page. In the first illustration, a beekeeper wearing protective gear is opening a beehive with bees around. In the second image, a photographer in a yellow dress is clicking a photo. In the third image, a teacher is teaching in her classroom. In the fourth image, a dancer is standing in traditional attire and dancing with expressive movements. Page 117. There are four images on this page. In the first image, a chef is cooking food. In the second image, a person in a green fight suit and helmet is standing beside a grey fighter jet with the Indian flag on its tail. Third, a farmer wearing pink shirt, white dhoti and yellow turban is standing in a field. He is keeping a check on his field through a tablet and a drone. Fourth, a florist in white shirt is arranging flowers on a wooden table with potted plants. Part A. Which vocation from the above illustrations would you choose for yourself and why? Part B. Is there any other vocation not mentioned in the pictures that you would like to take up as your dream job? Support your answer with a reason. Page 118. Note to the teacher. Point 1. Use this activity to create an opportunity to speak about various professions which may even go beyond the text. Point 2. Facilitate a discussion on not only traditional occupations but also new kinds of professions. Point 3. Help learners understand that no work is superior or inferior. Part C. Draw yourself in the selected vocation in the blank space provided. Blank space is provided for students to draw. Chapter 9 ends here.
2: Santoor, you were just listening to this audiobook, Textbook of English for Grade 5. Narrator, Mansi Chauhan. Sound recordist, Amarjeet Sarkar. Production assistant, Amarjeet Sarkar. Directed and produced by Vimlesh Chaudhary. This audiobook is brought to you by CIET NCERT, New Delhi, India.
4: नाटक देखो, नाटक देखो, आओ सारे नाटक देखो, खसरा और रुबेला की कुछ जरूरी बातें सुन लो। नाटक देखो, नाटक देखो,
5: आओ। क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं? हाँ या ना?
6: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
5: हाँ हाँ हाँ, इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
6: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
7: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
8: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
9: क्या क्या क्या?
6: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
9: अच्छा,
8: तो सबकी समझ में आ गया ना? खसरा रुबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाए जड़ तक।
6: टीकू, तेरे कितने दोस्त है?
10: तीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और
6: तुम्हारी वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
10: 11 दोस्त?
6: टीकू, वो 11 दोस्त है जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
10: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
6: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
10: लेकिन ऐसा क्यों?
6: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूरदराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
10: टीकी, तो इसका हल क्या है?
6: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर A&M दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
10: याद रखो, आपके बच्चों के टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
1: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
11: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
1: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
11: आपकी सेहत की बातें,
1: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
11: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
1: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
11: वो कहाँ पर?
1: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
11: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
1: उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है किसान भाई बहनों को संबोधित हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। उन्नत कृषि में आज हम बात करने वाले हैं बैंगन की खेती के बारे में। बैंगन जैसे कि सालों भर पैदा होने वाली एक बहुत ही पौष्टिक सब्जी है, और बैंगन की खेती के बारे में विस्तार से बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर श्रीन अख्तर। मैम है एसोसिएट प्रोफेसर कम सीनियर साइंटिस्ट, मैम है उद्यान सब्जी विभाग से। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
12: धन्यवाद उमा।
1: मैम, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि बैंगन किस तरह की सब्जी है, और अगर हम प्रभेदों का जब चयन करते हैं तो किन प्रभेदों का हमें चयन करना चाहिए?
12: जैसे हम लोग जानते हैं कि बैंगन सालों भर पैदा होने वाली एक बहुत ही पौष्टिक सब्जी है, और इसमें बहुत सारे औषधीय गुण भी मौजूद है, और विशेषतः हम लोग जैसे देखते हैं उजला बैंगन जो है वो मधुमेह की रोगियों के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं, और इसके अलावा बैंगन में विटामिन ए और बी के काफ़ी मात्रा में मौजूद होता है। कैल्शियम, फास्फोरस और लोह जैसे खनिज पदार्थ भी जो है बैंगन में होते हैं, और ये सब्जी जैसे लिट्टी चोखा के साथ में, जो बैंगन की चोखा, लिट्टी के साथ में बैंगन की चोखा हमारी जो है एक डेलिकेसी है। बिहार का एक बहुत ही उम्दा खाद्य हम लोग बोल सकते हैं, और इसके लिए जो है बिहार में बैंगन की हर थाली में एक व्यंजन जो है, और वो व्यंजन में बैंगन भी आता ही है, और इसीलिए बिहार के किसान भी बैंगन खूब उगाते हैं। और बैंगन सालों भर चलती है, ऐसे सब्जी है, और इसको हम लोग साल के विभिन्न समय पर लगाते हैं। प्रभेदों का चयन भी उस हिसाब से करना होता है, और ये भी हम लोग देखते हैं कि बैंगन काफ़ी रंगों में होता है, हरे रंग में मिलता है, उजले रंग में मिलता है, या बैंगनी रंग में मिलता है, गोल होता है, लंबा होता है, और हर 20 से 25 किलोमीटर में हम लोग बोल सकते हैं कि बैंगन का जो प्रेफरेंस होता है कंज्यूमर का, वो चेंज होता है। कहीं पे आप देखेंगे कि हरे वाले को प्रेफर करते हैं, कहीं गोल वाले को, बैंगनी वाले को, भरता के लिए तो बैंगनी वाला गोल वाला ही प्रेफर करते हैं लोग। तो इसमें जैसे है जो किस्म है उसमें गोल में से पूसा हाइब्रिड 6 है, पूसा हाइब्रिड 9 है, पूसा उत्तम है, स्वर्णमणि है, पूसा बिंदु है, काशी संदेश है, पंत ऋतुराज है, सबोर सदाबहार है, ये हमारी किस्म है बिहार कृषि विश्वविद्यालय की। साथ साथ में लंबे किस्में अगर बोलेंगे तो उसमें राजेंद्र बैगन 2 है, पूसा हाइब्रिड 5 है, अरका शीरीष है, अरका कुसुमाकार है, अरका नीलकंठ है, अरका आनंद है, और साथ साथ में हमारे विश्वविद्यालय की सबोर कृष्णकली भी शामिल है।
1: मैम, अगर अब हम बुआई की बात करें तो बुआई करने की क्या विधि होती है?
12: बैंगन को लगाने के लिए 1 हेक्टेयर फसल के लिए लगभग 400 ग्राम की बीज चाहिए होता है, अगर वो बीज मुक्त परागित किस्म की हो। यहीं पे अगर ये संकर किस्म की होती है तो बीज की मात्रा लगभग 250 ग्राम 1 हेक्टेयर के लिए पर्याप्त होता है। और बीजों को पहले पौधशाले में लगाया जाता है। पौधशाले में लगाने के लिए जो है लगभग 15 सेंटीमीटर ऊंची पौधशाला बनाया जाता है, जो कि 1 मीटर चौड़ा होता है, और क्यारियों में लगाया जाता है बीज को, और 2 जो जैसे क्यारी बनती है तो दो लाइन के बीच में लगभग लगभग 5 सेंटीमीटर की दूरी रहती है, और बीज क्योंकि बैंगन के बीज काफ़ी छोटे होते हैं तो लगभग 1 सेंटीमीटर गहराई पे उनको लगाया जाता है। और जो फसल हम लोग लगाते हैं, अभी बरसात शुरू होने वाली है तो अभी का जो फसल है वो खरीफ फसल कहलाता है और यही शरद काल तक चलता है। तो इसमें बुआई हम लोग करते हैं लगभग मध्य जून से शुरू करके हम जुलाई के अंत या अगस्त के पहले हफ्ते तक में उसको बुआई करते हैं, और ये जो पौधा है उसका रुपाई का समय होता है 1 महीना लगभग बाद में, यानी कि जुलाई मध्य से लेके अगस्त अंत या सितंबर की पहली हफ्ते तक। और जो ग्रीष्म की फसल है, बसंत ऋतु और ग्रीष्म की फसल है, उसके लिए हम लोग बीज की बुआई करते हैं नवंबर के मध्य में, और इसके जो फसल जो रुपाई करते हैं इसका, क्योंकि ठंडा आ जाता है उसके बाद में तो बीजों की जो ग्रोथ है वो काफ़ी स्लो रहती है, धीरे धीरे जो सीडलिंग है वो बढ़ती है, इसीलिए जो है उसका रुपाई हम लोग लगभग जनवरी के अंत में या फरवरी के पहले हफ्ते में करते हैं। और वर्षा ऋतु का भी जो फसल होता है जिसमें अभी फ्रूटिंग हो रही है तो उस फसल को हम लोग लगभग लगभग फरवरी के अंत में या मार्च में इसकी बुआई करते हैं, और 1 महीने बाद में यानी कि अप्रैल तक में, मार्च एंड में या अप्रैल में जो है उसकी रुपाई करते हैं।
3: मैम, अगर हम बात करें खेत की तैयारी की तो बैंगन के लिए खेत कैसे तैयार किया जाता है?
12: तो बैंगन का पहले तो हम लोग नर्सरी में बीजों को बना लेते हैं, सीडलिंग तैयार कर लेते हैं, उसके बाद में रुपाई करते हैं मेन फील्ड में यानी कि खेत में। तो उसके लिए भूमि को 2 से 3 बार जुताई करते हैं ट्रैक्टर से, और जुताई जब करते हैं उसमें आखिरी जुताई के वक्त में जो है 25 से 30 टन सड़े हुए गोबर की खाद जो है उसमें मिला देते हैं, और या फिर जो है कंपोस्ट भी हम लोग मिला सकते हैं। और लास्ट में लगाने से पहले जो है हम लोग नाइट्रोजन जो है यूरिया के फॉर्म में लगभग 60 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर, और फास्फोरस जो है वो 80 किलोग्राम और पोटैश भी 80 किलोग्राम हम लोग खेत में मिला देते हैं बेसल फर्टिलाइजर डोज के तहत में
3: जी। और रुपाई की विधि क्या होती है?
12: बैगन की बिजड़ा जब 1 महीने के लगभग हो जाता है उस समय पे हम लोग उनको पौधशाला से मेन फील्ड में ले जाके रुपाई करते हैं। तो रुपाई जो हम लोग करते हैं वो साधारण तो हम जो है शाम के वक्त में करते हैं, क्योंकि सुबह में अगर रुपाई करते हैं तो उसमें ट्रांसप्लांटिंग शॉक की बात होती है, तो पौध बहुत सारे उसमें मुरझा जाते हैं और मरने की भी आशंका रहती है, तो इसीलिए शाम के वक्त में रुपाई करते हैं। और रुपाई करने से पहले अच्छे से खेत तो बना लेते हैं, लेआउट अच्छे से बना लेते हैं, और बैगन की जो पौधे हैं उनको पंक्तियों में रुपाई करेंगे, और 2 पंक्तियों में दूरी रखते हैं लगभग लगभग 75 सेंटीमीटर, और पौध से पौध में 60 सेंटीमीटर की दूरी रहती है। ये लगभग जो भारी आकार वाली किस्म है इनके लिए है, और थोड़ा सा और भी ज़्यादा जो अगर संकर किस्म है तो उसके लिए, जो ज़्यादा फैलने वाला किस्म है या संकर किस्म है उसके लिए जो है 90 सेंटीमीटर की दूरी रखते हैं 2 पंक्तियों के बीच में, और 2 पौध के बीच में 75 सेंटीमीटर की दूरी रखते हैं। अगर छोटे आकार वाले किस्म होते हैं या जो बौना किस्म होते हैं उसके लिए जो है हम लोग 60 सेंटीमीटर बाई 60 सेंटीमीटर की दूरी रखते हैं, और गर्मी की फसल में भी थोड़ा सा बढ़वार क्योंकि कम होती है इसीलिए हम लोग 60 सेंटीमीटर बाई 60 सेंटीमीटर के दूरी रखते हैं, तो वो काफ़ी हद तक चलता है। तो हम लोग ऑलरेडी बुआई जैसे करते हैं उसके 1 महीने बाद में जो है उसको रुपाई करते हैं, तो ये चीज़ हम लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा।
3: मैम, खाद और उर्वरक प्रबंधन की बात करें तो वो किस तरीके से करना चाहिए?
12: जब हम लोग खेत की तैयारी करते हैं उसी समय पे लगभग 25 से 30 टन की गोबर की अच्छे से सड़ी हुई खाद मिट्टी में मिलाएंगे। इसके अलावा हम लोग कंपोस्ट या फिर वर्मी कंपोस्ट भी दे सकते हैं, और केमिकल फर्टिलाइज़र भी देना ज़रूरी हो जाता है। इसमें 120 किलोग्राम नाइट्रोजन देना पड़ता है, साथ साथ में 80 किलोग्राम फॉस्फेट और 80 किलोग्राम पोटाश। तो खेत के तैयारी के समय पे जो आधा मात्रा नाइट्रोजन के होते हैं यानी कि 60 किलोग्राम नाइट्रोजन और पूरे मात्रा फॉस्फेट और पोटाश का हम लोग दे देते हैं, और जो बाकी आधा मात्रा नाइट्रोजन बची रहती है यानी कि 60 किलोग्राम जो बचा होता है उसको 3 बराबर खुराकों में टॉप ड्रेसिंग के तहत पे हम लोग रुपाई के 30 दिन 45 दिन और 60 दिन बाद में दे सकते हैं।
1: मैम सूक्ष्म पोषक तत्व भी काफी महत्वपूर्ण होता है, तो किसान भाई बहन सूक्ष्म पोषक तत्व का प्रबंधन कैसे करें?
12: बैगन में सूक्ष्म पोषक तत्वों का प्रयोग भी बहुत ही जरूरी हो जाता है, क्योंकि फल की गुणवत्ता और पौधे की वृद्धि जो है ये उस सूक्ष्म पोषक की जो उपयोग है उसी पर निर्भर होता है, निर्भर करता है। तो इसमें जो है हम लोग देखते हैं कि 0.15% जो प्रतिशत कॉपर की प्रयोग से फूल या फलों में जो है संख्या इनका फूल का और फलों का भी बढ़ता है, और साथ साथ में अगर 0.5% जिंक का उपयोग करते हैं तो फलों की वजन भी वृद्धि होती है। इसके साथ साथ में जो है हम लोग पौध की रोपाई के 4 से 6 हफ्ते बाद में जो है माइक्रोन्यूट्रिएंट का मिक्सचर मिलता है, उसका काफ़ी सारा ट्रेड नेम में मिलता है, एक मिक्सटालोल होता है, उसका 4 PPM के डोज से छिड़काव हम लोग कर सकते हैं। और सारे पौधों में जो है 1 हफ्ते के अंतराल पर जब रुपाई करते हैं उसके 60 से 70 दिन से शुरू होने के बाद में 2,4-D के 2 PPM का भी 2 छिड़काव अगर हम करते हैं 1-1 हफ्ते के अंतराल पर, तब फलों का संख्या अधिक हो सकता है और साथ साथ में उपज भी जल्दी मिलने लगता है।
1: जल प्रबंधन कैसे कर सकते हैं मैम बैगन के फसल के लिए?
12: बैगन के फसल के लिए पहली सिंचाई जो हम करेंगे वो रुपाई के तुरंत बाद करना ज़रूरी है, क्योंकि उस समय पे रुपाई के बाद में हम लोग अगर जल अच्छे से देते हैं तो उसको बहुत ज़्यादा नहीं देना है, उसको हल्के मात्रा में ही देना चाहिए, तो उसमें फसल का एस्टेब्लिशमेंट अच्छा होता है। उसके बाद में फसल की ज़रूरत अनुसार में जो है हम लोग सिंचाई करते हैं, और जो खरीफ फसल है इसमें वर्षा को देखते हुए पानी देना ज़रूरी है, अगर वर्षा हो रही है तो पानी देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसमें हम लोगों को ध्यान देना पड़ेगा कि खेत से जल निकासी का व्यवस्था अच्छे से रहे। और जब शरतकालीन जो फसल होता है, जब हार्वेस्ट होने लगते हैं, फसल काफ़ी 2-3 महीने के हो जाता है, खरीफ फसल ही नवंबर दिसंबर के समय से जो है उस समय पे जो है 7 से 12 दिन के अंतराल पर जो है हम लोगों को एक एक सिंचाई देना ज़रूरी हो जाता है। यहीं पर जब ग्रीष्मकालीन जो फसल है उस समय पर पानी की ज़रूरत ज़्यादा होती है तो उस समय पे 3 से 4 दिन के अंतराल पर एक एक सिंचाई देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और जब हम लोग नाइट्रोजन के टॉप ड्रेसिंग करते हैं तो टॉप ड्रेसिंग के तुरंत बाद एक सिंचाई, हल्का सिंचाई देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है।
1: मैम किसान भाई बहन एक और बात से परेशान होते हैं कि खर पतवार बहुत उगाते हैं, तो खर पतवार का प्रबंधन कैसे करना चाहिए?
12: बैगन में खरपतवार की प्रबंधन करने के लिए हम लोग लगाने के लगभग 45 दिन बाद से जो है मैनुअल अगर निराई गुड़ाई से उसमें फसल में निराई गुड़ाई करते हैं तो खरपतवार को मुक्त रख सकते हैं। इसके अलावा भी जो है हम लोग पौध रोपण से पहले प्री इमर्जेंस स्प्रे के तहत से जो है पेंडीमिथलिन 1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर पे अगर हम लोग उसको छिड़काव करते हैं ये पौध रोपण से पहले, तो भी जो है काफ़ी हद तक जो है ये शुरुआती जो है 2-3 महीने तक में जो है खरपतवार का नियंत्रण रहता है, लेकिन उसके बाद में हल्का फुल्का निराई गुड़ाई करना आवश्यक रहता है। लगभग 60 से 90 दिन तक अगर हम लोग फसल को खरपतवार से मुक्त रखते हैं तब जो है उसमें अच्छे हिसाब से उपज आ सकता है।
1: कीटों से भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है फसल को, तो कीटों से बचाव कैसे करना चाहिए?
12: बैगन में कीट का बहुत ज़्यादा ही इन्फेस्टेशन रहता है। सबसे भयानक जो कीट हम लोग बोल सकते हैं बैगन का वो है तना एवं फल छेदक। तो इसमें जो है हम लोग देखते हैं तना एवं फल छेदक के उसके लिए जो है फसल चक्र को हम लोग अपना सकते हैं, तो उसमें एक बार अगर बैगन लगाते हैं तो उसके बाद में तुरंत ही हम बैगन नहीं लगाएंगे, हम लोग फसल चक्र अपनाएंगे एवं तुरंत ही हम लोग बैगन नहीं लगाएंगे। एक बार बैगन लगाने के बाद में उसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग दूसरा कोई फसल लगाए, हम लोग कद्दू वर्गीय फसल लगा सकते हैं या फिर कोई मटर वगैरह ये सब भी फसल लगा सकते हैं, लेकिन बैगन को हम लोग फिर जो है 2 से 3 साल ना लगाएंगे तो एक ही खेत में, तो वो अच्छा रहेगा। इसके अलावा जो है कीड़ा जब लगता है पहले तो वो पौधे के तना में लगता है। तो जब पौधे के तना में लगेगा तो ऊपरी भाग हम देखेंगे कि उसमें हल्का सा मुरझा हुआ रहता है। तो जहाँ तक मुरझा हुआ रहता है उसके जस्ट नीचे तक हम अगर काट देते हैं, उसको तना को छांट देते हैं, तो उसमें देखेंगे उसके अंदर में जो है कीड़ा है। तो उतने भर हम तना को छांट देंगे और तना को खेत में फेंक के नहीं रखेंगे, उसको एक गमले में या किसी में हम लोग उसको कलेक्ट कर लेंगे और सारे खेत में वो तना की छटाई अच्छे से करने के बाद में जो है उसको एक मिट्टी के अंदर में दफना देंगे। तो उससे भी जो है ये कीड़ा का मैनुअल जो है हम लोग मैनुअली कलेक्ट करके उसको हम डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इसके अलावा भी जो है बैगन के कीड़े के भी ये तना और फल छेदक का फेरोमोन ट्रैप आता है, तो फेरोमोन ट्रैप का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। लगभग लगभग एक हेक्टेयर में अगर हम लोग 12 ट्रैप की इस्तेमाल करते हैं तो उससे भी जो है तना एवं फल छेदक का अच्छे से सप्रेशन हो सकता है। और इसके अलावा हम लोग केमिकल का भी स्प्रे कर सकते हैं। तो इसमें साइपरमेथ्रिन 5% प्लस क्लोरपाइरीफॉस 50% का जो केमिकल कॉम्बिनेशन का जो दवा आता है, तो उसको हम 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल करके अच्छे से छिड़काव करेंगे। इसको हम लोग ऑल्टरनेट कर सकते हैं, इंडोक्सा कार्ब मिलता है एक दवा, उससे वो भी 1 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर प्रति लीटर पानी में घोल के छिड़काव कर सकते हैं। या फिर स्पाइनोसैड करके एक दवा आता है, उसके आधा मिलीलीटर जो है 1 लीटर पानी में घोल करके हम लोग उसका पर्णीय छिड़काव कर सकते हैं। याद हमको रखना पड़ेगा कि अभी हम लोग अगर केमिकल की छिड़काव करते हैं तो तुरंत ही हम लोग जो है उसका कटाई या फल की तोड़ाई नहीं करेंगे। अगर हम केमिकल की छिड़काव कर रहे हैं तो उसके बाद में हम लोग 5 दिन रुक के फिर फल की तोड़ाई करेंगे। या फिर ये भी कर सकते हैं कि हमने आज फल की तोड़ाई किया सुबह में, शाम में इसके छिड़काव कर दिया, फिर 5 दिन रुक गए, उसके बाद में तोड़ाई किया।
13: और मैम रोग भी काफ़ी लगते हैं बैंगन के फसल में, तो इसका प्रबंधन कैसे किया जा सकता है?
12: बैंगन के फसल में शुरुआती एक जो रोग है नर्सरी का वो है डैम्पिंग ऑफ, वो काफ़ी लगता है। तो इसके लिए जो है नर्सरी को हम लोगों को पहले तो अच्छे से तैयार करना पड़ेगा। बीजों को लगाने से पहले बीज की उपचार करना पड़ेगा। बीज को हम लोग थायरम या कैप्टन 2.5 से 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के दर से उपचार करके लगा सकते हैं, या फिर जो है 1 ग्राम प्रति किलो बीज के दर से कार्बेंडाजिम से भी हम लोग बीज की उपचार कर सकते हैं। लेकिन डैम्पिंग ऑफ अगर जो सीडलिंग जब लगाए बीजड़ों पे अगर आ जाता है तब हम लोग क्या करेंगे, तब हम लोग मेटालाक्सिल प्लस मैंकोजेब नाम की केमिकल है वो मिलता है, उसका 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल करके उसकी छिड़काव करेंगे। जब फसल बड़े होने लगते हैं तो बैगन में बैक्टीरियल विल्ट की प्रकोप होती है, जो कि जीवाणु मुरझा रोग बोलते हैं। तो इस समय पे हम देखेंगे कि बैगन में जब फूल आने लगते हैं इस समय पे मैक्सिमम टाइम पे देखते हैं, ये रोग पहली बार फील्ड में देखा जाता है। तो इसके लिए जो है खेत की तैयारी के समय पे ही जो है जुताई के समय पे अगर 15 से 20 किलोग्राम ब्लीचिंग पाउडर देते हैं, या फिर ऐसे भी हो सकता है कि जब क्रॉप खत्म हो गई पिछली तो उस समय पे डीप प्लाउइंग करते हैं, तो उसमें गहरी जुताई करके नीचे की जो मिट्टी है ऊपर लाते हैं, तो उससे भी जो है नीचे की जिसे भी जो भी कीटाणु जीवाणु मिट्टी का था वो सूर्य की किरणों से जो है हाई सनलाइट जब पड़ता है उसकी जो ताप होती है उससे भी वो मर जाता है, तो उससे भी वो कीटाणु जीवाणु खत्म होते हैं। इसके अलावा भी जो है हम लोग ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के दर से, और 4.5 क्विंटल चूना भी उसके साथ साथ में मिट्टी में मिला सकते हैं। तो इससे जो है मिट्टी का शोधन होता है, क्योंकि बैक्टीरियल विल्ट का जो जीवाणु है वो उसी में रहता है, तो उससे वो खत्म हो जाता है। और साथ साथ में खेत का जल निकासी व्यवस्था अच्छा होना चाहिए, और अगर फिर भी फसल में आ जाता है तब जो है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 3 ग्राम के साथ साथ में 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में, उसके साथ साथ में 1 मिलीलीटर या 1 ग्राम स्ट्रेप्टोमाइसिन या स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 10 लीटर पानी में, ये साथ में घोल करके हम लोग उसका अच्छे से पर्णीय छिड़काव करेंगे। और साथ साथ में ये भी देखना होगा कि जो पौध के जड़ के पास में इसका छिड़काव अच्छे से होना चाहिए, जिसको ड्रेंचिंग हम लोग बोलते हैं, वो चीज़ करना ज़रूरी है।
13: मैम, अब बात करते हैं तुड़ाई और उपज की। अगर हम बात करें तुड़ाई की सबसे पहले, तो तुड़ाई किस तरीके से और कब करनी चाहिए और उपज कितना होता है बैंगन का?
12: हाँ, तो बैंगन का तुड़ाई हम तब करेंगे जब फल अच्छे से मुलायम रहे, पूरे साइज आ गया लेकिन फल मुलायम हो और कड़ा ना हो। सबसे इम्पोर्टेंट ये है, क्योंकि कड़ा अगर हो जाता है बैंगन में बीज भी ज़्यादा भर जाता है और वो देखने में भी अच्छा नहीं होता है, खाने में भी अच्छा नहीं रहता है। तो ध्यान देना होगा कि सही स्टेज पे इसकी तुड़ाई किया जाए। तो फल को जो है हम लोग चाकू से या कोई तेज यंत्र से या हाथ से भी जो है तोड़ेंगे, और तुड़ाई करने के बाद में फलों को छटाई करके विपणन के लिए विभिन्न आकार के टोकरियों में रखेंगे। तुड़ाई को या तो हम लोग सुबह करेंगे, वही सबसे सही समय है, या फिर हम शाम के समय पर करेंगे, बीच में हम लोग नहीं करेंगे। और अगर हम लोग अच्छे से हम लोग खेती करते हैं बैंगन का, तो किसान भाइयों को 250 से 300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के दौर से तो उपज मिल ही सकता है। ये भी जो है ओपी वैरायटी जो है, मुक्त परागित जो किस्म है उससे, और अगर संकर किस्म होता है तो 600 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक का उपज मिल सकता है।
13: तो किसान भाई बहनों, अगर आप अच्छी तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से, सही देखभाल के साथ बैंगन की खेती करेंगे तो आपको काफी मुनाफा हो सकता है। और मैम ने जो बातें बताई उनका आप ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका।
12: धन्यवाद उमा।
13: तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए अभी इजाजत, लेकिन जाने से पहले कुछ खास बात की, अपना और अपनी फसलों का रखें विशेष ध्यान और अपनी मिट्टी से करें ढेर सारा प्यार। नमस्कार। उन्नत कृषि।
14: फिर पिट गया। बेल देना। इसको आउटसाइड द ऑफ टाइम डालना चाहिए था, इसकी यही प्रॉब्लम है।
15: कब से?
14: जब से क्रिकेट खेल रहा है तभी से।
15: अरे भाई साहब, क्रिकेट की नहीं हो, आपकी खांसी की बात कर रहे हैं। बुढ़बात
14: खांसी?
15: हाँ।
14: इसको तो एक आध महीना हो गया।
15: खुद की खांसी को एक आध महीने हो गए हैं और यहाँ क्रिकेट पर अपनी ही गुगली फेंक रहे हैं आप। चलिए चलिए चलिए
14: डॉक्टर, खांसी तो है।
15: देखिए भाई साहब, इसे हल्का मत लीजिए। 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी रहे तो टीबी हो सकता है।
14: टीबी?
15: हाँ। तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए।
14: ठीक है।
15: टीबी किसी को भी हो सकता है, अगर हो गया तो बिना भूले पूरा कोर्स करिए और फिट हो जाइए। नहीं किया तो इसका इलाज बहुत मुश्किल है, समझ गए भाई साहब आप? आइए। 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
16: Attention, attention, attention, all the ladies and gentlemen. This is to remind you all about the importance of immunization. If your kids are 5 or less who have missed a vaccine, hear this appeal. Getting them vaccinated immediately is the key. For their safety and health, it is a wise request. Protecting them from illness to be their best. And remember, vaccination is safe and it saves your children from deadly diseases. So, see you at the vaccination center soon.
17: To get more information about vaccination, visit your nearest health facility center.
18: Yo, what's up?
3: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 ग्रीन एफएम। उन्नत कृषि।
13: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन, और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आपका बहुत स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। दोस्तों, जब हम कृषि की बात करते हैं, खेती गृहस्थी की बात करते हैं, तो उर्वरकों का महत्व बहुत ज़रूरी हो जाता है। बहुत महत्वपूर्ण होते हैं उर्वरक, लेकिन बाज़ार में बहुत सारे उर्वरक मौजूद हैं और उनमें से एक है जल विलय उर्वरक। ये क्या है, क्यों ज़रूरी है, आज इसके बारे में बताने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर अमित कुमार प्रधान। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
19: धन्यवाद
13: सर। आप हैं असिस्टेंट प्रोफेसर सॉयल साइंस डिपार्टमेंट से। सर, आपसे पहला क्वेश्चन यही है कि जल विलय उर्वरक क्या है?
19: सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद देता हूँ मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए। जल विलय उर्वरक, या फिर जिनको हम वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर्स के नाम से जानते हैं, वो ज़्यादातर उस तरह के उर्वरक होते हैं जो पानी में पूर्णतः घुलनशील होते हैं और जो पौधों को आवश्यक पोषक तत्व त्वरित एवं संतुलित रूप में उपलब्ध कराते हैं। और जो आधुनिक कृषि है, विशेषकर संरक्षित खेती, ड्रिप सिंचाई या फिर फर्टिगेशन जैसी प्रणालियों में इनका उपयोग तेजी से बढ़ रहा है।
13: सर, जैसे कि आपने बताया कि इसका उपयोग काफ़ी तेजी से बढ़ रहा है, तो इसमें ऐसी कुछ विशेषताएं जरूर होंगी, तो इनकी प्रमुख विशेषताएं क्या है?
19: जल विलय उर्वरकों की प्रमुख विशेषताओं में सबसे पहले तो आता है कि ये पानी में पूरी तरीके से घुलनशील होते हैं। इनमें ऐसे कोई पदार्थ नहीं होते हैं जो अघुलनशील होकर रह जाएं। शीघ्र अवशोषण या फिर तुरंत मिट्टी में जाने के बाद या फिर पौधों पर छिड़काव करने के बाद वो तुरंत उनमें घुल जाते हैं।
13: अच्छा।
19: सटीक मात्रा में इनका उपयोग करना ज़्यादा आसान होता है पारंपरिक उर्वरकों के मुकाबले। और ये अपने तरीके से मैक्रो, माइक्रो या फिर जिनको हम कहते हैं सूक्ष्म पोषक तत्व या फिर प्राथमिक पोषक तत्व, उनकी उपलब्धता को बढ़ाता है। फर्टिगेशन या फिर फोलियर स्प्रे, जिसको हम पौधों में छिड़काव कहते हैं, उसके लिए ये बहुत अच्छी तरीके से उपयुक्त हैं।
13: सर, इनका महत्व क्या है कृषि में?
19: इनके कई सारे महत्व हैं। मैं कुछ ज़रूरी महत्व आपके सामने यहाँ पे रखना चाहता हूँ हमारे किसान भाई बहनों के लिए। जो सबसे पहला इसका महत्व है वो है इसका त्वरित पोषण उपलब्धता। जल विलय उर्वरक पौधों की जड़ों या पत्तियों द्वारा शीघ्र अवशोषित हो जाते हैं, जिससे फसल की प्रारंभिक वृद्धि, पुष्पन एवं फलन में तेजी आती है। उसके बाद इनकी उपयोगिता फर्टिगेशन जैसी चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से उर्वरकों की बचत भी होती है, श्रम की लागत में भी कमी आती है और उच्च पोषक तत्व उपयोग दक्षता बढ़ा दिया जाता है। उसके बाद पोषक तत्वों की जो उपयोग दक्षता है, जिसको हम न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी भी कहते हैं, उसको भी ये बढ़ाता है। लीचिंग को कम करता है, वाष्पीकरण जो पोषक तत्व होते हैं जो वाष्प बन के उड़ जाते हैं उसको भी रोकता है, और सटीक समय पर पोषक तत्वों की उपलब्धता को भी बढ़ाता है। ये ज़्यादातर उच्च मूल्य वाली फसलें हैं उन पे ज़्यादातर कारगर साबित होता है। उनकी गुणवत्ता को बढ़ाता है, फलों की आकार और रंग को भी बढ़ाता है, और अधिक उत्पादकता के साथ साथ बाजार मूल्य में भी बढ़ोतरी लाने की सक्षमता रखता है।
13: यानी कि मतलब ये पानी में पूरी तरीके से घुल जाता है, जिसकी वजह से ये पौधों के लिए काफ़ी बेहतर साबित होता है।
19: जी
13: सर, आप ये बताइए कि ये पारंपरिक उर्वरक से कैसे अलग है?
19: देखिए, हम जो पारंपरिक उर्वरक इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादातर बाज़ार में उपलब्ध हैं, वो है यूरिया है, डीएपी है, पोटाश है, जिसको हमारे किसान भाई बहन यूज़ करते हैं। पारंपरिक उर्वरक जो होते हैं वो पानी में पूरी तरह से घुलनशील नहीं होते हैं, जिसकी वजह से हम उनका उपयोग फर्टिगेशन, संरक्षित खेती या फिर ड्रिप इरीगेशन जैसी चीज़ों पर पौधों में छिड़काव करने के लिए उनका उपयोग कर नहीं सकते हैं, क्योंकि पारंपरिक जो उर्वरक होते हैं उनमें कुछ और कण भी होते हैं जिनका इसकी वजह से उसकी उपयोगिता में कमी आती है। तो जल विलय उर्वरक उस मुकाबले में उनसे बेहतर हैं, क्योंकि पूर्ण तरह से घुलनशील होते हैं और पौधों को अच्छी तरीके से हम उसको छिड़काव भी कर सकते हैं, फर्टिगेशन में भी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके साथ साथ पोषक तत्वों की जो दक्षता है, उपयोग दक्षता है, वो पारंपरिक उर्वरकों के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है। पारंपरिक उर्वरकों में हम 20 से 25 या फिर 30% तक उपयोग दक्षता देखने को मिलता है हमें, लेकिन जब हम जल विलय उर्वरकों की बात करें वहाँ पे हम 80-90% तक उपयोग दक्षता बढ़ा सकते हैं पोषक तत्वों की। और लागत में भी उसके मुकाबले, पारंपरिक उर्वरकों के मुकाबले, इसमें लागत भी कम है। भले ही इसकी जो प्राइस है, इसका जो कॉस्ट है, उससे थोड़ा अधिक है, लेकिन इसकी उपयोगिता भी कम मात्रा में होती है, जिसकी वजह से हम इसको ले सकते हैं, अपने कृषि प्रणाली में इसका उपयोग कर सकते हैं।
13: सर, उपयोग कर सकते हैं, लेकिन कौन कौन से उर्वरक, जल विलय उर्वरक बाजार में मौजूद है, इसके कुछ उदाहरण दे दीजिए।
19: कुछ प्राथमिक पोषक तत्वों के भी हैं, सूक्ष्म पोषक तत्वों के भी हैं, जैसे कि यूरिया फॉस्फेट एक उर्वरक है, जिससे हम 17% नाइट्रोजन, 44% तक फॉस्फरस का पौधों तक पहुँचा सकते हैं फॉस्फरस। कैल्शियम नाइट्रेट जैसे उर्वरक हैं, जिसमें 16% तक नाइट्रोजन होते हैं और 19% तक कैल्शियम पाया जाता है। पोटेशियम नाइट्रेट जैसे उर्वरक हैं, ज़्यादातर फल की फसलों में हमारे लिए बहुत उपयोगिता दिखाता है, उसमें 13% नाइट्रोजन और 46% पोटाश हैं। उसी प्रकार मोनोअमोनियम फॉस्फेट, मोनोपोटेशियम फॉस्फेट, पोटेशियम नाइट्रेट जैसे और उर्वरक हैं जिसका हम उपयोग कर सकते हैं।
13: सर, जब भी हम किसी उर्वरक का प्रयोग करते हैं तो कुछ ना कुछ सावधानियां अपनाते हैं,
12: जब हम जल विलय उर्वरक की बात कर रहे हैं तो इनमें भी कुछ विशेष सावधानियां अपनानी पड़ती होगी?
19: जी, कुछ प्रमुख ऐसी सावधानियां हैं, जैसे कि हमें कभी भी किसी भी उर्वरक को प्रयोग करने से पहले, वो चाहे पारंपरिक उर्वरक हो या जल विलय उर्वरक हो, सबसे पहले हम कहते हैं अपने किसान भाइयों बहनों से कि मृदा का परीक्षण अवश्य कराएं। मृदा परीक्षण के आधार पर ही इनका उपयोग करें, अनुशंसित मात्रा में ही इसका उपयोग करें, और अत्यधिक सांद्रता से पत्तियां जलने की संभावना होती है, इसलिए उसका सांद्रता या फिर जिसको हम कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं उसको कम या फिर अनुशंसित मात्रा में ही उसका प्रयोग करें। स्वच्छ जल का प्रयोग करें सिंचाई के लिए, जिसमें लवण की मात्रा कम हो, जितनी कम होगी उतना अच्छी तरीके से हम सिंचाई का जल इस्तेमाल कर सकते हैं। और अलग अलग उर्वरकों को मिला के अगर हम कुछ तैयार कर रहे हैं तो उनका आपस में संगतता या फिर संगतता, जिसको हम कॉम्पैटिबिलिटी कहते हैं, कि आपस में वो एक दूसरे के साथ कोई केमिकल रिएक्शन ना बना ले, उसको ध्यान में रखते हुए ही हम फर्टिगेशन या फिर ड्रिप इरिगेशन जैसी चीज़ों के लिए उसका उपयोग करें।
12: मतलब कुछ चीज़ों का ध्यान रखना जो कि पारंपरिक उर्वरक के समय भी हम ध्यान रखते हैं, वो ज़रूरी है। सर और कुछ?
19: जैसे कि हम कहते हैं कि यदि हमारा लक्ष्य है अधिक उत्पादन पाना, बेहतर गुणवत्ता और पोषक तत्वों की उच्च दक्षता का अगर हमारा लक्ष्य है तो जल विलय उर्वरक अधिक प्रभावी सिद्ध होते हैं, जबकि पारंपरिक उर्वरक व्यापक क्षेत्रीय खेती में, जहाँ पर हम बहुत ज़्यादा मात्रा में फसल का उत्पादन करते हैं, वहाँ पर उनकी उपयोगिता ज़्यादा होती है।
12: सर ये तो बहुत अच्छी बात है, मतलब ये पारंपरिक उर्वरक से काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद साबित होता है, क्योंकि पौधों में इसका जो क्योंकि पौधे इसे बहुत जल्दी अवशोषित कर लेते हैं।
19: जी, और इसमें दक्षता भी ज़्यादा होती है पारंपरिक उर्वरक के मुकाबले।
12: जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे कार्यक्रम में आए और इतनी अच्छी जानकारी दी।
19: धन्यवाद।
12: दोस्तों आज के कार्यक्रम में इतना ही, आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहिए, क्योंकि हम हैं हरियाली से खुशहाली तक।

0: साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
1: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
2: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
0: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
3: क्या क्या क्या?
1: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
3: अच्छा,
4: तो सबकी समझ में आ गया ना? खसरा रूबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाए जड़ तक।
1: टीकू, तेरे कितने दोस्त हैं?
5: तीनू, नीनू, राजू, पिन्नी और...
1: और तुम्हारी वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
5: 11 दोस्त?
1: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
5: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
1: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
5: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
5: टीकी, तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
4: याद रखो,
5: आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
6: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 22 से 26 जुलाई के दौरान आसमान में घने बादल छाए रहेंगे और जिले में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी चलने और हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 26 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 90% और दोपहर में 70 से 80% रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए, जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दे, पिछले कुछ दिनों में हुई वर्षा का लाभ उठाइए और आगे भी संभावना है कि वर्षा होगी, तो ऐसी स्थिति में धान की रोपाई के लिए व्यवस्था सुनिश्चित कर ले। रोपाई से पहले प्रति हेक्टेयर 25 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस, 30 किलोग्राम पोटाश और 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट का प्रयोग करें। आपको बता दें कि निचली जमीन के चारों ओर मजबूत मेड़ यानी कि बांध बनाकर वर्षा जल का संचयन कर ले, ताकि जरूरत पड़ने पर आप वर्षा के जल का सिंचाई में उपयोग कर सके। जो किसान भाई बहन श्री अन्न की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दें, मोटे अनाजों की खेती के लिए उचास भूमि का चयन करें। मड़वा की वकुला KMR 316, GPU 67 और VL 379 राजेंद्र मड़वा RU 8 और RU 3। और आपको बता दें, कौनी की अनुशंसित किस्में हैं राजेंद्र कौनी 1, आप इन किस्मों की बुआई कर सकते हैं। मक्का की खेती करने वाले किसान भाई बहन ध्यान दें, खरीफ मक्का की बुआई आसमान साफ रहने पर ही करें। खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और ध्यान रखें कि बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नेत्रजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश जरूर डालें। अनुशंसित मक्का की किस्में जैसे सुवान, देवकी, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, राजेंद्र शंकर मक्का 3, गंगा 11 हैं। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दे मिर्च, अगाध गोभी, टमाटर जैसी सब्जियों की नर्सरी तभी तैयार करे जब आसमान साफ हो। और बागवानी करने वाले भाई बहन ध्यान दे, जुलाई अगस्त आम के पौधों के रोपण के लिए सबसे उपयुक्त समय होता है। कलमी पौधों की रोपाई 10x10 मीटर और बीजू पौधों की रोपाई 12x12 मीटर की दूरी पर करें। सघन बागवानी के लिए 5x5 मीटर और अम्रपाली के लिए

ढाई गुना ढाई मीटर की दूरी रखें। फलदार वृक्षों में प्रति वर्ष 1 किलोग्राम नाइट्रोजन, 30 किलोग्राम फास्फोरस, 700 किलोग्राम पोटाश और 80 से 100 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद जरूर डालें। आपको बता दें, इस समय केला के स्वस्थ सकर्स की रोपाई करें। लंबी किस्मों जैसे अल्पान, कंथली, मालभोग, चिनिया, G9 और बोनी किस्में जैसे ग्रैंड नेन, रोबस्टा, बसराई का चयन करना सबसे फायदेमंद होता है। लंबी किस्मों के लिए 2 गुना 2 मीटर और बोनी किस्मों के लिए 1.5 गुना 1.5 मीटर की दूरी रखें। प्रत्येक गड्ढे में 5 किलोग्राम गोबर की खाद, 500 ग्राम अरंडी की खली, 300 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट, 100 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश और 10 ग्राम कार्बोफ्यूरान मिलाना न भूले। रोपाई से पहले सकर्स को कार्बन डाइजीम 2 ग्राम प्रति लीटर पानी से उपचारित करें। किसान भाई बहनों, टिश्यू कल्चर पौधे का उपयोग अधिक उत्पादन के लिए लाभकारी होता है। पशुपालक भाई बहन ध्यान दें, पशुओं में PPR, MFD यानी कि खुरपका मुंहपका और HS यानी कि गला घोटू, इन रोगों का खतरा अधिक है। इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण करवाएं, उन्हें साफ और सूखा रखें और बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। रोग के लक्षण अगर दिखाई दे तो तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें और ध्यान रखें कि पशुओं की बिना जरूरत के आवाजाही पर नियंत्रण रखें। गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए जून माह में अगर टीके नहीं लगाए गए हों तो इस महीने में टीके जरूर लगवा दें। पशुओं को संतुलित और पौष्टिक आहार दें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खान पान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

0: सीआईईटी एनसीईआरटी प्रस्तुत करते हैं कार्यक्रम दुख का अधिकार।
1: समाज कई बार अलग अलग आधारों पर लोगों को बांटता रहा है, कभी धर्म और मजहब के लिए, कभी सामाजिक और आर्थिक असमानता के नाम पर। अक्सर हमारी वेशभूषा ही समाज में हमारे अधिकारों को तय करती है। एक ओर यह हमारे लिए बहुत से रास्ते खोल देती है, तो दूसरी ओर जब भी हमारा मन किसी गरीब की अनुभूतियों को समझने की कोशिश करना चाहता है, हमारी पोशाक एक बंधन सा बनकर हमारी संवेदनाओं पर हावी हो जाती है। इस वर्ग संघर्ष की चेतना को यशपाल ने दुख के अधिकार कहानी में बखूबी उभारा है। यह सच है कि दुख की अनुभूति हर व्यक्ति को एक जैसी होती है, उसका दिल टूटता है। मगर यह कैसी मानवीय त्रासदी है कि निर्धन को दुख मनाने का भी अधिकार नहीं होता और ना ही उसके पास इसका समय होता है, क्योंकि उसके जीवन का मूल प्रश्न रोटी से जुड़ा रहता है, जिसके सामने संवेदनाओं या भावनाओं की शायद कोई जगह नहीं होती। इस कहानी की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है।
2: बाबूजी, बाबूजी, टमाटर ले लो, एकदम ताजे और दाम भी कम है।
3: क्या भाव
2: जी? ये मिल जाएंगे आपको 40 रुपए किलो।
3: 40 रुपए?
4: अरे ये महिला क्यों रो रही है? इसके विलाप का क्या कारण हो सकता है? खरबूजे का टोकरा लिए बैठी है और अपना मुंह घुटनों में छिपाए रोए जा रही है। मन कर रहा है इसके पास जाकर पूछूं, पर लोग क्या कहेंगे, मुझ पर फप्तियां कसेंगे। कहां ये कीमती पोशाक पहने मेरी छवि और कहां ये मलिन कपड़ों वाली स्त्री। चाहकर भी मैं उसका दुख बांटने में असमर्थ हो रहा हूं। ये हमारे समाज की कैसी विडंबना है।
5: अरे बाबूजी, जाइए अपनी राह, सोच क्या रहे हैं? ये तो बड़ी बेशरम है।
3: ओके।
5: अभी कल ही इसके जवान बेटे की मौत हुई है और आज ये बाजार चली आई सौदा बेचने।
3: सही कह रहे हो।
6: अरे मियां, लाहौल विला कुवत, क्या जमाना आ गया है, खुदा खैर करे।
7: कलयुग है, घोर कलयुग। इन जैसे लोगों के लिए रोटी कमाना ही जैसे सब कुछ है। बस रोटी मिल जाए किसी भी तरह, ना माँ बेटे का रिश्ता, ना कोई धर्म करम, तभी तो अगले ही दिन आ गई माल बेचने।
6: भैया, अब इसे कौन बताए कि इसकी घर में सूतक लगा है? ऐसे में इसके खरबूजे खाने से किसी का धर्म कैसे बचा रह सकेगा?
4: हे भगवान, किस कदर कोस रहे हैं सब इस बेचारी को, क्या सब संवेदना शून्य हो गए हैं? इसने अपना जिगर का टुकड़ा खोया है। क्या इसे दुख मनाने का भी अधिकार नहीं है? जरा चलकर आसपास पूछता हूं, आखिर इसके बेटे को हुआ क्या था। इन महाशय से पूछता हूं। जरा सुनिए श्रीमान
5: जी। बाबूजी,
4: आप बताइए कि इस महिला ने अपना बेटा कैसे खोया?
5: लगता है आप यहाँ नए नए आए हैं। ये बुढ़िया मंडी में हर रोज आती है। इसका लड़का शहर के पास 1.5 बीघा जमीन पर खेतों में सब्जी बोने का काम करता था। इसी से इसके परिवार का गुजारा चलता था। लड़का कभी खुद आ जाता था और कभी खरबूजों की टोकरी उठाकर माँ को दे जाता था। यही सिलसिला बरसों से चल रहा था।
4: तो फिर?
5: फिर क्या, परसों सुबह सुबह जब वो खरबूजे तोड़ने गया तो उसका पैर सांप पर पड़ गया।
4: ओहो।
5: हाँ, और सांप ने उसे डस लिया। बुढ़िया ओझा को बुला लाई। ना जाने उसने कितने मंत्र फूके, पर इन सब उपायों से कुछ ना हुआ। डॉक्टर के पास जाने की हैसियत नहीं थी। सो इसका बेटा भगवाना चला गया।
4: ओहो,
5: अब पूजा की भी तो दान दक्षिणा का मसला भी उठा। घर में जो अनाज था सब दक्षिणा के भेंट चढ़ गया। रह गए रोते कलपते इसके बेटे के दो बच्चे, पत्नी और खुद ये लाचार बुढ़िया।
1: भला हो समाज के पाखंडी पंडितों ओझाओं का, चाहे कुछ भी हो अपनी झोली भरना नहीं भूलते। किसे परवाह है उस दीन दुखियारी मां की मनोव्यथा की, उन भोले मासूम बच्चों के रुदन की और उस विधवा की जो कई दिनों से बुखार में तप रही थी। कौन लेगा इन सब की खबर?

0: इस प्रश्न पर समाज मौन रह जाता है, इनका रुदन गूंजता रह जाता है अनंत दिशाओं में।
1: हे भगवान, उठा क्यों नहीं लेता मुझको, उठा ही क्यों नहीं लेता, उठा ही क्यों नहीं लेता।
0: इस गहन पीड़ा में भी मां को चिंता थी अपने बेटे भगवाना का तन ढकने की, उसके लिए नया कपड़ा लाने की, चाहे उनके हाथों में बचे खुचे मामूली जेवर छन्नी ककना भी क्यों न बिक जाएं। भोगे बच्चों को ढाढ़स भी बंधाना था।
1: लो बच्चों, खरबूजा खा लो, चुप हो जाओ, मैं हूं ना, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी।

और फिर दुस्साहसी बुढ़िया अपने बेटे के लाए हुए खरबूजे समेटकर बाजार में बेचने चलती थी। किसी मानवीय संवेदना की शायद वो हकदार नहीं थी। दुनिया ने उसे निर्मोही और पत्थर दिल करार दिया था, फिर भी वो मुस्तैद थी बेटे को अंतिम विदा देने के लिए। पर इससे भी पहले उसके सामने बड़ा क्रूर प्रश्न था, रोटी का।

0: कैसा है ये सामाजिक न्याय। अचानक मुझे याद आई अपने पड़ोस में घटी एक घटना की, जिसमें एक संपन्न परिवार की महिला के साथ भी कुछ ऐसा ही घटा था। 2.5-3 महीने तक डॉक्टर उसकी सेवा में लगे रहे उसकी मूर्छा को ठीक करने के लिए। उस समय तमाम शहर उसके दुख में दुखी था। वो अमीर थी, उसके इर्द गिर्द एक सभ्य समाज की छत्र छाया थी, संपन्नता ने सब अधिकार उसे सौंप दिए थे। क्या पता इस बुढ़िया जैसी हजारों गरीब महिलाएं कौन कौन सी यातनाओं से आज भी गुजर रही हूं। मेरा मन कितना चाह रहा था कि उस बुढ़िया के कंधे पर सांत्वना का हाथ रख दूं, उसे भी दुख का अधिकार मिल जाए, पर ऐसा कर ना सका।
1: दुख का अधिकार। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। प्रतिभागी कलाकार थे प्रवीण शर्मा, सुनील लोहिया, नीरज शर्मा और ममता मलकानी। वाचन स्वर परवेज गौहर। विषय संयोजन प्रोफेसर संध्या सिंह, डॉक्टर संजय सुमन, डॉक्टर प्रमोद दुबे, प्रोफेसर चंद्रा सदायत, श्री नरेश कोहली और डॉक्टर नीलकंठ कुमार। मार्गदर्शन वंदना अरिमर्दन। ध्वनि अंकन बटिलैंग लिंगडो। ध्वनि संपादन निर्माण तथा निर्देशन मयंक थपलियाल एवं प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली।
2: अरे यार फिर पिट गया। बेल देना। इसको आउटसाइड द ऑफ टाइम डालना चाहिए था, इसकी यही प्रॉब्लम है।
3: कब से?
2: जब से क्रिकेट खेल रहा है तभी से।
3: अरे भाई साहब क्रिकेट की नहीं, हो आपकी खांसी की बात कर रहे हैं बुड़बक।
2: खांसी?
3: हाँ।
2: इसको तो एक आध महीना हो गया।
3: खुद की खांसी को एक आध महीने हो गए हैं और यहाँ क्रिकेट पर अपने ही गुगली फेंक रहे हैं आप। चलिए चलिए चलिए।
2: डॉक्टर खांसी तो है।
3: देखिए भाई साहब इसे हल्का मत लीजिए, 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी रहे तो टीबी हो सकता है।
2: टीबी?
3: हाँ। तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए।
2: ठीक है।
3: टीबी किसी को भी हो सकता है, अगर हो गया तो बिना भूले पूरा कोर्स करिए और फिट हो जाइए, नहीं किया तो इसका इलाज बहुत मुश्किल है। समझ गए भाई साहब आप? आइए।

0: डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
1: अटेंशन अटेंशन अटेंशन ऑल द लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज टू रिमाइंड यू ऑल अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ इम्यूनाइजेशन। इफ योर किड्स आर 5 और लेस हु हैव मिस्ड अ वैक्सीन, हियर दिस अपील। Getting them vaccinated immediately is the key. For their safety and health, it is a wise request. Protecting them from illness to be their best. And remember, vaccination is safe and it saves your children from deadly diseases. So, see you at the vaccination center soon.
2: To get more information about vaccination, visit your nearest health facility center.
3: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
4: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
3: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
4: आपकी सेहत की बातें,
3: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
4: युवाओं के रोजगार करियर की बातें,
3: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
4: वो कहाँ पर?
3: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
4: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।
3: उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। आपका बहुत बहुत स्वागत है किसान भाई बहनों को संबोधित हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। दोस्तों, अगर हम अपनी फसलों में जल प्रबंधन का ध्यान रखते हैं और पोषक तत्वों का भी ध्यान रखते हैं और फिर भी अगर कीटों का प्रकोप हो जाता है तो हमारी फसलों को बहुत नुकसान होता है। और अभी खरीफ का मौसम चल रहा है तो ऐसे में बहुत सारे किसान भाई बहनों ने खरीफ सब्जियों की खेती की होगी या करने वाले होंगे। तो आइए हम जानते हैं कि खरीफ सब्जियों में कीटों से बचाव के उपाय कौन कौन से हैं। इस बारे में आज विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर श्याम बाबू साह, सर है एसोसिएट प्रोफेसर कम सीनियर साइंटिस्ट, सर है कीट विज्ञान विभाग से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
5: धन्यवाद। किसान भाइयों, जो आज जो हम लोग जो चर्चा करेंगे, जो खरीफ मौसम में क्या क्या हम लोगों को करना चाहिए ताकि आपकी पैदावार जो है अधिक से अधिक हो और आप ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमा सकें।
3: जी बिल्कुल सर। सर, सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि खरीफ मौसम में मुख्यतः कौन कौन सी सब्जियां लगाई जाती है?
5: हाँ, मुख्यतः किसान भाइयों, आप लोग जो लगाते हैं इस क्षेत्र में तो बैंगन है, उसके बाद भिंडी है, फिर हरी मिर्च हम लोग लगाने के लिए लेते हैं, हरी मिर्च लेने के लिए, फिर कद्दू वर्गीय जो विभिन्न प्रकार के जो लत्तीदार सब्जियां होती हैं उसको मुख्यतः उगाते हैं। ये प्रमुख जो सब्जियां हैं जो इस मौसम में लगती हैं। और इस मौसम में क्या होता है कि क्योंकि वर्षा भी होते रहती है और तापमान भी उस ढंग से रहता है तो बड़ी तेज़ी से जो है फसल बढ़ता है और जिसके चलते जो है कि उसकी उत्पादन क्षमता भी अधिक हो जाती है इस मौसम में।
3: सर, सब्जी लगाने से भी पहले कुछ सावधानी बरतने की ज़रूरत होती है, वो कौन कौन से सावधानियां हैं जो किसान भाई बहन रख सकते हैं?
5: हाँ, ये किसान भाइयों, चूंकि सिर्फ कीटनाशी ही निदान नहीं है किसी भी कीट के रोकथाम करने के लिए, तो इसको क्या है कि कुछ बातें जो है कि हम लोग अगर ध्यान में रखें तो मतलब जो कीटनाशी है उसका उपयोग हमको कम से कम करना पड़ेगा। तो कुछ फैक्ट्स हैं जिनको हम लोग चर्चा करते हैं, क्योंकि अब जो गर्मा मौसम है ये समाप्त होने वाला है और खरीफ शुरू होने वाला है या कुछ लोग अब शुरुआत कर रहे होंगे, तो उस कंडीशन में मैं बताना चाहूँगा कि जो फसल चक्र है ये एक बहुत बड़ा वरदान है। फसल चक्र कहे तो मतलब एक ही फसल को अगर हम लोग लगातार एक ही खेत में करते रहते हैं तो जिसके चलते जो है कि हर फसल का कीट अलग अलग होता है और एक ही खेत में चूंकि लगाते हैं तो उनका क्रम कभी टूटता नहीं है, और क्रम जब नहीं टूटता है तो इस कारण से वो हमारे जो भी जो सब्जी की जो फसल है उस पे उनका ज़्यादा आक्रमण होता है और जिसके चलते हमारी क्षति ज़्यादा होती है। तो इसीलिए जैसे कि जो सब्जी अगर हम लगा रहे हैं जिस खेत में, मान लीजिए एक ही खेत में बैंगन बार बार लगा रहे हैं तो उस खेत में मतलब हर 3 साल के बाद बैंगन ना लगा करके, सब्जी ना लगा करके उसमें अगर हम सस्य वाले जैसे कि धान है या गेहूँ है इसको लगाते हैं कम से कम 1 साल के लिए, तो एक उसका फसल चक्र टूटता है और इस कंडीशन में जो है कि कीड़ों का प्रकोप कम होता है। अब जो दूसरा है, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम लोग जो फर्टिलाइजर देते हैं, उर्वरक जो देते हैं, उसकी समुचित मात्रा ही देनी चाहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं किसान भाइयों के मन में भ्रांति हो गई है कि अगर हम ज़्यादा फर्टिलाइजर देंगे, ज़्यादा उर्वरक देंगे, तो उससे हमारी उत्पादकता बढ़ेगी। किसान भाइयों, मैं बताना चाहूँगा कि ये कहीं ना कहीं अगर ज़्यादा मात्रा में हम देते हैं तो पौधे की बढ़वार बड़ी तेज़ी से होती है, और उस कंडीशन में जब बढ़वार बड़ी तेज़ी से होती है तो उसके मुलायम पत्तियों को खाने के लिए कीट बड़ी तेज़ी से आते हैं, और आपके मुलायम जो हिस्से हैं जो आपके पौधे के, उसको खा करके उसको क्षतिग्रस्त करते हैं। तो इसीलिए अनुशंसित मात्रा ही जो है यूरिया और DAP और म्यूरेट ऑफ पोटास का देना चाहिए, ठीक है। और पोटेशियम की मात्रा जहाँ तक हो वो समुचित देने से क्या होता है कि फसल जो पौधे होते हैं उसमें विभिन्न प्रकार से कीटों से लड़ने से की क्षमता को बढ़ाता है। मतलब वो जहाँ भी अगर फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर हम लोग देते हैं तो उसमें कीटों का प्रकोप कम होता है। तो ये कुछ बातें हैं। अब जो हम लोग मेन एक और चीज़ है, चूँकि ये खरीफ मौसम आने वाला है और खरीफ मौसम में आपको किसान भाइयों को बता दें कि कीटों का प्रकोप बहुत ज़्यादा होता है। कीटों का प्रकोप बहुत ज़्यादा होने का ये कारण है कि चूँकि वर्षा बराबर होते रहती है, और वर्षा बराबर होते रहती है उस ढंग से उसका तापमान मिलता है, साथ में आर्द्रता मिलती है, जिसके चलते जो कीट है उसका जीवन चक्र बड़ी तेज़ी से बहुत कम टाइम में वो मतलब वृद्धि होता है। और जब कीट की जब वो तेजी गति से अगर उसमें मतलब वो पैदा लेगा, फिर बढ़ेगा, अपना जीवन चक्र पूरा करेगा, तो उस कंडीशन में आपके फसल को भी ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान करता है वो। तो इस कंडीशन में बीज उपचार करना बहुत ही ज़रूरी है। तो अब बीज उपचार कैसे करें, तो बीज उपचार कैसे करें और किन चीज़ों से करें, तो ये चूँकि इसमें आपको रोग भी लग सकता है और साथ साथ कीट भी लग सकता है, तो बीज उपचार मुख्यतः दो चीज़ों के लिए हम लोग सब्जी में करते हैं। तो अगर दो बीज उपचार करना है तो पहला हम लोग को फफूंद नाशी से करना चाहिए। फफूंद नाशी से इसलिए करना चाहिए कि उसके बीज उपचार अगर हम लोग कर देते हैं तो लगभग 21 दिन से एक महीने तक आपकी फसल को विभिन्न प्रकार के रोगों से ये बचाव करता है। तो किससे करें बीज उपचार, तो बीज उपचार करने के लिए जो कार्बेंडाजीम है, कार्बेंडाजीम का ये 2 ग्राम मात्रा प्रति किलो बीज की दर से उसमें डालना है, और साथ में थोड़ा सा पानी मिला करके और उसको हिला करके और उसको सूखे उसको फर्श पे या जो पॉलीथीन सीट है उसको उसमें छायादार जगह पे उसको सुखाना है, और सुखाने के बाद मतलब उसको फर्दर यूज कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि फफूंद नाशी से तो बीज उपचार करें ही करें, फफूंद नाशी से करेंगे तो ये रोगों से बचाएगा, साथ ही साथ आपको कीटों से क्षति को रोकने के लिए भी कीटनाशी से उपचार करना है। तो कीटनाशी से किससे उपचार करें, तो कीटनाशी से उपचार करने के लिए एक गौचो दवा आती है जो इमिडाक्लोपिड 70 WP रहता है, ये वेटेबल पाउडर के रूप में रहता है, मतलब ये भिंगाने वाला पाउडर के रूप में रहता है। तो इसकी जो है 3 ग्राम मात्रा प्रति किलो बीज की दर से इसको मिला करके, और फिर उसमें पानी उतना ही डालना है जितना कि वो भींग जाए बीज, और इसको कोई अगर आपका बीज पॉलीथीन सीट में है या पैकेट में है तो उसी में थोड़ा सा ये मतलब जो मात्रा मैंने बताया वो कीटनाशी का, और थोड़ा सा जल दे करके उसको मिला करके और फिर सूखे फर्श पे मतलब उसको सुखा करके तब इस्तेमाल करना है। ऐसा करने से क्या होता है कि जो ज़मीन में जो विभिन्न प्रकार के जो ज़मीन में जो पाए जाने वाले कीट है, तो वो अगर हम बीज उपचार नहीं करते हैं तो वो हमारे बीज को क्षतिग्रस्त कर सकते हैं, और क्षतिग्रस्त करने के साथ के बाद जो है कि बीज का जमाव नहीं हो सकता है। अगर बीज जम भी गया, अंकुरित हो भी गया, तो पौधा चूँकि बहुत कमज़ोर रहता है, तो उस कंडीशन में पुनः दूसरे कीट का आक्रमण होता है, और उसके बाद जो है कि हमारा जो सब्जी है वो क्षतिग्रस्त हो जाता है। तो ये चीज़ आपको बीज उपचार करना चाहिए। तो उसके बाद जो है कि हम लोग जो लाइन से लाइन और पौधे से पौधे के बीच की जो दूरी है, इन चीज़ों को आपको अच्छा से मेंटेन करना चाहिए, जिसके चलते क्या होता है कि ये बढ़वार

0: अच्छा होगा तो इस पे कीट का आक्रमण कम होता है। और पुनः हमारे अपने जो, चूंकि ये हम लोग बात कर रहे हैं खरीफ सीजन में, तो खर पतवार से हम लोगों को मतलब अपने खेत को फ्री रखना चाहिए, क्योंकि अगर खर पतवार को अगर फ्री नहीं रखेंगे तो ये दो टाइप से हम लोग को नुकसान करता है। पहला तो ये जो हमारे सब्जी के लिए जो भोजन होता है उसको ये खर पतवार खा जाता है, और दूसरा क्या है कि हमारे जो कीटों के लिए जो है ये आश्रय स्थल बनता है। वहाँ पे जो कीट है वो छुपे रहते हैं, छुप जाते हैं, और पुनः वहाँ से जब उनको मौका मिलता है तो हमारे मेन जो सब्जियाँ हैं उस पर आकर के उनके पत्तियों को और दूसरे हिस्सों को वो क्षतिग्रस्त करता है। तो ये कुछ जो कॉमन चीज़ें हैं इसको किसान भाइयों आप लोग ज़रूर करें। दूसरा एक बात और कहना चाहेंगे, जो कीटनाशी जहाँ से भी लेते हैं तो अच्छी गुणवत्ता वाली कीटनाशी लीजिए, अच्छे दुकान से जहाँ पर कीटनाशी मिलता है वहाँ से लीजिए, और आप पक्का कैश में ज़रूर डिमांड करिए, क्योंकि अगर आपके पास ओरिजिनल कैश में रहेगा तो उस कंडीशन में अगर कीटनाशी काम नहीं करता है या कोई परेशानी होती है तो आप उसको जो है आप कहीं पे भी अपने जो ऊपर के जो अधिकारी हैं उनके पास जाकर के आप उसके विरुद्ध शिकायत कर सकते हैं कि हमने यहाँ से परचेज किया था और ये काम नहीं कर रहा है। तो यही कुछ चीज़ें हैं जिसको हम लोग को ध्यान रखना चाहिए।
1: यस सर, तो इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और अब हम सर विस्तार से जानते हैं कि कौन कौन से कीट मुख्य रूप से खरीफ सब्जी में लगते हैं और उनका समेकित प्रबंधन कैसे करना चाहिए।
0: हाँ, तो हम बात करते हैं पहले ब्रिंजल से, क्योंकि ब्रिंजल जो बैगन बोलते हैं जो किसान भाई बहुत लगाते हैं, अब तो थ्रू आउट ईयर बैगन मिलता है। तो बैगन में किसान भाइयों को सबसे ज़्यादा जो परेशान करने वाला चीज़ होती है वो फल एवं तना छेदक जो बैगन का आता है वो उसको परेशान करता है। तो यूं तो किसान भाई उसको कंट्रोल करने के लिए सीधे कीटनाशी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैं कीटनाशी का इस्तेमाल ना करते हुए आपको बताना चाहूँगा कि अब ट्रैप है, प्रपंच जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में ट्रैप कहते हैं, और फेरोमोन ट्रैप आता है तो उसका आप किसान भाइयों इस्तेमाल करें। ये फेरोमोन ट्रैप की संख्या 8 से 10 होनी चाहिए प्रति एकड़ में, और इसको जो है इसको जो जनरली जो पौधे जो होता है उसके ऊंचाई से 1.5 फीट से ऊंचा पे इसको किसी लकड़ी के द्वारा इसको सेट किया जाता है। और इसमें जो है, और इसको कब लगाएं अपने खेत में, तो लगभग जो आपकी जो बैंगन की खेत है, बैंगन की जो फसल है उसके 30 दिन के बाद, मतलब जब ट्रांसप्लांटिंग करते हैं, मतलब कहने का मतलब जो उसके बिचड़ा को जब हम लोग मेन फील्ड में जब लगाते हैं तो जब उसका लगभग 1 महीना हो जाए तो उसमें फूल आने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, तो उस समय किसान भाई आप लोग को लगाना चाहिए। और इस जो फेरोमोन ट्रैप है, इस ट्रैप में क्या होता है कि एक ऐसा ट्रैप है जिसमें मतलब मादा का सेंट निकलता है और जसके चलते नर जो कीट है उसमें आके फंस जाते हैं। तो इसमें एक टेबलेट लगा होता है, ये टेबलेट एक सुगंध निकालता है, तो इस टेबलेट को हर 30 दिन के बाद बदल देना चाहिए, क्योंकि 30 दिन के बाद इसमें जो है उसमें जो निकलने वाली गंध होती है उसका असर घट जाता है, कम हो जाता है, इसलिए आपको बदलना चाहिए। तो ये हो गया बैगन के लिए। अब दूसरी बात क्या है कि ये तो हो गया जो हम लोग ट्रैप लगाते हैं, दूसरी बात है कि एक इस ट्रैप के अलावे जो रस चूसने वाले जो कीट है, जैसे कि अगर आपके बैगन के खेत में अगर थ्रिप्स लगा हुआ है तो उस कंडीशन में उसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग येलो स्टिकी ट्रैप, येलो स्टिकी ट्रैप बोलते हैं कि पीला चिपकदार प्रपंच होता है, एक कार्डबोर्ड में होता है, उस वो पीला से पेंट किया हुआ रहता है और उसमें गोंद लगाया हुआ रहता है, तो उसको क्या करते हैं हम लोग किसी लकड़ी के माध्यम से फील्ड में अगेन 1.5 फीट की ऊंचाई पे उसको लगाते हैं, और इसमें क्या होता है कि जितने भी रस चूसने वाले जो कीट है उसमें वो चिपक जाता है, और चिपक जाने के कारण जो है उसकी संख्या घट जाती है और आपके जो पौधे हैं बैंगन के जो पौधे हैं वो इससे मतलब ये जो रस चूसने वाले कीट से हैं वो बच जाता है और हमारा जो उत्पादन है वो बढ़ जाता है। तो ये हो गया बैगन के फ्रूट एंड सूट बोर्डर के लिए और उनके जो रस चूसने वाले जो कीट हैं उनके लिए। अब हम आगे बात करते हैं भिंडी के लिए। तो भिंडी में क्या होता है, तो भिंडी में भी क्या होता है?

0: भिंडी का जो फल एवं उसके तना को छेद करने वाला एक कीट होता है, तो ये क्या करता है, इसके जो शिशु होते हैं वो जो शुरुआती कंडीशन में क्या होता है, जो बढ़ने वाला पोर्शन होता है जो भिंडी का, तो उसको काटता है और जब फल निकलने लगता है भिंडी का, तो ये भिंडी में इसके जो शिशु है वो छेद करके अंदर घुस जाता है, उसके अंदर खाता है और पुनः आप किसान भाई देखते होंगे क्या कि उसके एक छेद बनाता है और छेद से आप देखते होंगे कि कुछ बाहर की ओर बुरादा की तरफ निकलता है, मतलब वो उसके मलमूत्र हुआ करते हैं। तो ये भिंडी फ्रूट एंड शूट बॉर्डर है। तो इसको जहाँ तक रोकथाम करने के लिए है, तो सबसे पहले किसान भाई मैं बताना चाहूँगा कि ये जहाँ भी आपको दिखे आपके अगर भिंडी में ऐसा कहीं दो चार अगर आपके किसी भिंडी के पौधे में दिख रहा है, तो उसको तोड़ लेना चाहिए या काटते हैं अब जैसे भी भिंडी को फल को काट करके और उसको मिट्टी के अंदर दबाना है। सेम केस बैंगन के केस में भी करना चाहिए। फील्ड में कभी भी उसको जो काना है या जो भी है जो क्षतिग्रस्त जो है इन कीटों के द्वारा, उसको तोड़ करके फील्ड में कभी नहीं छोड़ना चाहिए। इसको छोड़ने से क्या होता है, इसमें कीट और रहते हैं और ये क्या होगा कि फिर से उस कीट से बहुत सारे कीट निकल करके उनके जो शिशु हैं या उनके वयस्क हैं वो निकल करके आपके जो दूसरे पौधे हैं उनको वो क्षतिग्रस्त करते हैं। तो इसलिए उसको आपको कहीं एक जगह जमा करके मिट्टी में दबा देना है। अब उसको बात करते हैं दूसरी जो भिंडी के लिए, तो पुनः इसको जो है नीम बेस्ड नीम आधारित जो है कीटनाशी है, जो नीम का जो तेल है उसका, जैसे 1500 ppm नीम का तेल जो है उसकी 4 ml मात्रा प्रति लीटर पानी में और कुछ उसमें स्टिकर मला करके इसको छिड़काव करने से जो है ये भिंडी का फ्रूट एंड शूट बॉर्डर इसे रोक जाएगा। अगर आपकी ये इन्फेस्टेशन ज़्यादा है तब इसके रोकथाम करने के लिए इमामेक्टिन बेंजोएट जो 5 SG जो सलवुल ग्रेनुल के रूप में आता है उसको पहले भिंगाना है, घुलाना है और घुलाने के बाद इसकी 4 ग्राम मात्रा 10 लीटर पानी में मिला करके आपको जो है कि मुख्यतः जो है कि 4 बजे के बाद इसको आपको छिड़काव करने से जो है इसका जो है कि रोकथाम हो जाएगा। अब जो भिंडी में जो लगने वाले जो दूसरे कीट है, तो आप देखते होंगे क्या कि भिंडी के जो पत्ता है उसके नीचे हरा हरा बहुत छोटा छोटा फुंदकी टाइप से जो है वो रहता है, तो ये क्या करता है, ये आपके पत्तियों से रस चूसता है और रस चूसने के बाद क्या होता है, धीरे धीरे ये पत्तियाँ पीली पड़ जाती हैं और पीली जब पड़ जाएंगी तो आपकी जो भिंडी का उत्पादन है कहीं ना कहीं घट जाएगा। तो इसके रोकथाम करने के लिए हम लोग जो येलो स्टिकी ट्रैप अभी बात कर रहे थे, एक येलो स्टिकी ट्रैप या ब्लू स्टिकी ट्रैप इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं और इसकी जो संख्या है 1 हेक्टेयर में लगभग 100 स्टिकी ट्रैप को इस्तेमाल करने से जो है कि हम लोगों को कीटनाशी का उपयोग नहीं करना पड़ता है और हमारी जो भिंडी है वो कीटनाशी रहित उत्पादन हो सकता है। अब एक और जो कीट है उसका हम लोग व्हाइट फ्लाई कहते हैं, तो ये व्हाइट फ्लाई ये आपके जो खरीफ मौसम आ रहे हैं इसमें इनकी समस्या किसान भाइयों ज़्यादा आता है। आप चूंकि समझ नहीं पा रहे होंगे, हो सकता है कि सफ़ेद मक्खी किसको बोलते हैं, तो आपके जो खेत में जो पत्तियां होती हैं वो पीली और चितकावर जब दिखने लगे तो यही जो है कि व्हाइट फ्लाई के चलते होता है। और कभी कभी क्या होता है कि आपका जो खेत है खेत में बीच बीच में कहीं कहीं देखेंगे कि उसका जो भेन और भेनलेट है जो पत्तियाँ होती है वो हरा रहेगा और भेन और भेनलेट पीला हो जाता है। और जब आप नहीं इसको देखभाल करेंगे, कंट्रोल करने के लिए उपाय नहीं करेंगे, तो होता है कि पूरे खेत में आपके भिंडी का पूरा पौधा ऐसे ही दिखने लगता है, कभी कभी तो भिंडी भी पीला हो जाता है। तो ये व्हाइट फ्लाई के चलते होता है। और इस ये जो व्हाइट फ्लाई है सफ़ेद मक्खी जिसको बोलते हैं, ये येलो वेन मोज़ेक वायरस एक होता है, एक वायरस को ये ट्रांसमिट करता है। मतलब ये ट्रांसमिट करने का मतलब है क्या कि अगर एक पौधे में हो गया तो इस पे व्हाइट फ्लाई इससे रस चूसेगी और ये जहाँ जहाँ दूसरे पौधे पे जाकर के रस चूसेगी उस पौधे में ये फैल जाता है। तो किसान भाइयों इसको रोकथाम करने के लिए जो पहला जहाँ आप देखें कि अगर जिस पौधे में ये है तो जिस पोर्शन में है उसको ऊपर से काट करके इसको मिट्टी में दबा देना है। अगर पौधे में ज़्यादा फैल गया है तो पूरे पौधे को उखाड़ करके मिट्टी में दबाना है और उसके बाद जो कीटनाशी है जैसे थायोमेथोक्सम 25 WG इसकी 0.5 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में साथ में स्टिकर मिला करके इसको छिड़काव करना है। अगर थायोमेथोक्सम उपलब्ध नहीं है देन आप जो है थायोमिथोक्सम 25WG एक टाड़ा के नाम से भी आता है, एक टाड़ा इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ये नहीं मिल रहा तो इमिडाक्लोपीड 17.8 SL इसकी आधा ML मात्रा प्रति लीटर पानी में इसको आपको छिड़काव करने से ये जो एलोवेरा मोज़ेक वायरस है ये आप रोकथाम इससे हो सकता है। अब कुछ बात करते हैं जो मिर्च लगा होता है, तो मिर्च में भी क्या होता है, मिर्च में भी आप देखेंगे क्या कि ऊपर के जो पत्तियां होती है वो किकूड़ने लगती हैं, जिसको आप लोग लोकल भाषा में तुकूड़ना कहते हैं। तो ये मुख्यतः रस चूसने वाले कीटों के चलते होता है, और इसके रोकथाम करने के लिए पुनः जो हमने अभी बताया थायोमिथोक्सम या इमिडाक्लोपीड जो जितना मात्रा बताए हैं उसको इस्तेमाल करने से ये आप मिर्च में इसका जो किकुरी रोग है इससे आप लोग बच सकते हैं। किसान भाइयों का बहुत लोग का रहता है कि मैं दवा इस्तेमाल करता हूं उसके बाद भी कंट्रोल नहीं होता है, तो इसके लिए ये है किसान भाई कि जिसमें हो जाएगा उसको कभी भी सही नहीं हो पाएगा, उसको आपको उखाड़ के हटाना है, दूसरे में ये फैलने से आपको बचाता है। तो इन बातों को आप ध्यान रखें, वो काम जरूर करता है, लेकिन जो पोर्शन अगर क्षतिग्रस्त हो गया है वो कभी सही नहीं होगा। अब आते हैं कद्दू वर्गीय सब्जी में, तो कद्दू वर्गीय सब्जी में खरीफ मौसम में भी लोग करेला लगाते हैं, उसके बाद खीरा लगाते हैं, कुछ कद्दू भी लगाते हैं। तो इसमें जो है अगर कद्दू की बात करें तो कद्दू में जो लाल भृंग का ज़्यादा प्रकोप होता है, तो उस कंडीशन में जो है अगर हम लोग राख का इस्तेमाल करते हैं तो राख छिड़काव करने से ये इसके भृंग का प्रॉब्लम कम होता है। अगर जहाँ राख नहीं है तो फेन वैलेरेट का जो डस्ट है 5% उसकी जो है 10 किलो मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से भुड़काव करने से उससे हम लोग मतलब बच सकते हैं। दूसरी बात है कि अगर खीरा में जो शिशु है कैटरपिलर है या शिशु या जो चलने वाले कीट है उसके चलते अगर कोई छेद कर रहा है या फ्रूट फ्लाई लगता है तो अगेन जो है उसके लिए जो क्यू लियो ट्रैप आता है उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ट्रैप आपके पास उपलब्ध नहीं है देन आप जो है तब आप जो है इमामेक्टिन बेंजोएट 5 SG की 4 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में छिड़काव करके इससे रोकथाम कर सकते हैं। तो ये संक्षेप में जो है मुख्यतः जो भी आपके जो खरीफ फसलों में जो लगने वाली कीट है उनके लिए हमने उपाय बताया है। इसमें देखना आपको ये है कि आपको कैसा कीटनाशी आपको छिड़काव करना चाहिए, नीम बेस से लेकर के हमने रासायनिक का भी नाम बताया है, लेकिन कोशिश किसान भाइयों की यही रहनी चाहिए कि हम कम से कम जहरीला कीटनाशी इस्तेमाल करें ताकि हमारे स्वास्थ्य के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा दुष्प्रभाव ना पड़े। धन्यवाद।
1: तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने जो तरीके बताए उन तरीकों को अपनाकर किसान भाई बहन अपने खरीफ फसलों को खरीफ सब्जियों को बचा सकते हैं कीटों के प्रभाव से। दोस्तों आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: नाटक देखो नाटक देखो।
1: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं, हाँ या ना?
2: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
1: हाँ हाँ हाँ। इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
2: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
3: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
1: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
4: क्या क्या क्या?
2: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
4: अच्छा,
1: तो सबकी समझ में आ गया ना, खसरा रुबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाए जड़ तक।
2: टीकू, तेरे कितने दोस्त है?
5: टीनू, मीनू, राजू, पिन्नी
2: और तुम्हारी वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
5: 11 दोस्त?
2: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
5: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीके।

0: जाएगी।
1: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
2: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूरदराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं, या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
2: टीकी, तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा, सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है, तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर एनएम दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। यूएन पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
3: याद रखो, आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
4: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 ग्रीन FM। उन्नत कृषि। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आरजे अनु, आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। वैसे किसान भाइयों, अक्सर देखा गया है कि आप खेत पर तो खेती करने जाते हो, लेकिन आपके घर के आसपास थोड़ी सी ज़मीन रह जाती है, तो उसे भी आप अपने हित में, अपने लाभ में आप उपयोग कर सकते हो, और वो है पौष्टिक उद्यान बनाकर या पोषण वाटिका बनाकर। वैसे दोस्तों, पौष्टिक उद्यान या पोषण वाटिका से मतलब है हमारा कि वैसा एक गार्डन जिसमें वो चीज़ें आप लगा सके जो कि आपके हित के लिए, जो आपको पोषण प्रदान करे। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं बता दूँ कि आज का हमारा विषय है पौष्टिक उद्यान या पोषण वाटिका, और इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं मैम डॉक्टर संगीता श्री, और ये हैं असिस्टेंट प्रोफेसर हॉर्टिकल्चर, और ये है बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। तो सबसे पहले मैम, आपका स्वागत है हमारे इस स्टूडियो में, और इस विषय पर आप विस्तार से जानकारी देंगी हमारे किसान भाइयों को, इसलिए आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। और सबसे पहले मैम, जब सवाल की ओर बढ़ें, ताकि जो हमारे किसान भाई है, जो भी उनकी चिंताएं हैं, जो भी उनकी परेशानी है, जो भी उनकी उत्सुकता है इस बारे में जानने की, यानी कि पोषण वाटिका के बारे में जानने की, तो आए सबसे पहले बताएं हमारे किसान भाइयों को कि पोषण वाटिका क्या है।
5: नमस्कार किसान भाइयों, मैं आपको पोषण वाटिका का एक परिचय देती हूँ। पोषण वाटिका या रसोई घर बाग या फिर गृह वाटिका, उस वाटिका को कहा जाता है जो घर के अगल बगल में, घर के आंगन में ऐसी खुली जगह पर होती है, जहां पारिवारिक श्रम से परिवार के इस्तेमाल हेतु विभिन्न मौसमों में मौसमी फल तथा विभिन्न सब्जियां उगाई जाती हैं। पोषण वाटिका का मकसद रसोई घर के पानी व कूड़ा करकट का इस्तेमाल करके घर की फल व साग सब्जियों की दैनिक ज़रूरतों को पूरा करना है। आजकल बाजार में बिकने वाली चमकदार फल और सब्जियों को रासायनिक उर्वरक प्रयोग करके उगाया जाता है। इन रासायनिक दवाओं का कुछ अंश फल सब्जी में बाद तक बना रहता है, जिसके कारण उन्हें इस्तेमाल करने वालों में बीमारियों से लड़ने की ताकत कम हो जाती है,
4: या फिर यूं कहें कि रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो थोड़ी सी कमजोर
5: हो जाती है। इसके अलावा फलों व सब्जियों के स्वाद में भी अंतर आ जाता है, इसलिए हमें अपने घर के आंगन या आसपास की खाली जगह में छोटी छोटी क्यारियां बनाकर जैविक खादों का इस्तेमाल करके रासायन रहित फल सब्जियों को उगाना चाहिए।
4: तो मैम, इससे लाभ के बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे।
5: हाँ, इनके अनेक लाभ हैं। एक तो आपको रासायनिक रहित सब्जी मिलेगी, पोषण तत्वों से भरपूर। पोषक वाटिका अच्छी खासी बचत का भी स्रोत है। सब्जी उत्पादन बढ़ाने में भी पोषण वाटिका का योगदान है। गृह वाटिका या पोषण वाटिका लगाकर महिलाएं अपनी व अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को भी मजबूत बना सकते हैं। पोषण वाटिका से प्राप्त मौसमी फल व सब्जियों को परिरक्षित कर साल भर इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे कि जैम, जेली, केचप, ये सब बनाया जा सकता है, और जब मौसम नहीं हो इनका तो हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यह मनोरंजन और व्यायाम का भी एक अच्छा साधन है तथा मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी खुद उगाई गई फल सब्जियों बाजार की फल सब्जियों से अधिक स्वादिष्ट और संतोषप्रद लगता है।
4: वैसे देखा गया मैम कि अभी शहरों की भी बात कर लेते हैं, लोगों को बहुत अच्छा लगता है कि उनके आसपास जो है जैसे नींबू के पौधे हो जाए, मिर्च के पौधे हो जाए, तो उन्हें काफ़ी अच्छा लगता है। अगर ग्रामीण जीवन से उतरकर बाहर आकर हम बात करें शहरों के, तो शहर में भी आजकल लोग देखते हैं कि फूलों से ज़्यादा अपने गमलों में मिर्च के पौधे लगाने लगे हैं, नींबू के पौधे लगाने लगे हैं। वैसे छोटे छोटे जो ज़्यादा वज़न वाले जो फल या सब्ज़ी ना हो वैसे पौधे लगाने लगे हैं। आप उनके टेरेस पर छत पर जाएंगे तो आपको ऐसा कुछ देखने को मिलता है, काफ़ी सुंदर लगता है देखने में। तो इसे भी आप कह सकते हैं कि अगर शहरों में अगर आपके पास ज़मीन नहीं है तो आप गमलों में छोटे छोटे जो कम वज़न वाले जो फल हैं, जो सब्ज़ी हैं, आप लगा सकते हैं। देखने में भी काफ़ी अच्छा लगता है और आपके किचन के लिए भी थोड़ा कुछ जो है वो मिल जाता है। तो यही लाभ हैं इसके। और मैम अगर पोषण वाटिका की यहाँ पर बात हो रही है, पौष्टिक उद्यान की बात हो रही है, तो हम इसके बनाव के बारे में जानना चाहेंगे।
5: पोषण वाटिका बनाने के लिए सबसे पहले स्थान का चयन उसका बहुत ही अहम भूमिका होता है। ज़्यादातर ये स्थान घर के पीछे या आसपास ही होते हैं, जिससे कि थोड़ा कम समय मिलने पर भी काम करने में सुविधा रहती है
4: जी।
5: तथा घर में लगे नलकूप और कुएं का पानी तथा स्नान घर का पानी, रसोई घर में इस्तेमाल किया गया पानी पोषण वाटिका तक पहुँच सके और सिंचाई के लिए इस्तेमाल किया जा सके। स्थान चयन करते समय यह भी ध्यान देना चाहिए कि स्थान खुला हो ताकि उसमें सूरज की भरपूर रोशनी आसानी से पहुंच सके तथा जानवरों से सुरक्षित हो और उस स्थान की मिट्टी उपजाऊ हो। और जहां तक पोषण वाटिका के आकार का संबंध है तो वह जमीन की उपलब्धता, परिवार के सदस्यों की संख्या और समय की उपलब्धता पर निर्भर होता है। आयताकार आकार का वाटिका बनाना वर्गाकार आकार के वाटिका से हमेशा अच्छा होता है। 5 वयस्क सदस्यों वाले परिवार के लिए प्रतिदिन 250 ग्राम के हिसाब से एक परिवार के लिए सब्जियों की आवश्यकता पूरी करने के लिए 250 वर्ग मीटर का क्षेत्र पर्याप्त होता है
4: जी।
5: एक आदर्श पोषक वाटिका के लिए उपलब्ध 250 वर्ग मीटर क्षेत्र में बहुवर्षीय पौधों को वाटिका में उस तरफ लगा देना चाहिए जिससे कि अन्य दूसरे पौधों पर छाया ना पड़ सके। ना ही एक वर्षीय सब्जियों के फसल चक्र और उनके पोषक तत्वों की मात्रा में बाधा डाल सके। एक आदर्श पोषक वाटिका बनाने के लिए पूरे 250 वर्ग मीटर क्षेत्र को 8 से 10 वर्ग मीटर की क्यारियां में विभाजित कर इन बातों का ध्यान देना चाहिए। जैसे कि सबसे पहले ध्यान रहे कि गृह वाटिका का बनावट ऐसा होना चाहिए कि वो देखने में खूबसूरत लगे, बहुत अट्रैक्टिव सा लगे। वाटिका के चारों तरफ बाड़ का प्रयोग करना चाहिए जिससे तीन तरफ गर्मी व वर्षा के समय कद्दू वर्गीय बेल वाली लत्तर वाली सब्जियां जैसे लौकी, तुराई, छप्पन कद्दू, परवल, करेला वगैरह को चढ़ाना चाहिए तथा बची हुई चौथी तरफ गेट या प्रवेश द्वार लगाना चाहिए। फसल चक्र व सघन फसल पद्धति को अपनाना चाहिए। क्यारियों के बीच के मेड़ों पर मूली, गाजर, शलगम, चुकंदर, बाकला, धनिया, पुदीना, प्याज व हरे साग वगैरह उगाना चाहिए जो कि जल्दी से उग जाते हैं। वाटिका के दो कोनों पर गड्ढों होने चाहिए जिनमें से एक तरफ वर्मी कंपोस्ट यूनिट और दूसरी तरफ कंपोस्ट खाद का गड्ढा हो
4: जी।
5: जिसमें घर का कूड़ा करकट व फसल अवशेष डालकर खाद तैयार की जा सके। इन गड्ढों के ऊपर छाया के लिए सेम जैसी बेल चढ़ाकर छाया देना चाहिए ताकि इससे पोषक तत्वों की कमी भी नहीं होगी तथा गड्ढे भी छिपे रहेंगे। वाटिका में पपीता, अनार, नींबू, करौंदा, केला, अंगूर, अमरूद वगैरह के पौधा को सघन विधि से इस प्रकार किनारे की तरफ लगाना चाहिए जिससे कि सब्जियों पर छाया ना पड़े और पोषक तत्वों के लिए मुकाबले ना हो एक दूसरे से। फसल चक्र में कुछ यूरोपियन सब्जियां जैसे कि ब्रोकली, ब्रुसल स्प्राउट, केल, लीक, लेट्यूस आदि लगाना चाहिए जो कि पोषण तक तत्व से युक्त है और कैंसर जैसी बीमारियों से प्रतिरोधक

0: क्षमता रखते हैं। पोषक वाटिका को और अधिक आकर्षण बनाने के लिए उसमें कुछ सजावटी पौधे भी लगाए जा सकते हैं।
1: अच्छा मैम, यहाँ पर मॉडल पोषण वाटिका की हम बात करते हैं और आपने एक चीज कहा था फसल चक्र, तो उसमें हम जानना चाहेंगे कि एक मॉडल पोषण वाटिका बनाने के लिए फसल चक्र क्या है, इसके बारे में बताएं।
0: एक मॉडल पोषण वाटिका बनाने के लिए फसल चक्र अपनाना चाहिए। फसल चक्र कहने का मतलब है कि सालों भर हम इस तरह सब्जियां लगाएं कि हमको सालों भर हर तरह के विभिन्न प्रकार के सब्जियां मिलता रहे एक परिवार के लिए।
1: अच्छा।
0: मैंने पहले भी बताया कि हम जो हमारा वाटिका है उसको कई प्लॉट्स में बांट लेते हैं, 7-8 प्लॉट में बांट लेते हैं और सभी प्लॉट्स में सालों भर तरह तरह की सब्जियां लगाते हैं। जैसे कि मानिए पहला प्लॉट है तो उसमें जुलाई से अक्टूबर में अगेती फूलगोभी के साथ अंतर फसल के रूप में पालक ले सकते हैं, नवंबर से मार्च में आलू ले सकते हैं और अप्रैल से जून में चौलाई। इसी तरह दूसरे प्लॉट में बढ़े तो दूसरे प्लॉट में अक्टूबर से फरवरी में पत्ता गोभी के साथ अंतर फसल के रूप में सलाद पत्ती, मार्च से जून के बीच में भिंडी और जुलाई से सितंबर के बीच में मूली।
1: तो ये फसल चक्र अपनाना बहुत जरूरी है।
0: हाँ, इसी तरह तीसरे प्लॉट में जुलाई से मार्च के बीच में बैंगन और अंतर फसल के रूप में पालक। अगर आप नोट करना चाहें तो आप नोट भी कर सकते हैं, ये फसल चक्र अपनाना काफी जरूरी है। इस तरह से तीसरे प्लॉट में मैंने बताया कि जुलाई से मार्च के बीच में बैंगन और साथ में अंतर फसल के रूप में पालक, अप्रैल से जून के बीच में चौलाई। चौथे प्लॉट पे आते हैं तो आप अक्टूबर से फरवरी के बीच में पछेती फूल गोभी के साथ अंतर फसल के रूप में गांठ गोभी और मार्च से सितंबर के बीच में बैगन के साथ अंतर फसल के रूप में लाल साग।
1: अच्छा।
0: नवंबर से मार्च के बीच में पांचवे प्लॉट में आप प्याज लगा दें और जून से अक्टूबर के बीच में आप भिंडी का सब्जी का उपयोग आप कर सकते हैं, लगा सकते हैं। और छठे प्लॉट में सितंबर से दिसंबर के बीच में पत्ता गोभी या दिसंबर में आप गांठ गोभी, जनवरी से मई के बीच में करेला और जून से अगस्त के बीच में लोबिया बरसाती वाली। सातवें प्लॉट में अगस्त से दिसंबर में आप टमाटर, अगेती टमाटर और जनवरी से जून के बीच में प्याज आप उगा सकते हैं। सितंबर से दिसंबर के बीच में आप आठवें प्लॉट में आलू, अगेती वाली लगा दें, जनवरी से मई के बीच में फूट, ककड़ी आदि लगा सकते हैं और जून से अगस्त के बीच में हरी खाद के रूप में लोबिया। इसके अलावा अन्य सब्जियों की भी जरूरत के मुताबिक आप लगा सकते हैं, कद्दू वर्गीय या बेल वाली या लत्तर वाली सब्जी जैसे लौकी, तुरई, छप्पन कद्दू, परवल, करेला, मैंने पहले भी बताया, को बार पे चढ़ाना चाहिए और दो क्यारियों के बीच में मेड़ों पर आप जल्दी से कम अवधि वाली उगने वाली सब्जी जैसे मूली, गाजर, शलगम, चुकंदर, बाखला, धनिया, पुदीना, प्याज, हरा प्याज, साग वगैरह लगा सकते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि अगर परिवार के सभी सदस्य थोड़ा श्रम कर गृह वाटिका में सफलतापूर्वक फल और सब्जी उपजा लें तो ना सिर्फ सालों भर विभिन्न प्रकार की ताजी सब्जियां प्राप्त होती है बल्कि यह मनोरंजन और व्यायाम का भी एक अच्छा साधन सिद्ध होता है। इससे घरेलू आय में भी वृद्धि होगी। अतः पोषण वाटिका हमारे स्वास्थ्य, समृद्धि और बुद्धिमता की एक कुंजी है।
1: तो आपने जाना किसान भाइयों, या फिर मैं यूं कहूँ कि हमारे जितने भी श्रोता हैं वो भी पौष्टिक उद्यान एक बना सकते हैं, पोषण वाटिका बना सकते हैं, अपने घर के आगे जो बची खुची ज़मीन होती है उसका इस्तेमाल करके इसके क्या लाभ हैं आपने वो भी जाना, साथ ही एक मॉडल पोषण वाटिका के बारे में आपने जाना, फसल चक्र कितना ज़रूरी है ये भी जाना आपने। तो बस जानना ज़रूरी नहीं है, आप अगर चाहते हैं करना तो आप आगे बढ़ें, अपने कदम आगे बढ़ाएं और ज़रूर पोषण वाटिका बनाएं। देखिए अगर आप ये कदम उठाते हैं तो जो लोग आपके घर आते हैं, जो लोग आपके इस काम को देखते हैं वो भी चाहते हैं कि हम भी कुछ ऐसा करें। तो एक कदम आप बढ़ाइए और फिर जनता तो आपके पीछे आ ही जाएगी। बस आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी 90.8 FM ग्रीन पर। तो सुनते रहें उन्नत कृषि कार्यक्रम। उन्नत कृषि
2: अरे यार फिर पिट गया। बेल देना। इसको आउटसाइड द ऑफ टाइम डालना चाहिए था, इसकी यही प्रॉब्लम है।
3: कब से?
2: जब से क्रिकेट खेल रहा है तभी से।
3: अरे भाई साहब क्रिकेट की नहीं हो, आपकी खांसी की।

0: भी हारेगा देश जीतेगा।
1: अटेंशन अटेंशन अटेंशन ऑल द लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज टू रिमाइंड यू ऑल अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ इम्यूनाइजेशन। इफ योर किड्स आर 5 और लेस हु हैव मिस्ड अ वैक्सीन, हियर दिस अपील। Getting them vaccinated immediately is the key. For their safety and health, it is a wise request. Protecting them from less to be their best. And remember, vaccination is safe and it saves your children from deadly diseases. So, see you at the vaccination center soon.
2: To get more information about vaccination, visit your nearest health facility center.
3: सुनो सुनो मेहरबान कदरदान, मम्मी पापा दादा दादी चाचा चाची बहनों भाइयों अड़ोसी पड़ोसी आंटी अंकल, मेरी बात पर भी दो जरा ध्यान।
4: अरे टीकू, स्क्रिप्ट में मेरा डायलॉग है, तुम ढोल बजाओ मैं बताती हूँ।
5: सुनो सुनो

0: सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: चल टिक्की, अभी हमें और भी गांव जाना है।
2: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
3: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 22 से 26 जुलाई के दौरान आसमान में घने बादल छाए रहेंगे और जिले में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी चलने और हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 26 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 90 प्रतिशत और दोपहर में 70 से 80 प्रतिशत रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए। जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दें, पिछले कुछ दिनों में हुई वर्षा का लाभ उठाइए और आगे भी संभावना है कि वर्षा होगी, तो ऐसी स्थिति में धान की रोपाई के लिए व्यवस्था सुनिश्चित कर ले। रोपाई से पहले प्रति हेक्टेयर 25 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस, 30 किलोग्राम पोटाश और 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट का प्रयोग करें। आपको बता दें कि निचली जमीन के चारों ओर मजबूत मेड़ यानी कि बांध बनाकर वर्षा जल का संचयन कर ले, ताकि जरूरत पड़ने पर आप वर्षा के जल का सिंचाई में उपयोग कर सके। जो किसान भाई बहन श्री अन्न की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दें, मोटे अनाजों की खेती के लिए उचास भूमि का चयन करें। मड़वा की वकुला KMR 316, GPU 67 और VL 379 राजेंद्र मड़वा RU 8 और RU 3। और आपको बता दें कौनी की अनुशंसित किस्में हैं राजेंद्र कौनी 1। आप इन किस्मों की बुआई कर सकते हैं। मक्का की खेती करने वाले किसान भाई बहन ध्यान दें, खरीफ मक्का की बुआई आसमान साफ रहने पर ही करें। खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और ध्यान रखें कि बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नेत्रजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश जरूर डालें। अनुशंसित मक्का की किस्में जैसे सुवान देवकी, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, राजेंद्र संकर मक्का 3, गंगा 11 है। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, मिर्च, अगाध गोभी, टमाटर जैसी सब्जियों की नर्सरी तभी तैयार करें जब आसमान साफ हो। और बागवानी करने वाले भाई बहन ध्यान दें, जुलाई अगस्त आम के पौधों के रोपण के लिए सबसे उपयुक्त समय होता है। कलमी पौधों की रोपाई 10x10 मीटर और बीजू पौधों की रोपाई 12x12 मीटर की दूरी पर करें। सघन बागवानी के लिए 5x5 मीटर और अम्रपाली के लिए 2.5x2.5 मीटर की दूरी रखें। फलदार वृक्षों में प्रति वर्ष 1 किलोग्राम नाइट्रोजन, 30 किलोग्राम फास्फोरस, 700 किलोग्राम पोटाश और 80 से 100 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद जरूर डालें। आपको बता दें इस समय केला के स्वस्थ सकर्स की रोपाई करें। लंबी किस्मों जैसे अल्पान, कंथली, मालभोग, चिनिया, जी9 और बॉनी किस्में जैसे ग्रैंड नेन,

रोबस्टा बसराई का चयन करना सबसे फायदेमंद होता है। लंबी किस्मों के लिए 2x2 मीटर और बौनी किस्मों के लिए 1.5x1.5 मीटर की दूरी रखें। प्रत्येक गड्ढे में 5 किलोग्राम गोबर की खाद, 500 ग्राम अरंडी की खली, 300 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट, 100 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश और 10 ग्राम कार्बोफ्यूरान मिलाना न भूलें। रोपाई से पहले सकर्स को कार्बन डाइजीन 2 ग्राम प्रति लीटर पानी से उपचारित करें। किसान भाई बहनों, टिश्यू कल्चर पौधे का उपयोग अधिक उत्पादन के लिए लाभकारी होता है। पशुपालक भाई बहन ध्यान दें, पशुओं में PPR, MFD यानी कि खुरपका मुंहपका और HS यानी कि गला घोटू, इन रोगों का खतरा अधिक है। इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण करवाएं, उन्हें साफ और सूखा रखें और बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। रोग के लक्षण अगर दिखाई दे तो तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें और ध्यान रखें कि पशुओं की बिना जरूरत के आवाजाही पर नियंत्रण रखें। गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए जून माह में अगर टीके नहीं लगाए गए हों तो इस महीने में टीके जरूर लगवा दें। पशुओं को संतुलित और पौष्टिक आहार दें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

0: उन्नत कृषि। नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन। स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम उन्नत कृषि कार्यक्रम में। जी हाँ, किसान भाइयों के बहुत सारे सवाल आते हैं कि उनके खेतों में खरपतवार प्रबंधन कैसे करें, अगर दाल की बात करें कि उड़द दाल की वैज्ञानिक खेती कैसे करें। बहुत सारे दिक्कतें उन्हें आती हैं इस खेती में और ख़ास तौर पर उड़द दाल की खेती में, तो उनकी समस्याओं का समाधान लेकर आज हमारे बीच हैं डॉक्टर आर.एन. गुप्ता। मैं आपको बता दूँ, ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं प्लांट पैथोलॉजी डिपार्टमेंट बिहार एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी सबौर से, और बहुत सारी जानकारी आज हमारे किसान भाइयों को डॉक्टर साहब देने वाले हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है डॉक्टर साहब। जी डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हम अपने राज्य बिहार की बात करें, तो उड़द की जो खेती होती है बिहार में, तो क्या महत्व है इसका?
1: जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उड़द जो है एक खरीफ मौसम में और गर्मा मौसम में उगाई जाने वाली एक प्रमुख दलहनी फसल है, और हमारे बिहार में इसका काफ़ी स्कोप है, क्योंकि हमारे यहाँ जो है बिहार में करीब करीब 2 से 2.5 लाख के आसपास का जो है धान की कटाई के बाद खेत जो है करीब करीब 90 दिनों के आसपास वो खाली पड़े रहते हैं, तो इन जगहों का हम समुचित उपयोग करके इसका जो है दायरा जो है इसको हम बढ़ा सकते हैं। अभी इसमें मुश्किल से जो है 20 से 25 हजार हेक्टेयर के आसपास बिहार में इसकी खेती की जाती है, तो इसका काफ़ी दायरा बढ़ाया जा सकता है और ये काफ़ी कम समय में और अच्छा उत्पादन दे सकता है, और इसके साथ साथ जो है हमारी आमदनी तो बढ़ती ही है तथा हमारी जो है भूमि की उर्वरा शक्ति भी बढ़ती है, तो ये हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है।
0: जी जी डॉक्टर साहब, अगर वैज्ञानिक खेती की बात करें हम, तो हमारे किसान भाइयों को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कब बुआई करें, सिंचाई कैसे करें, सारी बातें इसमें शामिल होती हैं, तो उनके बारे में बताएं थोड़ा।
1: सबसे पहले है कि आपको जो उड़द फसल लेनी है तो उसके लिए सबसे पहले कि खेतों को बढ़िया से जुताई करनी चाहिए, कल्टीवेटर के द्वारा उसकी जुताई की सकते हैं, हल बैल के द्वारा भी उसकी जुताई कर सकते हैं, और जुताई के बाद उसमें पाटा लगा देते हैं, और इसमें हमेशा ये ख्याल रखें कि जो है हमारा ज़मीन जो है वो समतल हो। अगर ज़मीन हमारा समतल रहेगा तो हम जो है हर तरह से जो है उसका सही उपयोग कर सकते हैं, खासकर पौधे में जो जल की जमाव की समस्या हो या जल की कमी की समस्या हो या पोषक तत्व का जो प्रबंधन की समस्या हो, उससे ये कमी हो जाती है, तो ये भूमि समतलीकरण काफ़ी आवश्यक है। इसलिए हमारा जो ज़मीन है, जो खेत है, वो समतल होना चाहिए, क्योंकि उड़द की फसल में जल जमाव के कारण भी जो है काफ़ी इससे नुकसान होता है। तो सबसे पहले जो है हमारा खेतों की तैयारी अच्छी तरह से कर लें, और उसमें जो है जल निकास की प्रबंधन की भी व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि जड़ों में जो है जमने की समस्या ये ना हो। तो खेत की तैयारी पहली बात कर लें। दूसरी बात है कि जो है किन किन जो है हम किस्मों का चुनाव करें, तो इसमें बहुत सारी प्रजातियां हैं, जैसे नवीन प्रजाति है, T9 है, उड़द 30 और उड़द 31, ये सब प्रजातियाँ जो है हमारे बिहार के लिए काफ़ी उपयुक्त है, और ये जो है करीब हमको 80 से 85 दिन और करीब करीब 90 दिन के आसपास ये हम लोग को तैयार हो जाती है
0: जी।
1: तो ये हमारे लिए काफ़ी बिहार के लिए उपयुक्त प्रजातियां हैं, तो हम सही प्रजातियां का चुनाव करना ज़रूरी है, ताकि जो है इसमें रोग की समस्या, कीड़ों की समस्या साथ साथ जो है हमारा उत्पादन भी ज़्यादा रहता है, तो ये उन्नत किस्मों का चुनाव करना आवश्यक है
0: जी।
1: दूसरी बात रही कि जो है बीज की मात्रा, तो बीज की मात्रा अगर गर्मा उड़द करते हैं, गर्मियों में करते हैं जिसका तो अभी समय नहीं है, तो उसमें हमको जो है 20 से 25 केजी प्रति के हेक्टेयर के हिसाब से आवश्यकता पड़ती है। अगर हम खरीफ के मौसम में करते हैं, जिसकी जो है अवधि आपकी जुलाई के 15 जुलाई से लेके प्रथम पखवाड़े में अगस्त के कर सकते हैं इसको, तो 15 जुलाई से 15 अगस्त तक इसकी जो है जो बुआई की समय है, इसमें अगर हम करते हैं तो हमारा जो है उत्पादन इसमें बढ़ जाता है
0: जी।
1: तो हमारा जो है बुआई इस पीरियड में करना आवश्यक है। दूसरी बात जो है एक प्रमुख चीज़ें हैं जो हमेशा हर किसान को करना चाहिए, वो बीज का चयन करने के बाद बीज का जो है सही ढंग से उपचार भी करना आवश्यक है। अगर हम बीज उपचार नहीं करते हैं तो हमको जो है आने वाले दिनों में बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ता है, तो अगर हम समुचित ढंग से उसका जो है बीज उपचार करते हैं तो उससे हमारा जो है कीटाणुओं या हमारा रोग है उससे काफ़ी जो है निदान पा सकते हैं और साथ साथ जो है उत्पादन भी बढ़ती है। तो अगर किसान भाई अगर बीज उपचार करना जानते हैं, फिर भी मैं एक बार चाहता हूं कि इसकी हम चर्चा कर दें, क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण घटक है हमारे उत्पादन का। तो इसमें सबसे पहले क्या करते हैं कि हम जो है फंजीसाइड कवकनाशी उसका इस्तेमाल करते हैं, दूसरा जो है कीटनाशक का प्रयोग करते हैं, और तीसरा जो है राइजोबियम का उपचार करते हैं। तो सबसे पहले हम कवकनाशी से करते हैं, जिसको अंग्रेजी में फंजीसाइड बोलते हैं। इसमें जो है सबसे प्रमुख जो फंजीसाइड है वो आपका कार्बेंडाजीम है, जो कि मार्केट में वेबिस्टिन के नाम से आती है, और दूसरी दवा जो है कार्बोक्जिन है, जो वीटावैक्स पावर के नाम से आती है। इसका जो है 2 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से उपचार करते हैं, और इसके 12 घंटे के अंतराल के बाद हम फिर उसको कीटनाशी से प्रयोग करते हैं। कीटनाशी में मुख्यतः जो है क्लोरोपायरीफॉस का इस्तेमाल करते हैं, जो कि हमारे खेतों में कहीं कहीं दीमक की समस्या होती है, उससे भी हम इसको फ़ायदा पहुंचता है। तो क्लोरोपायरीफॉस दवा की जो है 10 ml दवा जो है प्रति किलो बीज के हिसाब से लेते हैं। और रही बात जो है तीसरा जो इसका जो अवयव है वो आपका राइजोबियम है, राइजोबियम से उपचार करते हैं। तो राइजोबियम से उपचार करने के लिए क्या है कि 500 ml पानी में उसमें 50 ग्राम हम गुड़ या शक्कर दे देते हैं, उसको फिर गर्म कर लेते हैं, और गर्म करने के बाद उसमें हम राइजोबियम कल्चर जो कि 200 ग्राम का पैकेट होता है उसमें डाल के उसमें पूरी तरह से मिला लेते हैं ठंडे होने के बाद, और उस जो है राइजोबियम कल्चर को फिर हम बीजों पे पूरी तरह से उसको मिक्स कर देते हैं, हाथों से पूरी तरह से मिक्स कर देते हैं, ताकि हर बीज पे जो है वो गुड़ का एक लेयर चल जाए, ताकि राइजोबियम पूरी तरह से उससे जुट जाए। तो इस तरह से उपचार करने के इसके 5 से 6 घंटे के बाद, अगर ये शाम में करते हैं तो अगले दिन सुबह में इसकी बुआई कर देते हैं। अगर ये तीनों चीज़ों का प्रयोग करते हैं तो निश्चित रूप से जो है बीज उपचार का आपको फ़ायदा मिलेगा। तो बीज उपचार जो है बहुत ज़रूरी चीज़ है। दूसरी बात रही कि जो है पोषक तत्वों का प्रबंधन के लिए, तो पोषक तत्व प्रबंधन में जो है करीब करीब जितनी भी दलहनी फसलें हैं उसमें 20 किलोग्राम नाइट्रोजन और 40 किलोग्राम फास्फोरस की आवश्यकता होती है, और जिन खेतों में जिंक की समस्या होती है उन खेतों में जो है 25 किलो जिंक सल्फेट का जो है हम लोग इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जिंक की समस्या भी हमारे खेतों में प्रायः देखा जाता है, जिसका असर जो है हमारे पौधे पे होता है, और उन बीजों के द्वारा या जो भी अन्न उससे उत्पादन होता है उसमें भी जिंक की कमी होती है, और इसका जो है कमी अगर हमारे अन्न में नहीं रहेगा तो हमारे शरीर में भी जिंक की कमी पाई जाती है। तो हमारे शरीर में भी जिंक की उपलब्धता के लिए खेतों में जो है जिंक का प्रयोग करना आवश्यक है। तो इसके साथ उत्पादन भी बढ़ता है और उसकी गुणवत्ता भी बढ़ जाती है
0: जी।
1: तो इस तरह से हम पोषक तत्वों का प्रबंधन करते हैं। दूसरी बात रही कि जो है सिंचाई की व्यवस्था, सिंचाई की व्यवस्था, तो इनमें जो है खरीफ फसलों में जो है बारिश तो होती ही है, अगर नमी की कमी हो खेतों में तो उसमें सिंचाई करना आवश्यक है। इसका जो है 2 क्रांतिक अवस्था होती है जिस समय सिंचाई करना आवश्यक होता है, एक फूल लगने के समय, उस समय अगर हम सिंचाई करते हैं या खेतों में पर्याप्त नमी है तो आवश्यकता नहीं है, अगर नमी की कमी है तो फूल बनने की अवस्था में जो है एक सिंचाई करना आवश्यक है, और दूसरी जब फलियां बनने लगती है उस समय जो है सिंचाई की आवश्यकता होती है। तो 2 कम से कम आवश्यक रूप से करें, ताकि जो है जो हमारा जो अन्न बने, जो दाल बने, उसमें काफ़ी जो है गुणवत्तापूर्ण बने और उसका पूर्ण विकास हो सके। तो इस तरह से हम उसका जल का प्रबंधन करते हैं। और जो है सबसे प्रमुख समस्या होती है कीट और बीमारियों की समस्या होती है, तो कीटों में जो है कुछ कुछ बीमारियां लगती है, जो फली मक्खी है जो हमारे विषाणु जनित रोग है उसके वाहक का भी काम करते हैं। दूसरी जो है फली छेदक की समस्या आती है, और बहुत सारे खेतों में दीमक की समस्या आती है। तो अगर फली मक्खी की समस्या आपको खेतों में है तो उसमें एक दवा आती है इमीडा क्लोरोप्रीड, उसकी जो है 1 ml दवा 3 लीटर पानी में उसको स्प्रे करते हैं, और आवश्यकता के बाद फिर हम उसको 15 दिनों के बाद उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से हम फली मक्खी का उससे निजात पा सकते हैं। दूसरी बात रही हमारी जो फली फेदक की समस्या है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण कीट है, तो सबसे पहले इसकी निगरानी करनी जो अवस्था निगरानी करना जरूरी है, और आरंभिक अवस्था में ही जैसे ही दिखाई पड़े तो प्रारंभिक अवस्था में ही दवा का इस्तेमाल कर देना चाहिए। उसमें एक दवा आती है प्रोनोफोस, उसकी जो है 1 ml दवा प्रति लीटर पानी, प्रोपेनोफोस दवा आती है उसका 1 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से हम उसको इस्तेमाल करते हैं, फिर ज़रूरत पड़ने पर 15 दिनों के बाद उसका एक छिड़काव और कर देते हैं तो इससे कमी आ जाती है। और जिन खेतों में टर्माइट की समस्या है, दीमक की समस्या है, वैसे खेतों में जो है 25 किलो क्लोरोपाइरीफॉस जो कि धूल के रूप में भी मिलता है बाज़ार में, उसका भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये प्रमुख कीटों का हम इस तरह से इसको रोकथाम कर सकते हैं। और दूसरी जो समस्या आती है, बहुत सारी समस्या बीमारियों की समस्या आती है, तो बीमारियों में जो है खासकर जो है पीली चितेरी रोग पाया जाता है जो कि एक काफ़ी महत्वपूर्ण जो है ये रोग है। इससे काफ़ी नुकसान होता है, 70-80% तक इसका नुकसान होता है। तो इससे बचाव करने के लिए सबसे ज़रूरी है आपका जो है जो फली मक्खी है इसके रोग वाहक का काम करते हैं, और ये फली मक्खी जो है स्वस्थ पौधों से जो है बीमार पौधे से रस चूसकर और स्वस्थ पौधों में जो है ये फैला देती है, तो ये काफ़ी तेज़ी से फैला देते हैं। तो इसलिए जैसे ही इस रोग के लक्षण दिखाई पड़े, लक्षण में है कि पत्तियां जो है हल्की हरी और पीली हो जाती है और चितीदार हो जाती है, इसलिए इसको पीली चितेरी रोग बोलते हैं। तो जैसे ही लक्षण दिखाई पड़े तो उस पौधे को हम लोग को पहले वहाँ से हटा देना चाहिए, उखाड़ के वहाँ से हटा देना चाहिए, या तो ज़मीन में गाड़ देना चाहिए या इसको कहीं जला देना चाहिए दूर के क्षेत्रों में, क्योंकि यही हमारा सोर्स का इन्फेक्शन काम करता है, जिससे जो है वायरस को जो है वो हमारे फली सफ़ेद मक्खी है वो अपने आप में अर्जित करती है और स्वस्थ पौधों में फैला देती है। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि जो हमारा सफ़ेद मक्खी है उसका नियंत्रण करना आवश्यक है। तो सबसे पहले जो हमारा सोर्स जो बीमार पौधे हैं उसको हटाना ज़रूरी है, और उसके बाद जो है सफ़ेद मक्खी को नियंत्रण करने के लिए जो दवा मैंने बताया इमिडोक्लोरोप्रीड दवा आती है उसकी 1 ml दवा 3 लीटर पानी में इस्तेमाल करके छिड़काव करते हैं तो सफ़ेद मक्खी से हम इसका नियंत्रण पा सकते हैं। तो ये जो फलियों का नुकसान करते हैं साथ साथ जो बीमारियों का प्रकोप को भी बढ़ाते हैं, तो इसलिए इसका इस्तेमाल करना ज़रूरी है। अगर इस तरह से करते हैं तो इस रोग से हम लोग नियंत्रण कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी विषाणुजनित रोग होती है, जैसे लीफ क्रिंकल रोग जिसमें पत्तियां जो है सिकुड़ जाती है और समय से पहले जो है झड़ जाती है और इसमें बहुत कम फलियां लगती है और यह पौधे में काफ़ी जो है नुकसान पहुँचाते हैं। तो ये भी जो है हमारे बीज जनित भी होती है, साथ साथ कहीं कहीं ये सफ़ेद मक्खी के द्वारा भी फैलते हैं, इसको भी हम उसी तरह से नियंत्रण कर सकते हैं। और दूसरी बीमारी एक लीफ कर्ल आती है, वो जो है थ्रिप से फैलती है, तो उसको भी नियंत्रण करने के लिए हम इस दवा का इस्तेमाल करके इसको रोक सकते हैं। और कुछ बीमारियां जो है फफूंद जनक होती है और ख़ासकर जो उकठा की समस्या है वो प्रायः सभी पौधों में, सभी जो है जितनी भी दलहनी फसलें में है सभी में पाई जाती है और इसमें भी पाई जाती है। तो इससे बचने के लिए सबसे बड़ी बात है कि आपको बीज का उपचार करना ही इसका कारगर उपाय है। और जो हम जो फसल लगाते हैं तो उसमें पौधे से पौधे की दूरी जो है 30 सेंटीमीटर, क्यारी लाइन से लाइन जो है पंक्ति से पंक्ति 30 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर रखते हैं। तो अगर इस तरह से हम करते हैं, लाइन स्विंग करते हैं, तो उसमें जो है हमारी बीमारियाँ कम आती है, क्योंकि हर पौधे को जो है समुचित प्रबंधन मिलता है तो पौधे मजबूत होते हैं और स्वस्थ होते हैं। और अगर बीज उपचार करते हैं तो इसको हम कम कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी और बीमारियां आती है, एंथ्रेक्नोज बीमारी आती है, वो भी एक फफूंद जनित रोग होते हैं, पत्तियों पर जो है छोटे भूरे रंग के धब्बे बनते हैं और किनारे में हल्के लाल रंग के धब्बे बन जाते हैं, तो इससे हम पता चलता है कि हमारे सर्कोस्पोरा रोग से ग्रसित है और पत्तियाँ जो है समय से पहले ही झड़ जाती है, इससे भी हमारे उत्पादन में काफ़ी कम होता है। तो अगर इस तरह की समस्या आती है तो इसमें एक दवा आती है कार्बेंडाजिम प्लस मैनकोजेब का मिक्सर आता है मार्केट में, सांप के नाम से भी मिलती है, तो इसका प्रयोग करने से अगर 1 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से इसको हम स्प्रे कर देते हैं तो कुछ हद तक जो है इससे हम निजात पा सकते हैं। और दूसरी जो है पत्तियों पर होने वाली बीमारी है चूर्णी रोग बोलते हैं, जिसको पाउडरी मिल बोलते हैं, ये प्रायः खेतों में देखा जाता है। इसमें पत्तियों पर से है सफ़ेद पाउडर रंग का दिखाई पड़ते हैं और धीरे धीरे कालांतर में जो है पत्तियां पर जो है सफ़ेद से ये हल्के धूसर रंग के हो जाते हैं और पत्तियां भी जो है इसमें झड़ना शुरू हो जाती है, ये भी हमारे उत्पादन को कम करते हैं। तो इस तरह के अगर लक्षण दिखाई पड़े खेतों में तो उसमें जो है विटेबल सल्फर घुलनशील गंधक के नाम से मिलता है, ये सस्ती दवा है, इसका 3 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से हम इस्तेमाल करते हैं तो इस रोग का हम प्रबंधन कर सकते हैं
0: जी।
1: तो इस तरह का ये बीमारियां हैं, कुछ बीमारियां जो है और खासकर जितने भी कवक जनित बीमारियां हैं जो पत्तियों पे होती हैं उसमें जो मैंने दवा बताया कार्बेंडाजीम और मैनको जो मिश्रित दवा, इसका जो है 1 से 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से अगर हम उसका छिड़काव करते हैं जैसे ही लक्षण दिखाई पड़े तो उससे हम इसको रोकथाम कर सकते हैं। एक बीमारियां जो है बैक्टीरिया के द्वारा होता है तो उसको बोलते हैं जीवाणु भूरी धब्बी रोग, ये जैंथोमोनास के द्वारा होता है। इसमें भी पत्तियों पे छोटे छोटे भूरे रंग के धब्बे बन जाते हैं और क्रांत में पत्तियाँ जो है वो झड़ जाती है और ये भी उत्पादन में कमी लाती है। तो इसका अगर खेतों में अगर दिखाई पड़े तो ऐसे में जो है स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है उसकी दवा का जो है 0.25 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से हम उसको इस्तेमाल करते हैं 15 दिनों के अंतराल पर, तो इस रोग से काफ़ी हद तक जो है हम इसको नियंत्रण कर सकते हैं
0: जी।
1: तो ये सब लगने वाली जो है कुछ कीट व्याधियों की समस्या है। और जहाँ तक रही खरपतवार की समस्या के लिए तो जैसे ही हम बुआई करते हैं बुआई के 2 दिन के अंदर जो है पेंडीमिथिलिन दवा आती है उसका जो है 3 ml प्रति लीटर के हिसाब से अगर हम इस्तेमाल करते हैं छिड़काव करते हैं तो आरंभिक अवस्था में इसको रोकते हैं। और महीने 3 के बाद एक अगर निकौनी कर लेते हैं या खुरपी के द्वारा भी कर सकते हैं अगर छोटी जगह पे हो तो, अगर इस तरह से हम कर लेते हैं अगर प्रारंभिक अवस्था में केमिकल के द्वारा और बाद में जो है निकौनी के द्वारा कर सकते हैं इसके, तो उसके काफ़ी जो है खरपतवार को इसको रोक सकते हैं। अगर इस तरह से हम पूरी तरह से समग्र क्रियाओं को अगर सम्मिलित करके अगर खेती करें तो निश्चित तौर पे हमारा उत्पादन बढ़ जाता है और इसमें हम 10 क्विंटल से 12 क्विंटल तक भी हम इससे उत्पादन ले सकते हैं। और जो भी हमारा ज़मीन जो खाली रहता है तो उसका हम सही ढंग से इस्तेमाल करके अपना जो है उत्पादन और आमदनी को बढ़ा सकते हैं
0: जी। तो किसान भाइयों यहाँ पर पूरी जानकारी मिली आपको, उड़द दाल की वैज्ञानिक खेती आप कैसे कर सकते हैं, सारी बातें डॉक्टर साहब ने बताई आपको कि बुआई कब करना है, सिंचाई कैसे करना है, कौन कौन से रोग लगते हैं उनका निवारण आपको कैसे करना है, कौन सी दवाइयाँ आपको देनी है। तो आशा करते हैं कि अगर आप इसकी खेती के बारे में सोच रहे हैं तो इस वार्ता को एक बार ज़रूर सुनिए, आपको लाभ मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही, अगले दिन एक अलग विषय के साथ हम हाजिर होंगे इसी फ्रिक्वेंसी 90.8 MHz पर। नमस्कार।

0: देखो ना तो देखो।
1: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं? हाँ या ना?
2: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
1: हाँ। इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
2: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
3: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
1: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
4: क्या क्या क्या?
2: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
4: अच्छा,
0: तो सबकी समझ में आ गया ना? खसरा रुबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाए जड़ तक।
2: टीकू, तेरे कितने दोस्त है?
5: तीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और...
2: और तुम्हारी वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
5: 11 दोस्त?
2: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
5: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
2: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
5: लेकिन ऐसा क्यों?
2: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
5: टीकी, तो इसका हल क्या है?
2: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
0: याद रखो,
5: आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
6: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
7: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
6: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
7: आपकी सेहत की बातें,
6: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
7: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
6: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
7: वो कहाँ पर?
6: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
7: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
6: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन, और मैं हूँ आपके साथ आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आज लेडीज फर्स्ट कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही जरूरी टॉपिक के बारे में, यानी कि पोस्टपार्टम हेमरेज के बारे में। पोस्टपार्टम हेमरेज का मतलब होता है प्रसव के बाद अत्यधिक रक्तस्राव, और इस बारे में जागरूकता होना बहुत जरूरी है। पूरी दुनिया में मातृ मृत्यु का सबसे बड़ा कारण जो है वो PPH है, यानी कि पोस्टपार्टम हेमरेज है, जिसे कि हम प्रसव के बाद अत्यधिक रक्तस्राव, जिसे कि हम आम भाषा में कहते हैं प्रसव के बाद बहुत अधिक खून का बहना। वहीं अगर हम भारत की बात करें तो भारत में मातृ मृत्यु का, यानी कि गर्भवती महिलाओं के मौत का सबसे बड़ा कारणों में से एक PPH है। ये माँ के जीवन के लिए सबसे बड़ा खतरा होता है, लेकिन अगर समय पर पहचान की जाए और सही से इलाज हो तो माँ की जान बचाई जा सकती है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि PPH होता क्या है। अगर आम भाषा में कहें तो प्रसव के बाद ज़्यादा खून बहना, और मेडिकल भाषा में कहें तो पोस्टपार्टम हेमरेज। ये डिलीवरी के तुरंत बाद या कुछ दिन बाद भी हो सकता है, और इसीलिए कहते हैं कि जिन औरतों की अभी अभी डिलीवरी हुई है उन्हें 24 घंटे के लिए, कम से कम 24 घंटे के लिए अकेला बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए। तो आइए अब जानते हैं कि ये आखिर होता क्या है, इसके मुख्य कारण क्या है। PPH होने के 4 बड़े कारण होते हैं, जिनमें से एक है गर्भाशय का ढीला पड़ जाना। इसमें क्या होता है कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसके बाद गर्भाशय को सख्त होना चाहिए, लेकिन इसके उलट गर्भाशय कई बार ढीला रह जाता है, और अगर वो ढीला रह जाता है तो जो खून होता है वो रुकता नहीं और लगातार बहता रहता है। और इसका जो दूसरा कारण है वो ये है कि डिलीवरी के दौरान माता को चोट लग जाना। कई बार क्या होता है कि बच्चेदानी, योनि या तो फिर बाहर के हिस्से में चोट की वजह से ये हिस्से फट जाते हैं और खून बहुत ज़्यादा बहने लग जाता है। तीसरा कारण ये है कि नाल या उसके टुकड़े अंदर रह जाते हैं, जिसकी वजह से भी खून लगातार बहता रहता है। और कुछ महिलाओं में खून जमने की भी दिक्कत होती है, उन्हें अगर आम से भी कोई चोट लग जाए तो उनका खून जमता नहीं है। और प्रसव के दौरान जब खून बहता है तो ऐसे बीमारियों में जिन्हें खून जमने की पहले से दिक्कत है उन्हें बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है और उनका खून लगातार बहता रहता है। आइए अब हम बात करते हैं कि किस माँ को ज़्यादा खतरा होता है। जिन गर्भवती महिलाओं को पहले प्रसव में भी ज़्यादा खून बहा हो उन्हें दूसरी डिलीवरी में भी ज़्यादा खतरा रहता है, और जिनका डिलीवरी बहुत लंबा चला हो उन्हें भी ज़्यादा खतरा होता है। जिनके पेट में ज़्यादा पानी हो या फिर दो बच्चे हों तो उन्हें भी इस बात का यानी कि PPH का खतरा रहता है। वहीं जिन महिलाओं को पहले से खून की कमी है यानी कि एनेमिक है उन्हें भी PPH का खतरा रहता है। और वहीं आपने सुना होगा कि डॉक्टर्स भी कहते हैं कि किसी को भी बार बार बार बार माँ नहीं बनना चाहिए, यानी कि बार बार डिलीवरी के प्रोसेस से नहीं गुजरना चाहिए। जिन महिलाओं को बार बार डिलीवरी होती है उन्हें भी PPH होने का खतरा होता है। जिन भी महिलाओं की बार बार डिलीवरी होती है उनका शरीर वैसे भी काफ़ी कमज़ोर हो जाता है, ऐसे में उन्हें PPH का खतरा भी काफ़ी ज़्यादा रहता है। अब तक हमने ये जान लिया कि किन्हें खतरा हो सकता है, किस स्थिति में खतरा हो सकता है, लेकिन अब जानते हैं कि आखिर आप कैसे खतरे के लक्षण को पहचान सकते हैं ताकि सही समय पर अगर लक्षण की पहचान हो जाए माँ को सुरक्षित रखा जा सके। कुछ बातें जो ध्यान देने वाली है, अगर डिलीवरी के बाद खून से कपड़े या पैड बार बार भीग जाए, खून के साथ बड़े बड़े थक्के निकले और माँ बहुत कमज़ोर दिखे, उन्हें चक्कर आए या वो बार बार बेहोश हो तो ये बहुत बड़े खतरे की निशानी है। ये संकेत देती है कि उस माँ को PPH हो सकता है। और साथ ही ये भी ध्यान रखें कि क्या उनके हाथ पैर बार बार ठंडे पड़ रहे हैं या फिर उन्हें पेशाब बहुत कम आए, तो ये सारे लक्षण बिल्कुल भी इग्नोर करने वाले नहीं हैं। ऐसी महिलाओं को तुरंत हॉस्पिटल ले जाने की ज़रूरत होती है। वहीं सबसे ज़रूरी बात कि देर बिल्कुल भी नहीं करनी है, ये नहीं सोचना है कि प्रसव के बाद तो खून बहता ही है, पर बार बार बहुत ज़्यादा थक्के के साथ खून बहना बहुत बड़े खतरे का संकेत हो सकता है। ऐसे में आपको एक एक मिनट की कीमत को समझना होगा। ऐसे में बिल्कुल भी घर पर नहीं रुकना है, झाड़ फूंक में बिल्कुल भी नहीं पड़ना है, इंतज़ार नहीं करना है, क्योंकि ये स्थिति जानलेवा हो सकती है। तुरंत हॉस्पिटल जाएं। और हॉस्पिटल में आगे का क्या प्रोसेस होता है इसे भी हम थोड़ा समझते हैं। जब ऐसी महिलाओं को, ऐसी माँ को हॉस्पिटल ले जाया जाता है तो वहाँ पर उसे तुरंत ऑक्सीजन और ड्रिप लगाया जाता है, गर्भाशय को सिकुड़ने वाली दवा दी जाती है, क्योंकि एक वजह तो इसका ये भी होता है ना कि गर्भाशय ढीले रह जाते हैं, तो गर्भाशय को सिकुड़ने वाली दवा दी जाती है। अगर चोट की वजह से कोई हिस्सा अंदर फट गया है या फिर किसी भी वजह से हिस्सा कोई फट गया है तो अंदर फटे हुए हिस्से को सिला जाता है और ज़रूरत पड़ने पर खून भी चढ़ाया जाता है। इसी वजह से कहा जाता है कि जब कोई महिला गर्भवती हुई है तो शुरुआत में ही उसके खून की जांच करा लेनी चाहिए, वो एनेमिक है या नहीं, यानी कि क्या उनमें खून की कमी है, उनका ब्लड ग्रुप क्या है। बाद में ब्लड ग्रुप अगर हमें पता होता है तो बाद में बहुत आसान होता है ऐसी माँ को खून चढ़ाना। और अगर ये सारी प्रक्रिया करने के बाद भी माँ की जान खतरे में रहती है तो अंतिम स्थिति में माँ की जान बचाने के लिए ऑपरेशन तक किया जा सकता है। आपके मन में ये सवाल भी होगा कि क्या ऐसी स्थिति से बचा जा सकता है, क्या PPH से बचा जा सकता है। जी हाँ, बचा जा सकता है कुछ बातों का ध्यान रख के। सबसे पहले तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि डिलीवरी हॉस्पिटल या फिर किसी ट्रेंड स्टाफ के पास ही हो। कई बार महिलाएं हॉस्पिटल नहीं जाती हैं और घर में ही उनकी डिलीवरी हो जाती है, ऐसे में उनकी देख रेख करने वाला कोई भी स्पेशलिस्ट वहाँ पर या फिर ट्रेंड स्टाफ वहाँ पर नहीं होता है, इसलिए डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल जाना ही बेहतर है। इसके साथ ही जब डिलीवरी हॉस्पिटल में होती है तो डॉक्टर इस बात का ध्यान रखते हैं कि बच्चा के पैदा होते ही उस गर्भवती महिला के गर्भाशय को सिकुड़ने वाली दवाई दी जाती है। और इसके साथ ही जैसे कि पहले भी मैंने आपको बताया कि डिलीवरी के बाद माँ को कम से कम 24 घंटे की निगरानी में रखना ज़रूरी है, और डॉक्टर जो भी बताते हैं उस चीज का पालन करना भी जरूरी है। गर्भावस्था में पूरा ANC चेकअप और खून की कमी का इलाज भी जरूरी होता है। डॉक्टर जो भी आपको चेकअप बता रहे हैं वो सारे चेकअप कराना जरूरी है। वो आगे माँ की जान को बचाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इसके साथ ही घर के लोग पहले से ही ट्रांसपोर्ट और खून की व्यवस्था सोच लें, यानी कि अगर अचानक गर्भवती महिला को दर्द हुआ, प्रसव पीड़ा हुई, तो ऐसी स्थिति में उन्हें जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुंचाया जा सके। और अगर PPH की समस्या आ जाती है और खून चढ़ाने की नौबत आती है तो खून की व्यवस्था पहले से ही हो तो बहुत बेहतर होता है, क्योंकि तब का हर मिनट कीमती होता है। और कई सारे लोगों के मन में ये भ्रांति होती है कि प्रसव के बाद तो खून बहता ही है। याद रखें कि प्रसव के बाद ज़्यादा खून बहना आम बात नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत खून बहता है, लेकिन ज़्यादा खून बहना, बड़े बड़े थक्के के साथ खून बहना, बार बार ये जो फ्लो है वो रुकना ही नहीं, ये एक इमरजेंसी स्थिति है। ऐसे में माँ की जान को खतरा हो सकता है और ऐसी स्थिति में समय पर हॉस्पिटल पहुंचकर ही माँ की जान बचाई जा सकती है। कोई भी गलती माँ की जान के लिए बहुत खतरनाक हो सकती है। और माता का विशेष ध्यान रखें, और आप इन सारी बातों का उम्मीद है कि ध्यान रखेंगे, और उम्मीद है कि आपके लिए ये बातें काम की रही होगी। हम मिलते हैं अगले लेडीज फर्स्ट कार्यक्रम में। अभी के लिए नमस्कार। आप सुनते रहिए 90.8 FM ग्रीन, क्योंकि हम हैं हरियाली से खुशहाली तक।
8: फिर पिट गया। बिल देना। इसको आउटसाइड द ऑफ टाइम डालना चाहिए था। इसकी यही प्रॉब्लम है।
9: कब से?
8: जब से क्रिकेट खेल रहा है तभी से।
9: अरे भाई साहब, क्रिकेट की नहीं, हो आपकी खांसी की बात कर रहे हैं। बुढ़बा
8: खांसी?
9: हाँ।
8: इसको तो एक आध महीना हो गया।
9: खुद की खांसी को एक आध महीने हो गए हैं और यहाँ क्रिकेट पर अपने ही गुगली फेंक रहे हैं आप। चलिए चलिए चलिए।
8: डॉक्टर, खांसी तो है।
9: देखिए भाई साहब, इसे हल्का मत लीजिए। 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी रहा है तो TB हो सकता है।
8: TB?
9: हाँ। तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए।
8: ठीक है।
9: TB किसी को भी हो सकता है, अगर हो गया तो बिना भूले पूरा कोर्स करिए और फिट हो जाइए। नहीं किया तो इसका इलाज बहुत मुश्किल है। समझ गए भाई साहब आप? आइए। 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। TB हारेगा, देश जीतेगा।
10: Attention, attention, attention, all the ladies and gentlemen. This is to remind you all about the importance of immunization. If your kids are 5 or less who have missed a vaccine, hear this appeal. Getting them vaccinated immediately is the key. For their safety and health, it is a wise request. Protecting them from illness to be their best. And remember, vaccination is safe and it saves your children from deadly diseases. So, see you at the vaccination center soon.
11: To get more information about vaccination, visit your nearest health facility center.
12: Yo, what's up?
6: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 ग्रीन FM। उन्नत कृषि। नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो 90.8 FM ग्रीन, और हमारे खास कार्यक्रम उन्नत कृषि कार्यक्रम में हम आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, अगर बात करें हम पिछले ज़माने की, तो लोग काफ़ी ज़्यादा शरीर से बलिष्ठ हुआ करते थे। क्यों? क्योंकि उनके खान पान का एक हिस्सा मड़ुआ यानी कि रागी भी हुआ करता था, जो हमारे शरीर को पोषण युक्त जो तत्व हैं वो तो देते ही थे और शरीर को बीमारियों से भी दूर रखते थे। तो आज डॉक्टर साहब हमारे बीच हैं, डॉक्टर आनंद। मैं आपको बता दूं, ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स डिपार्टमेंट, बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सबौर से, और आज रागी की वैज्ञानिक खेती के बारे में आज आपको बहुत सारी जानकारी देंगे। तो चलिए आज डॉक्टर साहब से सबसे पहले जानते हैं कि रागी की पौष्टिक और आर्थिक उपयोगिता के बारे में।
13: किसान भाई को नमस्कार। आज हम लोग विशेष रूप से चर्चा करेंगे मोटे अनाज, जो हमारे पूर्वज पहले बहुत अच्छी तरह से खेती करते थे, लेकिन जैसे जैसे हमारा कृषि विकास की ओर दौड़ा, विकास के पथ पर आगे बढ़ता जा रहा है, तो हम लोग मोटे अनाज को छोड़ते चले गए। लेकिन अब आवश्यकता है कि मोटे अनाज की खेती विशेष रूप से की जाए, तो किसान भाई इसके लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मोटे अनाज में रागी का एक विशिष्ट स्थान है, क्योंकि रागी ऐसा फसल है जिसमें कैल्शियम की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। जैसे 100 ग्राम दाने में 344 मिलीग्राम इसमें कैल्शियम मिलता है, जिसका उपयोग करके हमारी जो हड्डियां हैं वो मजबूत होती ही हैं। रागी बच्चों और बड़ों के लिए सबसे उत्तम आहार है। जैसा कि हम जानते हैं कि मोटे अनाज में प्रोटीन, वसा, रेशा और कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, उसी तरह रागी में 65 से 70% कार्बोहाइड्रेट, 8% प्रोटीन और 15 से 20% जो रेशा है, डायट्री फाइबर इसको बोलते हैं, तथा 2.5 से 3.5% खनिज लवण पाए जाते हैं, जो हमारे शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण विटामिन में थायमिन, राइबोफ्लेविन, नाइसिन एवं आवश्यक अमीनो एसिड की प्रचुर मात्रा पाई जाती है, जो कि विभिन्न शारीरिक क्रियाओं के लिए हमारे लिए बहुत आवश्यक होते हैं। जैसे रागी युक्त आहार में कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, तो जो आजकल शुगर की बीमारी है उसमें भी यह बहुत अच्छा फायदा करता है। कैल्शियम व अन्य खनिज तत्वों के प्रचुर मात्रा होने के कारण जो हम लोग को आजकल बुढ़ापा में ऑस्टियोफोरोसिस बीमारी से हम लोग ग्रसित रहते हैं, से संबंधित बीमारियों तथा बच्चों में आहार हेतु विशेष रूप से ये बहुत ही लाभदायक है। इसके दानों का इस्तेमाल खाने में कई तरह के से किया जाता है। इसके दानों को पीसकर आटा बनाया जा सकता है, जिससे मोटी डबल रोटी, साधारण रोटी और डोसा बनाया जा सकता है। अनाज भंडारण कीड़े के प्रतिरोधी होने के कारण इसको हम लोग बहुत 50 साल तक अच्छी स्थिति में रख सकते हैं। और जैसा कि आजकल खाद असुरक्षित जो हमारे गरीब किसान हैं, ये उन लोगों के लिए एक वरदान फसल है।
6: डॉक्टर साहब, अब बात करते हैं इसके उत्पादन की और उन्नत शस्य क्रियाओं की।
13: जैसे रागी की खेती शुष्क और आंध्र शुष्क जलवायु इसके लिए सबसे उपयुक्त होती है। जैसा कि हमारे बिहार में इसकी खेती गर्मियों के मौसम में खरीफ की फसल के साथ की जाती है। इसकी खेती के लिए गर्मी का मौसम सबसे उपयुक्त होता है। खरीफ की फसल होने के कारण सर्दियां शुरू होने के पहले इसे काट लिया जाता है, इस कारण सर्दी का प्रभाव इस पर नहीं देखने को मिलता है। इसकी खेती के लिए सामान्य बारिश की जरूरत होती है, अधिक बारिश होना इसके लिए उपयुक्त नहीं है। रागी के पौधे गर्मियों के मौसम में अधिकतम 35 डिग्री तापमान पर आसानी से विकास कर लेते हैं, लेकिन शुरुआत में बीजों को अंकुरित होने के लिए 20 से 22 डिग्री तापमान की ज़रूरत होती है। उसके बाद पौधों के विकास करने के लिए 30 डिग्री के आसपास तापमान का होना उपयुक्त माना गया है। तो किसान भाई, जैसा कि हम लोग रागी का यदि हम लोग खेती करते हैं तो भूमि का चुनाव हम लोग कैसे करना चाहिए, इसके बारे में हम जरा चर्चा करेंगे। रागी की खेती उपजाऊ और कार्बनिक पदार्थों से भरपूर मिट्टी में की जा सकती है, लेकिन अच्छा उत्पादन बलुई दोमट को सबसे उपयुक्त माना जाता है। इसकी खेती के लिए भूमि में जल भराव नहीं होना चाहिए, पानी नहीं लगना चाहिए, क्योंकि जल भराव होने की वजह से इसके पौधे खराब हो जाते हैं। इसकी खेती के लिए जो हमारी भूमि है उसका पीएच मान 5.5 से 8 के बीच होनी चाहिए। और भूमि की तैयारी में हम लोग को कुछ बातों पर ध्यान देना है। जैसे पूर्व फसल में कटाई के पश्चात आवश्यकता अनुसार ग्रीष्म ऋतु में 1 या 2 गहरी जुताई कर देना चाहिए किसान भाइयों को, जिससे खेत से फसलों एवं खरपतवार के अवशेष एकत्रित हो उसे नष्ट कर दें। मानसून प्रारंभ होते ही खेत में 1 या 2 जुताई करके पाटा लगा के एकदम खेत को समतल कर दें। और अच्छी उपज लेने के लिए किसान भाई को चाहिए कि बुआई के पूर्व बीज को अच्छी तरह से साफ कर लें, और उसके बाद जो फफूंदी नाशक दवा होती है कार्बेंडाजिम उससे उपचारित करके वहीं बोएं। रागी की बुआई 2 तरह से की जाती है। एक होती है सीधी बुआई और दूसरा होता है रोपा पद्धति, इसको ट्रांसप्लांटेड हम लोग कहते हैं। सीधी बुआई जून के अंतिम सप्ताह से जुलाई के मध्य तक मानसून वर्षा होने पर की जाती है, और छिटकवा विधि या कतारों में बोई जाती है। पंक्ति में बुआई करने हेतु जो हमारा बीज लगता है वो 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, यदि हम छिटकवा विधि से बुआई करते हैं तो उसमें बीज की मात्रा बढ़ जाती है जो 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखते हैं। कतार से कतार की दूरी हम लोग को हर समय 22.5 से 30 सेंटीमीटर रखनी चाहिए, और पौधे से पौधे की दूरी 8 से 10 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। रोपाई के लिए नर्सरी में बीज के मध्य से जुलाई के प्रथम सप्ताह तक डाल देनी चाहिए, नर्सरी में लगा देनी चाहिए। एक हेक्टेयर में रोपाई के लिए बीज की मात्रा 5 किलोग्राम लगती है एवं 20 से 25 दिनों का पौध जो सीडलिंग है होने पर रोपाई करनी चाहिए। रोपाई के समय कतार से कतार की दूरी 22.5 सेंटीमीटर और पौधा से पौधा की 10 सेंटीमीटर रहनी चाहिए, जिससे कि हमारा अच्छा उत्पादन मिल सके। रागी के बीजों में दोनों विधि से रोपाई के दौरान इसके बीजों को भूमि में 3 से 4 सेंटीमीटर के गहराई पर बीज को बोना चाहिए, ताकि बीज का अंकुरण अच्छा हो सके। दूसरे सबसे बड़ी बात है कि खेत की तैयारी हम लोग कैसे करें। तो रागी की रोपाई के लिए भुरभुरी मिट्टी का होना बहुत आवश्यक माना जाता है, क्योंकि भुरभुरी मिट्टी होने से बीजों का अंकुरण अच्छे से होता है। और रागी की खेती के लिए शुरुआत में खेतों की तैयारी के दौरान खेत में मौजूद पुरानी फसलों को अवशेषों को नष्ट कर खेत को मिट्टी पलटने वाले हल से अच्छी तरह जुताई कर दें। उसके बाद कुछ दिन के लिए खेत को खुला छोड़ दें, ताकि सूरज की धूप वो मिट्टी में मौजूद हानिकारक जो कीट रहते हैं उसे नष्ट हो जाए। और खेत को खुला छोड़ने के बाद खेत में जैविक खाद हम लोग को, जैसे आजकल सरकार भी बहुत ज़्यादा इस पर जोर दे रही है कि जैविक खाद को हम लोग अपनाना चाहिए, तो जैविक खाद के रूप में पुरानी गोबर की खाद को डालकर उन्हें अच्छी तरह से मिला दें। और खाद को मिट्टी में मिलाने के लिए खेत को कल्टीवेटर के माध्यम से 2 से 3 तिरछी जुताई कर दें। खाद को मिट्टी में मिलाने के बाद पानी चलाकर खेत का पलेवा कर दें। पलेवा करने से एक फायदा है कि 3-4 दिन बाद जब जमीन की ऊपरी सतह हल्की सूखी हुई दिखाई देने लगे तो फिर खेत की जुताई कर दें। उसके बाद खेत में रोटावेटर चलाकर मिट्टी को भुरभुरा बना लें। और मिट्टी को भुरभुरा बनाने के बाद खेत में पाटा लगाकर भूमि को समतल कर दें, ताकि बारिश के मौसम में जल भराव जैसी समस्या का सामना न करना पड़े, जो एक बहुत बड़ा रागी के फसल में एक है कि यदि पानी में जल भराव होता है तो हमारा फसल नहीं अच्छा होगा। जैसे उर्वरक की मात्रा के बारे में किसान भाइयों को जरा बता दें, रागी के पौधों में उर्वरक की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। इसके लिए इसकी खेती के लिए शुरुआत में खेत की तैयारी के वक्त लगभग 12 से 15 गाड़ी जो होता है पुरानी गोबर की खाद को खेत में डालकर अच्छे से मिट्टी में मिला देना चाहिए। इसके अलावा यदि हम रासायनिक खाद के रूप में 1.5 से 2 बोरे NPK की मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से, यानी यदि हम रेनफेड कल्टीवेशन वर्षा आधारित खेती करते हैं तो उसमें 40-20-20 यानी 40 केजी नेत्रजन, 20 केजी फास्फोरस और 20 केजी पोटास। यदि हम इरिगेटेड कंडीशन यानी सिंचित अवस्था में रागी की खेती कर रहे हैं तो आखिरी जुताई तो उसमें जो उर्वरक की मात्रा होती है वो 60-30-30 यानी 60 केजी नेत्रजन, 30 केजी फास्फोरस P2O5 और 30 केजी पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से देना चाहिए। तो नेत्रजन की जो आधी मात्रा होती है और फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा खेत की आखिरी जुताई के वक्त खेत में छिड़क कर मिट्टी में मिला देना चाहिए। और दूसरी जो आधी मात्रा जो शेष आधी मात्रा जो नेत्रजन की होती है वो प्रथम सिंचाई के बाद उसमें दे देना चाहिए। तो एक और सबसे बड़ी चीज़ है वो खरपतवार नियंत्रण। तो रागी के खेत में खरपतवार नियंत्रण रासायनिक और प्राकृतिक दोनों तरीकों से किया जाता है। यदि हम रासायनिक तरीके से खरपतवार के लिए नियंत्रण के लिए बीज रोपाई के पहले एक खरपतवार नाशी होता है आइसोप्रोट्रोन, उसका डोज जो है 0.5 kg एक्टिव इंग्रेडिएंट पर हेक्टेयर, ये रेनफेड कंडीशन में जो रेनफेड जो वर्षा आधारित क्षेत्र है उसमें हम लोग यूज करते हैं, और सिंचित क्षेत्र में ऑक्सीफ्लोरफेन 0.1 लीटर एक्टिव इंग्रेडिएंट पर हेक्टेयर की उचित मात्रा का छिड़काव खेत में कर देना चाहिए। यदि हम प्राकृतिक तरीके से खरपतवार नियंत्रण पौधे को की गुड़ाई कर लिया जाता है तो इसके लिए शुरुआत में पौधे की रोपाई के लगभग 20 से 22 दिन बाद उसकी पहली निकाई गुड़ाई कर दें। और रागी की खेती में प्राकृतिक तरीके से खरपतवार नियंत्रण के लिए 2 बार निकाई गुड़ाई काफ़ी आवश्यक है। इसके पहले निकाई गुड़ाई के लगभग 15 दिन बाद पौधों को एक बार और गुड़ाई कर दें, यानी 45 दिनों तक जो हमारा रागी का खेत हो वो खरपतवार से मुक्त हो।
12: जी, और अब बात करते हैं अधिक उपजशील और अनुशंसित किस्मों के बारे में।
13: तो किसान भाई, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अच्छी उपज लेने के लिए किसान भाइयों को चाहिए कि अनुशंसित किस्में तथा जो अधिक उपजशील हो तथा गुणवत्तापूर्ण बीज का ही चयन करना चाहिए। तो एक जो किस्म है वो है VL मांडू 379 जो हमारे विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान से शाला जो अल्मोड़ा में है वहाँ से विकसित की गई है। ये इसकी ये अभी 2018 में CBRC से भी नोटिफाइड वैरायटी है। इसकी परिपक्वता अवधि 103 से 111 दिन में ये मैच्योर कर जाती हैं, परिपक्व हो जाती है। इसकी औसत उपज बहुत अच्छी है, 31.3 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है, और इसका बुआई का समय 2 मई से जून के प्रथम सप्ताह तक इसके बुआई कर सकते हैं। दूसरी जो अच्छी प्रभेद है वो OEB 526। ये OEB 526 ओडिशा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो भुवनेश्वर में अवस्थित है वहाँ की से विकसित की गई है। इसकी परिपक्वता अवधि 110 से 115 दिनों की ये प्रभेद है। इसकी औसत उपज 25 से 26 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है, और यह जो झुलसा रोग इसमें लगता है उसके प्रति मध्यम प्रतिरोधी है। दूसरा जो अधिक उपजशील किस्म है वो OEB 532, ये भी ओडिशा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भुवनेश्वर से विकसित की गई है, 2012 में रिलीज हुई, जिसकी इसकी भी परिपक्वता इसे पकने की अवधि है 110 से 115 दिन। इसकी औसत उपज 22 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है, ये भी झुलसन रोग के प्रति मध्यम प्रतिरोधी है। इसके अलावा दो और प्रभेद जो हमारे बिहार के लिए अनुशंसित है, जोन के लिए अनुशंसित है, वो उसमें है VL 352 जो विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधानशाला अल्मोड़ा से विकसित की गई। इसकी परिपक्वता अवधि ये 100 ड्यूरेशन की वैरायटी है, ये 95 से 100 दिनों में तैयार हो जाती है। इसकी औसत उपज 33 से 35 क्विंटल पर हेक्टेयर है, ये भी झुलसा रोग के प्रति मध्यम प्रतिरोधी है। एक और किस्म है VL 376, इसकी परिपक्वता अवधि 103 से 109 दिनों की है, औसत उपज 29 से 31 क्विंटल की प्रति हेक्टेयर है, और झुलसा रोग के प्रति मध्यम प्रतिरोधी है। इसके अलावा दो पुरानी प्रभेद भी है, जैसे A404 ये BAU रांची से विकसित की गई, और RAU8 ये RAU ढोली से विकसित की गई। दो किस्में हैं जो 110 से 115 दिन में तैयार हो जाती है, और इसकी औसत उपज भी 22 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। और किसान भाई इसकी इस अनुशंसित किस्मों का यदि चयन कर खेती करते हैं तो रागी से उन्हें अच्छी मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं
12: जी। और रागी में लगने वाले कौन कौन से रोग एवं कीट हैं उनके बारे में थोड़ा बताएं, और रोकथाम कैसे करें हम?
13: रागी में जैसे जो फफूंद जनित दो रोग इसमें मुख्यतः लगते हैं, एक है झुलसन एवं दूसरा है भूरा धब्बा। रागी प्रमुख रोग व्याधियां हैं जिनका समय पर निदान नहीं होने से उपज में हानि होता है। जो झुलसन रोग लगता है वो रागी की फसल पर पौध अवस्था से लेकर बालियों के दाने बनने तक किसी भी अवस्था में फफूंद जनित झुलसन रोग का प्रकोप देखा गया है। संक्रमित पौधे की पत्तियों में भिन्न भिन्न माप के आँख के समान धब्बे बन जाते हैं, जो मध्य के धूसर और किनारों पर पीले पीले रंग के होते हैं। अनुकूल वातावरण में ये धब्बे आपस में मिल जाते हैं और पत्तियां को झुलसा देते हैं। बालियों की ग्रिया और उंगलियों पर भी फफूंद का संक्रमण होता है, और ग्रीवा का पूरा या आंशिक भाग काला पड़ जाता है, इससे बालियां संक्रमित भाग टूट के लटक जाती है या फिर गिर जाती है, और किसान भाइयों को इससे घाटा हो जाता है। उंगलियां पर भी आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से संक्रमित होने पर सूख जाती है, जिसके कारण उपज में गुणवत्ता जो हम लोग को गुणवत्तापूर्ण जो उपज होना चाहिए उसकी मात्रा प्रभावित होती है। इसकी रोकथाम के लिए बुआई के पूर्व बीज को जो जैसा हम जानते हैं फफूंदीनाशक दवा जैसे मेनकोजेब, कार्बेंडाजिम या कार्बोक्सिन या उनके मिश्रण को 2 ग्राम प्रति किलो की बीज दर से उपचारित करना चाहिए। यदि खरीफ फसल में झुलसन रोग का दिखाई पड़े तो कार्बेंडाजिम, कीटाजिन या ईडीफेनफॉस 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में मिलाकर या मेनकोजेब 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से मिलाकर की दर से छिड़काव करें, और 10 से 12 दिन के बाद एक फिर से हमको एक छिड़काव रिपीट कर देना चाहिए, दोबारा कर दें। और जैव रसायन जैसे सीडोमोनास फ्लोरेसेंस का पर्ण छिड़काव 0.2% जो झुलसन के संक्रमण को रोकता है, और रोग प्रतिरोधी किस्में भी यदि हम लगाएं तो इससे हम लोग बचाव हो सकता है। जैसे रोग रोधी किस्म है VL 379, VL 356, VL 352, OEB 536, 532 का चुनाव करें, इससे इस रोग से हम लोग उसमें ये जो रेसिस्टेंट है उसमें उस वैरायटी में मॉडरेटरी रेसिस्टेंट है तो उससे मध्यम प्रतिरोधी किस्म होने के कारण ये रोग नहीं लगेगा। दूसरा महत्वपूर्ण रोग उसमें लगता है वो भूरा धब्बा रोग, यह भी फफूंद जनित रोग जो संक्रमण पौधों के सभी अवस्थाओं पर हो सकता है, चाहे वेजिटेटिव स्टेज हो या रिप्रोडक्टिव। प्रारंभ में पत्तियों पर छोटे छोटे हल्के हल्के भूरे अंडाकार धब्बे बन जाते हैं, बाद में इनका रंग गहरा हो जाता है। अनुकूल अवस्था में ये धब्बे आपस में मिलकर पत्तियों को समय से पूर्व सुखा देते हैं, बालियों एवं दानों पर संक्रमण होने पर दानों का उचित विकास नहीं हो पाता और दाने सिकुड़ जाते हैं, जिसकी उपज में भी काफ़ी कमी होती है। इसकी रोकथाम जैसा कि मैंने पहले बताया झुलसा रोग में है, वही रोकथाम इसमें भी किया जाता है। और जो कीट में तना छेदक एवं बालियों में सुनी रागी का प्रमुख कीट है, तो तना छेदक कीट जो होता है उसका व्यस्क कीट एक पतंगा होता है, जबकि लार्वा तने को भेद कर छेद करके अंदर प्रवेश कर जाता है, फसल को नुकसान पहुंचाता है। कीट के प्रकोप से डेड हर्ट लक्षण पौधे पर दिखाई देते हैं। इसकी रोकथाम के लिए कीटनाशक दवा डाइमिथोएट या फॉस्मामिडोन या न्यूअक्रोन 1 से 1.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से छिड़काव करें और कीट प्रतिरोधक किस्म की बुआई करें, जिससे कि रोग से बचाया जा सके, कीट से बचाया जा सके। और दूसरा प्रमुख कीट है वो बालियों की सुंडी। इस कीट का प्रकोप बालियों में दाना बनने के समय होता है, जैसे ही दाना बनने लगता है तो बाली में ये पकड़ने का इसका प्रकोप ज़्यादा हो जाता है। भूरे रंग में रोएदार इलियाँ रागी की बालियों को नुकसान पहुँचाती हैं, जिसके फलस्वरूप दाने कम एवं छोटे बनते हैं। इसकी रोकथाम के लिए जो क्यूनॉल फॉस दवा आती है 1.5% थायोडाउन डस्ट 4-4% का प्रयोग 24 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से करें। और सबसे महत्वपूर्ण है कि कीट जो नई प्रभेद के बारे में हम बताए हैं वो कीट प्रतिरोधी किस्मों का चयन कर बुवाई करें, तो ये कीट उसमें लगने की संभावना कम हो जाती है। इस प्रकार यदि हम रागी जैसे फसल की कटाई और मड़ाई कैसे करें, तो रागी के पौधे रोपाई के लगभग 110 से 115 दिन बाद कटाई के लिए तैयार हो जाते हैं, तो जिसके बाद इसके सिरों पर पौधों को काटकर अलग कर लेना चाहिए। सिरों की कटाई करने के बाद उन्हें खेत में एकत्रित कर कुछ दिन के लिए सुखा लेना चाहिए। उसके बाद जब दाना अच्छी तरह से सूख जाए तथा मशीन की सहायता से दानों को अलग कर एकत्रित कर बोरा में भर लेना चाहिए। रागी की विभिन्न किस्मों की प्रति हेक्टेयर औसत उपज 30 से 35 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है, तथा इसे 60 से 70 क्विंटल भूसा भी हम किसान भाई को प्राप्त हो जाएगा, जिसका बाजार भाव 2700 रुपये प्रति क्विंटल के आसपास पाया जाता है। इस हिसाब से किसान भाई एक बार में एक हेक्टेयर में 60 से 70 हज़ार रुपये की कमाई आसानी से कर सकते हैं। इसलिए एक बहुत ही मोटे अनाज में एक ये बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है और किसान भाई अब आवश्यकता भी है, सरकार इसके प्रति बहुत गंभीर भी है। और इसीलिए 2018 में इंटरनेशनल ईयर मनाया गया कि मिलेट्स इंटरनेशनल ईयर, और सरकार इसके प्रति किसानों को भी प्रेरित कर रही है।
12: जी, तो किसान भाइयों, इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। अगले दिन आपसे एक अलग विषय के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।
14: 19 कृषि

0: क्या क्या क्या
1: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
0: अच्छा,
2: तो सबकी समझ में आ गया ना, खसरा रुबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाए जड़ तक।
1: टीकू, तेरे कितने दोस्त हैं?
3: टीनू, मीनू, राजू, पिन्नी
1: और तुम्हारी वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
3: 11 दोस्त?
1: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
3: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
1: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
3: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूरदराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं, या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
3: टीकी, तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा, सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
2: याद रखो,
3: आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
4: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 22 से 26 जुलाई के दौरान आसमान में घने बादल छाए रहेंगे और जिले में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी चलने और हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 26 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 90% और दोपहर में 70 से 80% रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए, जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दे, पिछले कुछ दिनों में हुई वर्षा का लाभ उठाइए और आगे भी संभावना है कि वर्षा होगी, तो ऐसी स्थिति में धान की रोपाई के लिए व्यवस्था सुनिश्चित कर ले। रोपाई से पहले प्रति हेक्टेयर 25 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस, 30 किलोग्राम पोटाश और 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट का प्रयोग करें। आपको बता दें कि निचली जमीन के चारों ओर मजबूत मेड़ यानी कि बांध बनाकर वर्षा जल का संचयन कर ले, ताकि जरूरत पड़ने पर आप वर्षा के जल का सिंचाई में उपयोग कर सके। जो किसान भाई बहन श्री अन्न की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दें, मोटे अनाजों की खेती के लिए उचास भूमि का चयन करें। मड़वा की वकुला KMR 316, GPU 67 और VL 379 राजेंद्र मड़वा RU 8 और RU 3, और आपको बता दें कौनी की अनुशंसित किस्में हैं राजेंद्र कौनी 1, आप इन किस्मों की बुआई कर सकते हैं। मक्का की खेती करने वाले किसान भाई बहन ध्यान दें, खरीफ मक्का की बुआई आसमान साफ रहने पर ही करें। खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और ध्यान रखें कि बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नेत्रजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश जरूर डालें। अनुशंसित मक्का की किस्में जैसे सुवान, देवकी, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, राजेंद्र संकर मक्का 3, गंगा 11 है। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, मिर्च, अगात, गोभी, टमाटर जैसी सब्जियों की नर्सरी तभी तैयार करें जब आसमान साफ हो। और बागवानी करने वाले भाई बहन ध्यान दें, जुलाई अगस्त आम के पौधों के रोपण के लिए सबसे उपयुक्त समय होता है। कलमी पौधों की रोपाई 10x10 मीटर और बीजू पौधों की रोपाई 12x12 मीटर की दूरी पर करें। सघन बागवानी के लिए 5x5 मीटर और अम्रपाली के लिए ढाई गुना ढाई मीटर की दूरी रखें। फलदार वृक्षों में प्रति वर्ष 1 किलोग्राम नाइट्रोजन, 30 किलोग्राम फास्फोरस, 700 किलोग्राम पोटाश और 80 से 100 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद जरूर डालें। आपको बता दें, इस समय केला के स्वस्थ सकर्स की रोपाई करें। लंबी किस्मों जैसे अल्पान, कंथली, मालभोग, चिनिया, जी9 और बॉनी किस्में जैसे ग्रैंड नेन, रोबस्टा, बसराई का चयन करना सबसे

सबसे फायदेमंद होता है। लंबी किस्मों के लिए 2x2 मीटर और बौनी किस्मों के लिए 1.5x1.5 मीटर की दूरी रखें। प्रत्येक गड्ढे में 5 किलोग्राम गोबर की खाद, 500 ग्राम अरंडी की खली, 300 ग्राम सिंगल सुपर फॉस्फेट, 100 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश और 10 ग्राम कार्बोफ्यूरान मिलाना न भूलें। रोपाई से पहले सकर्स को कार्बनडाइजिंग 2 ग्राम प्रति लीटर पानी से उपचारित करें। किसान भाई बहनों, टिश्यू कल्चर पौधे का उपयोग अधिक उत्पादन के लिए लाभकारी होता है। पशुपालक भाई बहन ध्यान दें, पशुओं में PPR, MFD यानी कि खुरपका मुंहपका और HS यानी कि गला घोटू, इन रोगों का खतरा अधिक है। इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण करवाएं, उन्हें साफ और सूखा रखें और बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। रोग के लक्षण अगर दिखाई दे तो तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें और ध्यान रखें कि पशुओं की बिना जरूरत के आवाजाही पर नियंत्रण रखें। गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए जून माह में अगर टीके नहीं लगाए गए हो तो इस महीने में टीके जरूर लगवा दें। पशुओं को संतुलित और पौष्टिक आहार दें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

0: स्वागत है साथियों, आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई, और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे रुचि। आज हम बात करने जा रहे हैं इंटरनेशनल कंगारू केयर डे के बारे में। अलग है, सच कहूं तो मुझे खुद थोड़ा झिझक भी हो रहा है इस पर बात करने में, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं नवजात शिशुओं की देखभाल के एक ऐसे तरीके पर जो सुनने में बहुत ही सरल लगता है लेकिन असल में जीवन बचाने की ताकत भी रखता है। और इस विषय को साझा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे अपने सेहतिया भैया, जो हमेशा हमें स्वास्थ्य से जुड़ी बातें आसान भाषा में समझाते हैं। सेहतिया भैया, स्वागत है एक बार आपका फिर से आज के हमारे शो में।
1: धन्यवाद, और हमारे सभी श्रोताओं का भी धन्यवाद अपने सारे प्यार और भरोसे के लिए। आज तो आपने शुरुआत में ही इतनी भावुक कर दी कि लग रहा है कि कोई बहुत बड़ी बात होने वाली है।
0: बात तो सच में बहुत बड़ी लग रही है सेहतिया भैया, लेकिन मैं थोड़ी कंफ्यूज भी हूँ। ये कंगारू मदर केयर आखिर है क्या? नाम सुनते ही मेरे दिमाग में तो बस वही जानवर वाले कंगारू आ जाता है जो अपने बच्चे को पेट के थैले में रखता है। तो क्या इसका मतलब कुछ वैसा ही है, या मैं पूरी तरह से गलत सोच रही हूँ?
1: अरे नहीं नहीं, आप पूरी तरह गलत भी नहीं है और पूरी तरह सही भी नहीं। नाम जरूर कंगारू से लिया गया है, लेकिन ये तरीका इंसानों के नवजात बच्चों के लिए है और बहुत ही खास और जीवन बचाने वाला तरीका है। इसमें भी एक तरह से माँ अपने बच्चे को अपने शरीर से ऐसे लगा कर रखती है जैसे कंगारू अपने बच्चे को सुरक्षित रखता है, इसलिए इसे कंगारू मदर केयर कहा जाता है।
0: अच्छा, अब थोड़ी थोड़ी समझ आ रही है बात, लेकिन एक सवाल अभी भी दिमाग में घूम रहा है कि आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी? अगर अस्पताल में इलाज और मशीनें हैं तो फिर इस तरह के तरीके की जरूरत क्यों आई?
1: देखिए, यही वो जगह है जहां हमें सच्चाई को समझना होगा। हर साल दुनिया भर में लगभग 13 करोड़ बच्चे जन्म लेते हैं, लेकिन दुख की बात यह है कि इसमें से करीब 40 लाख बच्चे अपने जीवन के पहले ही 4 हफ्तों में दुनिया छोड़ देते हैं। सोचिए, अभी जिंदगी ठीक से शुरू भी नहीं हुई होती और खत्म हो जाती है। ये आंकड़ा हमें बताता है कि नवजात बच्चे की देखभाल कितनी जरूरी है।
0: ये तो सच में बहुत डराने वाले आंकड़े हैं। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इतनी बड़ी संख्या में बच्चे इतनी जल्दी अपनी जान गंवा देते हैं।
1: जी हाँ, और इसका एक बड़ा कारण ये भी है कि बहुत से बच्चे या तो समय से पहले पैदा होते हैं, यानी 9 महीने पूरे होने से पहले, या फिर उनका जन्म के समय वजन बहुत कम होता है। ऐसे बच्चे बहुत नाजुक होते हैं, उन्हें ज़्यादा देखभाल, गर्मी, पोषण और सुरक्षा की ज़रूरत होती है जो हर जगह आसानी से उपलब्ध नहीं होती।
0: तो क्या ऐसे बच्चों के लिए अस्पताल में कोई खास इंतजाम होता है? जैसा मैंने फिल्मों में देखा है, वो कांच का डिब्बा जिसमें बच्चे को रखा जाता है, वो क्या होता है?
1: हाँ, उसे इनक्यूबेटर कहते हैं। ये एक मशीन होती है जो बच्चे को जरूरी गर्मी और सुरक्षित माहौल देती है, लेकिन समस्या ये है कि ये हर जगह उपलब्ध नहीं होती, खासकर हमारे गाँवों और दूर दराज इलाकों में। और जहाँ उपलब्ध भी होती है, वहाँ हर जरूरतमंद बच्चे तक पहुँच पाना बहुत मुश्किल हो जाता है।
0: तो फिर ऐसे बच्चों का क्या होता है भैया? अगर मशीन भी नहीं है और बच्चों को खास देखभाल चाहिए तो परिवार क्या करे?
1: यहीं पर कंगारू मदर केयर की उम्मीद किरण बनकर सामने आती है। ये एक ऐसा तरीका है जिसमें किसी महंगी मशीन की जरूरत नहीं होती। इसमें सिर्फ माँ का स्पर्श, उसका प्यार और उसका समय लगता है। माँ अपने बच्चे को अपने सीने से लगा कर रखती है, जिससे बच्चे को गर्मी मिलती है, उसकी सांसें स्थिर रहती है और उसे सुरक्षा महसूस होती है जो उसे माँ के गर्भ में मिलती थी। और यही साधारण सा तरीका कई बार बच्चे की जान बचा सकता है।
0: सिर्फ माँ के स्पर्श से? यह बात सुनने में बहुत ही अद्भुत लग रही है भैया, लेकिन सच कहूँ तो मेरे मन में अभी भी ये सवाल उठ रहा है कि आखिर ये संभव कैसे है? क्या सच में सिर्फ पास रखने से बच्चे की हालत बेहतर हो सकती है?
1: देखिए, यही तो कंगारू मदर केयर की खासियत है। इसका मतलब है कि बच्चे को माँ के सीने से सीधा लगा कर रखा जाए, जिसे हम स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट कहते हैं। जैसे कंगारू अपने छोटे से बच्चे को अपने थैले में सुरक्षित रखता है, वैसे ही माँ अपने नवजात को अपने शरीर से लगा कर रखती है। इस दौरान बच्चे को न केवल गर्मी मिलती है, बल्कि उसे एक तरह की सुरक्षा और सुकून भी महसूस होता है, जो उसके विकास के लिए बेहद ज़रूरी है।
0: ओ, तो इसका मतलब ये है कि बस बच्चे को गोद में ले लिया जाए, वही काफी है?
1: नहीं, सिर्फ गोद में लेना काफी नहीं है। इसमें खास बात यह है कि बच्चे को सीधा शरीर से लगा कर रखा जाता है, ताकि उसका पूरा शरीर माँ की त्वचा के संपर्क में रहे। इसमें बच्चे को लगातार गर्मी मिलती है, उसकी सांसें संतुलित रहती है और खुद को सुरक्षित महसूस करता है। यह एक तरह से बच्चे को वही माहौल देने जैसा है जैसे उसे माँ के गर्भ में मिलता था।
0: सुनने में बहुत ही आसान लग रहा है, जैसे कोई भी कर सकता है, लेकिन क्या ये तरीके सच में इतने असरदार हैं?
1: बिल्कुल असरदार है। कई शोधों में ये साबित हुआ है कि जिन बच्चों को कंगारू मदर केयर दी गई उनकी मृत्यु दर कम रही, उनका वजन तेजी से बढ़ा और वे ज़्यादा स्वस्थ पाए गए। यहाँ तक कि लंबे समय में भी ऐसे बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास बेहतर देखा गया है।
0: मतलब एक माँ का साधारण सा स्पर्श एक बच्चे की जिंदगी बचा सकता है, ये सोचकर मन भर आता है।
1: बिल्कुल, और यही इस साल का संदेश भी है, स्टिलनेस इज स्ट्रेंथ, यानी जब माँ शांत होकर अपने बच्चे को अपने पास रखती है, उसे समय देती है, तो वही सादगी और स्थिरता बच्चे की सबसे बड़ी ताकत बन जाती है।
0: वाह, ये बात तो दिल को छू गई। सच में कभी कभी सबसे सरल चीजें भी सबसे ज्यादा ताकतवर होती है। सेहतिया जी, अब एक जरूरी सवाल, क्या ये तरीका घर भी अपनाया जा सकता है या सिर्फ अस्पताल में ही किया जाता है?
1: जी हाँ, इसे घर पर भी किया जा सकता है। शुरुआत अस्पताल में डॉक्टर या नर्स की सलाह से होती है, लेकिन जब माँ और बच्चे घर लौट आते हैं तो वहाँ भी इसे जारी रखा जा सकता है, बशर्ते सही तरीके से किया जाए और स्वास्थ्य कर्मी की सलाह ली जाए।
0: तो फिर इसे सही तरीके से करने का क्या तरीका है, थोड़ा विस्तार से बताइए ताकि हमारे श्रोता भी समझ सके।
1: इसमें बच्चे को माँ के सीने पर सीधा रखा जाता है, उसका सर हल्का सा एक तरफ मुड़ा होता है ताकि सांस लेने में कोई दिक्कत ना हो। बच्चे को इस तरह से रखा जाता है कि उसका शरीर सुरक्षित रहे और उसे कपड़े या दुपट्टे की मदद से अच्छे से बांधा जाता है ताकि वो हिले डुले नहीं और आराम से टिका रहे।
0: और इस दौरान बच्चे को खाना कैसे दिया जाता है?
1: इस दौरान सबसे जरूरी है कि बच्चे को केवल माँ का दूध दिया जाए। माँ का दूध ही उसके लिए सबसे अच्छा पोषण है, जो उसे ताकत देता है, बीमारियों से बचाता है और उसके विकास में मदद करता है।
0: तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तरीके सिर्फ बच्चे को गर्म रखने तक सीमित नहीं है, बल्कि उसे जरूरी पोषण भी देता है। यानी एक तरीके से बच्चे की कई जरूरतें पूरी हो जाती है, जो सच में काफी खास बात है।
1: बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही समझा। यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है कि बिना किसी महंगे उपकरण के सिर्फ माँ के स्पर्श और दूध से बच्चे को सुरक्षा, पोषण और सुकून तीनों मिल जाते हैं।
0: सेहतिया भैया, अब तो मेरा मन और जानने का हो रहा है, आप जरा विस्तार से बताइए कि इसके फायदा क्या क्या हैं ताकि हमारे श्रोता भी इसे अच्छे से समझ सके।
1: देखिए, जब कंगारू मदर केयर सही तरीके से दी जाती है तो बच्चे का शरीर का तापमान संतुलित रहता है, जिससे उसे ठंड लगने का खतरा कम हो जाता है। उसकी सांसें भी ज़्यादा स्थिर और बेहतर हो जाती है। ऐसे बच्चे आमतौर पर ज़्यादा समय तक आराम से सोते हैं, कम रोते हैं और उनका वजन सामान्य से तेज़ी से बढ़ता है। कुल मिलाकर उनका शारीरिक मानसिक विकास बेहतर तरीके से होता है।
0: ये तो बच्चे के लिए बहुत फायदेमंद है, लेकिन क्या इसका असर माँ पर भी पड़ता है?
1: जी हाँ, बिल्कुल पड़ता है। जब माँ अपने बच्चे को इस तरह से अपने पास रखती है तो उसका दूध भी बेहतर तरीके से बढ़ने लगता है। साथ ही माँ और बच्चे के बीच एक गहरा भावनात्मक रिश्ता बनता है, जो आगे चलकर बच्चे के विकास में बहुत मदद करता है। माँ का आत्मविश्वास भी बढ़ता है कि वो अपने बच्चे की अच्छी देखभाल कर पा रही है।
0: वाह, ये तो सच में माँ का जादू ही हुआ, इतनी साधारण सी चीज लेकिन असर इतना गहरा। सेहतिया भैया, एक बात मेरे मन में आ रही है, हम बार बार माँ की बात कर रहे हैं, जो बिल्कुल सही भी है, लेकिन क्या इसमें पिता की भी भूमिका होती है या पूरी जिम्मेदारी सिर्फ माँ की होती है?
1: बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। अक्सर हम यही सोचते हैं कि नवजात की देखभाल सिर्फ माँ का काम है, लेकिन सच तो ये है कि पिता की भूमिका भी उतनी महत्वपूर्ण होती है। कंगारू केयर सिर्फ मदर केयर तक सीमित नहीं है, कई बार इसे कंगारू पेरेंट केयर भी कहा जाता है, क्योंकि अगर माँ किसी कारण से उपलब्ध ना हो या थकी हुई हो तो पिता भी बच्चे को अपने सीने से लगाकर यही केयर दे सकते हैं।
0: अच्छा, मतलब पिता भी बच्चे को अपने सीने से लगाकर वही फायदा दे सकते हैं जो माँ देती है?
1: जी हाँ, बिल्कुल। पिता का शरीर भी बच्चे को गर्मी देता है, उसकी सांसों को स्थिर करने में मदद करता है और बच्चे को सुरक्षा का एहसास कराता है। इसके अलावा जब पिता इस प्रक्रिया में शामिल होते हैं तो उसके बच्चे के साथ भावनात्मक जुड़ाव भी बहुत मजबूत होता है।
0: ये तो बहुत ही खूबसूरत बात है, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि पिता थोड़ा दूर रहता है या समझ नहीं पाते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए।
1: बिल्कुल, और यही सोच बदलने की जरूरत है। जब पिता इस तरह से बच्चे के करीब आते हैं तो न सिर्फ बच्चे को फायदा होता है, बल्कि पिता का आत्मविश्वास भी बढ़ता है। उन्हें लगता है कि वो अपने बच्चे की देखभाल में बराबर की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। इससे पूरे परिवार का माहौल सकारात्मक होता है और माँ को भी आराम और सहयोग मिलता है।
0: तो साथियों, ये बात बहुत जरूरी है कि हम नवजात की देखभाल को सिर्फ माँ तक सीमित ना रखें। अगर पिता भी शामिल होते हैं तो बच्चे को दुगना प्यार और देखभाल मिलता है। लेकिन सहतिया जी, हर चीज के साथ कुछ सावधानियां भी जरूरी होती है। क्या कंगारू मदर केयर करते समय भी कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए?
1: बिल्कुल, कुछ जरूरी सावधानियां हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। जब भी कंगारू केयर दी जाए उस समय मोबाइल फोन से दूर बनाए रखें ताकि ध्यान पूरी तरह बच्चों पर रहे। धूम्रपान बिल्कुल नहीं करना चाहिए और तेज खुशबू या परफ्यूम भी नहीं लगाना चाहिए क्योंकि इससे बच्चे को परेशानी हो सकती है। साथ ही जिस जगह बच्चे को रखा जा रहा है यानी छाती का हिस्सा, वह साफ और स्वच्छ होना चाहिए।
0: और इसे कितनी देर तक करना चाहिए, क्या इसका कोई समय तय होता है?
1: कम से कम 1 घंटे तक तो लगातार करना ही चाहिए, लेकिन जितना ज़्यादा समय दिया जा सके उतना बेहतर होता है। कई मामलों में परिवार दिन में कई घंटे तक भी इसे जारी रखते हैं जिससे बच्चे को लगातार फायदा मिलता है।
0: सेहतिया भैया, आज की बातचीत ने सच में मेरी सोच बदल दी है। शुरुआत में मैं थोड़ी झिझक रही थी और समझ नहीं पा रही थी ये विषय कितना महत्वपूर्ण है, लेकिन अब महसूस हो रहा है कि ये जानकारी हर घर तक पहुँचनी चाहिए।
1: यही तो हमारा मकसद है, जानकारी को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाना ताकि हर परिवार अपने बच्चे को बेहतर देखभाल कर सके और कोई भी बच्चा सिर्फ जानकारी के अभाव में अपनी जिंदगी ना खोए।
0: साथियों, अगर आपके घर में कोई बच्चा समय से पहले पैदा हुआ है या उसका वजन कम है तो घबराने की जरूरत नहीं है। कंगारू मदर केयर अपनाइए और अपने नजदीकी डॉक्टर या आशा कार्यकर्ता से जानकारी जरूर ले। याद रखिए, कभी कभी सबसे बड़ी ताकत किसी महंगी मशीन में नहीं है बल्कि माँ के प्यार और उसके स्पर्श में होती है, क्योंकि कई बार सबसे बड़ी ताकत शांति, धैर्य और अपनापन ही होता है। इसी के साथ हम अपना आज का प्रोग्राम यहीं खत्म करते हैं, पर जाने से पहले हम सब मिलकर आज एक शपथ लेते हैं कि
1: हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे, अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे क्योंकि सेहत ही असली धन है। सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरे को भी जागरूक करेंगे। साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके। नियमित जांच और टीकाकरण और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे। महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे। जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा। सेहत सही तो लाभ कहीं।
0: मैं आपकी दोस्त आरजे रुचि आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलेंगे इसी सो

0: Attention, attention, attention, all the ladies and gentlemen. This is to remind you all about the importance of immunization. If your kids are 5 or less who have missed a vaccine, hear this appeal. Getting them vaccinated immediately is the key. For their safety and health, it is a wise request. Protecting them from illness to be their best. And remember, vaccination is safe and it saves your children from deadly diseases.
1: So, see you at the vaccination center soon.
2: To get more information about vaccination, visit your nearest health facility center.
3: अरे यार फिर पिट गया बेल देना इसको आउटसाइड द ऑफ टाइम डालना चाहिए था इसकी यही प्रॉब्लम है
4: कब से
3: जब से क्रिकेट खेल रहा है तभी से
4: अरे भाई साहब क्रिकेट की नहीं हो आपकी खांसी की बात कर रहे हैं बुड़बक
3: खांसी
4: हाँ
3: इसको तो एक आध महीना हो गया
4: खुद की खांसी को एक आध महीने हो गए हैं और यहाँ क्रिकेट पर अपने ही गुगली फेंक रहे हैं आप चलिए चलिए चलिए
3: डॉक्टर खांसी तो है
4: देखिए भाई साहब इसे हल्का मत लीजिए दो हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी रहे तो टीबी हो सकता है
3: टीबी
4: हाँ तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए
3: ठीक है
4: टीबी किसी को भी हो सकता है अगर हो गया तो बिना भूले पूरा कोर्स करिए अब फिट हो जाइए नहीं किया तो इसका इलाज बहुत मुश्किल है समझ गए भाई साहब आप आइए दो हफ्ते से ज्यादा खांसी तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए टीबी हारेगा देश जीतेगा
5: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन
6: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें
5: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें
6: आपकी सेहत की बातें
5: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें
6: युवाओं के रोजगार करियर की बातें
5: वो सब कुछ एक ही जगह पर
6: वो कहाँ पर
5: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर
6: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक
5: उन्नत कृषि बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं किसान भाई बहनों को संबोधित हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में किसान भाई बहनों जब बारिश का मौसम होता है ये बहुत ही अच्छा होता है लेकिन कई मायनों में हमें विशेष ध्यान रखने की भी जरूरत होती है और खास तौर से हमारे पशुओं के लिए जो बेजुबान होते हैं और पशुओं की देखभाल इस मौसम में यानी कि बरसात के मौसम में किस तरीके से करनी चाहिए इस बारे में हमें विस्तार से बताने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर MZ हुदासर सर आप हैं KVK सबौर से सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में
7: धन्यवाद देखिए किसान भाइयों अभी जो बरसात का मौसम है ये काफ़ी सेंसिटिव मौसम होता है पशुओं के लिए खास करके जो सबसे पहला हमें ध्यान देना है वो ये ध्यान देना है कि हमारे जो जहाँ पर हम पशु रखते हैं उसका छत कहीं से लीकेज नहीं हो अगर कहीं से लीकेज वगैरह है तो आप उसको ज़रूर हटा दें उसको सही दुरुस्त करवा लें दूसरी बात कि आप अपने इस मौसम में अपने पशुशाला को बिल्कुल ड्राई रखें पानी जमा नहीं हो ये नहीं तो फिर दिक्कत होता है तीसरा जो हम लोगों को करना है कि उसमें वाटर लॉगिंग आपके जहां पर भी आप पशु रख रहे हैं पानी का जमाव नहीं होना चाहिए और ज़रूरत पड़े तो जो उसका बेडिंग जो यूज़ करते हैं स्ट्रॉ हस्क वगैरह यूज़ करते हैं आप उसको आप ज़रूर सूखा बेड मटेरियल उसमें यूज़ करें और सबसे बड़ी बात कि आप एक जगह पर बहुत ज़्यादा पशुओं को क्राउडिंग नहीं करें उसका जो एक प्रॉपर स्पेस है उस स्पेस में अपने पशुओं को रखें
5: सर ये तो बात हो गई रहने का प्रबंधन कैसे करना चाहिए पशुओं के लिए अगर हम खाने के प्रबंधन के बारे में बात करें तो इस दौरान इस मौसम के दौरान पशुओं का खान पान कैसा होना चाहिए
7: देखिए किसान भाइयों इस मौसम में आपको पशुओं की बहुत देखभाल करनी है जैसा कि हम लोग देखते हैं कि अभी के मौसम में खास करके बाढ़ भी का सीज़न आ जाता है पानी जगह जगह जमा हो जाता है ग्रीन फोडर्स नहीं होते हैं तो आपको ये आदत बना लेनी होगी कि आप इस समय हे और साइलेज बनाने की विधि जरूर सीख लें पहले और हे और साइलेज को जो है आप बना के स्टोर करके रखें जिससे कि ग्रीन फोडर्स की कमी आपको ना हो दूसरा आप मिनरल मिक्सचर आप ज़रूर अपने पशुओं को कम से कम 50 ग्राम प्रत्येक दिन के हिसाब से दें तीसरा जो आपको ध्यान में रखना है वो ये कि खाना अच्छा होना चाहिए चौथा जो आपको जो ध्यान देना है वो ये है कि आप इस समय पशुओं को नमक की मात्रा हर दिन कोशिश करें कुछ ना कुछ नमक दें। आप ये बात को सुनिश्चित करें कि जो आपने पूर्व से जो ग्रेन्स जमा की हैं, जैसे बहुत सारे हमारे किसान हैं जो मक्का गेहूं वगैरह जमा करके रखते हैं, तो अगर उसमें फंगस लगा हुआ है तो उस फंगस लगे अनाज का उपयोग अपने पशुओं में नहीं करें। इन सारी बातों में को आप अगर ध्यान देंगे तो आप बरसात के दुष्प्रभाव से आप बहुत हद तक बच सकते हैं।
5: सर, बरसात के मौसम में कुछ खास तरह की बीमारियों से भी पशुओं को परेशानी होती है, तो वो कौन कौन सी बीमारी है जिनसे पशुओं को बचाना चाहिए?
7: देखिए, अभी के मौसम में खास करके खुरा एवं मुंह पका रोग, जिसको हम FMD कहते हैं, ये बीमारियों का प्रचलन अधिक होता है। तो ये जरूरी है कि किसान बरसाती के मौसम के लिए नहीं, इसका अक्रेंस ज़्यादा देखने को मिलता है, तो अपने पशुओं को साल में दो बार टीका FMD वैक्सीन जो है हर 6 महीने पर 2 बार दे दें। दूसरा, जो परजीवी जनित बीमारियां हैं, चमोकन है, ठहल है, किलनी है, जू हैं, ये सब जो परजीवी रोग हैं ये आपके पशुओं के प्रोडक्शन को प्रभावित करते हैं, दूध की क्षमता को कम करते हैं, बीमारियों को फैलाने में मदद करते हैं। इससे बचाव के लिए आप निश्चित रूप से बरसात से पहले आप अपने पशुओं को या तो आइवरमेक्टिन या फिर फेनबेंडाजोल से डिवर्मिंग जरूर करा दें। तीसरा, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस समय थनैल जो गंदगी होती है, तो थनैला बीमारी आपके पशुओं को ज़्यादा प्रभावित करती है, तो उससे बचाव के लिए आप कोशिश करें जो भी प्रिवेंटिव मेजर्स है, जो भी बचाव के तरीके हैं थनैल के, जैसे कि आप जब मिल्किंग करते हैं तो आप अपने हाथ को कोई भी साबुन से आप साफ करके दूध निकालें। दूध निकालने के बाद आप कोशिश करें कि कम से कम 1 से 1.5 घंटा आपकी पशु बैठे नहीं, उसको उस वक्त खाना लगा दें, और पोटासियम परमैंगनेट, जो लाल पोटास के नाम से हमारे किसान भाइयों जानते हैं, दूध दूने के बाद एक कटोरे में 1 चुटकी पोटासियम परमैंगनेट डाल के चारों जो हमारा टीट कैनाल होता है उसको, जो चारों जो थन का बांट होता है उसको आप डिप कर दें। अगर आप इतनी सावधानी बरतते हैं तो जो बहुत जो थनैल से आप परेशान रहते हैं इससे आपको बचाव बहुत हद तक हो जाएगा। इस और दूसरा, जो अभी जो मौसम आता है, देखिए कि रात में थोड़ा मौसम ठंडा हो जाएगा, दिन में थोड़ी गर्म होगी, उमस होगी, तो आपको जो एक गलघोंटू बीमारी होती है HS, जिसको हम लोग हेमरेजिक सेप्टिसीमिया कहते हैं, वो बीमारी खास करके भैंसों में देखने को ज़्यादा मिलती है, तो आप ये कोशिश करें। और ब्लैक क्वार्टर जिसको लंगड़ी कहते हैं, तो रक्षा ट्रायोवैक नाम की वैक्सीन आती है जो FMD HS BQ तीनों के अगेंस्ट काम करती है, तो आप वैक्सीनेशन बिल्कुल करें। और अभी बरसात शुरू होने से पहले आप जिन लोगों ने भी कृमिनाशक दवा अपने पशुओं को नहीं दी हो, तो तुरंत एक कृमिनाशक दवा, जो खास करके जो बाढ़ग्रसित क्षेत्र का इलाका है जहाँ जल जमाव होता है, उसमें आप बरसात शुरू होने से पहले एक बार कृमिनाशक दवा दे दें, और दूसरा बरसात खत्म हो जाए तब एक बार आप कृमिनाशक दवा दे दें। ये दवा आप अगर आप दे देंगे तो निश्चित रूप से आप अपने पशु को बरसात के दुष्प्रभाव से बचा सकते हैं।
5: सर, इस दौरान परजीवियों से भी बहुत ज्यादा परेशानी होती है पशुओं को, तो परजीवी को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है?
7: देखिए किसान भाई जब एक गलती करते हैं, जब इनके पशुओं के शरीर पर परजीवी होता है, तो मैंने अभी बताया कि एक कृमिनाशक दवा वो जरूर दे दें। आपके पास जितनी पशु है सबको, या फिर अमितराज आप इस्तेमाल कर रहे हो या फिर आप आइवरमेक्टिन इस्तेमाल कर रहे हो, आपके यहाँ जो भी पशु है सारे पशुओं पर एक साथ इस्तेमाल करें, और इस अमितराज का घोल या फिर साइपरमेथ्रिन का घोल आप अपने सारे जो यहाँ पर पशुशाला है वहाँ रखते हैं वहाँ पर भी छिड़काव कर दें। तो अगर ये कर लेते हैं तो आपकी पशुएं जो बाह परजीवी है इससे सुरक्षित हो जाएगी। और आपको ज्ञात नहीं है या है ये बता दें कि ये जो बाह परजीवी है वो आपके पशुओं में जो बहुत ज़्यादा बीमारी बड़ी होती है, जैसे खूनी पेशाब है, सर्रा है, थिलेरियोसिस है, और ये सब काफ़ी पशुओं की बड़ी बीमारियां हैं। ये सब इन्हीं जो चमोकन, अठैल, किलनी, टिक्स, माइट, लाइस वगैरह जो परजीवी हैं, वह परजीवी इन्हीं के द्वारा एक जो संक्रमित पशु है उसे स्वस्थ पशु में फैलाया जाता है। तो इससे अगर आप उपाय कर लेंगे तो आपको इन जो जानलेवा बीमारियाँ हैं इससे भी आपको निजात मिलेगी, इसका आप बिल्कुल ध्यान रखें।
5: जी सर, सर, नवजात पशुओं के लिए हर मौसम में जरूरी होता है कि उनके लिए हम कुछ विशेष प्रबंधन करें, उनकी विशेष देखभाल करें। बरसात के मौसम में नवजात पशुओं की क्या विशेष देखभाल करनी चाहिए?
7: देखिए, बरसात के मौसम में खास करके जो नवजात बछड़े होते हैं उसकी विशेष देखभाल होती है। अगर आप जिस वक्त बच्चे जन्मते हैं उस समय आप उसको बिल्कुल जल्दी से सूखा जितना कपड़ा से रख के उसको पोंछ दें, उसके जो आप नाभि अगर सटी हुई रहती है माँ से, तो उसको अच्छे सीजर्स से काट के टिंचर बेटाडीन से आप उसको साफ करके उसको बांध दें। उसके अलावा कोशिश करें कि वो मिट्टी में नहीं संपर्क करें उसका बच्चा ज़्यादातर, क्योंकि इससे कभी कभी टेटेनस होने का खतरा बढ़ जाता है। ये करें और कम से कम एक घंटे के बाद, जन्म होने के 1 से 2 घंटे के बाद आप अपनी जो गाय हैं, बछड़े हों या बाछी हो, उसको माँ का दूध जो कोलेस्ट्रम बहुत रिच होता है उसको ज़रूर दें। हमारे किसान भाई क्या करते हैं, खीस खीस उसको कहते हैं कि लोकल लैंग्वेज में, उसको नहीं पिलाते हैं जिससे बच्चे कमज़ोर हो जाते हैं। उसमें इम्यूनोग्लोबुलिन जी रहता है जो बच्चे को प्रतिरोधक क्षमता, रोग से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता होती है। आप बच्चे के वजन का 1/10 भाग एक दिन में जरूर पिलाएं। ये नहीं किसान भाई गलती कर देते हैं कि लगातार पिला देते हैं जिससे पेट झरने लगता है, इसी के डर से किसान भाई नहीं पिलाते हैं। तो बच्चे के वजन का 1/10 भाग कोलेस्ट्रम आप उसको जरूर पिलाएं। अगर मौसम में तापमान 25 डिग्री से कम है तो आप वो हर संभव कोशिश करें कि उसके घर के अंदर काफ़ी, खास करके लगातार बरसात हो रही हो तो निमोनिया का प्रकोप विद बच्चों जिन नवजात बछड़ों में देखने को मिल सकता है, उससे बचाव के लिए कम से कम उसके रूम का 25 डिग्री के आसपास का टेम्परेचर रखें। अगर ये सारी बातें आप अगर बरसात के मौसम में आप अपनाते हैं या फॉलो करते हैं तो आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। और ये कोशिश करें कि जहाँ जल जमाव का क्षेत्र है अभी के मौसम में, तो अपनी पशुओं को उधर अभी चराने से, ग्रेजिंग से भी बचें आप। अगर उससे उसमें क्या होता है, सारे वेक्टर्स जो कीड़े मकोड़े के वेक्टर्स होते हैं, स्नेल्स के द्वारा फैलाव होते हैं, वो फिर कृमि का जो अंडा है वो आपके पशु के पेट में फिर पुनः चला जाता है और फिर वो संक्रमण करता है और आपके पशु का प्रोडक्शन कम होता है। तो संतुलित राशन, घर का प्रबंधन, टीकाकरण, बरसात से पहले जो भी टीके की आवश्यकता है FMDHS BQ, इसका टीकाकरण नियमित रूप से अगर आप करवा लेते हैं, और खाने की, भोजन की व्यवस्था, तो इस समय जो घास की बड़ी प्रॉब्लम होती है तो साइलेज और हे बनाना, जिस समय अभी बहुत ज़्यादा खेतों में बहुत ज़्यादा सूडान लगा हुआ होगा, मल्टी कट सोरगम लगा हुआ होगा, मक्का लगा हुआ होगा, इसका इसको चॉपिंग करके साइलेज बैग में अगर आप एकत्रित कर लेते हैं तो आने वाले समय में आपको कोई परेशानी नहीं होगी।
5: जी सर, सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने जो बातें बताई और विस्तार से बताई हमारे किसान भाई बहनों के लिए और ख़ास तौर से हमारे पशुपालक भाई बहनों के लिए ये काफ़ी फायदेमंद और उपयोगी साबित होगा। तो किसान भाई बहनों, आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, लेकिन जाने से पहले खास बात की अपना और अपनी फसलों का और ख़ास तौर से अपने पशुओं का रखे विशेष ध्यान और अपनी मिट्टी से करे ढेर सारा प्यार। नमस्कार।
0: उन्नत कृषि,

0: देखो नाटक देखो।
1: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं? हाँ या ना?
2: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
1: हाँ। इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
2: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
3: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
1: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
4: क्या क्या क्या?
2: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
4: अच्छा,
0: तो सबकी समझ में आ गया ना? खसरा रुबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाए जड़ तक।
2: टीकू, तेरे कितने दोस्त है?
5: टीनू, मीनू, राजू, पिन्नी
2: और तुम्हारी वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
5: 11 दोस्त?
2: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
5: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
2: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
5: लेकिन ऐसा क्यों?
2: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
5: टीकी, तो इसका हल क्या है?
2: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
0: याद रखो,
5: आपके बच्चों के टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
6: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 ग्रीन FM। उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा, आपका स्वागत करती हूं किसान भाई बहनों को संबोधित हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। उन्नत कृषि में आज हम बात करने वाले हैं चेना मिलेट के बारे में और किस तरीके से चेना मिलेट की खेती की जाती है और क्या प्रबंधन करने चाहिए, कि किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस बारे में हमें विस्तार से बताने के लिए आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर महेश कुमार सिंह। आप हैं एसोसिएट प्रोफेसर कम सीनियर साइंटिस्ट। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
7: बहुत बहुत धन्यवाद।
6: सर, अगर हम बात करें चेना मिलेट की, तो क्या जिस तरीके से जलवायु बदल रही है उसके अनुकूल है चेना मिलेट?
7: देखिए, जलवायु बदलाव का मुख्य कंपोनेंट देखा जाए तो अधिक से अधिक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन की वजह से जलवायु परिवर्तित हो रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन से परिवर्तित हो रहा है जलवायु। तो ऐसे में जो हमारे C3 क्रॉप्स हैं उनका उत्पादन घटना स्वाभाविक है और घट भी रहा है। लेकिन जो C4 क्रॉप्स हैं, हमारा मक्का है, विभिन्न प्रकार के श्री अन्य की फसलें हैं जिसमें चीना भी एक शामिल है, ये सभी बढ़ते तापमान भी अपने आप को उपयुक्त साबित कर लेते हैं और इन फसलों को बहुत कम पानी की जरूरत होती है। तो जलवायु अनुकूल परिस्थितियों के लिए ये बहुत ही उपयोगी हैं। और चेना तो एक ऐसी फसल है जिसकी हम एक वर्ष में अपने बिहार राज्य में 4 बार बुआई कर सकते हैं। मात्र 65 से 70 दिनों में तैयार होने वाली ये फसल किसानों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। अब आप समझ सकती हैं कि जब 65 दिन में तैयार होगा तो इसका जल डिमांड बहुत कम होगा। जहां धान आपका 130 से 140 दिन समय लेती है, उतने समय में हमारा चीना की 2 फसल तैयार हो जाएगी। तो किसानों के लिए तो बहुत ही एक अच्छा मौका है। विपरीत परिस्थितियों में कभी कभी अर्ली स्टेज में सुखाड़ की स्थिति आती है तो वहाँ पे धान फेल कर जाता है, तो कोई बात नहीं, घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। वहाँ पे हम 15 अगस्त तक भी चीना लगा करके एक अल्टरनेटिव फसल के रूप में लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
6: जी सर, जैसे कि अभी आपने बताया 15 अगस्त तक भी कर सकते हैं, तो कब चेना मिलेट की खेती की जाती है?
7: देखिए, हमारे बिहार राज्य में तो जो प्री साइक्लोनिक रेंस हैं देखा जाए तो वो कभी कभी मई के अंतिम सप्ताह में आने लगते हैं। तो जो किसान भाई वर्षा पर आधारित हैं, लोग बरसात पहली बरसात पाते ही इसकी बुआई कर सकते हैं, अर्थात कभी जब हमको मई के अंतिम सप्ताह में बरसात हो गई हम इसकी बुआई कर सकते हैं। कभी कभी 15 जून को बारिश आती है तो हम 15 जून को बुआई कर सकते हैं। कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जब हमको 30 जून को बारिश मिलती है, जैसे इस वर्ष देखा जाए तो शुरू में तो हुई, बीच में बरसात नहीं हुई, तो 30 जून को भी बो सकते हैं। अगर हमारी पहले की फसलें खेत में खड़ी है, हम कटाई लेट से कर पा रहे हैं, तो हम विपरीत परिस्थितियों में 15 अगस्त तक भी इसकी बुआई कर सकते हैं, बशर्ते हमारा खेत ऐसा होना चाहिए जहां जल जमाव नहीं होने चाहिए, अर्थात ऊपरी जमीन होना चाहिए या मध्यम ऊपरी जमीन होना चाहिए, क्योंकि जल के प्रति ये फसल बहुत ही सेंसिटिव है। अगर खड़ी फसल में किसी भी स्टेज में 10 घंटे भी पानी लग जाए, विशेषकर सीडलिंग स्टेज में, तो 5 घंटे भी पानी स्टैंडिंग मोड में खड़ा रहे, जल जमाव हो जाती है, तो फसल देखते देखते पूरी गल के खत्म हो जाती है। फसल अगर 20-25 दिन की हो गई है, उस समय अगर 24 घंटे पानी लग जाए खेत में तो भी फसल को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। फसल अगर 45 दिन की हो चुकी है, उस समय अगर 24 घंटे पानी खेत में पड़ा रह जाता है तो बहुत ज्यादा हानि नहीं होता है, लेकिन फिर भी हानि हो जाता है। तो विशेषकर देखा जाए तो बुआई से लेकर के 25 दिन तक का जो समय है, उस समय खेत में कभी भी 4 घंटे भी खेत में पानी नहीं लगना चाहिए। तो इसलिए हम लोग तो कहते हैं कि हमारे बिहार राज्य में खेती करना है तो हम लोग ब्रॉड बेड एंड फरो मेथड पर इसको बेड बनाएं, BBF से, ब्रॉड बेड एंड फरो से, और बेड पर इसकी बुआई कर दें, तो वहाँ हैवी से हैवी रेनफॉल होगा तो भी जल जमाव नहीं होगा, तो वहाँ उत्पादन अपने आप बहुत अच्छा होता है और ज़्यादा उत्पादन मिलता है। तो एक तो हमें ध्यान देना है कि हम बुआई अपने अनुसार जब हमारा खेत खाली है तब कर सकते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि इसकी बुआई अगर हम मार्च के प्रथम सप्ताह से लेकर के 15 अगस्त तक भी करते हैं तो हमारी फसल बहुत अच्छी होती है। हालांकि जब हम वर्षा आधारित खेती की बात करते हैं तो हम लोग को ये इंश्योर होना पड़ता है कि बारिश कब हो रही है, उसी समय बुआई करें। लेकिन जिन किसान भाइयों के पास सिंचाई की सुविधा है और उनका खेत मान लीजिए मसूर हार्वेस्ट हो गया, सरसों हार्वेस्ट हुआ, मसूर हार्वेस्ट हुआ, तो मार्च के प्रथम सप्ताह में बुआई कर सकते हैं। वहाँ अगर उनका चना हार्वेस्ट करके लगाना चाह रहे हैं, चीना को, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोसो मिलेट इंग्लिश में, तो चना जनरली हमारा अप्रैल के प्रथम सप्ताह तक होता है। हम गेहूं की हार्वेस्टिंग के बाद भी इसको अच्छे से लगा सकते हैं, गेहूं हमारा 10 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल के बीच में हार्वेस्टिंग होता है, उस समय भी हम लगा सकते हैं। लगाने के ठीक 70 दिन बाद कट के तैयार खेत खाली हो जाएगा। अगर हम लगातार चीना चीना ही लगाएं तो भी हम देखें, अगर हम 10 मार्च को पहली बुआई करते हैं रबी की सरसों मसूर की कटाई करने के बाद, तो 10 अप्रैल 30 दिन हुआ, 10 मई 60 दिन हो गया, 20 मई को आपका खेत खाली हो जाएगा, 20 मई को अगली चीना की फसल लगा सकते हैं। तो इस तरह से ये तो हमारे लिए बहुत रामबाण है, हम कैच क्रॉप के रूप में भी इसको ले सकते हैं। जब कभी भी हमारा खेत 2 महीने के लिए खाली है, 65 दिन के लिए खाली है, हम उसमें कर सकते हैं। अगर किसी कारणवश हमारा खेत केवल 50 दिन के लिए खाली है तो वहां पर हम इस फसल की नर्सरी डाल देंगे, 25 दिन की नर्सरी हम रोपाई कर देंगे, हमारा 45 से 50 दिन में रोपाई करने के 45 से 50 दिन बाद फसल पक के तैयार हो जाएगी। तो हमारे मैनेजमेंट के ऊपर है कि हम किस तरह से मैनेजमेंट करें, लेकिन इसका अगर बेस्ट टाइमिंग देखा जाए तो हम लोग यही कहते हैं कि जब वर्षा आधारित खेती हो रही है तो बरसात जैसे ही मिले आपको बुआई कर देना चाहिए, अच्छा रिजल्ट, क्योंकि बरसात के समय में फिर क्या होता है, जब झमाझम बारिश हो रही होती है उसमें अगर फसल आपका पक जाती है तो दाना झड़ जाता है, तो इसलिए थोड़ा सा वहाँ पे रिस्क है कि जब बरसात हो रही हो, यानी अगर 15 अगस्त को आपका फसल पक के तैयार हो रहा है किसी कारणवश, तो उस समय तो बरसात ऐसी हो रही होगी कि दाना पूरा झड़ करके जमीन में चला जाएगा, तो थोड़ा सा वहाँ पे हानि होता है। इसलिए सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर हम इसकी बुआई 15 जुलाई को करें तो आप देखिए कि 15 अगस्त 15 सितंबर 60 दिन हो गया है, और 20 सितंबर को ये पककर तैयार हो गया, 20 सितंबर तक जनरली बरसात बहुत कम रहती है तो उस समय भी बुआई कर सकते हैं। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी है किसान के ऊपर कि इसकी बुआई आप 10 मार्च से लेकर के 15 अगस्त के बीच में कभी भी जब आपको सुविधा लगे कर सकते हैं।
8: जी सर, और कैसे करनी चाहिए खेती?
7: हाँ, अब इसके देखिए सबसे बड़ी महत्वपूर्ण है कि खेत की तैयारी जैसे आप करते हैं वैसे कर लीजिए, 2 से 3 बार जुताई करके पटा लगा कर खेत तैयार कर लिया, उसके बाद बेड अगर बना सकें ब्रॉड बेड एंड फरो इक्विपमेंट के माध्यम से तो बेड पे कर सकते हैं, नहीं तो आजकल हमारे पास रेज बेड मेकर होता है, उसमें लगभग 67 सेंटीमीटर के अंतराल पर बेड बनता चला जाता है और बेड की चौड़ाई लगभग 40 सेंटीमीटर होती है, वहां पे दो कतार इस पे बेड पर भी आ जाएगी इसकी, तो उस पर भी बुआई कर सकते हैं। नहीं तो ब्रॉड बेड एंड फरो मेथड से वहां पे हम 150 सेंटीमीटर चौड़ा अगर बेड बनाते हैं तो उस पे लगभग 6 लाइनें आ जाएंगी इसकी, 6 से 7 लाइनें, तो वहां बीबीएफ पर भी बुआई कर सकते हैं। और जिन भाइयों किसान भाइयों के पास ये सुविधाएं नहीं हैं, वो लोग इसकी फ्लैट में बुआई करेंगे समतल जमीन में, तो वहां कतार से कतार की दूरी आपको 22.5 से 25 सेंटीमीटर के बीच में यानी 9 से 10 इंच की दूरी पर कतार से कतार मेंटेन करते हुए 2 सेंटीमीटर की गहराई पर बुआई करनी है। बहुत ज्यादा गहरा बुआई करने पर दिक्कत हो जाती है, जमाव नहीं होगा। जैसे बाकी मिलेट की फसलें हैं वैसे ये भी सेंसिटिव है, 2 से 2.5 सेंटीमीटर पर्याप्त गहराई होता है बुआई के लिए, और स्पेसिंग जो रखते हैं कतार से कतार की 9 से 10 इंच।
8: किसान भाई बहन किन प्रजातियों का चयन करें?
7: सबसे महत्वपूर्ण है हमारी जो अधिक उत्पादन देने वाली प्रजातियां हैं, हम लोग चेना की बात कर रहे हैं, तो चेना की जो सबसे अच्छी प्रजाति है अभी हम लोग यहाँ देख रहे हैं, ये तमिलनाडु की हम लोग वैरायटी यहाँ पिछले 5-6 वर्षों से चेक कर रहे हैं, तो उसकी TNAU 151 तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से निकली हुई प्रजाति है, उसका नंबर है 151। TNAU चीना 151 जो है सबसे अच्छी चल रही है। उसके बाद दूसरा बेस्ट है TNAU 145, ये भी बहुत अच्छी प्रजाति है। तीसरा है TNAU 202, ये तीनों तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से निकली हुई हैं और बहुत ही अच्छी प्रजातियां हैं। इनकी उत्पादन क्षमता लगभग 10 क्विंटल प्रति एकड़ मिल जाती है। अब देखिए किसान भाइयों, अगर 10 क्विंटल प्रति एकड़ मात्र आपको 2 महीने 5 दिन में मिल जाए तो कहीं से कोई घाटे का सौदा नहीं है। और एक चौथी प्रजाति है BR7 जो हमारा सेंट्रल एग्रीकल्चर श्री राजेंद्रा सेंट्रल यूनिवर्सिटी पूसा समस्तीपुर में है, तो वहां की निकली हुई प्रजाति है BR7। इनकी भी उत्पादन क्षमता करीब 9 क्विंटल प्रति एकड़ तक की है। तो चीना की ये जो चारों प्रजातियां हैं उनको लिया जा सकता है। अभी हम लोग अपने किसान भाइयों के लिए खरीफ मौसम में, खरीफ मौसम 2026 में हमारे पास बीज है, हम लोग एक परियोजना सेंटर ऑफ एक्सीलेंस मिलेट वैल्यू चेन के तहत इनको फ्री में अर्थात निशुल्क हम किसानों को जो अभी सीमित बीज है, अभी जो 20-25 किसान हमारे पास आ जाएंगे उनको हम चीना की निशुल्क 2-2 किलो बीज वितरित करेंगे। और जो किसान भाई चीना ज्यादा एरिया में लगाना चाहते हैं वो बिहार सरकार के जो उनके ब्लॉक के कृषि पदाधिकारी हैं या जिले के कृषि पदाधिकारी हैं उनसे बात करके रजिस्ट्रेशन करा लें, उनको बीज फ्री में देगी बिहार सरकार। साथ ही साथ उनको प्रति एकड़ 4,000 रुपये तक का इनपुट और अनुदान मिल जाता है, 2,000 रुपये उनको खाते में पैसा ट्रांसफर कर देती है बिहार सरकार, जबकि 2,000 रुपये का उनको खाद बीज दवा का इनपुट के रूप में दे देती है। तो बिहार सरकार आप लोग के लिए किसान भाइयों बहुत ही एक लाभकारी योजनाओं के साथ चल रही है। आप श्री अन्य की विभिन्न फसलों को लगा सकते हैं अपने खेतों पर और एक अच्छा लाभ कमा सकते हैं, इससे बहुत से मूल्यवर्धित उत्पाद बनाकर और ज़्यादा प्रॉफिट ले सकते हैं।
8: और खरपतवार प्रबंधन के लिए क्या करना चाहिए?
7: बाकी फसलों की तरह इसमें भी खरपतवार बहुत आते हैं। बुआई के 15 दिन से लेकर के 35 दिन तक खेत खरपतवार से मुक्त होना चाहिए। खरपतवार ज़्यादा होने पर उत्पादन में 35 से 40% तक की गिरावट आ जाती है, इसलिए समय पर खरपतवार प्रबंधन जरूरी है। जनरली अगर हम फसल में विभिन्न प्रकार के ड्राई लैंड वीडर हैं, मशीन है, मैकेनिकल मेथड से हम अगर उसकी कतारों के बीच में मशीन चला करके निराई कर लें तो अति उत्तम, नहीं तो दूसरा है कि हम खुरपी के माध्यम से निकौनी कर लें। अब दोनों माध्यम से अगर संभावना नहीं है तो केमिकल हर्बिसाइड का सहारा भी लिया जा सकता है, उसके लिए हम लोग पेंडीमिथिलीन रिकमेंड करते हैं बुआई के तुरंत बाद। बुआई के 2 दिन के भीतर ये दवा देना है, ध्यान रखिए बीज जमने से पहले, क्योंकि 48 घंटे बाद बीज में फुटाव शुरू हो जाता है और लगभग 72 घंटे तक तो बीज बाहर आ जाता है, तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि बुआई के 24 घंटे के अंदर पेंडीमिथिलीन का व्यवहार करना बहुत जरूरी है। और ये भी देखना होगा कि बुआई के 24 घंटे के अंदर दे रहे हैं तो देने के 24 घंटे तक बरसात न हो, क्योंकि बरसात अगर हो जाता है तो ये दवा पेंडीमिथिलीन जाके बीज के संपर्क में आ जाएगा, क्योंकि बीज इसका हम 2 सेंटीमीटर गहराई पर ही बोते हैं, और रिस्क करके बीज के संपर्क में आएगा, बीज को जमने नहीं देगा। तो इसलिए मौसम साफ रहने पर ही पेंडीमिथिलीन का प्रयोग करें। उसके लिए हम लोग बात करते हैं जो 1 किलोग्राम सक्रिय तत्व पेंडीमिथिलीन है प्रति हेक्टेयर देने की जरूरत है, क्योंकि सक्रिय तत्व की बात करें तो उस पर 30% का आता है, तो प्रति हेक्टेयर 3.3 लीटर कमर्शियल प्रोडक्ट बाजार का पेंडी मिथिलिन देना पड़ता है, या एकड़ में बात करें तो 1.25 लीटर 1.25 लीटर प्रति एकड़ आपको बुआई के तुरंत बाद पेंडी मिथिलिन देना है, जिसको आप आवश्यकता अनुसार 200 लीटर पानी में घोल करके आप छिड़काव कर सकते हैं। या तीसरा विधि है कि आप 2 ml यानी 30 ml पेंडी मिथिलिन प्रति टंकी पानी में घोल करके आप छिड़काव कर दीजिए, और एक एकड़ में लगभग 10 से 11 टंकी पानी देना है। तो इस प्रकार से आपके जो मुख्य खरपतवार हैं वो अगले 7-8 दिन तक नहीं जमेंगे। फिर उसके बाद इसमें जो है हम लोग केवल 2,4-D का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास बहुत ज़्यादा हर्बिसाइड उपलब्ध नहीं है। अगर दूसरी हर्बिसाइड देते हैं तो पौधों को भी हानि करता है, इसलिए बुआई के 20 से 25 दिन पर चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार अगर हैं खेत में तो उनको मारने के लिए केवल हम 2,4-D नमक दवा का प्रयोग कर सकते हैं। उसके लिए 2,4-D हम लेकर के, जैसे उसका रिकमेंडेशन है 600 ग्राम सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर, तो जनरली 2,4-D जो 58% इसी का आता है उसकी बात करें तो लगभग 22 से 25 ml दवा प्रति टंकी पानी की दर से प्रयोग करें, और प्रति एकड़ 10 टंकी पानी अवश्य दें। तो इस तरह से चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार नियंत्रण, बाकी जो खरपतवार बचते हैं उनको निराई करना पड़ेगा मैनुअली, हाथ से निकाल के बाहर करें खेत से। अब इसमें आती है बात एक न्यूट्रिएंट प्रबंध मैनेजमेंट की, जिसको हम लोग बोलते हैं पोषक तत्व प्रबंधन। तो किसान भाइयों, जो भी श्री अन्य की फसलें हैं, सामा, कोदो, कौनी, मड़ुआ, ये सब में धान की तुलना में देखा जाए तो जस्ट आधी खाद की जरूरत पड़ती है। तो उसी तरह से चीना में, जिसको हम लोग प्रोसो मिलेट बोलते हैं, इसमें भी धान का आधा मात्रा खाद देने की जरूरत पड़ती है, अर्थात 50 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 से 45 किलोग्राम फास्फोरस और 25 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर देना है। किसान भाइयों, आपके शब्द में बात करें तो इसके लिए एक बोरा यूरिया, लगभग 45 से 50 किलो यानी एक बोरा DAP और आधा बोरा पोटास प्रति एकड़ आपको व्यवहार करना है। DAP और पोटास की पूरी मात्रा बुआई के समय दे दिया जाए, जबकि यूरिया की मात्रा को 2 भाग में बांटना है। पहला बुआई के 20 दिन पर, 20 से 22 दिन पर जब इसमें टिलरिंग शुरू हो जाता है, चूंकि ये फसल मात्र 65 दिन की है इसलिए दूसरी डोज 50 दिन के बजाय हमको 40 दिन पर देना पड़ेगा, जब इसमें 35 से 40 दिन पर इसमें देखेंगे फ्लावर आना शुरू हो जाता है, तो 40 दिन पर हर हाल में दूसरी डोज यूरिया का दे देना होगा। तो इस तरह देखा जाए एक बोरा यूरिया देना है तो 25 किलो आप बुआई के 20 दिन बाद, और अगला 20 किलो बुआई के 40 से 45 दिन पर अवश्य 40 दिन पर अवश्य प्रयोग करें। तो इस तरह से खाद का प्रबंधन करके हम एक सही उत्पादन ले सकते हैं।
8: जी सर, और जिस तरीके से आपने बताया कि किसान भाई बहनों को फ्री मुफ्त बीज भी
7: मिलेगा,
8: जी, जा रहा है, जी। तो ये भी काफ़ी फायदेमंद होगा। तो किसान भाई बहनों, इस मौसम में आप ज़रूर चीना मिलेट की खेती करें और बहुत मुनाफा आय कमाएं, और जिन बातों का सर ने बताया उन बातों का ध्यान रखें। तो आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार। उन्नत कृषि
9: Attention, attention, attention, all the ladies and gentlemen. This is to remind you all about the importance of immunization. If your kids are 5 or less who have missed a vaccine, hear this appeal. Getting them vaccinated immediately is the key. For their safety and health, it is a wise request. Protecting them from illness to be their best. And remember, vaccination is safe and it saves your children from deadly diseases. So, see you at the vaccination center soon.
10: To get more information about vaccination, visit your nearest health facility center.
11: अरे यार, फिर पिट गया। बेल देना। इसको आउटसाइड द ऑफ टाइम डालना चाहिए था। इसकी यही प्रॉब्लम है।
12: कब से?
11: जब से क्रिकेट खेल रहा है तभी से।
12: अरे भाई साहब, क्रिकेट की नहीं, हम आपकी खांसी की बात कर रहे हैं। बुड़बात
11: खांसी?
12: हाँ।
11: इसको तो एक आध महीना हो गया।
12: खुद की खांसी को एक आध महीने हो गए हैं और यहाँ क्रिकेट पर अपने ही गुगली फेंक रहा है। चलिए चलिए चलिए
11: डॉक्टर, खांसी तो है।
12: देखिए भाई साहब, इसे हल्का मत लीजिए। 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी रहे तो TB हो सकता है।
11: TB?
12: हाँ। तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए।
11: ठीक है।
12: TB किसी को भी हो सकता है, अगर हो गया तो बिना भूले पूरा कोर्स करिए और फिट हो जाइए। नहीं किया तो इसका इलाज बहुत मुश्किल है। समझ गए भाई साहब आप? आइए, दो हफ्ते से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराएं। टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
6: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार और आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई में। दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि सरकार ने HPV का टीका सभी 14 साल से ऊपर के बच्चों के लिए मुफ्त कर दिया है। HPV का टीका लगाना शुरू तो हो गया है, लेकिन अभी भी बहुत सारे हमारे श्रोताओं के मन में बहुत सारे सवाल हैं। तो आज हम बात करेंगे HPV टीके की और कोशिश रहेगी कि आपके मन में जो भी सवाल हैं उनके जवाब भी हम दे सके। जब भी कोई पहल होती है, खास तौर पर सेहत के मामले में, तो हमारे परिवारजनों के मन में डर रहता है और कई सारे सवाल भी रहते हैं, खासकर जब सोशल मीडिया हमारे पास है और सोशल मीडिया और मोबाइल पर चल रही बहुत सी बातें होती है, बहुत सी अफवाहें होती है। तो उन अफवाहों से लोगों के मन में उलझन और सवाल दोनों ही पैदा होते हैं। इसलिए आज हम कुछ आम सवाल उठाएंगे और आसान भाषा में उनके जवाब देंगे। तो बस आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए, आपको आज HPV टीकाकरण से जुड़े ढेर सारे सवाल मिलने वाले हैं। इसलिए, क्योंकि हमने बहुत से सवाल इकट्ठे किए हैं और एक के बाद एक हम उन सवालों को पढ़ेंगे और जवाब भी देंगे। तो पहला सवाल है, HPV टीका किस लिए लगाया जाता है? दोस्तों, HPV टीका सर्वाइकल कैंसर यानी बच्चेदानी के मुंह के कैंसर से बचाव में मदद करता है। ये कैंसर महिलाओं में होने वाली गंभीर बीमारियों में से एक है। अगर समय पर बचाव हो जाए तो बीमारी का खतरा काफी कम किया जा सकता है। इसलिए बहुत जरूरी होता है कि महिलाएं HPV टीका जरूर लगाएं। और दूसरा सवाल है कि क्या HPV टीका सुरक्षित है? जी हाँ, बिल्कुल सुरक्षित है। HPV टीका सुरक्षित माना जाता है और ये दुनिया के कई देशों में लगाया जा रहा है। ये कोई नई बात नहीं है। टीका लगने के बाद हाथ में हल्का दर्द, सूजन, हल्का बुखार, सिर दर्द या चक्कर आ सकते हैं और ये सामान्य बातें हैं। आमतौर पर जल्दी ठीक हो जाती है और कोई भी टीका आप लेते हैं तो ऐसी परेशानी थोड़ी बहुत होती है जो कि कुछ दिनों में ठीक भी हो जाती है। अब तीसरा सवाल, क्या इसका कोई बड़ा दुष्प्रभाव होता है? गंभीर दुष्प्रभाव बहुत दुर्लभ है, यानी कि गंभीर दुष्प्रभाव ना के बराबर होते हैं। इसलिए आप अफवाहों पर भरोसा ना करें कि अगर आप HPV टीका अपनी बच्ची को लगवाएंगे तो उन्हें कोई परेशानी हो जाएगी। और अगर आपके मन में फिर भी कोई सवाल बचते हैं, कोई चिंता होती है, तो आप आशा दीदी, ANM CHO या फिर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में भी आप बात कर सकते हैं। वो आपको और भी अच्छी तरीके से समझाएंगे कि इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है और बहुत रेयर होता है। चौथा सवाल कि ये टीका बच्चियों को ही क्यों लगाया जा रहा है? देखिए, क्योंकि HPV संक्रमण आगे चलकर सर्वाइकल कैंसर का कारण बन सकता है और ये बीमारी महिलाओं में होती है। इसलिए किशोरियों को, बच्चियों को बीमारी आने से पहले ही सुरक्षा देने के लिए टीका लगाया जाता है। कहते हैं ना कि बाद में इलाज से बेहतर है कि आप पहले ही बचाव कर ले, तो ये टीका बचाव के लिए है। पांचवा सवाल जो बहुत सारे लोगों के मन में उठ रहे हैं और बहुत सारी लड़कियां इस सवाल से चिंतित है कि क्या इससे भविष्य में मां बनने पर असर पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा, ये बिल्कुल कोरी अफवाह है। HPV टीका मां बनने की क्षमता पर कोई असर नहीं डालता। ये कैंसर से बचाव के लिए है। बांझपन या कमजोरी से इसका कोई संबंध नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ आपको कैंसर से बचाता है, सर्वाइकल कैंसर से बचाता है। छठा सवाल ये है कि क्या मोबाइल और सोशल मीडिया पर चल रही बातें सही है? बस यही बात तो आपको हम बताने आए हैं कि हर बात जो मोबाइल और सोशल मीडिया पर चल रही है वो सही नहीं होती। कई बार बिना जांचे परखे डर फैलाया जाता है और कई बार कुछ बातें ऐसी होती है जो किन्हीं तक एक पहुंची और उसने अपने पास वाले को दो बातें पहुंचाई, फिर तीन बातें, चार बातें, इस तरीके से बहुत बड़ी चढ़ी बात हम तक पहुंचती है। इसलिए कोई भी बात आप तक

तो साथियों याद रखिए, अफवाह से नहीं सही जानकारी से फैसला लें। HPV टीका बेटियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाने की दिशा में एक बहुत जरूरी कदम है। सेहत सही लाभ कई की ओर से ये संदेश जनहित में जारी है। आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें। फिलहाल मुझे यानी कि आपके होस्ट और दोस्त उमा को दीजिए इजाजत, लेकिन जाने से पहले खास बात की, स्वस्थ रहें, खुश रहें और अफवाहों से बचें। नमस्कार।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 22 से 26 जुलाई के दौरान आसमान में घने बादल छाए रहेंगे और जिले में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी चलने और हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 26 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 90% और दोपहर में 70 से 80% रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पे किसान भाई बहनों के लिए। जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दे, पिछले कुछ दिनों में हुई वर्षा का लाभ उठाइए और आगे भी संभावना है कि वर्षा होगी, तो ऐसी स्थिति में धान की रोपाई के लिए व्यवस्था सुनिश्चित कर ले। रोपाई से पहले प्रति हेक्टेयर 25 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस, 30 किलोग्राम पोटाश और 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट का प्रयोग करें। आपको बता दें कि निचली जमीन के चारों ओर मजबूत मेड़ यानी कि बांध बनाकर वर्षा जल का संचयन कर ले, ताकि जरूरत पड़ने पर आप वर्षा के जल का सिंचाई में उपयोग कर सके। जो किसान भाई बहन श्री अन्न की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दे, मोटे अनाजों की खेती के लिए उचास भूमि का चयन करें। मड़वा की वकुला KMR 316, GPU 67 और VL 379 राजेंद्र मड़वा RU 8 और RU 3। और आपको बता दे कौनी की अनुशंसित किस्में हैं राजेंद्र कौनी 1। आप इन किस्मों की बुआई कर सकते हैं। मक्का की खेती करने वाले किसान भाई बहन ध्यान दे, खरीफ मक्का की बुआई आसमान साफ रहने पर ही करें। खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और ध्यान रखें कि बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नेत्रजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश जरूर डालें। अनुशंसित मक्का की किस्में जैसे सुवान, देवकी, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, राजेंद्र संकर मक्का 3, गंगा 11 है। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दे, मिर्च, अगाध गोभी, टमाटर जैसी सब्जियों की नर्सरी तभी तैयार करें जब आसमान साफ हो। और बागवानी करने वाले भाई बहन ध्यान दें, जुलाई अगस्त आम के पौधों के रोपण के लिए सबसे उपयुक्त समय होता है। कलमी पौधों की रोपाई 10x10 मीटर और बीजू पौधों की रोपाई 12x12 मीटर की दूरी पर करें। सघन बागवानी के लिए 5x5 मीटर और आम्रपाली के लिए 2.5x2.5 मीटर की दूरी रखें। फलदार वृक्षों में प्रति वर्ष 1 किलोग्राम नाइट्रोजन, 30 किलोग्राम फास्फोरस, 700 किलोग्राम पोटाश और 80 से 100 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद जरूर डालें। आपको बता दें इस समय केला के स्वस्थ सकर्स की रोपाई करें। लंबी किस्मों जैसे अल्पान, कंथली, मालभोग, चिनिया, G9 और बॉनी किस्में जैसे ग्रैंड नेन, रोबस्टा, बसराई का चयन करना सबसे फायदेमंद होता है। लंबी किस्मों के लिए 2x2 मीटर और बॉनी किस्मों के लिए 1.5x1.5 मीटर की दूरी रखें। प्रत्येक गड्ढे में 5 किलोग्राम गोबर की खाद, 500 ग्राम अरंडी की खली, 300 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट, 100 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश और 10 ग्राम कार्बोफ्यूरान मिलाना ना भूलें। रोपाई से पहले सकर्स को कार्बन डाइजीम 2 ग्राम प्रति लीटर पानी से उपचारित करें। किसान भाई बहनों, टिश्यू कल्चर पौधे का उपयोग अधिक उत्पादन के लिए लाभकारी होता है। पशुपालक भाई बहन ध्यान दें, पशुओं में PPR, MFD यानी कि खुरपका मुंहपका और HS यानी कि गला घोटू, इन रोगों का खतरा अधिक है, इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण करवाएं, उन्हें साफ और सूखा रखें और बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। रोग के लक्षण अगर दिखाई दे तो तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें और ध्यान रखें कि पशुओं की बिना जरूरत के आवाजाही पर नियंत्रण रखें। गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए जून माह में अगर टीके नहीं लगाए गए हों तो इस महीने में टीके जरूर लगवा दें। पशुओं को संतुलित और पौष्टिक आहार दें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

0: കൃഷി. बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन. मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा. दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी किसान भाई बहनों को संबोधित विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में. उन्नत कृषि में आज हम बात करने वाले हैं धान की बुआई के बारे में. किसान भाई बहनों, ऐसे बहुत सारे किसान भाई बहन होंगे जिन्होंने अभी तक धान की बुआई नहीं की है किसी वजह से. तो अगर आपने अभी तक धान की बुआई नहीं की है और आगे आप धान की बुआई करना चाहते हैं, तो देर से किस्मों का चयन करना और देर से बुआई करने में बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है. तो देर से बुआई अगर आप कर रहे हैं तो किन बातों का ध्यान रखें, ये बताने के लिए आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर गायत्री कुमारी. आप हैं असिस्टेंट प्रोफेसर कम जूनियर साइंटिस्ट, आप हैं सस्य विज्ञान विभाग से. मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में.
1: धन्यवाद उमा, थैंक यू. नमस्कार सभी को.
0: मैम, जिन किसान भाई बहनों ने अब तक बुआई नहीं की है वो देर से बुआई कैसे कर सकते हैं?
1: जी, देर से बुआई करने के लिए अभी जैसे जो समय है फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई का, तो उसमें अब समझिए कि नर्सरी लगाने के लिए समय हमारे पास नहीं है. तो अभी कुछ तकनीकें होती हैं, जैसे धान की बुआई करने के तो बहुत सारी तकनीकें होती हैं. पहला होता है DSR, ट्रांसप्लांटिंग, SRI. तो ये सब चीज़ों के बारे में मैं बता दूंगी. हालांकि अगर हम देर से बुआई करने की बात करें तो उसमें आपकी सीधी बुआई करना यानी डायरेक्ट सीडेड राइस, डायरेक्ट सीडिंग करना अभी ज़्यादा लाभदायक है, क्योंकि अभी समय हमारा नर्सरी रेस करने का जा चुका है. अगर आप इस समय नर्सरी लगाते हैं तो समझ लीजिए 20 से 25 दिन आपको और लगेंगे और आपकी बुआई जो है मतलब ट्रांसप्लांटिंग जो है काफ़ी देर हो जाएगी, यानी अगस्त फर्स्ट वीक तक चला जाएगा. तो इसके लिए डायरेक्ट सीडिंग बहुत बेहतर रहता है अभी.
0: और किस तरीके से बुआई कर सकते हैं अभी?
1: डायरेक्ट सीडिंग का कहने का मतलब हुआ है कि हमने सीधे जो धान है, धान को लेकर हमें सीधे अपने मेन लैंड पर उसकी बुआई करनी है. तो सीधी बुआई करने का मतलब ये होता है कि हम यहाँ पे नर्सरी नहीं लगाते. हमने जो वैरायटी सिलेक्ट करना है, हमने जो समय सिलेक्ट करना है, तो उसके हिसाब से सिलेक्ट करना है कि अब हमारे पास जो समय है अपने नॉर्मल बुआई करने का वो जा चुका है. तो हम सीधी बुआई दो तरीके से करते हैं बेसिकली. एक होती है ड्राई DSR, एक होती है वेट DSR. ड्राई DSR मतलब सूखी बुआई और वेट DSR मतलब गीली बुआई. तो आपके खेत पर पानी कैसा है, किस तरह का जल जमाव हो रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि इन दोनों में से आप क्या कर सकते हैं. एंड दूसरी चीज़ हो गई वैरायटी, जो किस्म की हम बात करते हैं. आपको ऐसी वैरायटी लेनी है जो कि DSR के लिए अच्छे से मतलब रूट एस्टैब्लिशमेंट, यानी जब हम पौधे को अपने बीजों को गिराएं तो उसमें अच्छे से एस्टैब्लिश हो जाए. तो और दूसरी चीज़ ये कि अगर हम मीडियम ड्यूरेशन वैरायटी लें, शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटी लें, तो DSR के लिए वो बहुत बेहतर रहता है. तो कुछ चीज़ें जो है वो DSR के बारे में मैं डिस्कस कर देती हूँ यहाँ पर. तो सबसे पहली चीज़ DSR मतलब डायरेक्ट सीडिंग राइस, यानी सीधी बुआई. और इसमें हम जो मतभेद लेते हैं वो यूजुअली हम मीडियम ड्यूरेशन मतलब जो मध्य से बढ़ने वाले, मध्य मैच्योर होने वाले, या जो शॉर्ट ड्यूरेशन वैराइटीज़ होते हैं यानी जो जल्दी मैच्योर हो जाते हैं, उस तरह की वैरायटी हम लेते हैं. मतलब मीडियम मतलब कि 150 दिन के अंदर आपकी वैरायटी जो है वो मैच्योर हो जाएगी, और शॉर्ट ड्यूरेशन मतलब कि 90 से 110 दिन के अंदर आपकी मैच्योरिटी, आपकी जो वैरायटी है वो मैच्योर हो जाएगी, मतलब बड़ी हो जाएगी खेत के अंदर. दूसरी चीज़ ये कि जब हम DSR करते हैं तो उसमें हम नॉर्मली पडलिंग नहीं करते हैं. अपने खेत को हम कैसे तैयार करते हैं? खेत को तैयार करने के लिए आप एक दो बार उस पे आप हैरोइंग कीजिए, आप खेत को कोड़िए अच्छे से, एक बार दो बार कोड़ कर उसके जो बड़े बड़े ढेर हुए होते हैं उसको आप अच्छे से तोड़ कर आप उसको मतलब मिट्टी को बिल्कुल तोड़ देना है. एंड ध्यान रखिए कि मैं पडलिंग करने नहीं बोल रही हूँ, आपको पडलिंग नहीं करना उसमें. जिस तरह से आप ट्रांसप्लांटिंग के लिए आप मिट्टी को कीचड़ बना देते हैं, वैसा नहीं करना. DSR में हम सिर्फ मिट्टी को तोड़ देते हैं, इतने छोटे छोटे कणों में तोड़ देते हैं कि वो हमारे धान के जैसे साइज होते हैं ना दाने के, उसी साइज से कम हो जाए. ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि हमने जब मिट्टी को तोड़ दिया, उसको हैरोइंग कर दिया, उसके ऊपर क्या करते हैं, लेवलिंग कर देते हैं. हम अपने फील्ड के ऊपर उसको समतल कर देते हैं. तो समतल हमने इसलिए किया कि जब हम आपकी बुआई करेंगे तो बुआई करने के समय कुछ बीजें अपने सही जगह पर गिरेंगे, आप बुआई उसकी सही तरीके से कर सकेंगे. तो इसलिए लैंड को समतल करना बहुत ज़रूरी है. तीसरी चीज़, जो हम बीज लेते हैं, तो बीज को जो हम लेते हैं वो हम कोशिश करते हैं कि आपका जो पहले से अंकुरित बीज है अगर हम वो डालें तो आपकी बीज का एस्टैब्लिशमेंट बहुत अच्छे से होगा. तो उसको करने के लिए क्या करना है, हम जो अपने बीज लिए हैं तो बीज को आप बुआई के 72 घंटे पहले आप उसको पानी में भिगो दीजिए, और मतलब आप 72 घंटे तक रुकिए. उसके बाद जब थोड़ा सा अंकुरित हो जाता है, आपको थोड़ा सा उसके अंदर अंकुरण दिखने लगे बीज पे, तो आप उसको लेकर उसको फिर हम उसकी बुआई करते हैं, तो लगभग समझिए 72 घंटे तक हम उसको अंकुरित करते हैं पहले, और उसको हम प्री जर्मिनेटेड सीड बोलते हैं, माने पहले से जो अंकुरित हो गया हुआ है बीज हम उसको बोलते हैं ऐसा। तो उस बीज को हम लेकर हम उसको बुआई करते हैं। अब बुआई कैसे करना है, जो हमने ज़मीन तैयार किया था उसको लेवल कर लिया था, लेवल करने के बाद हम हैरो होते हैं हैंड से, हैंड हैरो यानी जो एक जिसको हम हिंदी में पंजा बोलते हैं कि यहाँ के किसान, तो उस पंजे से लेकर हमने लाइन बनानी है। अगर आपके पास ट्रैक्टर है, अगर आपका खेत बड़ा है, अगर आपके पास सीड ड्रिल है, तो हम डायरेक्टली सीड ड्रिल से भी गिरा सकते हैं, पर अगर प्लॉट आपका छोटा है तो आप पंजे को लीजिए, आप पंजे को लेकर उस एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक रस्सी खींचिए, उस रस्सी के मतलब रस्सी से जोड़ते हुए आप उस पंजे को खींचिए, लाइन बनाइए उस पंजे से। और लाइन कैसा बनना चाहिए, बहुत ज़्यादा गहरा लाइन नहीं बनाना है आपको, हल्के हाथ से लाइन बनाना है कि आपको 1 से 2 सेंटीमीटर का ही गहराई हो मिट्टी के अंदर। तो जब आप मिट्टी आप हल्के हाथ से जब उस पंजे को खींचते हैं यानी हैंड हैरो को खींचते हैं, तो आप 1 से 2 सेंटीमीटर तक की गहराई तक का लाइन बनता है आपके खेत के ऊपर, तो उस लाइन के ही ऊपर हम अपने बीज को डालते हैं। तो इस तरह से हम डायरेक्ट सोइंग करते हैं। अब डायरेक्ट सोइंग करने के लिए पहली चीज़ें जो होती है, मैंने बताया पहला सीड वैरायटी, आपको सिलेक्शन, आपकी वैरायटी की सिलेक्शन बहुत अच्छी होनी चाहिए। दूसरी आपकी सीड ट्रीटमेंट बहुत अच्छी होनी चाहिए, मतलब सीड ट्रीटमेंट आप करिए क्योंकि सीड आपका स्वस्थ रहेगा। आप जब सीड ट्रीटमेंट करते हैं तो आप जो जो आप पेस्टिसाइड जो आप खेत में फल जो उगने वाले पौधों को देते हैं उससे काफ़ी कम मात्रा में आप उस समय देते हैं जब बीज को आप बीजोपचार करते हैं। तो बीजोपचार करने के लिए कुछ फंगिसाइड जैसे कार्बेंडाजिम ले लिया हमने, और अगर आपके खेत में कोई विशेषता आपको पता है कि कोई कीड़े या कोई बैक्टीरिया फंगस का अटैक बहुत ज़्यादा है, तो उस बैक्टीरिया फंगस को मारने वाला कीड़ा आप बीजोपचार में ज़रूर कीजिए। तो बीजोपचार में हम वो केमिकल लेते हैं जो आपके खेत के उगने वाले पौधों को पहले फसल को पहले से बर्बाद करता है। तो जैसे सपोज मेरे यहाँ पे फंगिसाइड, मतलब मैं जानती हूँ कि हमारे यहाँ पे कोई फंगस अटैक अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा है, तो हम कार्बेंडाजिम लेते हैं। और कार्बेंडाजिम कैसे लेंगे, 2 ग्राम पर kg सीड, मतलब 2 ग्राम 1 kg प्रति 1 kg सीड में हम वो केमिकल लेकर बीजोपचार करने के समय बीजोपचार करते हैं उससे। तो जब हमने बीज को 72 घंटे के लिए छोड़ दिया था तो उसी समय हमने उसमें केमिकल मिला दिया बुआई करने के आधे घंटे पहले, मिलाकर हम उसको छोड़ते हैं आधे घंटे तक। उसके बाद हम आधे घंटे के बाद उसकी बुआई उससे बुआई करते हैं, उस धान को इस्तेमाल करते हैं। और फिर हमने बीज को लेकर हमने लाइन में सीधे, मतलब जैसे आप एक बार लाइन में गिराते जाइए, जिस तरह से आप गेहूं की बुआई करते हैं तो आप गिराते जाते हैं, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, हमें स्पेसिंग का, तीसरा चीज़ स्पेसिंग का हमें बहुत ख्याल रखना पड़ता है उसमें DSR में। तो DSR मतलब ये हुआ कि हम बीज को हाथों से गिरा रहे हैं, हम उसका रोपण नहीं कर रहे, जैसे हम सीडलिंग्स होता है तो हम सीडलिंग का रोपण ही नहीं कर रहे हैं, हम बीज को डायरेक्टली अपने हाथ से फील्ड पर गिरा रहे हैं। तो उसके लिए आप स्पेसिंग मेंटेन करना बहुत मुश्किल है, मतलब कम से कम पौधे और पौधे के बीच तो स्पेसिंग मेंटेन करना मुश्किल है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पहले तो रो टू रो स्पेसिंग मेंटेन करनी है, मतलब 2 लाइन जो आप खींच रहे हैं उस लाइन के बीच में कम से कम 20 सेंटीमीटर की दूरी होनी चाहिए। तो हर लाइन आपका 20 सेंटीमीटर का दूर होना चाहिए। फिर जब आप बीज गिराते हैं तो बीज आप कोशिश कीजिए, वैसे कहा जाता है कि DSR का स्पेसिंग आपका 10 से 15 होता है, लेकिन हाथ से आप गिराते हैं तो ये पॉसिबल नहीं होता है। भले अगर कोई सीड ड्रिल से कर रहा हो तो हो जाए, स्पेसिंग अपना टाइमली गिर जाता है 10 से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर जब हम हाथ से कर रहे होते हैं तो ये पॉसिबल नहीं होता है। तो उस समय क्या करना है कि आपने लाइन पे अपने लगातार आप बीज गिरा दीजिए। जब बीज अंकुरित हो जाता है, मतलब कि आप 5 से 6 दिन 1 हफ्ते के बाद देखिएगा आपके बीज निकल आए, तो उस 2 स्पेस के बीच में जो एक्स्ट्रा पौधे हैं आप उनको हाथ से खींचकर निकाल दीजिए, और फिर पौधे और पौधे के बीच की स्पेसिंग 10 सेंटीमीटर या 15 सेंटीमीटर आप मेंटेन कीजिए। ध्यान रखिए वैरायटी पे डिपेंड करता है, 10 से 15 सेंटीमीटर पौधे का पौधे स्पेसिंग जो होती है। दूसरी, ये तीसरी चीज़ हो गई। तो पहली चीज़ मैंने बताई आपकी वैरायटी, आपकी किस्म, आप उस हिसाब से चूज़ कीजिए जो आप अच्छे से इस्टेब्लिश कर सके, शॉर्ट ड्यूरेशन हो, मीडियम ड्यूरेशन हो, क्योंकि हम लेट से बुआई कर रहे हैं इसकी। दूसरी चीज़ ये कि बीजोपचार आपको ज़रूर करना है। तीसरी चीज़, आप जो स्पेसिंग करते हैं आप उसकी स्पेसिंग 20 लाइन टू लाइन की दूरी और पौधे पौधे की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर आप ज़रूर मेंटेन करके रखें। और उसके बाद आप जब हमने उसकी रोपाई कर ली, ठीक है, जब हमने लाइन खींचा, हमने बीज डाल दिया, उसके बाद हम उसमें खाद डालते हैं। तो खाद में आप यूरिया, SSP, MOP, मतलब NPK जो कहते हैं, ठीक है। तो NPK कैसे डालना है, नाइट्रोजन का जो दर होता है वो 100 से 120 केजी प्रति हेक्टेयर के लिए होता है, यानी कहे तो अगर हम उसको यूरिया के टर्म्स में बताएं तो 217 से 220 केजी प्रति हेक्टेयर यूरिया आपको डालना है। फॉस्फोरस आपको 50-60 केजी फॉस्फोरस देनी होती है, और उसके हिसाब से अगर हम एसएसपी डाल रहे हैं तो आपको वही 700 से लेकर 800 केजी प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आपको सिंगल सुपर फॉस्फेट डालना है। और पोटाशियम, पोटाशियम जो है हम कैसे डालते हैं, 40 केजी प्रति हेक्टेयर पोटाशियम डालते हैं। तो अगर हम एमओपी यूज़ कर रहे हैं पोटेशियम को डालने के लिए, तो आपकी 80 से 100 केजी प्रति हेक्टेयर म्यूरेट ऑफ पोटाश, ये जो फर्टिलाइजर्स आते हैं, तो आपको वैसे डालना है। तो इस हिसाब से आप खाद को डालिए। तो आप खाद को आप कैसे डालना है, हमने फॉस्फोरस, एसएसपी और एमओपी दोनों को हम बुआई के बाद डाल देते हैं, ठीक है। और यूरिया को क्या करते हैं, जैसे मैंने बताया कि 220 केजी प्रति हेक्टेयर है, ठीक है। तो उस 220 केजी प्रति हेक्टेयर को हम तीन हिस्से में बांट लेते हैं, ठीक है। तो कैसे बांटेंगे, पहले हमने आधा कर लिया, और उसके बाद उसका जो बचा हुआ आधा उसको फिर से हमने आधा कर लिया, मतलब 50% हमने बुआई के समय डाला, फिर बाकी 25% हमने टिलरिंग के समय डाला, और बाकी 25% हमने जब उसका पैनिकल आता है, यानी जब उसकी फलियां आती हैं, तो हमने डाला, ठीक है। तो यूरिया को हम पूरे यूरिया को एक साथ नहीं डालते, हम उसको तीन हिस्सों में बांट लेते हैं, 50-25-25%, ठीक है। तो आधा कर लीजिए, आधा ही हम देते हैं बुआई के समय, और उसके बाद 25-25% जो है हम टिलरिंग और पैनिकल इनिशिएशन के टाइम पे ही देते हैं। तो ये हमारा फर्टिलाइजर यानी खाद देने का तरीका हो गया। तो जो लाइन हमने खोला था उसी लाइन के ऊपर आप छिड़क दीजिए, और उसके बाद उस लाइन को बंद कीजिए। तो ये तरीका होता है डीएसआर को करने का। तीसरी चीज़ ये होती है कि डीएसआर जो होती है आपकी, वो नॉर्मल ट्रांसप्लांटिंग जैसी नहीं होती है। आप ट्रांसप्लांटिंग जब करते हैं तो क्या करते हैं, आप अपने खेत में पूरा पानी डाल कर, पानी बहुत ज़्यादा लगता है, आप खेत को पाटा करते हैं, पानी डालकर आप पानी भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं। पर डीएसआर में आपको पानी बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करनी होती, क्योंकि आपने, मैंने बताया, जैसे ड्राई डीएसआर होती है, वेट डीएसआर होती है, इसका मतलब कि ज़मीन जो है आपका बहुत ज़्यादा पानी से भरा हुआ नहीं है। नॉर्मल ट्रांसप्लांटिंग करते समय 2 से 5 सेंटीमीटर पानी आपका जमा होना चाहिए पूरे स्टेज पे, ठीक है। पर डीएसआर के टाइम पे आपको ऐसे हर स्टेज पे आपको पानी मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ जैसे भागलपुर में हमारा मौसम जैसा रहता है उस तरह से, तो अगर हम जैसे बारिश काफ़ी होती है यहाँ पे, तो सिंचाई नहीं देने की ज़रूरत पड़ती है, तो आप डीएसआर आराम से हो जाता है यहाँ पे। तो जो जल जमा होता है हम उसको बहुत ज़्यादा हर समय हम जल जमा करके नहीं रखते हैं, तो ये डीएसआर की खासियत होती है, आपके पानी की बचत होती है इसमें। और दूसरी चीज़ ये कि आपको एक विशेषता जो ध्यान देना होता है, वो होता है खरपतवार का। एक जो लिमिटेशन बोलते हैं डीएसआर का, वो ये है कि इसमें खरपतवार काफ़ी आते हैं। क्यों आते हैं, क्योंकि जो ट्रांसप्लांटिंग आपने किया तो उसमें जल जमाव होता है हमेशा, तो जो जल जमाव होता है उसके वजह से जो आपके खरपतवार हैं वो आ नहीं पाते पानी की वजह से। लेकिन डीएसआर में हमेशा पानी खड़ा नहीं होता, तो इसके लिए क्या होता है कि इसमें जो खरपतवार है काफ़ी मुसीबतें क्रिएट करती हैं। तो इसकी वजह से एक चीज़ जो विशेषता ध्यान देनी पड़ती है डीएसआर में, वो होती है कि वीडिंग। आपको खरपतवार का विशेषता ध्यान देना होता है, आपको वीडिंग करनी है। पहला आप जब ने बुआई किया तो आप प्री इमर्जेंट हर्बिसाइड जैसे पेंडीमिथिलिन वगैरह डाल दीजिए, ठीक है। और उसके 2 हफ्ते बाद आप पोस्ट इमर्जेंट हर्बिसाइड डाल दीजिए, जैसे ब्यूटाक्लोर है या बिस्पायरीबैक सोडियम है, आप वो डाल दीजिए। और उसके बाद फिर आप पौधे, आपको खरपतवार दूर रखने के लिए आप फिर 25-30 दिन के बाद आप एक बार या दो बार हैंड वीडिंग यानी हाथ से जड़ को, मतलब वीड्स को, खरपतवार को आप निकाल फेंकिए। तो ये तरीका होता है। तो ये खरपतवार बड़े परेशान करते हैं डीएसआर के समय। बाकी अगर आपने खरपतवार का ध्यान रख लिया, आपने अपने पौधों को अच्छे तरीके से स्पेसिंग दे दी, खाद दे दिया, तो आपके पौधे जो डीएसआर में है वो काफ़ी अच्छे यील्ड दिखाएंगे। कुछ यील्ड ये आपके डीएसआर के बारे में जो मैंने आपको ये क्लियर कर दिया। उसके अलावा जो ट्रांसप्लांटिंग है उसके लिए नर्सरी वगैरह तैयार करनी होती है, तो नर्सरी तैयार करने का अभी समय हमारे पास जा चुका है, तो इस समय हम डीएसआर पे ज़्यादा ध्यान दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा।
0: मैम, देर से बुआई करने के लिए धान की कौन सी किस्में उपयुक्त होती है?
1: अभी हम जो धान की बुआई डीएसआर के थ्रू करते हैं अगर, तो उसमें जो मीडियम ड्यूरेशन वैरायटीज हो गए, जिसको हम संकर धान बोलते हैं, तो उस तरह के संकर धान आप लीजिए, जैसे कि आपका पीएचबी 71 हो गया, पूसा आरएच 10 हो गया, ठीक है। और सबौर संपन्न भी काफ़ी हद तक ठीक है, मतलब उसका भी 145 से 150 दिन तक जाता है। तो जो हम वैरायटी लेते हैं हम उस पर ध्यान देते हैं कि आपकी जो वैरायटी है वो 150 दिन से ज़्यादा नहीं जानी चाहिए, क्योंकि अभी हम लेट सोइंग कर रहे हैं, नहीं तो वो बहुत ज़्यादा देर हो जाएगा तो आपकी फसल पे प्रभाव भी पड़ेगा और आप समय पे अपने अगली फसल को भी नहीं लगा सकिएगा। तो ये आपकी वैरायटीज़ हैं
0: जी। मैम, तो किसान भाई बहनों, अगर आपने अभी तक धान की नर्सरी तैयार नहीं की थी, धान की बुआई नहीं की है, तो जिस तरीके से मैम ने बताया, आप धान की सीधी बुआई कर सकते हैं कुछ बातों का ध्यान रख के। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। किसान भाई बहनों आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।
2: उन्नत कृषि,

0: एक और नाटक देखो।
1: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं, हाँ या ना?
2: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
1: हाँ। इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
2: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
3: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
1: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
4: क्या क्या क्या?
2: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
4: अच्छा,
0: तो सबकी समझ में आ गया ना? खसरा रूबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाएं जड़ तक।
2: टीकू, तेरे कितने दोस्त है?
5: टीनू, मीनू, राजू, पिन्नी
2: और तुम्हारी वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
5: 11 दोस्त?
2: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
5: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
2: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
5: लेकिन ऐसा क्यों?
2: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
5: टीकी, तो इसका हल क्या है?
2: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
0: याद रखो,
5: आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
6: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
7: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
6: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
7: आपकी सेहत की बातें,
6: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
7: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
6: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
7: वो कहाँ पर?
6: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
7: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
6: उन्नत कृषि। नमस्कार श्रोताओं, आप सभी का स्वागत है 90.8 MHz पर। और आज उन्नत कृषि कार्यक्रम में हम लेकर आए हैं काफ़ी हटकर एक अलग विषय, और वो हमारा विषय है आज सिंदूर की वैज्ञानिक तरीके से खेती कैसे कर सकते हैं। बहुत सारे जो हमारे श्रोतागण हैं वो समझते होंगे भाई सिंदूर को बस किसी केमिकल या रंग को मिलाकर बनाया जाता है, लेकिन क्या आपको पता है कि इसकी भी खेती आप कर सकते हैं, इसके भी पौधे तैयार किए जाते हैं, और पूरी प्रोसेस को वैज्ञानिक तरीके से कैसे बनाया जाता है सिंदूर, आज वो सारी बातें लेकर हमारे बीच हैं डॉक्टर वी साजिता बानू। और मैडम, मैं आप सभी को बता दूं कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं प्लांट बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट बिहार एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी सबौर से, और पूरी जानकारी आज विस्तार से हम उनसे जानेंगे कि सिंदूर की खेती कैसे करते हैं। तो सबसे पहले तो मैडम आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
8: धन्यवाद अनु।
6: मैडम, बिहार में सिंदूर की खेती की क्या ज़रूरत है, इसके बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे।
8: बिहार में सिंदूर की खेती इसीलिए इसका ज़रूरत हो रहा है बिकॉज अगर आप देखेंगे जो नेचुरल कलर है, जो प्राकृतिक रंग है, इसका आज के डेट पे बहुत ज़्यादा इसे इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है। जैसे आप देखेंगे हमारे यहाँ पे जो भारत में कहीं ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर इसका जो इस्तेमाल है वो बंद कर दिया गया है सिंथेटिक कलर उसके, और उसके बजाय सिंथेटिक कलर के बजाय प्राकृतिक रंग को इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है। तो जैसे कर्नाटका है, वहाँ पर प्राकृतिक रंग का पूरी तरह से इस्तेमाल करने को कहा गया है। और बिहार में जैसे आप देखेंगे जो सिंदूर है, इसके दो तीन पौधे मैंने यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से देखा है, लेकिन इसकी कल्टीवेशन जो है यहाँ पे प्रॉपरली नहीं हो रहा है। तो इसको ध्यान पे रखते हुए जहाँ पे ऐसा एक स्टेट जहाँ सिंदूर का इतना महत्व है, जैसे हमारे यहाँ पे बहुत सारे ऐसे फेस्टिवल्स मैंने देखा है जहाँ पे सिंदूर का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है, जैसे छठ पूजा है, छठ पूजा में सिंदूर की काफ़ी उपयोग होता है, और इसी तरह से होली है जहाँ पे रंग प्राकृतिक रंग की इस्तेमाल की ज़रूरत है, और मेन जो खाने पीने में जो आप रंग का इस्तेमाल करते हैं, जैसे हम जानते हैं कि अगर आप सिंथेटिक कलर्स यूज़ करते हैं तो इसमें बहुत तरह की खतरनाक बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि कैंसर उसमें से एक बीमारी है। तो ये सब को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि यहाँ पे सिंदूर की खेती बिहार में हमें शुरू करनी चाहिए, और हम लोगों ने इसको कहीं हद तक हम लोगों ने इस पर काम भी शुरू कर दिया है, पौधे भी हम तैयार कर रहे हैं।
6: अब हम बात करना चाहेंगे बिहार क्षेत्र की, तो मुख्यतः आपने बिहार क्षेत्र को इसकी खेती के लिए क्यों फोकस?
8: जैसे कि बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे ऑलरेडी इसकी खेती की जाती है, और बिहार एक ऐसी रीजन है जहाँ पे अब तक इसकी खेती की शुरुआत नहीं हुई है, तो अब समय आ चुकी है जहाँ पे हमें इस चीज़ को ध्यान में रखना है और इसकी खेती को शुरुआती तौर पर शुरुआत करना है।
6: जी, तो अभी तक बिहार में सिंदूर की खेती नहीं की गई थी, लेकिन अब इस पर रिसर्च चल रहा है और बहुत जल्द बिहार क्षेत्र में भी सिंदूर की खेती की जाएगी। श्रोताओं, अब हम थोड़ा सा इसकी खेती के बारे में चलते हैं, बात करते हैं, तो पौधा इसका हम कैसे तैयार करेंगे?
8: अच्छा, इसका जो पौधा है, देखिए इसके तो आप मेनली इसको बीज से भी पौधा तैयार कर सकते हैं, लेकिन बीज से पौधा जो तैयार करते हैं इसकी मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी हो जाती है। जैसे मेन इसकी जर्मिनेशन पे अगर हम बात करें तो इसकी जो जर्मिनेशन है काफ़ी लो है, जो सीड होती है सिंदूर की ये काफ़ी हार्ड होती है और बहुत कम जर्मिनेशन परसेंटेज जो है वो हमें पाया गया है, तो हमने और दूसरे इसका जो है अल्टरनेटिव ढूंढा है जिसपे हम टिश्यू कल्चर पे भी काम कर रहे हैं और उस पर हम लोगों ने कुछ हद तक सफलता हासिल किया है।
6: अब इसके रखरखाव के बारे में बात करते हैं। पौधे तो हम लगा लेंगे जो भी वैज्ञानिक तरीका है उसे, लेकिन अब इसका मेंटेनेंस भी बहुत ज़रूरी होता है, तो किस प्रकार हमें इसकी देखरेख करनी चाहिए?
8: जो मेंटेनेंस है आपको जो इनिशियल टाइम है, जो शुरुआत में क्या होता है, जैसे बीज से आपका पौधा जैसे जर्मिनेट होती है तो उस समय आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि बीज को जब हम जर्मिनेट करते हैं तो उस वक्त बारिश होना बहुत ज़रूरी है। बरसात के मौसम पे इस बीज को जर्मिनेट करते हैं हम, अगर गर्मियों के मौसम पे ये बहुत जब सीड अगर जर्मिनेट कर भी जाता है तो ये बचता नहीं है और ये डेथ कर जाती है, और इसमें एक बार आपकी सीड अगर जर्मिनेट हो भी जाती है तो कुछ जैसे शुरुआत में आपको इस जैसे कंटिन्यूसली इसको पानी देना, दिन में दो बार आपको इसमें पानी देना पड़ता है, और जैसे एक साल तक तो पूरा इसको मेंटेन करना पड़ता है आपको, और जैसे एक बार जैसे जैसे इसकी उम्र बढ़ती है तो आपको इसकी मेंटेनेंस जीरो मेंटेनेंस पे भी ये काम करता है, ये अच्छी तरह से ग्रो कर जाता है।
6: जी, हम बात करते हैं बायोटेक्नोलॉजी की। मैडम, आप असिस्टेंट प्रोफेसर है बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, तो बायोटेक्नोलॉजी का क्या रोल है इसमें?
8: जैसे आप अच्छा क्वेश्चन है अनु आपका, तो जैसे बायोटेक्नोलॉजी का ये मेन जो है हमारा टिश्यू कल्चर है, जैसे सभी को पता है टिश्यू कल्चर जो है ये बायोटेक्नोलॉजी का ही पार्ट है, जैसे मैं प्लांट बायोटेक्नोलॉजी से हूँ तो टिश्यू कल्चर के थ्रू हम लोग इसके प्लांट्स को तैयार कर रहे हैं, तो हमारे किसान भाइयों और बहनों को जब हम टिश्यू कल्चर के थ्रू जब हम पौधा तैयार करेंगे तो इसे हम कभी भी ये पौधा उनको दे सकते हैं। जैसे अगर हम सीड के थ्रू अगर इसे जर्मिनेट करते हैं तो हमें बरसात के दिनों ही इसको जर्मिनेट करना पड़ता है, तो उस ये सब समस्या हमें नहीं देखना होगा, और हम जो है थ्रू आउट द ईयर साल भर हम पौधा जो है अपने किसान भाइयों और बहनों को प्रोवाइड करवा सकते हैं। और दूसरी बात है कि बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू हमारी ये भी कोशिश रहेगी कि हम ये जो प्राकृतिक रंग है प्लांट को प्लांट जो प्लांट है उसमें से ना लेकर हम उसको अपने लैब में ही प्रोड्यूस करें, ये भी हमारी कोशिश है जिस पे हम काम कर रहे हैं।
6: और इसके उपयोग के बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे कि इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है?
8: जी, जैसे मैं आपको बता दूं, जो सिंदूर है इसके बीज, ये जो पौधा होता है इसके जो बीज होते हैं इसमें से इसका रंग को निकाला जाता है, और इसका जो इस्तेमाल है ये मेनली जो है, अगर आप देखो तो खाने, जो खान पान है आपके, उसमें जो प्राकृतिक रंग के इस्तेमाल होता है उसमें ये यूज़ होता है, और इसके साथ साथ कॉस्मेटिक्स में जैसे लिपस्टिक में आप इसका यूज़ किया जा सकता है, और जैसे इसका सिंदूर जो आप लगाते हैं वो उसमें टीका, इसमें भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और मेनली अगर आप देखेंगे जो मैंने आपको बताया था कि जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं वहाँ पे जो जो ये कमर्शियली ये बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, तो वहाँ पे इसका पूरा इस्तेमाल जो वो करते हैं वो खाने पीने के लिए करते हैं। और मैं एक बात और बता दूं, जो हमारे आप लोग जो अमूल बटर खाते होंगे और जो भी बटर आप खाते हैं यहाँ पर, जो हमारे बिहार में जो सुधा डेयरी काफ़ी फेमस हो रखी है, अगर आप उनके भी बटर अगर आप देखो तो उसमें जो प्राकृतिक रंग की इस्तेमाल हुई है, अगर आप देखेंगे तो उसमें लिखा होगा पैकेट में एनाटो। एनाटो जो है ये सिंदूर का जो है इंग्लिश नेम है, इंग्लिश नाम है। जैसे सिंदूर जो है इसको हम हिंदी में कहते हैं और इंग्लिश में इसे हम एनाटो के नाम से भी जानते हैं। तो ये आप कुछ बटर के पैकेट में भी अगर आप देखेंगे जो पीले पीला जो कलर होता है बटर का, वो इस सिंदूर का ही रंग होता है जिसे हम एनाटो भी कहते हैं।
6: तो अगर हमारे किसान भाई इसकी खेती करते हैं तो उन्हें क्या क्या लाभ मिलेगा इससे?
8: देखिए, सबसे पहला तो ये लाभ होगा हमारे किसान भाइयों और बहनों के कि वो टुवर्ड्स एनवायरनमेंट वो काम कर रहे हैं, कि वो प्राकृतिक रंग को प्रमोट कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि आप शुरुआती दौर में आपको इसकी मेंटेनेंस है और उसके बाद ये ज़ीरो मेंटेनेंस है, तो आपको ज़्यादा मेंटेनेंस पे इसकी ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। और बिहार में खासकर मुझे लगता है कि आप इसकी एक्सपोर्ट वैल्यू भी बहुत ज़्यादा है। अगर हम इसको बहुत लार्ज एरिया में अगर कल्टीवेट करते हैं, इसकी फार्मिंग करते हैं, तो इसको हम आगे चलकर कुछ एक्सपोर्टर्स के साथ में कनेक्ट करके इसको एक्सपोर्ट भी करवा सकते हैं जहाँ पे इसकी डिमांड है। हालांकि मुझे लगता है कि बिहार में भी इसका काफ़ी उपयोग है, जहाँ जैसे सिंदूर जो नेचुरल सिंदूर है वहाँ पर, और तो बिहार में ही पहले इसकी इस्तेमाल की जा सकती है, और अदर स्टेट में भी दे सकते हैं हम इसको, कुछ फैक्ट्रीज में भी इसको हम कनेक्ट करके दे सकते हैं जहाँ पे आजकल एनाटो जो है ये सिंदूर जो है काफ़ी ग्रोइंग है। पिछले सालों से भी अगर आप देखेंगे तो इसकी जो डिमांड है ये काफ़ी बढ़ चुकी है। जैसे कि ये जो नेचुरल जो केसर का जो रंग है ये केसर को रिप्लेस कर रहा है। तो हम जो ये सिंदूर से हम तीन तरह के रंग को निकाल सकते हैं, जैसे नारंगी, लाल और पीला। तो ये और केसर जहाँ पे बहुत महंगा होता है, ये जो सिंदूर का रंग है ये काफ़ी आपको सस्ते में मिल जाती है।
6: जी, और अगर हम इसके फल देने की बात करें तो ये जो पौधा हम लगाएंगे वो कितने साल बाद फल देगा?
8: जैसे अगर आप इसके पौधा लगाते हैं तो 3 साल बाद आप इसका फल को आप ले सकते हैं, और फल से आप उसके जो बीज उसके अंदर होती हैं, जिसमें एक फल में आपको 40 से 50 बीज मिल जाते हैं, तो उस बीज से आप इसका रंग निकाल सकते हैं।
6: जी, तो एक पौधा वो कितने साल तक जीवित रहता है, इसकी आयु कितनी रहती है?
8: लगभग 20 साल तक ये पौधा रहता है और जीरो मेंटेनेंस पे ये रहता है।
6: किसान भाइयों और हमारे श्रोताओं, आज आपने सिंदूर की खेती के बारे में जाना, किस प्रकार सिंदूर बनता है और प्राकृतिक तरीके से कैसे बनाया जा सकता है सिंदूर, और हमारे किसान भाइयों के लिए कैसे आय का स्रोत बन सकता है, व्यवसाय का स्रोत बन सकता है। आज पूरी जानकारी यहाँ पर हमारे बीच लेकर आई थी डॉक्टर वी साजिदा बानू, और ये पूरी जानकारी आप सभी और भी अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो हम समय समय पर अपडेट आपको करते रहेंगे सिंदूर की खेती के बारे में। और फिलहाल तो आज के लिए इतना ही, अगले दिन मिलेंगे आपसे एक नए विषय के साथ। नमस्कार। उन्नत कृषि बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 ग्रीन एफएम।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।

0: लोग धान रोपाई में जो धन रोपनी जो धान रोपती है और कभी कभी सुखाड़ पड़ जाते हैं, इसलिए पानी का जो अभाव होता है, इसलिए गंगा माँ से निवेदन करके रोपनी गाती है और कहती है कि कैसे मेरा धान का खेती उदास पड़ा हुआ है।
1: जैसे हम लोग गोछी लेते हैं तो उसमें सब देवी देवता को पूजन करते हैं, सबको सुमर करके गीत गाते हैं।
2: FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।
3: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा और आप सुन रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि। उन्नत कृषि जहां हम बात करते हैं विभिन्न फसलों के बारे में और उनसे जुड़ी बातें। आज हम बात करने वाले हैं कौनी मिलेट के बारे में और किस तरीके से इसकी खेती करनी चाहिए, क्या विशेष बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, इस बारे में हमें विस्तार से बताने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर महेश कुमार सिंह। सर, आप हैं एसोसिएट प्रोफेसर कम सीनियर साइंटिस्ट। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
4: बहुत बहुत धन्यवाद।
3: सर, जब हम बात कर रहे हैं कौनी मिलेट की, तो क्या कौनी मिलेट जलवायु के अनुकूल होता है?
4: देखिए, कौनी जिसको हम लोग इंग्लिश में फॉक्सटेल बोलते हैं, इटालियन मिलेट के नाम से भी जानते हैं, ऐसी मान्यता है कि सभी मिलेट्स का जो उत्पत्ति स्थान है वो भारत है। सिर्फ ये कौनी ही एक ऐसी फसल है जिसका एशिया में उत्पादन वो जन्म स्थान है जो कि चाइना हो जाता है। तो इसको हम सेटारिया टेलकर के नाम से जानते हैं और इंग्लिश में फॉक्सटेल, फॉक्स मतलब लोमड़ी, टेल मतलब पूंछ। तो इसकी जो बालियाँ होती हैं लोमड़ी की पूंछ की तरह बिल्कुल लटकी रहती हैं। 25 से 30 सेंटीमीटर अलग अलग प्रजातियों की लंबाई होती है बालियों की, मतलब कुछ बालियां जैसे SI 3156 है, इसकी बाली सबसे लंबी होती है, 32 सेंटीमीटर तक लंबाई होती है, अर्थात 1 फीट की लंबाई हो जाती है इसकी बालियों की। तो ये सभी फसलें चूँकि कम पानी चाहने वाली फसलें हैं, अधिक तापमान में को भी सह करके उत्पादन दे देती हैं। हमारे बिहार राज्य में खरीफ मौसम में भी उगाई जा सकती हैं, गर्मी के मौसम में भी उगाई जा सकती हैं। हमारे किसानों के लिए तो बहुत एक अल्टरनेटिव, सच कहा जाए तो जो मूंग होता है, मूंग का एक अल्टरनेटिव फसल है गर्मी के लिए। वहीं बरसात के लिए जिन क्षेत्रों में सुखाड़ की स्थिति है वहां तो ये बहुत ही रामबाण साबित हो रही हैं, क्योंकि मात्र 90 दिनों में पककर तैयार होने वाली ये कौनी आपको प्रति एकड़ 10 से 11 क्विंटल तक उत्पादन क्षमता दे रही है। और इसका चावल मार्केट में देखिए तो 150 रुपये किलो तक का चावल है और वो भी समय पर मिल नहीं पा रहा है। हमारे ऋषि मुनि इन सभी फसलों का सेवन करके 200 साल तक जीवित रहा करते थे। तो इस जलवायु अनुकूल फसल को उगाना तो हमारे लिए बहुत ही लाभकारी है ही, हम पूरे पारिस्थितिकी इकोसिस्टम को भी संतुलित कर सकते हैं इन सब की खेती को बढ़ावा दे करके।
3: जी सर, और अगर हम बात करें कि कब हमें कौनी मिलेट की खेती करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए?
4: तो कौनी की जो उपयुक्त समय होती है बुआई का, खरीफ मौसम में हम लोग 15 मई से लेकर के 15 जुलाई तक, जब कभी भी खेत हमको खाली मिल जाए और खेत में सफिशियंट मॉइस्चर हो, नमी हो, उस समय हम इसकी बुआई कर सकते हैं। क्योंकि ये 85 से 90 दिनों में पककर तैयार होती है, 3 महीने में पककर तैयार हो जाती है। तो अब देखा जाए कि अगर हम, कुछ हमारे किसान भाई हैं जो कि इसकी बुआई लोग क्या करते हैं कि इनका सरसों है, मसूर है, चना है, इसकी कटाई करने के बाद बुआई मार्च के प्रथम सप्ताह में कर देते हैं। तो जब मार्च के प्रथम सप्ताह में करते हैं तो इनकी फसल जून के प्रथम सप्ताह में पक करके तैयार होती है। फिर दूसरी फसल 15 जून तक बरसात मिल जाता है या कभी कभी 20 जून तक बरसात का पानी मिलता है, तुरंत उसमें दूसरी फसल दे देते हैं इसी कौनी की। तो 20 जून को बुआई करते हैं तो पुनः 3 महीने, जुलाई, अगस्त, 20 सितंबर तक पक के तैयार हो जाती है। तो हम देखा जाए तो गर्मी और खरीफ में एक एक फसल बड़े आराम से इसकी ले सकते हैं और अच्छे उत्पादन दे देती है। तो खरीफ मौसम में सबसे बेस्ट टाइमिंग हम बात करें तो 15 मई से लेकर के आप 15 जून या लेट कंडीशन में 15 जुलाई तक भी इसकी बुआई आप कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और भी अगर आपको खेत खाली हो रहा है तो आप 30 जुलाई तक भी कर रहे हैं तो भी उत्पादन में कोई कमी नहीं होती है, हम लोग ऐसा रिसर्च करके देख चुके हैं। तो इसका हम यूँ कर सकते हैं 15 मई से लेकर 30 जुलाई तक जब भी आपको मौका मिले खेती कर सकते हैं। 30 जुलाई से 15 अगस्त के बीच में जब बुआई करेंगे तो थोड़ा सा 5 से 10% उत्पादन में कमी आ जाती है। तो कहीं कोई घबराने की जरूरत नहीं है, आपके पास बहुत लंबा विंडो है। आप 15 मार्च से लेकर 10 मार्च से लेकर के आप देखा जाए तो 30 अगस्त तक जब भी आपका खेत खाली है आप बुआई कर सकते हैं, आपके लिए बहुत ही एक लाभकारी फसल है। अब प्रश्न उठता है कि इसकी खेती कैसे करें। तो जैसे हम बाकी मिलेट्स या दूसरे फसलों की खेती के लिए खेत की तैयारी करते हैं, वैसे ही इसकी भी खेत की तैयारी करनी होगी। 2 से 3 बार जुताई करके पटा कर दें, खेत अच्छे से तैयार हो जाए। तो खरीफ मौसम में अगर हम रेज बेड पे लगाते हैं तो ज़्यादा लाभ होगा। रेज बेड के पीछे हमारा कहने का मतलब यह है कि फसल के बीज के पास कभी भी जल का जमाव नहीं होना चाहिए। ऊपरी और मध्यम ऊपरी ज़मीन में ही इसकी खेती करें, जहाँ कहीं बरसात का पानी न जमा होने पाए वहीं खेती करें इसकी। तो अच्छे से तैयार खेत में हम रेज बेड या ब्रॉड बेड एंड फरो मेथड से बेड बनाकर खेती करें। वो सुविधा नहीं है तो हम फ्लैट मेथड्स में सीधा बुआई कर सकते हैं, कतार से कतार की दूरी 9 से 10 इंच रख सकते हैं। बीज की गहराई किसी भी दशा में 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा गहरा न रखें, अन्यथा ज़्यादा गहराई पर जाने पर बीज का जमाव नहीं होता है। अब बात आती है इसमें उपयुक्त प्रजातियों की, क्योंकि जो भी प्रजातियाँ हैं अगर हम परंपरागत अपनी पुरानी प्रजातियां लेंगे तो उत्पादन में गिरावट आएगी, तो आप कहिएगा कि धान की तुलना में प्रॉफिट कम हो रहा है। लेकिन निश्चित तौर पे अगर आप जो अभी हम बताने जा रहे हैं उन प्रजातियों का प्रयोग करेंगे तो धान से ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा। जैसे कि कौनी का एक प्रजाति है SIA 3156, दूसरा है SIA 326 और तीसरा प्रजाति है SIA 3088, चौथा है श्री लक्ष्मी। ये चारों प्रजातियाँ हम ले सकते हैं। एक प्रजाति हमारा राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी से निकली हुई है, राजेंद्र कौनी 1, इसको भी ले सकते हैं। SIA 3156 सबसे अच्छी प्रजाति है, इसका हम लोग अपने रिसर्च स्टेशन पर 11 क्विंटल प्रति एकड़ तक उत्पादन ले चुके हैं। जब हम लोग इसको BBF पर लगाते हैं, ब्रॉड बेड फरो पर लगाता है, फील्ड में पानी का जमाव कभी नहीं होता है, तब अच्छे कंडीशन में 11 क्विंटल तक उत्पादन दे देती है। किसान भाइयों के पास सुविधा है तो आप BBF पे बुआई करें, रेज बेड बनाकर बुआई करें, नहीं तो कतारों से कतारों की दूरी 9 इंच रखते हुए 10 इंच रखते हुए आप फ्लैट मेथड में बुआई कर सकते हैं। अगर आपके पास ऐसा कोई बुआई का इक्विपमेंट नहीं है तो आप इसकी ब्रॉडकास्टिंग भी कर सकते हैं, छिटकवा विधि से भी बो सकते हैं, लेकिन छिटकवा विधि में आपको बीज दर थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। तो प्रति एकड़ इसका जो बीज दर है वो 4 किलोग्राम पर्याप्त हो जाता है, लेकिन आप छिटकवा विधि से लगा रहे हैं तो वहां पे बीज दर 25% बढ़ाना होगा, अर्थात आपको 5 किलोग्राम बीज प्रति एकड़ लेना पड़ेगा। तो छिटकवा विधि से भी बुआई करके खेत में मिलाया जा सकता है, बस उथली जुताई करनी होगी वहां जो 1 इंच से गहराई पर बीज न जाने पाए। तो इस तरह से हम इसकी बुआई कर सकते हैं। अब बात आता है इसमें पोषक तत्व प्रबंधन की, क्योंकि ये फसलें ऐसी हैं जो कमजोर भूमि में भी हो जाती हैं, इनको कम खाद की जरूरत पड़ती है, पानी की जितने जरूरत होती है उससे ज्यादा बरसात हो रहा होता है तो पानी की अलग से सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ती है। गर्मी में अगर इसकी हम खेती करते हैं तो जनरली 1 सिंचाई देने की जरूरत पड़ जाती है, और कभी कभी अगर हाई टेम्परेचर है, गर्मी ज़्यादा है तो वहाँ 2 सिंचाई भी दे। तो गर्मी में तो हमें इंश्योर करना पड़ेगा आपको जब सिंचाई की सुविधा हो तभी गर्मी की खेती करें, 15 मार्च 10 मार्च को बुआई करें, नहीं तो सिर्फ खरीफ फसल की बुआई करें अगर सिंचाई की सुविधा नहीं है तो। जब बरसात का पानी मिलता है आपको मई के अंतिम सप्ताह में या 15 जून तक, जब भी सिंचाई का बरसात का पानी मिलता है आप इसकी बुआई कर सकते हैं। कभी कभी लेट मानसून आता है तो आप लेट से भी बुआई कर सकते हैं, जैसा हमने पहले बताया इसकी बुआई हम लोग 15 अगस्त तक भी अगर करते हैं तो भी कहीं कोई खास दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से हम इसकी विभिन्न टाइम पर विभिन्न विधियों से बुआई कर सकते हैं। किसी कारणवश हमको इंटेंसिफिकेशन करना है तो हम इसकी नर्सरी डाल करके रोपाई भी कर सकते हैं। लगभग 22 से 25 दिन का बिचड़ा जो है हम 25 सेंटीमीटर की दूरी पर कतारों में मेंटेन करते हुए 20-20 सेंटीमीटर की दूरी पर रोपाई कर सकते हैं और बहुत अच्छा लाभ मिलता है। रोपाई में जितना खर्च होता है उतना हमारा निराई में खर्चा बच जाता है, क्योंकि जब हम रोपाई करेंगे तो एक निराई का खर्चा बच जाएगा। अब खरपतवार प्रबंधन भी एक बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि अगर समय पर हम खरपतवार का प्रबंधन नहीं करते हैं तो इतना ज़्यादा खरपतवार हो जाते हैं कि फसल का उत्पादन, जैसा हमने बताया 10 से 11 क्विंटल तक उत्पादन क्षमता है, लेकिन अच्छे कंडीशन में अगर ज़्यादा खरपतवार बहुत हैवी खरपतवार लग जा रहा है तो आपको 5 क्विंटल से ऊपर प्रति एकड़ उत्पादन नहीं मिलने वाला है। इसलिए समय पर विशेषकर बुआई से 15 दिन से लेकर के 35 दिन तक खेत आपका खरपतवार से फ्री होना चाहिए। अब खरपतवार को हटाने के लिए, खरपतवार को न आने देने के लिए, खरपतवार प्रबंधन के लिए आपको बहुत सी विधियाँ हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं, इन फसलों को लगाना है तो कहीं कहीं जहाँ हमारे पास हर्बिसाइड नहीं है वहाँ हम गर्मी की गहरी जुताई कर देते हैं, जो भी परेनियल खरपतवार हैं वो नष्ट हो जाते हैं, खरपतवार के बीज भी नीचे चले जाते हैं तो खरपतवार कम आते हैं, तो वो विधि भी लगाई जा सकती है। दूसरा है कि हम बहुत से हमारे पास आजकल पावर बीडर आ गए हैं। पावर बीडर का प्रयोग करके हम लोग कतारों के बीच में मशीन चला करके खरपतवार नियंत्रण कर सकते। दूसरा है मैनुअल बीडर। आजकल मैनुअली जो मानव चालित यंत्र हैं उसका भी कतारों के बीच में प्रयोग करके हम लोग खरपतवार का नियंत्रण कर सकते हैं। जो थोड़ा बहुत पौधों के किनारे पर खरपतवार उसको हम मैनुअली लेबर से निकाल सकते हैं। तीसरा मेथड हम यूज कर सकते हैं रसायन का। इसके लिए पेंडीमिथिलीन 1 किलोग्राम सक्रिय तत्व पर्याप्त हो जाता है। अर्थात यूं कहें कि 1 से 1.25 लीटर बाजार का पेंडीमिथिलीन प्रति एकड़ हमें प्रयोग करना है बुआई के तुरंत बाद, बुआई के 24 घंटे के अंदर दे देना है। दवा देते समय ध्यान रखना चाहिए कि अगले 24 घंटे तक बरसात न होने की संभावना हो। अगर आपका कृषि वैज्ञानिक से सलाह मिली है कि बरसात होने वाली है तो कदापि प्रयोग न करें। पेंडीमिथिलीन का प्रयोग आपको तभी करना है जब मौसम साफ सुथरा रहे और अगले 24 घंटे तक बरसात न होने की संभावना रहे, तभी प्रयोग करें। क्योंकि इन सबका बीज की बुआई हम लोग उथला करते हैं, 2 सेंटीमीटर हमने बताया गहराई पर करते हैं, और अगर पेंडीमिथिलीन हम देते हैं और उसके तुरंत बाद 10 घंटे बाद बरसात हो जाती है तो क्या होगा कि पेंडीमिथिलीन रिस करके बीज के संपर्क में चला जाएगा और इसके कौनी के बीज को भी जमने नहीं देता है। तो ये सावधानी थोड़ा बरतनी पड़ती है। किसान भाइयों की सुविधा के लिए बता दें कि आप 30 ml पेंडीमिथिलीन दवा प्रति टंकी के दर से प्रयोग कर सकते हैं और 1 एकड़ में लगभग 10 टंकी पानी जरूरत पड़ती है इस तरह से। लेकिन ध्यान रखना होगा बुआई के तुरंत बाद करें या 24 घंटे के अंदर कर लें तो ज्यादा बेहतर है, बशर्ते बरसात होने की संभावना नहीं होना चाहिए। दूसरा इसमें हर्बिसाइड हमारे पास अभी तक जो मार्केट में उपलब्ध है इन सब फसलों के लिए केवल 2,4-D ही है, और 2,4-D जो हमारा 58% का है उसका भी प्रयोग कर सकते हैं, 2,4-D 80% का भी प्रयोग कर सकते हैं, 2,4-D एक लो कंसंट्रेशन का आता है उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। 58% का अगर दवा है तो उसका जनरली 25 ml प्रति टंकी पानी की दर से व्यवहार करें तो आपकी फसल में जो चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार है वो मर जाते हैं, लेकिन जो सकरी पत्ती और बाकी खरपतवार है वो बचे रहते हैं, तो उनको आपको लेबर लगा करके ही निराई करवानी पड़ेगी। तो इस तरह से खरपतवार का प्रबंधन कर सकते हैं, और इस तरह से अगर खेती करते हैं तो निश्चित तौर पे आपको प्रति एकड़ 8 से 10 क्विंटल कौनी बीज उपलब्ध हो जाएगा, उत्पादन मिल जाएगा।
3: सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ही अच्छी तरीके
4: किसान भाइयों के लिए। एक और मेरे पास एक ऑफर है जो हम लोग एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस मिलेट वैल्यू चेन प्रोजेक्ट चला रहे हैं, उसके तहत हम लोग बीज उपलब्धता के अनुसार पर 25 से 30 किसानों को हम लोग निःशुल्क इसका बीज वितरित करेंगे। जो भी इच्छुक किसान हैं, प्रगतिशील किसान हैं, वो हमारे यूनिवर्सिटी के डायरेक्टोरेट ऑफ सीड एंड फार्म से संपर्क कर सकते हैं या मुझसे भी डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं, उनको निःशुल्क हम लोग बीज उपलब्ध करा देंगे 2 kg प्रति फार्मर्स। जिन किसानों को ज़्यादा एरिया में लगाना है वो लोग बिहार सरकार के जो उनके ब्लॉक में कृषि पदाधिकारी हैं उनसे संपर्क करके रजिस्ट्रेशन करा करके वो लोग इस फसल की उत्पादन कर सकते हैं। उसके लिए बिहार सरकार इनको 4,000 रुपये तक का अनुदान दे रही है, 2,000 रुपये इनके खाते में डाल देती है, जबकि 2,000 रुपये का विभिन्न प्रकार के इनपुट्स इनको उपलब्ध करके देती है।
3: तो किसान भाई बहनों आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत।

0: खसरा कितनी गंभीर बीमारी है। टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MR टीका 9 से 12 महीने और दूसरा MR टीका 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर हैं, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MR टीका लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टिको क्यों है इतने जीरो?
1: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थाई बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात, अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
0: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।

मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 22 से 26 जुलाई के दौरान आसमान में घने बादल छाए रहेंगे और जिले में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी चलने और हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 26 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 90 प्रतिशत और दोपहर में 70 से 80 प्रतिशत रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए। जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दें, पिछले कुछ दिनों में हुई वर्षा का लाभ उठाइए और आगे भी संभावना है कि वर्षा होगी, तो ऐसी स्थिति में धान की रोपाई के लिए व्यवस्था सुनिश्चित कर ले। रोपाई से पहले प्रति हेक्टेयर 25 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस, 30 किलोग्राम पोटाश और 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट का प्रयोग करे। आपको बता दें कि निचली जमीन के चारों ओर मजबूत मेड़ यानी कि बांध बनाकर वर्षा जल का संचयन कर ले, ताकि जरूरत पड़ने पर आप वर्षा के जल का सिंचाई में उपयोग कर सके। जो किसान भाई बहन श्री अन्न की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दें, मोटे अनाजों की खेती के लिए उचास भूमि का चयन करें। मड़वा की वकुला KMR 316, GPU 67 और VL 379 राजेंद्र मड़वा RU 8 और RU 3। और आपको बता दें कौनी की अनुशंसित किस्में हैं राजेंद्र कौनी 1। आप इन किस्मों की बुआई कर सकते हैं। मक्का की खेती करने वाले किसान भाई बहन ध्यान दें, खरीफ मक्का की बुआई आसमान साफ रहने पर ही करें। खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और ध्यान रखें कि बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नेत्रजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश जरूर डालें। अनुशंसित मक्का की किस्में जैसे सुवान, देवकी, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, राजेंद्र शंकर मक्का 3, गंगा 11 है। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, मिर्च, अगाध गोभी, टमाटर जैसी सब्जियों की नर्सरी तभी तैयार करें जब आसमान साफ हो। और बागवानी करने वाले भाई बहन ध्यान दें, जुलाई अगस्त आम के पौधों के रोपण के लिए सबसे उपयुक्त समय होता है। कलमी पौधों की रोपाई 10x10 मीटर और बीजू पौधों की रोपाई 12x12 मीटर की दूरी पर करें। सघन बागवानी के लिए 5x5 मीटर और अम्रपाली के लिए 2.5x2.5 मीटर की दूरी रखें। फलदार वृक्षों में प्रति वर्ष 1 किलोग्राम नाइट्रोजन, 30 किलोग्राम फास्फोरस, 700 किलोग्राम पोटाश और 80 से 100 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद जरूर डालें। आपको बता दें इस समय केला के स्वस्थ सकर्स की रोपाई करें। लंबी किस्मों जैसे अल्पान, कंथली, मालभोग, चिनिया, G9 और बॉनी किस्में जैसे ग्रैंड नेन, रोबस्टा, बसराई का चयन करना सबसे फायदेमंद होता है। लंबी किस्मों के लिए 2x2 मीटर और बॉनी किस्मों के लिए 1.5x1.5 मीटर की दूरी रखें। प्रत्येक गड्ढे में 5 किलोग्राम गोबर की खाद, 500 ग्राम अरंडी की खली, 300 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट, 100 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश और 10 ग्राम कार्बोफ्यूरान मिलाना ना भूलें। रोपाई से पहले सकर्स को कार्बन डाइजिंग 2 ग्राम प्रति लीटर पानी से उपचारित करें। किसान भाई बहनों, टिश्यू कल्चर पौधे का उपयोग अधिक उत्पादन के लिए लाभकारी होता है। पशुपालक भाई बहन ध्यान दें, पशुओं में PPR, MFD यानी कि खुरपका मुंहपका और HS यानी कि गला घोटू, इन रोगों का खतरा अधिक है। इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण करवाएं, उन्हें साफ और सूखा रखें और बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। रोग के लक्षण अगर दिखाई दे तो तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें और ध्यान रखें कि पशुओं की बिना जरूरत के आवाजाही पर नियंत्रण रखें। गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए जून माह में अगर टीके नहीं लगाए गए हो तो इस महीने में टीके जरूर लगवा दें। पशुओं को संतुलित और पौष्टिक आहार दें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात यह है कि एनीमिया

से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, लेडीज फर्स्ट कार्यक्रम में आज हम बात करने वाले हैं उन महिलाओं के बारे में जो घर से दूर अकेली रहती हैं या फिर कई बार उन्हें अकेले यात्रा करनी पड़ती है। एक जमाना हुआ करता था जब महिलाएं लड़कियां घर पर रहती थी, लेकिन बदलते समय के साथ महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। ऐसे में उन्हें बाहर निकलकर काम भी करना पड़ता है और कई बार स्थिति ऐसी भी होती है कि उन्हें बाहर अकेले यात्रा भी करनी पड़ती है। तो ऐसे में उनकी प्राथमिकता जो होनी चाहिए वो उनकी सुरक्षा होनी चाहिए। अगर आप घर से दूर अकेली रह रही हैं तो आपने अपने लिए कोई घर जरूर देखा होगा, कोई फ्लैट देखा होगा। तो सबसे पहली चीज का जो आप ध्यान रखें, एक ऐसे सुरक्षित जगह पर फ्लैट लें जहां सुरक्षित वातावरण हो। आप एक बार अपने आसपास जरूर देख लें कि वहां कैसे लोग रहते हैं। अब आपने अपना घर ले लिया है, आसपास के लोगों को भी देख लिया है, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि आप अभी जिस घर में रहने जा रही हैं उस घर में आपसे पहले कौन रहता था। आप उन्हें ना जानती हो, लेकिन अभी आपके घर के लॉक को शायद वो जानते हैं। तो जैसे ही आप अपने नए घर को तय कर लेती हैं तो दूसरा काम ये करें कि आप अपने घर के लॉक को बदलें। इससे होता ये है कि आपके पहले जो भी किराएदार वहां रहते थे उनका एक्सेस वहां खत्म हो जाता है और हो सकता है कि इसके पहले जो लॉक लगा हुआ था उसके बारे में किसी को जानकारी हो या फिर उसकी एक चाबी किसी के पास हो। तो इसलिए आप जैसे ही नए घर में जाते हैं उसका लॉक बदलना जरूरी हो जाता है। इसके आगे ये कोशिश करें कि अगर हो सके जिस एरिया में आप रहती हैं वहाँ अगर कोई कैमरा है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो अपने घर के एंट्री पॉइंट पर कैमरा लगवा सकती हैं तो जरूर लगवाएं। अगर आपने अपने घर के एंट्री पॉइंट पर कैमरा नहीं लगवाया है या फिर ये अलाउड नहीं है तो एक और काम आप कर सकते हैं। सबसे पहले तो एक पीप होल लगाएं या तो फिर वीडियो डोरबेल लगाएं। सबसे पहले जानते हैं कि पीप होल क्या होता है। आपके घर के मेन दरवाजे पर एक छोटा सा छिद्र बना होता है जिसे आप देख सकते हैं कि आपके दरवाजे पर कौन खड़ा है, या तो फिर वीडियो डोरबेल लगवाएं। जैसे ही आपके घर पर कोई घंटी बजाएगा आप अपने कमरे में बैठे बैठे ये देख पाएंगे कि दरवाजे पर कौन खड़ा है। ये जानना बहुत जरूरी होता है जब आप अकेली रह रही होती हैं कि आपके घर के अंदर कौन आ रहा है। किसी भी अजनबी को घर के अंदर बुलाने से पहले एक बार जरूर सोचें। और कई बार ये होता है कि आपके घर पर कोई परेशानी हो गई और किसी अजनबी को, किसी मैकेनिक को या ऐसे ही किसी और को बुलाना पड़ जाता है। तो इस वक्त आप ध्यान रखें कि आपने किसे बुलाया है, कब बुलाया है, इस बात की जानकारी अपने किसी परिचित को जरूर दें। आप एक काम और कर सकती हैं, कुछ ऐसे पालतू जानवर आप पाल सकती हैं जो आपकी सुरक्षा को सुनिश्चित करता हो। जैसे कि अगर आप कुत्ता पालती हैं तो वो किसी भी अनजान व्यक्ति को देखकर शोर करने लगता है। ये खास तौर से रात के लिए फायदेमंद होता है। रात को अगर कोई आपके घर के अंदर चोरी चुपके से घुसने की कोशिश करता है तो कुत्ता शोर करने लगता है और ऐसे में आप बिल्कुल अलर्ट हो जाते हैं। इसके साथ ही कुत्ता पालने का एक और फायदा होता है कि ये आपके मूड को बहुत अच्छा बनाए रखता है। आप अकेली रहती है, अकेले रहने वाले लोगों को डिप्रेशन का ज्यादा खतरा होता है। अगर ऐसे में आपके पास कोई क्यूट सा पालतू जानवर होगा तो आपका मूड भी अच्छा बना रहेगा। ये तो बातें हो गई घर के अंदर की। आपके घर के आसपास कैसे लोग हैं ये आपने घर लेने से पहले देख लिया था। अब आपको ये भी करना होता है कि आप अपने घर के आसपास के लोगों से अच्छे रिश्ते बना कर रखें। इससे ये होगा कि वो भी आपकी सुरक्षा का ध्यान रखेंगे, वो भी आपका ध्यान रखेंगे। आप जब घर पर रहती हैं तब की सुरक्षा की बात तो हो गई, लेकिन जब आप घर से बाहर जाते हैं तो आप क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम घर की सुरक्षा की बात करते हैं। कई बार आप घर से बाहर जाते हैं और आपके पीछे घर से बहुत कीमती सामान की चोरी हो जाती है। इससे बचने के लिए आप क्या करें कि आपने तो अगर कैमरा लगवाया हुआ है तो बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा आप ये भी कर सकते हैं कि आप स्मार्ट होम डिवाइसेस खरीद सकते हैं, स्मार्ट लाइट्स खरीद सकते हैं। ये शाम होते ही जल जाएंगे और लोगों को लगेगा कि आप घर पर ही हैं और चोर उचक्के आपके घर से दूर रहेंगे। घर से निकलने से पहले आप इस बात का ध्यान जरूर रखें कि आपने घर का दरवाजा अच्छे से बंद किया है और एक स्पेयर की जो आप रखते हैं, यानी कि एक एक्स्ट्रा चाबी जो आप रखते हैं, उसे आपने अच्छे से छुपाया है या नहीं, इस बात का भी आप ध्यान रखें कहीं ये किसी और के हाथ में न लग जाए। ये सोशल मीडिया का जमाना है और हर कोई अपनी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात को सोशल मीडिया पर अपडेट करता है। ऐसे में आप इस बात का ध्यान जरूर रखें कि आप कहाँ जा रही हैं। इसे सोशल मीडिया पर तुरंत अपडेट करने की जरूरत नहीं है। अगर आप कहीं गई हैं, घूमने गई हैं, तो वहां से आने के बाद आपको जो भी अपडेट करना है वो करें, लेकिन वहां होते हुए आप अपडेट करने से बचें। बाहर वालों को अपडेट करना बिल्कुल जरूरी नहीं है, लेकिन घर वालों को अपडेटेड रखना बहुत जरूरी है कि आप कहाँ हैं, किस हाल में हैं, किन के साथ हैं। ये आपकी सुरक्षा को सुनिश्चित करती है। इसके लिए आप अपने फोन की लोकेशन भी हमेशा ऑन रखें, जिससे कि आपके परिवार को आपके लोकेशन की जानकारी मिलती रहे। और खास तौर से अगर आप किसी नई जगह जा रही हैं तो ये जरूर करें, किसी करीबी के साथ अपने लोकेशन साझा कर दे और किसी एक करीबी को ये जरूर बता दे कि आप कहाँ और कब जा रही हैं। अपने पास कुछ इमरजेंसी नंबर लिखकर जरूर रखें। आजकल हमारे पास सब कुछ फोन में होता है, लेकिन कई बार हमारा फोन गुम हो जाता है। ऐसे में आप अपने कुछ करीबियों का नंबर याद करके रखें या फिर नोट करके रखें, और कुछ ऐसे इमरजेंसी नंबर्स भी रखें जो आपको तुरंत सहायता पहुंचाती है। जैसे हमारे बिहार में 112 है, अगर आप किसी परेशानी में फंसती हैं तो 112 पर कॉल करने से आपको जल्दी से जल्दी सुरक्षा मुहैया कराई जाती है। आपको अपने साथ पर्स में कुछ सेफ्टी टूल्स भी रखने चाहिए, जैसे कि आप पेपर स्प्रे रखें, फोल्डिंग चाकू रखें। ऐसी ही कुछ छोटी छोटी चीजें आप अपने साथ जरूर रखें, ये आपकी सुरक्षा को सुनिश्चित करता है। ये आपकी परेशानी में आपका सबसे बड़ा साथी साबित होता है। अगर आप रात को कैब से ट्रैवल कर रही हैं तो अपने किसी करीबी को अपना लोकेशन जरूर शेयर करें, और साथ ही कैब की जानकारी अगर हो सके तो किसी के साथ शेयर करके रखें। और साथ ही आप ये भी ध्यान रखें कि कैब वाला आपको किस रास्ते से लेकर जा रहा है, ये कोई अनजान या सुनसान रास्ता तो नहीं है। और अगर सुनसान रास्ता है और यही एक रास्ता है आपके मंजिल तक पहुंचने का, तो आप उस दौरान अपने किसी परिचित से हो सके तो बात करते रहें, ये आपकी सुरक्षा के लिए जरूरी हो जाता है। और ये भी ध्यान रखें कि देर रात आप घर लौट रही हैं या कहीं जा रही हैं तो कोई अनजान रास्ता चुनने से जितना हो सके बचें, और मोबाइल फोन को पर्स में रखने की जगह अपने हाथ में रखें, ताकि कोई परेशानी हो तो फटाक से आप किसी को फोन कर सकते हैं। अगर हो सके तो अपने फोन में आप वुमेन सेफ्टी ऐप भी इंस्टॉल करके रखें। अगर इन सारी चीजों का आप ध्यान रखते हैं तो बाहर आप अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित करते हैं। तो लेडीज फर्स्ट में आज इतना ही, आप जुड़े रहिए 90.8 एफएम ग्रीन के साथ।
1: नमस्ते क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
2: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने, हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
1: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना है। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
3: सुनो सुनो सुनो सभी, एक जरूरी बात, आया मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण फिर एक बार। अगर आपके घर या पड़ोस में है 5 साल या उससे छोटे बच्चे जिनका कोई भी टीका छूट गया हो तो सोचते क्या हो, जल्दी से आशा दीदी से करो बात। बच्चों को स्वास्थ्य केंद्र है लेकर जाना और उनका टीकाकरण है करवाना।
4: सुहाना सफर और ये मौसम हसी,
3: टीको ये मौसम है टीकाकरण करवाने का, तो सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
5: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
6: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा बेटा, नाम ही है PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
7: हर घर सूर्य घर,
0: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
8: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
0: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
8: आपकी सेहत की बातें,
0: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
8: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
0: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
8: वो कहाँ पर?
0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
8: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
0: उन्नत कृषि। नमस्कार श्रोताओं, आप सभी का स्वागत है 90.8 मेगाहर्ट्ज़ से यानी एफएम ग्रीन और ये बिहार कृषि विश्वविद्यालय का अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन है जहां पर आपके लिए बातें होती हैं उन्नत कृषि कार्यक्रम में खेती बाड़ी की। तो आज बहुत ही खास विषय लेकर आए हैं और आज जो विषय है जी हाँ, मिल्की मशरूम की खेत। प्रजातियों की बात करें तो इसमें भी जो अलग अलग प्रजातियाँ हैं तो उनके बारे में भी आज हम जानेंगे। और मशरूम की जहाँ तक बात है तो आज महिलाएँ और व्यवसायी जो हैं व्यावसायिक तौर पर मशरूम की खेती कर रहे हैं और आज आत्मनिर्भर बन रहे हैं इसकी खेती करके। तो आज थोड़ा विस्तार से जानेंगे मिल्की मशरूम के बारे में। मैम, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
9: धन्यवाद अनु।
0: मैम, बिहार में वैसे कौन कौन सी प्रजातियां हैं मशरूम के जिसका हमारे किसान भाई खेती कर सकते हैं?
9: हमारे बिहार की जो जलवायु है उसके अनुकूलता के अनुसार चार तरह की मशरूम जो है उसकी खेती हम लोग प्राकृतिक रूप से कर सकते हैं। ऑयस्टर मशरूम, बटन मशरूम, मिल्की मशरूम और पेडिस्ट्रा मशरूम, ये चारों प्रजाति हम लोग करके सालों भर मशरूम की खेती हम लोग बिहार में कर सकते हैं।
0: अच्छा, तो मिल्की मशरूम की आज हम बात कर रहे हैं और मिल्की मशरूम की खेती कब करें, कैसे करें, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं।
9: मिल्की मशरूम को हम लोग श्वेत दुधिया मशरूम भी कहते हैं, इसको दूध छाता भी कहते हैं और ऐसे इसका नाम कैलोशाइबा इंडिका है और यह दूध के जैसा सफ़ेद दिखता है इसलिए इसको हम लोग दूध छाता भी कहते हैं। और इसकी खेती जो है प्राकृतिक रूप से हम लोग मार्च अप्रैल से लेके सितंबर अक्टूबर यहाँ तक कि कभी कभी नवंबर तक भी इसकी खेती हम लोग कर सकते हैं और ऐसे अक्टूबर तक, जनरली सितंबर अक्टूबर तक हम लोग इसकी खेती करते हैं क्योंकि उसके बाद हमारा ऑयस्टर और बटन का समय आ जाता है। तो जो हमारा पहले जो मशरूम ऑयस्टर और बटन मशरूम की खेती जनरली होती थी तो जो हमारा पीरियड था कि जिसमें मशरूम का कोई खेती ही नहीं होता था, जिसमें हम लोग कहते थे कि बस मार्च आ गया मशरूम की खेती ख़त्म हो गया, फिर सितंबर अक्टूबर आएगा तो फिर मशरूम लगाएंगे, तो ये जो पीरियड था इस पीरियड का में हम लोग बड़े ही अच्छे से आराम से मिल्की मशरूम की, श्वेत दुधिया मशरूम की खेती करेंगे और ये विश्व समुदाय को श्वेत दुधिया मशरूम जो है वो हमारे देश का देन है। हमारे एनआरसी सोलन में ही इसका ईजाद किया गया था, इसकी खेती का जो तकनीकी है उसका ये किया गया था। और ये जो मिल्की मशरूम है यह ऑयस्टर मशरूम और बटन मशरूम दोनों के बीच का है, इसका कुछ करैक्टर या इसका जो तकनीकी है उत्पादन विधि कुछ स्टेप आपका ऑयस्टर के समान होता है और कुछ स्टेप जो है वो हमारा बटन के समान होता है।
0: तो ये केसिंग के बारे में, इसमें एक शब्द जो है मैम केसिंग आता है तो उसके बारे में हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे।
9: अब इसकी जो तकनीकी है मिल्की मशरूम की खेती में उसमें एक स्टेप आता है केसिंग। हम लोग इसकी तकनीकी की चर्चा पहले कर लें फिर उसके हम लोग केसिंग पर आते हैं। तो जैसे कि हम जो किसान भाई ऑयस्टर मशरूम की खेती करते होंगे तो बस ऑयस्टर मशरूम के लिए जो जो स्टेप आप करते हैं उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले आप पोषाधार का चयन करते हैं। तो मिल्की मशरूम के लिए भी आप पोषाधार का चयन करेंगे, इसका पोषाधार आपका गेहूं का भूसा हो सकता है, पुआल की कुट्टी हो सकता है या और भी कोई कृषि अवशेष हो सकता है। तो जो भी पोषाधार का हम चयन करें वो उसका चयन कर लें, उसके बाद उसका हम लोग निर्जीवीकरण करते हैं। तो इसके निर्जीवीकरण के लिए सबसे बेहतर है आप भाप उपचार करें, भूसे को पहले फुला दें, रात भर भूसा फुला दें, सुबह उसको निकाल करके एक बर्तन में उसको छान करके, पानी से छान कर उसको डालते हैं, फिर उसको जूट के बोरे से उसके मुँह को बंद कर देते हैं, ऊपर से पानी उसमें डाल देते हैं और उसको आग पर चढ़ा देते हैं। जब पूरे से बहुत अच्छे से भाप निकलने लगे तो उसके बाद करीब 15-20 मिनट तक और रहने देते हैं, फिर उसको हम लोग किसी बर्तन में डलिया वगैरह हो या कोई सतह हो, साफ निर्जीवकृत सतह हो, उस सतह पर उसको हम लोग पलट देते हैं। उसका अतिरिक्त नमी जब निकल जाता है उसको छांव में फैला देते हैं, अतिरिक्त नमी निकलने के बाद फिर उसमें हम लोग भूसा के अनुसार स्पॉन डालते हैं। यदि भीगा भूसा का बात करें तो 4-5% उसमें हम लोग स्पॉन डालेंगे, स्पॉन डाल करके फिर पीपी बैग लेते हैं, पीपी बैग में हम लोग इसकी बिजाई करते हैं। बिजाई करने के लिए हम लोग या तो भूसा और स्पॉन को पूरा एक दूसरे मिला देंगे, एक विधि है, उसको मिलाकर फिर उसको पीपी बैग में पैक करते हैं। दूसरा तरीका है कि हम लोग परत में करते हैं, जैसे पहले भूसा देंगे 4 इंच के बाद फिर उसमें पूरे सतह पे बीज देते हैं, फिर 4 इंच भूसा देते हैं, फिर बीज देते हैं, फिर 4 इंच भूसा देते हैं, फिर बीज देते हैं, इस तरह से बैग का 12 इंच हम लोग ऊंचाई रखते हैं। उसके बाद फिर उसको भूसा से ढक करके फिर बैग को पैक कर देते हैं। एक इसके बाद ये दो तरीके में से, या तो हम लोग पूरे भूसा और बीज को मिला करके पैक कर देते हैं, या फिर परत विधि से करके पैक करके हम लोग तैयार करते हैं। और जैसे ऑस्टर मशरूम के बैग में हम लोग छेद करते हैं, तो इसमें पूरे बैग में छेद की, ये चूंकि ऊपरी सतह से निकलता है, जैसे बटन जो है ऊपरी सतह से निकलता है वैसे ही निकलता है, तो इसमें अलग से साइड में छेद करने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ नीचे पैंदा में दो छेद हम लोग कर देते हैं ताकि जो एक्स्ट्रा नमी वगैरह है वो हमारा निकलता है। और लगभग 12 से 15 दिन इसको हम लोग छोड़ देते हैं कमरे में, जो स्टरलाइज निर्जीवीकृत किया हुआ कमरा हो, जहाँ जिस कमरे में इसको हम लोग बैग को रखते हैं उसको 24 घंटा पहले हम लोग निर्जीवीकृत कर देते हैं, और फिर उसको कमरे को बंद कर देते हैं, उस कमरे में फिर इस बैग को हम लोग रखते हैं। उस कमरे में लगभग 12 से 15 दिन तक बैग को छोड़ देते हैं, तो हम देखते हैं कि पूरा बैग सफ़ेद हो गया, मतलब उसमें पूरा माइसेलियम बहुत अच्छे से रन कर गया। और जब माइसेलियम अच्छे से रन कर जाता है तब हमारा केसिंग का जो अब केसिंग का आता है कि अब हम केसिंग करेंगे, तो ये तब अब हम ये केसिंग के लिए हम लोग जिस दिन से बिजाई किए हैं उस दिन से हम लोग केसिंग की तैयारी करते हैं। तो केसिंग एक तरह का मृदा आवरण है जो कि मशरूम का जो उत्पादन तकनीक है, जो विधि है, उसका एक चरण है कि ये चरण करने के बाद ही हमारा मशरूम प्राप्त होगा मिल्की में और बटन में। ये ऑयस्टर मशरूम में हम लोग केसिंग नहीं करते हैं, लेकिन मिल्की और बटन मशरूम में केसिंग करते हैं, तो वह इसका एक चरण है। और इसके लिए हम लोग केसिंग के लिए 2 साल पुराना सरा हुआ गोबर लेते हैं, या पुराना वर्मी कंपोस्ट लिए, या फिर आजकल मार्केट में कोकोपीट आता है, कोकोपीट भी ले सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा महंगा होता है, इसीलिए आप 2 साल पुराना गोबर का खाद मिल जाए तो बेहतर है। और इसमें हम लोग इसके अलावा जो भी गोबर का खाद है इसके अलावा इसमें हम लोग मिलाते हैं क्या, तो पुराने बाग की मिट्टी मिलाते हैं, जो रेत वाली बालू नदी की पेटी का जो बालू होता है, वो रेत जो होता है उसको मिलाते हैं, और जो धान जैसे चावल बनाने के बाद जो भूसा प्राप्त होता है उस भूसा का राख भी हम लोग लाते हैं। तो यदि हम लोग बाग की मिट्टी और रेत का बात करें तो 3 भाग बाग की मिट्टी लेते हैं, 1 भाग रेत लेते हैं। यदि हम लोग बाग की मिट्टी और 2 सरा हुआ गोबर लेते हैं, दोनों बराबर बराबर मात्रा में लेते हैं। और यदि हम लोग सारी चीज़ को थोड़ा थोड़ा मान लीजिए लेते हैं, तो हम लोग इसको एक टोकरी बाग की मिट्टी ले लिए, एक टोकरी हम लोग कंपोस्ट ले लिए, एक टोकरी रेत ले लिए, एक टोकरी आपका भूसा का राख ले ली, ये सारा को मिला करके भी हम लोग इसका कर सकते हैं। यदि बेहतर होगा आपको, यदि 2 साल सरा हुआ पुराना गोबर का खाद मिल जाता है तो वो आपका बेहतर ऑप्शन है, नहीं तो फिर इसमें से जो भी आप पास उपलब्ध हो उसको हम लोग लेते हैं। फिर इसको हम लोग निर्जीवीकृत करते हैं, ये जब पहले हम लोग ये इकट्ठा कर लिए, अब इसमें मान लीजिए कोई मेटेलिक कुछ चीज़ हो, पत्थर हो या घास फूस हो, तो उसको हम लोग अच्छे से हटा लेते हैं, लेकिन इसको महीन करने की या चालने की आवश्यकता नहीं है। यदि मिट्टी का छोटा छोटा ढेला भी है तो उससे कोई नुकसान नहीं है, उसको बिल्कुल महीन से चालना नहीं है, लेकिन यदि उसमें पत्थर है, कंकर है, कुछ शीशा का टुकड़ा है, प्लास्टिक का टुकड़ा है, या कुछ पत्ता है, ये सब है, तो वो सब को हम लोग को उसको हटा लेना है, ठीक है। इसके बाद अब इसको हम लोग निर्जीवीकृत करेंगे, निर्जीवीकृत करके इसमें हमारा लगभग नमी सही रहना चाहिए, लगभग 70% नमी रहना चाहिए, और नमी सही है हमारे केसिंग का ये जानने के लिए करते हैं। केसिंग का हम लोग हाथ में गोला बनाते हैं, उसको नीचे छोड़ते हैं, यदि वो टूट गया तो इसका मतलब हमारा केसिंग में नमी सही है। और नमी को केसिंग को निर्जीवीकृत करने के लिए हम लोग नुवान लेते हैं 2 ml, फॉर्मलिन लेते हैं 5 ml, कार्बनडाजिम 1 ग्राम और 1 लीटर पानी, इसमें इसका घोल बना करके फिर पूरे केसिंग का जो मटेरियल हम तैयार किए हैं, मिट्टी तैयार किए हैं, उसमें इसको स्प्रे करके उसको निर्जीवीकृत करते हैं। फिर उसको प्लास्टिक की सीट से ढक देते हैं, लगभग 7 से 7 दिन उसको हम लोग छोड़ देते हैं। और ऐसे यदि आप केसिंग जिस दिन बिजाई किए हैं उस दिन से केसिंग तैयारी कर दें, तो आप कल ऐसे ही 12 से 15 दिन के बाद केसिंग कर दें, इतने दिन तक वो बड़े ही अच्छे से आपका केसिंग निर्जीवकृत हो जाता है। फिर हम लोग जब माइसेलियम पूरा रन कर जाता है बैग में, तब उसका केसिंग करते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं कि उसका ऊपरी सतह को पूरा खरोच देते हैं, जैसे कैसे लहसुन का को हम लोग थोड़ा चलाते हैं, थोड़ा थोड़ा उसमें एरेशन, उस तरह ऊपर का परत उसका हम लोग उसको खरोच देते हैं, और खरोच करके उसको बराबर करके हल्का सा उसमें हम लोग नमी दे देते हैं। नमी के देने के बाद उस पर हम लोग केसिंग की लगभग 3 से 4 सेंटीमीटर मोटी परत डाल देते हैं, और ये हमारा जो बिजाई किए थे उससे 10 से 12 दिन के अंदर हम लोग केसिंग कर देते हैं। और केसिंग करने के बाद उसमें प्रतिदिन हम लोग को नमी देना होता है, और गर्मी के अनुसार कैसा एनवायरमेंट उसके अनुसार हो सकता है कभी आपको दो बार भी नमी देना पड़े या फिर कम से कम एक बार तो प्रतिदिन देना होगा। लेकिन ध्यान क्या रखना चाहिए, जब हम लोग इसमें पानी दे रहे हैं, नमी दे रहे हैं, बिल्कुल फुहारे से देना है और जो केसिंग मृदा है उससे नीचे जो कंपोस्ट हमारा वहाँ पानी नहीं जाना चाहिए। सिर्फ जो केसिंग का जो हम 3 से 4 सेंटीमीटर मोटा परत दिए हैं सिर्फ वो उसमें ही पानी का मात्रा जाना चाहिए। इतनी सावधानी से हमें पानी देना है। इसके बाद केसिंग के लगभग 15 से 20 दिन के बाद हमारा फसल तैयार हो जाता है और 5 से 7 दिन में फसल निकलने के 5 से 7 दिन के बाद यह तुराई योग्य हो जाता है और इन्हें हम लोग घुमा करके तोड़ लेते हैं।
10: मैम केसिंग के रूप में क्या क्या उपयोग कर सकते हैं?
9: केसिंग के रूप में जैसे मैंने बताया अनु, केसिंग के रूप में हम लोग 2 साल सरा हुआ गोबर यूज कर सकते हैं या फिर उसके साथ हम लोग पुराने बाग की मिट्टी, बाग की मिट्टी नहीं पुराने बाग की मिट्टी, किसान भाइयों बहनों इसको ध्यान दीजिए, पुराने बाग की मिट्टी को हम लोग यूज करते हैं। इसके बाद रेत वाली जो बालू होती है नदी के पेटी में जो बालू पाया जाता है वो रेतीला रहता है उस बालू का उपयोग कर सकते हैं। प्लस जो धान का भूसा है उसको हम जलाकर उसका राख को यूज कर सकते हैं। प्लस कोकोपीट मार्केट में उपलब्ध है उसको हम लोग यूज कर सकते हैं। इन सब सामग्रियों को जैसे कि सिर्फ हम आपको रेशियो भी मैंने बताया कि यदि हमारे पास सिर्फ ना पुराने ये पुराने बाग की मिट्टी है और हम लोग रेत का यूज कर रहे हैं तो 3:1 हम लोग यूज करेंगे, 3 भाग ये लेंगे 1 भाग ये लेंगे। और यदि हमारे पास 2 साल पुराना गोबर है और बगीचे की मिट्टी है तो बराबर बराबर ले सकते हैं। और यदि और सारे चीज लेंगे तो हम लोग वॉल्यूम से मिलाते हैं, मतलब केजी से नहीं लेते हैं, हम टोकरी से, एक टोकरी है तो फिर एक टोकरी है, इस तरह से बराबर बराबर लेकर के हम लोग उसको मिलाते हैं और फिर केसिंग हमारा उसका अगला प्रक्रिया निर्जीवित करना ये हम लोग करते हैं फिर उसका यूज करते हैं।
10: और अंत में मैम मिल्की मशरूम की खेती में क्या कुछ और आवश्यक है, कुछ सुझाव जो आप हमारे किसान भाइयों को देना चाहेंगे?
9: बिल्कुल, ये आपको बता दें मिल्की मशरूम की जो खेती होती है गर्मी में ये ताप सहिष्णु है, इसके लिए जो आवश्यक टेम्परेचर चाहिए वो लगभग 35 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक में भी यह इसकी खेती हो जाती है आराम से। तो हम आपका हमारा आपका ये नेचुरल एक्सपीरियंस भी अनुभव भी है कि गर्मी के दिनों में जो माइक्रोब्स का थोड़ा ग्रोथ ज़्यादा हो जाता है, जो जीवाणु होते हैं कीटाणु होते हैं, तो आप ठंडे में आप देखते होंगे एक दिन नहीं भी नहाते हैं तो बहुत प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन गर्मी में नहीं नहाते हैं तो स्किन में जलन खुजली होने लगता है। ये क्यों होता है? क्योंकि अभी माइक्रोब्स के जो जीवाणु है कीटाणु है उनके लिए भी फेवरेबल सिचुएशन है। तो यह हमारा मशरूम भी एक तरह का फंगस है तो उसके लिए जो हम लोग माहौल दे रहे हैं तो और दूसरा फंगस भी उसको ग्रो कर सकता है। इसके लिए हम लोग को क्या है कि बहुत ज़्यादा साफ सफाई ये सब चीज़ का या फिर जो हम लोग चयन करते हैं इनपुट वो सब पे बहुत सावधानी रखना पड़ता है। जो हम लोग भूसा या पुआल का चयन करें वो ताज़ा होना चाहिए, शुष्क होना चाहिए, कभी भी वो पानी खाया नहीं होना चाहिए, बाढ़ में डूबा नहीं होना चाहिए, भींगा नहीं होना चाहिए, सरा गला नहीं होना चाहिए। इसके बाद हम लोग वीकली जो क्रॉप हाउस है जो हमारा फसल कक्ष है उसमें 2% फॉर्मलिन और 0.1% कार्बेंडाजीम का घोल का वीकली हम लोग छिड़काव करें ताकि हमारा किसी तरह का कोई इन्फेक्शन किसी तरह का कोई संक्रमण होने की संभावना नहीं रहे। फिर जो कमरा है उसमें प्रकाश आने का और हवा का आवागमन का अच्छा व्यवस्था आवश्यकता होने पर हम खिड़की दरवाजा खोल दें तो धूप भी आए और हवा का भी आवागमन भी हो। और जब भी हम स्पॉन का प्रयोग करें, स्पॉन का चयन करें, वह भी हमारा शुद्ध होना चाहिए, ताजा होना चाहिए, वो उसमें किसी तरह का संक्रमण नहीं होना चाहिए। फिर जो चूहा छुछुंदर गिलहरी है ये सबसे हमको जब तक हमारा माइसिलियम पूरा रन नहीं कर जाता है, जो हमारा कोई भी मशरूम का स्पॉन रहता है वह किसी न किसी जो खाद्यान्न को आधार देके बनाया जाता है, चाहे वो मक्का हो सकता है, वो धान हो सकता है, वो गेहूं हो सकता है और भी कोई खाद्यान्न हो सकता है, तो उसको खाने के लिए ये चूहा वगैरह आते हैं। तो जब माइसिलियम पूरा रन हो जाता है तब फिर चूहा डैमेज नहीं करता है, तो इस पीरियड में चूहा से गिलहरी से ये सबसे बचाना बहुत आवश्यक है। तो उसके लिए हमारे किसान भाई बहन को प्रयास करना चाहिए, उसके लिए अलग अलग का है कि उसको अपना करके हम चूहे से बचाएं। प्लस एक चीज और है कि को प्राइमस निकलता है उसमें आप देखेंगे काला ऐसा बिल्कुल धागा ऐसा पतला सा नीचे कि गेहूं को जब हम लोग बोते हैं गेहूं का डिब्बी निकलता है वो उसी टाइप का पतला काला ऐसा निकलेगा और वो तेजी से लंबा होता है फिर वो गल जाता है। तो जैसे ही वो निकले उसको नोच करके जहाँ पर निकला है वहाँ का पुआल सहित तो उसको नोच करके जमीन के अंदर डाल देना है और उसको थोड़ा फॉर्मलिन से वेबेस्टिन के घोल से वहाँ पर ट्रीट भी कर देना है। और यदि ये नहीं करते हैं तो वो इतना फास्ट उसका स्पोर निकलेगा, पूरा क्रॉप आपको बर्बाद कर देगा। तो कोप्राइमस से बहुत सावधान रहिए। यदि यह आपके फसल में आ गया है, निकल रहा है, तो उसको हाथों से चुन चुन के उसको हटाइए और उसको जहाँ तहाँ नहीं फेंकिए, बल्कि ज़मीन के अंदर गड्ढा खोद के उसके अंदर डाल दीजिए, ताकि वह किसी भी तरह से और वो नुकसान नहीं कर पाए और वो फसल में आपको नहीं फैले। ये एक तरह का फसल का वीड है, खरपतवार है, जिससे कि हम लोग को मशरूम की खेती में बचाना आवश्यक है। इस तरह से इन सुझावों को, इन सावधानियों को जब हम अपनाएंगे तो अब हमारा फसल हमेशा अच्छा होगा।
10: जी, तो किसान भाइयों और हमारे श्रोताओं, मिल्की मशरूम की खेती आपने समझ ली होगी और क्या कुछ करना है आपको, इसमें क्या कुछ बातों का ध्यान रखना है, सारी बातें यहाँ पर मैडम ने आपको बताई हैं। तो आशा करते हैं आपको ज़रूर लाभ मिलेगा आज के इस वार्ता से। तो अगले दिन एक अलग विषय के साथ हम हाजिर होंगे इसी फ्रिक्वेंसी पर। नमस्कार।
2: उन्नत कृषि।

0: खसरा कितनी गंभीर बीमारी है। टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MRT का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टीको क्यों इतने जीरो?
5: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
5: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: तो इसका हल क्या है?
5: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा, सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है,
0: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
5: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
6: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर AC चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
7: PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
8: हर घर सूर्य घर।
9: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।
10: नमस्कार साथियों, आपने ट्यून किया है 90.8 MHz और आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। और आज उन्नत कृषि कार्यक्रम में हम फिर से एक खास विषय लेकर आए हैं। वैसे अगर बात करें तो ये बहुत छोटी सी चीज है, लेकिन कहते हैं ना, ये देखन में छोटन लागे है, घाव करे गंभीर। तो उसी प्रकार अगर ये छोटी सी चीज़ आपकी सब्जियों में डल जाए तो उसका टेस्ट ही कुछ अलग बना देता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ हरी मिर्च की। और हरी मिर्च हमारे इंडिया में, हमारे भारत देश में इसकी कितनी महत्ता है आप सभी जानते हैं जो भारतीय हैं। तो आज हरी मिर्च की खेती के बारे में हम जानेंगे और इसकी उपयोगिता, कैसे पौध तैयार करें और सिंचाई क्या कुछ कैसे किया जाता है, वो सारी बातें आज हमें बताएंगे डॉक्टर संगीता श्री मैम। मैं आपको बता दूं, ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। तो सबसे पहले तो स्वागत है मैम आपका हमारे इस कार्यक्रम में।
11: धन्यवाद अनु।
10: इन जो खेती कर रहे हैं विस्तृत तौर पर, तो उनके लिए बहुत जरूरी होता है कि हर बात की जानकारी उनके पास रहे इसकी खेती से जुड़े। तो हरी मिर्च की उपयोगिता, सबसे पहले इसके बारे में थोड़ी जानकारी दी।
11: धन्यवाद अनु। आपने ठीक ही कहा कि इसको हम कहीं भी उगा सकते हैं, लेकिन अगर बात करें तो ये एक व्यावसायिक खेती के रूप में किया जा सकता है। मिर्च एक नकदी फसल है जिसकी व्यावसायिक खेती करके अधिक लाभ कमाया जा सकता है। मिर्च में विटामिन ए और सी और कुछ खनिज लवण भी बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं। मिर्च का इस्तेमाल अचार एवं मसालों में भी किया जाता है
10: जी।
11: मिर्च पर पाले का असर ज्यादा होता है, इसलिए जहां पाला पड़ता है उन इलाकों में इसकी अगेती फसल लेनी चाहिए। ज्यादा गर्मी होने पर फूलों व फलों का झड़ना शुरू हो जाता है। मिर्च की खेती के लिए 15 से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान उपयुक्त माना जाता है। 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान होने पर इसके फूल व फल गिरने लगते हैं। रात्रि तापमान 16 से 21 डिग्री ग्रेट फल विकास व परिपक्वता के लिए अत्यधिक उपयुक्त है। मिर्च की खेती यूं तो सभी प्रकार की भूमियों में की जा सकती है, परंतु अच्छे जल निकास वाली एवं कार्बनिक युक्त बलुई लाल दोमट मिट्टी जिसका पीएच मान 6 से 7 हो मिर्च की खेती के लिए उपयुक्त होती है। इस फसल की प्रमुख किस्में जिसको हम उन्नत किस्में कहते हैं वो है पूसा ज्वाला, पंत C1, G3, G5, पूसा सदाबहार, पंत C2, जवाहर 218, अर्का लोहित, अर्का सुफल, अर्का श्वेता, अर्का हरिता आदि। खरीफ की फसल के लिए मई से जून में व गर्मी की फसल के लिए फरवरी से मार्च में पौधशाला में बीजों की बुआई की जाती है। 1 हेक्टेयर हेतु पौध तैयार करने के लिए 1 से 1.5 किलोग्राम बीज और संकर किस्मों के लिए 250 ग्राम बीज पर्याप्त होता है। नर्सरी वाली स्थान की गहरी जुताई करके खरपतवार रहित बनाकर 1 मीटर चौड़ी, 3 मीटर लंबी और 10 से 15 सेंटीमीटर जमीन से उठी हुई क्यारियां तैयार करें। बीजों की बुआई से पहले कप्तान या वेबस्टिन की 2 ग्राम प्रति किलोग्राम मात्रा से बीज की दर से उपचारित करें। बीजों की बुआई कतारों में करनी चाहिए और पौधशाला में कीड़ों की रोकथाम हेतु एसिफेट 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी का पौधों पर छिड़काव करें। नर्सरी में विषाणु रोगों से बचाव के लिए मिर्च की पौध को सफेद नायलॉन नेट से ढक कर रखें। नर्सरी में बुआई के 4 से 5 सप्ताह बाद पौध रोपण के लिए तैयार हो जाती है। गर्मी की फसल में पंक्ति से पंक्ति की दूरी 45 सेंटीमीटर व पौध से पौध की दूरी 30 से 45 सेंटीमीटर रखें। खरीफ फसल हेतु पंक्ति से पंक्ति की दूरी 60 सेंटीमीटर व पौध से पौध की दूरी 30 से 45 सेंटीमीटर रखें। रोपाई शाम के समय करें और रोपाई के तुरंत बाद सिंचाई कर दें। पौधों को 40 ग्राम एजोस्पायरलम 2 लीटर पानी के घोल में 15 मिनट डुबोकर रोपाई करें। खेत की अंतिम जुताई से पहले 20 से 25 टन प्रति हेक्टेयर अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद खेत में डालकर अच्छी तरह मिला दें। इसके अलावा 70 किलोग्राम नत्रजन, 50 किलोग्राम फास्फोरस व 50 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से उर्वरकों का प्रयोग करें। नत्रजन की अधिक मात्रा खेत की तैयारी के समय व शेष बची हुई आधी मात्रा 30 व 45 दिनों के बाद ट्रॉप ड्रेसिंग द्वारा खेत में डालें एवं तुरंत सिंचाई कर दें। गर्मी में 5 से 7 दिनों के अंतर पर और बरसात में जरूरत के हिसाब से सिंचाई करनी चाहिए। मिर्च के फूल और फल लगने के समय भूमि में नमी होना अत्यंत जरूरी है, क्योंकि पानी की कमी से पौधों का विकास रुक जाता है। इसकी वजह से फलों के गिरने की संभावना बढ़ जाती है। खरपतवारों का रोकथाम हेतु समय समय पर निराई गुराई करनी चाहिए। 200 ग्राम ऑक्सीफ्लोरोफेन 600 से 700 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करना चाहिए। अब उपज की बात करें तो बताए गए तरीकों से खेती करेंगे तो हरी मिर्च के लिए तुराई फल लगने से 15 से 20 दिनों बाद कर सकते हैं। पहली तुराई से दूसरी तुराई का अंतर 12 से 15 दिनों तक रखें। हरी मिर्च की पैदावार 150 से 200 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तथा सूखी लाल मिर्च की उपज 15 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है।
12: तो ये सारी बातें तो खेती से जुड़ी हुई, लेकिन अब जो सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमारे किसान भाइयों को ध्यान देने योग्य है अपनी फसलों को बचाना है बर्बाद होने से, तो वो है रोग और कीटों के प्रबंधन को जानना। तो इसके बारे में मैम बता दें कि कैसे किसान भाइयों को करना चाहिए।
11: जी हाँ, मिर्च फसल में रोग व कीट प्रबंधन का विशेष ध्यान रखना आवश्यक होता है। इसमें लगने वाले प्रमुख कीट हैं सफेद लट, कीट की लटों पौधों की जड़ों को खाकर नुकसान पहुंचाती है। इनकी रोकथाम के लिए कार्बेफिरॉन 3G का 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से रोपाई से पहले जमीन में मिलाएं। सफेद मक्खी व थ्रिप्स, इन्हें रोकने के लिए मालाथियॉन 50 EC या इमिडाक्लोरपेट 3 मिलीलीटर प्रति 10 लीटर पानी की दर से छिड़काव करें। 15 से 20 दिनों के बाद दोबारा छिड़काव करना चाहिए। इन रसायनों के साथ नीम का तेल 5 मिलीलीटर प्रति लीटर भी मिश्रित कर सकते हैं। अब मिर्च फसल में लगने वाले प्रमुख रोग की बात करते हैं, तो प्रमुख रोग हैं आद्र गलन, श्याम वर्ण, पर्ण कुंचन व मोज़ेक विषाणु रोग। आद्र गलन रोग का प्रभाव छोटे पौधों पर होता है। इस रोग का प्रभाव जमीन की सतह पर स्थित तने का भाग काला पड़ जाता और कमजोर होकर गिर कर मरने लगते हैं। इस रोग की रोकथाम के लिए बीजों की बुआई से पहले थिरम या कप्तान 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित कर करें। श्याम वर्ण एक ऐसा रोग है जिसमें पत्तियों पर छोटे छोटे काले धब्बे बन जाते हैं और पत्तियां झड़ने लगती हैं। जब इसका असर ज्यादा होता है तो शाखाएं ऊपर से नीचे की तरफ सूखने लगती हैं। पके फलों पर भी बीमारी के लक्षण दिखाई देते हैं। इसकी रोकथाम के लिए मैनकोजेब 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर 2 से 3 बार छिड़काव 15 दिनों के अंतराल पर करें। पर्ण कुंचन व मोज़ेक विषाणु रोग बहुत ही घातक रोग है। पर्ण कुंचन रोग के असर से पत्ते सिकुड़कर छोटे रह जाते हैं और उन पर झुर्रियां पड़ जाती हैं। मोज़ेक विषाणु रोग के कारण पत्तियों पर गहरे व हल्का पीलापन लिए हुए धब्बे बन जाते हैं। रोगों को फैलाने में कीट सहायक होते हैं। इसकी रोकथाम के लिए रोग लगे पौधों को उखाड़कर जला देना चाहिए। रोग को आगे फैलने से रोकने के लिए डायमिथेट 3 EC का 0.1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के दर से छिड़काव करें। किसान भाई, अगर आप बताए गए विधि से मिर्च फसल की खेती करेंगे तो अवश्य ही अधिक मुनाफा कमा पाएंगे।
12: जी, तो इस प्रकार किसान भाइयों, हरी मिर्च की खेती आप कर सकते हैं। सारी बातें आपको आज की वार्ता में बताई गई हैं और आशा करते हैं कि आपको जरूर लाभ मिलेगा आज इस वार्ता को सुनकर। तो अगले दिन एक अलग विषय के साथ हम हाजिर होंगे इसी फ्रिक्वेंसी, याद रखें 90.8 MHz। नमस्कार।
13: नमस्ते क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
14: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने, हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
13: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना है। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
15: सुनो सुनो सुनो सभी, एक जरूरी बात, आया मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण फिर एक बार। अगर आपके घर या पड़ोस में है 5 साल या उससे छोटे बच्चे जिनका कोई भी टीका छूट गया हो तो सोचते क्या हो, जल्दी से आशा दीदी से करो बात। बच्चों को स्वास्थ्य केंद्र है लेकर जाना और उनका टीकाकरण है करवाना।
16: सुहाना सफर और ये मौसम हसी,
15: टीको ये मौसम है टीकाकरण करवाने का, तो सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
17: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
18: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर 0 अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा। वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है? पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
19: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
8: हर घर सूर्य घर।
20: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 ग्रीन एफएम।
21: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार और आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई में। दोस्तों आप तो जानते ही हैं कि सरकार ने एचपीवी का टीका सभी 14 साल से ऊपर के बच्चों के लिए मुफ्त कर दिया है। एचपीवी का टीका लगाना शुरू तो हो गया है लेकिन अभी भी बहुत सारे हमारे श्रोताओं के मन में बहुत सारे सवाल हैं। तो आज हम बात करेंगे एचपीवी टीके की और कोशिश रहेगी कि आपके मन में जो भी सवाल हैं उनके जवाब भी हम दे सके। जब भी कोई पहल होती है खास तौर पर सेहत के मामले में तो हमारे परिवारजनों के मन में डर रहता है और कई सारे सवाल भी रहते हैं, खासकर जब सोशल मीडिया हमारे पास है और सोशल मीडिया और मोबाइल पर चल रही बहुत सी बातें होती है, बहुत सी अफवाहें होती है, तो उन अफवाहों से लोगों के मन में उलझन और सवाल दोनों ही पैदा होते हैं। इसलिए आज हम कुछ आम सवाल उठाएंगे और आसान भाषा में उनके जवाब देंगे। तो बस आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए, आपको आज एचपीवी टीकाकरण से जुड़े ढेर सारे सवाल मिलने वाले हैं। इसलिए क्योंकि हमने बहुत से सवाल इकट्ठे किए हैं और एक के बाद एक हम उन सवालों को पढ़ेंगे और जवाब भी देंगे। तो पहला सवाल है, एचपीवी टीका किस लिए लगाया जाता है? दोस्तों एचपीवी टीका सर्वाइकल कैंसर यानी बच्चेदानी के मुंह के कैंसर से बचाव में मदद करता है। ये कैंसर महिलाओं में होने वाली गंभीर बीमारियों में से एक है। अगर समय पर बचाव हो जाए तो बीमारी का खतरा काफी कम किया जा सकता है। इसलिए बहुत जरूरी होता है कि महिलाएं एचपीवी टीका जरूर लगाएं। और दूसरा सवाल है कि क्या एचपीवी टीका सुरक्षित है? जी हाँ, बिल्कुल सुरक्षित है। एचपीवी टीका सुरक्षित माना जाता है और ये दुनिया के कई देशों में लगाया जा रहा है। ये कोई नई बात नहीं है। टीका लगने के बाद हाथ में हल्का दर्द, सूजन, हल्का बुखार, सिर दर्द या चक्कर आ सकते हैं और ये सामान्य बातें हैं। आमतौर पर जल्दी ठीक हो जाती है और कोई भी टीका आप लेते हैं तो ऐसी परेशानी थोड़ी बहुत होती है जो कि कुछ दिनों में ठीक भी हो जाती है। अब तीसरा सवाल, क्या इसका कोई बड़ा दुष्प्रभाव होता है? गंभीर दुष्प्रभाव बहुत दुर्लभ है, यानी कि गंभीर दुष्प्रभाव ना के बराबर होते हैं। इसलिए आप अफवाहों पर भरोसा ना करें कि अगर आप एचपीवी टीका अपनी बच्ची को लगवाएंगे तो उन्हें कोई परेशानी हो जाएगी। और अगर आपके मन में फिर भी कोई सवाल बचते हैं, कोई चिंता होती है, तो आप आशा दीदी, ANM CHO या फिर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में भी आप बात कर सकते हैं। वो आपको और भी अच्छी तरीके से समझाएंगे कि इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है और बहुत रेयर होता है। चौथा सवाल कि ये टीका बच्चियों को ही क्यों लगाया जा रहा है? देखिए, क्योंकि एचपीवी संक्रमण आगे चलकर सर्वाइकल कैंसर का कारण बन सकता है और ये बीमारी महिलाओं में होती है, इसलिए किशोरियों को, बच्चियों को बीमारी आने से पहले ही सुरक्षा देने के लिए टीका लगाया जाता है। कहते हैं ना कि बाद में इलाज से बेहतर है कि आप पहले ही बचाव कर ले, तो ये टीका बचाव के लिए है। पांचवा सवाल जो बहुत सारे लोगों के मन में उठ रहे हैं और बहुत सारी लड़कियां इस सवाल से चिंतित है कि क्या इससे भविष्य में मां बनने पर असर पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा, ये बिल्कुल कोरी अफवाह है। एचपीवी टीका मां बनने की क्षमता पर कोई असर नहीं डालता। ये कैंसर से बचाव के लिए है। बांझपन या कमजोरी से इसका कोई संबंध नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ आपको कैंसर से बचाता है, सर्वाइकल कैंसर से बचाता है। छठा सवाल ये है कि क्या मोबाइल और सोशल मीडिया पर चल रही बातें सही है? बस यही बात तो आपको हम बताने आए हैं कि हर बात जो मोबाइल और सोशल मीडिया पर चल रही है वो सही नहीं होती। कई बार बिना जांचे परखे डर फैलाया जाता है और कई बार कुछ बातें ऐसी होती है जो किन्हीं तक एक पहुंची और उसने अपने पास वाले को दो बातें पहुंचाई, फिर तीन बातें, चार बातें, इस तरीके से बहुत बड़ी चढ़ी बात हम तक पहुंचती है। इसलिए कोई भी बात आप तक सोशल मीडिया या मोबाइल के जरिए पहुंचे तो उसे बिना जांचे परखे उस पर भरोसा ना करें।
1: स्वास्थ्य से जुड़ी जो भी जानकारी होती है वो हमेशा आपको चाहिए कि प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मी या सरकारी स्वास्थ्य केंद्र से ही ले। आपको इन्हीं जगहों से सबसे भरोसेमंद जानकारी मिल सकती है। अब सातवां सवाल कि टीका कब और कहां लगेगा। जी हां, अगर आपके मन के जो भी सवाल हैं और जो उलझन है वो दूर हो गए हैं तो सबसे जरूरी सवाल कि टीका कब और कहां लगेगा, इसके लिए आप अपनी आशा ANM या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। वहीं आपको सही तारीख, जगह और पात्र उम्र की जानकारी देंगे। तो साथियों याद रखिए, अफवाह से नहीं सही जानकारी से फैसला लें। HPV टीका बेटियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाने की दिशा में एक बहुत जरूरी कदम है। सेहत सही लाभ कई की ओर से ये संदेश जनहित में जारी है। आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें। फिलहाल मुझे यानी कि आपकी होस्ट और दोस्त उमा को दीजिए इजाजत, लेकिन जाने से पहले खास बात की स्वस्थ रहें, खुश रहें और अफवाहों से बचें। नमस्कार।

0: खसरा कितनी गंभीर बीमारी है। टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MRT का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टीको क्यों है इतने जीरो?
1: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात, अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
0: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
1: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।

0: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं? हाँ या ना?
1: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
2: हाँ।
0: इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
1: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
2: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
0: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
2: क्या क्या क्या?
1: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
2: अच्छा,
3: तो सबकी समझ में आ गया ना? खसरा रुबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाए जड़ तक।
4: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
5: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
4: और लाइट बिल के।
5: अब 0 रुपए कैसे दूं?
4: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
6: पक्का। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
7: हर घर सूर्य घर।
8: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 22 से 26 जुलाई के दौरान आसमान में घने बादल छाए रहेंगे और जिले में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी चलने और हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 26 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 90% और दोपहर में 70 से 80% रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए, जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दें, पिछले कुछ दिनों में हुई वर्षा का लाभ उठाइए और आगे भी संभावना है कि वर्षा होगी, तो ऐसी स्थिति में धान की रोपाई के लिए व्यवस्था सुनिश्चित कर ले। रोपाई से पहले प्रति हेक्टेयर 25 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस, 30 किलोग्राम पोटाश और 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट का प्रयोग करें। आपको बता दें कि निचली जमीन के चारों ओर मजबूत मेड़ यानी कि बांध बनाकर वर्षा जल का संचयन कर ले, ताकि जरूरत पड़ने पर आप वर्षा के जल का सिंचाई में उपयोग कर सके। जो किसान भाई बहन श्री अन्न की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दें, मोटे अनाजों की खेती के लिए उचास भूमि का चयन करें। मड़वा की वकुला KMR 316, GPU 67 और VL 379 राजेंद्र मड़वा, RU 8 और RU 3। और आपको बता दें कौनी की अनुशंसित किस्में हैं राजेंद्र कौनी 1, आप इन किस्मों की बुआई कर सकते हैं। मक्का की खेती करने वाले किसान भाई बहन ध्यान दें, खरीफ मक्का की बुआई आसमान साफ रहने पर ही करें। खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और ध्यान रखें कि बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नेत्रजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश जरूर डालें। अनुशंसित मक्का की किस्में जैसे सुवान, देवकी, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, राजेंद्र संकर मक्का 3, गंगा 11 है। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, मिर्च, अगाध गोभी, टमाटर जैसी सब्जियों की नर्सरी तभी तैयार करें जब आसमान साफ हो। और बागवानी करने वाले भाई बहन ध्यान दें, जुलाई अगस्त आम के पौधों के रोपण के लिए सबसे

दो मीटर और बौनी किस्मों के लिए 1.5 गुना 1.5 मीटर की दूरी रखें। प्रत्येक गड्ढे में 5 किलोग्राम गोबर की खाद, 500 ग्राम अरंडी की खली, 300 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट, 100 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश और 10 ग्राम कार्बोफ्यूरान मिलाना न भूलें। रोपाई से पहले सकर्स को कार्बन डाइजीम 2 ग्राम प्रति लीटर पानी से उपचारित करें। किसान भाई बहनों, टिश्यू कल्चर पौधे का उपयोग अधिक उत्पादन के लिए लाभकारी होता है। पशुपालक भाई बहन ध्यान दें, पशुओं में PPR, MFD यानी कि खुरपका मुंहपका और HS यानी कि गला घोटू, इन रोगों का खतरा अधिक है। इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण करवाएं, उन्हें साफ और सूखा रखें और बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। रोग के लक्षण अगर दिखाई दे तो तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें और ध्यान रखें कि पशुओं की बिना जरूरत के आवाजाही पर नियंत्रण रखें। गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए जून माह में अगर टीके नहीं लगाए गए हों तो इस महीने में टीके जरूर लगवा दें। पशुओं को संतुलित और पौष्टिक आहार दें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: कृषि विभाग द्वारा जारी पौधा संरक्षण सामयिक सूचना। खरीफ मौसम में ग्रास हॉपर के प्रकोप की संभावना रहती है। ग्रास हॉपर को किसान फुतका के नाम से भी जानते हैं। इसका व्यसक 1 से 7 सेंटीमीटर लंबा होता है। इसकी मादा पूरे मौसम में औसतन 200 अंडे देती है। अनुकूल वातावरण मिलने पर अंडे की संख्या 400 तक हो सकती है। व्यस्क मादा आधे से 2 इंच मिट्टी के अंदर अंडा देती है। अप्रैल मई में शिशु कीट 5 से 6 विकास की अवस्था के बाद 40 से 60 दिनों में व्यस्क बनते हैं। ग्रास हॉपर की संख्या को नियंत्रित रखने के लिए इसके प्राकृतिक शत्रुओं जैसे ब्लिस्टर बिटिल, ग्राउंड बिटिल, चिड़िया, छिपकली, मेढक, मकड़ी इत्यादि का संरक्षण करना चाहिए। ग्रास हॉपर कीट फसल की पत्तियों को 1 या 2 किनारों से खाता है। इसके उग्र आक्रमण की दशा में सिर्फ मध्य शिरा ही बचा रह जाता है। फलस्वरूप पौधे की वानस्पतिक वृद्धि प्रभावित होती है। इसकी संख्या प्रति वर्ग मीटर 3 से 7 होने पर इसके जैविक या रासायनिक नियंत्रण के उपाय करने चाहिए। फुतका कीट का प्रबंधन आप इस प्रकार कर सकते हैं। खेत में जगह जगह पक्षी बैठक लगाना, जैविक कीटनाशी के रूप में यूवेरिया बेसिना 2.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और मेटारीजियम स्पी का 2.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और नीम तेल 1500 ppm का 3 से 5 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से फसल पर छिड़काव करना चाहिए। रासायनिक कीटनाशी के रूप में क्लोरपाइरीफास 20% ईसी की 2.5 से 3 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोलकर या फिर लैम्डा साही हेलोथ्रीन 5% ईसी की 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें या फिर डेल्टा मेथ्रीन 2.8% ईसी की 1 से 1.5 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोलकर या फिर फिप्रोनील 5% SC का 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करना चाहिए। छिड़काव कार्य शाम के समय यानी कि दोपहर 4 बजे के बाद करना अच्छा होता है। विशेष सेवा या सुविधा के लिए अपने नजदीक के पौधा संरक्षण केंद्र या कृषि विज्ञान केंद्र अथवा पौधा संरक्षण सहायक निदेशक उद्यान या जिला कृषि कार्यालय से संपर्क करें। क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं विमलेश। आप सबका स्वागत है उमंग कार्यक्रम में।
3: और मैं हूं अजीत। नमस्कार, आइए सुनते हैं आज का सुंदर विचार जिसे हमें भेजा है कस्बा बराड़ा जिला अंबाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश, प्रियंका, मन्नत, गुरकीरत और गुरशब्द सिंह राहुल जी ने। लिखते हैं,
2: झाड़ू जब तक एक सूत्र में बंधी होती है तब तक वह कचरा साफ करती है, लेकिन वही झाड़ू जब बिखर जाती है तो खुद कचरा हो जाती है। इसलिए हमेशा संगठित रहें और बिखर कर कचरा न बने।
3: आपका बहुत बहुत धन्यवाद एकता और संगठित रहने का सुंदर विचार भेजने के लिए। आइए सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। श्रोताओं, हमें पहला संदेश मिला है कोका भिलाई छत्तीसगढ़ से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी का। लिखते हैं,
2: डॉक्टर कामिल बुल के 24 तारीख को सुने, बेल्जियम में जन्मे कैसे भारत को अपना कर्म भूमि बना लिया, रामचरितमानस पर शोध किया और कामिल बुल के से कामिल बुल के बाबा बन गए। बहुत अच्छा लगा इतनी अच्छी जानकारी और प्रस्तुति के लिए। उमंग टीम को बहुत बहुत बधाई।
3: और अगला संदेश हमें मिला है डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव, तुषार देव, डॉली, बेबी, पूजा, राधिका, प्रभा देवी और मास्टर अल कबीर का।
2: भवानीगढ़ संगरूर पंजाब से परमिंदर सिंह रंधावा, लखनपाल रंधावा और सुरेंद्र कौर रंधावा जी का।
3: और गणेशवाड़ी कोल्हापुर महाराष्ट्र से संभाजी सुतार, चेतन सुतार और सारिका सुतार जी का।
2: पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग टेलर, तनुजा देवांगन और ईशांत देवांगन।
3: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं आप सबका संदेश भेजने के लिए। एक बार फिर से प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए के अंतर्गत आज की कड़ी। श्रोताओं, इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं भारत के अनूठे मेलों की,
2: ऐसे मेलों की जो प्रयास है समुदायों को उनकी संस्कृति से जोड़ने का। इनके बारे में लोगों को अधिक पता नहीं है, लेकिन वे अपने आप में सचमुच अद्भुत हैं, जीवंत हैं और प्रेरणा देने वाले भी। तो कल हमने चर्चा की थी असम राज्य के जॉनबील मेले की, जहां वस्तु विनिमय प्रणाली का आज भी प्रचलन है।
3: आज हम चलेंगे एक और सुंदर और मनोरम उत्तर पूर्वी भारत के पर्वतीय राज्य नागालैंड और जानेंगे एक और मेले के बारे में। इसे हॉर्नबिल मेले के नाम से जाना जाता है। तो विमलेश जी, अब चर्चा को आगे बढ़ाइए।
2: जी अजीत जी, श्रोताओं, हॉर्नबिल महोत्सव या मेला नागालैंड का सबसे प्रसिद्ध सांस्कृतिक मेला है। इसे त्योहारों का त्योहार यानी फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स भी कहा जाता है। अजीत जी, आप जानते हैं कि ये कब मनाया जाता है?
3: जी विमलेश जी, हॉर्नबिल मेला हर साल 1 से 10 दिसंबर तक मनाया जाता है।
2: जी,
3: ये कोहिमा के पास किसामा हेरिटेज विलेज में आयोजित किया जाता है। लेकिन विमलेश जी, एक स्वाभाविक प्रश्न मेरे मन में आता है और वो ये है कि इस उत्सव या मेले का नाम हॉर्नबिल क्यों पड़ा?
2: अजीत जी, बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है आपने।
3: जी,
2: इसका जवाब भी उतना ही सुंदर है। हॉर्नबिल एक पक्षी है जो अपनी सुंदरता के लिए जाना जाता है। ये जबरदस्त उड़ान भर सकता है। इसके पंख इतने शक्तिशाली होते हैं कि जब ये उड़ता है तो उसके पंखों की फू फू जैसी आवाज दूर दूर तक सुनाई देती है।
3: जी विमलेश जी, पूर्वोत्तर भारत में विशेषकर नागालैंड में इस पक्षी को यानी हॉर्नबिल पक्षी को साहस, सम्मान और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है।
2: जी, यही वजह है कि नगा परंपराओं में विशेषकर सर के आभूषणों में हॉर्नबिल पक्षी का प्रतिरूप अवश्य दिखाई देता है। आइए अब जानते हैं कि क्या होता है हॉर्नबिल मेले में।
3: श्रोताओं, इस मेले में रंग बिरंगे पारंपरिक नृत्य देखने को मिलते हैं।
2: जी,
3: जिनमें सबसे लोकप्रिय और आकर्षक है युद्ध नृत्य।
2: जी,
3: युद्ध नृत्य में पुरुष योद्धा पारंपरिक हथियार लेकर नृत्य करते हैं। तेज ड्रम की ताल, वॉर क्राई और तालबद्ध पैरों की गति के साथ ये नृत्य होता है।
2: जी
3: विमलेश जी, एक बहुत विशेष बात तो हम भूल ही गए थे, ये तो बता दें कि इस मेले के दौरान एक बड़ी खास प्रदर्शनी होती है।
2: जी,
3: जिसे मोरुंग कहते हैं।
2: जी,
3: ये मोरुंग होता क्या है?
2: अजीत जी, मोरुंग नागालैंड की जनजातियों का युवा आवास हुआ करता था। ये बांस और लकड़ी से बना हुआ बड़ा सामुदायिक भवन होता था।
3: जी, प्रत्येक गांव में कम से कम एक मोरुंग अवश्य होता था। वहाँ जनजातीय इतिहास, युद्ध कौशल, वाद्य संगीत और लकड़ी के हस्त कौशल सिखाए जाते थे।
2: जी, यहाँ हस्तशिल्प, हैंडलूम यानी हस्तकरघा, स्थानीय व्यंजन इत्यादि प्रचुरता से मिलते हैं।
3: श्रोताओं, ये उत्सव नागालैंड की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का जीवंत प्रदर्शन है।
2: जी,
3: यहाँ आकर लोग असली नागा जनजातीय जीवन, आतिथ्य और उनकी परंपराओं की ऊर्जा को महसूस कर सकते हैं। तो श्रोताओं, ये थी जानकारी नागालैंड के बेहद खास मेले हॉर्नबिल उत्सव की।
2: जी।
3: कभी नागालैंड जाएं तो इस मेले का आनंद जरूर लें।
2: जी।
3: तो अब प्रस्तुत है आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है,
2: मोरुंग किसे कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
3: मोरुंग किसे कहते हैं? 8800440559 है हमारा IVRS नंबर और audio@cieet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन पतों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं और अपने उत्तर व संदेश हमें भेज सकते हैं। और अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। तो श्रोताओ, हमारा पहला कार्यक्रम है सुंदरिया।
2: कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में एक प्यारी गाय सुंदरिया की कहानी बताई गई है और उसके माध्यम से बच्चों को संदेश दिया गया है कि पशुओं में भी भावनाएं और संवेदनाएं होती हैं।
4: एक समय की बात है, हरियाणा के एक गांव में एक किसान रहता था। नाम था हीरा सिंह। निर्धनता के कारण बड़ी मुश्किल से उसके परिवार का गुजारा चलता था। उसके पास एक गाय थी, नाम था सुंदरिया। उस गाय के कारण हीरा सिंह से गांव वालों को बड़ी ईर्ष्या होती थी। निर्धनता का ये हाल था कि हीरा सिंह सुंदरिया के लिए चारा भी नहीं जुटा पाता था। वो भी गाय को बहुत प्यार करता था। वो चाहता था कि किसी प्रकार गाय को अच्छा चारा मिल सके, लेकिन तंगी पीछा नहीं छोड़ती थी, इसलिए कई बार उसके मन में एक विचार आया।
5: अब तो सुंदरिया को पालना बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। कहां से आएगा उसके लिए चारा? यहां तो परिवार के खाने के लाले पड़े हुए हैं। सोचता हूं उसे किसी धनी किसान को बेच दूं, कम से कम अच्छा चारा तो मिलेगा उसे।
4: लेकिन हीरा सिंह अपने बड़े बेटे जवाहर सिंह से डरता था, क्योंकि उसे सुंदरिया गाय से बहुत लगाव था। जवाहर सिंह सुंदरिया को प्यार से मौसी बुलाता था। समय बीतता गया और आखिर परिवार की दरिद्रता समाप्त करने के लिए हीरा सिंह नौकरी की तलाश में दिल्ली आ गया। वहाँ एक सेठ के यहाँ उसे चौकीदार की नौकरी मिल गई। एक दिन सेठ ने कहा,
6: हीरा सिंह, शहर में आजकल दूध की बड़ी किल्लत हो रही है।
5: जी मालिक, ये बात तो है।
6: पता नहीं जो दूध तुम दुकानों से लाते हो वो ठीक भी है या नहीं। बहुत मिलावट चल रही है। तुम तो हरियाणा के हो, सुना है वहां की गायें बड़ी अच्छी और दुधारू होती हैं। एक काम करो, तुम हमारे लिए किसी अच्छी गाय का प्रबंध कर दो।
5: जी मालिक, कोशिश करता हूं। वैसे एक गाय है मेरी निगाह में।
6: अच्छा?
5: ऐसी कि साक्षात कामधेनु। दूध भी 15 सेर से ज्यादा ही उतरता है और उसके 200 रुपए तक लग चुके हैं।
6: भाई, इतनी अच्छी गाय है तो 10 रुपए अधिक हम दे देंगे। ये लो 100 रुपए, बाकी तुम्हारे आने पर मिल जाएंगे।
5: जी मालिक।
4: दरअसल हीरा सिंह के मन में उसकी प्यारी गाय सुंदरिया ही थी। सोचने लगा, यहाँ आएगी तो अच्छा चारा भी मिलेगा और मैं उसकी सेवा भी कर लूंगा। हीरा सिंह उसी दिन गांव चला गया। जैसे तैसे अपने बेटे जवाहर को समझाया और गाय लेकर दिल्ली आ गया। सेठ जी ने गाय को देखा तो बड़े प्रसन्न हुए। ऐसी स्वस्थ सुंदर गाय उन्होंने पहले न देखी थी। दूसरे दिन सेठ जी ने पास के एक ग्वाले को बुलाया और गाय उसके सुपुर्द कर दी। हीरा सिंह का दिल भरा जा रहा था। उसने सेठ जी से कहा,
5: सेठ जी, गाय की नौकरी पर मुझे ही लगा दीजिए, चाहे पगार कम ही दीजिए।
6: ये नहीं हो सकता हीरा सिंह। भाई, हमें तुम जैसा दूसरा ईमानदार और मेहनती चौकीदार कहाँ मिलेगा? तुम्हें तो यहीं ड्योढ़ी पर ही रहना होगा।
4: ग्वाले ने सुंदरिया को ले जाने के लिए पूरा जोर लगा दिया, लेकिन गाय टस से मस नहीं हुई। अपनी भोली आंखों से वो हीरा सिंह को ही देख रही थी, मानो कह रही थी, तुम्हें छोड़कर मैं कहाँ जाऊँ? हीरा सिंह ने गाय को थपथपाया, पुचकारा और बोल उठा,
5: मेरी प्यारी सुंदरिया, अब चली जाओ ना, मैं यही तो हूँ तुम्हारे पास। तुम चिंता ना करो, अरे मैं तुम्हें देखने आता रहूंगा मेरी प्यारी सुंदरिया।
4: अनमने मन से सुंदरिया चल दी। लेकिन अगले ही दिन कुछ विचित्र हुआ। सेठ जी ने हीरा सिंह को बुलाया।
6: हीरा सिंह, तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? आज गाय का 5 सेर दूध भी नहीं उतरा। तुम तो कहते थे कि 15 सेर से भी ज्यादा दूध मिलेगा।
5: सेठ जी, कल ही तो मैंने पूरा 15 सेर दूध दुहकर आपको दिया था, भला मैं झूठ क्यों बोलने लगा?
6: ये बात तो है, लगता है कुछ गड़बड़ है। चलो कल फिर देखते हैं।
5: जी सेठ जी।
4: लेकिन दूसरे दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ। सेठ जी को गुस्सा आ गया, बोले,
6: हीरा सिंह, तुमने सचमुच मुझे धोखा दिया है। गाय को ले जाओ और मेरे पैसे वापस करो।
5: लेकिन मालिक, पैसे तो मैं गांव भेज चुका हूँ और उसमें से काफी मकान की मरम्मत में खर्च हो गए, अब पैसे कहाँ से लौटाऊं?
6: तो ठीक है, पैसा मैं तुम्हारी पगार से काट लूंगा।
4: अब रोज रोज यही शिकायत आने लगी। कभी गाय दूध बहुत कम देती, कभी चारे को मुंह तक नहीं लगाती। हाँ, एक बात जरूर थी, जब हीरा सिंह उसे देखने जाता तो बहुत प्रसन्न हो जाती और चारा भी खा लेती। अपनी बड़ी बड़ी आंखों से हीरा सिंह को निहारती रहती, मानो कह रही हो, मुझे वहाँ क्यों भेज दिया? एक रात की बात है, हीरा सिंह अपने कमरे में सो रहा था कि तभी

0: मेरी प्यारी सुंदरिया।
1: वो अपराधी भाव से उसे देख रही थी, मानो कह रही हो, क्षमा करना, मेरा वहां मन नहीं लगा, इसलिए रस्सी तोड़ कर आई हूँ। मुझे तो तुम्हारे संग ही रहना है। उस मूक गाय की आंखों में वेदना थी। हीरा सिंह भाव विभोर हो उठा। वो सुंदरिया के गले से लिपट कर देर तक सिसकता रहा।
0: अब तू कहीं नहीं जाएगी, हम कहाँ चलेंगे? मैं अपराधी हूं कि मैंने तुम्हें बेच दिया, लेकिन सुंदरिया, वो तो तुम्हारे भले के लिए ही तो था। लेकिन अब हम साथ रहेंगे। हाँ, मैं तुम्हें कभी अपने से अलग नहीं करूंगा। मैं सुबह ही सेठ जी से बात करूंगा।
2: आओ हीरा सिंह, कुछ बात बनी? गाय कैसी?
0: सेठ जी, मैं गाय को आज ही गांव ले जाऊंगा।
2: लेकिन उसके लिए जो पैसे तुमने लिए हैं, उनका क्या होगा?
0: सेठ जी, मैं उसे चुकाने के लिए मुफ्त में आपकी चाकरी करने के लिए तैयार हूं। रुपए जब चुकता हो जाएं, तो मुझे बता दीजिएगा, फिर मैं भी छुट्टी कर लूंगा। सुंदरिया का दुख मुझसे नहीं देखा जाता सेठ जी।
1: इतना कहकर उसने गाय की डोर थाम ली और कहा,
0: सेठ जी, गाय को गांव छोड़कर मैं आपकी सेवा में फिर आ जाऊंगा और रुपए वसूल होने तक मैं आपके यहाँ काम करूंगा। नमस्ते।
1: हीरा सिंह ने गाय को पुचकारा, थपथपाया और चलने लगा। सेठ जी का मन भी भर आया था, कहने लगे,
2: हीरा सिंह, इस प्यारी गैया के प्रति तुम्हारा प्रेम देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। अरे, तुमसे यहाँ मुफ्त में काम करवाकर क्या मुझे पाप नहीं लगेगा? मान लो कि मेरे रुपए भी वसूल हो गए। जाओ हीरा सिंह, जाओ।
0: जी सेठ जी।
2: खुशी से जाओ हीरा सिंह, और हाँ, सुंदरिया का खूब ख्याल रखना, और जब कभी भी समय मिले हमसे मिलने जरूर आना।
0: धन्यवाद सेठ जी।
3: अभी आपने सुना कार्यक्रम सुंदरिया। आशा है कि आपको जरूर ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम, शीर्षक है मेरा प्यारा दोस्त।
4: नमस्कार श्रोताओ, प्रेरक कहानियों की श्रृंखला में आपका स्वागत है।
5: ये कहानी है पूर्वोत्तर भारत के एक राज्य मेघालय की। लेकिन कहानी सुनने से पहले आइए लेते हैं मेघालय राज्य की थोड़ी जानकारी। मेघालय शब्द दो शब्दों के मेल या संधि से बना है, मेघ और आलय।
4: मेघ यानी बादल और आलय यानी घर, तो मेघालय का अर्थ हुआ बादलों का घर। साथियों, प्राकृतिक सुंदरता में मेघालय का कोई सानी नहीं है।
5: जी हाँ साथियों, यहाँ जब तब अनायास ही उमड़ते बादल, ऊंचे ऊंचे पर्वत, कल कल करती नदियाँ और हरे भरे जंगल पर्यटकों का मित्र, कल कल करती नदियाँ और हरे भरे जंगल पर्यटकों का मन मोह लेते हैं। गारू, खासी और जयंतिया यहाँ की मुख्य जनजातियाँ हैं।
4: मेघालय की राजधानी है शिलांग। ये कहानी शिलांग की है।
5: यूजीन लगभग 15 वर्ष का एक किशोर है। आज शिलांग शहर के पुराने बाजार में यूजीन चला जा रहा था। उसकी आंखें लगातार दुकानों के साइन बोर्ड्स पर ही टिक रही थी। ऐसा लग रहा था मानो वो कोई खास दुकान खोज रहा हो।
6: यहीं कहीं तो थी वो दुकान, कहाँ है वो? अब ये तो रही वो फूल वालों की दुकान, उसके बाद हाँ वो रही।
5: उसे वो दुकान मिल गई थी। साइन बोर्ड पर एक पिल्ले की सुंदर सी तस्वीर थी और उसके नीचे लिखा था पपीज फॉर सेल।
4: यूजीन को कुत्तों से बहुत लगाव था। उसकी बहुत इच्छा थी कि वो भी एक प्यारा सा कुत्ता पाले जो उसका दोस्त बन सके और उसके साथ खेल सके।
5: बात वास्तव में ये थी कि स्कूल में सहपाठी यूजीन के साथ रहने और खेलने से थोड़ा कतराते थे।
4: कुछ सोचकर वो दुकान में दाखिल हुआ।
6: हाँ, यहां से अंदर चलता हूं।

0: अरे वाह, कितनी सुंदर दुकान है और ले प्यारे प्यारे पपीज भी हैं। आजा आजा।
1: उसने कई बार अपने घर में कहा था कि वो एक प्यारा सा पिल्ला पालना चाहता है, लेकिन उसकी सुनी नहीं गई थी। किसी पशु को पालना काफी जिम्मेदारी का काम होता है। एक पिल्ले को पालने के लिए यूजीन के माता पिता तैयार नहीं थे।
2: लेकिन अब यूजीन बड़ा हो गया है, अब वो खुद पिल्ले का ध्यान रख सकता है, इसीलिए आखिरकार वो मान ही गए। और आज
1: यूजीन पिल्ला खरीद सकता है अपनी पसंद का। यूजीन सीधा काउंटर पर दुकानदार के पास चला गया और बोला,
0: नमस्ते मैडम।
3: नमस्ते बेटा।
0: मेरा नाम यूजीन है, मैं एक पिल्ला खरीदना चाहता हूँ। क्या आप मुझे उसका दाम बताएंगी?
3: देखो बेटा यूजीन, हमारे पास तो ढेर सारे पपीज हैं, सभी नस्ल के।
0: ओह।
3: लेकिन बेटा ये बताओ, क्या तुम सच में खरीदना चाहते हो?
0: जी बिल्कुल, पर आप ऐसा क्यों पूछ रही हैं?
3: बेटा बात ये है कि तुम्हारे साथ कोई बड़ा तो है नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम बस देखो और चले जाओ?
0: नहीं,
3: क्योंकि यहाँ बहुत से ऐसे बच्चे आते हैं, देखने की जिद करते हैं, सारे बिल्ले देखते हैं और अंत में लिए बिना ही चले जाते हैं। इससे हमारा समय बर्बाद होता है ना, तो।
0: नहीं ऐसा नहीं है, मैं उन बच्चों की तरह नहीं हूँ, मैं सच में खरीदूंगा, आप उनके दाम बताइए तो सही।
3: यूजीन देखो बेटा, सबसे कम दाम के हमारे पास लगभग 2,000 रुपए के पिल्ले हैं, फिर 3,000 और ऐसे ही। मेरा मतलब नस्ल के हिसाब से और भी महंगे हैं।
0: अच्छा,
3: क्या तुम इतना पैसा दे पाओगे?
0: ओहो, अभी इस समय तो मेरे पास 1,500 रुपए ही हैं। अब ये तो मैं आपको अभी तुरंत दे सकता हूँ, बाकी पैसे आपको कल दे सकता हूँ। मैं पापा से बात कर चुका हूँ, वो मुझे मेरी पसंद का पिल्ला लेने के लिए कह रहे थे, आप मुझसे कल तक ले लीजिए।
3: बेटा ऐसे तो बात नहीं बनेगी ना, समझो मेरी बात। वो क्या है कि अगर अभी तुम्हें पपी चाहिए तो तुम्हें पूरा पैसा भी अभी ही चुकाना होगा, समझे ना?
0: ठीक है मैडम, पर आप मुझे पपी दिखाइए तो सही, मैं आपको इसका मूल्य चुका दूंगा आज ही शाम तक। अब आया हूं तो पसंद करके ही जाऊंगा, अभी 1,500 दूंगा और जब बाकी पैसे लाऊंगा तब मैं आपसे पिल्ला ले लूंगा।
3: ठीक है। शेल्बिलिन, शेल्बिलिन, अरे कहाँ हो भाई?
4: हाँ जी बताइए।
3: देखो सारे पपीज ले आओ, ग्राहक कब से खड़े हैं, ध्यान रखा करो।
4: हाँ हाँ अभी लाता है, बस एक मिनट।
2: थोड़ी ही देर में सामने एक छोटा सा दरवाजा खुला और 5-6 प्यारे प्यारे पिल्ले कूं कूं करते हुए सामने आए। वो ऐसे लग रहे थे मानो ऊन के गोले हों। सब के सब बहुत ही प्यारे लग रहे थे।
1: यूजीन ने देखा कि उनमें एक पिल्ला था जो उछल कूद नहीं मचा रहा था। उसके सामने के दोनों पांव तो काम कर रहे थे, लेकिन पीछे के दोनों पांव घिसट रहे थे। वो धीरे धीरे घिसटता हुआ सबसे पीछे पीछे आ रहा था।
3: अरे शेल्बिलिन, तुमसे कितनी बार कहा है इसे मत लाया करो, तुम्हें ये छोटी सी बात समझ नहीं आती क्या? तुम फिर से इस पिल्ले को ले आए, हटाओ इसे।
4: ये तो बहुत शैतान है, पीछे पीछे आ ही जाता है, अभी ले जाता हूँ इसे, चलो शाबाश वापस चलो।
0: एक मिनट, अब इसे क्या हुआ, ये ऐसे क्यों चल रहा है? आजा आजा इधर आ।
3: ये जन्म से ऐसा ही पैदा हुआ है, सही होता तो इसकी बहुत कीमत होती, अब तो बोझ ही है हमारे लिए।
0: ओ, मैं इसे खरीदना चाहता हूँ, कितनी कीमत होगी इसकी?
3: हैं? अच्छा, समझ गई बेटा, समझ गई, मुझसे मजाक कर रहे हो ना? अरे ये देखो, ये वाला कितना सुंदर है। महंगा तो है लेकिन दूर दूर से लोग आते हैं इस वाले पिल्ले को खरीदने के लिए।
0: नहीं, ये नहीं चाहिए मुझे। वो वाला कितने का है?
3: अरे बेटा कैसी बातें करते हो, ये बेकार है। अरे बिन पैर का पिल्ला, बहुत से लोग आते हैं इस दुकान में, हम तो इसे छुपाई देते हैं।
0: क्या?
3: वैसे भी ये भला किस काम का, कौन खरीदेगा इसे?
0: मैडम मैं खरीदूंगा इसे, मैं इसे ही खरीदूंगा।
3: मगर क्यों? तुम्हें पता है ये तुम्हारे साथ खेल नहीं पाएगा, तुम आखिर इसे क्यों खरीदना चाहते हो?
0: मुझे यही चाहिए।
3: देखो बेटा, मुझे अच्छी तरह पता है कि तुम अभी जोश जोश में ऐसा कह रहे हो, शायद इसकी हालत पर तुम्हें दया आ रही होगी, है ना?
0: नहीं।
3: लेकिन सोचो, कुछ ही दिनों में अगर ये बीमार हो गया तो तुम इसे सड़कों पर या कहीं और छोड़ दोगे। और देखो, अगर ऐसा हुआ तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा।
0: जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा इसके साथ, मैं इसके साथ कुछ नहीं होने दूंगा, ये अपने इन्हीं कमजोर पैरों पर चलेगा, चलेगा ना मेरे साथ, बनेगा ना मेरा दोस्त। अल्ले।
3: अच्छा ठीक है, अगर ऐसी ही बात है तो फिर इसे यूं ही ले जाओ।
0: यूं ही?
3: हाँ, अब इसकी भला क्या कीमत?
0: क्या मतलब? अगर इसकी टांगे खराब हैं, तो क्या इसकी कोई कीमत नहीं है?
3: अच्छा अच्छा, समझी, स्वाभिमानी हो, मुफ्त में कुछ नहीं लोगे, अच्छी बात है। तो ऐसा करो, इसके तुम बस 50 रुपए दे दो, खुश?
0: 50 रुपए क्यों? ये तो इसका अपमान हुआ ना, इस नस्ल के दूसरे पिल्लों की जितनी कीमत है वो ही इसकी भी है। मैं आपको इसके पूरे पैसे दूंगा।
3: पर बेटा ये तो
0: बताइए ना, इसकी नस्ल की कितनी कीमत है?
3: बहुत महंगी है, अब 2000 रुपए, मेरा मतलब है कि।
0: तो यही इसकी कीमत भी है, अब ये रहे 1500 रुपए।
3: अब
0: और अब ये मेरा हुआ, मेरा दोस्त है ना, है ना मेरा दोस्त, तू यूजीन का दोस्त, तुम्हें शाम तक ले जाऊंगा दोस्त।
3: देखो बेटा, मैं तुम्हारी भावनाओं और जानवरों के लिए तुम्हारे इस प्यार का बहुत सम्मान करती हूँ, लेकिन बेटा क्या मैं जान सकती हूँ कि आखिर तुमने इस पपी में ऐसा क्या देखा कि तुमने इसको ही चुना, वो भी इतनी कीमत देकर? आखिर क्यों बेटा?
0: आप पूछते हैं क्यों? ये देखिए मैडम, ये देखिए।
2: यूजीन नीचे झुका और उसने धीरे धीरे अपनी पैंट ऊपर उठाई। दुकानदार ने देखा यूजीन का बायां पांव घुटने से कटा हुआ था, नीचे का आधा पैर कृत्रिम था, वहां धातु का पांव लगा हुआ था जिसके सहारे वो थोड़ा मुश्किल से लेकिन बिना सहारे के चल सकता था।
3: अरे बेटा ये
0: जी मैडम, आधा पैर नहीं है मेरा, अब बताएं मेरी क्या कीमत है आप जैसे लोगों के बीच? मैं भी इस पपी की तरह कूद नहीं सकता, दौड़ नहीं सकता, तो हो गया ना मैं भी बेकार बोझ।
3: अरे नहीं बेटा, कैसी बातें करते हो, वो तो
0: मैं भी मौका मिलते ही सबसे खुलना मिलना चाहता हूँ, लेकिन शायद मेरी ये कटी टांग ने मुझे सबके बराबर नहीं होने दिया, और 5 साल की उम्र से जानता हूँ मेरे साथ कोई नहीं खेलता, ये सब मैं जानता हूँ, ये सब मुझे पता है
3: बेटा।
0: इसलिए मुझे लगता है कि ये पपी मुझे मेरी कटी टांग से नहीं पहचानेगा, मुझे मेरी दोस्ती और मेरे प्यार से पहचानेगा। मैं नहीं चाहता ये अभी से मेरी तरह आजादी को, प्यार को तरसे। आज से, अभी से ये मेरा हुआ। आजा मेरा दोस्त, आजा।
3: यूजीन बेटा, इस पपी को तुमसे बेहतर भला कौन समझेगा, और शायद ये किसी और के साथ उतना प्यार भी ना पा सके जो इसका अधिकार है। इसे तुम्हें सौंपकर मैं भी निश्चिंत रहूंगी। ये लो, ये अब तुम्हारा हुआ। लो,
0: आजा।
5: श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम मेरा प्यारा दोस्त, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अजीत को
6: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
7: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
8: नमस्ते क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
9: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने, हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
8: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना है। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
10: सुनो सुनो सुनो सभी, एक जरूरी बात, आया मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण फिर एक बार। अगर आपके घर या पड़ोस में है 5 साल या उससे छोटे बच्चे जिनका कोई भी टीका छूट गया हो, तो सोचते क्या हो, जल्दी से आशा दीदी से करो बात। बच्चों को स्वास्थ्य केंद्र है लेकर जाना और उनका टीकाकरण है करवाना।
11: सुहाना सफर और ये मौसम हसी,
10: टीको ये मौसम है टीकाकरण करवाने का, तो सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
12: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
13: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल 0 आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in।
14: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
15: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
14: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
15: आपकी सेहत की बातें,
14: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
15: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
14: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
15: वो कहाँ पर?
14: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
15: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
14: उन्नत कृषि। किसान भाइयों, आप सभी को RJ अनु का प्यार भरा नमस्कार। आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से, और लेकर आए हैं हम आपके लिए, जी हां सिर्फ आपके लिए, उन्नत कृषि कार्यक्रम, जो आपको देता है बहुत सारी उन्नत बातों की जानकारी। वैसे हर विषय में जो है हम कुछ खास बातें लेकर आते हैं। अभी फ़िलहाल रवि फसलों की बात, हम इस फसलों पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं, और जब रवि फसलों की बात होती है तो दलहनी फसलों को हम छोड़ नहीं सकते। जी हाँ, दलहनी फसलों की आज बात होगी और खास तौर पर आपके आय से जुड़ी बात होगी। जी हाँ, आज आपको बता दें कि हमारा विषय है किसान की आय को दुगना करने के लिए रवि दलहन फसल की खेती में आधुनिक तकनीक का उपयोग। वैसे दोस्तों, हम बात करें किसान भाइयों की, तो किसान भाई हमेशा अपनी मेहनत लगाते हैं इन दलहनी फसलों को उपजाने में, लेकिन जब आधुनिक तकनीक को उनसे जोड़ दिया जाए, उनकी मेहनत के साथ जोड़ दिया जाए, तो उनकी आय और भी ज़्यादा हो सकती है, दोगुना हो सकती है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर आपको बता दें कि इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर अनिल कुमार और ये हैं बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सबौर से। और सबसे पहले डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इस कार्यक्रम में।
16: धन्यवाद।
14: और सबसे पहले तो जहाँ तक हमारा विषय है, तो हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे, वैसे तो पौष्टिकता की बात करें तो दाल जो है वो बहुत ज़रूरी है, हमारे खाने में इसे ज़रूर शामिल करना चाहिए, चाहे वो बच्चे हो, बूढ़े हो, जवान हो। अब मुझे लगता है कि दाल के बिना हमारा जो खाना है, हमारा जो आहार है, वो अधूरा रहता है। तो सबसे पहले इसके महत्व को हम जानना चाहेंगे, भारत में दालों का क्या महत्व है।
16: किसान बंधुओं नमस्कार। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत में दालें जो है मुख्य रूप से प्रोटीन स्रोत के रूप में भोजन का एक अभिन्न अंग है। इसके अलावा टिकाऊ कृषि हेतु भी मृदा की उर्वरा शक्ति को वृद्धि करने एवं आहार तथा चारे के विभिन्न रूपों में उपयोग आदि इन फसलों के लाभ हैं। आधुनिक तकनीकों को अपनाकर दलहन की वर्तमान उत्पादकता को दुगुना किया जा सकता है।
14: तो डॉक्टर साहब, ये तो महत्व तो जाना हमने कि कैसे, मतलब क्या इसके पौष्टिकता के महत्व तो हमने जाना कि प्रोटीन सबसे ज़्यादा इसमें पाया जाता है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अगर हमारे जो गरीब हैं वो भी अगर दाल को अपने डाइट में शामिल करें, तो उन्हें जो अतिरिक्त उनके शरीर को पोषण मिलना चाहिए वो मिल जाता है। तो आय को दुगना करने के लिए कौन कौन सी तकनीक हमारे किसान भाइयों की मेहनत के साथ जोड़ा जा सकता है।
16: यदि हम उन्नत तकनीकियों की बात करते हैं, तो उसमें सबसे पहले उन्नतशील प्रजातियों के चयन की बात आती है, तत्पश्चात फसल उत्पादन तकनीक की, ये बहुत महत्वपूर्ण भाग है, जिसमें सिंचाई, उर्वरक प्रबंधन, कृषि रसायनों का उपयोग, दलहन आधारित प्रमुख फसल चक्र, मृदा का चुनाव एवं खेत की तैयारी, बीजोपचार, उचित बीज दर एवं बुवाई का समय, पौधों की उचित संख्या, खरपतवार प्रबंधन, जल प्रबंधन, संसाधन संरक्षण, उन्नत कृषि यंत्रों का प्रयोग एवं फसल सुरक्षा प्रौद्योगिकी इत्यादि है।
14: अच्छा डॉक्टर साहब, अगर हम अपने क्षेत्र की बात करें, बिहार की बात करें, तो मुख्य रूप से बिहार में रवि दलहन फसलों में कौन कौन से प्रमुख दालों की हम बात कर सकते हैं।
16: देखिए, मुख्य रूप से जो जिनका क्षेत्रवार हम बात करते हैं, तो मुख्य रूप से हमारे बिहार में मसूर की जो खेती सबसे अधिक
14: जी
16: स्तर पर की जाती है, तत्पश्चात चने की खेती की जाती है। रबी फसलों की बात करें तो इसमें जो है कि विभिन्न दलहनी फसलों के जो व्यापक क्षेत्रों के अनुकूल उच्च उत्पादन क्षमता वाली प्रजातियों का विकास हुआ है, जिससे उत्पादकता में जो उतार चढ़ाव में कमी जो होती थी उसमें कमी आई है।
14: अच्छा।
16: तथा उत्पादकता में स्थायित्व आया है। अतः विभिन्न कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्रों में, जिसे हम एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स बोलते हैं, या गैर परंपरागत क्षेत्रों के लिए उन्नतशील प्रजातियां विकसित की जा चुकी हैं, अतः इनके प्रयोग से उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। जहां तक आपने बात की कौन कौन सी
14: तकनीक
16: दलहनी फसलें जो मुख्य रूप से हैं, उसमें चना और मसूर के बारे में बताया। मसूर में भी दो तरह की किस्में होती हैं, छोटे दाने वाली और बड़े दाने वाली। इसी प्रकार से चने में दो तरह की किस्में हैं, देसी चना और काबली चना।
14: अच्छा।
16: मसूर में यदि हम छोटे दाने वाले किस्मों की बात करें, तो इसमें अरुण, हल 57, NDL1, KLS 218, PL 406, PL 639, PL 6, PL 7 और शिवालिक इत्यादि हैं। जबकि बड़े दानों में IPL 406, DPL 15, DPL 62, DPL 81 और K75, जिसे मल्लिका के नाम से भी जाना जाता है, का उपयोग हम कर सकते हैं। जबकि देसी चने में GCP 105, DCP 92-3, PUSA 256, JG 14, PUSA 362, PG 186 एंड PUSA 372 इत्यादि प्रमुख हैं। काबुली चने के बारे में यदि हम कहें, तो इसमें उन्नत किस्मों में सुभरा, पूसा चमत्कार और GNG 1969 इत्यादि प्रमुख हैं।
14: अच्छा, और जहाँ तक तकनीक की बात हो रही थी डॉक्टर साहब, तो फसल उत्पादन तकनीक के बारे में भी हम जानना चाहेंगे कुछ।
16: जी, इन सभी तकनीकों के बारे में हम विस्तार से आपको बताते हैं, जिसमें हमने आपको उन्नतशील प्रजातियों के चयन के बारे में आप बताया। अब हम बात करेंगे फसल उत्पादन तकनीक के बारे में। इसमें महत्व है कि सिंचाई, उर्वरक तथा कृषि रसायनों के प्रयोग के बारे में यदि हमारे कृषक बंधु जागरूक हुए तो दलहन की उत्पादकता को बढ़ा सकते हैं। सामयिक बुवाई के साथ साथ पर्याप्त पौधों की संख्या, राइजोबियम कल्चर तथा कवकनाशियों से बीजोपचार, खरपतवार प्रबंधन तथा संसाधन संरक्षण तकनीक जैसे बिना लागत के अथवा न्यूनतम निवेश वाले आदान भी उत्पादकता की वृद्धि करते हैं। इसी प्रकार से यदि हम दलहन आधारित प्रमुख फसल चक्र को अपनाएं, जैसा कि उत्तर पूर्वी मैदानों एवं उत्तर पूर्वी मैदानी क्षेत्रों में रबी ऋतु हेतु यदि आप चना ले रहे हैं या मसूर ले रहे हैं, इसके साथ आप सरसों चाहे तो सूरजमुखी या अलसी प्रमुख रूप से इंटर क्रॉप के रूप में ले सकते हैं।
3: अच्छा,
16: और इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण है मृदा एवं खेत की तैयारी। तो प्रमुख ध्यान देने योग्य बात यह है कि उचित जल निकास वाले खेत जिनमें घुलनशील लवणों की मात्रा अधिक ना हो तथा पीएच मान 6.5 से 8.5 के बीच हो एवं बलुई दोमट से चिकनी दोमट मिट्टी दलहनी फसलों के आदर्श होती हैं। दलहनी फसलों को सामान्यतः बहुत अच्छे खेत की आवश्यकता नहीं होती है। एक गहरी जुताई के बाद क्रॉस हैरोइंग तथा पाटा लगाने से बुआई हेतु खेत तैयार हो जाता है। मसूर जैसी दलहनी फसलों को यूटेरा पद्धति से बुआई करने हेतु किसी भी प्रकार की कृषण क्रिया की आवश्यकता नहीं होती है।
14: अच्छा डॉक्टर साहब, हमने ये भी सुना है कि बीजों को पहले बीजोपचार करना जब बहुत ज़रूरी होता है, तो किन चीज़ों से बीजोपचार करें, कैसे करें, उसके बारे में बताएं।
16: जी, बुआई से पूर्व बीजों का उपचार करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि बुआई से पूर्व मृदा जनित रोगों से बचाव हेतु बीजों को कवकनाशी जैसे कैप्टॉन या थीरम 2 से 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से तथा नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए एवं फास्फोरस की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए राइजोबियम एवं फास्फेट घुलनशील जीवाणु जिसे पीएसबी कहते हैं 15 से 20 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करना चाहिए।
14: अच्छा, तो डॉक्टर साहब अभी देखा जाए हमारे बिहार क्षेत्र में रवी दलहनी फसलों की हम बात करते हैं, तो चना और मसूर जो है एक प्रमुख दलहनी फसल है हमारे बिहार क्षेत्र की, तो इसकी बीज दर क्या होती है ये जानना चाहेंगे हम, और बुआई का उचित समय क्या है इसका।
16: जी, बुआई हेतु बीज शुद्ध, रोग तथा भौतिक क्षति मुक्त तथा 90 से 95% अंकुरण क्षमता वाला होना चाहिए। चने की बात करेंगे यदि हम, तो इसमें छोटी दाने वाली प्रजातियाँ जिनके 100 दाने का वजन 12 से 15 ग्राम होता है की बीज दर 50 से 60 केजी प्रति हेक्टेयर होती है, तथा मध्यम एवं बड़े दाने वाली प्रजातियाँ जिनके बीजों का 100 दाने का वजन 25 ग्राम तक होता है कि 80 से 85 केजी प्रति हेक्टेयर उचित रहती है। बुआई का उचित समय उत्तर पूर्वी भारत के मैदानी क्षेत्रों में बरानी दशाओं में अक्टूबर का दूसरा पखवाड़ा तथा सिंचित दशाओं में नवंबर का प्रथम पखवाड़ा है। मसूर की बात करते हैं तो छोटे दाने वाली प्रजातियां हेतु बीज की दर 40 से 45 केजी पर हेक्टेयर तथा बड़े दाने वाली प्रजातियां हेतु 55 से 60 केजी प्रति हेक्टेयर उचित होती है। उत्तर पूर्वी मैदानों में या मध्य क्षेत्र में भी नवंबर का दूसरा पखवाड़ा बुआई का उचित समय है। यदि नमी की कमी है तो उस अवस्था में मध्य अक्टूबर बुआई का उचित समय होता है। बुआई में देरी की अवस्था में अथवा धान से खाली हुए क्षेत्रों में उटेरा पद्धति से बुआई हेतु बीज दर 15 से 20% बढ़ा देनी चाहिए।
14: अच्छा, इन फसलों की सस्ती क्रियाओं की भी बात करते हैं हम, तो उनके बारे में बताएं हमें।
16: जी, सस्ती क्रियाओं से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि चने में और मसूर में पौधों की प्रॉपर संख्या का होना आवश्यक है। अतः चने में 33 से 40 पौधे प्रति मीटर स्क्वायर तथा मसूर में 80 पौधे प्रति मीटर स्क्वायर उपयुक्त माने जाते हैं। सस्य क्रियाओं में सबसे पहले बात करते हैं हम उर्वरक प्रबंधन की, तो सामान्य दशाओं में जो नाइट्रोजन है आपका 15 से 20 किलोग्राम, फास्फोरस 40 किलोग्राम तथा पोटेशियम 20 किलोग्राम एवं गंधक 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर का बुआई से पूर्व आधारीय प्रयोग संस्तुत किया जाता है। फली बनते समय अथवा देर से बोई गई फसल में शाखाओं के बनते समय 2% यूरिया या DAP के घोल से छिड़काव करने से समुचित पैदावार मिलती है। मृदा में विशिष्ट सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी होने पर 15 से 20 केजी जिंक सल्फेट प्रति हेक्टेयर तथा 1 से 1.5 केजी अमोनियम मोलिब्डेट का प्रयोग की संस्तुति की जाती है। इसके बाद बात आती है खरपतवार प्रबंधन की। उत्पादकता में कमी को रोकने हेतु फसलों को खरपतवार से मुक्त रखना आवश्यक है। इसके लिए गुड़ाई एवं हाथ से निकाई जैसी कर्षण क्रियाओं के साथ खरपतवारनाशी रसायनों का प्रयोग उचित रहता है। खरपतवारों की आरंभिक वृद्धि पर नियंत्रण हेतु बुआई के तुरंत बाद 72 घंटे के अंदर पेंडी मिथिलिन 1 से 1.5 केजी AI प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए। जहां तक जल प्रबंधन की बात है तो हल्की मृदाओं में अधिकांशतः शीतकालीन दलहनी फसलों में शाखाएं निकलते समय तथा फली बनते समय 1 से 2 सिंचाई लाभप्रद पाई गई है। फूल आने की अवस्था में सिंचाई नहीं करनी चाहिए, अन्यथा फूलों के गिरने तथा अतिरिक्त वानस्पतिक वृद्धि होने की समस्या उत्पन्न हो सकती है। दलहनी फसलों में स्प्रिंकलर विधि से सिंचाई करना सर्वोत्तम है।
3: अच्छा।
16: संसाधन संरक्षण में धान मसूर फसल प्रणाली में इनके फसल अवशेष के समावेश से उत्पादकता में वृद्धि होती है। धान कटने के बाद नो टिल सीड ड्रिल की सहायता से चना की बुआई करने और धान की पुआल की पलवार खेत में छोड़ने पर मृदा में नमी का पर्याप्त संरक्षण होता है और चना की उपज में वृद्धि होती है। यदि मक्का और चना फसल प्रणाली अपनाई गई है तो मक्का में 30 केजी फास्फोरस प्लस 5 टन गोबर की खाद तथा चना में 40 केजी फास्फोरस और PSB के प्रयोग से फास्फोरस की उपयोग क्षमता में वृद्धि होती है।
14: तो डॉक्टर साहब, अभी एक और जो दो चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण है वो है उन्नत कृषि यंत्र और फसल सुरक्षा प्रौद्योगिकी, तो इसका महत्व क्या है इसमें?
16: देखिए, उन्नत कृषि यंत्रों को अपनाकर आप अपनी आय को दुगना कर सकते हैं। इसमें उन्नत कृषि यंत्रों में जैसे मानव संचालित नो टिल सीड ड्रिल आता है। ये छोटे किसानों के लिए बहुत ही कम खर्च वाला तथा धान से खाली हुए खेतों में संचित नमी में लाइन से बुआई के लिए उपयुक्त होता है।
14: ये उन्नत कृषि यंत्र महंगे होते हैं या फिर नहीं? हमारे छोटे किसान
16: ये कम खर्च वाले हैं और छोटे किसानों के लिए बहुत उपयोगी हैं।
14: अच्छा।
16: और इसकी बुआई क्षमता केवल 2 व्यक्तियों की सहायता से 0.05 हेक्टेयर प्रति घंटा की जा सकती है। इसके बाद बात आती है वर्टिकल थ्रेसर की। न्यूनतम समायोजन के साथ विभिन्न दलहनी फसलों के लिए उपयोगी है वर्टिकल थ्रेसर। और चना के लिए इसकी क्षमता जो है 300 केजी प्रति घंटा है।
14: अच्छा।
16: इसके बाद बिनुअर आता है, सक्शन बिनुअर। इसकी ओसाई क्षमता, ये ओसाई के लिए प्रमुख रूप से उपयोग की जाती है। इसकी ओसाई क्षमता जो है 150 केजी प्रति घंटा है। इसके द्वारा धूल मिट्टी और हल्के अपमिश्रण चूषण विधि द्वारा परिचालक की विपरीत दिशा में उड़ा दिए जाते हैं।
14: अच्छा।
16: जहाँ तक फसल सुरक्षा प्रौद्योगिकी की बात करें, क्योंकि दलहनी फसलों में जैविक और अजैविक दोनों तरह के कारक होते हैं जिसकी वजह से फसल को नुकसान होता है, तो उत्पादकता बढ़ाने के लिए फसलों का जैविक तथा अजैविक कारकों से बचाव अत्यंत आवश्यक है। समेकित रोग एवं कीट प्रबंधन, जिसमें रोगरोधी प्रजातियों के स्वस्थ बीजों का प्रयोग, कृषण क्रियाओं में बदलाव, कवकनाशी तथा जीवनाशी तत्वों का प्रयोग सम्मिलित है, उत्पादकता को स्थिर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। चने की बात करें तो बुआई से पहले क्या करें, बुआई के समय क्या करें और खड़ी फसल में क्या करें, इसके बारे में आपको बताते हैं। बुआई के पूर्व रोगरोधी प्रजातियों का चयन करें। सूत्रकृमि, जिसे हम नेमेटोड्स बोलते हैं, ग्रसित खेतों में गर्मी में गहरी जुताई तथा निबोली के चूर्ण का 50 केजी प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। बुआई के समय उचित समय से बुआई करना अत्यंत आवश्यक है। कार्बेंडाजिम प्लस थीरम, 1 ग्राम कार्बेंडाजिम प्लस 2 ग्राम थीरम प्रति किलोग्राम सीड अथवा ट्राइकोडर्मा 4 ग्राम और 1 ग्राम कार्बोक्सिन प्रति किलोग्राम सीड से बीज उपचार करें। निमेटोड से ग्रसित मृदा में कार्बोसल्फान 1% से बीजों का उपचार करें। खड़ी फसल में फली भेदक चना में बहुत लगते हैं, तो फली भेदक कीट से होने वाली क्षति को कम करने के लिए पहली बात की 4 से 5 यौन आकर्षण जाल प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। नंबर 2, चिड़ियों को बैठने के लिए टी आकार के अड्डों का प्रावधान करें। इसमें 35 से 40 टी आकार के अड्डे प्रति हेक्टेयर लगाए जा सकते हैं। यदि फली भेदक का प्रकोप आर्थिक क्षति स्तर से अभिप्राय यह है कि 1 से 2 लार्वा प्रति मीटर पक्ति में पहुंच जाए तो कीटनाशी का छिड़काव करें। इसमें सबसे पहले निबोली के 5% शत का प्रथम छिड़काव करें। द्वितीय छिड़काव NPB न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रोसिस विषाणु का 250 लार्वा समतुल्य प्रति हेक्टेयर की दर से करें। और अंत में आवश्यकता होने पर इंडेक्सोकार्ब 1 ml प्रति लीटर पानी का तृतीय छिड़काव करें। मसूर में बुआई के पूर्व क्या करें, बुआई के समय क्या करें और खड़ी फसल में क्या करें, इसके बारे में भी हम आपको जानकारी देते हैं। बुआई से पूर्व मृदा जनित रोगों तथा सूत्रकृमि से होने वाली क्षति से बचाव के लिए गर्मी में गहरी जुताई करें। बुआई के समय सामयिक बुआई से फसल को उकटा रोग से होने वाली हानि से बचाया जा सकता है। मृदा जनित रोगों पर नियंत्रण हेतु कार्बेंडाजिम प्लस थीरम अथवा ट्राइकोडर्मा प्लस कार्बोक्सिन से बीजोपचार करें। अलसी के साथ अंतरशस्य क्रियाएं एवं मिश्रित खेती से उकटा रोग का प्रकोप कम किया जा सकता है। खड़ी फसल में माहू का प्रकोप होने पर डाइमेथोएट 0.03% का छिड़काव करें। रतुआ रोग के नियंत्रण के लिए घुलनशील गंधक 0.2-0.3% अथवा मैंकोजेप 0.02% का छिड़काव करें। रोगग्रसित पौधों को उखाड़कर नष्ट कर दें। यदि इन सभी उन्नत तकनीकियों को अपनाकर किसान भाई अपनी आय को दुगना कर सकते हैं तथा फसल की उत्पादकता को बढ़ा सकते हैं।
14: तो किसान भाइयों, आपने विस्तार में जाना कि कैसे आप अपने आय को दुगना कर सकते हैं रवि दलहन फसलों की खेती में आधुनिक तकनीक का उपयोग करके। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले दिन अगले विषय के साथ हम हाजिर होंगे इसी फ्रिक्वेंसी 90.8 FM ग्रीन पर। तो सुनते रहे उन्नत कृषि।

0: खसरा कितनी गंभीर बीमारी है। टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MRT का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टिको क्यों है इतने जीरो?
5: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
5: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थाई बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: तो इसका हल क्या है?
5: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात, अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
0: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। ह्यूमन पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
5: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
6: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
7: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा? बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा?
6: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
8: हर घर सूर्य घर।
9: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 ग्रीन FM।

बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 22 से 26 जुलाई के दौरान आसमान में घने बादल छाए रहेंगे और जिले में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी चलने और हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 26 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 90% और दोपहर में

के जल का सिंचाई में उपयोग कर सके। जो किसान भाई बहन श्री अन्न की खेती करना चाहते हैं, उन्हें बता दें मोटे अनाजों की खेती के लिए उचास भूमि का चयन करें। मड़वा की वकुला KMR 316 GPU 67 और VL 379 राजेंद्र मड़वा RU 8 और RU 3 और आपको बता दें कौनी की अनुशंसित किस्में हैं राजेंद्र कौनी 1। आप इन किस्मों की बुआई कर सकते हैं। मक्का की खेती करने वाले किसान भाई बहन ध्यान दें, खरीफ मक्का की बुआई आसमान साफ रहने पर ही करें। खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और ध्यान रखें कि बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नेत्रजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश जरूर डालें। अनुशंसित मक्का की किस्में जैसे सुवान, देवकी, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, राजेंद्र शंकर मक्का 3, गंगा 11 है। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें मिर्च, अगाध गोभी, टमाटर जैसी सब्जियों की नर्सरी तभी तैयार करें जब आसमान साफ हो। और बागवानी करने वाले भाई बहन ध्यान दें, जुलाई अगस्त आम के पौधों के रोपण के लिए सबसे उपयुक्त समय होता है। कलमी पौधों की रोपाई 10x10 मीटर और बीजू पौधों की रोपाई 12x12 मीटर की दूरी पर करें। सघन बागवानी के लिए 5x5 मीटर और अम्रपाली के लिए 2.5x2.5 मीटर की दूरी रखें। फलदार वृक्षों में प्रति वर्ष 1 किलोग्राम नाइट्रोजन, 30 किलोग्राम फास्फोरस, 700 किलोग्राम पोटाश और 80 से 100 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद जरूर डालें। आपको बता दें इस समय केला के स्वस्थ सकर्स की रोपाई करें। लंबी किस्मों जैसे अल्पान, कंथली, मालभोग, चिनिया, G9 और बोनी किस्में जैसे ग्रैंड नेन, रोबस्टा, बसराई का चयन करना सबसे फायदेमंद होता है। लंबी किस्मों के लिए 2x2 मीटर और बोनी किस्मों के लिए 1.5x1.5 मीटर की दूरी रखें। प्रत्येक गड्ढे में 5 किलोग्राम गोबर की खाद, 500 ग्राम अरंडी की खली, 300 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट, 100 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश और 10 ग्राम कार्बोफ्यूरान मिलाना ना भूलें। रोपाई से पहले सकर्स को कार्बन डाइजिंग 2 ग्राम प्रति लीटर पानी से उपचारित करें। किसान भाई बहनों, टिश्यू कल्चर पौधे का उपयोग अधिक उत्पादन के लिए लाभकारी होता है। पशुपालक भाई बहन ध्यान दें, पशुओं में PPR, MFD यानी कि खुरपका मुंहपका और HS यानी कि गला घोटू, इन रोगों का खतरा अधिक है। इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण करवाएं, उन्हें साफ और सूखा रखें और बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। रोग के लक्षण अगर दिखाई दे तो तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें और ध्यान रखें कि पशुओं की बिना जरूरत के आवाजाही पर नियंत्रण रखें। गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए जून माह में अगर टीके नहीं लगाए गए हों तो इस महीने में टीके जरूर लगवा दें। पशुओं को संतुलित और पौष्टिक आहार दें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: आप हर समय थकान महसूस करते हैं, छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है, ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

0: स्वागत है साथियों, आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन और मैं हूँ आपकी दोस्त आपकी साथी RJ उमा। दोस्तों, गर्मी का मौसम शुरू होते ही एक चिंता हर घर में बढ़ जाती है, मच्छर, बुखार, कमजोरी और सबसे बड़ा डर मलेरिया। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये बीमारी जो सालों से हमारे आसपास है, क्या इसे खत्म किया जा सकता है? इन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए हमारी श्रृंखला सेहत सही लाभ कई के इस प्रोग्राम में आज हमारे साथ हैं हमारे अपने गांव-गांव में स्वास्थ्य की अलख जगाने वाले सेहतिया सिंह।
1: धन्यवाद RJ बाबू और मेरे सभी प्यारे श्रोताओं का भी दिल से धन्यवाद।
0: दोस्तों, आज की शुरुआत मैं एक सच्ची कहानी के साथ करना चाहती हूँ। ये कहानी है भागलपुर के एक छोटे से गांव की, जहाँ रहने वाला 8 साल का बच्चा सोनू।
1: हाँ RJ बाबू, मैं भी उस बच्चे को जानता था।
0: गर्मी का मौसम था और गांव में पानी जमा था, मच्छर बहुत हो गए थे, पानी जमा था, इसलिए सोनू को हल्का बुखार आया। परिवार ने सोचा साधारण बुखार है, 2 दिन में ठीक हो जाएगा।
1: लेकिन वो कोई साधारण बुखार नहीं था, वो मलेरिया था।
0: 3 दिन बीते, बुखार बढ़ता गया और शरीर कमजोर होता गया। जब अस्पताल ले गए तब तक बहुत देर हो चुकी थी।
1: अगर समय पर जांच हो जाती, अगर शुरुआत में ही ध्यान दिया जाता तो आज सोनू हमारे बीच होता।
0: दोस्तों, मलेरिया सिर्फ एक बीमारी नहीं है, ये लापरवाही और जानकारी की कमी की कीमत है। सेहतिया भैया, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपसे मलेरिया के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं और हम मलेरिया दिवस भी मनाते हैं, विश्व मलेरिया दिवस मनाते हैं हर साल 25 अप्रैल को।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, विश्व मलेरिया दिवस हर साल 25 अप्रैल को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2008 में हुई थी, जब 2007 में विश्व स्वास्थ्य सभा में इसे तय किया गया। इस दिन का मकसद सिर्फ एक है, पूरी दुनिया को एक साथ लाकर मलेरिया जैसी गंभीर बीमारी को खत्म करना। ये दिन हमें याद दिलाता है कि मलेरिया सिर्फ एक बीमारी नहीं, एक चुनौती है जिसे हमें मिलकर हराना है।
0: तो भैया, जो हम मलेरिया दिवस मनाते हैं, इसके पीछे क्या सिर्फ जागरूकता ही एक वजह है या फिर इसके पीछे और भी कोई उद्देश्य है?
1: नहीं, ये सिर्फ जागरूकता तक सीमित नहीं है। ये दिन सरकारों, डॉक्टरों, वैज्ञानिकों और आम लोगों को एक मंच पर लाता है, ताकि हम सब मिलकर मलेरिया को रोकने, उसका इलाज करने और अंत में उसे पूरी तरह खत्म करने के लिए काम कर सकें। इस दिन दुनिया भर में कई गतिविधियां होती हैं, जैसे लोगों को जानकारी देना, नई रिसर्च साझा करना, स्वास्थ्य कार्यक्रम चलाना और सरकारों से ये मांग करना कि वे इस बीमारी के खिलाफ लगातार निवेश और प्रयास करें।
0: और भैया, इस साल की थीम क्या है और उसका मतलब क्या है, ये भी आप हमें समझा दीजिए।
1: इस साल की थीम है ड्रिवन टू एंड मलेरिया, नाउ वी कैन, नाउ वी मस्ट। इसका मतलब है कि अब हमारे पास वो ज्ञान, वो तकनीक और वो संसाधन हैं जिनसे हम मलेरिया को खत्म कर सकते हैं। अब सवाल ये नहीं है कि क्या हम कर सकते हैं, बल्कि सवाल ये है कि हम कब करेंगे, और जवाब है अभी।
0: सेहतिया भैया, अगर आसान भाषा में बताएं तो मलेरिया आखिर क्या होता है?
1: देखिए, मलेरिया एक संक्रामक बीमारी है जो प्लाज्मोडियम नाम के परजीवी से होती है। ये परजीवी हमारे शरीर में तब आता है जब एक संक्रमित मादा एनोफिलीज मच्छर हमें काटती है। जब ये मच्छर काटता है तो ये परजीवी हमारे खून में चला जाता है और फिर सीधे हमारे लीवर और खून की कोशिकाओं पर हमला करता है।
0: मतलब ये शरीर के अंदर फैलता रहता है।
1: हाँ, और यही वजह है कि इसके लक्षण धीरे धीरे बढ़ते हैं, जैसे तेज बुखार, ठंड लगना, पसीना आना, सिर दर्द, उल्टी, और अगर समय पर इलाज ना मिले तो ये दिमाग तक भी पहुंच सकता है, जिसे सेरेब्रल मलेरिया कहते हैं, जो जानलेवा हो सकता है।
0: भैया, आपने कहा कि अब हमारे पास तकनीक है, तो क्या सच में मलेरिया खत्म किया जा सकता है?
1: हाँ बिल्कुल, आज विज्ञान ने बहुत तरक्की की है। अब मलेरिया के लिए वैक्सीन भी आ चुकी है, जो 25 देशों में दी जा रही है और हर साल लगभग 1 करोड़ बच्चों को सुरक्षा दे रही है। इसके अलावा नई दवाइयां आई हैं, लंबे समय तक असर करने वाले इंजेक्शन आए हैं और यहां तक कि मच्छरों को नियंत्रित करने के लिए नई तकनीकें विकसित की जा रही हैं। अब जो मच्छरदानी इस्तेमाल हो रही हैं उनमें नई तकनीक है और 2024 में जो नई मच्छरदानियां बांटी गईं, उनमें से 84% अगली पीढ़ी की थीं, जो ज्यादा असरदार हैं।
0: तो इसका मतलब दुनिया में मलेरिया कम हुआ होगा?
1: हाँ, पिछले 20 सालों में बहुत बड़ी प्रगति हुई है। 2000 के बाद से अब तक 2.3 अरब मलेरिया के मामले और 1.4 करोड़ मौतें रोकी जा चुकी हैं। 47 देश ऐसे हो चुके हैं जहां मलेरिया पूरी तरह खत्म हो चुका है। कई देशों में मामलों की संख्या बहुत कम हो गई है और कुछ क्षेत्रों में तो 90% तक कमी आई है।
0: कम हुआ है, लेकिन फिर भी मलेरिया अभी तक खत्म क्यों नहीं हुआ है?
2: यही सबसे बड़ी चिंता है। 2024 में अभी भी 28.2 करोड़ मलेरिया के मामले सामने आए और 6.1 लाख लोगों की मौत हुई। इसका मतलब है कि हमने प्रगति तो की है, लेकिन अभी लड़ाई खत्म नहीं हुई है।
0: और इसमें सबसे बड़ी चुनौती क्या है?
1: चुनौतियां कई हैं। पहली चुनौती है दवाइयों के प्रति प्रतिरोध। कुछ जगहों पर मलेरिया की दवाइयां पहले जितनी असरदार नहीं रही हैं। दूसरी चुनौती है मच्छरों का कीटनाशकों के प्रति प्रतिरोध। तीसरी समस्या है जांच में दिक्कत। कुछ मामलों में टेस्ट सही परिणाम नहीं दे पाते। और एक नई समस्या है नए तरह के मच्छर जो शहरों में भी फैल रहे हैं।
0: अच्छा, एक और सवाल जो मेरे मन में है कि क्या मलेरिया सभी जगह समान रूप से होता है?
1: नहीं, ये ज्यादातर गरीब और पिछड़े इलाकों में ज्यादा होता है। जहां साफ पानी की कमी है, स्वास्थ्य सुविधाएं कम हैं, वहां यह बीमारी ज्यादा फैलती है। इसीलिए इसे खत्म करना सिर्फ स्वास्थ्य का नहीं बल्कि समानता का भी सवाल है।
0: और क्या सिर्फ वैज्ञानिक समस्याएं हैं या और भी कोई दिक्कतें हैं?
1: नहीं, सामाजिक और आर्थिक चुनौतियां भी बहुत बड़ी हैं। 2024 में मलेरिया के लिए लगभग 3.9 अरब डॉलर का फंड मिला, जबकि जरूरत 9.3 अरब डॉलर की थी। मतलब आधे से भी कम पैसा मिल रहा है। इसके अलावा कई जगहों पर युद्ध, बाढ़, सूखा और जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याएं भी मलेरिया को बढ़ा रही हैं।
0: भैया, आपने पहले फंड की कमी की बात की थी, तो आप इसे आसान भाषा में समझाइए कि फंड की कमी कैसे आ रही है।
1: देखिए, मलेरिया से लड़ने के लिए दवाइयां चाहिए, मच्छरदानियां चाहिए, जांच मशीनें चाहिए, स्वास्थ्य कर्मचारी चाहिए, इन सबके लिए पैसे चाहिए। लेकिन अभी जितना पैसा मिल रहा है वह जरूरत से आधा भी नहीं है। इसका मतलब है कि कई जगहों पर जरूरी सुविधाएं पहुंच ही नहीं पा रही हैं।
0: भैया, आपने एक और बात कही थी जलवायु परिवर्तन की, तो जलवायु परिवर्तन का मलेरिया से क्या संबंध है?
1: बहुत गहरा संबंध है। आजकल मौसम तेजी से बदल रहा है, बारिश का समय बदल रहा है, गर्मी बढ़ रही है। इन सब कारणों से मच्छरों के पनपने की जगह और समय दोनों बढ़ गए हैं। पहले जो इलाके सुरक्षित माने जाते थे वहां भी अब मलेरिया के केस आने लगे हैं। मतलब ये सिर्फ एक बीमारी नहीं रही, ये पर्यावरण से जुड़ी समस्या भी बन चुकी है।
0: अब अगर हम अपने देश की बात करें भैया, तो हमारा भारत कहाँ खड़ा है इस सूची में?
1: भारत ने बहुत अच्छा काम किया है। 2015 से 2023 के बीच मलेरिया के मामलों और मौतों में 80% की कमी आई है। 2024 में भारत में लगभग 2.5 लाख मामले और 86 मौतें दर्ज की गईं। लेकिन अभी भी चुनौतियां हैं, खासकर दूरदराज इलाकों में, सीमावर्ती क्षेत्रों में और जहां स्वास्थ्य सेवाएं कम पहुंचती हैं।
0: जैसे कि आपने बताया कि स्वास्थ्य सेवाएं कुछ जगहों पर कम पहुंचती है, और इसके अलावा भारत में सबसे बड़ी समस्या कहाँ है?
1: सबसे ज्यादा चुनौती दूरदराज इलाकों में है, जैसे जंगल वाले क्षेत्र, पहाड़ी इलाके, वहां पहुंच पाना मुश्किल होता है। इसके अलावा सीमावर्ती इलाकों में लोग एक जगह से दूसरी जगह आते जाते रहते हैं, जिससे बीमारी फैलने का खतरा बढ़ जाता है।
0: तो इतनी समस्याएं हैं, ऐसे में भारत का लक्ष्य क्या है मलेरिया को लेकर?
1: भारत का लक्ष्य है कि 2027 तक देश में एक भी स्थानीय मलेरिया का मामला न हो और 2030 तक इसे पूरी तरह खत्म कर दिया जाए।
0: और सरकार इस पर काम कैसे कर रही है?
1: सरकार कई स्तर पर काम कर रही है। गांवों में आशा कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों को जागरूक कर रही हैं। पीएचसी और सब सेंटर में मुफ्त जांच और दवाइयां उपलब्ध हैं। इसके अलावा रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट RDT की मदद से तुरंत पता लगाया जा सकता है कि मलेरिया है या नहीं। और जो दवाइयां दी जाती हैं उन्हें ACT यानी आर्टिमिसिनिन बेस्ड कॉम्बिनेशन थेरेपी कहते हैं, जो बहुत प्रभावी है।
0: सिहतिया भैया, आपने बताया कि भारत मलेरिया को खत्म करने की दिशा में काम कर रहा है, लेकिन जरा विस्तार से बताइए कि देश में इसके लिए कौन कौन से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं।
1: बहुत अच्छा सवाल है आरजे, क्योंकि सिर्फ जानकारी से नहीं बल्कि मजबूत व्यवस्था और लगातार प्रयास से ही मलेरिया जैसी बीमारी को हराया जा सकता है। भारत में मलेरिया नियंत्रण के लिए एक बड़ा राष्ट्रीय कार्यक्रम चलता है, जिसे पहले राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम कहा जाता था और अब इसे राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र के तहत और मजबूत किया गया है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है मलेरिया के मामलों को कम करना, समय पर पहचान करना और सही इलाज देना।
0: तो क्या इसके लिए कोई खास योजना भी बनाई गई है, इसके बारे में भी बताइए।
1: हाँ बिल्कुल, भारत ने राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन रूपरेखा नेशनल फ्रेमवर्क फॉर मलेरिया एलिमिनेशन तैयार की है, जिसमें साफ तौर पर लक्ष्य तय किए गए हैं। पहले मलेरिया के मामलों को तेजी से कम करना, फिर स्थानीय स्तर पर संक्रमण रोकना और अंत में पूरे देश से मलेरिया को खत्म करना। इसी के तहत भारत ने राष्ट्रीय रणनीतिक योजना नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर मलेरिया एलिमिनेशन भी बनाई है, जिसमें हर जिले को उसकी स्थिति के हिसाब से अलग अलग श्रेणियों में बांटा गया है। कुछ जिले ऐसे हैं जहां मलेरिया ज्यादा है, वहां ज्यादा ध्यान दिया जाता है, ज्यादा संसाधन भेजे जाते हैं, और जहां कम है वहां निगरानी मजबूत की जाती है ताकि बीमारी दोबारा ना फैले।
0: ये तो बात हो गई योजना की, लेकिन आप ये बताइए भैया कि जमीन पर क्या होता है और क्या हो रहा है।
1: जमीन पर बहुत काम होता है, बस हमें उसका एहसास नहीं होता। गांवों में नियमित रूप से इंडोर रेसिडुअल स्प्रे IRS किया जाता है, यानी घरों की दीवारों पर दवा का छिड़काव, जिससे मच्छर मर जाते हैं। लोगों को लॉन्ग लास्टिंग इंसेक्टिसाइडल नेट LLIN यानी मच्छरदानी दी जाती है, जो कई सालों तक मच्छरों से बचाव करती है। स्वास्थ्य कार्यकर्ता घर घर जाकर बुखार वाले मरीजों की पहचान करते हैं और तुरंत जांच करवाते हैं। कई बार तो वही पहली व्यक्ति होती हैं जो किसी मलेरिया के केस को पकड़ती हैं।
0: मतलब ये कि लोग खुद जाएंगे तब ही जांच होती है?
1: नहीं, यही सबसे बड़ी बात है, अब सिस्टम खुद लोगों तक पहुंचता है। इसे एक्टिव सर्वेलेंस कहते हैं। अगर किसी इलाके में मलेरिया का केस मिलता है तो स्वास्थ्य टीम वहां जाकर आसपास के लोगों की भी जांच करती है, ताकि बीमारी फैलने से पहले ही रोकी जा सके।
0: लेकिन भैया, क्या सिर्फ सरकार से ये संभव है?
1: नहीं, बिल्कुल नहीं। सरकार जितना भी प्रयास कर ले, अगर समुदाय साथ नहीं देगा तो मलेरिया खत्म नहीं हो सकता। अगर लोग मच्छरदानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, अगर पानी जमा होने देंगे, अगर बुखार होने पर जांच नहीं कराएंगे, तो कोई भी योजना सफल नहीं हो सकती।
0: तो इसमें आम लोगों की भी भूमिका होगी?
1: सबसे बड़ी भूमिका आम लोगों की ही है। अगर हम अपने घर के आसपास पानी जमा नहीं होने देंगे, मच्छरदानी का इस्तेमाल करेंगे, समय पर जांच कराएंगे और पूरा इलाज करेंगे, तो मलेरिया को रोका जा सकता है।
0: भैया, गांव में ना कई तरह की बातें फैलती है, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि मलेरिया सिर्फ गंदे पानी से होता है और कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि मलेरिया खुद ही ठीक हो जाता है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे?
1: यही सबसे खतरनाक बात है, मलेरिया सिर्फ गंदगी से नहीं बल्कि संक्रमित मच्छर के काटने से होता है, और अगर इसका इलाज समय पर न हो तो यह जानलेवा भी हो सकता है, इसलिए बुखार को हल्के में न लें।
0: लेकिन एक और बात है कि लोग अक्सर मलेरिया का इलाज या कोई किसी भी तरीके का इलाज बीच में ही छोड़ देते हैं, और खासतौर से मलेरिया का इलाज भी।
1: यही सबसे बड़ी गलती है, जब दवा पूरी नहीं ली जाती तो बीमारी अंदर ही अंदर बनी रहती है और फिर दोबारा उभरती है, और यही कारण है कि दवाओं के प्रति प्रतिरोध भी बढ़ता है। इसलिए अगर डॉक्टर ने 3 दिन या 7 दिन की दवा दी है तो उसे पूरा करना बहुत जरूरी है।
0: तो आखिर इसका समाधान क्या है?
1: समाधान बहुत स्पष्ट है, समय पर जांच, सही इलाज, मच्छरों से बचाव और सही जानकारी, और सबसे जरूरी, मिलकर काम करना।
0: तो भैया, ऐसे में सबसे बड़ा बदलाव कहाँ चाहिए?
1: सबसे बड़ा बदलाव सोच में चाहिए। हमें ये समझना होगा कि बुखार छोटा नहीं होता और इलाज अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। जब ये सोच हर घर तक पहुंच जाएगी तब मलेरिया अपने आप खत्म होने लगेगा।
0: सेहतिया भैया, क्या आपके पास कोई ऐसी कहानी है जहां सही समय पर इलाज से किसी की जान बची हो?
1: हाँ, और यही उम्मीद है। बिहार के एक गांव में एक महिला थी, सरिता। उसे तेज बुखार हुआ, लेकिन इस बार उसने इंतजार नहीं किया। वह तुरंत आशा दीदी के पास गई। जांच हुई, मलेरिया निकला। उसे समय पर दवा मिली। उसने पूरा कोर्स किया और आज वह पूरी तरह स्वस्थ है और खुद गांव में लोगों को जागरूक करती है।
0: मतलब फर्क सिर्फ एक फैसले का है।
1: हाँ, एक फैसला, समय पर जांच कराने का और पूरा इलाज करने का।
0: भैया, क्या आपको लगता है कि भारत मलेरिया को खत्म कर पाएगा?
1: हाँ बिल्कुल, क्योंकि हमारे पास योजना भी है, संसाधन भी हैं और अनुभव भी है। बस जरूरत है लगातार प्रयास, सही दिशा और लोगों की भागीदारी की। अगर सरकार, स्वास्थ्य कर्मी और आम जनता तीनों साथ आ जाएं, तो 2030 तक मलेरिया मुक्त भारत का सपना जरूर पूरा होगा।
0: सेहतिया भैया, आज आपने हमें बहुत कुछ सिखाया। दोस्तों, याद रखिए, मलेरिया कोई छोटी बीमारी नहीं है, लेकिन इसे हराया जा सकता है।
1: आज समय आ गया है कि हम सब मिलकर कहें, अब हम कर सकते हैं और अब हमें करना ही होगा।
0: दोस्तों, अब हमारे पास ज्ञान है, दवा है, साधन है, अब बहाना नहीं चलेगा।
1: अब हम कर सकते हैं
0: और अब हमें करना ही होगा।
1: मलेरिया खत्म होगा जब हम सब साथ होंगे।
0: तो इसी के साथ आज का शो खत्म होता है, पर जाने से पहले हम मिलकर लेंगे सेहत की शपथ।
3: हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे, अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है। सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे। साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके। नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे। महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे। जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा, तभी भारत समृद्ध बनेगा। सेहत सही तो लाभ

0: नमस्ते क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
1: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने, हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
0: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना है। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
2: सुनो सुनो सुनो सभी, एक जरूरी बात, आया मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण फिर एक बार। अगर आपके घर या पड़ोस में है 5 साल या उससे छोटे बच्चे जिनका कोई भी टीका छूट गया हो, तो सोचते क्या हो, जल्दी से आशा दीदी से करो बात। बच्चों को स्वास्थ्य केंद्र है लेकर जाना और उनका टीकाकरण है करवाना।
3: सुहाना सफर और ये मौसम हसी,
2: टीको ये मौसम है टीकाकरण करवाने का, तो सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
4: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
5: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
6: हर घर सूर्य घर।
7: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपके विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। उन्नत कृषि में आज हम बात करने वाले हैं नैनो कीटनाशी के बारे में, यानी कि नैनो पेस्टिसाइड के बारे में। ये क्या है और आजकल क्यों कृषि विशेषज्ञ विशेष सलाह दे रहे हैं कि नैनो पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करना चाहिए। बहुत लंबे समय से किसान भाई बहन पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करते आ रहे हैं, लेकिन अब उन्हें कहा जाता है कि नैनो पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करें। तो आखिर अंतर क्या है नैनो पेस्टिसाइड और पेस्टिसाइड में, और ये क्यों इतना महत्वपूर्ण है, इसके बारे में विशेष रूप से चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर अभिषेक कुमार। आप हैं असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ मॉलिकुलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
8: जी थैंक यू मैम।
7: सर, आपसे सबसे पहला सवाल जो बहुत ही बेसिक सा सवाल है कि नैनो पेस्टिसाइड यानी कि नैनो कीटनाशी क्या है?
8: नैनो पेस्टिसाइड, जिसको कि नैनो कीटनाशी भी बोलते हैं, यह उन्नत इंजीनियरिंग कृत फार्मूलेशन है जो नैनो तकनीकी का प्रयोग करके किया जाता है। और इसमें जो कीटनाशक तत्वों का आकार जो होता है वह 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के रेंज में समाहित रहता है, या डायरेक्ट इसमें या प्रत्यक्ष रूप से नैनो कण को यूज करते हैं, और साथ ही साथ या जो है ना कुशल एवं लक्षित होता है उसे नैनो कीटनाशी कहा जाता है। जैसे नैनो सिल्वर, नैनो कॉपर, नैनो जिंक ऑक्साइड इत्यादि इनके उदाहरण माने जाते हैं।
7: ये इतना ज़रूरी क्यों है?
8: ज़रूरी अभी के परिप्रेक्ष्य में जो किसान भाई, जैसे पहले परंपरागत जो कीटनाशी होते थे उसमें कुछ बहुत सारे महत्व बिंदु है जिसको कि इसमें नहीं समाहित किया गया है, जैसे कि उपयोग करने का तरीका, उसका मात्रा, यह सब इसमें कम हो गया है। तो जैसे मुख्य सब इनकी विशेषताएं हैं या महत्वपूर्ण बातें हैं कि यह लक्षित वितरण प्रणाली पे काम करता है, या जहाँ पे चाहिए जितना उतना ही यह काम करता है। यह इसका बड़ा मुख्य पहलू है कि नैनो कीटनाशी का। साथ ही साथ यह अत्यधिक कुशल होते हैं, जिसको कि कह सकते हैं कि ये अधिक प्रभावशाली होते हैं कि जो परंपरागत जो हम कीटनाशी यूज करते थे उसके तुलना में यह अधिक प्रभावशाली होते हैं। और इसका जो और भी महत्वपूर्ण बात है कि जो अनावश्यक उपयोग जो आने वाले कीटनाशक रसायनों की मात्रा जो होती थी इसमें कम हो गया है, परंपरागत में ज़्यादा होती थी। और अगर मात्रा कम होगा तो यह पर्यावरण पर भी इसका जो है न प्रभाव जो है न पॉजिटिव होगा या निगेटिव कम होगा। और खेतों में नैनो कीटनाशी का अवशेष की मात्रा भी कम हो जाती है क्योंकि प्रारंभ में ही इसकी मात्रा कम होती है। और जब ये नियंत्रित जो करते हैं वह पूरा लक्ष्य बेस्ड काम करते हैं और उपयोग में जो मात्रा होती है बहुत कम, लगभग जो है ना जो परंपरागत कीटनाशी थे उसका लगभग 10% अप्रॉक्स हम इसमें यूज करते हैं। और जो है यह धीरे धीरे काम करता है जिससे कि इसकी उपयोगिता और बढ़ जाती है और इसमें अवशिष्ट बचने का चांस कम हो जाते हैं। और निश्चित तौर पे है कि जब हम चीज़ को कम उपयोग करेंगे, कम खर्च होगा, तो इससे जो है ना किसान भाई का जो खर्च आता था कम हो जाते हैं। और जो है ना जो प्रतिरोधकता जो था कि बहुत सारे कीट जो है ना जो कीटनाशी थे उससे प्रतिरोधी हो गए थे, तो इसमें जो है ना प्रतिरोधकता जो है यह भी कम है नैनो कीटनाशी में। और इससे कृषि उपज को बढ़ाने में ज़्यादा संभावना बढ़ जाती है क्योंकि हम इसका उपयोग टारगेट वेस्ट करते हैं। और साथ ही साथ यह हम स्थिति परिस्थिति और बुद्धिमता से नैनो कीटनाशी का उपयोग करते हैं।
7: जैसे कि सर आपने बताया कि ये बिल्कुल टारगेटेड काम करता है और बहुत कम मात्रा में बेहतर काम करता है, तो सर आप ये बताइए कि काम कैसे करता है नैनो पेस्टिसाइड?
8: जो कीटनाशी होता है यह सर्वप्रथम जब हम उस पर जहाँ चाहिए जब कीट को मारने के लिए उपयोग करते हैं तो यह सर्वप्रथम होता है कि कीट के जो शरीर का हिस्सा है, जो बॉडी का पार्ट है, उससे जो है ना चिपकता है और धीरे धीरे उनके बॉडी पे जो क्यूटिकल्स वगैरह पाए जाते हैं इन कीड़ों पे उसको जो है ना उससे इंट्रैक्ट करता है और धीरे धीरे कीटों के शरीर के अंदर जाता है। और जो कि जो शरीर जो कीट के शरीर में जो पानी रहता है उसकी मात्रा धीरे धीरे कम होने लगता है और अंतोगत्वा शरीर में डिहाइड्रेशन इतना हो जाता है कि वह जो है ना कीट मरने लगता है। क्योंकि जो हम कीटनाशी का जो प्रयोग करते हैं ना इसका साइज बहुत छोटा होता है, बहुत ही छोटा होता है, जो हम अपने सूक्ष्म आँखों से देख नहीं पाते हैं। तो और उसका सतही क्षेत्रफल जो है ना बहुत ज़्यादा होता है, तो उसका कार्य क्षमता सतही क्षेत्रफल का ज़्यादा होना इसका मतलब है कि उसका कार्य क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। और इसीलिए जो है ना इसका यह जो है ना कि वह टारगेटेड होते हुए काम करते हैं। तो ओवर ऑल अगर आप हम देखें तो यह क्या करता है कि जब हम डालते हैं तो लक्ष्य पे काम करता है या पत्तियों के सतह पे जो कि चिपक जाते हैं तो वहाँ भी इंसेक्ट जब बैठ जाते हैं तो उससे उसका जो है ना इंट्रैक्शन बढ़ जाता है और धीरे धीरे धीरे धीरे जो है ना सक्रिय तत्व इंसेक्ट के शरीर में जाते हैं और उसका शारीरिक क्रियाएं बाधित होती है और अंतोगत्वा उनका मृत्यु होने लगता है।
7: जी सर, आपने ये तो बताया कि नैनो पेस्टिसाइड काम कैसे करता है, अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि नैनो पेस्टिसाइड बनाया कैसे जाता है?
8: नैनो जो पेस्टिसाइड है या कीटनाशी है यह मुख्यतः दो तरीके से बनाया जाता है, जिसमें कि हम प्रत्यक्ष नैनो कण का उपयोग करते हैं, जैसे कुछ धातुएं जैसे नैनो जिंक ऑक्साइड है तो आप जिंक ऑक्साइड को हम प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट ही लेके उसको जो है ना छिड़काव करते हैं जिससे कि जो है ना कीट जो होते हैं मरने लगते हैं, तो यह प्रत्यक्ष नैनो कणों का उपयोग है। और दूसरा क्या करते हैं कि जो है ना नैनो इनकैप्सुलेशन करते हैं, नैनो का कण लेते हैं उसके अंदर जो कीटनाशी होता है परंपरागत कीटनाशी होता है उसको उसके अंदर में कैप्सूल की तरह रखते हैं, तो इसका क्या होता है कि कैप्सूल में बंद हो जाता है तो इससे कीटनाशक जो है ना जो निकलता है कैप्सूल से धीरे धीरे निकलता है और इसका प्रभाव बढ़ जाता है। और कभी कभी जो है ना हम लोग कीटनाशक को नैनो इमल्सन के भी रूप में यूज करते हैं, जैसे कि कुछ ऑर्गेनिक चीज हुआ जैसे तेल वगैरह नैनो के रूप में यूज करते हैं, जो सक्रिय मुख्य सूक्ष्म तत्व होते हैं जिससे कि जो है ना मिल के मुख्य सक्रिय तत्व और जो नैनो कण होते हैं या कीटनाशक को के तरह काम करते हैं और जिससे कि अंतोगत्वा कीट का मृत्यु हो जाता है।
7: सर अब आप ये बताइए कि नैनो पेस्टिसाइड कितने प्रकार के होते हैं?
8: मुख्यतः जो है कीट नैनो कीटनाशी दो प्रकार के होते हैं, जिसको कि कार्बनिक एवं अकार्बनिक कहते हैं। तो कार्बनिक रूप में मुख्यतः क्या होता है कि इसमें हम कार्बनिक चीज़ों का प्रयोग करते हैं, जैसे कि विभिन्न तरह के तेल होते हैं और वह उसके लिए बड़ा उपयुक्त माना जाता है तो उसको लेके हम यूज करते हैं। दूसरा है कि अकार्बनिक के रूप में, जैसे कि मतलब अकार्बनिक धातु के जो है ना जो होते हैं उसको डायरेक्ट हम जो है ना नैनोकन बनाते हैं। नैनोकन बनाने का मतलब हुआ कि उसका साइज 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के रेंज में लाते हैं, फिर उसको डायरेक्ट हम यूज करते हैं और वह जो है ना धातु के रूप में होता है, जैसे जिंक ऑक्साइड वगैरह हुआ, जैसे नैनो सिल्वर हुआ, तो यह जो है ना उसमें बहुलता से कारगर सिद्ध होता है क्योंकि वह प्रत्यक्ष रूप से काम करता है और वह प्रत्यक्ष रूप से लक्षित होता है जहाँ पे उसको मारना चाहिए।
7: जी सर, तो अभी आपने बताया कि ये कितने प्रकार के होते हैं और जब नैनो पेस्टिसाइड की बात करते हैं तो ऐसे भी हम जब आम कीटनाशकों की भी बात करते हैं तो कुछ सुझाव दिए जाते हैं, तो नैनो पेस्टिसाइड के इस्तेमाल के वक्त भी हमें कुछ विशेष ध्यान रखना चाहिए?
8: जी, यहाँ मुख्य बात यह है कि यह जो हम पहले परंपरागत कीटनाशी यूज करते थे और बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज करते थे, तो मात्रा पे जरूर ध्यान रखेंगे। जो ऐसा माना जाता है कि जनरली जो परंपरागत है उसका दसवां हिस्सा ही इसमें हो जाता है, तो दसवां हिस्सा से मतलब जितना जरूरी हो उतना ही जो है ना इसका जो है ना उपयोग करें। दूसरी बात है कि जो हवा का जो वेग है, डायरेक्शन है, जो उसका बहने का जो रुख है, उसको देखते हुए जो है ना किसान भाई को इसका उपयोग करना चाहिए। और तीसरी बात है कि जो है ना जब आप नैनो कीटनाशी यूज करते हैं तो मास्क का जरूर यूज करें, क्योंकि वह इतने सूक्ष्म होते हैं कि इवन सूक्ष्म होता है और खुली आंखें के द्वारा दिख नहीं पाता और पता नहीं चलता है कि वह कहाँ चला गया, तो इससे हार्म होने का भी जो है ना विपरीत हेल्थ जो अपना स्वास्थ्य है उस पर जो है ना विपरीत प्रभाव पड़ने का डर रहता है, तो इसलिए जो है ना मास्क का भी जरूर यूज करना चाहिए और जितना ज़रूरत हो उतना ही इसका उपयोग करें। और मुख्यतः जो है इसका उपयोग जैसे हम पत्ते पे स्प्रे करके करना अच्छा माना जाता है, या दूसरा जहाँ पे देखें कि जो उसका व्यवहार जो होता है कीटों का, जो उसका एक्टिव फेज होता है जहाँ व्यवहार होता है लार्वा वगैरह जो है ना, वहाँ अगर कीट नैनो कीटनाशक का उपयोग करें तो इस तरह जो है ना बहुत कारगर माना जाता है, क्योंकि जहाँ ज़रूरत है वहीं पे हम उसका उपयोग कर रहे हैं। इस तरह से जो है ना कुछ कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिसमें जिसका कि ध्यान रख के ही किसान भाइयों का नैनो कीटनाशक का उपयोग करना चाहिए, नैनो हर्बिसाइड का उपयोग करना चाहिए।
7: यानी कि हवा का रुख आप विशेष रूप से ध्यान रखें और जी, जो अनुशंसित मात्रा है
8: जी।
7: और मास्क का भी इस्तेमाल करें क्योंकि हो सकता है कि आपके शरीर के अंदर अगर वो प्रवेश कर गया तो परेशानी हो सकती है
8: जी।
7: तो इन कुछ बातों का ध्यान रखें और उम्मीद है कि हमारी आज की ये चर्चा आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे स्टूडियो में आए और नैनो पेस्टिसाइड के बारे में आपने इतनी अच्छी बातें बताई,
8: बहुत बहुत धन्यवाद।
7: दोस्तों आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। जाने से पहले कुछ खास बात की, अपना और अपनी मिट्टी का रखें खूब ख्याल और अपनी मिट्टी से करें ढेर सारा प्यार। नमस्कार।
9: उन्नत कृषि

0: जानते हैं कि खसरा कितनी गंभीर बीमारी है? टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर हैं, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MRT का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टीको क्यों है इतने जीरो?
5: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
5: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थाई बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: तो इसका हल क्या है?
5: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा, सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है,
0: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
5: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
6: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित BP जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही लाभ कई।
7: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले।
8: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा।
9: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
8: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
10: PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर। सूर्य घर,
11: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
12: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
11: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
12: आपकी सेहत की बातें,
11: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
12: युवाओं के रोजगार करियर की बातें,
11: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
12: वो कहाँ पर?
11: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
12: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।
11: उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों आप सभी को नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं खरीफ में मूंगफली की खेती के बारे में और इस बारे में हमारे साथ बात करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर दिव्या महतो। मैम आप हैं पौधा प्रजनन विभाग से, आप हैं असिस्टेंट प्रोफेसर कम जूनियर साइंटिस्ट। मैम आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
13: थैंक यू उमा।
11: मैम सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि बहुत बेसिक सा सवाल कि खरीफ मौसम में मूंगफली की खेती कब करें?
13: जी उमा, मूंगफली देखिए बहुत एक महत्वपूर्ण तिलहन फसल है जिसे विशेष रूप से कम लागत और अधिक लाभ के लिए जाना जाता है। यह फसल प्रमुख रूप से शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में सफलतापूर्वक उगाई जाती है और पारंपरिक फसलों में जैसे गेहूं, धान या मक्का की तुलना में मूंगफली की खेती में सिंचाई, खाद और कीटनाशकों की आवश्यकता अपेक्षाकृत कम होती है, जिससे किसानों की उत्पादन लागत घटती है। और इसके अतिरिक्त मूंगफली एक ऐसी फसल है जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण खुद से करता है, जिससे कि मृदा की उर्वरता को बनाए रखने में सहायक होता है। और खरीफ में इसकी खेती का सबसे उपयुक्त जो समय है वो जून के मध्य से जुलाई के पहले सप्ताह तक होता है।
7: तो मैम, मूंगफली का पौधा किस प्रकार का होता है?
13: जी, मूंगफली का जो पौधा होता है प्रमुख तौर से दो प्रकार के होते हैं, या इसे हम कह सकते हैं दो प्रकार के किस्म भी होते हैं, जिसमें पहला होता है फैलने वाली, यानी फैलने वाली मूंगफली। इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका जो पौधा होता है वो ज़मीन पर फैलता है। ये अधिक शाखाओं वाली मूंगफली होती हैं और इसमें फल और फूल ज़्यादा आते हैं, और इसमें पकने की जो अवधि होती है वो 110 से 130 दिन की होती है। और दूसरा जो होता है प्रकार या किस्म कह सकते हैं, वो होता है गुच्छेदार या खड़ी रहने वाली मूंगफली। इसे गुच्छेदार इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका पौधा खड़ा रहता है और गुच्छों में बढ़ता है, और इसके जो पकने की अवधि है वो लगभग 90 से 100 दिन की होती है।
7: तो मैम, अब आप हमारे किसान भाई बहनों को ये बताइए कि मूंगफली की खेती कैसे करनी चाहिए?
13: जी, मूंगफली की खेती खरीफ में इसके लिए सबसे ज़रूरी जो फोरमोस्ट बात यह है कि तापमान इसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, और इसकी बुआई का जो तापमान होना चाहिए वो होना चाहिए 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड, और साथ ही इसकी बुआई हल्की दोमट या बलुई मिट्टी में करें या काली मिट्टी में करें। और इसकी बुआई बहुत चरणों में होती, कई चरणों में होती है, जिसमें कि पहला जो चरण होता है वो है खेत की तैयारी, और इसके लिए 2 से 3 बार जुताई करें और पाटा चला दें और खेत को समतल कर दें। फिर आती है उचित प्रभेदों का चुनाव, और उसमें जैसे आप प्रभेद जैसे कि DH86, जिसका जो उपज क्षमता होती है वो 15 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, VRI 10, जिसकी उपज क्षमता है 22 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, और एक आता है K1812, जिसकी उपज क्षमता है 30 से 40 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के आसपास होती है। और ये सभी जो किस्में मैंने बताई हैं ये हैं कम फैलने वाली गुच्छेदार प्रभेद। अब जैसे कि बात करें कि गुच्छेदार प्रभेद के बारे में, तो इसमें एक और प्रभेद आता है, वो है AK2224, और इसकी जो बुआई का समय होता है वो होता है 15 जून से 10 जुलाई तक, और इसकी जो पकने की अवधि होती है वो लमसम होती है 100 से 105 दिन तक, और इसकी जो औसत उपज है वो है 14 से 16 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, और इसमें तेल की मात्रा लगभग की हमें 49% मिल जाती है। और इसी क्रम में, गुच्छेदार प्रभेदों के क्रम में, एक प्रभेद और आता है कुबेर नाम से, जिसकी बुआई का समय भी वही होता है 15 जून से 10 जुलाई तक, और इसकी पकने की अवधि भी लमसम 100 से 105 दिन की होती है, और इसका जो औसत उपज है वो होता है 15 से 17 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, और तेल की जो मात्रा होती है वो होती है 48% तक इसकी जो है तेल की मात्रा होती है। और फिर आता है गुच्छेदार प्रभेदों में एक और प्रभेद, वो है JL24, जिसका जो है बुआई का समय भी वही सेम 15 जून से 10 जुलाई तक होता है, और पकने की जो अवधि होती है वो है होती है लगभग 90 से 100 दिन के बीच में होती है, और औसत जो इसमें उपज होती है वो होती है 18 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, और तेल की जो मात्रा होती है वो 46% होती है। अब एक जो उन्नत प्रभेद जो फैलने वाली जो किस्में होती हैं उसमें जो है एक उन्नत जो प्रभेद हम कह सकते हैं, उसमें एक आता है M13 के नाम से, जिसका बुआई का समय भी वैसे ही होता है जैसे गुच्छेदार का होता है, मतलब कि 15 जून से 10 जुलाई तक इसकी बुआई कर सकते हैं, और इसकी जो पकने की अवधि होती है वो होती है 130 से 135 दिन तक, और जो है इसका जो औसत जो उपज है वो 15 से 18 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, और लगभग जो तेल की मात्रा इसमें आती है वो होता है 49% इसमें तेल की मात्रा मिलती है।
7: मैम, बीज उपचार बहुत ज़रूरी होता है, तो मूंगफली की खेती में बीज उपचार कैसे करें?
13: जी, बुआई से पहले बीज उपचार बहुत ज़रूरी है और उसके लिए बीज को ट्राइकोडर्मा या थीरम या कार्बेंडाजिम से उपचारित कर सकते हैं।
7: और मैम, मूंगफली की खेती में जैसे कि आपने बताया कि गुच्छेदार होते हैं और फैलने वाले प्रभेद भी होते हैं, तो इनकी बुआई में बीज दर, गहराई और दूरी कितनी रखनी चाहिए?
13: जी, इसमें जैसे कि अगर गुच्छेदार किस्म है तो उसके लिए जो बीज दर है वो 80 से 90 केजी प्रति हेक्टेयर है, और अगर फैलने वाली प्रभेद है तो उसके लिए जो बीज दर होना चाहिए वो 70 से 75 केजी प्रति हेक्टेयर होनी चाहिए। और बुआई की बात करें तो 4 से 6 सेंटीमीटर की गहराई की बुआई करनी उचित होती है ताकि बीज को उचित नमी मिल सके। इसके साथ साथ बुआई के समय फैलने वाले जो प्रभेद हैं उसमें पंक्ति से पंक्ति की दूरी 45 सेंटीमीटर रखनी चाहिए और पौधे से पौधे की दूरी लगभग 15 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और अगर गुच्छेदार वाले प्रभेद है तो उसमें पंक्ति से पंक्ति की दूरी 30 सेंटीमीटर रखें और पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर तक रखें।
7: खाद और उर्वरक का प्रबंधन भी बहुत ज़रूरी होता है, तो मूंगफली की खेती में खाद और उर्वरक का प्रबंधन कैसे करना चाहिए?
13: जी, इसके लिए जैविक खाद के रूप में हम 8 से 10 टन गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर इस्तेमाल कर सकते हैं। और रासायनिक खाद की बात करें तो नाइट्रोजन 20 से 25 किलोग्राम पर हेक्टेयर और फॉस्फोरस 40 से 50 किलोग्राम पर हेक्टेयर और पोटाश हम दे सकते हैं 20 से 25 किलोग्राम पर हेक्टेयर। इसके अलावा यदि सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे कि कमी है तो जिंक, बोरॉन, कैल्शियम, सल्फर भी उपयोग कर सकते हैं आवश्यकता अनुसार। और बुआई के 20 से 25 दिन बाद निराई गुड़ाई अवश्य करें, इससे मिट्टी हल्की तथा ढीली हो जाती है तथा खोट यानी पेग जिसमें दाने बनते हैं उमा वो आसानी से ज़मीन में प्रवेश कर जाते हैं और फलियों का विकास बहुत अच्छा होता है।
7: और मैम, खरपतवार भी बहुत बड़ी समस्या होती है, तो मूंगफली की खेती में खरपतवार नियंत्रण कैसे करें, सिंचाई कैसे करें और कीट रोगों की भी परेशानी होती है, तो कीट रोगों से कैसे बचें?
13: जी, खेत को खरपतवार से मुक्त रखना उपज के लिए अत्यधिक लाभकारी है। इसके लिए जैसे प्री इमर्जेंस खरपतवार नाशी ज़रूर इस्तेमाल करें जैसे कि पेंडीमेथिलीन। जहाँ तक सिंचाई का सवाल है तो इसमें ज़्यादा सिंचाई की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि खरीफ में आमतौर पर वर्षा होती ही है। बस इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि जल की निकासी सही हो और यदि सूखा पड़ता है तो 2 से 3 सिंचाई विशेष कर फूल और फली बनने के समय तो ज़रूर करें। कीट रोग की बात करें तो आमतौर पे इसमें लगने वाले जो रोग और कीट हैं जैसे कि टिक्का, रतुआ, जड़ सड़न, मक्खी, माहू, थ्रिप्स, इन सभी का नियंत्रण उचित कीटनाशक या फफूंदी नाशक का छिड़काव करके कर सकते हैं और जैसे कि मैंकोजेब या डाइमेथोएट का भी इस्तेमाल करके कर सकते हैं।
7: और मैम, हमने बहुत सारी बातें की लेकिन मूँगफली की कटाई और भंडारण, इसका उचित समय क्या होता है?
13: इसका उचित समय तब है जब पत्ते पीले पड़ जाते हैं और ज़मीन में बिछ जाते हैं और 70 से 80 प्रतिशत जो फलियां हैं वो परिपक्व हो जाती हैं, तभी हमें कटाई करनी चाहिए। और कटाई के बाद फली को धूप में अच्छी तरह सुखाएं और फलियों को साफ बोरे में भरकर लकड़ी की जो तख्तियाँ होती है उसके ऊपर रखें। और यदि देखभाल अच्छी हो तो उमा खरीफ में मूंगफली की औसत जो उपज लगभग आती है वो है 20 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर।
7: तो मैम, आपने इतनी सारी बातें बताई लेकिन अंत में अगर आप किसान भाई बहनों को कोई और सलाह देना चाहें तो?
13: जी, अंत में मैं किसान भाइयों और बहनों से यही कहना चाहूँगी, यदि वे समय पे बुआई, उचित प्रभेदों का चुनाव एवं वैज्ञानिक तरीके से मूंगफली की खेती करें तो उन्हें निश्चित ही लाभ प्राप्त होना तय है।
7: मैम, जैसे कि अभी आपने बताया कि मूंगफली की खेती से लाभ होता है, साथ ही आपने शुरुआत में बताया कि इससे मिट्टी को भी काफ़ी लाभ होता है, तो उसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे?
13: जी, जैसे कि हम लोग दलहन जो फसल होती है उसमें हम जानते हैं कि उनमें भी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने की क्षमता होती है जिससे कि मृदा की उर्वरता बढ़ती है, तो उसी तरीके से मूंगफली की भी जो फसल है ओमा, उसमें भी ये प्रॉपर्टी होती है कि वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण कर सकते हैं और वो इस तरह वो मृदा की उर्वरता को बनाए रखने में बहुत ज़्यादा सहायक है।
7: जी मैम, तो मैम बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी बातें बताई मूंगफली की खेती के बारे में। आपने जो बातें बताई उम्मीद है कि उससे हमारे किसान भाई बहनों को बहुत फायदा होगा और उनकी मिट्टी को भी बहुत फायदा होगा। मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
13: थैंक यू उमा, थैंक यू सो मच उमा।
7: दोस्तों आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। आप अपना और अपने फसलों का रखें खूब ख्याल और अपनी मिट्टी से करें ढेर सारा प्यार। नमस्कार।
14: 3 क्लास टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
15: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
14: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना है। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए टीबी हारेगा देश जीतेगा।
16: सुनो सुनो सुनो सभी, एक जरूरी बात, आया मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण फिर एक बार। अगर आपके घर या पड़ोस में है 5 साल या उससे छोटे बच्चे जिनका कोई भी टीका छूट गया हो तो सोचते क्या हो, जल्दी से आशा दीदी से करो बात। बच्चों को स्वास्थ्य केंद्र है लेकर जाना और उनका टीकाकरण है करवाना।
17: सुहाना सफर और ये मौसम हसी,
16: टीको ये मौसम है टीकाकरण करवाने का, तो सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
18: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
8: सुनिए, क्या आपने PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
9: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
8: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो PM सूर्य घर.gov.in पर।
19: हर घर सूर्य घर।
20: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 ग्रीन FM।

बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 22 से 26 जुलाई के दौरान आसमान में घने बादल छाए रहेंगे और जिले में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी चलने और हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 26 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 90 प्रतिशत और दोपहर में 70 से 80 प्रतिशत रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए। जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दें, पिछले कुछ दिनों में हुई वर्षा का लाभ उठाइए और आगे भी संभावना है कि वर्षा होगी, तो ऐसी स्थिति में धान की रोपाई के लिए व्यवस्था सुनिश्चित कर ले। रोपाई से पहले प्रति हेक्टेयर 25 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस, 30 किलोग्राम पोटाश और 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट का प्रयोग करें। आपको बता दें कि निचली जमीन के चारों ओर मजबूत मेड़ यानी कि बांध बनाकर वर्षा जल का संचयन कर ले, ताकि जरूरत पड़ने पर आप वर्षा के जल का सिंचाई में उपयोग कर सके। जो किसान भाई बहन श्री अन्न की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दें, मोटे अनाजों की खेती के लिए उचास भूमि का चयन करें। मड़वा की वकुला KMR 316, GPU 67 और VL 379 राजेंद्र मड़वा RU 8 और RU 3। और आपको बता दें कौनी की अनुशंसित किस्में हैं राजेंद्र कौनी 1। आप इन किस्मों की बुआई कर सकते हैं। मक्का की खेती करने वाले किसान भाई बहन ध्यान दें, खरीफ मक्का की बुआई आसमान साफ रहने पर ही करें। खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और ध्यान रखें कि बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नेत्रजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश जरूर डालें। अनुशंसित मक्का की किस्में जैसे सुवान, देवकी, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, राजेंद्र संकर मक्का 3, गंगा 11 है। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, मिर्च, अगाध गोभी, टमाटर जैसी सब्जियों की नर्सरी तभी तैयार करें जब आसमान साफ हो। और बागवानी करने वाले भाई बहन ध्यान दें, जुलाई अगस्त आम के पौधों के रोपण के लिए सबसे उपयुक्त समय होता है। कलमी पौधों की रोपाई 10x10 मीटर और बीजू पौधों की रोपाई 12x12 मीटर की दूरी पर करें। सघन बागवानी के लिए 5x5 मीटर और अम्रपाली के लिए 2.5x2.5 मीटर की दूरी रखें। फलदार वृक्षों में प्रति वर्ष 1 किलोग्राम नाइट्रोजन, 30 किलोग्राम फास्फोरस, 700 किलोग्राम पोटाश और 80 से 100 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद जरूर डालें। आपको बता दें इस समय केला के स्वस्थ सकर्स की रोपाई करें। लंबी किस्मों जैसे अल्पान, कंथली, मालभोग, चिनिया, G9 और बॉनी किस्में जैसे ग्रैंड नेन, रोबस्टा, बसराई का चयन करना सबसे फायदेमंद होता है। लंबी किस्मों के लिए 2x2 मीटर और बॉनी किस्मों के लिए 1.5x1.5 मीटर की दूरी रखें। प्रत्येक गड्ढे में 5 किलोग्राम गोबर की खाद, 500 ग्राम अरंडी की खली, 300 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट, 100 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश और 10 ग्राम कार्बोफ्यूरान मिलाना ना भूलें। रोपाई से पहले सकर्स को कार्बन डाइजिंग 2 ग्राम प्रति लीटर पानी से उपचारित करें। किसान भाई बहनों, टिश्यू कल्चर पौधे का उपयोग अधिक उत्पादन के लिए लाभकारी होता है। पशुपालक भाई बहन ध्यान दें, पशुओं में PPR, MFD यानी कि खुरपका मुंहपका और HS यानी कि गला घोटू, इन रोगों का खतरा अधिक है। इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण करवाएं, उन्हें साफ और सूखा रखें और बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। रोग के लक्षण अगर दिखाई दे तो तुरंत

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: कृषि विभाग द्वारा जारी पौधा संरक्षण सामयिक सूचना। खरीफ मौसम में ग्रास हॉपर के प्रकोप की संभावना रहती है। ग्रास हॉपर को किसान फुतका के नाम से भी जानते हैं। इसका व्यसक 1 से 7 सेंटीमीटर लंबा होता है। इसकी मादा पूरे मौसम में औसतन 200 अंडे देती है। अनुकूल वातावरण मिलने पर अंडे की संख्या 400 तक हो सकती है। व्यस्क मादा आधे से 2 इंच मिट्टी के अंदर अंडा देती है। अप्रैल मई में शिशु कीट 5 से 6 विकास की अवस्था के बाद 40 से 60 दिनों में व्यस्क बनते हैं। ग्रास हॉपर की संख्या को नियंत्रित रखने के लिए इसके प्राकृतिक शत्रुओं जैसे लिस्टर बिटिल, ग्राउंड बिटिल, चिड़िया, छिपकली, मेढक, मकड़ी इत्यादि का संरक्षण करना चाहिए। ग्रास हॉपर कीट फसल की पत्तियों को 1 या 2 किनारों से खाता है। इसके उग्र आक्रमण की दशा में सिर्फ मध्य शिरा ही बचा रह जाता है। फलस्वरूप पौधे की वानस्पतिक वृद्धि प्रभावित होती है। इसकी संख्या प्रति वर्ग मीटर 3 से 7 होने पर इसके जैविक या रासायनिक नियंत्रण के उपाय करने चाहिए। फुतका कीट का प्रबंधन आप इस प्रकार कर सकते हैं। खेत में जगह जगह पक्षी बैठक लगाना, जैविक कीटनाशी के रूप में यूवेरिया बेसिना 2.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और मेटारीजियम स्पी का 2.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और नीम तेल 1500 ppm का 3 से 5 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से फसल पर छिड़काव करना चाहिए। रासायनिक कीटनाशी के रूप में क्लोरपाइरीफास 20% ईसी की 2.5 से 3 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोलकर या फिर लैम्डा साही हेलोथ्रीन 5% ईसी की 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें या फिर डेल्टा मेथ्रीन 2.8% ईसी की 1 से 1.5 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल कर या फिर फिप्रोनील 5% SC का 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करना चाहिए। छिड़काव कार्य शाम के समय यानी कि दोपहर 4 बजे के बाद करना अच्छा होता है। विशेष सेवा या सुविधा के लिए अपने नजदीक के पौधा संरक्षण केंद्र या कृषि विज्ञान केंद्र अथवा पौधा संरक्षण सहायक निदेशक उद्यान या जिला कृषि कार्यालय से संपर्क करें। क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

0: जानते हैं कि खसरा कितनी गंभीर बीमारी है? टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MRT का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टिको, क्यों है इतने जीरो?
5: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
5: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: तो इसका हल क्या है?
5: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा, सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है,
0: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
5: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
6: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
7: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था, उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in।
8: हर घर सूर्य घर।
9: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खान पान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित BP जांच कराएं। स्वस्थ दिल स्वस्थ जीवन, सेहत सही लाभ कई। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा, आपका स्वागत करती हूं किसान भाई बहनों को संबोधित हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। किसान भाई बहनों, आज उन्नत कृषि कार्यक्रम में हम बिहार के एक प्रमुख फसल मक्का की बात करने वाले हैं, और आप समझ गए होंगे कि खरीफ का मौसम चल रहा है तो खरीफ मक्का की बात होगी। किस प्रकार से हमारे किसान भाई बहन खरीफ मक्का की खेती करें ताकि उनकी आमदनी अच्छी हो, फसल अच्छा हो, तो आइए इस बारे में विस्तार से जानते हैं डॉक्टर वीरेंद्र सिंह से। सर हैं वरीय वैज्ञानिक बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
10: धन्यवाद उमा जी। नमस्कार किसान भाइयों, आज हम लोग चर्चा करेंगे कि हमारा जो खरीफ का मौसम है, ये जानते हैं कि मक्का बहुत ही बिहार के परिप्रेक्ष्य में बहुत ही मुख्य फसल है। आज जो भी हमारा बिहार का परिप्रेक्ष्य है, उसमें मक्का का काफी एरिया, क्षेत्रफल हो, उत्पादन हो, उत्पादकता बढ़ रहा है, और इनसे किसान भाई मक्का के खेती से अच्छी इनकम भी कमा रहे हैं, और हम लोगों का भी प्रयास रहता है कि किसान भाइयों को मक्का से अच्छा उपज प्राप्त किया जाए। सरकार का भी इस फसल पे काफी ध्यान है, किसान भाइयों को जागरूक किया जाता है, और उन्हें ये हम लोग बीच बीच में हर चीज का देते हैं सावधानियां कि अच्छे उपज लेने के लिए आपको क्या करना है।
9: जी सर, तो बिहार में कब खेती की जाती है खरीफ मक्का की?
10: बिहार में जो खरीफ मक्का का खेती का समय है, 25 मई से हम लोग शुरू करते हैं और 10 से 15 जुलाई तक मौसम के आधार पे, बारिश के आधार पे हम लोग फसल की खेती करते हैं। तो ये हमें किसान भाई ये ध्यान देना है कि जब बुआई करते हैं तो खेत में पर्याप्त नमी रहे। तो हम जो मई की बात करते हैं, यदि आपके पास खेत में पर्याप्त नमी है, सिंचाई की सुविधा है, तो 25-26 मई से भी आप लगा सकते हैं फसल, और फिर जैसे बारिश होती है तो उसके बाद भी आप फसल को लगा सकते हैं।
9: जी सर, और बिहार में कितने क्षेत्रफल में खरीफ मक्का की खेती होती है?
10: बिहार में अभी 2 लाख हेक्टेयर के आसपास क्षेत्रफल है, और हमारे जो राज्य की उत्पादकता है ये तो बहुत कम दिखता है, 29 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर दिख रहा है। लेकिन हम लोग किसान भाई के यहाँ जो भी डेमोंस्ट्रेशन प्रत्यक्षण कराते हैं या हम लोग अपने फार्म पे लगाते हैं, हम लोग देखते हैं तो 55 से 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर किसान भाई आराम से उपज प्राप्त कर रहे हैं। तो हम लोग इस तरह से ये कह सकते हैं और देख भी रहे हैं कि 55 से 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर यानी 2.5 एकड़ में किसान भाई उपज मक्का से रबी खरीफ मौसम में प्राप्त कर लेते हैं। और जो हमारे जो राज्य की उत्पादकता की बात है तो हमारे राज्य की उत्पादकता कम दिखता है। इसका वजह है कि कहीं जो अगस्त का बाढ़ होता है, ज़्यादा पानी क्या मात्रा बारिश हो जाती है, तो उस वजह से कुछ फसल बर्बाद हो जाते हैं, जिसके वजह से हमारी जो उत्पादकता है कम दिखती है। लेकिन जो किसान भाई अच्छे से अच्छे माहौल में अच्छे से अपना खेती करते हैं वो 60 से 60 क्विंटल तक प्रति हेक्टेयर बहुत अच्छे से उपज प्राप्त कर लेते हैं।
9: यानी कि अगर किसान भाई बहन कुछ बातों का ध्यान रखें तो उनकी आमदनी उपज बढ़ने की संभावना होती है, तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए खरीफ मक्का की खेती के
10: लिए? सबसे पहले जो आप खेत का चुनाव करते हैं तो आपका खेत ऐसा होना चाहिए कि वहाँ जल जमाव नहीं हो। बरसात के मौसम में जो खेत होता है वर्षा आधारित मक्का बोला जाता है इसको, तो बारिश हो जाती है उसी से इसका जो सिंचाई का काम है पूरा हो जाता है फसल का। फिर भी जहाँ जहाँ पानी जब नहीं, किसी कारण से पानी नहीं आई, नहीं पानी पड़ा, बारिश नहीं हुई, तो आपको हल्की सिंचाई की भी व्यवस्था रखनी पड़ेगी। लेकिन सबसे जरूरी है कि ऐसे खेत का चुनाव करें जहाँ बारिश होने के बाद 24 घंटे के अंदर पानी खेत से निकल जाए। और बुआई के जो विधियाँ हैं उसमें खरीफ में सबसे जरूरी है कि आप पहले मेढ़ बना लें। अब तो सरकार का भी योजना आ रहा है, मेढ़ बनाने वाला यंत्र आ रहा है, मेढ़ रीज बनाया जा रहा है, तो आप मेढ़ बना लें। मेढ़ को बनाने के बाद मेढ़ पे ही बीज का बुआई करें। इससे क्या होता है कि जो बारिश होती है बड़ी आसानी से खेत से जल्दी निकल जाता है और आपके फसल पे कोई भी बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इस तरह से जब खेत का चयन करें तो सबसे प्राथमिकता दें खरीफ में कि वहाँ जल निकासी का व्यवस्था आपके खेत में हो।
9: जी सर, सर बीज दर कितना होना चाहिए और बुआई का उचित समय, जैसे कि आपने बताया तो बुआई का उचित समय क्या है?
10: बुआई का तो उचित समय जैसा कि हमने बताया भी, चर्चा भी हम लोग किए कि 25-26 मई से लेकर के 10 जुलाई तक आप बुआई कर सकते हैं। वो निर्भर करता है मौसम पे, बारिश पे और खेत में नमी की उपलब्धता पर। तो ये जो खरीफ का मौसम का होता है 90 से 120 दिन का पौधे का अवधि होता है। अब ये हम लोग जब खरीफ की बात करते हैं तो इसमें 2-3 तरह के मक्के किसान को उपजाने के लिए मिलते हैं। पहला तो है कि एक अनाज के लिए आप उपजाते हैं तो वो 110 से 120 दिन में आपका फसल तैयार हो जाता है, बुआई से 120 दिन पे हार्वेस्ट हो जाता है। दूसरा है कि यदि आप भुट्टे, हरा भुट्टा भी जो खरीफ मौसम का होता है बड़ा ही अच्छा इनकम का एक सोर्स है, आप भुट्टा भी खरीफ में यदि आप लगाते हैं तो भुट्टा में जो पुष्पन की क्रिया होती है खरीफ में बुआई के 55 दिन के आसपास होता है और उसके 25 से 28 दिन बाद 30 दिन बाद यानी 80 से 85 दिन में आपका भुट्टा बाजार में बेचने के लायक हो जाता है। तो हरा भुट्टा यदि बेचना है और उसको आप यदि हरे भुट्टे को समय पे बाजार में उपलब्ध कराते हैं तो उसका अच्छा उससे मुनाफा होता है। दूसरा एक और भी आमदनी का साधन है कि बेबी कॉर्न की खेती करते हैं। तो बेबी कॉर्न जो है ना बुआई के 60 से 70 दिन के आसपास वो तुड़ाई हो जाता है, 2 से 3 उसमें बेबी कॉर्न आता है, तो 2 से 3 तुड़ाई कर लेते हैं। इसके बाद उस फसल को, जो पौधे बचे हैं उसको हरे फसल के रूप में जानवर के चारा के रूप में यूज करते हैं। तीसरा एक स्वीट कॉर्न होता है। जब आप हरे भूटे की बात करते हैं तो कोशिश कीजिए कि हम स्वीट कॉर्न लगाएं। स्वीट कॉर्न का जो बाजार में औसत जो हम लोग जो अभी देख रहे हैं एक भूटा 10 रुपये से कम नहीं किसान के, यानी किसान चाहें तो 10 से 12 रुपये में अपने खेत से एक भूटा वो व्यापारी को बेच देते हैं। तो इस हिसाब से ये हम स्वीट कॉर्न के खेती को प्रोत्साहन सरकार भी कर रही है और हम लोग भी प्रोत्साहन देते हैं। उसका भुट्टा में मिठास ज्यादा होता है, दाने मुलायम होते हैं, भून कर खाएं या बॉयल कर खाएं, उसके बहुत तरह से उपयोग है। तो उस परिस्थिति में किसान भाइयों को प्रति हेक्टेयर प्रति एकड़ इनकम ज्यादा होता है। यही वजह है कि आज इसको गोल्डन क्रॉप के रूप में, कैश क्रॉप के रूप में किसान भाई देख रहे हैं इनकम के हिसाब से।
9: जी सर। सर बीज दर कितनी होनी चाहिए?
10: बीज दर, जब हम बीज दर की बात करते हैं तो 20 केजी प्रति हेक्टेयर आपको बीज दर लगता है, यानी ढाई एकड़ में 20 किलो बीज लगेगा आपको।
9: और बुआई की विधि क्या?
10: बुआई की विधि में जैसा कि हमने बताया कि पानी से फसल को बचाना है, तो हमारा और हवा से भी बचाना है। अक्सर देखते होंगे कि चक्रवाती टाइप का हवा, अगस्त के आसपास बारिश भी बहुत होती है, उसी समय बाढ़ की भी संभावना होती है 15 अगस्त के आसपास, और उस समय हवा चलती है तो हवा से पौधे भी गिरने का, क्योंकि उसका जड़ कमजोर हो जाता है बारिश की वजह से, तो पौधे जड़ से उखड़ जाते हैं। तो हमें पूरब से पश्चिम की तरफ लाइन बना लेना है, मेड़ बना लेना है, मेड़ पे बुआई करनी है। एक मेड़ से दूसरे मेड़ की दूरी 60 सेंटीमीटर रखना है, और एक बीज से दूसरे बीज की जो मेड़ पर बुआई करते हैं तो आप उसको 20 सेंटीमीटर रखिए। तो आपके पौधे का जो लाइन है पूरब पश्चिम होता है, तेज हवा चलती है जनरली पूर्वा या पछया, तो हवा बीच से, दो पौधों के बीच से जो गैप होता है उससे निकल जाता है और आपका फसल खड़ा रह जाता है।
9: हमारे किसान भाई बहनों को सर आप अब उचित प्रभेद के बारे में बता दीजिए जो खरीफ में। हाँ,
10: देखिए जो मक्का का जो प्रभेद है खरीफ के लिए, यदि आप प्रभेद का चुनाव करते हैं तो अभी सरकार, राज्य सरकार भी और हम लोग मिल करके राज्य स्तरीय बैठक होती है और हरेक मौसम के लिए प्रभेद का चुनाव किया जाता है। इसमें उसके बाद अनुमोदन करके वो सरकार के जो पोर्टल है उस पर डाला जाता है। उसमें किसान भाई को सब्सिडी भी है, उसमें से आप चॉइस करते हैं कि हमको ये सीड चाहिए, वही बीज आप लेते हैं और जो सरकार का सब्सिडी है वो आपको मिलता है। तो जो अभी तक अच्छी वैरायटी है खरीफ के लिए, IMH 222 है, IMH 234, DKC 8181, DKC 7074 है, बायो 9544 है, SKM1 है, DHM 121 है, DHM 117, राजेंद्र मक्का 4 है, राजेंद्र मक्का 3 है, ये प्रभेद लगा करके आप अच्छा उपज प्राप्त कर सकते।
9: खाद उर्वरक प्रबंधन के लिए क्या करें?
10: खाद जो ये खरीफ का फसल होता है मक्के का, इसमें थोड़ा कम ही देना पड़ता है, तो नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटास तीन चीज देना है, साथ में जिंक भी देना है। 80 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटास और 20 से 25 किलोग्राम हर 3 साल पर जिंक देना है। तो यहाँ पे ये देखना है कि आप नाइट्रोजन दे रहे हैं, यदि DAP दे रहे हैं तो DAP में नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों है, फास्फोरस का मात्रा ज्यादा होता है, नाइट्रोजन का कम होता है। तो जो आपका DAP से नाइट्रोजन की मात्रा चला गया उसको निकालने के बाद ही आप जो हम बता रहे हैं कि 80 किलो देना है नाइट्रोजन उसको दें। तो 80 किलो नाइट्रोजन चाहे आप यूरिया से दें या DAP से दें या NPK से दें, 60 किलोग्राम फास्फोरस आप DAP से दें या जो भी सोर्स है उससे दें, और 40 किलोग्राम पोटास देना है। हर 3 साल पे 20 से 25 किलोग्राम आपको जिंक सल्फेट देना है। तो इस तरह से इस फर्टिलाइजर को, जो खाद की मात्रा है नाइट्रोजन की आधी मात्रा, फास्फोरस पोटास और जिंक की पूरी मात्रा, खेत के तैयारी के समय ही खेत में दे दें बुआई से पहले। और जो 50% आप नाइट्रोजन 40 किलो बचा रहे हैं, 40 को 20 किलो नाइट्रोजन को बुआई के 20 से 25 दिन बाद दें, और जो 20 किलो और बचाए हैं 25% उसको जब फसल में भुट्टा बनने लगता है, बाली आने लगती है, वो वही 55 से 60 दिन के आसपास या 55 दिन के आसपास उसको उसमें उपरिवेशन के रूप में दें।
9: सर बुआई के समय ऐसे कौन से उपाय करें किसान भाई बहन जिससे कि पौधों को कीटों से बचाया जा सके?
10: बुआई के समय ही जैसे अंकुरण होता है, आप लोग देखते होंगे कि आपका बहुत अंकुरण बढ़िया हुआ, अच्छा हुआ, फसल जो पौधा होता है एक एक पत्ती का होता है, तो बीच से लगता है कि जड़ से कोई काट दिया है, लगता है कि ब्लेड से कोई काटा हुआ है, वो कटवर्म होता है, कीड़े होते हैं जमीन में पड़े होते हैं और वो रात में जनरली वो काटते हैं। तो उसको रोकने के लिए हमें क्या करना है कि जैसे अंकुरण होता है तो क्लोरोपाइरीफास को ले लीजिए, घोल बना करके अच्छे से उस पे पौधे पे छिड़काव कर दीजिए। छिड़काव ऐसे करना है कि जड़ तक जाए, मिट्टी पे भी पड़े, और जो पौधे के बगल वाले जैसे दो लाइन के बीच का जो जगह है उस पे भी छिड़क दें, यानी पूरे खेत में छिड़क दें, ताकि जो भी कीड़े होंगे या उसके लार्वा होंगे या उसके जो एडल्ट होंगे वो मर जाएंगे। तो इस तरह से ये करते हैं। जब पौधे आपके थोड़े बड़े होते हैं, 6 पत्ती 8 पत्ती के होते हैं, तो उस समय भी आपको क्लोरोपाइरीफॉस का छिड़काव करना है। साथ ही एक बड़ा ही भयानक कीट है, फॉल आर्मी वर्म जिसको बोलते हैं, ये रातों रात फसल को काफी बर्बाद कर देता है। फॉल आर्मी वर्म का उपचार शुरू से ही आपको करना है, ताकि उसके जो कीड़े होते हैं आकर के उस पर अंडा देते हैं ऊपरी पत्ती पे, तो उसके लिए इमामेक्टिन बेंजोएट एक दवा है, बड़ा प्रभावी दवा है, अलग अलग नाम से आता है। तो इमामेक्टिन बेंजोएट का पौधे के बुआई के 20 दिन के आसपास एक छिड़काव कर दें। वो भी छिड़काव करते समय ध्यान देना है कि पौधे की जड़ तक पानी चला जाए। तो इमामेक्टिन का पहला छिड़काव जब पौधे 20 दिन के हो जाएं तो दे दीजिए, दूसरा छिड़काव जब पौधे 50 दिन के आसपास होते हैं उस समय दे दीजिए। दो छिड़काव अत्यंत आवश्यक है इस कीड़े से बचने के लिए। इमामेक्टिन से आपका तना छेदक भी बच जाता है और जो आपके जो फॉल आर्मी वर्म वो भी बच जाते हैं। कॉब बोरर आता है बाद में, भुट्टे में आप देखे होंगे कीड़े घुस जाते हैं, उससे भी बच जाता है। तो दो छिड़काव जरूर आप करें, इससे आपके फसल कीड़े से बच जाते हैं।
9: सर, खरीफ मक्का में सिंचाई की कितनी जरूरत होती है?
10: खरीफ मक्का में सामान्यतः किसान भाइयों जैसा कि जानते हैं बारिश होती है, तो उसमें ज्यादा पानी की जरूरत नहीं है। यदि समय समय पर बारिश हो जाती है तो कोई सिंचाई की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे पौधे आपके घुटना के ऊंचाई के होते हैं 20 दिन के आसपास, तो उस समय खेत में ज्यादा नमी की कमी होती है, एक हल्की सिंचाई करें। चूंकि आप मेड़ के ऊपर पौधे लगाए हैं तो थोड़ी सी भी सिंचाई करेंगे तो पौधे के जड़ के पास नमी बन जाती है। दूसरी है कि जब आपके पौधे 45 से 50 दिन का होते हैं, उसी समय पौधों में फूल आने की क्रिया शुरू होता है, पराग बनता है, मोचा आता है, दाना बनता है, उसी समय स्टार्ट होता है। तो पहली सिंचाई 20 दिन के आसपास जरूर करें, खेत में नमी होनी चाहिए यदि बारिश नहीं होती है तो। दूसरी सिंचाई जब आपके खेत में पहले धनबाल आता है, ऊपर में जो निकलता है उसको धनबाल बोलते हैं, जो सिल्क को हम लोग मोचा बोलते हैं जिसपे दाना बनता है, तो वो 55 दिन के आसपास आता है, उस समय भी खेत में नमी की काफी जरूरत है। तो उस समय यदि बारिश नहीं होती है, खेत में नमी है नहीं है, तो आप एक हल्की सिंचाई उस समय भी कर दें। उसके बाद से लेकर के करीब उससे यानी 60 दिन से लेकर के बुआई के 60 दिन से फिर 25 दिन और 75 दिन तक खेत में पर्याप्त नमी होनी चाहिए। कारण कि जब पराग बनता है, परागण होता है ये 60 दिन के आसपास, 60 दिन से 80 दिन के आसपास, 85 दिन के आसपास दाना बनता है, दाने के लिए नमी की जरूरत बहुत जरूरत है। तो इसलिए खेत में यदि बारिश नहीं होती है तो हल्की सिंचाई करें। जब भी खरीफ में सिंचाई करें हल्की करें, हो सकता है कि आप दिन में सिंचाई करें रात में बारिश हो जाए, तो हल्की किए रहेंगे तो पानी निकल जाएगा, और चूंकि नाली पे किए हैं मेड़ पे किए हैं तो पानी निकल ही जाता है। तो इस चीज को ध्यान रखना है, जरूरत के अनुसार खरीफ में सिंचाई देना है, नहीं सिंचाई की जरूरत है खेत में पर्याप्त नमी है तो देने की जरूरत नहीं है।
9: जी सर। सर, जैसे कि अभी आपने बताया अलग अलग अवस्था में अलग अलग तरह से सिंचाई करनी होती है, तो क्या इन अवस्थाओं में और भी कुछ विशेष सावधानी बरतनी चाहिए?
10: विशेष सावधानी में नमी होनी चाहिए उसी समय, जैसा कि हमने बताया कि 20 से 25 दिन पर जो आप यूरिया का मात्रा बचाए हैं 25% दे दीजिए, फिर फूल आने के समय यानी 50 से 60 दिन के आसपास जो तीसरा जो डोज है बचाए हुए हैं 25% यूरिया उसको दे दीजिए, और उस समय इंसेक्ट पेस्ट का भी स्प्रे कर दीजिए कंट्रोल करने के लिए, और खेत में नमी भी पर्याप्त रूप से बनाए रखें। और इसके अलावा उसमें कुछ जो फसल का जो आपने जो यदि बीमारी दिखता है, यदि दिखता है बीमारी, जैसे फ्यूजीरियम स्टॉक रॉट एक बहुत बीमारी आ रहा है, जब पौधे में दाना बनता है तो आप देखे होंगे दाना बनते ही पौधा लगता है पक गया, मैच्योर हो गया, लेकिन एक्चुअली वो मैच्योर नहीं होता है, वो सूख जाता है, उसको विल्ट बोलते हैं, फ्यूजेरियम विल्ट बोलते हैं, वो बड़ा ही एक खतरनाक बीमारी है। उस बीमारी से बचने के लिए आपको खेत के जुताई के समय ही 5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से ट्राइकोडर्मा खेत में डाल देना है, और जब फसल में वो बीमारी दिखता है सूखने की, आप देखे होंगे बीच बीच में 10-20% पौधे सूख जाते हैं, दाना बनता है उस समय सूख जाते हैं, तो उसमें ब्लीचिंग का छिड़काव कर दीजिए, ब्लीचिंग पाउडर को पानी में मिला करके और छिड़काव कीजिए। लेकिन उस ब्लीचिंग से भी बहुत ज्यादा आपको नियंत्रण नहीं हो पाता है, उसके लिए जरूरी है कि ट्राइकोडर्मा खेत में डाल दें। ये खरीफ में अभी ये भी देखा जा रहा है, और इस एरिया में देखा जा रहा है जहां पे ज्यादा पर केला की खेती हो रही है, जिस एरिया में केला का ज्यादा क्षेत्रफल है वहां पे ये विल्ट का प्रॉब्लम मक्का में भी आ रहा है। तो जहां भी केला का एरिया है बिहार में, वहां निसंकोच आप ट्राइकोडर्मा 1 एकड़ में 5 से 6 किलो खेत में मिला दें। इससे कुछ हद तक आपकी जो खेत की बीमारी है बच जाएगा। और प्रभेद का चुनाव जो आप करते हैं, वैरायटी जो लेते हैं, तो जो भी बीज खरीदते हैं तो बीज अनुशंसित दुकान से ही खरीदें, जो रजिस्टर्ड कोई दुकान है वहां से खरीदें, और कभी भी लूज बीज नहीं खरीदें, खुला हुआ बीज नहीं खरीदें। बीज पैकेट खरीदें, उसका रैपर देखें और उस बीज के थैले को, बीज के रसीद को अंत तक रखें जब तक कि आपका फसल कट नहीं जाता है। तो इससे होगा कि जो भी आप क्लेम करते हैं कि हमको बीज गलत मिला, बीज में बीमारी था, ये ओरिजिनल बीज नहीं था, तो बिहार सरकार और हम लोग जाते हैं बीज में निरीक्षण करते हैं, तो उसमें आपको 2-3 चीज रखनी है। पहला कि बीज का थैला रखना है, सुरक्षित रखना है। आप बीज का थैला रखते समय ध्यान रखिएगा कि बीज उपचारित होता है, बीज जो होता है बीज से उपचारित होता है, तो बीज के थैला को अच्छे से बांध करके कहीं सुरक्षित जगह रख दें ताकि कोई बच्चा या जानवर उसको कुछ दुरुपयोग नहीं कर सके। दूसरा है कि उसके जो थैला है वो रखिए, रसीद को रखिए, और बीज का कुछ सैंपल रखिए, 5-10 दाना ही आप उसमें बंद करके रखिए, ताकि समय आए तो सरकार के लोग, हमारे विश्वविद्यालय के लोग जो भी जाएं, वो देख लें कि ये बीज सही में इसी कंपनी का है या सही है या गलत है। तो ये चीज आपको सावधानी बरतनी है। और बीज जब भी लेनी है कोई अच्छे दुकान से लेना है जो रजिस्टर्ड हो, जिसको सरकार ऑथराइज किया हो, उसी से खरीदिए।
9: जी सर। सर एक बार संक्षेप में हमारे किसान भाई बहनों को बता दीजिए कि किन किन बातों का उन्हें ध्यान रखना चाहिए।
10: किसान भाइयों, खरीफ मौसम में संक्षेप में हमारा ये सुझाव है कि आप समय पे बुआई करें, मेढ़ पे ही बुआई करें, खाद का उचित मात्रा ही दें, क्योंकि आप ज्यादा यूरिया का उपयोग करते हैं तो आपके खेत में विल्ट का प्रॉब्लम आएगा, सूखने वाली बीमारी आएगी। लाइन से लाइन 50 सेंटीमीटर से कम नहीं करें, पौधा से पौधा 20 सेंटीमीटर से कम नहीं करें। यदि ज्यादा लाइन घना करते हैं, पौधा घना करते हैं, तो डिफरेंट टाइप के कीड़े और बीमारी खेत में आना निश्चित है। इसलिए जो भी वैज्ञानिक सुझाव है, 60 सेंटीमीटर पे लाइन से लाइन रखें, 20 सेंटीमीटर पौधा से पौधा रखें। समय पे बुआई तो करना जरूरी है, प्रभेद का सही चुनाव करें और जल जमाव से खेत को बचाएं। जब भी मक्का की बात आप करते हैं, सबसे पहले आपके ये दिमाग में ये जरूर आना चाहिए कि हमें खेत में पानी नहीं लगने देना है, और यदि पानी लगता है तो फसल बर्बाद होगा ही। और यदि बाढ़ आता है, मान लीजिए कि आपका फसल तैयार हो गया, भुट्टा बेचने के लायक हो गया, यदि बाढ़ का पानी बढ़ रहा है, ज्यादा बारिश हो रही है, तो कोशिश कीजिए कि हरा भुट्टा के रूप में उसको बेच दें बाजार में, ताकि आपको एक अच्छा इनकम मिल जाए, और जो फसल है जिस पे भुट्टा है, पौधा है, उसको हरा चारा के रूप में बेच दें। कीट व्याधि का समुचित प्रयोग बरसात में जरूर करें, क्योंकि खरीफ में कीट पतंग बहुत ज्यादा आता है। इससे बचने के लिए जो हमने 2 दवा बताया, सिर्फ 2 ही दवा दीजिए, विशेष कोई उपचार की ज्यादा दवा, विटामिन है, ग्रोथ रेगुलेटर है, ये सब देने की कोई जरूरत नहीं है। आप सिर्फ इसी दवा का उपचार कीजिए, और जब आप फसल को काटने जाते हैं, जो फसल की कटाई करते हैं, तो देख लीजिए कि उचित परिपक्वता के अवस्था में ही फसल की तुड़ाई करें। कारण कि बरसात में जब आप भुट्टा तोड़ते हैं, नमी ज्यादा रहता है और रखते हैं, तो उसमें अफ्लाटॉक्सिन जो एक काला काला फफूंद टाइप का होता है, आप देखे होंगे, वो फसल को, आपके दाना को बर्बाद कर देता है। तो उचित नमी 18-19% जब उसमें नमी रहे तभी फसल को तोड़ें, और 14% नमी तक उसको धूप में या जहां भी सुखाने की आपको सुविधा है वहां सुखाएं। 13-14% नमी पे सुखा करके ही उसको आप भंडारित करें। यही मुख्य रूप से सुझाव है। टाइम पर बुआई करें, उचित बीज का चुनाव करें, कीट व्याधि का कंट्रोल करें, और खेत में जल जमाव की स्थिति नहीं आने दें।
9: जी सर। तो किसान भाई बहनों, जिन बातों का ध्यान रखने के लिए सर ने कहा, उन बातों का ध्यान रखेंगे तो उम्मीद है कि आप बेहतर फसल आपके खेत में होगा और आपकी आमदनी भी बेहतर होगी। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
10: धन्यवाद। धन्यवाद।
9: किसान भाई बहनों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आप अपनी फसलों का अपना बहुत ही अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। नमस्कार। उन्नत कृषि,
11: नमस्ते क्लास। टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है, और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
12: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
11: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना है। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
4: सुनो सुनो सुनो सभी, एक जरूरी बात, आया मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण फिर एक बार। अगर आपके घर या पड़ोस में है 5 साल या उससे छोटे बच्चे जिनका कोई भी टीका छूट गया हो तो सोचते क्या हो, जल्दी से आशा दीदी से करो बात। बच्चों को स्वास्थ्य केंद्र है लेकर जाना और उनका टीकाकरण है।

0: टीको, ये मौसम है टीकाकरण करवाने का, तो सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
2: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
5: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
4: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
5: आपकी सेहत की बातें,
4: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
5: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
4: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
5: वो कहाँ पर?
4: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
5: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
4: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 22 से 26 जुलाई के दौरान आसमान में घने बादल छाए रहेंगे और जिले में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी चलने और हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 26 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 90% और दोपहर में 70 से 80% रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए, जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दे, पिछले कुछ दिनों में हुई वर्षा का लाभ उठाइए और आगे भी संभावना है कि वर्षा होगी, तो ऐसी स्थिति में धान की रोपाई के लिए व्यवस्था सुनिश्चित कर ले। रोपाई से पहले प्रति हेक्टेयर 25 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस, 30 किलोग्राम पोटाश और 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट का प्रयोग करें। आपको बता दें कि निचली जमीन के चारों ओर मजबूत मेड़ यानी कि बांध बनाकर वर्षा जल का संचयन कर ले, ताकि जरूरत पड़ने पर आप वर्षा के जल का सिंचाई में उपयोग कर सके। जो किसान भाई बहन श्री अन्न की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दे, मोटे अनाजों की खेती के लिए उचास भूमि का चयन करें। मड़वा की वकुला KMR 316, GPU 67 और VL 379 राजेंद्र मड़वा RU 8 और RU 3। और आपको बता दे कौनी की अनुशंसित किस्में हैं राजेंद्र कौनी 1, आप इन किस्मों की बुआई कर सकते हैं। मक्का की खेती करने वाले किसान भाई बहन ध्यान दे, खरीफ मक्का की बुआई आसमान साफ रहने पर ही करें। खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और ध्यान रखें कि बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नेत्रजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश जरूर डालें। अनुशंसित मक्का

गोबर की खाद जरूर डालें। आपको बता दें इस समय केला के स्वस्थ सकर्स की रोपाई करें। लंबी किस्मों जैसे अल्पान, कंथली, मालभोग, चिनिया, G9 और बोनी किस्में जैसे ग्रैंड नेन, रोबस्टा, बसराई का चयन करना सबसे फायदेमंद होता है। लंबी किस्मों के लिए 2x2 मीटर और बोनी किस्मों के लिए 1.5x1.5 मीटर की दूरी रखें। प्रत्येक गड्ढे में 5 किलोग्राम गोबर की खाद, 500 ग्राम अरंडी की खली, 300 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट, 100 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश और 10 ग्राम कार्बोफ्यूरान मिलाना ना भूलें। रोपाई से पहले सकर्स को कार्बन डाइजिंग 2 ग्राम प्रति लीटर पानी से उपचारित करें। किसान भाई बहनों, टिश्यू कल्चर पौधे का उपयोग अधिक उत्पादन के लिए लाभकारी होता है। पशुपालक भाई बहन ध्यान दें, पशुओं में PPR, MFD यानी कि खुरपका मुंहपका और HS यानी कि गला घोटू, इन रोगों का खतरा अधिक है। इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण करवाएं, उन्हें साफ और सूखा रखें और बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। रोग के लक्षण अगर दिखाई दे तो तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें और ध्यान रखें कि पशुओं की बिना जरूरत के आवाजाही पर नियंत्रण रखें। गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए जून माह में अगर टीके नहीं लगाए गए हों तो इस महीने में टीके जरूर लगवा दें। पशुओं को संतुलित और पौष्टिक आहार दें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खान पान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

0: राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है NCERT द्वारा प्रकाशित पुस्तक मिलकर सोचे पर आधारित किशोर बच्चों के नैतिक विकास हेतु ध्वनि कार्यक्रमों की श्रृंखला। इस श्रृंखला में आज प्रस्तुत है कार्यक्रम
1: स्वभाव और व्यवस्था। अनीता स्वभाव से ही बड़ी साफ सुथरी लड़की थी। अपनी आदतों में, अपने पहनावे में

0: हमेशा से वो व्यवस्थित थी। उसके बाल सदा अच्छी तरह दो चोटियों में संवरे होते, जिन पर उसकी पोशाक से मेल खाते रिबन होते, जो दोनों चोटियों में सुंदर रूप से बंधे होते। वो हमेशा सादे कपड़े पहनती, जो कि धुले हुए तथा इस्त्री किए हुए होते। वो जो भी जूते या चप्पल पहनती, वे सफेद अथवा भूरे रंग की पॉलिश किए हुए होते। वो केवल 12 साल की थी और देखने वाले हैरान रहते थे कि इस छोटी सी अवस्था में वो किस तरह इतनी सुव्यवस्थित है। जो बस्ता वो स्कूल लेकर जाती, वो भी देखने लायक होता। उसकी किताबें बहुत साफ ढंग से जमी रहती, उसकी कॉपियां भी एक के ऊपर एक रखी रहती, उसकी लिखाई भी बहुत सुंदर थी और वो हमेशा हाशिया खींचने का ध्यान रखती। बाएं हाथ के ऊपर के कोने में वो हमेशा दिनांक लिखती और हर अभ्यास के बाद एक रेखा अवश्य खींचती, क्योंकि उसकी शिक्षिका ने उसे उसकी आवश्यकता समझाई थी। अनीता घर में चीजों को सहेज कर रखने में अपनी माँ की मदद करती, इसलिए उसकी माँ को उस पर बहुत गर्व था। अनीता अपने सहपाठी विजय से बहुत प्रभावित थी, क्योंकि विजय बहुत बुद्धिमान था। वे दोनों एक दूसरे को कहानियों, कविताओं की किताबें देते और विभिन्न घटनाओं के विषय में बातें करते। परंतु विजय अलग स्वभाव का था। उसका अव्यवस्थित ढंग और लापरवाह स्वभाव अनीता के लिए प्रायः चिंता का कारण होता था। विजय अपने कपड़ों की जरा भी परवाह नहीं करता था। उसकी कमीज के बटन अक्सर गायब रहते, पैंट पर कभी इस्त्री ना होती और उसके जूते भी बहुत साफ नहीं होते थे। उसके बाल बिखर कर सदा माथे पर लटकते रहते थे। वो साफ सुथरा रह सकता था और चीजों को संभाल कर व्यवस्थित रूप से रखना भी वो जानता था। ये बात बिल्कुल सच्ची थी, क्योंकि जब भी अध्यापक उसके साथ सख्ती का व्यवहार करते तो उसकी आदतों में थोड़ा सुधार आ जाता, लेकिन जल्दी ही वो पुरानी आदतों का शिकार हो जाता और फिर से लापरवाह हो जाता। अनीता विजय से हमेशा कहती थी कि जब हमारे चारों ओर एक व्यवस्था होती है, तब हमें अपूर्व संतोष मिलता है। अध्यापिका ने विजय को व्यवस्था की आवश्यकता को समझाने के लिए एक दूसरा रास्ता अपनाया। उन्होंने उसे कक्षा की व्यवस्था का भार सौंप दिया। उसने आपत्ति की कि वो इस तरह के कार्य के लिए उपयुक्त नहीं है, परंतु अध्यापिका ने जोर दिया और अनीता के आग्रह पर वो मान गया। इसका अर्थ था कि उसे कक्षा की हर वस्तु के प्रति सचेत होना था। अब उसे 10 मिनट पहले आना पड़ता और देखना पड़ता कि टेबल कुर्सियां ठीक से रखी हैं कि नहीं। यदि नहीं तो उन्हें ठीक करना पड़ता। उसे ये भी देखना होता कि खिड़कियों में चिटकनियां लगी हैं और वे गंदी तथा अधखुली तो नहीं है। उसे इस बात का भी ध्यान रखना पड़ता कि कक्षा का टाइम टेबल तथा अन्य चित्र दीवारों पर सीधे लगे हैं। क्या तुमने ध्यान दिया कि कई स्कूलों में दीवारों पर चित्र लगे होते हैं, परंतु उनमें से कुछ साधारणतया 45 डिग्री पर झुके होते हैं। सब लोग उन्हें देखते हुए निकल जाते हैं और कोई भी उन चित्रों के भाग्य पर दया नहीं दिखाता। विजय को अपने सहपाठियों की पोशाकों और जूतों का भी निरीक्षण करना होता जब वे कक्षा में आते। वो अपने से कमजोर लड़कों पर तो रौब जमाता, परंतु कक्षा के बड़े लड़के उसे दूर रखते। वे उसे चिढ़ाते, परंतु वे सब उसके साथ सहयोग भी करते। सारी कक्षा अब साफ सुथरी दिखने लगी। अधिक महत्वपूर्ण बात तो ये थी कि उसे ही सारी कक्षा के सामने सफाई का उदाहरण पेश करना था, और ये देखने की आवश्यकता थी कि उसके अपने जूतों के फीते ठीक ढंग से बंधे हैं और उसके बालों में ठीक ढंग से कंघी हुई है। अनीता को विजय का ये बदला रूप बहुत अच्छा लगता और वो मन ही मन हर्षित होती। क्या तुमने ध्यान दिया है कि जब तुम अपने ऊपर कोई उत्तरदायित्व लेते हो तब तुम अधिक जागरूक रहते हो? इस कारण विचारों में और स्पष्टता आ जाती है और तुम्हारी उलझनें दूर हो जाती हैं। इसका अर्थ है कि तुम्हारा मस्तिष्क व्यवस्थित है और इस कारण वो बाहर की सब वस्तुओं को भी व्यवस्थित रखता है। आंतरिक व्यवस्था ही बाहरी व्यवस्था को जन्म देती है। अंदर की ये व्यवस्था स्वभाव की वस्तु नहीं, ये अवलोकन और सतर्कता से आती है और हम सब यदि चाहें तो व्यवस्थित हो सकते हैं। आदतें एक यांत्रिक वस्तु है जो प्रशिक्षण का परिणाम है, परंतु व्यवस्थित रहने की लालसा बहुत सुंदर वस्तु है जो व्यक्ति के अंतर्मन से आती है। तुम्हारा स्वभाव कैसा है? क्या तुम साफ सुथरे कपड़े पहनते हो? अपनी किताबों और कॉपियों को सावधानी से रखते हो? अथवा तुम इस प्रकार के व्यक्ति हो जिसे बार बार याद दिलाने की आवश्यकता है? क्या तुमने ध्यान दिया है कि अपनी रोजाना की जिंदगी में तुम कितने व्यवस्थित हो? क्या तुम कुछ बातों को आजमाना चाहोगे, जैसे साफ सुथरे कपड़े पहनना, अपने बालों में कंघी करना और साफ रहना, जूतों के फीते बांधना, जूतों और चप्पलों पर नियमित रूप से पॉलिश करना, हर सुबह अपना बिस्तर ठीक करना, खाने के पहले हाथ साफ करना, हमेशा समय का पाबंद रहना, कागज आदि फेंकने के लिए कूड़ेदान का प्रयोग करना, सड़क उसी समय पार करना जब सिग्नल अनुमति दे, किसी पिकनिक या अन्य पार्टी के बाद जगह को साफ करना, आवश्यकता पड़ने पर दूसरों को धन्यवाद देना, किसी टेबल अथवा कुर्सी पर धूल दिखने पर उसे साफ करना, सार्वजनिक वस्तुओं का उपयोग करते समय सावधानी बरतना, नौकरों से मृदु व्यवहार करना आदि। या फिर कुछ इन बातों की तरफ भी तुम ध्यान दे सकते हो। क्या तुम्हें जल्दी जल्दी खाने की आदत है? क्या तुम साधारणतया जोर से बोलते हो? दूसरे जब बोल रहे हो तब क्या तुम उनके बीच में बोलते हो? जब तुम्हें जल्दी होती है तो क्या तुम कतार तोड़ते हो? रास्ते चलते क्या तुम पौधों की पत्तियां तोड़ते हो? इस तरह की अन्य कई बातें हैं। तुम इस प्रकार की अपनी अन्य कुछ आदतों की सूची बना सकते हो और अपने दैनिक जीवन में उन पर ध्यान दे सकते हो।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विषय संयोजन एवं आलेख अहिल्याचारी, अनुवाद राजी रमणन, निर्माण संचालन प्रभुदयाल खट्टर, ध्वनिंकन दीपक पांडे, तकनीकी निर्देशन सतीश लाड़े, वाचन स्वर सुचित्रा गुप्ता तथा निर्माण एवं प्रस्तुति रमेश रानी शर्मा।

0: खसरा कितनी गंभीर बीमारी है। टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MRT का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टीको क्यों है इतने जीरो?
5: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
5: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: तो इसका हल क्या है?
5: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा, सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है,
0: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
5: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
6: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर AC चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
7: PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
8: हर घर सूर्य घर।
9: कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 ग्रीन FM। उन्नत कृषि।
10: नमस्कार, आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं अनु और आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे खास कार्यक्रम उन्नत कृषि कार्यक्रम में। तो आज जो उन्नत कृषि कार्यक्रम में हम जानेंगे अरहर दाल के बारे में, इसके प्रभेदों का चयन हम कैसे करें, कौन सा प्रभेद हम लें, सारी जानकारी आज हमारे विशेषज्ञ के तौर पर हमारे बीच उपस्थित हैं डॉक्टर रफत सुल्ताना, वो बताएंगे आपको। तो सबसे पहले मैम आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
11: थैंक यू सो मच।
10: मैं बता दूं सारे हमारे लिसनर्स को, हमारे श्रोताओं को, कि मैम असिस्टेंट प्रोफेसर हैं प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स डिपार्टमेंट में। तो सबसे पहले तो दलहनी फसलों की हम बात कर रहे हैं, तो अरहर की खेती का क्या महत्व है?
11: थैंक यू अनु सो मच। जैसे कि हम लोग सभी जानते हैं कि दलहनी फसलें ना सिर्फ इंसान और पशुओं के पोषण के लिए बेहद ज़रूरी है, बल्कि जिस ज़मीन पर इन्हें उगाया जाता है उसे भी ये आगामी फसलों के लिए उपजाऊ बना देती है। दलहन की खेती से मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है। दलहनी फसलों की जड़ों में पाए जाने वाले लाभदायक बैक्टीरिया जो कि राइजोबियम है, वो वायुमंडल से नाइट्रोजन को खींचकर न सिर्फ अपना पोषण करता है, जिस मिट्टी में ये दलहनी फसलों को लगाया जाता है उसमें भी ये नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ा देता है
10: जी।
11: इसलिए दलहन की खेती का को हम सहजीवी विधि से मिट्टी का उपजाऊपन बढ़ाना भी कहा जाता है।
10: अच्छा,
11: अब हम सभी जानते हैं कि दलहन फसलें जिस मिट्टी में लगाई जाती है उसके लिए तो काफ़ी उपयोगी है ही, बट हमारे शरीर के लिए भी आपको पता है कि प्रोटीन बहुत ही लाभदायक होता है। यदि मानव शरीर को उपयुक्त मात्रा में प्रोटीन न मिले तो हमारे शरीर की मानसिक एवं शारीरिक विकास रुक जाता है। अरहर के दाल को प्रोटीन का स्रोत माना जाता है, इसलिए अरहर बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारी थाली में।
10: जी,
11: अरहर की दाल में लगभग 21 से 22 प्रतिशत तक प्रोटीन पाया जाता है। अरहर की बाजारी भाव भी काफ़ी अच्छी होती है, जिससे किसान लोग काफ़ी अच्छी कमाई भी कर लेते हैं। पर चिंताजनक बात यह है कि बिहार में दलहनी फसलों का जो क्षेत्रफल है वो लगातार कम होता जा रहा है, घटता जा रहा है, जो कि बहुत ही चिंताजनक विषय है।
10: बिल्कुल,
11: आज लगभग सिर्फ 6 लाख हेक्टेयर में दलहन की खेती बिहार में होती है। इसमें अगर आप अरहर की बात करें तो ये मात्र 27,000 हेक्टेयर में इसे लगाया जाता है।
10: अच्छा,
11: अगर हमारे देश में दलहनी फसलों और दूसरे दलहनी फसलों की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो क्षेत्रफल में लगाया जाता है वो मूंग है, वो 1,71,000 हेक्टेयर में लगाया जाता है। उसके बाद मसूर आता है जो लगभग 1,45,000 हेक्टेयर में लगाया जाता है। फिर जा कर के आपका चना आता है जो लगभग 67,000 हेक्टेयर में लगाया जाता है। पर अरहर सिर्फ 27,000 हेक्टेयर में लगाया जाता है, जो कि अगर रकबा के हिसाब से सोचा जाए तो ये चौथे नंबर पे आता है
10: जी।
11: बिहार में। और अगर आप ये जान करके बहुत आपको आश्चर्य होगा कि अगर हम इसकी उत्पादकता की बात करें अरहर की, तो पूरे देश में इतनी उत्पादकता नहीं जितने कि हमारे बिहार राज्य की है। बिहार राज्य की जो उत्पादकता है अरहर की वो 1,639 केजी प्रति हेक्टेयर है
10: जी,
11: जबकि जो हमारे जो नेशनल एवरेज है उसकी जो प्रोडक्टिविटी यानी उत्पादकता जो है वो लगभग 776 केजी प्रति हेक्टेयर है। इसके बावजूद भी हम बहुत ही कम एरिया में ही लगा पाते हैं,
10: बहुत ही कम क्षेत्रफल में जी।
11: तो जैसे कि हम जानते हैं कि ये ज़मीन को, जो अरहर होता है ज़मीन को से पोषण लेकर उसे वापस लौटाने के लिहाज से काफ़ी इसका कोई जवाब नहीं है। ये इसलिए है कि जो अरहर का जो पौधा होता है वो जो नाइट्रोजन फिक्सेशन जो करता है वो लगभग 40 केजी प्रति हेक्टेयर की दर से करता है। एक अगर एक सीज़न में आप अरहर लगाते हैं, एक हेक्टेयर में लगाते हैं, तो वो 40 केजी नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करता है जीवाणुओं को द्वारा, क्योंकि इसकी जो जड़ जो होती है ना वो मूसलाधार जड़ कहलाता है। ये बहुत लंबी होती है, टैप रूट इंग्लिश में इसे कहते हैं।
10: अच्छा।
11: जिससे इस जिससे जिस मिट्टी पे भी इसे लगाया जाता है उसमें नाइट्रोजन की अच्छी स्थिरीकरण हो जाता है, फिक्सेशन होता है और वो बहुत लाभदायक होता है।
10: तो यहाँ पर अरहर की खेती के महत्व के बारे में आपने जाना कि कितना ज़रूरी है हमारे शरीर के लिए अरहर, और हमारे थाली में इसकी क्या महत्ता है, सारी चीज़ें मैम ने आपको बताई हैं। अब खेती की ओर बढ़ते हैं, तो मैम भूमि का चयन कैसा होने चाहिए और खेत की तैयारी कैसे करनी चाहिए किसान भाइयों को?
11: देखिए, जैसे हम सभी जानते हैं कि दलहनी फसलें जो होती है वो जो है उसमें अरहर एक खरीफ में लगाया जाता है। खरीफ का मतलब है कि ये जब बारिश के मौसम में इसको लगाया जाता है
10: जी।
11: इसलिए इसका जो है ना, आप जब आप इसकी बुआई करते हैं तो आपको भूमि का चयन पे बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है
10: जी।
11: ये थोड़ी सी भी अधिक मात्रा में अगर मिट्टी में जल भराव रहेगा तो अरहर की खेती बर्बाद ही हो जाएगी। अच्छे से क्या बर्बाद हो जाएगी, इसलिए बहुत इसकी भूमि के चयन कैसे करें उसकी जानकारी मैं थोड़ा बहुत दे सकती हूँ अभी यहाँ पे। तो अरहर की खेती हर तरह की मिट्टी में वैसे की जा सकती है, लेकिन लवणीय या क्षारीय मिट्टी में इसकी खेती संभव नहीं है। अलबत्ता अच्छी जल निकासी वाली उपजाऊ दोमट मिट्टी, अगर आप मीडियम ड्यूरेशन और अल्प अवधि वाली अरहर लगाते हैं तो उसके लिए उपजाऊ दोमट मिट्टी बहुत अच्छी होती है। लेकिन अगर आपकी जो बिहार में ज़्यादातर लगती है वो होती है दीर्घ अवधि वाली, मतलब लॉन्ग ड्यूरेशन वैरायटी लगाई जाती है यहाँ पे।
10: अच्छा।
11: तो उसके लिए जो है आपको अगर काली मिट्टी जिसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है,
10: अच्छा,
11: अगर वो वैसे खेत हो तो उसका चयन करें
10: काली मिट्टी वाली।
11: अरहर की खेती में पानी का ठहराव हरगिज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा पानी मिलने की वजह से अरहर के पौधों में अनावश्यक वृद्धि भी हो जाएगी तथा उपजाऊ कम होने की आशंका रहती है। साथ ही फसल पर कई बीमारियां और कीटों का हमला बढ़ने का जोखिम होता है। जल भराव में वाटर लॉगिंग कंडीशन एक कहते हैं, उसमें एक जो है फंगस जो होता है वो है फाइटोथोरा, उसका इन्फेस्टेशन मतलब उसकी जो वो बीमारी लग जाती है। अगर जल भराव भी है और फाइटोथोरा है तो आपका जो पौधा है वो 80 से 100% तक वो आपकी क्षति होगी। अरहर के खेत में मई, आप तैयारी के लिए अरहर के खेत में मई जून की गर्मियों में 2 से 3 बार देसी हल या कल्टीवेटर से गहरी जुताई करके पाटा लगाना चाहिए। बुआई हल्के पीछे कुंड लगाकर करनी चाहिए। सख्त मिट्टी और ज़्यादा बारिश वाले इलाके में अरहर की के पौधे का तना फाइटोथोरा बीमारी के चपेट में आकर गलने का खतरा काफ़ी बढ़ जाता है, जो कि अभी अभी हमने आपको बताया। इससे स्वास्थ्य पौधे का घनत्व बहुत कम हो जाता है और पैदावार काफ़ी घट जाता है
10: जी। और जल निकासी की व्यवस्था बहुत अच्छी होनी चाहिए।
11: इसके लिए जैसे अगर जहाँ पर भी जल भराव का समस्या है तो वहाँ जल भराव वाले इलाके में अरहर की बुआई के वक्त इसके कतारों के बीच में 1.5 से 2 फीट की दूरी पर मेड़ बनाकर उसे अरहर की बुआई करना चाहिए।
10: अच्छा,
11: उससे पैदावार ज़्यादा मिलती है। मेड़ों पे अरहर की बुआई करने से सिंचाई में 25 से 30% पानी भी बचता है, क्योंकि आपने यहाँ बिहार में अब देखे होंगे कि जो धान के किसान हैं वो मेड़ों पर अरहर की खेती करते हैं, उससे जो पानी जो धान में रहता है वो आपको साथ साथ अरहर में मिल जाता है, और बाकी जो न्यूट्रिएंट भी होते हैं वो भी अरहर को मजबूत बनाते हैं। और अरहर की काफ़ी अच्छी खेती यहाँ पे मेड़ों पे होती है। अरहर की खेती के 3 तरीके बहुत ही प्रचलित हैं और हर एक के लिए पौधे और कतारों के बीच फासला रखने के लिए अलग अलग दूरियाँ अपनाने की सलाह दी जाती है।
10: तो मैम ये 3 तरीके कौन कौन से हैं, ये जानना चाहेंगे हम।
11: देखिए, देश में अरहर की खेती जैसे 3 तरीके से प्रचलित हैं, उसमें से में कुछ अगेती अरहर होती हैं, कुछ मध्य अवधि वाली अरहर की प्रजाति होती है, कुछ दीर्घकालिक अरहर की प्रजाति होती है। तो तीनों के लिए अलग अलग है। जैसे अगेती अगर अरहर लगाते हैं जैसे शॉर्ट ड्यूरेशन जिसको कहते हैं, वो अगर लगाते हैं तो इसकी जो ये जो प्रजाति है ये मध्य और दक्षिण भारत में भी बहुत ज़्यादा है, इसका चलन है। यहाँ पर तो बिहार में बहुत ही कम है अल्प अवधि वाली। तो इसमें क्या है कि आप इसको आप 15 जून तक बुआई कर दीजिए
10: जी।
11: इसकी बुआई जो है आप 15 जून तक कर दीजिए, और जबकि मध्य और दीर्घकालिक जो है उसकी बुआई जो है आप 1 से लेकर 31 जुलाई के बाद कीजिए। तो एक तो इसमें बुआई का टाइम हो गया। इसमें ये भी है कि अगर आपने जैसे आपका जो अल्प अवधि वाली जो है उसकी जो पंक्ति से पंक्ति जो दूरी होती है उसको भी कम रखने की ज़रूरत है, वो लगभग आप 60 सेंटीमीटर रखिए। और जबकि जो दीर्घकालिक अवधि वाली प्रजातियां हैं उसके लिए आप 70 से 75 सेंटीमीटर की दूरी रखिए, तो आपका आपकी फसल अच्छी होगी। और ये आप 31 जुलाई तक आप आराम से लगा सकते हैं।
10: और बात करते हैं अपने बिहार राज्य की, तो अरहर की कौन कौन सी प्रजातियां हमारे राज्य यानी बिहार के लिए सही है और उनमें सबसे अच्छा कौन सा है?
11: देखिए, जैसे बिहार में खरीफ में लगाया जाता है अरहर, और मगर लेकिन उसकी जो टाइमिंग होती है वो अलग अलग है
10: जी।
11: जो 1 से 31 जुलाई के बीच में लगाने वाली अरहर है जो अच्छी किस्म है वो है बहार, पूसा 9, नरेंद्र अरहर 1 और मारवीय अरहर 13
10: जी।
11: जो बहार जो है वो भागलपुर के लिए उपयुक्त है, भागलपुर क्षेत्र में आप लगा सकते हैं। इसकी उपज जो होती है 25 से 23 kg प्रति हेक्टेयर है। इसकी जो पकने की अवधि है वो 265 से 275 है केजी, 275 दिन है। पूसा 9 जो है वो आपका 250 से 260 दिनों की फसल है और ये 20 से 25 हेक्टेयर उपज देती है, और ये भी भागलपुर और उत्तरी बिहार के लिए
10: सही
11: उपयुक्त है। एक है नरेंद्र अरहर 1, जो कि 260 से 270 दिनों में यानी कि 9 महीने में पक्के तैयार हो जाती है। आप 31 जुलाई तक लगाइए और 20 से 25 इसमें भी केजी क्विंटल प्रति हेक्टेयर इसकी उपज होती है
10: जी।
11: इसमें रोग रोधी क्षमता भी है। मिश्रित खेती हेतु उत्तरी बिहार के लिए ये काफ़ी उपयुक्त है। मालवी अरहर 13 आपने देखा होगा कि मुंगेर क्षेत्र में लगाया जाता है और ये जो है थोड़ी इससे कम है, 8 महीने की फसल है और इसको आप, इसको भी आप 15 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक लगाएंगे, आपको लाभ होगा। जैसे ही आप बारिश आती है, जैसे ही मानसून शुरू होता है, आप पर्याप्त मॉइस्चर हो जाए खेत में, आप इसकी बुआई कर सकते हैं। ये मुंगेर एवं भागलपुर दोनों ज़िलों के लिए उपयुक्त है। फिर आपका आता है दो, जो हमने कहा है कि अल्प अवधि की, वो उसको 1 जून से लेकर 15 जून तक लगाइए। अगर ये ऐसे किसान लगा सकते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बारिश उस वक्त तक नहीं आती है, तो जिनके पास सिंचाई हो और जिनकी भूमि ऊंची हो, जहाँ पे जल निकास की पूरी तरह जल निकासी का पूरा व्यवस्था हो, आप वहाँ पर लगाइए। और उसमें से एक PA 291 है, ये पंतनगर की वैरायटी है।
10: अच्छा।
11: जो कि हमारे बिहार में बहुत ही अच्छा कर रही है। और ये जो है अभी नई है, क्योंकि अभी जो भी भारत सरकार का रिकमेंडेशन है कि आप 10 साल से कम अवधि वाले ही वैरायटी को का चयन करें तो ये उसके अंतर्गत आता है। तो ये PA 291 ये शॉर्ट ड्यूरेशन है, मतलब अल्प अवधि की है, और ये उकठा रोग जो होता है विल्ट, वो उकठा रोग से प्रतिरोधी है।
10: अच्छा।
11: और एक और जो है, जो अभी हम लोगों का जो एक सीड हब का प्रोग्राम चल रहा है, और उसमें हम लोग भारत सरकार के साथ मिलकर काम कर रहे हैं
10: जी।
11: उसमें IPA 203, ये IIPR कानपुर की वैरायटी, जो कि हमारे ये नॉर्थ ईस्ट प्लेन जोन के लिए रिकमेंडेड है, इसमें बिहार भी आता है। तो ये जो है 280 दिनों का ये है, आप अप्रैल में इसको हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, इसकी मतलब कटाई कर सकते हैं। और इस वैरायटी के जो हम एक खूबी बताएंगे वो ये है कि ये जो IPA 203 है, आपने सुना होगा कि यहाँ पर अरहर की जो सबसे से समस्या जो आती है लंबी अवधि वाली में, कि इसमें फूल झड़ने की समस्या दिसंबर में हो जाती है। जब भी टेम्परेचर लो होता है तो फूल झड़ जाते हैं, जिससे किसान बहुत परेशान हो जाता है और कई किसान तो छोड़ भी देते हैं कि भाई अब इसके बाद फली आएगी कि नहीं आएगी। अब किसान बहुत परेशान रहते हैं, तो उसके लिए ये जो किसान ऐसा सोचते हैं उसके लिए ये काफ़ी अच्छी प्रजाति है, क्योंकि इसमें जो पहली बार जो फूल आती है ना, वही आती है आपका जनवरी में।
10: अच्छा।
11: तो जो जो जो पहले जो एक बार फूल झड़ने के बाद दोबारा फूल से जो भी होता है उससे तो लॉस तो होता ही है ना।
10: बिल्कुल।
11: तो लॉस होता है, तो वो लॉस जो है वो बहुत ही कम होता है, कम होता है, और इसकी जो उपज क्षमता भी है काफ़ी अच्छी है। और PA 291 की जो बात कर रहे थे वो अल्प अवधि की है, 150 से 161 दिनों की प्रजाति है
10: जी।
11: एक और है जो कि हम लोग सितंबर अरहर के बोलते हैं, उसमें आप PUSA 9 को लगा सकते हैं। शरद भी है, पर शरद की आपको बीज मिलेगी नहीं, बिहार के लिए रिकमेंडेड है पर वो बीज उसकी अभी उपलब्ध नहीं है, इसलिए मैं उसके बारे में ज़्यादा नहीं बोलूँगी। पर हाँ, PUSA 9 जो है, PUSA 9 को आप सितंबर में लगा करके भी आप कम से कम 15 से 16 क्विंटल प्रति हेक्टेयर आप
10: प्राप्त कर सकते,
11: हाँ, उत्पादकता
10: प्राप्त
11: कर सकते हैं। ये आकस्मिक फसल के रूप में तथा दियारा क्षेत्र के लिए काफ़ी उपयुक्त है।
10: तो श्रोताओं, आज यहाँ पर पूरी जानकारी मिली है आपको डॉक्टर रफत सुल्ताना मैम से। अरहर में प्रभेदों का चयन आपको कौन कौन सा करना चाहिए, खास तौर पर मैम ने बिहार राज्य के बारे में बताया और अपने शहर भागलपुर और भी आसपास के क्षेत्रों के बारे में बताया कि आप वहाँ पर कौन से प्रभेद को लगा सकते हैं, कौन सा प्रभेद आपके लिए उपयुक्त होगा। तो आशा करते हैं कि आज का ये वार्ता आपके लिए ज़रूर कारगर साबित होगा, आप कुछ जानने को मिला होगा आपको और कुछ समझने को ज़रूर मिला होगा। तो आज के लिए इतना ही, अगले दिन एक अलग विषय के साथ फिर से हम हाजिर होंगे इसी फ्रिक्वेंसी पर 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। तब तक के लिए नमस्कार। उन्नत कृषि,
12: नमस्ते क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
13: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने, हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
12: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना है। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
4: सुनो सुनो सुनो सभी, एक जरूरी बात, आया मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण फिर एक बार। अगर आपके घर या पड़ोस में है 5 साल या उससे छोटे बच्चे जिनका कोई भी टीका छूट गया हो, तो सोचते क्या हो, जल्दी से आशा दीदी से करो बात। बच्चों को स्वास्थ्य केंद्र है लेकर जाना और उनका टीकाकरण है करवाना।
14: सुहाना सफर और ये मौसम हसी,
4: टीको ये मौसम है टीकाकरण करवाने का, तो सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
15: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
16: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर 0 अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना 0 बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
17: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
18: हर घर सूर्य घर।
10: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा, आपका स्वागत करती हूं किसान भाई बहनों को संबोधित हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। उन्नत कृषि में आज हम बात करने वाले हैं खरीफ तिल के बारे में, किस प्रकार से इसकी खेती करनी चाहिए और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इस बारे में विस्तार से चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर खुशबू चंद्रा। मैम आप हैं अनुवांशिकी पौधा प्रजनन विभाग से, आप हैं असिस्टेंट प्रोफेसर कम जूनियर साइंटिस्ट। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
19: बहुत बहुत धन्यवाद। सो सभी किसान भाइयों और बहनों को मेरा नमस्कार।
10: तो मैम सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि खरीफ में तिल की खेती क्यों करनी चाहिए?
19: जैसे आप जानते हो कि खरीफ में, खरीफ एक ऐसा सीजन है जहाँ पे आप सबके दिमाग में खरीफ सुनने के बाद सबसे पहले आता है कि हम राइस की खेती, पैडी की खेती कर सकते हैं। लेकिन अगर कुछ वैसे किसान भाई जिनके पास राइस लगाने के बाद, पैडी लगाने के बाद कुछ ज़मीनें बच जाती हैं, या कुछ वैसे इलाके बिहार के जो पूरी खरीफ में लगातार वर्षा नहीं हो पा रही है, मतलब आप कह लो वहाँ पे रेनफेड कंडीशन है, उनको इरिगेशन की फैसिलिटी नहीं है, तो वैसे जगह के लिए मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप तिल को भी एक ऑप्शन की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, जहाँ तिल बेसिकली आप देखोगे कि ये कम पानी में बहुत अच्छा पैदावार देती है। आप इसमें देखोगे तो तेल की मात्रा 45-50% होती है। और जहाँ तक कि हम बात करते हैं तिल की, काले और सफ़ेद तिल, सफ़ेद तिल में जैसे आप देखोगे कि उसकी हम बहुत प्रकार से मार्केटिंग कर सकते हैं, जैसे तिलकुट बना सकते हैं, तिल पट्टी बना सकते हैं, चिक्की बना सकते हैं। तो इन्हीं विषयों की वजह से आप देखोगे कि जो तिल है हमारा, वो खरीफ सीजन में एक प्रमुख तिलहनी क्रॉप के रूप में इसको हम ले सकते हैं।
10: तो मैम तिल की खेती के लिए कौन सी जलवायु और मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है?
19: बिल्कुल, जैसे आप देखोगे तिल तिल बेसिकली गर्मा तिल भी लगाते हैं, खरीफ में भी लगाते हैं। खरीफ में भी आप देखोगे कि नॉर्मली खरीफ में बिल्कुल टेम्परेचर 25 डिग्री से नीचे नहीं जा सकता जाता है। आप देखोगे 25-30 डिग्री का टेम्परेचर बना रहता है पूरे खरीफ सीजन में, तो ये एक उपयुक्त तापमान है। उसके बाद आप देखोगे कि जब हम मिट्टी की बात करेंगे तो हमें इसमें एक, आप कह लोगे कि एक तरह की बलवाई दोमट मिट्टी चाहिए, जिसमें कि पानी का रुकाव ज्यादा ना हो सके। तो इस प्रकार की मिट्टी है और जहाँ पे आप देख लोगे सिंचाई की प्रबंधन सिंचाई करने के लिए बहुत सारी फैसिलिटीज नहीं है, आप सिर्फ बारिश के पानी पे भी आधारित हो और वैसे कुछ इलाके जहाँ पे कम बारिश हो रही है वहाँ पे इस फसल को आप ऑप्शन के रूप में ले सकते हो।
10: और खेत की तैयारी कैसे करनी चाहिए?
19: हाँ, खेत की तैयारी की बात जैसे आप करें तो देखो, आप बीज इसकी बहुत छोटी होती है बिल्कुल, तो आप उसमें क्या कर सकते हो कि ऐसे छोटे किस्म वाले फसलों के लिए जो आपकी मिट्टी होनी चाहिए, हाथ में जैसे आप उठा के देखोगे ना तो बिल्कुल एकदम रेतीला भुरभुरा होना चाहिए। तो इस तरीके से सबसे पहले एक बार आप मिट्टी को कल्टीवेटर जो आता है जिसको आप हल या कल्टीवेटर से गहरी जुताई कर दें पहले एक बार, उसके बाद लगातार से दो तीन बार आप हैरो या कल्टीवेटर लगा करके बिल्कुल से कर दे। एक बार पहली गहरी जुताई हो गई, फिर दो तीन बार हमने कल्टीवेटर चला दिया, उसके बाद अंतिम जुताई जब हम पाटा लगा करके उसको प्लेन समतल करते हैं, उसके बाद आप हाथ में मिट्टी उठा के देखोगे जब भुरभुरा हो गया है तो अब आपका खेत तैयार हो गया है तिल के लिए।
10: मैम, जब हम खरीफ तिल की बात करते हैं तो इसके लिए कौन कौन सी किस्में उपयुक्त रहती है?
19: बिल्कुल, जहाँ तक कि मैं आपको बताऊँ कि जब हम लोगों ने खरीफ और समर में जब हमने सर्वे किया तो जो जो आपका किसान है उनके लिए सबसे पॉपुलर वैरायटी जो हमने उनके खेत में जाकर के देखा वो हमारी GT5 थी, GT6 है जो हमारी सफ़ेद तिल है, GT10 है और कृष्णा ये हमारी काली तिल की वैरायटी है। उसके अलावा हमारा जो प्रगति जो किसान MTU 75 के नाम से मार्केट में खरीद के लाते हैं ये भी सफ़ेद तिल की वैरायटी है, शेखर हमारी सफ़ेद तिल की वैरायटी है, फिर TKG 22 ये भी हमारी सफ़ेद तिल की वैरायटी है और RT 351 ये भी हमारी सफ़ेद तिल की वैरायटी है। तो मतलब आप देखोगे अमूमन यहाँ जो हमारा बिहार का इलाका है मार्केटिंग पर्पस के हिसाब से किसान का जो रुझान रहता है वो आपका सफ़ेद तिल की तरफ ज़्यादा होता है अपेक्षाकृत काले तिल के।
10: तो मैम अब बात करते हैं बुआई की, बुआई कब करनी चाहिए और बीज की दर क्या होनी चाहिए?
19: बिल्कुल, जब हम बुआई की बात करें तो जैसे हमारा आपका जून शुरुआत हो गया तो जून के 15 दिन आप अपने खेत की तैयारी में लगा दो, उसके बाद 15 जून से 15 जुलाई का जो महीना होता है जो आप बोलते हो कि सही समय पे बुआई, ठीक है ये बिल्कुल सही समय है तिल की बुआई करने का। किसी वजह से अगर सपोज आपका जून से जुलाई के बीच में 15 जून से 15 जुलाई के बीच में अगर बारिश बार बार आ रही है तो आप क्या कर सकते हो 10-15 दिन पीछे भी जा सकते हो, 15 जुलाई से आप कह लो 16 जुलाई से 20 जुलाई 25 जुलाई तक भी आप अपनी फसल को ले जा सकते हो। और जहां तक बीज की दर की बात हुई तो हम 4-5 kg पर हेक्टेयर बीज का उपयोग करते हैं, लेकिन हाँ इसमें कतार से कतार की दूरी हम 30 सेंटीमीटर रखते हैं और पौधे से पौधे की दूरी 10-15 सेंटीमीटर रखते हैं, ठीक है। और गहरा एक तो छोटा छोटा बीज होता है तो बिल्कुल आप इसको ऐसे ऊपर सतह पे छोड़ नहीं सकते हो, कम से कम 2-3 सेंटीमीटर उंगली से देख लोगे, उसके नीचे जाकर के फिर मिट्टी से ढकोगे। और सबसे बड़ी बात है जब भी आप बुआई करें ना तो हमेशा कतार में करें, बिल्कुल ऐसे छीट देने से ब्रॉडकास्टिंग करने से ना वो उपज नहीं मिलती है आपको बाद में कुछ एक्टिविटीज करने में, जैसे आपको वीडिंग करना है, इंटरकल्चरल ऑपरेशंस हो गए, कुछ भी करने में बड़ी दिक्कत आ सकती है।
10: और मैम कई बार हमें लगता है कि बीजोपचार नहीं भी करेंगे तो कोई नुकसान नहीं होगा, क्या बीजोपचार करना जरूरी होता है?
19: बिल्कुल, बीज उपचार करना इसीलिए जरूरी है क्योंकि देखो आपको मैं बता दूं गर्मी में ना कि हमारे पर्यावरण का जबकि मिट्टी का भी तापमान कुछ बढ़ा हुआ होता है, तो उस तरह की जो मिट्टी के तापमान होती है तो उस केस में हमारे जो कीट हैं मकोड़े हैं जो हमारे डिजीज है उत्पन्न करने वाले कुछ मक्खियां हैं तो वो उस समय उतना ज्यादा एक्टिव नहीं हो सकती हैं। लेकिन जब हम खरीफ की बात करें तो बिल्कुल ये एकदम एक हमारा डिजीज ट्रायंगल आपने सुना होगा, होस्ट पैथोजन और इन्वायरमेंट, ये तीनों बिल्कुल फेवरेबल होता है। हमारा होस्ट हो गया आपका जो ये क्रॉप हो गया और पैथोजन तो बीमारी के बारे में आप जान ही रहे हो, इन्वायरमेंट हमारा टेम्परेचर भी है आपका 25-30 degrees 35-32 degrees के आसपास और ह्यूमिडिटी तो ज़्यादा होती ही है, ठीक है। तो इस केस में आपको बीज उपचार करके अगर लगाएंगे जैसे थिरम और कार्बन डजीम 2:1 दो रेशियो आप लेंगे थिरम का एक कार्बन डजीम का और 3 gram प्रति किलोग्राम बीज का मिला करके और आप ये रासायनिक उपचार करके अपने खेतों में बीज को लगा सकते हैं।
10: मैम अब बात करते हैं खाद और उर्वरक के बारे में, तो इसका प्रबंधन कैसे करें?
19: बिल्कुल, अब जैसे हम ही हम लोगों को ही हम लोग तभी तक एक्टिव हो सकते हैं जब हम भोजन ले, तो वैसे ही खाद की बात जब हम करेंगे तो पौधों के लिए ये एक भोजन है। चलो मिट्टी में जितना हमारा नाइट्रोजन फास्फोरस पोटाशियम है वो तो रूट के रूट से पौधों में जा रहा है, लेकिन हमें बाहरी जो रिकमेंडेड डोज ऑफ फर्टिलाइजर होता है वो भी देना आवश्यक होता है। तो अगर हम देखा जाए तो जैसे हमने शुरू में जब हम खेत की तैयारी करते हैं तो कुछ लोग उसी में गोबर या FYM लगा करके ही जुताई पाटा लगवा देते हैं। उसके बाद जब हम उर्वरक की बात करते हैं तो आप कह लो कि नाइट्रोजन 30 से 40 केजी पर हेक्टेयर, फास्फोरस आपका 2 से 20 से 25 केजी पर हेक्टेयर आप डाल सकते हो। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो जो हमारा यहाँ पे 40 केजी जो हम नाइट्रोजन डाल रहे हैं उसको हम एक बार तो शुरुआत में डालें, और एक बार जब पौधा हमारा कुछ एक महीने का करीब हो जाए, 1 से 1.5 महीने का, तब हम दूसरी बार भी टॉप ड्रेसिंग कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये हमारा तिलहनी फसल है, ऑयल सीड, इसके लिए सल्फर का कंटेंट ज्यादा होगा तो ऑयल का यील्ड, ऑयल का कंटेंट ज्यादा होगा। तो इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप जिप्सम जो है 200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर आप इसका यूज कर सकते हैं, ताकि क्रॉप में जो उच्च तेल की गुणवत्ता और मात्रा दोनों बराबर बरकरार रहे।
10: मैम, खरपतवार कैसे नियंत्रित करना चाहिए?
19: बिल्कुल, इसमें जैसे आपको मैंने बताया, जैसे आपने बुआई करी 7 से 8 दिन के बाद आपका जर्मिनेशन हो जाता है, और बिल्कुल आपके सबसे छोटी वाली जो उंगली होती है उतने जैसा छोटा छोटा पौधा होता है। इस समय तो आप खरपतवार नियंत्रण नहीं कर सकते हो, तो आपको ठीक जब से आपने बुआई की है ठीक उसके 20-25 दिन के बाद आप शुरुआत कर सकते हैं सबसे पहली निराई और गुड़ाई का, ठीक है, 15 से 20 दिन में सबसे पहली। उसके बाद है कि जब पौधा कुछ थोड़ी दिन और हो जाए, मतलब पहली निराई गुड़ाई करने के बाद 20 से 25 दिन के बाद फिर से आप 30 से 35 दिन के बाद आप दोबारा से आप खरपतवार नियंत्रण कर सकते हैं। इससे ये हुआ कि आपस में जो पौधे हैं जैसे आपने अगर एक लाइन में कतार की जो बुआई मैंने बोला जिससे किसानों को बहुत फायदा हो सकता है, तो एक ही पौधे आसपास में 3-4 पौधे हैं, तो आप जो एक्स्ट्रा पौधे हैं उनको आप हटाओगे और उसके बाद जो आप जितने भी खरपतवार हैं उनको हटाओगे तो सरफेस पे पूरा अच्छे तरीके से पौधे तक धूप जाएगी, उसके बाद उसमें जो भी न्यूट्रिएंट है वो अच्छे से अब्सॉर्ब होगा और आपका जो पौधा है वो बहुत हेल्दी होगा।
10: मैम, खरीफ तिल के प्रमुख रोग कौन कौन से होते हैं?
19: बिल्कुल
10: जी मैम, और इनसे बचने के लिए क्या उपाय करने चाहिए?
19: जैसे आपको मैं बताऊं कि खरीफ में जैसे एक तो आप सबसे बड़ी देख लो, खरीफ तिल के साथ एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये भी आता है कि किसान भाई ये ध्यान देंगे कि जो हमारा तिल है ये एक ऐसा तिलहनी फसल है कि जहां पानी जमा हो गया आपके खेतों में तो बिल्कुल आप देखोगे कि पौधा जो है बिल्कुल झुक जाएगा और एकदम ऐसे अधमरा सा झुलसा हुआ हो जाएगा। बिल्कुल आप जैसे देखोगे जैसे इसमें झुलसा रोग लगती हैं, पत्तियां पीली हो जाती हैं, तो आप एक बार पहले देखोगे, कोई भी दवाई डालने से पहले देखोगे कि या तो बारिश की वजह से खेत में जल जमाव तो नहीं हो गया है जिसकी वजह से पौधा जो है हमारा वो पीला पड़ गया है, उसमें झुलसा रोग की तरह कुछ निशानियां दिख रही हैं, तो ये कंफर्म करने के बाद ही आप जो भी प्रमुख दवाई है वो डालोगे। उसके बाद जैसे मैं आपको बताऊं फाइलोडी डिजीज, तो फाइलोडी जो गुम्मा बीमारी है वो आपका हमारा गर्मा में और खरीफ में दोनों में होता है। ऐसा मैं नहीं कहूंगी कि खरीफ में नहीं होता, गर्मा में अपेक्षाकृत गर्मा में ज्यादा होता है, बट खरीफ के मौसम में वैसे इलाके जहां पे आपको लगातार 2-3 दिन बारिश हुई उसके बाद फिर टेम्परेचर बढ़ जाता है 25 से 30 डिग्री, और उसके बाद फिर कुछ दिन के बाद फिर आप देखोगे कि 8-10-15 दिन के बाद फिर बारिश हो जाती है। तो ये जो जिस तरीके का जो से भी डिस्ट्रिक्ट में बिहार के इस तरीके का टेम्परेचर और क्लाइमेट का सिनेरियो बनता है वहां पे आपको गुम्मा बीमारी देखने को मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद कुछ आप देखोगे कि जब पौधा हमारा बन गया उसमें फलियां बनने लगी तो कुछ ऐसे छोटे छोटे कीड़े होते हैं वेबर की तरह होते हैं जो पत्तियों में छेद कर देते हैं, कभी कभी कैप्सूल बनने के बाद कैप्सूल में भी छेद कर देते हैं। तो ये कुछ प्रमुख रोग और कीट हैं जो आप खरीफ तिल में आपको देखने को मिलेंगे।
10: मैम, अब बात करते हैं कटाई और भंडारण की, भंडारण का और कटाई का सही तरीका क्या है?
19: बिल्कुल, जैसे आप किसी भी फसल को आप देखो तो आप जाते हो जब देखते हो कि पौधा हरे से थोड़ा पीला पड़ गया, सूखा पड़ गया, तो जैसे आप खेत में पहुंचो और देखो तिल के पौधे जो हैं आपके पीले पड़ गए हैं और पत्ते झड़ने लग गए हैं, और देखोगे इसमें जो जो फूल बनती है ना वो एक बार में पहले नीचे बनती है, नीचे से होते होते ऊपर की तरफ जाती है, तो नीचे की जो फूल हमारे पहले बन जाती है उनमें हमारा जो कैप्सूल होता है वो पहले बन जाता है, तो वो ज्यादा सूख जाता है, झड़ जाता है। तो अगर अभी तक इसमें कोई मशीनी कटाई का कोई इस तरीके का हमारे पास कोई प्रयोग अभी नहीं हुआ है और कोई उस तरीके की हमारे पास कोई मशीन भी नहीं है कि हम मशीन से एक ही बार में कटाई कर लें, क्योंकि इसमें जो पौधे में फलियां हैं वो नीचे में पहले पक के तैयार हो जाती हैं, ऊपर लेट से तैयार होती हैं, तो या तो आप देख लो या तो आप मैनुअली उसको जो पक के तैयार हो गई हो उनको एक एक करके आप निकाल लो, और नहीं तो अगर उस तरीके से देखो आप कि अगर मध्य जो पौधे का मध्य भाग है और निचला भाग है वो पूरी तरीके से पत्तियां सूख गई हैं, पीला पड़ गया है, तो आप उनको काट सकते हो। काटने के बाद आप छोटे छोटे बंडलों से रस्सियों से बांध करके छोटा छोटा बंडल बना लें। बंडल बनाने के बाद उसको कहीं ऐसे जमीन पे ऐसे नहीं डाल देंगे, क्योंकि देखो आप जान रहे हो कि खरीफ का सीजन है, कि अगर आपने जून जुलाई में बुवाई कर ली है तो कम से कम आप सितंबर लास्ट में अक्टूबर फर्स्ट वीक में काटोगे, और बारिश उस समय भी होती है, तो जमीन पे आप जब डाल दोगे तो आप देखोगे कि कभी कभी अगर बारिश आ गया तो आपके कैप्सूल्स में और पौधों में एक तरीके का सफेद रंग का फफूंद लग जाता है, तो हमें वो नहीं करना। हमें कटाई करने के बाद पौधे को रस्सी से बांध करके खड़ा करके हमें जो भी हमारा थ्रेशिंग फ्लोर है उस पे रखना है, ताकि ऊपर से उस पे धूप चारों बगल से पड़ते रह जाए, ठीक है। उसके बाद फलियां जैसे आप देखोगे कि जो बाकी बची हुई फलियां थी वो भी धूप से सूख गई हैं, अब खुलने लगी हैं, तो आप उसको तिरपाल के ऊपर डाल करके पौधे को झाड़ोगे तो सारी जो आपकी बीज हैं तिल के वो बाहर आ जाएंगे। और एक बात और बताना चाहूंगी उमा, कि जब भी गर्मी में आप देखोगे कि तापमान वैसे ही बहुत ज्यादा होता है, तो जो हमारी बीज होती है ना उसको मॉइस्चर उसमें कम ही होता है, लेकिन जब हम खरीफ की बात करेंगे ना तो मॉइस्चर उसमें बहुत ज्यादा है, तो आप देखोगे कि कटाई करने के बाद बीज जो आप रखो तो बिल्कुल कहीं बांध के किसी पोटली या बोरे में ना रख दो, उसको ध्यान दोगे कि बारिश के बीच में भी अगर कुछ कुछ ऐसा है कि अगर 10 दिन 15 दिन के बाद अगर तेज धूप आ रही है तो आप अपना जिस भी बोरे में आपने उसको रखा है उसको बाहर निकाल करके धूप में फैलाए बीच बीच में, ये बहुत जरूरी है ताकि आपके कटे हुए जमा किए हुए बीज के अंदर फफूंद ना लगे।
10: तो मैम अंत में आप हमारे किसान भाई बहनों को क्या संदेश देना चाहेंगे?
19: बिल्कुल, मैं किसान भाई बहनों को यही कहूंगी कि सबसे पहले तो आप जो किस्में चुनते हैं उसको ध्यान से चुने, कौन सा गर्मा तिल का है वैरायटी, कौन सा आपका जो खरीफ तिल का वैरायटी है, उसके बाद समय पे बुआई करें। किसी वजह से अगर बुआई लेट हो जाती है तो 15 जुलाई के बाद आप एक दो हफ्ता ले लें, उससे ज्यादा पीछे ना जाए, क्योंकि आप देखोगे कि टेम्परेचर के हिसाब से भी क्रॉप की प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन और कैप्सूल जो उसमें जो फलियां बनती हैं उस पर प्रभाव पड़ता है। उसके बाद जितना आपको है खाद डालने का उतना ही डालें। कभी कभी क्या करते हैं किसान भाई, बहुत ज़्यादा यूरिया डाल देते हैं, बोलते हैं कि, तो उस केस में क्या हो जाता है, तिल के पौधे पूरे झुलस के सूख जाते हैं, ठीक है, फिर उनको लगता है कि हो सकता है झुलसा बीमारी लग गई है। नहीं, और खरीफ के समय में एक बात ज़रूर बोलूंगी कि खेत में जल जमाव बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जहां जब भी आप लगाएं, या तो आप बंड ये बना करके लगाएं, बेड बना के रेस्ट बेड पे लगाएं, ठीक है, या रेस्ट बंड बना करके लगाए, जैसे आप गन्ना आलू ये सब लगाते हैं, क्योंकि उस केस में क्या होगा कि आपके खेत में पानी नहीं जमेगा और आपकी तिल की जो खेती होगी वो बहुत बढ़िया होगी।
10: तो किसान भाई बहनों, जिस तरीके से मैम ने बताया उन तरीके का इस्तेमाल करके आप तिल की खेती कर सकते हैं, और कुछ बातों का ध्यान जो मैम ने कहा उन बातों का ध्यान रखिए, आपको खरीफ तिल की अच्छी फसल मिलेगी, आपका मुनाफा अच्छा होगा। मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
19: ओके, थैंक यू उमा, नमस्कार।
10: तो किसान भाई बहनों, आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। आप अपना और अपनी फसलों का रखें विशेष ध्यान और अपनी मिट्टी से करें ढेर सारा प्यार। नमस्कार।
9: उन्नत कृषि।

0: जानते हैं कि खसरा कितनी गंभीर बीमारी है? टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MRT का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टिको, क्यों इतने जीरो?
5: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
5: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: तो इसका हल क्या है?
5: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा, सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है,
0: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
5: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
6: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
7: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
6: और लाइट बिल के।
7: अब 0 रुपए कैसे दूं?
6: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
8: पक्का। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
9: हर घर सूर्य घर।
10: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
11: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
10: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
11: आपकी सेहत की बातें,
10: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
11: युवाओं के रोजगार करियर की बातें,
10: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
11: वो कहाँ पर?
10: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
11: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
10: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 22 से 26 जुलाई के दौरान आसमान में घने बादल छाए रहेंगे और जिले में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी चलने और हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 26 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 90% और दोपहर में 70 से 80% रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए, जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दें, पिछले कुछ दिनों में हुई वर्षा का लाभ उठाइए और आगे भी संभावना है कि वर्षा होगी, तो ऐसी स्थिति में धान की रोपाई के लिए व्यवस्था सुनिश्चित कर ले। रोपाई से पहले प्रति हेक्टेयर 25 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस, 30 किलोग्राम पोटाश और 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट का प्रयोग करें। आपको बता दें कि निचली जमीन के चारों ओर मजबूत मेड़ यानी कि बांध बनाकर वर्षा जल का संचयन कर ले, ताकि जरूरत पड़ने पर आप वर्षा के जल का सिंचाई में उपयोग कर सके। जो किसान भाई बहन श्री अन्न की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दें, मोटे अनाजों की खेती के लिए उचास भूमि का चयन करें। मड़वा की वकुला KMR 316 GPU 67 और VL 379 राजेंद्र मड़वा RU 8 और RU 3। और आपको बता दें, कौनी की अनुशंसित किस्में हैं राजेंद्र कौनी 1। आप इन किस्मों की बुआई कर सकते हैं। मक्का की खेती करने वाले किसान भाई बहन ध्यान दें, खरीफ मक्का की बुआई आसमान साफ रहने पर ही करें। खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और ध्यान रखें कि बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नेत्रजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश जरूर डालें। अनुशंसित मक्का की किस्में जैसे सुवान देवकी, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, राजेंद्र शंकर मक्का 3, गंगा 11 है। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, मिर्च, अगाध गोभी, टमाटर जैसी सब्जियों की नर्सरी तभी तैयार करें जब आसमान साफ हो। और बागवानी करने वाले भाई बहन ध्यान दें, जुलाई अगस्त आम के पौधों के रोपण के लिए सबसे उपयुक्त समय होता है। कलमी पौधों की रोपाई 10x10 मीटर और बीजू पौधों की रोपाई 12x12 मीटर की दूरी पर करें।

मीटर की दूरी रखें। प्रत्येक गड्ढे में 5 किलोग्राम गोबर की खाद, 500 ग्राम अरंडी की खली, 300 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट, 100 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश और 10 ग्राम कार्बोफ्यूरान मिलाना न भूलें। रोपाई से पहले सकर्स को कार्बन डाइजिंग 2 ग्राम प्रति लीटर पानी से उपचारित करें। किसान भाई बहनों, टिश्यू कल्चर पौधे का उपयोग अधिक उत्पादन के लिए लाभकारी होता है। पशुपालक भाई बहन ध्यान दें, पशुओं में PPR, MFD यानी कि खुरपका मुंहपका और HS यानी कि गला घोटू, इन रोगों का खतरा अधिक है। इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण करवाएं, उन्हें साफ और सूखा रखें और बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। रोग के लक्षण अगर दिखाई दे तो तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें और ध्यान रखें कि पशुओं की बिना जरूरत के आवाजाही पर नियंत्रण रखें। गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए जून माह में अगर टीके नहीं लगाए गए हो तो इस महीने में टीके जरूर लगवा दें। पशुओं को संतुलित और पौष्टिक आहार दें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

0: കൃഷി. बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन. मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा. दोस्तों आपका स्वागत है हमारे किसान भाई बहनों को संबोधित विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में. उन्नत कृषि में आज हम बात करने वाले हैं धान की फसलों में खरपतवार का प्रबंधन किस प्रकार किया जा सकता है, और इस बारे में हमें विस्तार से बताने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर एस के चौधरी सर. सर आप हैं सस्य विज्ञान विभाग से, सर आप हैं असिस्टेंट प्रोफेसर कम जूनियर साइंटिस्ट. सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में.
1: धन्यवाद मैडम.
0: सर सबसे पहला प्रश्न यही है कि धान में खरपतवार प्रबंधन क्यों जरूरी है?
1: धान में खरपतवार प्रबंधन क्यों जरूरी है, ये बहुत ही गंभीर सवाल है. और इस सवाल का जवाब देने से पहले सबसे पहले तो मैं इसकी भूमिका के बारे में बताना चाहूँगा. जो देश की बढ़ती हुई जनसंख्या के साथ खाद्यान्नों की मांग को पूरा करना एक गंभीर चुनौती बनी हुई है. धान हमारे देश की प्रमुख खाद्य फसल है और इसकी खेती विभिन्न भौगोलिक परिस्थितियों में लगभग 4,22,00,000 हेक्टेयर में की जाती है. आजकल धान का उत्पादन लगभग 9 करोड़ टन तक पहुंच गया है.

0: राष्ट्रीय स्तर पर धान की औसत उपज 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है तथा बिहार राज्य में इसकी खेती लगभग 31 लाख हेक्टेयर में की जाती है तथा इसकी उपज 70 लाख टन तक तथा उत्पादकता 22.45 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है, जो कि इसकी क्षमता से काफी कम है। इसके कई कारण प्रमुख हैं, जैसे कि कीट एवं व्याधियों का प्रबंधन, बीज की गुणवत्ता में कमी, और भी इसके अलावा जो खरपतवार का प्रबंधन की समस्या और गलत शस्य क्रियाएं, इस सब कारणों से जो औसत उपज है वो बिहार राज्य में कम है। धान की उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए वैज्ञानिक विधि से धान की खेती को अपनाना होगा। हमारे देश तथा बिहार राज्य में मुख्यतः दो परिस्थितियों में धान की खेती की जाती है, पहला वर्षा आधारित और दूसरा संचित अवस्था में।
1: जी सर, अगर अब हम बात करें कि धान में अगर खर पतवार का प्रबंधन ना करें तो खर पतवार से किस प्रकार से हानि पहुंचता है हमारे धान के फसल को?
0: सबसे पहले तो खर पतवार प्रायः फसल से नमी, पोषक तत्व, सूर्य का प्रकाश तथा स्थान के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, जिससे मुख्य फसल में उत्पादन में कमी आ जाती है। धान की फसलों में खर पतवार से लगभग 15-85% तक का नुकसान होता है। कभी कभी यह नुकसान 100% तक पहुंच जाता है। सीधे बोए गए धान में खरपतवार से नुकसान रोपाई किए गए धान की तुलना में अधिक होता है। पैदावार में कमी के साथ साथ खरपतवार धान में लगने वाले रोगों के जीवाणु एवं कीट व्याधियों का भी आश्रय देता है। कुछ खरपतवार के बीज धान के बीज के साथ मिलकर उसकी गुणवत्ता को खराब कर देता है। इसके अतिरिक्त खरपतवार सीधे बोए गए धान में 20 से 40 किलोग्राम नत्रजन, 5 से 15 किलोग्राम स्फुर और 15 से 50 किलोग्राम पोटास तथा रोपाई वाले धान में 4 से 12 किलोग्राम नत्रजन, 1 किलोग्राम स्फुर और 7 से 14 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से शोषित कर लेता है तथा धान की फसल में पोषक तत्व से वंचित कर देता है और यह डायरेक्टली जो उपज है उसको कम कर देता है।
1: तो धान के फसलों में कौन कौन से प्रमुख खरपतवार हैं जो उगाते हैं?
0: मुख्यतः धान में या कोई भी फसल में तीन तरह के खरपतवार पाए जाते हैं। पहला एक चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार, दूसरा है सकरी पत्ती वाले खरपतवार और एक होता है मोथा कुल के खरपतवार। उसमें से जो चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार है, जिसमें नाम है जो इक्लिप्टा अलवा जिसको कहते हैं, कैना भी नाम से जानते हैं, सिजुलिया एक्जेलरिस है, कोमेलिना बेंगेलसिस है, एजीटीटम कोनोजॉइट्स जो उस फैमिली का प्रजाति का जो घास है वो निकल आते हैं, और उस तरह से लाल साग को भी देखा गया है जो कभी कभी निकल आते हैं खरीफ मौसम धान के फसल में। इसके अलावा जो सकरी पत्ती वाले खरपतवार है, जिसको खास घास कुल के खरपतवार है, उसमें जो है छोटा सावक जिसको हम लोग इकाइनोकुलोना कुलोनम भी कहते हैं, उसके बाद एक सावक होता है जो इकाइनोकुलोना क्रुसिगेली होता है, इसके अलावा जो है मरुआ जिसको एलोसिन इंडिका, इसके अलावा एरगोटिस जेपोनिका जो मुरमुर नाम से जो खरपतवार है वो प्रायः सकरी पत्ती वाले खरपतवार है। इसके अलावा जो मोथा कुल के खरपतवार आते हैं उसमें से जो साइप्रस इरिया है, साइप्रस फैमिली के मुख्य खरपतवार आते हैं, जिसमें साइप्रस रोटेंडस, साइप्रस डिफॉर्मिस जो कि स्केपरस मेरिसिमस इत्यादि, ये जो खरपतवार है वो मोथा कुल के खरपतवार होते हैं।
1: तो सर कौन सी स्टेज पे किसान भाई बहन धान की फसलों में खरपतवार का प्रबंधन करना शुरू कर देते हैं?
0: धान की फसल में खरपतवार से होने वाले नुकसान, खरपतवारों की संख्या, धान की किस्म एवं फसल से प्रतिस्पर्धा के समय पर निर्भर करता है। घास के कुल के खरपतवार जैसे सावा, कोदो, फसल के प्रारंभिक एवं चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार जैसे कि सिजुलिया जिसको थुकचट्टा भी कहते हैं, इसके अलावा जो वन साग के जो एमरेंथस होता है, वो सब जो चौड़ी पत्ती के खरपतवार है वो फसल के लेट मतलब कि देरी से निकलते हैं। इसके अलावा जो है धान में बुआई के लगभग 15 से 45 दिन तथा रोपाई वाले धान में रोपाई के 35 से 45 दिन के धान में बाद समय में खरपतवार प्रतिस्पर्धा के दृष्टि से क्रांतिक या नाजुक दिन के बाद का समय खरपतवार प्रतिस्पर्धा के लिए आते हैं। इस दिनों में खरपतवार से मुक्त रखना आर्थिक दृष्टि से लाभदायक होता है तथा फसल के उत्पादन में भी अधिक प्रभावित नहीं करता है।
1: तो अब बात करते हैं कि खरपतवार का प्रबंधन कैसे करना चाहिए।
0: खरपतवार का प्रबंधन बहुत तरह से करते हैं, जिसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि खरपतवार को सही समय पर नियंत्रण किया जाना चाहिए, चाहे तरीका कोई भी हो। धान की फसल में खरपतवार की रोकथाम निम्न तरीके से की जा सकती है। पहला है निवारक विधि। इस विधि में वो शस्य क्रियाएं हैं जिनके द्वारा धान की खेती में खरपतवार के प्रवेश को रोका जा सकता है, जैसे कि प्रमाणिक बीजों का प्रयोग करके, अच्छी सरी गोबर की खाद जो हम खेत को तैयारी करते समय देते हैं उसको अपना करके, कंपोस्ट खाद का प्रयोग करके, सिंचाइयों की नाली साफ सफाई करके, खेत की तैयारी एवं बुआई में प्रयोग किए जाने वाले यंत्र की बुआई से पूर्व साफ सफाई करके। इसके अलावा जो है यांत्रिक विधि है, जो कि खरपतवार को पर काबू पाने के लिए एक सरल एवं प्रभावी विधि है। इस विधि में किसान अपने हाथ या खुरपी की सहायता से खरपतवार का नियंत्रण करते हैं। खेतों में हो चलाकर या पेडीवीडर चलाकर खरपतवार का रोकथाम करते हैं। समानता धान की खेती की फसल में दो निराई गुड़ाई, पहली बुआई रोपाई के 20 से 25 दिन बाद एवं दूसरी 40 से 45 दिन बाद करने से खरपतवारों को प्रभावी नियंत्रण किया जा सकता है तथा फसलों की पैदावार में काफी वृद्धि की जा सकती है। इसके अलावा जो शस्य क्रिया विधि है, उसमें भी परिवर्तन करके खरपतवार को आप अच्छी तरीके से प्रबंधन कर सकते हैं। इसमें सबसे अच्छा है बुआई से पूर्व खरपतवार को नष्ट करके, इसको स्टेल सीड बेड टेक्निक भी कहते हैं। इसमें कहते हैं खरीफ की पहली बारिश के बाद जब खरपतवार 2 से 3 पत्ती के हो जाए तो इसको शाकनाशी, जैसे ग्लाइफोसेट पाराक्वाइट जो केमिकल जो शाकनाशी है, उसके द्वारा स्प्रे करके, उसका एप्लीकेशन करके आप यांत्रिक विधि जोताई करके नष्ट कर सकते हैं, जिससे मुख्य फसल में खरपतवार के प्रकोप में काफ़ी कमी आती है। इसके अलावा जो है गहरी जुताई करके भी आप खरपतवार का नियंत्रण कर सकते हैं। इसमें रबी की फसल की कटाई के तुरंत बाद गर्मी के मौसम में एक बार गहरी जुताई कर देने से खरपतवार के बीज एवं उसके कंद ऊपर आ जाते हैं तथा तेज धूप में जलकर ऊपरी अंकुरण क्षमता खो देते हैं। इस विधि से कीट एवं बीमारियों का भी प्रकोप कम हो जाता है। रोपाई वाले खेत में पडलिंग करके खरपतवार की समस्या को कम किया जा सकता है। पडलिंग एवं हैरो करने के बाद खेत में पाटा लगाकर खेत को समतल करके खेत में पानी भरकर लंबे समय तक खरपतवार को रोकथाम आसानी से कर सकते हैं। इसके अलावा जो है किस्मों को चयन, जो सही चयन करके आप उसका भी खरपतवार का नियंत्रण कर सकते हैं। इसमें क्या है, जहां पर खरपतवार के रोकथाम के साधनों की उपलब्धता में कमी हो वहां पर ऐसी धान की किस्म का चुनाव करना चाहिए जिनकी प्रारंभिक बढ़ावार खरपतवारों की तुलना में अधिक हो, ताकि ऐसी प्रजातियां खरपतवारों को आसानी से प्रतिस्पर्धा करके उन्हें नीचे दबा सकें। प्रायः यह देखा गया है कि किसान भाई असिंचित उपजाऊ भूमि में धान का छिटकाव विधि से बोते हैं। छिटकाव विधि से कतारों में बोई गई धान की तुलना में अधिक खरपतवार उगते हैं तथा उनके नियंत्रण में भी कठिनाई आती है। अतः धान को हम कतार में ही बोना लाभदायक होता है और उसमें खरपतवार की जो समस्या है वो छिटकाव विधि से कम होता है। इसके अलावा जो कतार की जो बीच की दूरी है उसको आप मेंटेन करके भी खरपतवार को अच्छे से प्रबंधन कर सकते हैं। इसमें करते हैं धान की कतारों के बीच की दूरी कम रखते हैं, खरपतवार उगने के लिए पर्याप्त स्थान नहीं मिल पाता है। इसी तरह बीज की मात्रा में वृद्धि करने से भी खरपतवार की संख्या एवं वृद्धि में कमी की जा सकती है। धान की कतारों को संकरा करने से लगभग 15 सेंटीमीटर एवं अधिक बीज की मात्रा देने से प्रयोग करने से खरपतवार को वृद्धि की दबाया जा सकता है। उचित फसल चक्र अपनाकर भी खरपतवार का प्रबंधन करते हैं। एक ही फसल को बार बार एक खेत में उगाने से भी खरपतवार की समस्या और भी जटिल हो जाती है तथा उसका जो रख रखाव है, जो एक ही इकोलॉजी का जो खरपतवार है वो ज्यादा उगते हैं। अतः आवश्यक है कि पूरे वर्ष एक ही खेत में एक ही फसल लेने की बजाय फसल के बाद उसमें दूसरी फसल जो पल्सेज है, ऑयल सीड है, अगर दूसरी कोई भी परिवार का फसल है उसको लेने से खरपतवार को कम किया जा सकता है। सिंचाई एवं जल का प्रबंधन करके भी खरपतवार का प्रबंधन करते हैं। रोपाई किए गए धान में पानी की उचित प्रबंधन करके खरपतवार को रोकथाम की जा सकती है। अनुसंधान के परिणामों में यह पाया गया है कि धान की रोपाई के 2-3 दिन बाद से 1 सप्ताह तक पानी 1-2 सेंटीमीटर खेत में समान रूप से रहना चाहिए। उसके बाद पानी का स्तर को 5-10 सेंटीमीटर तक समान रूप से रखने से खरपतवार की वृद्धि को आसानी से रोका जा सकता है। पडलिंग किए गए धान, सीधे बोए धान की खेत में जब फसल 30-40 दिन का हो जाए तो उसमें पानी भरकर खेत की विपरीत दिशा में जुताई, क्रॉस जुताई करके पाटा लगा देने से भी खरपतवार की रोकथाम की जा सकती है। उर्वरक का प्रयोग करके भी खरपतवार का प्रबंधन करते हैं। भूमि में पोषक तत्व की मात्रा, उर्वरक देने की विधि एवं समय के फसल एवं खरपतवार की वृद्धि पर प्रभाव पड़ता है। फसल एवं खरपतवार दोनों ही भूमि में नियत पोषक तत्व के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। खरपतवार नियंत्रण करने से पोषक तत्व की उपलब्धता फसल को ही मिले सुनिश्चित की जा सकती है। पोषक तत्व की अनुमोदित मात्रा को ठीक समय एवं उचित तरीके से देने पर धान की फसल इनका समुचित उपयोग कर पाता है। असिंचित उपजाऊ भूमि जहां खरपतवार समस्या अधिक होती है, वहां नाइट्रोजन की आरंभिक मात्रा में बुआई समय न देकर पहली निराई गुड़ाई के बाद देना लाभदायक रहता है, तथा नाइट्रोजन को धान में की लाइनों के पास डालना चाहिए जिससे कि इसका ज्यादा भाग फसल को मिल सके।
1: जी सर, ये तो आपने बताया अलग अलग तरीकों से किस प्रकार हमारे किसान भाई बहन धान की फसलों में खरपतवार का प्रबंधन कर सकते हैं। सर, अब आप हमें विस्तार से बताइए कि रासायनिक विधि से खरपतवार का प्रबंधन कैसे किया जा सकता है और इस विधि के दौरान कौन कौन से रसायनों का इस्तेमाल कर सकते हैं हमारे किसान भाई बहन।
0: निश्चित ही रासायनिक विधि बहुत ही कारगर, जितने भी विधि बताएं उसमें सबसे ज्यादा कारगर रासायनिक विधि को माना जाता है। धान की फसल में खरपतवारों की रोकथाम की यांत्रिक विधियां तथा हाथ से निराई गुड़ाई यद्यपि काफी प्रभावी पाई गई है, लेकिन विभिन्न कारणों से इसका व्यापक प्रचलन नहीं हो पाया है। इनमें से मुख्य कारण यह है कि धान के पौधे एवं समय ससमय खरपतवार जैसे जंगली धान एवं सावा के पौधे में पुष्प अवस्था के पहले काफी समानता पाई जाती है, इसलिए पहले साधारण किसान निराई गुड़ाई के समय आसानी से इनको पहचान नहीं पाते हैं। बढ़ती हुई मजदूरी के कारण भी में विधियां आर्थिक दृष्टि से लाभदायक नहीं है। फसल खरपतवार प्रतिस्पर्धा के क्रांतिक समय में मजदूरों की उपलब्धता में कमी, खरीफ मौसम का असामान्य मौसम जिसके कारण कभी कभी खेत में अधिक नमी के कारण यांत्रिक विधि से निराई गुड़ाई संभव नहीं हो पाता है, अतः उपरोक्त परिस्थितियों में खरपतवार का शाकनाशियों द्वारा नियंत्रण करने से प्रति हेक्टेयर लागत मूल्य में कमी आती है तथा समय की भारी बचत होती है। लेकिन शाकनाशी रसायनों का प्रयोग करने के समय उचित मात्रा, उचित ढंग तथा उपयुक्त समय पर प्रयोग का सदैव ध्यान रखना चाहिए, अन्यथा लाभ के बजाय हानि की संभावना भी बनी रहती है। धान की फसल के प्रयोग की जाने वाली प्रमुख रासायनिक बहुत से हैं, जिसमें कि जो हम शुरू के ही समय बताए थे, जो धान में मुख्य तीन तरह के खरपतवार पाई जाती है, चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार, सकरी पत्ती वाले खरपतवार और साथ ही साथ मोथा कुल के खरपतवार। उसको मारने के लिए चाहे उसका प्रबंधन करने के लिए निम्न रसायन का प्रयोग करना किसान के भाइयों के द्वारा उचित होता है, जिसमें से सबसे पहला है ब्यूटाक्लोर, जो कि बहुत अच्छी दवाई है, जिसको मिचेट नाम से भी जाना जाता है, जो कि लगभग बुआई एवं रोपाई के 3-4 दिन के बाद करना अति आवश्यक है। ये लगभग में इसका जो मात्रा है वो कम से कम 1.5-2 लीटर सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर के हिसाब से देना चाहिए, जो कि सिर्फ घास कुल के खरपतवार को ये नियंत्रित करता है। इसके अलावा जो है एलिलोफॉस एलिलोगार्ड, जिसका मात्रा जो है 400-500 सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर है, ये भी प्री इमरजेंस जो है उसके लिए उपयोग करते हैं, वो भी बुआई के 2-3-4 दिन के बाद ही उसको देना लाभदायक है। ये भी घास एवं मोथा कुल के खरपतवार के लिए कारगर है। इसके अलावा जो है बिस्पेरीबैग सोडियम नाम का एक दवा है, जो कि इसका जो 10% इसी की मात्रा पाया जाता है, जो कि लगभग में 250 ml प्रति हेक्टेयर की दर से इसका दर होता है और ये 25-30 दिन के बाद देना उपयुक्त होता है। ये चौड़ी पत्ती एवं घास कुल के खरपतवार के लिए कारगर होता है। इसके अलावा जो है एक ऑक्सीडाइजोन जो है कम से कम 750-1500 ग्राम यह प्रति हेक्टेयर की दर से है, जो कि घास और मोथा और चौड़ी पत्ती तीनों के लिए ये बहुत ही कारगर दवा है। इसके अलावा किसान भाइयों जो नर्सरी लगाते हैं उसमें भी बहुत से खरपतवार का प्रकोप रहता है, उसमें भी ये दवा जो है वो कारगर है, जैसे कि पेट्राक्लोर जो कि 50% इसी का मात्रा पाया जाता है, जिसका डोज है 750 ml से 1000 ml AI प्रति हेक्टेयर। यह घास मोथा चोरी पत्ती कुल के खरपतवार के लिए बहुत ही कारगर है, जो कि आप इसको धान के नर्सरी में भी और जब रोपा करते हैं उस समय भी देना बहुत ही लाभदायक। जो कि एक और भी दवा है जो चोरी पत्ती के खरपतवार के लिए सबसे अच्छा माना जाता है, जो कि 240D नाम का एक दवा है, जिसका जो डोज है आधा लीटर से 1 लीटर ग्राम AI प्रति हेक्टेयर के दर से है, रोपाई के 20 से 25 दिन के बाद देना कारगर पाया गया है और ये सिर्फ चोरी पत्ती के खरपतवार के लिए उपयुक्त होता है। इसके अलावा जो है बहुत से दवा है, जैसे ऑल मिक्स जो दो हर्बिसाइड दो शाकनाशियों का कॉम्बिनेशन है, जिसमें क्लोरोमिरोन और मेटसल्फिरोन है, ऑल मिक्स करके आता है, वो 4 ग्राम AI प्रति हेक्टेयर के दर से पाया जाता है, जिसमें कि चोरी पत्ती मोथा कुल के खरपतवार के कारगर है। जिन किसान भाइयों को चोरी पत्ती और मोथा कुल के खरपतवार को मारना है उसमें इथॉक्सी सल्फिरोन सनराइज के नाम से है, जो कि 100 ml प्रति AI प्रति हेक्टेयर के दर से है, जिसमें चौड़ी पत्ती और मोथा कुल के खरपतवार को खत्म करते हैं। इसके अलावा जो किसान भाइयों सिर्फ मोथा को ही मारना है उसमें है एजीम सल्फिरोन नाम का एक है, जिसमें 50 ग्राम AI प्रति हेक्टेयर के दर से देते हैं, जो कि सिर्फ मोथा के ही घास जो कुल है उसको ये कारगर होता है। इसके अलावा जो भी और भी जो खरपतवार है, इतना अगर कोई भी अगर शाकनाशी अवेलेबल है उपलब्ध है उसमें कोई भी खरपतवार नाशी अगर आप प्रयोग करते हैं तो निश्चित ही आपको जो रासायनिक विधि से खरपतवार प्रबंधन में सहायता मिल सकता है।
1: जी सर, सर आप अंत में हमारे किसान भाई बहनों को कोई संदेश देना चाहेंगे?
0: संदेश यही है जो अगर आपके खेत में खरपतवार से संबंधित कोई भी समस्या है तो सबसे पहले तो उसका पहचान करना बहुत जरूरी है, उसके उपरांत ही आप कोई भी जो उसका उपाय है उसका आप उपयोग करें, नहीं तो लाभ के बदला हानि ही हो सकता है। और साथ साथ पहले आप उसकी पहचान करें, उसके बाद ही उस शाकनाशियों को उसके जो अगेंस्ट जो उसके में काम करे उसका प्रयोग करें।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो हमारे किसान भाई बहनों, जिस तरीके से सर ने बताया उन तरीकों को अपनाकर आप धान की फसलों में खरपतवार का प्रतिबंधन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, लेकिन जाने से पहले खास बात की अपना और अपनी फसलों का रखें विशेष ध्यान और अपनी मिट्टी से करें ढेर सारा प्यार। नमस्कार। उन्नत कृषि
2: नमस्ते क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
3: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
2: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना है। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
4: सुनो सुनो सुनो सभी, एक जरूरी बात, आया मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण फिर एक बार। अगर आपके घर या पड़ोस में है 5 साल या उससे छोटे बच्चे जिनका कोई भी टीका छूट गया हो तो सोचते क्या हो, जल्दी से आशा दीदी से करो बात। बच्चों को स्वास्थ्य केंद्र है लेकर जाना और उनका टीकाकरण है करवाना।
5: सुहाना सफर और ये मौसम हसी,
4: टीको ये मौसम है टीकाकरण करवाने का, तो सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
6: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
7: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल 0 आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई। आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 ग्रीन एफएम।
1: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों आपका स्वागत है आपके कार्यक्रम लेडीज फर्स्ट में। और लेडीज फर्स्ट में आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में और ये विषय है खास तौर से उन महिलाओं के बारे में जो कामकाजी हैं। और आज के समय में हर दूसरी महिला कामकाजी हैं और होना भी चाहिए क्योंकि ये उन्हें इंडिपेंडेंट बनाता है, आत्मविश्वासी बनाता है, लेकिन कई बार उनके साथ कुछ ऐसा घटित होता है कि उनका कॉन्फिडेंस, उनका आत्मविश्वास डगमगा जाता है और ख़ास तौर से ये उसी जगह पर होता है जहां वो काम करने जाती हैं। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं कामकाजी महिलाओं के एक बेहद ही अच्छे साथी के बारे में, एक ऐसे साथी के बारे में जो उन्हें उनके कार्यस्थल पर उन्हें सुरक्षित महसूस कराता है। और उनका ये साथी है या फिर कहें कि उनकी ये दोस्त है शी बॉक्स। शी बॉक्स क्या है, आइए इसके बारे में हम जानते हैं। दोस्तों कई बार ना क्या होता है कि महिला अपने काम पे निकली, बहुत ही अच्छे से निकली, लेकिन वहाँ पर उन्हें असहज महसूस होता है क्योंकि उनके साथ कोई अनुचित व्यवहार कर देता है या फिर कोई उनसे ऐसी अभद्र बातें कह देता है कि महिला को बहुत बुरा लगता है या फिर किसी लड़की को बहुत अजीब महसूस होता है। ऐसे में वो परेशान हो जाती है कि किससे कहें, क्या कहें और कैसे कहें, इसका क्या निदान निकलेगा, इसका समाधान निकलेगा। और आज इन्हीं सारे सवालों का जवाब हम जानने वाले हैं। सबसे पहले तो हम जानेंगे कि महिलाओं का, कामकाजी महिलाओं का साथी या फिर कामकाजी महिलाओं की दोस्त कौन है, शी बॉक्स ये क्या है। अगर मैं आपको शी बॉक्स का पूरा नाम बताऊं तो वो है सेक्सुअल हरासमेंट इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स, यानी कि ये एक ऐसा बॉक्स है जहां पर आप यौन उत्पीड़न के बारे में बातें बता सकते हैं, शिकायत दर्ज करा सकते हैं। दोस्तों ये भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा शुरू किया गया है और एक ये ऑनलाइन पोर्टल है, यानी कि आप घर बैठे बैठे या ऑफिस में ही आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। और इसका उद्देश्य बिल्कुल साफ है कि कामकाजी महिलाओं को सुरक्षित रखना। पता है सबसे जरूरी बात ये है कि अब चुप रहना नहीं है, डरना नहीं है, बल्कि जरूरी है कि आप अपनी आवाज उठाएं और आप इसे संबंधित विभाग तक पहुंचें, तभी आप खुद को सुरक्षित रख पाएंगे। और सिर्फ अपने आप को नहीं बल्कि जिन्होंने आपके साथ गलत व्यवहार किया है ना, वो सिर्फ आपके साथ व्यवहार नहीं करेगा गलत, और लड़कियों के साथ भी वो गलत व्यवहार ही करेगा। इसलिए ज़रूरी होता है कि वैसे लोगों को जितनी जल्दी हो सके रोक दिया जाए। और आप आवाज़ उठाएंगी तो यकीन मानिए कि आपका डर ख़त्म होगा, लेकिन उस इंसान के अंदर डर ज़रूर आ जाएगा कि अब हमें ऐसी कोई भी घटना को अंजाम नहीं देना है जिससे किसी महिला को परेशानी हो। शी बॉक्स कैसे काम करता है और ये कानून से कैसे जुड़ा है, आइए इसके बारे में जानते हैं। अगर हम शी बॉक्स के कानून के बारे में बात करें तो सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ विमेन एट वर्कप्लेस एक्ट यानी कि पॉश एक्ट 2013 में आया था और इसी के तहत शी बॉक्स को लाया गया था। और अगर हम बात करें कि इस कानून के अनुसार क्या क्या होता है, तो सबसे पहले तो जरूरी है कि हर संस्था के अंदर शिकायत की जांच 90 दिनों के अंदर पूरी हो जानी चाहिए। और इसके साथ ही ये भी जरूरी होता है कि महिला अपनी पहचान को गोपनीय रख सकती है। अगर वो शिकायत कराती भी है तो ऐसे में उनकी पहचान बिल्कुल गोपनीय रहती है। और कौन शिकायत कर सकता है, तो जो भी सरकारी कर्मचारी है या फिर प्राइवेट कंपनी में भी अगर आप काम कर रही हैं तो भी आप शिकायत कर सकती हैं, यहाँ तक कि अगर आप इंटर्न हैं तो भी आप शिकायत कर सकती हैं, आप कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रही हैं या फिर आप अस्थाई कर्मचारी हैं और आपके साथ कोई दुर्व्यवहार हुआ है तो भी आप शिकायत कर सकती हैं। ये प्लेटफॉर्म बिल्कुल आपके लिए ही है, आपको सुरक्षित करने के लिए है, आपको ये बताने के लिए है कि आप अपने घर के बाहर, आप अपने वर्क प्लेस पे भी बिल्कुल सेफ हैं। दोस्तों अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि हम शिकायत कैसे दर्ज कर सकते हैं, तो सबसे पहले तो आपको शी बॉक्स की आधिकारिक वेबसाइट पे जाना होगा। अगर हम शी बॉक्स के आधिकारिक वेबसाइट के बारे में आपको बताएं तो इसका आधिकारिक वेबसाइट है shebox.wcd.gov.in यानी कि shebox.wcd.gov.in। gov.in। इस वेबसाइट पर आप जाइए और आपकी जो भी शिकायत है आप दर्ज कराइए और यकीन मानिए 90 दिनों के अंदर आपको समस्या का समाधान मिल जाएगा और आपकी जो भी शिकायत है उसके बारे में बिल्कुल काम किया जाएगा और साथ ही आपकी पहचान भी गोपनीय रखी जाएगी। आप जैसे ही आधिकारिक वेबसाइट पर जाते हैं वहां पर आपसे आपका जो भी विवरण है वो पूछा जाएगा और आपके साथ जो घटना हुई है उसका भी विवरण वहां पर आपसे पूछा जाएगा और ये सारी चीजें आप वहां पर सबमिट कर देंगे। और ध्यान रखें कि ये प्रोसेस थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो उनमें छोटी सी छोटी जो डिटेल होती है ना वो भी बहुत ज़रूरी होती है। और अगर आप चाहते हैं कि आपको आपकी परेशानी का समाधान मिले तो जो भी वहां पर पूछा जा रहा है बिल्कुल ईमानदारी से लिख दीजिए, भले ही वो थोड़ा लंबा हो पर लिखिए ज़रूर। और इसके बाद आपको एक ट्रैकिंग नंबर मिलता है जिसे आप अपनी शिकायत की स्थिति देख सकते हैं कि आपने जो शिकायत की है वो अब कहाँ तक पहुँची है। दोस्तों आखिर शी बॉक्स ज़रूरी क्यों है ये तो बिल्कुल आप समझ ही गई होंगी, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कई महिलाएं डर के कारण चुप रह जाती है कि लोग क्या कहेंगे, कहीं नौकरी चली गई तो क्या होगा। और साथ ही सबसे बड़ा जो हमारे मन में सवाल होता है वो ये होता है कि कोई विश्वास नहीं करेगा। कई बार लोग कहते हैं कि ये लड़की बहुत नाटक कर रही है, इनके तो बहुत नखरे हैं। ऐसी स्थिति भी उत्पन्न कर दी जाती है कि महिलाएं ये सारी बातें सोचकर ही चुप रह जाती है और उन्हें लगता है कि अगर बात करेंगे तो बात बढ़ेगी। जी नहीं, याद रखिए कि अगर आप बात करेंगे तो बात रुकेगी और आप अपने साथ साथ दूसरी महिलाओं को भी सुरक्षित करेंगी, क्योंकि आज जो आपके साथ कोई गलत कर रहा है ना तो वो कल दूसरों के साथ भी गलत करेगा और उसका मन लगातार बढ़ता जाएगा और आज वो छोटी सी घटना को अंजाम दे रहा है, कल किसी बड़ी घटना को अंजाम दे सकता है। इसलिए ये मत सोचिए कि लोग क्या कहेंगे, आपकी नौकरी चली गई तो क्या होगा और कोई विश्वास नहीं करेगा तो क्या होगा। हो सकता है कि शुरुआत में आपके साथ बहुत कम लोग खड़े हों लेकिन आपका साथ देने के लिए शी बॉक्स है। और ध्यान रखिए कि आपकी नौकरी नहीं जाएगी क्योंकि आपकी जो पहचान है वो बिल्कुल गोपनीय रखी जाएगी। और लोग क्या कहेंगे ये हम क्यों सोचे, बस इतना सोचिए कि आप खुद को सुरक्षित रखिए और जब आप अपनी जगह पर सही होती हैं तो उसका परिणाम भी सही ही आता है। ध्यान रखिए कि कोई भी चुप्पी समस्या को ख़त्म नहीं करती है बल्कि उसे और मजबूत कर देती है। इसलिए शी बॉक्स महिलाओं को ये भरोसा देता है कि उनकी बात सुनी जाएगी। दोस्तों कई बार हम ये समझ ही नहीं पाते हैं कि कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न क्या होता है। दोस्तों यौन उत्पीड़न के अंतर्गत बहुत सारी घटनाएं आ सकती है। मान लीजिए आपके ऊपर किसी ने अनुचित टिप्पणी कर दी, मोबाइल पर आपको कोई अश्लील संदेश भेजता है या फिर किसी भी तरीके से आपको कोई अश्लील संदेश भेजता है या फिर आपको कोई बिना अनुमति के छूता भी है तो ये भी यौन उत्पीड़न का मामला होता है। अगर आपको किसी ने ऐसी कोई बात कह दी, आपके शरीर पर कोई टिप्पणी कर दी तो ये भी यौन उत्पीड़न ही है। और कई जगहों पर ये देखा जाता है कि प्रमोशन के बदले गलत प्रस्ताव दिए जाते हैं, प्रमोशन के बदले गलत फेवर मांगे जाते हैं तो ये भी यौन उत्पीड़न का ही मामला है। और आप बहुत विश्वास के साथ बिना डरे शी बॉक्स पर इन बातों के कंप्लेन कर सकते हैं। और अगर आपको कोई डरा रहा है, आपके ऊपर कोई दबाव बना रहा है किसी चीज़ के लिए तो भी आप शी बॉक्स पे कंप्लेन कर सकते हैं। अगर इनमें से कुछ भी हो रहा है आपके साथ तो ध्यान रखिए कि ये मजाक नहीं है, ये अपराध है। अगर कोई मजाक मजाक में भी आपसे कुछ अश्लील बातें कर रहा है या कोई ऐसी टिप्पणी कर रहा है, अगर उससे आपको असहज महसूस हो रहा है तो उसे कहिए, रोकिए कि मुझे बुरा लग रहा है। और अगर इसके बाद भी वो रुकता नहीं है और अपनी हरकतों को जारी रखता है तो आप कंप्लेन करने के लिए बिल्कुल आज़ाद हैं। और दोस्तों जब तक हमारी नारी बोलेंगी नहीं ना तब तक व्यवस्था नहीं बदलेगी। और जब नारी बोलती है तो सबसे ज़रूरी होता है कि हम नारी ही उनका साथ दें, डटकर उनका साथ दें, तभी अन्याय खत्म होगा। क्योंकि आज लगभग हर जगह पर जहां भी महिलाएं काम कर रही है वहां कोई ना कोई एक ऐसा इंसान ज़रूर होता है जिसके इरादे गलत होते हैं, जिसकी सोच गलत होती है। और कई बार ऐसे लोग मजाक मजाक में ऐसी बातें कह जाते हैं जो आपको बिल्कुल असहज कर देता है और कुछ पल के लिए नहीं बल्कि वो बातें बहुत लंबे समय तक हमारे मन में रह जाती है और हम उस बारे में सोचते रहते हैं और खुद को समझाते रहते हैं कि मजाक ही तो था। जी नहीं, ये मजाक नहीं था। अगर आपको कोई बात असहज कर रही है तो आप साफ साफ कहिए कि मुझे ये बात नहीं पसंद है। अगर सामने वाला समझदार है और वो उसने जानबूझकर आपके साथ वो मजाक नहीं किया है तो वो समझ जाएगा कि हाँ इससे नहीं पसंद है तो आगे से मैं ऐसा नहीं करूँगा। लेकिन अगर उसने जानबूझकर किया है और आपको असहज महसूस कराने के लिए ही किया है तो वो नहीं रुकेगा और वो सिलसिला दोहराएगा, तो फिर आपको उसे रोकना होगा, आप उसके खिलाफ कंप्लेन कर सकती हैं। अच्छा, जो भी हमारी महिला मित्र सुन रही हैं या फिर जो पुरुष भी सुन रहे हैं, क्या आपके कार्यस्थल पर कोई इंटरनल कमिटी है जहां पर ऐसे परेशानियों का समाधान किया जाता है? क्या आप जिस संस्था में काम करते हैं वहां पर पोश की यानी कि POSH की ट्रेनिंग होती है? इस ट्रेनिंग में ये समझाया जाता है कि क्या सही है, क्या गलत है, यौन उत्पीड़न क्या है और क्या क्या व्यवहार अनुचित माना जाता है, मजाक और उत्पीड़न में क्या फर्क होता है, क्योंकि कई बार लोग मजाक और उत्पीड़न में फर्क भूल जाते हैं और कई बार लोग जानबूझकर ही ऐसी हरकतें करते हैं और उसे मजाक का नाम दे देते हैं। शिकायत कैसे दर्ज कर सकते हैं ये भी पोश की ट्रेनिंग में बताया जाता है, और IC की भूमिका क्या है यानी कि इंटरनल कमिटी की भूमिका क्या है ये भी आपको पोश ट्रेनिंग में बताया जाता है। और महिलाओं के बारे में तो हमने बात कर ली, उनके लिए शी बॉक्स है और महिलाएं खुद भी उनके लिए हैं, लेकिन पुरुषों का साथ भी बहुत जरूरी होता है। पुरुषों के लिए बस एक छोटा सा संदेश ये है कि ये जो मुद्दा है ना, ये सिर्फ महिलाओं का मुद्दा नहीं है। सम्मान देना दोस्तों हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है, क्योंकि अगर आप दूसरी महिला को सम्मान देंगे तो आपके घर के जो लड़के हैं ना, वो भी यही सीखेंगे कि महिलाओं को कैसे सम्मान देना है। कहीं ना कहीं आप एक बेहतर समाज बनाने के लिए आप अपनी तरफ से एक छोटी सी कदम उठाते हैं तो आपके घर की लड़कियां भी सुरक्षित रहती है। तो दोस्तों ये सिर्फ महिलाओं की नहीं, पुरुषों की भी जिम्मेदारी है कि अगर आपके सामने कोई दूसरा पुरुष ऐसी हरकतें कर रहा है जो कि उचित नहीं है तो आप उसे रोकिए। पता है आपके ऐसा करने से जिस महिला के साथ ये हो रहा है उसके मन में आपके लिए सम्मान तो बढ़ेगा ही, इसके साथ ही वो और भी ज्यादा सशक्त महसूस करेंगी, उनके अंदर एक विश्वास आएगा कि कोई है जो उनका साथ देने के लिए है, एक समाज है जो बेहतर है, उन्हें ये विश्वास होगा कि समाज में आज भी कुछ बेहतर लोग मौजूद हैं। दोस्तों तो जो जागरूक पुरुष हैं जो एक बेहतर समाज बनाना चाहते हैं वो ज़रूर अपने आसपास गलत होते हुए देखते होंगे तो रोकते होंगे। और दोस्तों शी बॉक्स सिर्फ एक वेबसाइट नहीं है, ये एक सुरक्षा कवच है और ये एक कदम है महिलाओं की गरिमा और सम्मान को बचाने के लिए। दोस्तों अगर आपके साथ या आपके किसी जानने वाले के साथ कार्यस्थल पर उत्पीड़न होता है तो चुप मत रहिए, शिकायत कीजिए, क्योंकि लेडीज फर्स्ट का मतलब ही है महिलाओं की सुरक्षा सबसे पहले, सम्मान पहले और अधिकार बराबर की। तो दोस्तों इन्हीं कुछ बातों के साथ मुझे यानी कि आपकी होस्ट आपके दोस्त उमा को दीजिए इजाजत। उम्मीद है कि आप चुप नहीं रहेंगी अगर आपके साथ कुछ भी गलत हो रहा है तो, और जो पुरुष भी सुन रहे हैं वो भी ये समझेंगे कि अगर आप एक बेहतर समाज बनाना चाहते हैं अपने आप के लिए, अपने घर की औरतों के लिए, तो फिर आपको भी आवाज उठाना ही पड़ेगा। आवाज उठाइए क्योंकि आपकी आवाज ही आपकी ताकत है। जाने से पहले खास बात की अपना और अपने अपनों का रखें खास ख्याल और खुद से करें ढेर सारा प्यार। नमस्कार, आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें क्योंकि हम हैं हरियाली से खुशहाली तक। लेडीज फर्स्ट।

0: खसरा कितनी गंभीर बीमारी है। टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MR टीका 9 से 12 महीने और दूसरा MR टीका 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MR टीका लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हो तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टिको क्यों है इतने जीरो?
1: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थाई बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात, अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
0: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
1: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
5: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुड़कुड़दास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
6: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा? बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा?
5: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
7: हर घर सूर्य घर।
8: सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा, आपका स्वागत करती हूं किसान भाई बहनों को संबोधित हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। दोस्तों, उन्नत कृषि में आज हम बात करने वाले श्री अन्न के बारे में, और श्री अन्न एक खास किस्म के श्री अन्न के बारे में जिसे कहते हैं कुटकी। कुटकी जिसे अंग्रेजी में कहते हैं लिटिल मिलेट्स, क्योंकि ये बहुत छोटा होता है आकार में। कैसे इसकी खेती की जाती है और खेती करते वक्त किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए ताकि आपकी फसल अच्छी हो, आपका मुनाफा अच्छा हो, आइए इन सारी बातों के बारे में विस्तार से जानते हैं डॉक्टर आनंद कुमार से। सर, आप हैं अनुवांशिकी एवं पौधा प्रजनन विभाग से, आप हैं असिस्टेंट प्रोफेसर कम जूनियर साइंटिस्ट। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
9: किसान भाइयों को नमस्कार। आज हम लोग जो चर्चा करेंगे वह कुटकी की वैज्ञानिक खेती एंड किस प्रकार जो आजकल जो हम लोग सदियों से जो मिलेट्स जिसको हम लोग श्री अन्न बोलते हैं, जैसे श्री अन्न में हम लोग मरुआ, चीना, कोदो, कंगनी, सामा एवं कुटकी हमारी जो खाद्य परंपरा रही का हिस्सा रही है। आज हम देख रहे हैं कि पूरे विश्व में पोषण, स्वास्थ्य एवं पर्यावरण के प्रति जैसे लोगों का जागरूकता बहुत तेजी से बढ़ रहा है, ऐसे में एक बार फिर से आवश्यकता पड़ रही है कि हमारी पारंपरिक फसलें जैसे कि हम लोग पहले हमारे जो पूर्वज जो श्री अन्न की खेती करते थे, जिसको आप आजकल हम लोग सुपर फूड्स मिलेट्स के बारे में भी जानते हैं, वे आजकल भविष्य की खेती है और पोषण सुरक्षा का आधार बनकर हम लोग के बीच में उभर रही है। आज के समय में सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम, दिक्कत, चैलेंज आ रही है वो है पानी की कमी और तथा क्लाइमेट चेंज, जो जलवायु परिवर्तन के साथ साथ साथ न्यूट्रिशन का भी एक बड़ा चैलेंज बनकर उभर रहा है। इसका एक ही सलूशन है, केवल एकमात्र विकल्प है कि फसल विविधीकरण के अंतर्गत हम लोग मिलेट्स की खेती को अपनाएं और किसान भाई अपना आय ज्यादा से ज्यादा इसके मार्फत बढ़ावे। बिहार में अलग अलग सुपर फूड्स न्यूट्रिशन को प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए मिलेट्स की खेती ही एक सक्षम उपाय है तथा किसानों की आय बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।
8: सर, अगर हम कुटकी फसल के बारे में बात करें तो कुटकी फसल के लिए भूमि की तैयारी कैसे की जाती है और साथ ही इसकी उन्नत किस्में कौन कौन सी है और बुआई का समय क्या है, बीज दर कितना होना चाहिए, बीज उपचार और बुआई के विधि के बारे में आप विस्तार से बता दीजिए।
9: पहले हम किसान भाई कुटकी के बारे में बताना चाहेंगे। कुटकी एक महत्वपूर्ण श्री अन्न फसल है। यह प्राचीन समय से भारत में उगाई जाती है। इसकी विशेषता यह है कि यह फसल कम वर्षा तथा सूखे की परिस्थितियों में भी, जैसे आजकल कम वर्षा हो रही है और सूखे की परिस्थिति है, ऐसे में अच्छा उपज देती है। तो यह जो कुटकी की खेती है वो कम बारिश और मध्यम वाले क्षेत्रों में, जहाँ जैसे जहाँ पर वर्षा वार्षिक वर्षा जो है 350 से 500 मिलीमीटर होती हो, उन क्षेत्रों में सफलता पूर्वक की जा सकती है। सबसे बड़ा इसमें गुण है कि इसमें जो कुटकी की फसल है वो कम पानी, जैसे कम उर्वरा भूमि भी हो या प्रतिकूल जलवायु भी हो, उसमें सफलतापूर्वक हम लोग कर सकते हैं। इसीलिए इसे जलवायु परिवर्तन के दौर में टिकाऊ और पोषण सुरक्षा फसल के रूप में विशेष महत्व दिया जा रहा है। सरकार का जो फोर्थ कृषि रोड मैप है उसमें फसल विविधीकरण के अंतर्गत ये मिलेट्स को, श्री अन्न फसल को लिया गया है, क्योंकि इससे किसान ज़्यादा से ज़्यादा अपने आय बढ़ा सकते हैं तथा वे स्वस्थ और पर्यावरण को भी स्वस्थ रख सकते हैं। और इसमें हम देखते हैं कि इसके जो बीज होते हैं, जैसे कुटकी के बीज हुए, उसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, आयरन, कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। यह ग्लूटेन फ्री अनाज है, इसलिए स्वास्थ्य की दृष्टि से एक लाभकारी फसल भी माना जाता है। जैसे अब हम बात करेंगे भूमि की तैयारी।
8: तो सर, ये तो बातें हो गई कुटकी के महत्व के बारे में। सर, आप हमें बताइए कि भूमि की तैयारी कैसे करें, साथ ही इसकी उन्नत किस्में कौन कौन सी है, बुआई का उचित समय क्या होता है, बीज दर कितना रखें और बीजोपचार भी क्या जरूरी है और बुआई किस प्रकार से करें, इन सारी बातों के बारे में सर आप हमें विस्तार से बता दीजिए।
9: किसान भाई, भूमि की तैयारी कुटकी खेती करने के लिए सबसे अच्छी जल निकास वाली दोमट मिट्टी पर यह बहुत अच्छी उपज देती है। यह जल भराव वाली मिट्टी या अत्यधिक सूखे के सहने की क्षमता इसमें कम रहती है। मानसून शुरू होने से पहले खेत को एक बार चाहिए कि मिट्टी पलटने वाले हल से या मोल्ड बोर्ड प्लाव, जिसको हम लोग कहते हैं, उससे एक बार मिट्टी पलट देना चाहिए। और मानसून जैसे ही शुरुआत हो उसके के साथ दो बार कल्टीवेटर से या ब्लेड वाले हैरो से अच्छी तरह से जुताई कर दें। और बुआई, कुटकी के बुआई का सबसे अच्छा समय, जैसे कि जून का अंतिम सप्ताह से आप लोग 15 जुलाई तक इसकी खेती कर दें तो आपको अच्छी उपज मिलेगी। और बीज दर, जो कुटकी के लिए बीज दर है वो 6 से 8 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, यदि आप जैसे आप करना चाहते हैं उसे 6 से 8 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। और यदि पंक्ति में करना चाहते हैं तब, जैसे पंक्ति से पंक्ति की दूरी आपको रखनी है वो है 22.5 सेंटीमीटर और पौधा से पौधा 8 से 10 सेंटीमीटर रखनी है। यदि आप छिटकवा विधि से करना चाहते हैं तो आपको बीज दर थोड़ा सा बढ़ा देना होगा, ये 10 से 12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। जहाँ तक बीजोपचार का प्रश्न है तो किसान भाई, जहाँ भी हम लोग खेती करते हैं तो उसमें चाहिए कि बीजों को जो मृदा जनित जो रोग है उसे बचाव हेतु हम लोग को बीजोपचार कर देना है। तो कार्बेंडाजिन 3 ग्राम प्रति किलो बीज के दर से हम लोग को उपचारित करना चाहिए। जैसा कि बुआई की दूरी के बारे में जो हम बताएं कि कुटकी के लिए पंक्ति से पंक्ति दूरी 22.5 सेंटीमीटर से और पौधा से पौधा की दूरी 8 से 10 सेंटीमीटर रखनी है। और तथा यह बात को ध्यान रखना कि बुआई हेतु वांछित जो गहराई होनी चाहिए वो 3 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसके बाद हम लोग खाद एवं उर्वरक का प्रबंधन कैसे करें, इसके लिए हम लोग फसल को सामान्यतः बुआई से लगभग 2 से 3 सप्ताह पहले 5 से 10 टन पर हेक्टेयर गोबर की खाद दे दे तो बहुत अच्छा रहेगा। और कंगनी की अच्छी उपज के लिए 40 किलोग्राम नेत्रजन, 20 किलोग्राम फास्फोरस तथा 20 किलोग्राम पोटासियम प्रति हेक्टेयर उर्वरक की मात्रा अनुशंसित है। फास्फोरस पोटासियम उर्वरक की पूरी मात्रा तथा नेत्रजन की आधी मात्रा बुआई के समय तथा जो बची हुई शेष नाइट्रोजन की मात्रा जो होती है बुआई के 25 से 30 दिनों के बाद दें। किसान भाई, कुटकी की अच्छी उपज लेने के लिए चाहिए कि हम लोग जो भी प्रभेद का चुनाव करें वो अच्छे प्रभेद हो और जो कीट रोग व्याधियों के प्रति वो रेसिस्टेंट वैरायटी हो, तो उसमें जो उच्च उत्पादन क्षमता देने वाली प्रभेद है CLMV1, इसकी परिपक्वता अवधि है 85 से 90 दिन और इसकी औसत उपज 14 से 16 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। इस प्रभेद के दानों में उच्च आयरन एवं जिंक की मात्रा होती है तथा यह जो प्रो मक्खी जिसको हम लोग सूट फ्लाई कहते हैं उसके प्रति प्रतिरोधी किस्म है। इसके साथ ही दूसरी सबसे अच्छी वैरायटी है BL6 जिसको हम लोग छत्तीसगढ़ कुटकी एक भी कहते हैं। इसकी परिपक्वता अवधि 90 से 95 दिन है। इसमें भी प्रचुर मात्रा में जिंक कैल्शियम की मात्रा होती है। इसकी औसत उपज 12 से 14 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। इसी तरह जो अन्य प्रभेद है वो BL4 है जिसको जो ये अगात किस्म है ये 75 से 80 दिनों में तैयार हो जाती है। इसकी औसत उपज 13 से 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। इसी तरह एक और बहुत अच्छी प्रभेद है जिसको हम लोग DHLM 36-3, इसकी परिपक्वता अवधि 95 से 100 दिनों की है। इसकी औसत उपज 14 से 16 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। इसके अन्य प्रभेद भी बहुत अच्छे अच्छे प्रभेद है जैसे Phool 81 और LMV 602, ये भी बहुत अच्छा दे रही है, उपज दे रही है। किसान भाई ये सब प्रभेदों को यदि खेती करें तो उन्हें उपज के साथ साथ अच्छा आय भी बढ़ेगी।
8: जी सर, किसान भाई बहन एक और बात से परेशान होते हैं कि अक्सर फसल में कीट लग जाते हैं, रोग हो जाता है, तो कुटकी के कौन कौन से प्रमुख कीट होते हैं और रोग होते हैं और इसका रोकथाम कैसे किया जा सकता है?
9: कुटकी में जो कीट में सबसे ज्यादा जो ग्रसित होती है वो है प्रो मक्खी। उसका हम लोग प्रबंधन कैसे करें तो प्रो मक्खी की हम लोग को निगरानी फिश मील ट्रैप द्वारा हम लोग को करना चाहिए और यदि पौध मृत्यु दर की भरपाई के लिए हम लोग बीज दर जो है 1.5 गुना ज़्यादा अपनाना चाहिए। और जैसे कि यह समस्या यदि आती हो तो 4-8-10% ग्रेन्यूल्स होता है उसको मिट्टी में 8 से 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से डाल देनी चाहिए। और खेत की तैयारी के समय से पहले जो प्रो मक्खी की घटनाओं को कम करने के लिए कार्बोफ्यूरोन जो दवा आती है उसे 1.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर में मिट्टी में अच्छा तरह से मिला के उसमें डाल दें। और किनोल फॉक्स एक दवा आती है 2 मिलीलीटर प्रति लीटर का छिड़काव, यदि प्रो मक्खी का संक्रमण ज़्यादा आपको दिखाई दे तो उस समय किनोल फॉक्स का छिड़काव कर सकते हैं। इसी तरह रोग में हम लोग देखते हैं कि मृदो मिल आसिता रोग इसमें पकड़ता है तो उसके लिए प्राथमिक संक्रमण से पौधों की पत्तियां पीली पड़ जाती है तथा सफेद हो जाती है। प्रभावित पौधों पर शायद कभी फूल आते हैं। जब संक्रमण हल्का होता है तो पौधों की बालियां विकसित हो सकती है लेकिन फूलों के हिस्से पर पत्तेदार संरचना में बदल जाते हैं जिसके लिए इसके नियंत्रण के लिए प्रतिरोधी किस्मों जैसे कि हम बताएं इसके पहले प्रतिरोधी किस्मों के बारे में तो किसान भाई वो लगा सकते हैं या संक्रमित पौधों के मलबे को एकत्र कर उसे तुरंत खेत से हटा देना चाहिए या दवा आती है रिडोमिल MZ72WP 3 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से उपचार करने से बीज जनित संक्रमण को खत्म करने में सहायता मिलती है। इस प्रकार हम रिडोमिल MZ 3 ग्राम प्रति लीटर पानी का छिड़काव रोग को नियंत्रित करने में से सफलतापूर्वक हम लोग इसके रोग को नियंत्रित कर सकते हैं।
8: तो किसान भाई बहनों, आप जिस तरीके से सर ने बताया उस प्रकार से आप अगर कुटकी मिलेट की खेती करते हैं तो आपको मुनाफा होगा और आपकी फसल अच्छी होगी। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाई बहनों, आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। आप अपना और अपनी फसलों का रखें विशेष ध्यान और अपनी मिट्टी से करें ढेर सारा प्यार। नमस्कार। उन्नत कृषि
10: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
11: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in।
12: हर घर सूर्य घर।
13: नमस्ते क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
14: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
13: तो आप समझ गए टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना है। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए टीबी हारेगा देश जीतेगा।
4: सुनो सुनो सुनो सभी, एक जरूरी बात, आया मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण फिर एक बार। अगर आपके घर या पड़ोस में है 5 साल या उससे छोटे बच्चे जिनका कोई भी टीका छूट गया हो तो सोचते क्या हो, जल्दी से आशा दीदी से करो बात। बच्चों को स्वास्थ्य केंद्र है लेकर जाना और उनका टीकाकरण है करवाना।
15: सुहाना सफर और ये मौसम हसी,
4: टीको ये मौसम है टीकाकरण करवाने का, तो सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
16: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
17: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
12: हर घर सूर्य घर।
8: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
18: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
8: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
18: आपकी सेहत की बातें,
8: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
18: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
8: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
18: वो कहाँ पर?
8: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
18: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।
8: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 22 से 26 जुलाई के दौरान आसमान में घने बादल छाए रहेंगे और जिले में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी चलने और हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 26 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 90 प्रतिशत और दोपहर में 70 से 80 प्रतिशत रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए, जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दे, पिछले कुछ दिनों में हुई वर्षा का लाभ उठाइए और आगे भी संभावना है कि वर्षा होगी, तो ऐसी स्थिति में धान की रोपाई के लिए व्यवस्था सुनिश्चित कर ले। रोपाई से पहले प्रति हेक्टेयर 25 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस, 30 किलोग्राम पोटाश और 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट का प्रयोग करें। आपको बता दें कि निचली जमीन के चारों ओर मजबूत मेड़ यानी कि बांध बनाकर वर्षा जल का संचयन कर ले, ताकि जरूरत पड़ने पर आप वर्षा के जल का सिंचाई में उपयोग कर सके। जो किसान भाई बहन श्री अन्न की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दे, मोटे अनाजों की खेती के लिए उचास भूमि का चयन करें। मड़वा की वकुला KMR 316, GPU 67 और VL 379 राजेंद्र मड़वा RU 8 और RU 3। और आपको बता दे कौनी की अनुशंसित किस्में हैं राजेंद्र कौनी 1, आप इन किस्मों की बुआई कर सकते हैं। मक्का की खेती करने वाले किसान भाई बहन ध्यान दे, खरीफ मक्का की बुआई आसमान साफ रहने पर ही करें। खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और ध्यान रखें कि बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नेत्रजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश जरूर डालें। अनुशंसित मक्का की किस्में जैसे सुवान देवकी, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, राजेंद्र संकर मक्का 3, गंगा 11 है। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दे, मिर्च, अगाध गोभी, टमाटर जैसी सब्जियों की नर्सरी तभी तैयार करें जब आसमान साफ हो। और बागवानी करने वाले भाई बहन ध्यान दें, जुलाई अगस्त आम के पौधों के रोपण के लिए सबसे उपयुक्त समय होता है। कलमी पौधों की रोपाई 10 10 गुना 10 मीटर और बीजू पौधों की रोपाई 12 गुना 12 मीटर की दूरी पर करें। सघन बागवानी के लिए 5 गुना 5 मीटर और अम्रपाली के लिए 2.5 गुना 2.5 मीटर की दूरी रखें। फलदार वृक्षों में प्रति वर्ष 1 किलोग्राम नाइट्रोजन, 30 किलोग्राम फास्फोरस, 700 किलोग्राम पोटाश और 80 से 100 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद जरूर डालें। आपको बता दें, इस समय केला के स्वस्थ सकर्स की रोपाई करें। लंबी किस्मों जैसे अल्पान, कंथली, मालभोग, चिनिया, G9 और बोनी किस्में जैसे ग्रैंड नेन, रोबस्टा, बसराई का चयन करना सबसे फायदेमंद होता है। लंबी किस्मों के लिए 2 गुना 2 मीटर और बोनी किस्मों के लिए 1.5 गुना 1.5 मीटर की दूरी रखें। प्रत्येक गड्ढे में 5 किलोग्राम गोबर की खाद, 500 ग्राम अरंडी की खली, 300 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट, 100 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश और 10 ग्राम कार्बोफ्यूरान मिलाना न भूलें। रोपाई से पहले सकर्स को कार्बन डाइजिन 2 ग्राम प्रति लीटर पानी से उपचारित करें। किसान भाई बहनों, टिश्यू कल्चर पौधे का उपयोग अधिक उत्पादन के लिए लाभकारी होता है। पशुपालक भाई बहन ध्यान दें, पशुओं में PPR, MFD यानी कि खुरपका मुंहपका और HS यानी कि गला घोटू, इन रोगों का खतरा अधिक है। इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण करवाएं, उन्हें साफ और सूखा रखें और बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। रोग के लक्षण अगर दिखाई दे तो तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें और ध्यान रखें कि पशुओं की बिना जरूरत के आवाजाही पर नियंत्रण रखें। गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए जून माह में अगर टीके नहीं लगाए गए हों तो इस महीने में टीके जरूर लगवा दें। पशुओं को संतुलित और पौष्टिक आहार दें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।
14: सुनिए, क्या आपने PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
10: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
14: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो PM सूर्य घर.gov.in पर।
12: हर घर सूर्य घर।
17: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक

0: नियंत्रित रखने के लिए इसके प्राकृतिक शत्रुओं जैसे ब्लिस्टर बीटल, ग्राउंड बीटल, चिड़िया, छिपकली, मेढक, मकड़ी इत्यादि का संरक्षण करना चाहिए। ग्रास हॉपर कीट फसल की पत्तियों को एक या दो किनारों से खाता है। इसके उग्र आक्रमण की दशा में सिर्फ मध्य शिरा ही बचा रह जाता है। फलस्वरूप पौधे की वानस्पतिक वृद्धि प्रभावित होती है। इसकी संख्या प्रति वर्ग मीटर 3 से 7 होने पर इसके जैविक या रासायनिक नियंत्रण के उपाय करने चाहिए। फुदका कीट का प्रबंधन आप इस प्रकार कर सकते हैं। खेत में जगह जगह पक्षी बैठक लगाना, जैविक कीटनाशी के रूप में यूवेरिया बेसिना 2.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और मेटारीजियम स्पी का 2.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और नीम तेल 1500 ppm का 3 से 5 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से फसल पर छिड़काव करना चाहिए। रासायनिक कीटनाशी के रूप में क्लोरपाइरीफास 20% ईसी की 2.5 से 3 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोलकर या फिर लैम्डा साही हेलोथ्रीन 5% ईसी की 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें या फिर डेल्टा मेथ्रीन 2.8% ईसी की 1 से 1.5 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोलकर या फिर फिप्रोनील 5% SC का 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करना चाहिए। छिड़काव कार्य शाम के समय यानी कि दोपहर 4 बजे के बाद करना अच्छा होता है। विशेष सेवा या सुविधा के लिए अपने नजदीक के पौधा संरक्षण केंद्र या कृषि विज्ञान केंद्र अथवा पौधा संरक्षण सहायक निदेशक उद्यान या जिला कृषि कार्यालय से संपर्क करें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई। क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।
1: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले।
2: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
3: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
2: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
4: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें। PM सूर्य घर .gov.in पर।

हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से 90.8 एफएम ग्रीन और मैं हूँ आपके साथ आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं युवाओं के करियर के बारे में और खास तौर से एग्रीकल्चर के फील्ड में आप अपना करियर कैसे बना सकते हैं, किस दिशा में आप जाकर अपना करियर बेहतर बना सकते हैं, इस बारे में हम बात करने वाले हैं। आपने बैंकिंग एग्जाम्स के बारे में तो जरूर सुना होगा और उन्हीं बैंकिंग एग्जाम्स में से एक एग्जाम होता है IBPS AFO, यानी कि IBPS के द्वारा जो बहुत सारे उनमें से एक होता है एग्रीकल्चरल फील्ड ऑफिसर। अगर हम IBPS AFO के बारे में बात करें तो

अब तक आप समझ गए होंगे ये एग्जाम IBPS कंडक्ट करवाता है। IBPS यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन। आपको बता दें कि देश भर के सरकारी बैंकों में IBPS के द्वारा एग्रीकल्चरल फील्ड ऑफिसर यानी कि AFO के पद पर नियुक्ति की जाती है। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि IBPS AFO है क्या। ये परीक्षा एग्रीकल्चर ग्रेजुएट या फिर उनसे संबंधित छात्रों के लिए विशेष तौर पर ली जाती है। और AFO का जो मुख्य काम होता है, मेन काम होता है, वो होता है किसानों और कृषि ग्राहकों के लिए बैंकिंग सेवाएं देना, किसान के ऋण का मूल्यांकन करना, ग्रामीणों को वित्त सलाह देना और फिर किसानों को वित्त सलाह देना और साथ ही कृषि ऋण सहायता देना, ऐसे जो भी काम होते हैं यानी कि किसानों से जुड़े हुए बैंक में जो भी काम होते हैं वो एक AFO देखते हैं। और अगर हम बात करें कि AFO का नोटिफिकेशन कब आता है, तो आमतौर पर AFO का नोटिफिकेशन जून से जुलाई के बीच आ जाता है। फिर ऑनलाइन आवेदन का जो लिंक होता है वो 1 से 3 हफ्ते तक ये खुला रहता है। तो अगर हम बात करें आगे आने वाले नोटिफिकेशन के बारे में, तो आप जून या जुलाई में इस नोटिफिकेशन की उम्मीद कर सकते हैं। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप IBPS AFO के लिए एलिजिबल हैं या नहीं, तो इसकी योग्यता क्या होती है, तो 4 साल का आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए और जाहिर सी बात है ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड एग्जाम है, पोस्ट है, तो इसके लिए आपके पास एग्रीकल्चर रिलेटेड डिग्री ही होनी चाहिए। आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री एग्रीकल्चर में हो सकती है, हॉर्टिकल्चर में हो सकती है, डेयरी साइंस में हो सकती है, फिशरी में हो सकती है, फॉरेस्ट्री में हो सकती है, या फिर आपने फूड टेक्नोलॉजी में किया हुआ है ग्रेजुएशन, या फिर आपने एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग भी की हुई है, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। वहीं अगर हम बात करें कि आपकी एज लिमिट क्या होनी चाहिए, तो मिनिमम आप 20 साल के होने चाहिए, अधिकतम आप 30 साल के होने चाहिए। और वहीं सरकारी नियमों के अनुसार OBC को अधिकतम वर्ष में 3 साल की छूट दी जाती है, वहीं ST या SC को 5 साल की छूट दी जाती है। और वहीं अगर आप पीपल विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के कैटेगरी में फॉर्म भरते हैं तो आपको 10 साल तक की छूट दी जाती है। और अब हम बात कर लेते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, यानी कि आपके एग्जाम का पैटर्न क्या होता है। तो आमतौर पर IBPS के जो भी एग्जाम्स होते हैं वो प्रीलिम्स, मेंस और फिर कई एग्जाम्स में इंटरव्यू भी होता है। तो इस एग्जाम में भी आपको इंटरव्यू फेस करना पड़ता है, लेकिन उससे पहले प्रीलिम्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो प्रीलिम्स एग्जाम ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है और ये ऑनलाइन कंडक्ट कराया जाता है। इसमें इंग्लिश के आपके 50 क्वेश्चन होते हैं, रीजनिंग के भी 50 क्वेश्चन होते हैं और वहीं क्वान्टिटिव एप्टीट्यूड के भी आपके 50 क्वेश्चन होते हैं। और आपको तीनों ही सेक्शन के लिए 40-40 मिनट का टाइम दिया जाता है, यानी कि टोटल 2 घंटे का आपका प्रीलिम्स होता है। और साथ ही अगर हम बात करें तो टोटल 150 क्वेश्चन होते हैं और 125 मार्क्स के लिए ये 150 क्वेश्चन होते हैं। और हर एक गलत जवाब पर आपके 0.25 मार्क्स कट जाते हैं, यानी कि 1/4 मार्क्स आपके कट जाते हैं। और प्रीलिम्स एग्जाम के आगे की बात करें, यानी कि मेंस के बारे में बात करें, तो मेंस का एग्जाम आपका 45 मिनट का होता है और ये भी ऑनलाइन होता है और ऑब्जेक्टिव बेस्ड ही होता है। तो अब हम बात करते हैं कि मेंस में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मेंस में आपके जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो होते हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड, पूरी तरह से जो भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी प्रोफेशनल नॉलेज है वो आपके पास होनी चाहिए मेंस को क्वालिफाई करने के लिए। और मेंस के मार्क्स जो होते हैं ना वो फाइनल मेरिट में काम आते हैं। और मेंस अगर आपने क्वालिफाई कर लिया तो आप इंटरव्यू भी फेस करते हैं। इंटरव्यू जैसे कि आमतौर पर होता है एक क्वालिफाइंग पर्सनैलिटी टेस्ट होता है, लेकिन आपका जो फाइनल रिजल्ट बनता है यानी कि फाइनल मेरिट जो आपका बनता है उसमें इंटरव्यू का 20% और मेंस का 80% मार्क्स लिया जाता है। और इसके साथ ही अगर हम बात करें सिलेबस के बारे में क्या होता है, तो प्रीलिम्स का जो रीजनिंग का सिलेबस होता है जो आम तौर पर बैंकिंग एग्जाम्स के होते हैं, यानी कि पजल्स होते हैं, सिटिंग होते हैं, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, इनइक्वालिटीज जैसे टॉपिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस रीजनिंग में पूछे जाते हैं। वहीं अगर हम बात करें कि क्वांटिटिव एप्टीट्यूड में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो नंबर सिस्टम, इसके बिना बैंकिंग का एग्जाम कैसे पूरा हो सकता है, रेशियो, टाइम एंड वर्क, परसेंटेज, DI, प्रॉफिट लॉस, ऐसे कई सारे टॉपिक्स होते हैं जो अगर आपने बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी की है या कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल अच्छे से पता होगा। अगर नहीं कर रहे हैं तो फिर आप इन टॉपिक्स के बारे में बहुत अच्छे से जान लीजिए और एक एक करके हर एक टॉपिक को पढ़ना अभी से शुरू कर दीजिए। और इसके साथ ही इंग्लिश के बारे में अगर हम बात करें, तो इंग्लिश में आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पूछा जाता है, क्लोज पूछा जाता है, एरर स्पॉटिंग होता है, पैरा सिंबल्स होता है, जैसे बहुत ही बेसिक से जो सवाल होते हैं वो पूछे जाते हैं। इसके साथ ही अगर हम बात करें कि मेंस में क्या पूछा जाता है, तो मेंस में
प्रोफेशनल नॉलेज देखी जाती है आपकी एग्रीकल्चर की कितनी है। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपने एग्रीकल्चर के बारे में जितनी पढ़ाई की है वो तो काम आने ही वाली है, और साथ ही एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स है वो भी आपको रटे हुए होने चाहिए, वो भी आपको पता होना चाहिए। अगर हम कुछ टॉपिक्स की बात करें जो मेंस में पूछे जाते हैं, तो इंडिया में एग्रीकल्चर कैसा है इस बारे में पूछा जाता है, सॉयल साइंस होता है और क्रॉप प्रोडक्शन होता है, हॉर्टिकल्चर होता है और एनिमल हस्बेंड्री होता है, ऐसे बहुत सारे जो टॉपिक्स होते हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड बेसिक टॉपिक्स होते हैं वो ज़रूर पूछे जाते हैं। और अगर अब तक आपने मन बना लिया है कि आपको IBPS AFO बनना है तो इसके लिए तैयारी कैसे करें, तो सबसे पहले तो आप अपने सिलेबस को बहुत ही अच्छी तरीके से समझें, सारे टॉपिक्स की लिस्ट बनाएं और कब कैसे किन टॉपिक्स की तैयारी करनी है, कहां से किसकी तैयारी करनी है ये भी आप अपने दिमाग में बिठा लें या नोट कर लें, और साथ ही आप एक स्टडी प्लान भी बना लें कि आपको हर रोज़ आपको कितने टॉपिक पढ़ने हैं या फिर एक हफ्ते में आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। इन तरीकों से आप अपना एक स्टडी प्लान बना लें और हर एक सब्जेक्ट के लिए एक प्रॉपर टाइम ज़रूर निर्धारित कर लें। आप एक दिन में अगर 3 सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना फिर आप इंग्लिश रीजनिंग के साथ या तो फिर इंग्लिश क्वांट के साथ जा सकते हैं, और साथ में आपको एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स आ रहे हैं आपको सारे करंट अफेयर्स पढ़ने होंगे, उनसे रिलेटेड जो भी नए रेगुलेशंस आते हैं, रूल्स आते हैं, और अगर कोई नई योजना आई हुई है तो उसके बारे में भी आपको जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इन चीज़ों के लिए बुक्स की हेल्प ले सकते हैं, और अभी तो हमारे पास सूचनाओं की जानकारियों की बाढ़ है और आप YouTube से भी तैयारी कर सकते हैं अगर आप कंफर्टेबल हैं तो, और अगर आपकी तैयारी हो जाती है तो आप प्रैक्टिस करें, रिवीजन करें, मॉक टेस्ट लगाएं। हर किसी का कोई ना कोई वीक एरिया होता है, तो वीक एरिया पर आप ज़्यादा फोकस करें, और जहां गलती हो रही है मॉक टेस्ट में पता लग जाता है कि आपका कौन सा वीक एरिया है और कहां ज़्यादा आप गलतियां कर रहे हैं। कई बार हमारी तैयारी बहुत अच्छी होती है पर हम टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं, तो मॉक टेस्ट आपको इसके लिए हेल्प करता है। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रखें, और इसके साथ ही बैंकिंग अवेयरनेस, करंट अफेयर्स भी आप ज़रूर पढ़ें। जो भी कृषि योजनाएं आ रही है, किसान क्रेडिट कार्ड, गवर्नमेंट स्कीम्स वगैरह के बारे में पढ़ना आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रखें, और इसके साथ ही जैसे कि हमने आपको बताया कि आम तौर पर IBPS AFO का जून से जुलाई के बीच में नोटिफिकेशन आ जाता है, लेकिन आप रेगुलरली चेक करते रहें कि आपका नोटिफिकेशन कब आने वाला है और कहाँ से अप्लाई करना है, उसके लिए जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको लगनी है वो सारी चीज़ें आप इकट्ठी करके रखें। किसी भी एग्ज़ाम की या पोस्ट की तैयारी के लिए जो मोटिवेशन होता है ना, कई बार उस पोस्ट से मिलने वाली सैलरी भी होती है, और अगर हम IBPS AFO की सैलरी की बात करें तो इन हैंड सैलरी जो होती है ना वो 38,000 से 60,000 पर मंथ की हो सकती है, और डिपेंड करता है कि आपकी पोस्टिंग की लोकेशन क्या है। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक अगर आप इस एग्ज़ाम के लिए या फिर किसी भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो, और ऐसी ही ढेर सारी जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहें।

0: पिता कितनी गंभीर बीमारी है। टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MRT का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हो तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टीको क्यों है इतने जीरो?
1: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात, अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
0: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
1: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
5: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले। कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
6: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
5: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
7: PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
8: कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 ग्रीन FM। उन्नत कृषि।
9: नमस्कार श्रोताओं, आपने ट्यून किया है 90.8 MHz हर रोज की तरह उन्नत कृषि कार्यक्रम में। एक बार फिर आपका स्वागत है और हमारे बीच एक खास एक्सपर्ट, जी हाँ, खेती बाड़ी से जुड़ी बातें होती हैं इस कार्यक्रम में। और आज हम बात करेंगे सब्जियों की, और सब्जियों में अगर गोभी वर्गीय फसलों की बात करें और इसकी खेती के बारे में बात करें तो आज हमारे बीच आए हैं डॉक्टर RK शर्मा सर। मैं आप सभी को बता दूँ गोभी वर्गीय सब्जियों की सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
10: धन्यवाद
9: डॉक्टर साहब। अगर गोभी वर्गीय फसल की बात करें तो क्या इसमें ये पत्ता गोभी और फूल गोभी आते हैं या इसके अलावे भी कोई और सब्जियां आती हैं?
10: आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि गोभी वर्गीय सब्जियों में मुख्यतः फूल गोभी, पत्ता गोभी, गांठ गोभी, ब्रोकली या हरी गोभी, तब दूसरा से स्प्राउट आती हैं। ये मुख्य रूप से हमारे इलाके में फूल गोभी, पत्ता गोभी या बंद गोभी को हम लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन गांठ गोभी, ब्रोकली, हरी गोभी, ब्रूसर पाउड जो है पहाड़ी इलाके में, हिमाचल प्रदेश के इलाके में, कश्मीर के इलाके में बहुत आयत रूप में होती है, लेकिन अब हमारे क्षेत्र में भी धीरे धीरे इन फसलों की मांग बढ़ती जा रही है।
9: डॉक्टर साहब, अगर जलवायु की बात करें तो इन सब्जियों के लिए किस प्रकार की जलवायु की आवश्यकता होती है और मिट्टी भी बहुत ज़रूरी होता है, तो क्या pH मान होना चाहिए मिट्टी का, किस प्रकार की मिट्टी होनी चाहिए इसकी खेती के लिए?
10: जैसा कि आपने आरंभ में कहा कि ये ठंडे मौसम की फसल है और ठंड के मौसम में ही हम लोग इस गोभी वर्गीय फसलों को मतलब लगाते हैं और इनका इस्तेमाल करते हैं। किसान भाइयों, गोभी वर्गीय सब्जियों के लिए ठंडी और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। यदि दिन अपेक्षाकृत छोटे हों तो फूल की बढ़ोतरी अधिक होती है। फूल तैयार होने के समय तापमान अधिक होने से फूल पत्तेदार और पीले रंग के हो जाते हैं। अगेती जातियों के लिए अधिक तापमान और बड़े दिनों की आवश्यकता होती है। जिस भूमि 5.5 से 7.5 के मध्य हो वह भूमि गोभी वर्गीय सब्जियों के लिए उपयुक्त मानी गई है। लवणीय भूमि में फफूंदी व जीवाणु से फैलने वाले रोग ज्यादा होते हैं। अगेती फसल के लिए अच्छे जल निकास वाली बलुई दोमट मिट्टी तथा पछेती के लिए दोमट या चिकनी मिट्टी उपयुक्त रहती है। साधारणतया गोभी वर्गीय सब्जियों की खेती विभिन्न प्रकार की भूमियों में की जा सकती है। भूमि जिसमें पर्याप्त अच्छी होती है, हल्की संरचना वाली भूमि में पर्याप्त मात्रा में जैविक खाद डालकर भी इसकी खेती की जा सकती है।
9: जी, ये बात तो हो गई जलवायु और मिट्टी की कैसी होनी चाहिए। अब बात करते हैं जो खेत की तैयारी है इसके लिए, गोभी वर्गीय सब्जियों के लिए खेत की तैयारी और साथ ही पौधशाला की तैयारी किस प्रकार करनी चाहिए किसान भाइयों को।
10: किसान भाइयों, हम जैसा जानते हैं कि बहुत सी हमारी जो सब्जी वाली जो फसल होती है उनके बीज काफ़ी छोटे होते हैं, इसलिए उन्हें हम डायरेक्ट जो है खेत में नहीं लगा करके पहले उनकी पौधशाला तैयार करते हैं। और पौधशाला में जब 4 से 6 सप्ताह के जो पौधे हो जाते हैं तब उन्हें हम अपने मुख्य खेत में स्थानांतरित करते हैं या प्रतिरोपण उनका करते हैं। किसान भाइयों, गोभी वर्गीय सब्जियों के लिए भूमि की जुताई 2 बार मिट्टी पलटने वाले हल से करें। इसके बाद 2 बार कल्टीवेटर चलाएं और प्रत्येक जुताई के बाद पाटा अवश्य लगाएं। गोभी वर्गीय सब्जियों की खेती के लिए पौधशाला में इनका बीज डालकर पौध तैयार कर लेना चाहिए। 2 से 3 ग्राम कैप्टान या ब्रेसिकोल प्रति किलोग्राम बीज की दर से बीजों को शोधित कर लेना चाहिए। 160 से 175 मिलीग्राम कैप्टान या ब्रेसिकोल को 2 दशमलव में मिलाकर प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से नर्सरी वाली भूमि का शोधन करना चाहिए। स्वस्थ पौधे तैयार करने के लिए भूमि तैयार होने पर 0.75 मीटर चौड़ी, 5 से 6 मीटर लंबी, 15 से 20 सेंटीमीटर ऊंची क्यारियां बना लेनी चाहिए। 2 क्यारियों के बीच में 40 से 50 सेंटीमीटर चौड़ी नाली पानी देने तथा अन्य सस्य क्रियाओं को करने के लिए रखनी चाहिए। पौध डालने से पहले 8 से 10 ग्राम यूरिया टॉप पोटास व 5 ग्राम यूरिया प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से क्यारियों में मिला देना चाहिए। बीज 5 सेंटीमीटर दूरी की कतारों में डालना चाहिए। क्यारियों में बीज बुआई के बाद सड़ी गोबर की खाद से बीज को ढक देना चाहिए। इसके 1 से 2 दिन बाद यदि नर्सरी में नमी की कमी हो तो हजारे या झरने से पानी क्यारियों में देना चाहिए।
9: जी डॉक्टर साहब, देखा जाता है कि जब किसान भाई पौधशाला से मुख्य खेत में पौधे को लगाते हैं तो उस समय कुछ सावधानियों की जरूरत होती है, वो क्या है? क्या
10: पौध तैयार करते हैं तो पौध को जो है उसके बाद जब हम उनको प्रतिरोपित करते हैं मुख्य खेत में तो इस बात की पूरी सावधानी बरतनी चाहिए कि 4 से 6 सप्ताह पुरानी पौध ही मुख्य खेत में रोपित करें। रोपनी के लिए पौधे निकालने के 3 से 4 दिन पहले से सिंचाई बंद कर देनी चाहिए और पौधों को निकालने से 2-3 घंटे पहले अच्छी तरह से सिंचाई करें जिससे जड़ों को नुकसान न हो। यथासंभव रोपाई शाम को करनी चाहिए। रोपाई से पूर्व जड़ों को बेविस्टिन 2 ग्राम प्रति लीटर या थाइरम 2 से 3 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से बने घोल में डुबाना चाहिए। रोपाई के तुरंत बाद सिंचाई अवश्य कर देनी चाहिए।
9: जी तो यहाँ पर बातें हो गई सावधानी की तैयारी हम कैसे करें, वो भी बातें हो गई। अब जो खास बात वो होता है कि उर्वरक मात्रा में देना चाहिए। डॉक्टर साहब, क्या कुछ मात्रा होनी चाहिए उर्वरकों की?
10: किसान भाइयों, गोभी वर्गीय सब्जियों की खेती के लिए खेत में 20 से 25 टन सड़ी हुई गोबर की खाद या कंपोस्ट खाद रोपाई के 3 से 4 सप्ताह पूर्व खेत में अच्छी तरह मिला देनी चाहिए। इसके अलावा 120 किलोग्राम नाइट्रोजन फॉस्फोरस वो 40 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर की दर की 1/3 मात्रा वो फॉस्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा अंतिम जुताई या रोपण से पूर्व खेत में अच्छी नाइट्रोजन की मात्रा को 2 बराबर भागों में बांटकर खड़ी फसल में 30 से 45 दिन बाद।
9: अब बात करते हैं कि खरपतवार नियंत्रण, ये भी बहुत जरूरी होता है और साथ ही पौधों की देखभाल।
10: और ये बता दूं आपको कि सब्जी वाली फसल में अगर खरपतवार का नियंत्रण हम सही रूप से बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि खरपतवार ही विशेष रूप से सब्जी वाली फसलों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। किसान भाइयों, गोभी वर्गीय सब्जियों में पौध रोपण से लेकर फूल तैयार होने तक 2 या 3 निकाई गुड़ाई से खरपतवार की रोकथाम हो जाती है। क्योंकि गोभी वर्गीय सब्जियां उथली जड़ वाली फसल हैं, इसलिए उनकी निकाई गुड़ाई ज़्यादा गहरी न करें और खरपतवार को उखाड़ कर नष्ट कर दें। खरपतवार नाशी स्टाम्प 3.3 लीटर को 1000 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर का छिड़काव रोपाई से पूर्व काफ़ी लाभप्रद होता है। पौधों की जड़ों के पास मिट्टी चढ़ाने से पौधे सुरक्षित रहते हैं। पौध रोपण के 4 से 6 सप्ताह पश्चात पौधों में मिट्टी चढ़ा दें, जिससे फूलों के भार से पौधे टेढ़े न हो जाएं।
9: जी, और अब यहाँ पर बात आती है कि सिंचाई कितने दिनों के अंतराल पर करनी चाहिए गोभी वर्गीय सब्जियों के लिए?
10: किसान भाइयों, पौधों को अच्छी वृद्धि के लिए मिट्टी में पर्याप्त मात्रा में नमी का होना अत्यंत आवश्यक है। सितंबर के बाद 10 या 15 दिन के अंतराल पर आवश्यकता अनुसार सिंचाई करते रहना चाहिए। ग्रीष्म ऋतु में 5 से 7 दिन के अंतर पर सिंचाई करें। रोपाई के तुरंत बाद सिंचाई करें। अगेती फसल में बाद में 1 सप्ताह के अंतर से, देर वाली फसल में 10 से 15 दिन के अंतर से सिंचाई करें। यह ध्यान रहे कि फूल निर्माण के समय भूमि में नमी की कमी नहीं होनी चाहिए। अगेती किस्मों की अपेक्षा पिछेती किस्मों को अधिक जल की आवश्यकता होती है। सिंचाई प्रातःकाल करनी चाहिए।
9: जी, अब डॉक्टर साहब उन्नत प्रजातियों के बारे में बता दें, फूल गोभी की कौन कौन सी उन्नत प्रजाति है?
10: हाँ किसान भाइयों, फूल गोभी की अगेती प्रजातियों में पूसा दीपाली, अरली, हाजीपुर अगात आदि हैं। मध्यम प्रकार की प्रजातियों में अगहनी, पूसी, पटना मेन, पंत शुभ्रा, नरेंद्र गोभी 1, अरली स्नोबॉल, पूसा हाइब्रिड 2, पूसा अगहनी एवं पटना मध्यम है। पचेती प्रजातियों में पूसा स्नोबॉल 16, पूसा स्नोबॉल 1, पूसा स्नोबॉल 2, पूसा विश्व भारती, ज्वाइंट स्नोबॉल आदि हैं।
9: जी, फूल गोभी की अगेती मध्यम और पछेती किस्मों के बीजों को अगर पौधशाला में गिराते हैं तो क्या उपयुक्त समय है, और मुख्य खेत में कब और कितनी दूरी पर इनका रोपण करना चाहिए, साथ ही बीज दर क्या होना चाहिए डॉक्टर साहब?
10: किसान भाइयों, अगेती में मध्य जून से जुलाई के प्रथम सप्ताह तक पौधशाला में बीज डालकर पौध तैयार करके 30 दिन बाद मुख्य खेत में 45 सेंटीमीटर × 45 सेंटीमीटर की दूरी पर पौध की रोपाई करनी चाहिए। मध्यम फसल में अगस्त के मध्य में पौधशाला में बीज डालकर पौध तैयार करके 30 दिन बाद मुख्य खेत में 50 सेंटीमीटर × 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रोपाई करनी चाहिए। पचेती फसल में मध्य अक्टूबर से मध्य नवंबर तक पौधशाला में बीज डालकर पौध तैयार कर लेना चाहिए और 30 दिन बाद मुख्य खेत में 60 सेंटीमीटर × 60 सेंटीमीटर की दूरी पर रोपाई करनी चाहिए। 1 हेक्टेयर खेत के लिए 450 ग्राम से 500 ग्राम बीज की बुवाई करनी नर्सरी में करनी चाहिए।
9: जी, अगर फूलगोभी की बात हो रही तो सूक्ष्म तत्वों का क्या महत्व है इसमें, और साथ ही ये ब्लांचिंग क्या होता है इसके बारे में बताएं?
10: बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। पड़ती है सूक्ष्म तत्वों की कमी से कई बार क्या होता है, इनमें फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर हो जाता है, जिसे आप लोग समझते हैं कोई रोग हो गया, बल्कि ये कोई रोग नहीं होता है। ये मतलब सूक्ष्म तत्वों की कमी से उत्पन्न होने वाला एक तरह का डिसऑर्डर है। किसान भाइयों, फूल गोभी में सूक्ष्म तत्वों के प्रयोग से उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि होती है। इसमें बोरोन और मोलिब्डेनम प्रमुख हैं। बोरोन की कमी को दूर करने के लिए 10 से 50 किलो बोरेक्स प्रति हेक्टेयर की दर से खेत तैयार करते समय मिट्टी में मिला देना चाहिए। मोलिब्डेनम की कमी अम्लीय भूमि में हो जाती है, अर्थात मोलिब्डेनम अनुपलब्ध रूप में हो जाता है, उपलब्ध नहीं हो पाता पौधों को, जिससे पौधे इस तत्व का अवशोषण नहीं कर पाते हैं और विप टेल के लक्षण दिखाई देते हैं। विप टेल भी एक फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर ही है गोभी में। अतः अम्लीयता कम करने के उद्देश्य से 50 से 75 क्विंटल बूझा चूना प्रति हेक्टेयर खेत की तैयारी के समय भूमि में मिला देना चाहिए। इसके साथ ही पौध रोपण के पहले 2.5 से 5 किलो सोडियम मोलिब्डेट प्रति हेक्टेयर भूमि में मिला देना चाहिए, अथवा खड़ी फसल में 0.05% घोल का पौधों पर छिड़काव करना चाहिए। फूलों का रंग आकर्षक सफ़ेद बनाने के लिए पौधों की चारों ओर फैली हुई पत्तियों को फूल के ऊपर समेट कर बांध देने को ही ब्लांचिंग कहते हैं। अच्छा। ब्लांचिंग का मतलब होता है कि जो जब डायरेक्ट सूर्य की धूप में मतलब फूल गोभी के जब जो है फल आते हैं या तो उस समय क्या होता है, उनका रंग जो है सफ़ेद से पीला पड़ जाता है, जिससे उनके क्वालिटी में जो है कमी आ जाती है। इसलिए उसके चारों ओर फैली हुई जो पत्तियां हैं उनको फूल के ऊपर जो है समेट कर बांध देना चाहिए और इस प्रोसेस को हम ब्लांचिंग कहते हैं। धूप से फूल का रंग पीला जाता है, ये क्रिया फूल तैयार हो जाने के 8 से 10 दिन पहले ही कर देनी चाहिए।
9: जी, फूल गोभी की बात हो गई डॉक्टर साहब, अब बंद गोभी की बात करें तो बंद गोभी की कौन कौन सी उन्नत प्रजातियाँ हैं ये भी बता दें।
10: किसान भाइयों, बंद गोभी क्या गेती किस्में हैं? प्राइड ऑफ इंडिया, मीनाक्षी, गोल्डन एकर, अर्ली ड्रम हेड और पिछेती किस्में लेट ड्रम हेड, पूसा ड्रम हेड, अर्ली सॉलिड ड्रम हेड, लॉर्ड माउंटेन हेड, केबेज लेट, सेलेक्टेड डब्लू, डायमंड सिलेक्शन आठ और पूसा मुक्ता।
9: जी डॉक्टर साहब, देखा जाता है कि जो कोई भी फसल हम लगाते हैं तो कीटों के प्रकोप से हमारी फसल को हानि पहुंचती है, तो गोभी वर्गीय फसलों में जो कीट लगते हैं उनसे कैसे रोकथाम करें?
10: बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। चूंकि कीटों से बहुत ज्यादा फसलों को नुकसान होता है, तो इसमें हम लोग जो है किसान भाइयों, कीट पिछेती फसल में लगते हैं, जैसे एफिड्स हैं, कैटरपिलर हैं।
9: जी,
10: तो इसमें यदि एफिड्स का प्रकोप हो तो इमीडा क्लोपीड एक दवाई आती है, इमीडा क्लोपीड का 1 मिलीलीटर 3 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए। बीमारी में अधिकतर पत्तियों पर धब्बे हो जाते हैं जो काले भूरे रंग के बन जाते हैं। इनकी रोकथाम के लिए फफूंदी नाशक डाइथेनम 45 का 2 ग्राम प्रति लीटर का घोल बनाकर छिड़काव करें। कैटरपिलर का प्रकोप होने पर एक दवाई है साइपरमेथ्रिन, उसका 1.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल कर इसमें छिड़काव करना चाहिए। इस प्रकार हम अगर इनकी रोकथाम करेंगे तो हमारी फसल अच्छी होगी और हमारी उपज भी ज़्यादा होगी।
9: जी बिल्कुल सही कहा आपने डॉक्टर साहब, और किसान भाइयों आशा करते हैं आज पूरी जानकारी आपको मिली है गोभी वर्गीय सब्जियों की खेती के बारे में, और आशा करते हैं कि आप अगर खेती कर रहे हैं तो आज के इस वार्ता को सुनकर आपको लाभ मिलेगा। इसी के साथ अगले दिन आपसे मुलाकात होगी एक अलग विषय के साथ। याद रखें इसी फ्रिक्वेंसी 90.8 MHz। नमस्कार। उन्नत कृषि,
11: नमस्ते क्लास। टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है, और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
12: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने, हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
11: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना है। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
13: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
14: हर घर सूर्य घर।
15: सुनो सुनो सुनो सभी, एक जरूरी बात, आया मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण फिर एक बार। अगर आपके घर या पड़ोस में है 5 साल या उससे छोटे बच्चे जिनका कोई भी टीका छूट गया हो तो सोचते क्या हो, जल्दी से आशा दीदी से करो बात। बच्चों को स्वास्थ्य केंद्र है लेकर जाना और उनका टीकाकरण है करवाना। टीकू, ये मौसम है टीकाकरण करवाने का, तो सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
16: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।

0: खसरा कितनी गंभीर बीमारी है। टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MRT का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हो तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टिको क्यों है इतने जीरो?
1: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात, अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
0: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UPIN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
1: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
5: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित BP जांच कराएं। स्वस्थ दिल स्वस्थ जीवन, सेहत सही लाभ कई। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।
6: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
7: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
6: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
8: हर घर सूर्य घर।
5: उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। और दोस्तों आज के टाइम पे ना हर चीज स्मार्ट हो रही है, फिर चाहे हम हो या हमारा फोन हो या फिर हमारे आसपास की लगभग सारी ही चीजें, तो ऐसे में हमारी कृषि क्यों पीछे रहे, उसे भी स्मार्ट होना चाहिए और स्मार्ट फार्मिंग आज के टाइम पे कहें तो जरूरत बन गई है। और इस विषय में हमें विस्तार से बताने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर आदित्य सिन्हा, आप हैं सहायक प्राध्यापक कृषि प्रसार शिक्षा विभाग से। सर आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
9: नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इनवाइट करने के लिए।
5: सर सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि स्मार्ट फार्मिंग क्या है?
9: तो स्मार्ट फार्मिंग ऐसी फार्मिंग को कहते हैं जिसमें कि हम डेटा का यूज करें, जैसे कि नॉर्मल कृषि होती है उसमें हम लोग डेटा पे उतना ध्यान नहीं देते हैं। डेटा मतलब कोई भी ऐसा चीज़ जिसका हम यूज़ कर सकते हैं कृषि में। डेटा आजकल हर चीज़ में डेटा है, अगर आप मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं तो आप अपना कुछ ना कुछ सर्च कर रहे हैं तो वो भी एक डेटा है। कैसे हम डेटा को बेहतर बना सकते हैं, कैसे हम डेटा को यूज़ कर सकते हैं कृषि में, तो हम ऐसे चीज़ों को स्मार्ट कृषि कह सकते हैं। तो आप देखते होंगे अभी नया तकनीक, बहुत सारी तकनीकें आ गई हैं कृषि में, जो भी तकनीक जो डेटा को यूज़ करके आपको अच्छा डिसीजन लेने में मदद करे, ऐसी कृषि को हम स्मार्ट खेती कह सकते हैं।
5: तो सर भारत में स्मार्ट फार्मिंग क्यों जरूरी है?
9: क्योंकि देखिए सबसे पहली बात तो यह है कि भारत में हमारे छोटे जोत के किसान सबसे ज़्यादा भारत में ही हैं, इसीलिए और उनको आप देख रहे होंगे कि आजकल क्लाइमेट चेंज का बहुत ज़्यादा बात है, कभी वर्षा आ जाती है कभी सुखाड़ आ जाता है, तो अगर हम अब हमारे किसान स्मार्ट कृषि का उपयोग नहीं करेंगे तो बहुत सारा प्रॉब्लम वो फेस कर सकते हैं, क्योंकि अगर स्मार्ट कृषि करेंगे तो वो अपने संसाधन का अच्छे से उपयोग कर सकते हैं। आप जानते ही होंगे कि अभी कितना लेबर भी मिलना कितना मुश्किल हो गया है, अभी हर इनपुट का भी कॉस्ट जो है वो बहुत बढ़ गया है। बहुत सारे युवा हैं हमारे वो कृषि से बाहर जा रहे हैं, इसीलिए अगर वो स्मार्ट कृषि करेंगे और बहुत अच्छे से, बहुत ये डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन बहुत लोगों को इससे डर लगता है कि हम कैसे यूज़ करें। बहुत आसान है ये समझना, अगर वो एक छोटा सा ट्रेनिंग कर लें इसके ऊपर कि कैसे हम मोबाइल या उपकरण को कैसे यूज़ करें, तो आराम से उसको सम्मिलित कर सकते हैं अपने कृषि में और अपना पैदावार भी बढ़ा सकते हैं, अपना दाम भी उनको कम लगेगा और ज़्यादा अच्छा पैदावार भी होगा, और जो अभी जो करेंट टाइम्स है उसको भी वो अच्छे से डील कर पाएंगे।
5: सर, जैसे कि आपने कहा कि बहुत सारे लोगों को डर लगता है कि ये बहुत मुश्किल है,
9: बिल्कुल,
5: और उनके मन में ये भी बात आती है कि ये बड़े किसानों के लिए है, जो छोटे लेवल पर खेती गृहस्थी कर रहे हैं उन्हें लगता है कि ये उनके लिए है ही नहीं, क्या ये सच है?
9: बिल्कुल ये सच नहीं है। एक्चुअली अगर मान लीजिए कोई भी किसान जो एक स्मार्टफोन यूज़ करता है, आप जानते होंगे कि एक स्मार्टफोन में आजकल 15 से 18 सेंसर लगे रहते हैं, तो वो सेंसर भी जो है एक तरह से वो स्मार्ट डिवाइस ही है, जो आपका स्मार्टफोन है उसको स्मार्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसमें बहुत सारे सेंसर लगे हुए हैं। जैसे कि आप बहुत तेज़ चलते हैं तो आपका स्टेप्स वो काउंट कर लेता है, मान लीजिए आप उसको बहुत गर्म जगह में मोबाइल फ़ोन को ले जाते हैं तो फिर वो अपने आप बोलता है कि आप इसको किसी ठंडे जगह में ले जाइए। तो ये सब सेंसर का है जो प्रयोग है जो मोबाइल फ़ोन में होता है। ऐसे ही सेंसर हम अपने ज़मीन में भी लगा सकते हैं। आप जानते होंगे बहुत अमेजोन जैसी वेबसाइट पे बहुत कम दाम में सेंसर मिलता है, 1500 रुपये में सॉयल मॉइस्चर सेंसर आप खरीद सकते हैं। तो वो सेंसर अगर आप ज़मीन में लगा देंगे, अपने मिट्टी में लगा देंगे, तो वो बता देगा कि आपकी मिट्टी को कब सिंचाई चाहिए, ऐसे हम कितना पानी जो है वो वेस्ट होता है सिंचाई के चक्कर में। अगर वो आप डिवाइस लगा देंगे 1500 रुपये का, तो आपको बता देगा कि आपको कब आपकी ज़मीन को सिंचाई चाहिए, तो आप इसमें अपना कितना कम पानी लागत आपको कितना कम हो जाएगा अगर आपको कम सिंचाई करनी पड़े तो। बहुत सारे रिसर्च हुए हैं, बहुत सारे शोध में ये पता चला है कि 30-40% जो है आप सिंचाई का पानी बचा सकते हैं। तो मान लीजिए इतना पानी आप बचा लिए तो आपको कितनी लागत कम हो जाएगी कृषि में। तो ये तो एक एग्जाम्पल था, इसलिए बहुत आसान है यूज़ करना, बस थोड़ा सा धैर्य रखना है किसान को कि हम थोड़ा सा छोटा मोटा चीज़ करके ट्राई करें। एक बार वो ट्राई करेंगे तो उनको इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि वो उसको बड़े वृहद स्तर पे कर पाएंगे।
5: ये बहुत अच्छी बात कही सर आपने। तो स्मार्ट फार्मिंग की मुख्य तकनीकें कौन कौन सी है?
9: तो स्मार्ट फार्मिंग की मुख्य तकनीकें तो जैसा अभी मैं बता रहा था कि सेंसर जो है इसको हम IoT भी बोलते हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स इसका फुल फॉर्म है। तो सेंसर के माध्यम से आप बहुत सारा काम कर सकते हैं कृषि में, जैसे कि आपका टेम्परेचर, मान लीजिए कि कब आपका टेम्परेचर कब रहे क्या रहेगा ये भी आप देख सकते हैं, आपके सॉइल के मिट्टी जो है उसमें नमी कितनी हद तक है ये सभी आप सेंसर के माध्यम से देख सकते हैं। तो एक तो कैटेगरी हो गया इसका जिसको हम IoT बोलते हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। दूसरा कैटेगरी जो है वो ड्रोन्स हो गया आपका, ड्रोन के माध्यम से भी हम बहुत सारा सिंचाई कर सकते हैं, उसमें स्प्रे कर सकते हैं, स्प्रे कर सकते हैं हम, और भी उससे हम डेटा निकाल के ये भी देख सकते हैं कि कैसे हमारा चेंज आ रहा है ओवर द ईयर्स, कैसे चेंज आ रहा है। इसके अलावा हमारा मोबाइल ऐप भी है, मोबाइल ऐप में आप देखते होंगे कितने सारे आजकल मोबाइल एप्लीकेशन है। एक बहुत अच्छा मोबाइल एप्लीकेशन है मौसम, जिसके तहत आप देख सकते हैं कि आपके स्पेसिफिक लोकेशन में, मतलब आपके जगह पे क्या मौसम का हाल रहेगा, अगले 7 दिन में क्या रहेगा, इस महीने क्या रहेगा। तो बहुत अच्छे अच्छे तकनीक हैं मोबाइल फ़ोन का, बहुत सारा ऐप एप्लीकेशंस भी हैं। अभी हाल ही में कृषि मंडपम में एक बहुत अच्छा ऐप लॉन्च हुआ है जो कहते हैं भारत विस्तार। उस ऐप के माध्यम से भी आप अपने लोकेशन के हिसाब से अनेक भारतीय भाषा में देख सकते हैं, कुछ भी कुछ सवाल पूछ सकते हैं कृषि के आधारित, आपको तुरंत जवाब मिलेगा। तो ऐसे बहुत सारे पॉसिबिलिटी हैं जो कि हमारे स्मार्ट कृषि के तहत हो सकता है।
5: तो सर, क्या बिहार में स्मार्ट फार्मिंग के कुछ एग्जाम्पल है, कुछ उदाहरण हैं?
9: हाँ बिल्कुल, अभी बिहार में जो है बहुत सारे ऐसे मॉडल चल रहे हैं जिसमें स्मार्ट कृषि का उपयोग किया जा रहा है। जैसे आप मंडी का रेट्स जो है, जो बिहार में डिफरेंट मंडी है उसका रेट्स भी आप कितना, उसमें क्या भाव चल रहा है ये भी आप मोबाइल ऐप में देख सकते हैं। ये भी एक तरह से स्मार्ट कृषि का ही जरिया है। आप ये भी जानते होंगे एक बहुत अच्छा योजना है जिसको कहते हैं हम नमो ड्रोन दीदी योजना। तो इस योजना के माध्यम से भी आप ड्रोन का किसान अपने खेत पे उस पर स्प्रे करवा सकते हैं, लागत उससे कम कर सकते हैं। और भी सिंचाई के लिए सेंसर बहुत अच्छे वृहद तरीके पे यूज़ हो रहा है। सैटेलाइट के से भी बहुत सारा डेटा अभी अर्जित हो रहा है सैटेलाइट के माध्यम से, जिससे कि हम बहुत सारा डिसीजन लेने में हमें आसानी पड़ता है। अभी तो और भी ऐसे ऐसे मॉडल आ गए हैं जैसे कि पॉली हाउस में, ग्रीन हाउस में, जिसमें कि अपने घर बैठे बैठे आप अपना पूरा फार्म को चला सकते हैं। अभी हाइड्रोपोनिक्स बहुत सारे लोग जब आप दिल्ली में देखेंगे या फिर बड़े बड़े शहरों महानगरों में देखेंगे कि हाइड्रोपोनिक्स मैक्सिमम स्मार्ट कृषि के तहत हो रहा है, जिसमें कि मैक्सिमम जो काम है वो आप अपने घर बैठे अपने मोबाइल डिवाइस से पूरा कंट्रोल कर सकते हैं अपने पूरे सेटअप को। तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी है जो कि बिहार में भी अभी हो रहा है।
5: तो अगर इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे किसान भाई बहनों को इससे क्या फ़ायदा होगा?
9: सबसे बड़ा फ़ायदा तो इससे ये होगा कि लागत में बहुत कमी आएगी, क्योंकि अभी लेबर भी मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। अभी खेत गांव में भी आप जाएंगे तो आपको लेबर का में कठिनाई होती है मिलने में। इसके अलावा आप देखेंगे कि मौसम पे हमें बहुत ज़्यादा निर्भर रहना पड़ रहा है। अभी ये नहीं कह सकते हैं आपकी मानसून के समय आपको बारिश होगा ही, कभी गर्मी के समय में बारिश नहीं होती है, कभी बहुत ज़्यादा सुखाड़ पड़ जाता है, कभी बाढ़ आ जाता है। ये सब चीज़ से आप अच्छा डिसीजन ले सकते हैं, तो आपका कृषि को आप उसी माहौल में ढला सकते हैं और इस हिसाब से आप अच्छी कमाई भी कर सकते हैं। तो इसीलिए हर किसान को ये कहना चाहेंगे कि आप छोटे चीज़ से उसको यूज़ करें, कोई बहुत बड़ा सेटअप मत लगा लें क्योंकि वो बहुत कॉस्टली होता है। छोटा छोटा एक्सपेरिमेंट करें अपने खेत पे, कोई सेंसर ले लें, कोई मोबाइल डिवाइस का यूज़ करें, देखिए कि बहुत सारा चीज़ आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, बहुत सारा चीज़ आपको मतलब आपको मिल जाएगा पॉसिबिलिटी उससे।
5: सर जैसे कि अभी आप बता रहे थे कि मोबाइल में बहुत सारे सेंसर्स लगे होते हैं जो हमारे स्टेप्स को भी काउंट करते हैं, तो क्या ऐसे कोई सेंसर होते हैं जो कि कृषि के क्षेत्र में किसान भाई बहन इस्तेमाल कर सकते हैं मोबाइल फोन में?
9: मोबाइल फोन में डायरेक्टली तो इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, लेकिन ऐसे सेंसर जो हैं वो बहुत आसानी से उपलब्ध हैं। आप देखेंगे कोई भी वेबसाइट पे जाके, सबसे सिंपल सेंसर जो है जो यूज़ कर सकते हैं वो है सॉयल मॉइस्चर सेंसर। उसको आप आराम से खरीद सकते हैं और अपने मोबाइल डिवाइस में ही उसको इंटीग्रेट करके देख सकते हैं कि हमारे सॉयल का जो है, हमारे मिट्टी का जो है, उसमें क्या नमी का मात्रा है। अगर वो नमी का मात्रा कम हो जाएगा तो अपने आप आपके मोबाइल पे मैसेज आ जाएगा या फिर एक अलार्म बजने लगेगा कि अब आपको सिंचाई की ज़रूरत है। तो इससे एक शुरू करने के लिए अच्छा जरिया हो सकता है। डायरेक्ट मोबाइल का तो एप्लीकेशन नहीं है, लेकिन मोबाइल का ही सेंसर जो है वो यूज़ हो सकता है स्मार्ट कृषि में भी।
5: अभी AI के बारे में बहुत बातें हो रही है, AI काफ़ी चर्चा में है, तो क्या AI स्मार्ट फार्मिंग में किसी तरीके से मदद कर सकता है?
9: हाँ बिल्कुल, स्मार्ट कृषि में AI का बहुत महत्व है, क्योंकि जो भी आपको डिसीजन जो आप लेते हैं, जो भी किसान को मान लीजिए डिसीजन, तो फाइनल जो डिसीजन लेना है वो किसान को ही लेना है। AI आपको बहुत सारा बता सकता है ऑप्शन, जैसे कि आपको क्या कहते हैं, जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है जिसमें कि आपको चार मिलते हैं ऑप्शंस, तो आपको AI चार पांच ऑप्शन बता सकता है, उसमें जो सही है वो आपको ही चूज़ करना है। तो अभी AI का मॉडल जो है बहुत सारा डेवलप हो रहा है, अभी बहुत सटीक नहीं है ये जानकारी, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे मॉडल हैं जिसपे कि आप रिलाई कर सकते हैं। जो भारत विस्तार है वो भी एक बहुत अच्छा माध्यम है जिसको हर लोग यूज़ कर सकते हैं। और AI से क्या होगा कि फ्यूचर में जितना ये मॉडल डेवलप होते जाएंगे, अभी तो ये हर दिन मॉडल अपने आप डेवलप हो रहे हैं, अगर आप फ्यूचर में देखेंगे कि इतना अच्छा ये मॉडल डेवलप हो जाएगा कि वो अपने से वो भी वो डिसीजन ले पाएगा। इसीलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से को यूज़ करेंगे अगर आप, तो बहुत अच्छा कृषि कर सकते हैं। और ऐसे बहुत सारे आपको मिल जाएंगे मोबाइल पे एप्लीकेशन, जो एप्लीकेशन में आप अपना खेत को मैप कर सकते हैं। मान लीजिए आपका एक हेक्टेयर का खेत है, उसको आप मैप कर सकते हैं, उसके लोकेशन को आपको बार बार उसमें जानकारी आते रहेगी कि कब वर्षा हुआ आपके खेत में, आपको खेत में सबसे अच्छा क्या लगाना चाहिए, इस सीज़न में आपको क्या लगाना चाहिए, किसकी डिमांड ज़्यादा है मार्केट में। तो इस तरह ये सब ऐप का यूज़ करके आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके और भी अच्छा खेती कर सकते हैं और भी अच्छी कमाई कर सकते हैं।
5: मतलब इतनी सारी सुविधाएं हैं, लेकिन कैसे शुरू कैसे करें स्मार्ट फार्मिंग?
9: हाँ बिल्कुल, तो शुरू करने के लिए सबसे अच्छा तो रहेगा कि अगर आप स्मार्टफोन यूज़ करते हैं तो स्मार्टफोन में कुछ ना कुछ ऐप जो है, कुछ ऐप जो है वो आप जरूर यूज़ कीजिए। जैसे भारत विस्तार के बारे में मैं बता रहा था, वो जरूर यूज़ कीजिए। एक मौसम नाम का ऐप है, वो भी जरूर यूज़ कीजिए, उससे आपको मौसम आधारित जानकारी मिलेगी। ई नाम का ऐप है जिसमें कि आपको मंडी का रेट्स मिलता है कि किस किस मंडी में क्या क्या रेट चल रहा है हमारे कृषि के प्रोडक्ट का। तो ये सब अगर आप इससे शुरुआत करेंगे तो आपको एक अंदर में कॉन्फिडेंस आएगा कि हम और भी आगे इसको बढ़ा सकते हैं। उसके बाद आपको बहुत सारी जानकारी उसी ऐप के माध्यम से मिलेगी कि हम और इसको कैसे आगे बड़े स्तर पे हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक माध्यम हो सकता है शुरुआत करने के लिए। उसके बाद फिर आप छोटा छोटा एक्सपेरिमेंट कीजिए, जैसे कि मान लीजिए आप सेंसर ले लिए, उस सेंसर को लगा के आप देखिए कि सच में ये काम कर रहा है कि नहीं, ये हमको हेल्प कर रहा है कि नहीं। मान लीजिए आपको एक गमला, आपके घर में आप गार्डनिंग करते हैं अपने घर में ही, और आपके घर में मान लीजिए आप 5 दिन के लिए घर के बाहर जा रहे हैं, तो आप वो सेंसर खरीद लीजिए और उस सेंसर को लगा लीजिए अपने गमले में लगा लीजिए। तो हो सकता है जब आपको मोबाइल पे अलार्म आने लगेगा कि अब आपके गमले को पानी की आवश्यकता है, तो आप किसी को घर पे बोल दीजिए या फिर पड़ोस में कि आपके गमले में पानी दे दें। तो इस तरह से आप शुरुआत कर सकते हैं ताकि आपको भरोसा बने कि ये सच में हमारे लिए कारगर साबित हो सकता है।
5: मतलब बहुत छोटे लेवल पर शुरुआत कर सकते हैं, जैसे जैसे कॉन्फिडेंस आता जाएगा तो आप बड़े स्तर पर जा सकते हैं।
9: बिल्कुल हाँ, तभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि अगर आप शुरू से बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कर दिए और आप नहीं अच्छे से समझ पाए सारा चीज़ को तो फिर आपको दिक्कत हो सकता है। इसलिए बेहतर है कि थोड़ा थोड़ा स्टेप वाइज आप सीखिए। हमारी यूनिवर्सिटी में बहुत सारी ट्रेनिंग होती है, हर साल यहाँ पे डिजिटल एग्रीकल्चर के ऊपर एक ट्रेनिंग होती है, 2 दिन का ट्रेनिंग होता है जिसमें कि हम लोग हर चीज़ बताते हैं, कैसे आप यूज़ कर सकते हैं, कैसे वीडियो बना सकते हैं, कैसे आप डिफरेंट ऐप्स को यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी आप ऐसी ट्रेनिंग को आप अगर अटेंड करते हैं तो आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी, आपको खुद कॉन्फिडेंस आएगा कि हम कैसे यूज़ करें।
5: सर अभी आप ट्रेनिंग के बारे में बता रहे थे, तो किस तरीके से किसान भाई बहन इस ट्रेनिंग से जुड़ सकते हैं और ये कब होता है?
9: तो ये ट्रेनिंग जो है इसके आप अपने नियरेस्ट जो आपका आत्मा है, हर जिले में बिहार में एक आत्मा होता है एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी, वहाँ पर जाके आप इसमें इनरोल कर सकते हैं। आप अगर कहेंगे कि हम डिजिटल कृषि के ट्रेनिंग को अटेंड करना चाहते हैं तो हमारी यूनिवर्सिटी जो है वो साल में एक बार करवाती है, लेकिन और सब भी जो है यूनिवर्सिटी जो है, जैसे कि हमारे राजेंद्र प्रसाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, हमारा बिहार एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी है पटना में, वो लोग भी करवाते हैं। तो आप कह सकते हैं कि हम कहाँ पे करना चाहते हैं ट्रेनिंग, तो वो आपको रजिस्टर कर लेंगे, उसके बाद वो हमारे पास इन्फॉर्मेशन आएगा, फिर हम वो ट्रेनिंग करवाते हैं। हर साल एक बार तो ये ट्रेनिंग जरूर हमारे विश्वविद्यालय में होती है। अभी जनवरी के महीने में यहाँ पर वो ट्रेनिंग आयोजित की गई थी।
5: तो मतलब अपने पास के आत्मा केंद्र पे जाकर आप इनरोल करा सकते हैं खुद को।
9: बिल्कुल।
5: तो सर आप लगातार सेंसर के बारे में बात कर रहे हैं, आईओटी के बारे में भी आपने बताया, तो ये कैसे काम करते हैं?
9: तो आईओटी जो है, आईओटी का मतलब होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, और ये काम करता है, ये आपके मोबाइल से इंटीग्रेटेड रहता है। तो मान लीजिए कि कुछ भी मेज़र करना हो, मान लीजिए ह्यूमिडिटी मेज़र करना हो, ह्यूमिडिटी मतलब आर्द्रता जिसको बोलते हैं, और मान लीजिए तापमान मेज़र करना हो, ये सब चीज़ को हम आईओटी से कर सकते हैं। अभी आप देखते होंगे कि बहुत सारे सेंसर हैं, कितने सारे गैरेज आप देखेंगे, गैरेज आजकल ऐसे बन रहे हैं जिसमें कि आप एक बटन दबाएंगे तो, या फिर कोई भी आसपास गाड़ी आ रही है तो वो गैरेज अपने आप खुल जाएगा, उसको पता चल जाएगा कि कोई ऑनर उसका आ रहा है, या वो गैरेज छोड़िए मान लीजिए बल्ब भी आजकल आने वाला है, सेंसर वाला बल्ब आने लगा है, कोई भी आदमी पास करेगा उस बल्ब के रास्ते तो वो बल्ब अपने आप जलने लगेगा। तो ये सब सेंसर है। आईओटी जनरली ऐसे ही काम करता है कि वो डिसीजन लेता है आपके मूवमेंट को देख के, या फिर आपके टेम्परेचर को देख के, या फिर आपका ह्यूमिडिटी को देख के। तो ये सब चीज़ आईओटी के अंदर आता है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के अंदर।
5: और स्मार्ट सिंचाई कैसे काम करता है?
9: स्मार्ट सिंचाई में भी आईओटी का ही एक माध्यम है। स्मार्ट सिंचाई में आप ये कर सकते हैं कि मान लीजिए आपने डिफरेंट डिफरेंट सेंसर, बहुत सारे सेंसर लगा दिए अपने पूरे खेत में, तो वो एक सारे सेंसर मिलके एक डिसीजन ले लेंगे कि आपके खेत को सिंचाई की ज़रूरत है, और फिर वो आपको अलार्म आ जाएगा मोबाइल पे, आपको मैसेज आ जाएगा कि अब आपको पहली सिंचाई कर देनी चाहिए। तो इस तरह आप क्या करेंगे, जब ज़रूरत है खेत को सिंचाई की तभी आप सिंचाई देंगे, ये नहीं कि कभी भी सिंचाई दे दिए, उससे बहुत वेस्टेज होता है पानी का भी, संसाधन का भी। आप जानते होंगे डीजल का भी यूज़ होता है जनसेट चलाने में, पंप चलाने में, तो ये सब आपका 30-40% आपका जो है बचत हो सकता है अगर आप ये का यूज़ करें तो।
5: तो सर AI और डेटा एनालिटिक्स का कैसे उपयोग कर सकते हैं किसान भाई बहन?
9: तो AI और डेटा एनालिटिक्स का अगर आपको बेसिक यूज़ करना है तो आप बहुत सारे ऐसे ऐप हैं, बहुत सारे प्राइवेट कंपनी ने भी ऐसा ऐप बनाया हुआ है, जैसे कि आप देहात नाम की एक कंपनी है, उसने भी एक ऐप बनाया है, एक डिजिटल नाम ग्रीन नाम की एक कंपनी है, उसने भी एक ऐप बनाया है। तो ये सब ऐप जो है, अभी ये सब ऐप उतने उन्नत नहीं हुए हैं, अभी बेसिक ही हैं, लेकिन आप कोशिश कर सकते हैं कि ये सब ऐप से आप कुछ सीखें और बड़ा करें। जैसे भारत विस्तार ऐप जो है ज़रूर आप यूज़ करना चाहें। एक और ऐप है किसान.ai, ये भी एक बहुत अच्छा ऐप है जिसमें कि आप सिर्फ कुछ भी आप बोलिए और वो आपको उसका जवाब देगा, आपको सिर्फ किसी भी भारतीय भाषा में आपको वो बोलना है और आपको जवाब आएगा। तो ये सब यूज़ करके किसान भाई जो है वो शुरुआत कर सकते हैं, और एक अच्छा शुरुआत रहेगा तो फिर वो आगे इसको बड़े स्तर पे कर सकते हैं।
5: तो AI का इस्तेमाल ऐसे भी किया जा सकता है कि कोई फोटो आपने भेजी और आपको उसके रोग के बारे में पता करना हो, तो ये भी हो सकता है कि AI?
9: बिल्कुल हाँ, ऐसा बहुत सारा एप्लीकेशन है उसके ऊपर भी। जैसे कि आप जानते होंगे एक प्लांटिक्स ऐप है, एक हमारी यूनिवर्सिटी ने भी एक ऐप बनाया है ई निरोग ऐप, ये सब ऐप का भी आप यूज़ करके मान लीजिए कोई भी फसल में आपको प्रॉब्लम है तो उसका फोटो अगर आप अपलोड कर दीजिए तो AI वो एनालाइज कर लेगा कि कौन सा रोग है उसमें, और फिर आपको जवाब देगा। ऐसे भी आप AI का यूज़ कर सकते हैं।
5: तो सर अभी बहुत सारे लोग स्मार्ट खेती कर रहे होंगे, तो क्या भारत में कोई सफल उदाहरण है जिन्होंने स्मार्ट खेती की है या ऐसा कुछ?
9: हाँ, बहुत सारे सफल उदाहरण हैं। आप देखेंगे कि बहुत सारे ग्रीन हाउस अभी ऐसे लग रहे हैं भारत में जो कि पूरा पूरा AI से कंट्रोल्ड है, पूरा IoT से कंट्रोल्ड है। तो ज़्यादातर आप अगर देखेंगे कि दक्षिण भारत में और खासकर आप देखेंगे ऐसे स्टेट जो हैं महाराष्ट्र, गुजरात, उस समय बहुत सारे लोग ऐसे ग्रीन हाउस में ये सब काम कर रहे हैं और अच्छा सफल हो रहे हैं। अगर आप ये यूज़ करते हैं स्विगी का इंस्टामार्ट आप देखे होंगे, या फिर जो भी ग्रॉसरी का डिलीवरी ऐप होता है जैसे कि आप किराना का सामान मंगा सकते हैं, उसमें देखे होंगे अलग सेक्शन होता है ऑर्गेनिक फार्मिंग का, जिसमें कि आपको आप लेट्यूस या जो कैबेज है, ब्रोकोली है, ये सब खरीद सकते हैं जो पूरा ऑर्गेनिक माध्यम से बना है, और उसका दाम बहुत ज़्यादा रहता है मार्केट प्राइस से। और आप देखेंगे कि 12 बजते हर दिन के 12 दोपहर के 12 बजते वो बिक जाता है, इतना डिमांड है उसका, क्योंकि लोगों को पता है कि ये हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। ये सारी फसलें जो है ज़्यादातर हाइड्रोपोनिक सिस्टम से होती है और AI मेथड से, इसमें AI यूज़ किया जाता है इसके लिए। आपको ग्रीन हाउस में होता है, ये पॉली हाउस में होता है जिसमें कि AI का यूज़ किया जाता है, IoT का यूज़ किया जाता है। तो बहुत सारी संभावनाएं हैं, लेकिन इसमें बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो छोटे छोटे अगर आप हम छोटा शुरुआत करें तो बाद में आप ऐसा उद्यम लगाने का सोच सकते हैं।
5: अभी शुरुआत धीरे धीरे करने की ज़रूरत है, लेकिन सर जब हम कोई भी नई चीज़ की शुरुआत करते हैं तो बहुत सारी चुनौतियां आती है, तो स्मार्ट फार्मिंग अपनाने में क्या क्या चुनौतियां आ सकती है?
9: चुनौतियां, सबसे बड़ी चुनौती तो ये आ सकती है कि अभी भी हमारे किसान बंधु जो हैं वो सोचते हैं कि मोबाइल फ़ोन जो है वो उतना सेफ नहीं है यूज़ करने में। आजकल बहुत सारे स्कैम हो रहे हैं, फ्रॉड हो रहे हैं, तो जनरली लोगों को एक डर रहता है स्मार्टफोन यूज़ करने में। तो आपको थोड़ा सा सीखना पड़ेगा कि कैसे हम मोबाइल फ़ोन को यूज़ करते हैं, कैसे मैसेज करते हैं, कैसे हम व्हाट्सअप पे चैट करते हैं या फेसबुक कैसे यूज़ करते हैं। छोटा छोटा चीज़ का से शुरुआत कीजिए तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। इसके अलावा आप मोबाइल के अलावा और भी चीज़ से आप जानकारी ले सकते हैं, जैसे कि आप जब भी जाएं किसी ट्रेनिंग में तो वहाँ पे लोगों से पूछें कि अभी क्या कौन सी नई ऐप है जो आपकी यूनिवर्सिटी ने बनाया है, या फिर अगर मान लीजिए ये रेडियो का जो प्रसारण है, ये मान लीजिए मेरे पास रेडियो नहीं है तो हम कैसे इसको और सुन सकते हैं, वेबसाइट के माध्यम से सुन सकते हैं क्या? तो ये अगर आप थोड़ा सा अपना दिमाग वैसा रखेंगे कि जानने का जागरूकता रहेगा तो आप जरूर सीख जाएंगे। अभी बहुत सारे लोग हैं जो बहुत मतलब वृद्ध हैं लेकिन तब भी वो बहुत अच्छा मोबाइल फ़ोन यूज़ कर लेते हैं, और बहुत सारे ट्रेनिंग में हम ऐसे लोगों को, ऐसे किसान को देखते हैं जो कि बिल्कुल मोबाइल फ़ोन यूज़ ही नहीं करते हैं, स्मार्टफोन सब फीचर फ़ोन यूज़ करते हैं जो छोटा वाला फ़ोन आता है। तो थोड़ा सा ये तकनीक सीखिए, क्योंकि नई तकनीक सीखेंगे तो बहुत पीछे रह जाएंगे। तो अभी ज़रूरत है कि आप तकनीक को अपना दोस्त बनाइए, तभी आप सफल हो पाएंगे।
5: ये बात तो बहुत सही कही आपने कि नई चीज़ों को सीखते रहना चाहिए और तकनीक को अपना दोस्त बनाने की ज़रूरत है, ना कि उसे अपना दुश्मन समझना चाहिए। तो सर अंत में किसानों के लिए आप कोई संदेश देना चाहेंगे?
9: तो मेरा संदेश यही होगा किसानों को कि आप सबसे पहले एक्सपेरिमेंट करते रहिए, मतलब आप छोटा छोटा शोध करते रहिए अपने जगह पर। ये देखिए कि हम कैसे मोबाइल फ़ोन का अगर हम यूज़ कर रहे हैं, मान लीजिए किसी ऐप का यूज़ कर रहे हैं जैसे भारत विस्तार का मैंने बताया, आप उसको यूज़ करके देखिए कि सच में वो आपको फ़ायदा पहुँचा रहा है कि नहीं। ऐसा हो सकता है कि आपको बहुत खास फ़ायदा ना दिखे उसमें, तो कम से कम यूज़ कीजिए तो आपको खुद पता चलेगा कि वो सच में कारगर है या नहीं। या मान लीजिए वो सेंसर है, IoT वाला सेंसर है, वो आप देखिए कि सच में वो काम कर रहा है कि नहीं, कारगर है कि नहीं। तो घबराइए मत, मतलब आपको हमेशा तकनीक का इस्तेमाल जो है वो करते रहना है, और ये देखना है कि सच में आपके ज़िंदगी में कुछ चेंज आ रहा है कि नहीं उस तकनीक को यूज़ करने के बाद। तो मेरा ये संदेश रहेगा कि आप हमेशा अपना दिमाग खुला रखिए और नई तकनीक को अपनाने के लिए हमेशा तैयार रहिए।
5: तो बिल्कुल नई तकनीकों को अपनाने के लिए तैयार रहिए, और अगर संभव हो सके, संभव या फिर ज़रूरी है कि आप ट्रेनिंग लीजिए और छोटे छोटे ऐप्स का इस्तेमाल कीजिए। सर आपने बहुत सारी अच्छी बातें बताई और उम्मीद है कि आज का ये कार्यक्रम हमारे किसान भाई बहनों के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहा होगा। सर आप हमारे कार्यक्रम में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
9: धन्यवाद उमा जी, थैंक यू मुझे बुलाने के लिए।
5: दोस्तों आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें, क्योंकि हम हैं हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि
10: सुनो सुनो सुनो सभी, एक जरूरी बात, आया मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण फिर एक बार। अगर आपके घर या पड़ोस में है 5 साल या उससे छोटे बच्चे जिनका कोई भी टीका छूट गया हो तो सोचते क्या हो, जल्दी से आशा दीदी से करो बात। बच्चों को स्वास्थ्य केंद्र है लेकर जाना और उनका टीकाकरण।

0: टीको, ये मौसम है टीकाकरण करवाने का, तो सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
2: नमस्ते क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
3: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने, हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
2: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना है। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
4: सुनिए, क्या आपने PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
5: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
4: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो PM सूर्य घर.gov.in पर।
6: हर घर सूर्य घर।
7: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
8: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
7: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
8: आपकी सेहत की बातें,
7: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
8: युवाओं के रोजगार करियर की बातें,
7: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
8: वो कहाँ पर?
7: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
8: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
7: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 22 से 26 जुलाई के दौरान आसमान में घने बादल छाए रहेंगे और जिले में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी चलने और हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 26 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 90% और दोपहर में 70 से 80% रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए, जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दे, पिछले कुछ दिनों में हुई वर्षा का लाभ उठाइए और आगे भी संभावना है कि वर्षा होगी, तो ऐसी स्थिति में धान की रोपाई के लिए व्यवस्था सुनिश्चित कर ले। रोपाई से पहले प्रति हेक्टेयर 25 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस, 30 किलोग्राम पोटाश और 25 किलो

किस्मों की बुआई कर सकते हैं। मक्का की खेती करने वाले किसान भाई बहन ध्यान दें, खरीफ मक्का की बुआई आसमान साफ रहने पर ही करें। खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और ध्यान रखें कि बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नेत्रजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश जरूर डालें। अनुशंसित मक्का की किस्में जैसे सुवान, देवकी, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, राजेंद्र शंकर मक्का 3, गंगा 11 है। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, मिर्च, अगाध गोभी, टमाटर जैसी सब्जियों की नर्सरी तभी तैयार करें जब आसमान साफ हो। और बागवानी करने वाले भाई बहन ध्यान दें, जुलाई अगस्त आम के पौधों के रोपण के लिए सबसे उपयुक्त समय होता है। कलमी पौधों की रोपाई 10x10 मीटर और बीजू पौधों की रोपाई 12x12 मीटर की दूरी पर करें। सघन बागवानी के लिए 5x5 मीटर और आम्रपाली के लिए 2.5x2.5 मीटर की दूरी रखें। फलदार वृक्षों में प्रति वर्ष 1 किलोग्राम नाइट्रोजन, 30 किलोग्राम फास्फोरस, 700 किलोग्राम पोटाश और 80 से 100 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद जरूर डालें। आपको बता दें, इस समय केला के स्वस्थ सकर्स की रोपाई करें। लंबी किस्मों जैसे अल्पान, कंथली, मालभोग, चिनिया, G9 और बॉनी किस्में जैसे ग्रैंड नेन, रोबस्टा, बसराई का चयन करना सबसे फायदेमंद होता है। लंबी किस्मों के लिए 2x2 मीटर और बॉनी किस्मों के लिए 1.5x1.5 मीटर की दूरी रखें। प्रत्येक गड्ढे में 5 किलोग्राम गोबर की खाद, 500 ग्राम अरंडी की खली, 300 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट, 100 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश और 10 ग्राम कार्बोफ्यूरान मिलाना न भूलें। रोपाई से पहले सकर्स को कार्बन डाइजिंग 2 ग्राम प्रति लीटर पानी से उपचारित करें। किसान भाई बहनों, टिश्यू कल्चर पौधे का उपयोग अधिक उत्पादन के लिए लाभकारी होता है। पशुपालक भाई बहन ध्यान दें, पशुओं में PPR, MFD यानी कि खुरपका मुंहपका और HS यानी कि गला घोटू, इन रोगों का खतरा अधिक है। इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण करवाएं, उन्हें साफ और सूखा रखें और बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। रोग के लक्षण अगर दिखाई दे तो तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें और ध्यान रखें कि पशुओं की बिना जरूरत के आवाजाही पर नियंत्रण रखें। गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए जून माह में अगर टीके नहीं लगाए गए हों तो इस महीने में टीके जरूर लगवा दें। पशुओं को संतुलित और पौष्टिक आहार दें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और साथ साथ 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल स्वस्थ जीवन, सेहत सही लाभ कई। क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।

0: കൃഷി. नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो 90.8 एफएम ग्रीन. मैं हूं अनु और आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे हर रोज़ की खास कार्यक्रम. जी हां, किसान भाइयों को समर्पित हमारा यह कार्यक्रम उन्नत कृषि कार्यक्रम. तो इसमें बातें होती हैं उन्नत खेतीबाड़ी की और आज हम लेकर आए हैं धान के बारे में कुछ बातें. जी हाँ, आज हम जानेंगे कैसे इनके रोगों का प्रबंधन करें, धान में लगने वाले रोग का प्रबंधन हम ससमय कैसे कर पाएं. तो इस विषय को लेकर आज हमारे बीच हैं डॉक्टर अमरेंद्र कुमार. मैं आपको बता दूं, ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं प्लांट पैथोलॉजी डिपार्टमेंट बिहार एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी सबौर से. डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम.
1: धन्यवाद
0: डॉक्टर साहब. सबसे पहले तो बिहार क्षेत्र की हम बात करते हैं, तो बिहार क्षेत्र में जो लगने वाले धान हैं उनमें कौन कौन से रोग लग सकते हैं, उनके बारे में थोड़ी जानकारी दें.
1: बिहार में मुख्यतः जो है कुछ फफूंद से रोग लगते हैं, कुछ बैक्टीरिया से लगते हैं, कुछ विषाणु से. लेकिन मुख्यतः यहाँ कुछ रोग हैं जो कि किसान भाई जानते भी होंगे. जैसे कि अगर फफूंद से जो रोग होते हैं उसमें आजकल फाल्स मट काफ़ी ज़्यादा आ रहा है. फाल्स मट की जिसको कई जगह कलिया बीमारी भी कहा जाता है. अच्छा. इसके साथ बैक्टीरिया से जो बीमारी होता है या जीवाणु से जो बीमारी होता है उसको हम लोग जीवाणु पर्ण अंगमारी या अंग्रेजी में उसको बैक्टीरियल लिप ब्लाइट कहते हैं, जो कि बैक्टीरिया से होता है. इसके साथ ही जो है ब्राउन स्पॉट, जो कि भूरा धब्बा, पत्तियों पे भूरा धब्बा आ जाता है. साथ ही साथ जो है इसमें शीत ब्लाइट होता है. शीत ब्लाइट में जो होता है वो पत्तों पे जो है जैसे सांप के ऊपर जो होता है चकता चकता होता है, उस तरह से चकता चकता हो जाता है.
0: अच्छा.
1: इसके साथ ही जो है कुछ न्यूट्रिएंट से कमी के कारण बीमारी होता है, जैसे कि जिसको कि खैरा बीमारी कहते हैं. किसान भाई जानते होंगे कि जिंक के कमी से, और ऐसा कहा भी जाता है कि 3 साल के अंतराल पे आप अपने खेत में जो है एक बार जरूर जिंक का इस्तेमाल करें, क्योंकि ये जिंक के कमी होने के कारण से बिचड़ा जब आप लगाते हैं उसके बाद जो है इसका जो है सिम्टम दिखाई देने लगता है. तो ये जो प्रमुख रोग हैं मुख्यतः जो है आज के जमाने में, आज के स्थिति में, आज के परिस्थिति में ये बीमारी आ रहे हैं. लेकिन किसान भाई को मैं ये कहूँगा कि फाल्स मट जो है अभी इमर्जिंग प्रॉब्लम है, जिसको कि उसमें आप जानते हैं कि जब धान पक जाता है उसके बाली में जो है पीले रंग का जो हल्दी के समान अब जब खेत में के अंदर जाते हैं तो आपके कपड़ों पर वो चीज़ लग जाता है.
0: अच्छा.
1: और ये बीमारी काफ़ी ज़्यादा आजकल देखा जाता है. तो इसको किसान भाइयों को पहले से इसका प्रबंधन करना पड़ेगा, नहीं तो फिर इसका प्रबंधन अगर पहले से नहीं करेंगे तो इससे बचाव आप नहीं कर सकते. इसलिए ये प्रमुख रोग हैं जो कि बिहार के विभिन्न भागों में किसानों के द्वारा बताए हुए और हम लोगों के द्वारा भी जो है किसान जो जगह जगह रिपोर्ट करते हैं उसके अनुसार ये प्रमुख रोग हैं. लेकिन मुख्यतः किसान भाई आप लोग फाल्स मट या कलिया बीमारी पर आप लोग विशेष कर ध्यान देंगे. और ये मोस्टली आप देखेंगे कि जो हाइब्रिड धान है उसमें इसका बीमारी का प्रकोप होने का ज़्यादा चांसेस रहता है. और हाइब्रिड में क्योंकि आप नत्रजन, नाइट्रोजन या जो आप फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करते हैं वो ज़्यादा मात्रा में करते हैं, और हाइब्रिड में जो है ये इस बीमारी का प्रकोप ज़्यादा होता है. अगर पिछले साल किसी किसान भाई के खेत में बीमारी आया हो तो उसका प्रबंधन के लिए अभी से तैयारी कर लें, क्योंकि आने के बाद आप इससे बचाव आप करना मुश्किल होता है. इसके बचाव करने के लिए आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का 3 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से आप जो है जब फ्लावर आ जाए या फूल बन जाए या 50% फ्लावर आ जाए उस समय एक छिड़काव जरूर कर दें. अगर आपके विगत वर्ष में ये बीमारी आपके खेत में या कहीं भी किसान अपने गांव में या कहीं भी आया हो, क्योंकि इसके फफूंद जो हैं 11 महीने तक मिट्टी में जो है जीवित रह सकते हैं.
0: जी डॉक्टर साहब, ये तो बातें हो गई हैं बिहार क्षेत्र में लगने वाले धान में रोग, और रोग प्रबंधन के लिए अभी इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए?
1: जैसे किसान भाई अभी तो लगा रहे होंगे, जैसे कि अभी तैयारी कर रहे होंगे धान का, गेहूं तो अभी हो गया होगा, खेत आपका खाली होगा. और अभी के स्थिति में क्योंकि अभी आपका उत्तम समय है, आप उसको कर सकते हैं, प्रबंधन कर सकते हैं. क्योंकि जानते हैं कि आपके खेत में जो है बहुत सा बैक्टीरिया, मिट्टी जनित कुछ बैक्टीरिया होते हैं, कुछ फफूंद मिट्टी जनित होते हैं. तो मिट्टी का अब बाद के अवस्था में क्योंकि उसके जो कारक हैं वो मिट्टी में हमेशा रहते हैं, तो उस कारक को आपको मारना होगा. अगर उसका जीवन चक्र अगर आप रोक देंगे तो वो जो है आप उससे बचाव कर सकते हैं,
0: खुद ब खुद मर जाएगा.
1: जी अभी का स्थिति में ये है कि अब अभी जो उत्तम समय, क्योंकि मौसम भी काफ़ी ज़्यादा गर्म है, तो आप अगर गहरी जुताई करेंगे, क्योंकि हम लोग बताते भी हैं लेकिन अभी समय है, क्योंकि अभी के समय में उपयुक्त यही है, क्योंकि धान तो आप अभी आप लगाने की तैयारी कर रहे होंगे तो अभी का उपयुक्त, क्योंकि खेत आपका खाली होगा, तो आप गहरी जुताई कर दें। गहरी जुताई करने से जो नीचे का मिट्टी है ऊपर आ जाता है, और जिससे जितने भी आपके फफूंद के कारक होंगे या जीवाणु के कारक होंगे, या इवन जीवाणु और फफूंद ही नहीं, आप कीट भी जो होंगे वो ऊपर के सतह पर आ जाएंगे।
0: अच्छा।
1: और धूप लगने के कारण से वो जो है मर जाएंगे। तो अभी का समय काफ़ी उत्तम है, किसान भाई अगर इसको करेंगे तो न केवल धान के रोग से, आप उसके कीट से भी बचाव कर सकते हैं
0: गहरी जुताई से।
1: जी
0: जी डॉक्टर साहब, रोग प्रबंधन के लिए क्या बीजोपचार बहुत ज़रूरी है?
1: जैसे कि हम जानते हैं कि बीमारी कई तरह से होता है, जो फफूंद जो है, जैसे कि पहले मैं कहा भी कि कुछ फफूंद जो है मिट्टी जनित होते हैं, कुछ फफूंद जो है बीज जनित होते हैं, कुछ जो है हवा के द्वारा आते हैं।
0: अच्छा।
1: तो आपको जो है आपको ऐसा बीज का इस्तेमाल करना है कि वो जो है उसमें जो है रोग लगने का चांसेस कम रहेगा। तो आजकल सरकार का भी ये है कि हमको बीज उपचार करना है। बीज उपचार करने से ये फ़ायदा है कि आप जो है एक आवरण बन जाता है, और आप बाज़ार में काफ़ी मात्रा में उपलब्ध है फफूंद नाशक, जो कि कॉन्टैक्ट फंजीसाइड और सिस्टमिक फंजीसाइड का मिश्रण का जो मिलता है बाज़ार में, जिसमें कि मैनकोजेब होता है और कार्बेंडाजिम होता है, उसका मात्रा जो है आप 2 ग्राम मात्रा लेकर आप जो है बीज उपचार बीज लगाने के पहले, क्योंकि आप जब बिचड़ा लगाते हैं कि एक बार पैसा आप इतना लगाते हैं, बीज खरीदते हैं, फिर उसका बीज स्थल तैयार करते हैं, तो बीज लगाने के पहले आप बीज उपचार अवश्य करें। बीज उपचार करने से फ़ायदा क्या है, जो 2 फफूंद नाशक हैं जो कि एक कॉन्टैक्ट फंजीसाइड हैं, वो क्या करता है कि आपके ऊपरी आवरण से जो भी फफूंद लगेगा, जैसे कि ब्राउन स्पॉट होने का चांसेस ज़्यादा रहता है, बिचड़ा में ब्राउन स्पॉट बहुत देखा जाता है, कहीं कहीं ब्लास्ट भी देखा जाता है, झोंका बीमारी भी देखा जाता है, और ख़ासकर जो है देखेंगे कि जो सेंटेड राइस है, जो सुगंधित धान है, उसमें होने का बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है। इसलिए जो 2 फफूंद नाशक है उसमें 1 फफूंद नाशक जो है आपके आवरण को जो भी बीमारी लगेगा उसको रोकेगा, और दूसरा जो फफूंद नाशक है जो कि सिस्टेमिक फंजीसाइड है, वो बाद के अवस्था में भी जब पौधा आपका बड़ा हो जाता है तो वो जो है उससे रोगों से आपको बचाव करेगा। इसलिए किसान भाई का मेरा सलाह है कि जब भी आप बिचड़ा लगाएं, बीज उपचार जो है 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के दर से आप कार्बेंडाजिम और मैनकोजेब का जो फफूंद नाशक का जो मिश्रण आता है, इसका 2 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज की दर से आप इस्तेमाल करें, और उसके बाद ही उसको आप लोग अपने खेत में बिचड़ा लगाएं।
0: एक जो सवाल है किसान भाइयों की तरफ से आता है डॉक्टर साहब, कि कम पानी और अधिक पानी की स्थिति में कौन से रोग लगते हैं और उनका हम कैसे निवारण करें, ये जानना चाहते हैं हमारे किसान।
1: जैसे कि हम जानते हैं कि कोई कोई एरिया में जो है ऊपरी सतह होता है, इसको कि अपलैंड कहा जाता है, कोई कोई जो है लोलैंड होता है। अपलैंड में क्या होता है कि पानी उसमें ठहरता नहीं, और लोलैंड में जो है पानी लगा रहता है,
0: अधिक जमा हो जाता है।
1: तो अपलैंड की स्थिति में दूसरा बीमारी लगता है, और उसका बचाव के लिए आपको अलग से, क्योंकि पहचान जब तक आपको होगा नहीं तब तक आप जान नहीं पाएंगे, और लोलैंड की स्थिति में दूसरे बीमारी का लगता है। तो ऊपरी सतह पे या अपलैंड की स्थिति में प्रमुख रूप से 2 बीमारी हैं जो कि देखा जाता है प्रायः बिहार में। पहला जो है भूरी चित्ती, जिसको अंग्रेजी में ब्राउन स्पॉट कहा जाता है, और दूसरा जो है ब्लास्ट है, जिसको कि झोंका कहा जाता है। अब इसको जो है, जो भूरी चित्ती है, आप देखेंगे कि जैसे ही बिचड़ा लगाते हैं पत्तियों पे भूरे रंग के छोटे छोटे धब्बे बन जाते हैं, और बाद के दिनों में जो है ये धब्बे आपस में मिल जाते हैं। तो ये मुख्यतः जो है अपलैंड की स्थिति में होता है। तो ऐसी स्थिति में बीज उपचार तो ज़रूर करें आप, उसके बाद जो है आप कार्बेंडाजिम का 2 ग्राम मात्रा, अगर मान लीजिए कि आपके अगर बिचड़ा में आ जाए या खड़ी फसल में आ जाए, तो कार्बेंडाजिम का 2 ग्राम मात्रा आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा जो बीमारी है, जिसको कि हम लोग झोंका या ब्लास्ट कहते हैं, पूरा का पूरा पौधा आपका ब्लास्टेड, मतलब पूरा जला हुआ दिखाई देगा, और ख़ासकर आप देखेंगे कि आप जो सेंटेड है उसमें ये ज़्यादा लगता है। उसके लिए, उसके बचाव के लिए आपको करना क्या है कि ये भी ऊपरी ज़मीन में होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। इसके लिए ट्राईसाइक्लाजोल नाम का एक फफूंद नाशक आता है, उसका जो है 0.5 ग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की प्रति लीटर में आप पानी में डाल के, या 500 ग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जो दूसरा जो बीमा जो दूसरा आपका प्रश्न था जिसमें कि कहा गया कि निचली सतह में दो बीमारी होने का चांसेस रहता है जो बिहार में मुख्यतः देखा जाता है। पहला जो है बैक्टीरियल लिप ब्लाइट है जिसको कि पर्ण अंगमारी कहा जाता है, वो जीवाणु के द्वारा होने वाला बीमारी है। ये बीमारी दो अवस्था में होता है। पहली अवस्था में जब आप बिचड़ा लगाते हैं तो उस स्थिति में पूरा पौधा आपका जला हुआ दिखाई देता है, और दूसरा स्टेज है जब आपका टिलरिंग स्टेज होता है उसमें आपको ये ज़्यादा दिखाई देने लगता है। तो उस स्थिति में आपके लिए जो है बैक्टीरियासाइड का इस्तेमाल करना है। लेकिन ध्यान देने योग्य ये बात है इसमें कि आपको बैक्टीरियासाइड के साथ एक फफूंदनाशक का कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का इस्तेमाल करना है। अगर ये बीमारी आ जाता है तो आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का 3 किलोग्राम मात्रा और स्ट्रिप्टोसाइक्लिन का 50 ग्राम मात्रा प्रति 1000 लीटर पानी में मिलाकर 1 हेक्टेयर के रूप में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जो दूसरा जो बीमारी है जिसको कि कहा गया शीत ब्लाइट, मैं पहले भी आपको बताया था शीत ब्लाइट के बारे में
0: जी।
1: जब पानी ज़्यादा रहता है तो इसमें सतह जो शीत रीजन है वहाँ पे ये पहले बीमारी का कारण दिखाई देना शुरू करता है, और बाद में जब पत्तियों पर ये सांप के ऊपर जैसे चकता होता है उस तरह से धब्बे बन जाते हैं। और ये बीमारी ऐसा है कि दोनों बीमारी अगर एक खेत का पानी बैक्टीरियल लिप ब्लाइट में भी और इसमें भी एक खेत का पानी दूसरे खेत में जाता है तो वो भी खेत जो है आक्रांत हो जाता है। तो इस बीमारी से बचाव करने के लिए शीत ब्लाइट के बचाव करने के लिए आप वेलिडामाइसिन का आप जो है अब दो कंसंट्रेशन में आता है तो उसका जो है 1 ml मात्रा प्रति लीटर पानी में डाल के आप उसका छिड़काव कर सकते हैं।
0: तो यहाँ पर किसान भाइयों और हमारे श्रोताओं, आपने जाना कि धान में कौन कौन से रोग लगते हैं, आप उनका प्रबंधन कैसे कर सकते हैं, सारी जानकारी आपको मिल गई होगी। तो आशा करते हैं ये ज़रूर आपके लिए मददगार साबित होगा आज का ये वार्ता। तो आज के लिए इतना ही, अगले दिन एक अलग विषय के साथ फिर से हाजिर होंगे हम इसी फ्रिक्वेंसी, याद रखें 90.8 MHz। नमस्कार। उन्नत कृषि हर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
2: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
0: और लाइट बिल के
2: अब 0 रुपए कैसे दूं?
0: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
3: पक्का। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।

0: जानते हैं कि खसरा कितनी गंभीर बीमारी है? टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर हैं, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MRT का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हो तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रूबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टीको क्यों है इतने जीरो?
1: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात, अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
0: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
1: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
5: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
6: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था, उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in।
7: हर घर सूर्य घर।
8: कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 ग्रीन FM। उन्नत कृषि। किसान भाइयों, एक बार फिर से जुड़ चुके हैं हम आप सभी के साथ। लेकर आई हूं मैं आप सभी के लिए उन्नत कृषि, और आज भी आप सभी के लिए कुछ उपयोगी बातें होंगी यहां पर, और आप सभी को कुछ अच्छी बातें, कुछ अच्छी नॉलेज के साथ मैं लेकर आई हूं यहां पर डॉक्टर संजय कुमार जी को, जो है सह प्राध्यापक सस्य विज्ञान विभाग बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में।
9: धन्यवाद।
8: और डॉक्टर साहब, हमेशा देखा गया है जब खेती की बात आती है और कहीं ना कहीं जल उसका एक मुख्य, यूं कहें जैसे हम खाना बनाते हैं तो इंग्रेडिएंट्स बोलते हैं, तो खेती का कहीं ना कहीं ये एक इंग्रेडिएंट्स के तौर पर काम आता है। और अभी आप देख रहे हैं कि वर्षा जो है वो सामान्य से कम हो रही है, और इस सिचुएशन में जल जो है प्रबंधन करना हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। तो सर, सबसे पहले तो जल प्रबंधन के तरीके हमारे किसान भाइयों को जानना चाहिए, तो उन सारी बातों को हम यहाँ पर रखेंगे, अपने किसान भाइयों के सामने रखेंगे। लेकिन सबसे पहले सर, हम ये आपसे पूछना चाहेंगे कि जल प्रबंधन होता क्या है?
9: एक्चुअल जल एक ऐसा प्राकृतिक बहुमूल्य संसाधन है जिसके बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती।
8: जी,
9: जल पौधों की समस्त जीवन क्रियाओं एवं वृद्धि के लिए आवश्यक है, अतः कृषि उत्पादन बढ़ाने में फसलों की सामयिक एवं पर्याप्त मात्रा में जलापूर्ति आवश्यक है। हम अगर जल प्रबंधन की बात करें तो जल प्रबंधन का तात्पर्य असिंचित क्षेत्रों में अब जो अपवाह जल नियंत्रण है, जल संरक्षण, जल भंडारण तथा उचित कृषि विधियां अपनाकर इसके दक्षतापूर्ण उपयोग करने से है। वहीं जहां पे वर्षा अधिक हो रही है या वाटर लॉक सिचुएशन है, वहां पे अधिक पानी के निकास एवं उचित कृषि पद्धति अपनाने से है, तथा सिंचित क्षेत्रों में फसलों की आवश्यकता अनुसार सिंचाई करने, अंतःस्रवण, अपवाह एवं बाष्पन से होने वाली जन हानि के नियंत्रण से है, जिससे लगातार सिंचाई से भूमि पर विशेष कुप्रभाव हुए बिना उपलब्ध जल से अधिकतम उत्पादन लिया जा सके। और ये हम कह सकते हैं कि सिंचाई जल की व्यवस्था वास्तविक रूप से मृदा पर निर्भर करती है। मृदा किस तरह से गठित है, मृदा की संगति क्या है, मृदा में पोरोसिटी क्या है, सिंचाई हमें कितनी सिंचाई देनी है, सिंचाई की क्या गहराई होनी चाहिए एवं सिंचाई की कौन सी विधि हम अपना रहे हैं, इन सब चीज़ों पर जल का प्रबंधन निर्भर करता है।
8: तो सर ने बताया कि सिंचाई की विधि भी इस पर ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है जल प्रबंधन के लिए। तो सर आपने बताया जल प्रबंधन क्या है, और उसके बाद हम जानना चाहेंगे सर कि जल प्रबंधन का उद्देश्य क्या है।
9: देखिए, जल प्रबंधन का अगर हम उद्देश्य की बात करें तो जल ऐसा चीज़ है जो पौधों को हमेशा ज़रूरत पड़ती है। तो पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक जल की आपूर्ति हम करते हैं उस पौधे को सूखे से बचाने के लिए, अगर ठंडा का दिन है तो उसे पाले से बचाने के लिए, मृदा एवं वायुमंडल को ठंडा रखने के लिए, एवं वो मिट्टी जहाँ पे लवण की मात्रा बहुत ज़्यादा है उस मिट्टी को लवण से दूर, लवण की मात्रा को कम करने के लिए भी हम जल देने का एक उद्देश्य होता है। इसके साथ ही साथ हम भूमि की सतह को मुलायम करते हैं, जिसके कारण है जो कि हमारे जुताई में आसानी हो।
8: तो यहाँ पर किसान भाइयों, डॉक्टर साहब ने आपको बताया कि मृदा को लवण से दूर करने के लिए, साथ ही मिट्टी को मुलायम करने के लिए, ताकि किसान भाइयों को जुताई करने में आसानी हो, तो ये उद्देश्य है जल प्रबंधन का। आगे और भी बातें होंगी डॉक्टर साहब से, हम आगे जानना चाहेंगे कि धान की खेती में सबसे पहले कि सर हम आपसे जानना चाहेंगे कि सिंचाई की विधि कैसी होनी चाहिए, सिंचाई के विधि के तरीकों को अपना कर हमारे किसान भाई आसानी से जल प्रबंधन कर सके।
9: सामान्यतः धान की फसल में वर्षा न होने पे या कम होने पे, जब मृदा में नमी सेचुरेशन की अवस्था से कम होने लगे, मतलब संतृप्त अवस्था से कम होने लगे, तो सिंचाई करना आवश्यक होता है। वर्षा के पानी के अच्छे उपयोग के लिए हमें चाहिए कि धान की खेत की मेड़ खूब मजबूत होनी चाहिए। अब हम सिंचाई की विधियों की बात करें तो एक विधि है कंटिन्यूस फ्लडिंग की, जहाँ पे जल प्लावन की स्थिति हम लगातार बनाते हैं। इस विधि में खेत में सदैव पानी को हम भर के रखते हैं ताकि मृदा संतृप्त रहे। मृदा अपचयन के कारण खाद्य तत्वों की उपलब्धता इस स्थिति में बढ़ जाती है और खरपतवार नहीं बढ़ पाते हैं, जिसके कारण है जो कि फसल का डेवलपमेंट ज़्यादा अच्छा होता है। मृदा की सतह पे हम सामान्यतः 2.5 से 5 सेंटीमीटर पानी को रोपनी से फसल के पकने तक की अवधि के लिए हम इसमें रखते हैं। विशेष परिस्थिति में जहाँ जीवांश की मात्रा अधिक होती है वहाँ, और जहाँ जल निकास नहीं होती है वहाँ, अगर ज़्यादा दिन तक ठहरा हुआ पानी रहता है तो उस स्थिति में पौधों में कुछ रोग लगने के कारण होते हैं। इस स्थिति में सामान्यतः देखा गया कि पानी के स्तर अधिक होने के कारण कभी कभी कल्लों की संख्या कम होती है और पौधे की ऊंचाई ज़्यादा हो जाती है, जिससे उसके गिरने की संभावना बढ़ती है और फसल का उत्पादन कम होता है। दूसरी अवस्था है जहाँ कंटिन्यूस फ्लडिंग हो, लेकिन साथ ही साथ हम ड्रेनेज जल निकास की सुविधा रखते हैं। इस विधि में फसल की सभी अवस्थाओं में पानी भरा रहता है, लेकिन बीच में हम एक दो बार जल निकास करके मृदा को असंतृप्त करते हैं। इस प्रकार के जल निकास से मृदा के घोर अपचयन की अवस्था में सुधार होता है, विषैले पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है तथा रोगों में कमी आती है, जड़ों का विकास में सहायता मिलती है तथा फसलों के गिरने की संभावना कम होती है, जिसके कारण फसल का उत्पादन अच्छा होता है। एक तीसरी विधि होती है कंटिन्यूस सेचुरेशन का, जहाँ पे हम लगातार जल संतृप्त अवस्था में रखते हैं। इस विधि में फसल के दौरान जल मृदा को संतृप्त अवस्था से नीचे नहीं जाने देते। इस विधि में फसल की जल मांग पूरी हो जाती है, लेकिन इसका जो सबसे बड़ा अवगुण है कि इस स्थिति में खरपतवार की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिस कारण श्रम की मांग बढ़ती है, और श्रम की मांग ज़्यादा बढ़ेगी तो वहाँ देखा जाता है कि उपज जो लागत है, लागत में वृद्धि होती है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि संतृप्त जल प्लावन और या हम कहें कंटिन्यूस फ्लडिंग जहाँ हो और साथ ही साथ बीच में जल निकास की व्यवस्था हो, वो विधि जल प्रबंधन के लिए सबसे उपयुक्त।
8: तो सर ने बताया किसान भाइयों यहाँ पर कि जल निकास की व्यवस्था जहाँ पर होगी वहाँ पर अच्छी तरीके से जल प्रबंधन किया जाएगा। धान की खेती में सिंचाई की विधि थी ये। और इसके बाद सर यहाँ पर कुछ बातें होती है ध्यान देने योग्य बातें, जो कुछ छोटी मोटी बातें होती है जिससे अगर ध्यान में रखा जाए तो कहीं भी रुकावटें नहीं आती है जल प्रबंधन में। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि जल प्रबंधन के दौरान कुछ ऐसी बातें होती हैं क्या जो जिसे हमें ध्यान में रखना चाहिए?
9: देखिए, जल प्रबंधन में जल धान है जो कि पूरी तरह से हम जानते हैं कि जल की उपलब्धता पर निर्भर करती है। संपूर्ण जीवन काल में हम कहते हैं कि खेत में जल का खड़ा रहना अति आवश्यक है
8: जी।
9: और ये अनौक्षीकृत स्थिति होती है, इस कारण स्फूर, लोहा और मैंगनीज जैसे पोषक तत्व की उपलब्धता बढ़ जाती है। खरपतवार की संख्या में कमी आती है, इससे हम धान को एक सही वातावरण देते हैं। सामान्यतः हम देखते हैं कि धान के लिए दैनिक जल की आवश्यकता 6 से 10 मिलीमीटर प्रतिदिन है। इस प्रकार हम कहते हैं कि धान के संपूर्ण जीवन काल में 1200 से 1500 मिलीमीटर जल की आवश्यकता होती है। और सामान्यतः ये पाया गया कि अगर हमको 1 किलोग्राम धान की का उत्पादन करना है तो हमें 2000 से 2500 लीटर जल की आवश्यकता होती है। अगर हम जल की आवश्यकता की बात करें कि कब कब जल की आवश्यकता होती है, तो ये देखा गया कि जनरली हम पौधशाला तैयार करने के लिए हमें 50 से 60 मिलीमीटर जल की आवश्यकता होती है, लेकिन खेत की तैयारी के दौरान 200 से 250 मिलीमीटर एवं रोपाई से पैनिकल निकलने तक 400 से 550 मिलीमीटर जल की आवश्यकता होती है। इसी तरह से हम देखते हैं कि पैनिकल निकलने से फूल होने तक सामान्यतः 400 से 450 मिलीमीटर जल की आवश्यकता होती है एवं पुष्पन से पकने तक 100 से 150 मिलीमीटर। अगर हम गहराई की बात करें तो सामान्यतः हम कहते हैं कि जब आप धान लगाते हैं तो जल की गहराई 2 से 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और ये अवस्था हमको शुरू के 7 दिनों तक कम से कम मेंटेन रखना चाहिए। पुनः हम कहते हैं कि कल्ला निकलने के समय 22 से 45 दिन तक भी जल की स्थिति जल ज़्यादा नहीं रखना चाहिए, लेकिन जब हम बात करें बाली निकलने की या पुष्पन की अवस्था, उस समय हम 4 से 5 सेंटीमीटर जल की गहराई रखें तो वो उपयुक्त होती है। लेकिन हम देखते हैं कि पकने की अवस्था में हमें जल पकने की अवस्था या कहें पुष्पन की अवस्था के 3 सप्ताह के बाद हमको खेत से पानी पूरी तरह से निकाल देना चाहिए एवं उसको केवल संतृप्त अवस्था में ही रहने देना चाहिए।
8: तो कुल मिलाकर बातें हुई यहाँ पर डॉक्टर साहब की, हमें जल की मात्रा पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। इसके बाद हम डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहेंगे कि धान की क्रांतिक अवस्थाएं क्या होती हैं?
9: देखिए, क्रांतिक अवस्था वो अवस्था होती है जिस समय फसल को उस चीज की आवश्यकता विशेष कर हो। जल की क्रांतिक अवस्था का मतलब हो गया कि उस अवस्था में यदि नमी की कमी होगी तो फसल के उत्पादन पे इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा तथा उपज
8: नमी रहना अनिवार्य है
9: या बहुत जरूरी है नमी रहना। अगर नमी की मात्रा घट जाएगी तो उपज में कहीं ना कहीं गिरावट आएगी। अब जब धान की क्रांतिक अवस्था की बात करें तो कल्ला निकलने का समय पहली क्रांतिक अवस्था है, दूसरा हम कहें बाली निकलने की अवस्था, फिर हम कह सकते हैं बाली निकलने के समय एवं फूल लगने के समय। ये 4 अवस्था है जो जहाँ पे नमी की स्थिति कम से कम संतृप्त अवस्था में होनी चाहिए। सामान्यतः देखा गया कि अगर सक्रिय कल्ले निकलने की अवस्था में नमी की मात्रा घट जाती है तो उपज में 30 से 40% की कमी आती है। वहीं अगर रिप्रोडक्शन स्थिति में नमी की कमी हो जाती है तो हम उपज में 50-60% की कमी भी दर्ज कर सकते हैं।
8: तो किसान भाइयों, आप इस बात का खास ख्याल रखें कि नमी में बिल्कुल भी कमी नहीं होनी चाहिए अगर आप धान की अच्छी तरीके से खेती करना चाहते हैं तो। और इसके बाद सर हम आपसे जानना चाहेंगे कि जल की दक्षता बढ़ाने के लिए हमारे किसान भाइयों को किन बातों पर ध्यान देना चाहिए?
9: सामान्यतः जल की दक्षता बढ़ाने का मतलब हुआ कि हम किस तरह से कम पानी का इस्तेमाल करके ज़्यादा उपज ले सकें। सामान्यतः हम देखते हैं जितना जल देते हैं, जल का बहुत सारा भाग है जो कि या तो बह के निकल जाता है या कहीं एक जगह पे जमा हो जाता है। तो दक्षता बढ़ाने के लिए सबसे पहली बात है कि हमें कदवा एवं समतलीकरण करें अपने खेतों की। अगर खेत समतलीकरण करेंगे तो खेत में एक समान पानी रहेगा और उस स्थिति में हमें जल की आवश्यकता कम होगी। सामान्यतः हमको जब खेत की तैयारी करें तो हमको ट्रैक्टर चालित केज व्हील सहित एमबी प्लाउ से जुताई करनी चाहिए। सामान्यतः एमबी प्लाई से एक जुताई एवं डिस्क हैरो से दो बार पडलिंग करने से फसल की स्थापना अच्छी होती है। सामान्यतः ये भी करें कि रोपा के समय खेतों में 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा पानी न रखें, क्योंकि अगर पानी अधिक रहेगा तो रोपाई की गहराई ज़्यादा होगी, परिणाम स्वरूप कल्ला कम निकल सकता है। रोपाई के बाद अगले 7 दिनों तक हम 2 सेंटीमीटर खड़ा जल रहना रखें अवश्य रखें। उसके बाद पूरी फसल की अवस्था तक आप चाहें तो 5 सेंटीमीटर खड़ी जल रख सकते हैं। जड़ विकास एवं कल्ला निकलने के समय जल की कमी होने से कल्ला कम निकलता है, जिसके कारण पौधों की संख्या में कमी आएगी और अंततः उत्पादन पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा। बूटिंग और पकने की स्थिति में 5 सेंटीमीटर और उससे ज़्यादा खड़ी जल रहने की अवस्था में जल की हानि होगी, जड़ की हानि होती है एवं लीफ में सेनेसेंस हो सकता है, जिसके कारण बाली में भरे हुए दानों की संख्या कम होगी, मतलब आपका उत्पादकता पे असर पड़ेगा। समय के अनुसार हमको जल निकास की अवस्था भी रखनी चाहिए एवं कटाई के 10-15 दिन पहले हमको सिंचाई रोक देनी चाहिए। तो हम धान के जल प्रबंधन में इन सब बातों को ध्यान रखेंगे तो हमारी जल की दक्षता बढ़ेगी।
8: तो किसान भाइयों, डॉक्टर साहब ने आप सभी को बताया कि रोपाई की गहराई ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, नहीं तो कल्ला कम आएगा। और भी बहुत सारी बातें डॉक्टर साहब ने यहाँ पर बताया आप सभी को, और आशा करते हैं हमारे किसान भाइयों और बहनों की डॉक्टर साहब द्वारा दिए गए सुझावों को आप अपनाएंगे और धान में जल प्रबंधन आप अच्छे तरीके से करेंगे और धान की खेती बहुत ही अच्छी मात्रा में आप कर पाएंगे। तो डॉक्टर साहब, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
9: धन्यवाद।
8: आगे और भी बातें होती रहेंगी हमारे किसान भाइयों से, अगले विषय अगले चर्चा के साथ आप सभी से यूं ही मिलती रहूंगी मैं। तब तक के लिए नमस्कार। उन्नत कृषि
10: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर 0 अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना 0 बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
11: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
12: हर घर सूर्य घर।
13: नमस्ते क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
14: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
13: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना है। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
15: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल 0 आ सकता है। मैंने कहा बेटा, नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल 0 आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
12: हर घर सूर्य घर।
16: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।
1: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

0: मतलब धान रोपाई में जो धन रोपनी जो धान रोपती है और कभी कभी सुखार पड़ जाते हैं, इसलिए पानी का जो अभाव होता है, इसलिए गंगा माँ से निवेदन करके रोपनी गाती है और कहती है कि कैसे मेरा धान का खेती उदास पड़ा हुआ है।
1: जैसे हम लोग गोछी लेते हैं तो उसमें सब देवी देवता को पूजन करते हैं, सबको सुमर करके गीत गाते हैं।
2: FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।
3: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा और आप सुन रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि। उन्नत कृषि जहां हम बात करते हैं विभिन्न फसलों के बारे में और उनसे जुड़ी बातें। आज हम बात करने वाले हैं कौनी मिलेट के बारे में और किस तरीके से इसकी खेती करनी चाहिए, क्या विशेष बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, इस बारे में हमें विस्तार से बताने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर महेश कुमार सिंह। सर, आप हैं एसोसिएट प्रोफेसर कम सीनियर साइंटिस्ट, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
4: बहुत बहुत धन्यवाद।
3: सर, जब हम बात कर रहे हैं कौनी मिलेट की, तो क्या कौनी मिलेट जलवायु के अनुकूल होता है?
4: देखिए, कौनी जिसको हम लोग इंग्लिश में फॉक्सटेल बोलते हैं, इटालियन मिलेट के नाम से भी जानते हैं, ऐसी मान्यता है कि सभी मिलेट्स का जो उत्पत्ति स्थान है वो भारत है। सिर्फ ये कौनी ही एक ऐसी फसल है जिसका एशिया में उत्पादन जन्म स्थान है जो कि चाइना हो जाता है। तो इसको हम सेटारिया टेलकर के नाम से जानते हैं और इंग्लिश में फॉक्सटेल, फॉक्स मतलब लोमड़ी, टेल मतलब पूंछ। तो इसकी जो बालियां होती हैं लोमड़ी की पूंछ की तरह बिल्कुल लटकी रहती हैं। 25 से 30 सेंटीमीटर अलग अलग प्रजातियों की लंबाई होती है बालियों की, मतलब कुछ बालियां जैसे SI 3156 है, इसकी बाली सबसे लंबी होती है, 32 सेंटीमीटर तक लंबाई होती है, अर्थात 1 फीट की लंबाई हो जाती है इसकी बालियों की। तो ये सभी फसलें चूँकि कम पानी चाहने वाली फसलें हैं, अधिक तापमान में को भी सह करके उत्पादन दे देती हैं, हमारे बिहार राज्य में खरीफ मौसम में भी उगाई जा सकती हैं, गर्मी के मौसम में भी उगाई जा सकती हैं, हमारे किसानों के लिए तो बहुत एक अल्टरनेटिव, सच कहा जाए तो जो मूंग होता है, मूंग का एक अल्टरनेटिव फसल है गर्मी के लिए। वहीं बरसात के लिए जिन क्षेत्रों में सुखाड़ की स्थिति है वहां तो ये बहुत ही रामबाण साबित हो रही हैं, क्योंकि मात्र 90 दिनों में पककर तैयार होने वाली ये कौनी आपको प्रति एकड़ 10 से 11 क्विंटल तक उत्पादन क्षमता दे रही है। और इसका चावल मार्केट में देखिए तो 150 रुपये किलो तक का चावल है और वो भी समय पर मिल नहीं पा रहा है। हमारे ऋषि मुनि इन सभी फसलों का सेवन करके 200 साल तक जीवित रहा करते थे। तो इस जलवायु अनुकूल फसल को उगाना तो हमारे लिए बहुत ही लाभकारी है ही, हम पूरे पारिस्थितिकी इकोसिस्टम को भी संतुलित कर सकते हैं इन सब की खेती को बढ़ावा दे करके।
3: जी सर, और अगर हम बात करें कि कब हमें कौनी मिलेट की खेती करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए?
4: तो कौनी की जो उपयुक्त समय होती है बुआई का, खरीफ मौसम में हम लोग 15 मई से लेकर के 15 जुलाई तक, जब कभी भी खेत हमको खाली मिल जाए और खेत में सफिशियंट मॉइस्चर हो, नमी हो, उस समय हम इसकी बुआई कर सकते हैं। क्योंकि ये 85 से 90 दिनों में पककर तैयार होती है, अर्थात 3 महीने में पककर तैयार हो जाती है। तो अब देखा जाए कि अगर हम, कुछ हमारे किसान भाई हैं जो कि इसकी बुआई लोग क्या करते हैं कि इनका सरसों है, मसूर है, चना है, इसकी कटाई करने के बाद बुआई मार्च के प्रथम सप्ताह में कर देते हैं। तो जब मार्च के प्रथम सप्ताह में करते हैं तो इनकी फसल जून के प्रथम सप्ताह में पक करके तैयार होती है। फिर दूसरी फसल 15 जून तक बरसात मिल जाता है या कभी कभी 20 जून तक बरसात का पानी मिलता है, तुरंत उसमें दूसरी फसल दे देते हैं इसी कौनी की। तो 20 जून को बुआई करते हैं तो पुनः 3 महीने, जुलाई, अगस्त, 20 सितंबर तक पक के तैयार हो जाती है। तो हम देखा जाए तो गर्मी और खरीफ में एक एक फसल बड़े आराम से इसकी ले सकते हैं और अच्छे उत्पादन दे देती है। तो खरीफ मौसम में सबसे बेस्ट टाइमिंग हम बात करें तो 15 मई से लेकर के आप 15 जून या लेट कंडीशन में 15 जुलाई तक भी इसकी बुआई आप कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और भी अगर आपको खेत खाली हो रहा है तो आप 30 जुलाई तक भी कर रहे हैं तो भी उत्पादन में कोई कमी नहीं होती है, हम लोग ऐसा रिसर्च करके देख चुके हैं। तो इसका हम यूँ कर सकते हैं 15 मई से लेकर 30 जुलाई तक जब भी आपको मौका मिले खेती कर सकते हैं। 30 जुलाई से 15 अगस्त के बीच में जब बुआई करेंगे तो थोड़ा सा 5 से 10% उत्पादन में कमी आ जाती है। तो कहीं कोई घबराने की जरूरत नहीं है, आपके पास बहुत लंबा विंडो है। आप 15 मार्च से लेकर 10 मार्च से लेकर के आप देखा जाए तो 30 अगस्त तक जब भी आपका खेत खाली है आप बुआई कर सकते हैं, आपके लिए बहुत ही एक लाभकारी फसल है। अब प्रश्न उठता है कि इसकी खेती कैसे करें। तो जैसे हम बाकी मिलेट्स या दूसरे फसलों की खेती के लिए खेत की तैयारी करते हैं, वैसे ही इसकी भी खेत की तैयारी करनी होगी। 2 से 3 बार जुताई करके पटा कर दें, खेत अच्छे से तैयार हो जाए। तो खरीफ मौसम में अगर हम रेज बेड पे लगाते हैं तो ज़्यादा लाभ होगा। रेज बेड के पीछे हमारा कहने का मतलब ये है कि फसल के बीज के पास कभी भी जल का जमाव नहीं होना चाहिए। ऊपरी और मध्यम ऊपरी ज़मीन में ही इसकी खेती करें, जहाँ कहीं बरसात का पानी न जमा होने पाए वहीं खेती करें इसकी। तो अच्छे से तैयार खेत में हम रेज बेड या ब्रॉड बेड एंड फरो मेथड से बेड बनाकर खेती करें। वो सुविधा नहीं है तो हम फ्लैट मेथड्स में सीधा बुआई कर सकते हैं, कतार से कतार की दूरी 9 से 10 इंच रख सकते हैं। बीज की गहराई किसी भी दशा में 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा गहरा न रखें, अन्यथा ज़्यादा गहराई पर जाने पर बीज का जमाव नहीं होता है। अब बात आती है इसमें उपयुक्त प्रजातियों की, क्योंकि जो भी प्रजातियाँ हैं अगर हम परंपरागत अपनी पुरानी प्रजातियां लेंगे तो उत्पादन में गिरावट आएगी, तो आप कहिएगा कि धान की तुलना में प्रॉफिट कम हो रहा है। लेकिन निश्चित तौर पे अगर आप जो अभी हम बताने जा रहे हैं उन प्रजातियों का प्रयोग करेंगे तो धान से ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा। जैसे कि कौनी का एक प्रजाति है SIA 3156, दूसरा है SIA 326 और तीसरा प्रजाति है SIA 3088, चौथा है श्री लक्ष्मी। ये चारों प्रजातियां हम ले सकते हैं। एक प्रजाति हमारा राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी से निकली हुई है, राजेंद्र कौनी 1, इसको भी ले सकते हैं। SIA 3156 सबसे अच्छी प्रजाति है, इसका हम लोग अपने रिसर्च स्टेशन पर 11 क्विंटल प्रति एकड़ तक उत्पादन ले चुके हैं। जब हम लोग इसको BBF पर लगाते हैं, ब्रॉड बेड फरो पर लगाता है, फील्ड में पानी का जमाव कभी नहीं होता है, तब अच्छे कंडीशन में 11 क्विंटल तक उत्पादन दे देती है। किसान भाइयों के पास सुविधा है तो आप BBF पे बुआई करें, रेज बेड बनाकर बुआई करें, नहीं तो कतारों की दूरी 9 इंच रखते हुए 10 इंच रखते हुए आप फ्लैट मेथड में बुआई कर सकते हैं। अगर आपके पास ऐसा कोई बुआई का इक्विपमेंट नहीं है तो आप इसकी ब्रॉडकास्टिंग भी कर सकते हैं, छिटकवा विधि से भी बो सकते हैं, लेकिन छिटकवा विधि में आपको बीज दर थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। तो प्रति एकड़ इसका जो बीज दर है वो 4 किलोग्राम पर्याप्त हो जाता है, लेकिन आप छिटकवा विधि से लगा रहे हैं तो वहां पे बीज दर 25% बढ़ाना होगा, अर्थात आपको 5 किलोग्राम बीज प्रति एकड़ लेना पड़ेगा। तो छिटकवा विधि से भी बुआई करके खेत में मिलाया जा सकता है, बस उथली जुताई करनी होगी वहां जो 1 इंच से गहराई पर बीज न जाने पाए। तो इस तरह से हम इसकी बुआई कर सकते हैं। अब बात आता है इसमें पोषक तत्व प्रबंधन की, क्योंकि ये फसलें ऐसी हैं जो कमजोर भूमि में भी हो जाती हैं, इनको कम खाद की जरूरत पड़ती है, पानी की जितने जरूरत होती है उससे ज्यादा बरसात हो रहा होता है तो पानी की अलग से सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ती है। गर्मी में अगर इसकी हम खेती करते हैं तो जनरली 1 सिंचाई देने की जरूरत पड़ जाती है, और कभी कभी अगर हाई टेम्परेचर है, गर्मी ज़्यादा है तो वहाँ 2 सिंचाई भी, तो गर्मी में तो हमें इंश्योर करना पड़ेगा आपको जब सिंचाई की सुविधा हो तभी गर्मी की खेती करें, 15 मार्च 10 मार्च को बुआई करें, नहीं तो सिर्फ खरीफ फसल की बुआई करें अगर सिंचाई की सुविधा नहीं है तो। जब बरसात का पानी मिलता है आपको मई के अंतिम सप्ताह में या 15 जून तक, जब भी सिंचाई का बरसात का पानी मिलता है आप इसकी बुआई कर सकते हैं। कभी कभी लेट मानसून आता है तो आप लेट से भी बुआई कर सकते हैं, जैसा हमने पहले बताया इसकी बुआई हम लोग 15 अगस्त तक भी अगर करते हैं तो भी कहीं कोई खास दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से हम इसकी विभिन्न टाइम पर विभिन्न विधियों से बुआई कर सकते हैं। किसी कारणवश हमको इंटेंसिफिकेशन करना है तो हम इसकी नर्सरी डाल करके रोपाई भी कर सकते हैं। लगभग 22 से 25 दिन का बिचड़ा जो है हम 25 सेंटीमीटर की दूरी पर कतारों में मेंटेन करते हुए 20-20 सेंटीमीटर की दूरी पर रोपाई कर सकते हैं और बहुत अच्छा लाभ मिलता है। रोपाई में जितना खर्च होता है उतना हमारा निराई में खर्चा बच जाता है, क्योंकि जब हम रोपाई करेंगे तो एक निराई का खर्चा बच जाएगा। अब खरपतवार प्रबंधन भी एक बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि अगर समय पर हम खरपतवार का प्रबंधन नहीं करते हैं तो इतना ज़्यादा खरपतवार हो जाते हैं कि फसल का उत्पादन, जैसा हमने बताया 10 से 11 क्विंटल तक उत्पादन क्षमता है, लेकिन अच्छे कंडीशन में अगर ज़्यादा खरपतवार, बहुत हैवी खरपतवार लग जा रहा है तो आपको 5 क्विंटल से ऊपर प्रति एकड़ उत्पादन नहीं मिलने वाला है। इसलिए समय पर विशेषकर बुआई से 15 दिन से लेकर के 35 दिन तक खेत आपका खरपतवार से फ्री होना चाहिए। अब खरपतवार को हटाने के लिए, खरपतवार को न आने देने के लिए, खरपतवार प्रबंधन के लिए आपको बहुत सी विधियाँ हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं, इन फसलों को लगाना है तो कहीं कहीं जहाँ हमारे पास हर्बिसाइड नहीं है वहाँ हम गर्मी की गहरी जुताई कर देते हैं, जो भी परेनियल खरपतवार हैं वो नष्ट हो जाते हैं, खरपतवार के बीज भी नीचे चले जाते हैं तो खरपतवार कम आते हैं, तो वो विधि भी लगाई सकती है। दूसरा है कि हम बहुत से हमारे पास आजकल पावर बीडर आ गए हैं। पावर बीडर का प्रयोग करके हम लोग कतारों के बीच में मशीन चला करके खरपतवार नियंत्रण कर सकते। दूसरा है मैनुअल बीडर। आजकल मैनुअली जो मानव चालित यंत्र हैं उसका भी कतारों के बीच में प्रयोग करके हम लोग खरपतवार का नियंत्रण कर सकते हैं। जो थोड़ा बहुत पौधों के किनारे पर खरपतवार उसको हम मैनुअली लेबर से निकाल सकते हैं। तीसरा मेथड हम यूज कर सकते हैं रसायन का। इसके लिए पेंडीमिथिलीन 1 किलोग्राम सक्रिय तत्व पर्याप्त हो जाता है। अर्थात यूं कहें कि 1 से 1.25 लीटर बाजार का पेंडीमिथिलीन प्रति एकड़ हमें प्रयोग करना है बुआई के तुरंत बाद, बुआई के 24 घंटे के अंदर दे देना है। दवा देते समय ध्यान रखना चाहिए कि अगले 24 घंटे तक बरसात न होने की संभावना हो। अगर आपका कृषि वैज्ञानिक से सलाह मिली है कि बरसात होने वाली है तो कदापि प्रयोग न करें। पेंडीमिथिलीन का प्रयोग आपको तभी करना है जब मौसम साफ सुथरा रहे और अगले 24 घंटे तक बरसात न होने की संभावना रहे, तभी प्रयोग करें। क्योंकि इन सबका बीज की बुआई हम लोग उथला करते हैं, 2 सेंटीमीटर हमने बताया गहराई पर करते हैं, और अगर पेंडीमिथिलीन हम देते हैं और उसके तुरंत बाद 10 घंटे बाद बरसात हो जाती है तो क्या होगा कि पेंडीमिथिलीन रिस करके बीज के संपर्क में चला जाएगा और इसके कौनी के बीज को भी जमने नहीं देता है। तो ये सावधानी थोड़ा बरतनी पड़ती है। किसान भाइयों की सुविधा के लिए बता दें कि आप 30 ml पेंडीमिथिलीन दवा प्रति टंकी की दर से प्रयोग कर सकते हैं और 1 एकड़ में लगभग 10 टंकी पानी जरूरत पड़ती है इस तरह से। लेकिन ध्यान रखना होगा बुआई के तुरंत बाद करें या 24 घंटे के अंदर कर लें तो ज्यादा बेहतर है, बशर्ते बरसात होने की संभावना नहीं होना चाहिए। दूसरा, इसमें हर्बिसाइड हमारे पास अभी तक जो मार्केट में उपलब्ध है इन सब फसलों के लिए केवल 2,4-D ही है, और 2,4-D जो हमारा 58% का है उसका भी प्रयोग कर सकते हैं, 2,4-D 80% का भी प्रयोग कर सकते हैं, 2,4-D एक लो कंसंट्रेशन का आता है उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। 58% का अगर दवा है तो उसका जनरली 25 ml प्रति टंकी पानी की दर से व्यवहार करें तो आपकी फसल में जो चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार है वो मर जाते हैं, लेकिन जो सकरी पत्ती और बाकी खरपतवार है वो बचे रहते हैं, तो उनको आपको लेबर लगा करके ही निराई करवानी पड़ेगी। तो इस तरह से खरपतवार का प्रबंधन कर सकते हैं, और इस तरह से अगर खेती करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको प्रति एकड़ 8 से 10 क्विंटल कौनी बीज उपलब्ध हो जाएगा, उत्पादन मिल जाएगा।
3: सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ही अच्छी तरीके से।
4: किसान भाइयों के लिए एक और मेरे पास एक ऑफर है जो हम लोग एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस मिलेट वैल्यू चेन प्रोजेक्ट चला रहे हैं, उसके तहत हम लोग बीज उपलब्धता के अनुसार पर 25 से 30 किसानों को हम लोग निःशुल्क इसका बीज वितरित करेंगे। जो भी इच्छुक किसान हैं, प्रगतिशील किसान हैं, वो हमारे यूनिवर्सिटी के डायरेक्टोरेट ऑफ सीड एंड फार्म से संपर्क कर सकते हैं या मुझसे भी डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं, उनको निःशुल्क हम लोग बीज उपलब्ध करा देंगे 2 kg प्रति फार्मर्स। जिन किसानों को ज़्यादा एरिया में लगाना है वो लोग बिहार सरकार के जो उनके ब्लॉक में कृषि पदाधिकारी हैं उनसे संपर्क करके रजिस्ट्रेशन करा करके वो लोग इस फसल की उत्पादन कर सकते हैं। उसके लिए बिहार सरकार इनको 4,000 रुपये तक का अनुदान दे रही है, 2,000 रुपये इनके खाते में डाल देती है, जबकि 2,000 रुपये का विभिन्न प्रकार के इनपुट्स इनको उपलब्ध करके देती है।
3: तो किसान भाई बहनों आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत।

0: जानते हैं कि खसरा कितनी गंभीर बीमारी है? टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर हैं, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MRT का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in।
5: हर घर सूर्य घर।
0: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टिको क्यों है इतने जीरो?
1: जीरो नहीं।

0: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात, अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
1: तो आशा दीदी स्वास्थ्य केंद्र पर एनएम दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। ह्यूमन पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
0: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
2: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 ग्रीन एफएम।

बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 22 से 26 जुलाई के दौरान आसमान में घने बादल छाए रहेंगे और जिले में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी चलने और हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 26 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 90% और दोपहर में 70 से 80% रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए। जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दें, पिछले कुछ दिनों में हुई वर्षा का लाभ उठाइए और आगे भी संभावना है कि वर्षा होगी, तो ऐसी स्थिति में धान की रोपाई के लिए व्यवस्था सुनिश्चित कर ले। रोपाई से पहले प्रति हेक्टेयर 25 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस, 30 किलोग्राम पोटाश और 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट का प्रयोग करें। आपको बता दें कि निचली जमीन के चारों ओर मजबूत मेड़ यानी कि बांध बनाकर वर्षा जल का संचयन कर ले, ताकि जरूरत पड़ने पर आप वर्षा के जल का सिंचाई में उपयोग कर सके। जो किसान भाई बहन श्री अन्न की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दें, मोटे अनाजों की खेती के लिए उचास भूमि का चयन करें। मड़वा की वकुला KMR 316, GPU 67 और VL 379 राजेंद्र मड़वा RU 8 और RU 3। और आपको बता दें कौनी की अनुशंसित किस्में हैं राजेंद्र कौनी 1। आप इन किस्मों की बुआई कर सकते हैं। मक्का की खेती करने वाले किसान भाई बहन ध्यान दें, खरीफ मक्का की बुआई आसमान साफ रहने पर ही करें। खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और ध्यान रखें कि बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नेत्रजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश जरूर डालें। अनुशंसित मक्का की किस्में जैसे सुवान, देवकी, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, राजेंद्र संकर मक्का 3, गंगा 11 है। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, मिर्च, अगात, गोभी, टमाटर जैसी सब्जियों की नर्सरी तभी तैयार करें जब आसमान साफ हो। और बागवानी करने वाले भाई बहन ध्यान दें, जुलाई अगस्त आम के पौधों के रोपण के लिए सबसे उपयुक्त समय होता है। कलमी पौधों की रोपाई 10x10 मीटर और बीजू पौधों की रोपाई 12x12 मीटर की दूरी पर करें। सघन बागवानी के लिए 5x5 मीटर और अम्रपाली के लिए 2.5x2.5 मीटर की दूरी रखें। फलदार वृक्षों में प्रति वर्ष 1 किलोग्राम नाइट्रोजन, 30 किलोग्राम फास्फोरस, 700 किलोग्राम पोटाश और 80 से 100 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद जरूर डालें। आपको बता दें इस समय केला के स्वस्थ सकर्स की रोपाई करें। लंबी किस्मों जैसे अल्पान, कंथली, मालभोग, चिनिया, G9 और बोनी किस्में जैसे ग्रैंड नेन, रोबस्टा, बसराई का चयन करना सबसे फायदेमंद होता है। लंबी किस्मों के लिए 2x2 मीटर और बोनी किस्मों के लिए 1.5x1.5 मीटर की दूरी रखें। प्रत्येक गड्ढे में 5 किलोग्राम गोबर की खाद, 500 ग्राम अरंडी की खली, 300 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट, 100 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश और 10 ग्राम कार्बोफ्यूरान मिलाना ना भूलें। रोपाई से पहले सकर्स को कार्बन डाइजीम 2 ग्राम प्रति लीटर पानी से उपचारित करें। किसान भाई बहनों, टिश्यू कल्चर पौधे का उपयोग अधिक उत्पादन के लिए लाभकारी होता है। पशुपालक भाई बहन ध्यान दें, पशुओं में PPR, MFD यानी कि खुरपका मुंहपका और HS यानी कि गला घोटू, इन रोगों का खतरा अधिक है। इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण करवाएं, उन्हें साफ और सूखा रखें और बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। रोग के लक्षण अगर दिखाई दे तो तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें और ध्यान रखें कि पशुओं की बिना जरूरत के आवाजाही पर नियंत्रण रखें। गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए जून माह में अगर टीके नहीं लगाए गए हो तो इस महीने में टीके जरूर लगवा दें। पशुओं को संतुलित और पौष्टिक आहार दें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।
2: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
4: हर घर सूर्य घर।
1: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूँ आपके साथ आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, लेडीज फर्स्ट कार्यक्रम में आज हम बात करने वाले हैं उन महिलाओं के बारे में जो घर से दूर अकेली रहती हैं या फिर कई बार उन्हें अकेले यात्रा करनी पड़ती है। एक जमाना हुआ करता था जब महिलाएं लड़कियां घर पर रहती थी, लेकिन बदलते समय के साथ महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। ऐसे में उन्हें बाहर निकलकर काम भी करना पड़ता है और कई बार स्थिति ऐसी भी होती है कि उन्हें बाहर अकेले यात्रा भी करनी पड़ती है। तो ऐसे में उनकी प्राथमिकता जो होनी चाहिए वो उनकी सुरक्षा होनी चाहिए। अगर आप घर से दूर अकेली रह रही हैं तो आपने अपने लिए कोई घर जरूर देखा होगा, कोई फ्लैट देखा होगा। तो सबसे पहली चीज का जो आप ध्यान रखें, एक ऐसे सुरक्षित जगह पर फ्लैट लें जहां सुरक्षित वातावरण हो। आप एक बार अपने आसपास जरूर देख लें कि वहां कैसे लोग रहते हैं। अब आपने अपना घर ले लिया है, आसपास के लोगों को भी देख लिया है, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि आप अभी जिस घर में रहने जा रही हैं उस घर में आपसे पहले कौन रहता था। आप उन्हें ना जानती हो, लेकिन अभी आपके घर के लॉक को शायद वो जानते हैं। तो जैसे ही आप अपने नए घर को तय कर लेती हैं तो दूसरा काम ये करें कि आप अपने घर के लॉक को बदले। इससे होता ये है कि आपके पहले जो भी किराएदार वहां रहते थे उनका एक्सेस वहां खत्म हो जाता है और हो सकता है कि इसके पहले जो लॉक लगा हुआ था उसके बारे में किसी को जानकारी हो या फिर उसकी एक चाबी किसी के पास हो। तो इसलिए आप जैसे ही नए घर में जाते हैं उसका लॉक बदलना जरूरी हो जाता है। इसके आगे ये कोशिश करें कि अगर हो सके जिस एरिया में आप रहती हैं वहाँ अगर कोई कैमरा है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो अपने घर के एंट्री पॉइंट पर कैमरा लगवा सकती हैं तो जरूर लगवाएं। अगर आपने अपने घर के एंट्री पॉइंट पर कैमरा नहीं लगवाया है या फिर ये अलाउड नहीं है तो एक और काम आप कर सकते हैं। सबसे पहले तो एक पीप होल लगाएं या तो फिर वीडियो डोरबेल लगाएं। सबसे पहले जानते हैं कि पीप होल क्या होता है। आपके घर के मेन दरवाजे पर एक छोटा सा छिद्र बना होता है जिसे आप देख सकते हैं कि आपके दरवाजे पर कौन खड़ा है, या तो फिर वीडियो डोरबेल लगवाएं। जैसे ही आपके घर पर कोई घंटी बजाएगा आप अपने कमरे में बैठे बैठे ये देख पाएंगे कि दरवाजे पर कौन खड़ा है। ये जानना बहुत जरूरी होता है जब आप अकेली रह रही होती हैं कि आपके घर के अंदर कौन आ रहा है। किसी भी अजनबी को घर के अंदर बुलाने से पहले एक बार जरूर सोचें। और कई बार ये होता है कि आपके घर पर कोई परेशानी हो गई और किसी अजनबी को, किसी मैकेनिक को या ऐसे ही किसी और को बुलाना पड़ जाता है। तो इस वक्त आप ध्यान रखें कि आपने किसे बुलाया है, कब बुलाया है, इस बात की जानकारी अपने किसी परिचित को जरूर दें। आप एक काम और कर सकती हैं, कुछ ऐसे पालतू जानवर आप पाल सकती हैं जो आपकी सुरक्षा को सुनिश्चित करता हो। जैसे कि अगर आप कुत्ता पालती हैं तो वो किसी भी अनजान व्यक्ति को देखकर शोर करने लगता है। ये खास तौर से रात के लिए फायदेमंद होता है। रात को अगर कोई आपके घर के अंदर चोरी चुपके से घुसने की कोशिश करता है तो कुत्ता शोर करने लगता है और ऐसे में आप बिल्कुल अलर्ट हो जाते हैं। इसके साथ ही कुत्ता पालने का एक और फायदा होता है कि ये आपके मूड को बहुत अच्छा बनाए रखता है। आप अकेली रहती है, अकेले रहने वाले लोगों को डिप्रेशन का ज्यादा खतरा होता है। अगर ऐसे में आपके पास कोई क्यूट सा पालतू जानवर होगा तो आपका मूड भी अच्छा बना रहेगा। ये तो बातें हो गई घर के अंदर की। आपके घर के आसपास कैसे लोग हैं ये आपने घर लेने से पहले देख लिया था। अब आपको ये भी करना होता है कि आप अपने घर के आसपास के लोगों से अच्छे रिश्ते बना कर रखें। इससे ये होगा कि वो भी आपकी सुरक्षा का ध्यान रखेंगे, वो भी आपका ध्यान रखेंगे। आप जब घर पर रहती हैं तब की सुरक्षा की बात तो हो गई, लेकिन जब आप घर से बाहर जाते हैं तो आप क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम घर की सुरक्षा की बात करते हैं। कई बार आप घर से बाहर जाते हैं और आपके पीछे घर से बहुत कीमती सामान की चोरी हो जाती है। इससे बचने के लिए आप क्या करें कि आपने तो अगर कैमरा लगवाया हुआ है तो बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा आप ये भी कर सकते हैं कि आप स्मार्ट होम डिवाइसेस खरीद सकते हैं, स्मार्ट लाइट्स खरीद सकते हैं। ये शाम होते ही जल जाएंगे और लोगों को लगेगा कि आप घर पर ही हैं और चोर उचक्के आपके घर से दूर रहेंगे। घर से निकलने से पहले आप इस बात का ध्यान जरूर रखें कि आपने घर का दरवाजा अच्छे से बंद किया है और एक स्पेयर की जो आप रखते हैं, यानी कि एक एक्स्ट्रा चाबी जो आप रखते हैं, उसे आपने अच्छे से छुपाया है या नहीं, इस बात का भी आप ध्यान रखें कहीं ये किसी और के हाथ में न लग जाए। ये सोशल मीडिया का जमाना है और हर कोई अपनी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात को सोशल मीडिया पर अपडेट करता है। ऐसे में आप इस बात का ध्यान जरूर रखें कि आप कहाँ जा रही हैं। इसे सोशल मीडिया पर तुरंत अपडेट करने की जरूरत नहीं है। अगर आप कहीं गई हैं, घूमने गई हैं, तो वहां से आने के बाद आपको जो भी अपडेट करना है वो करें, लेकिन वहां होते हुए आप अपडेट करने से बचें। बाहर वालों को अपडेट करना बिल्कुल जरूरी नहीं है, लेकिन घर वालों को अपडेटेड रखना बहुत जरूरी है कि आप कहाँ हैं, किस हाल में हैं, किन के साथ हैं। ये आपके सुरक्षा को सुनिश्चित करती है। इसके लिए आप अपने फोन की लोकेशन भी हमेशा ऑन रखें, जिससे कि आपके परिवार को आपके लोकेशन की जानकारी मिलती रहे। और खास तौर से अगर आप किसी नई जगह जा रही हैं, तो ये जरूर करें, किसी करीबी के साथ अपने लोकेशन साझा कर दे और किसी एक करीबी को ये जरूर बता दे कि आप कहाँ और कब जा रही हैं। अपने पास कुछ इमरजेंसी नंबर लिखकर जरूर रखें। आजकल हमारे पास सब कुछ फोन में होता है, लेकिन कई बार हमारा फोन गुम हो जाता है। ऐसे में आप अपने कुछ करीबियों का नंबर याद करके रखें या फिर नोट करके रखें, और कुछ ऐसे इमरजेंसी नंबर्स भी रखें जो आपको तुरंत सहायता पहुंचाती है। जैसे हमारे बिहार में 112 है, अगर आप किसी परेशानी में फंसती हैं तो 112 पर कॉल करने से आपको जल्दी से जल्दी सुरक्षा मुहैया कराई जाती है। आपको अपने साथ पर्स में कुछ सेफ्टी टूल्स भी रखने चाहिए, जैसे कि आप पेपर स्प्रे रखें, फोल्डिंग चाकू रखें। ऐसी ही कुछ छोटी छोटी चीजें आप अपने साथ जरूर रखें, ये आपकी सुरक्षा को सुनिश्चित करता है। ये आपकी परेशानी में आपका सबसे बड़ा साथी साबित होता है। अगर आप रात को कैब से ट्रैवल कर रही हैं, तो अपने किसी करीबी को अपना लोकेशन जरूर शेयर करें, और साथ ही कैब की जानकारी अगर हो सके तो किसी के साथ शेयर करके रखें। और साथ ही आप ये भी ध्यान रखें कि कैब वाला आपको किस रास्ते से लेकर जा रहा है, ये कोई अनजान या सुनसान रास्ता तो नहीं है। और अगर सुनसान रास्ता है और यही एक रास्ता है आपके मंजिल तक पहुंचने का, तो आप उस दौरान अपने किसी परिचित से हो सके तो बात करते रहें, ये आपकी सुरक्षा के लिए जरूरी हो जाता है। और ये भी ध्यान रखें कि देर रात आप घर लौट रही हैं या कहीं जा रही हैं, तो कोई अनजान रास्ता चुनने से जितना हो सके बचें। और मोबाइल फोन को पर्स में रखने की जगह अपने हाथ में रखें, ताकि कोई परेशानी हो तो फटाक से आप किसी को फोन कर सकते हैं। अगर हो सके तो अपने फोन में आप वुमेन सेफ्टी ऐप भी इंस्टॉल करके रखें। अगर इन सारी चीजों का आप ध्यान रखते हैं, तो बाहर आप अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित करते हैं। तो लेडीज फर्स्ट में आज इतना ही। आप जुड़े रहिए 90.8 एफएम ग्रीन के साथ।
1: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
2: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
1: और लाइट बिल के,
2: अब 0 रुपए कैसे दूं?
1: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
3: पक्का। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
4: हर घर सूर्य घर।
5: नमस्ते क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
6: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने, हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
5: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना है। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
7: सुनो सुनो सुनो सभी, एक जरूरी बात, आया मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण फिर एक बार। अगर आपके घर या पड़ोस में है 5 साल या उससे छोटे बच्चे जिनका कोई भी टीका छूट गया हो, तो सोचते क्या हो, जल्दी से आशा दीदी से करो बात। बच्चों को स्वास्थ्य केंद्र है लेकर जाना और उनका टीकाकरण है करवाना।
8: सुहाना सफर और ये मौसम हसी,
7: टीको ये मौसम है टीकाकरण करवाने का, तो सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
9: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
10: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल 0 आ सकता है। मैंने कहा बेटा, नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल 0 आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
4: हर घर सूर्य घर।
0: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
11: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
0: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें।
11: आपकी सेहत की बातें,
12: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
11: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
12: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
11: वो कहाँ पर?
12: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 एफएम ग्रीन पर।
11: एफएम ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।
13: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
14: उन्नत कृषि।
15: नमस्कार श्रोताओं, आप सभी का स्वागत है 90.8 मेगाहर्ट्ज़ से यानी एफएम ग्रीन, और ये बिहार कृषि विश्वविद्यालय का अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन है जहां पर आपके लिए बातें होती हैं उन्नत कृषि कार्यक्रम में खेती बाड़ी की। तो आज बहुत ही खास विषय लेकर आए हैं, और आज जो विषय है जी हाँ, मिल्की मशरूम की खेत। प्रजातियों की बात करें तो इसमें भी जो अलग अलग प्रजातियाँ हैं तो उनके बारे में भी आज हम जानेंगे। और मशरूम की जहाँ तक बात है तो आज महिलाएँ और व्यवसायी जो हैं व्यावसायिक तौर पर मशरूम की खेती कर रहे हैं और आज आत्मनिर्भर बन रहे हैं इसकी खेती करके। तो आज थोड़ा विस्तार से जानेंगे मिल्की मशरूम के बारे में। मैम सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
16: धन्यवाद अनु।
15: मैम बिहार में वैसे कौन कौन सी प्रजातियां हैं मशरूम के जिसका हमारे किसान भाई खेती कर सकते हैं?
16: हमारे बिहार की जो जलवायु है उसके अनुकूलता के अनुसार चार तरह की मशरूम जो है उसकी खेती हम लोग प्राकृतिक रूप से कर सकते हैं। ऑयस्टर मशरूम, बटन मशरूम, मिल्की मशरूम और पेडिस्ट्रा मशरूम, ये चारों प्रजाति हम लोग करके सालों भर मशरूम की खेती हम लोग बिहार में कर सकते हैं।
15: अच्छा, तो मिल्की मशरूम की आज हम बात कर रहे हैं, और मिल्की मशरूम की खेती कब करें कैसे करें इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं।
16: मिल्की मशरूम को हम लोग श्वेत दुधिया मशरूम भी कहते हैं, इसको दूध छाता भी कहते हैं, और ऐसे इसका नाम कैलोशाइबा इंडिका है, और यह दूध के जैसा सफ़ेद दिखता है इसलिए इसको हम लोग दूध छाता भी कहते हैं। और इसकी खेती जो है प्राकृतिक रूप से हम लोग मार्च अप्रैल से लेके सितंबर अक्टूबर यहाँ तक कि कभी कभी नवंबर तक भी इसकी खेती हम लोग कर सकते हैं, और ऐसे अक्टूबर तक जनरली सितंबर अक्टूबर तक हम लोग इसकी खेती करते हैं क्योंकि उसके बाद हमारा ऑयस्टर और बटन का समय आ जाता है। तो जो हमारा पहले जो मशरूम ऑयस्टर और बटन मशरूम की खेती जनरली होती थी तो जो हमारा पीरियड था कि जिसमें मशरूम का कोई खेती ही नहीं होता था, जिसमें हम लोग कहते थे कि बस मार्च आ गया मशरूम की खेती ख़त्म हो गया, फिर सितंबर अक्टूबर आएगा तो फिर मशरूम लगाएंगे, तो ये जो पीरियड था इस पीरियड का में हम लोग बड़े ही अच्छे से आराम से मिल्की मशरूम की श्वेत दुधिया मशरूम की खेती करेंगे। और यह विश्व समुदाय को श्वेत दुधिया मशरूम जो है वो हमारे देश का देन है, हमारे NRC सोलन में ही इसका ईजाद किया गया था, इसकी खेती का जो तकनीकी है उसका ये किया गया था। और ये जो मिल्की मशरूम है यह ऑयस्टर मशरूम और बटन मशरूम दोनों के बीच का है, इसका कुछ करैक्टर या इसका जो तकनीकी है उत्पादन विधि कुछ स्टेप आपका ऑयस्टर के समान होता है और कुछ स्टेप जो है वो हमारा बटन के समान होता है।
15: तो ये केसिंग के बारे में, इसमें एक शब्द जो है मैम केसिंग आता है तो उसके बारे में हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे।
16: अब इसकी जो तकनीकी है मिल्की मशरूम की खेती में उसमें एक स्टेप आता है केसिंग। हम लोग इसकी तकनीकी की चर्चा पहले कर लें फिर उसके हम लोग केसिंग पर आते हैं। तो जैसे कि हम जो किसान भाई ऑयस्टर मशरूम की खेती करते होंगे तो बस ऑयस्टर मशरूम के लिए जो जो स्टेप आप करते हैं उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले आप पोषाधार का चयन करते हैं। तो मिल्की मशरूम के लिए भी आप पोषाधार का चयन करेंगे, इसका पोषाधार आपका गेहूं का भूसा हो सकता है, पुआल की कुट्टी हो सकता है या और भी कोई कृषि अवशेष हो सकता है। तो जो भी पोषाधार का हम चयन करें वो उसका चयन कर लें, उसके बाद उसका हम लोग निर्जीवीकरण करते हैं। तो इसके निर्जीवीकरण के लिए सबसे बेहतर है आप भाप उपचार करें, भूसे को पहले फुला दें, रात भर भूसा फुला दें, सुबह उसको निकाल करके एक बर्तन में उसको छान करके पानी से छान कर उसको डालते हैं, फिर उसको जूट के बोरे से उसके मुँह को बंद कर देते हैं, ऊपर से पानी उसमें डाल देते हैं और उसको आग पर चढ़ा देते हैं। जब पूरे से बहुत अच्छे से भाप निकलने लगे तो उसके बाद करीब 15-20 मिनट तक और रहने देते हैं, फिर उसको हम लोग किसी बर्तन में डलिया वगैरह हो या कोई सतह हो, साफ निर्जीवकृत सतह हो, उस सतह पर उसको हम लोग पलट देते हैं। उसका अतिरिक्त नमी जब निकल जाता है उसको छाह में फैला देते हैं। अतिरिक्त नमी निकलने के बाद फिर उसमें हम लोग भूसा के अनुसार स्पॉन डालते हैं। यदि भीगा भूसा का बात करें तो 4-5% उसमें हम लोग स्पॉन डालेंगे। स्पॉन डाल करके फिर पीपी बैग लेते हैं। पीपी बैग में हम लोग इसकी बिजाई करते हैं। बिजाई करने के लिए हम लोग या तो भूसा और स्पॉन को पूरा एक दूसरे मिला देंगे, एक विधि है, उसको मिलाकर फिर उसको पीपी बैग में पैक करते हैं। दूसरा तरीका है कि हम लोग परत में करते हैं। जैसे पहले भूसा देंगे 4 इंच के बाद फिर उसमें पूरे सतह पे बीज देते हैं, फिर 4 इंच भूसा देते हैं, फिर बीज देते हैं, फिर 4 इंच भूसा देते हैं, फिर बीज देते हैं। इस तरह से बैग का 12 इंच हम लोग ऊंचाई रखते हैं। उसके बाद फिर उसको भूसा से ढक करके फिर बैग को पैक कर देते हैं। एक ही उसके बाद ये दो तरीके में से या तो हम लोग पूरे भूसा और बीज को मिला करके पैक कर देते हैं या फिर परत विधि से करके पैक करके हम लोग तैयार करते हैं। और जैसे ऑस्टर मशरूम के बैग में हम लोग छेद करते हैं तो इसमें पूरे बैग में छेद, ये चूंकि ऊपरी सतह से निकलता है, जैसे बटन जो है ऊपरी सतह से निकलता है वैसे ये निकलता है, तो इसमें अलग से साइड में छेद करने का आवश्यकता नहीं। सिर्फ नीचे पैंदा में 2 छेद हम लोग कर देते हैं ताकि जो एक्स्ट्रा नमी वगैरह है वो हमारा निकलता है। और लगभग 12-15 दिन इसको हम लोग छोड़ देते हैं कमरे में, जो स्टरलाइज निर्जीवीकृत किया हुआ कमरा हो, जहाँ जिस कमरे में इसको हम लोग बैग को रखते हैं उसको 24 घंटा पहले हम लोग निर्जीवीकृत कर देते हैं और फिर उसको कमरे को बंद कर देते हैं। उस कमरे में फिर इस बैग को हम लोग रखते हैं। उस कमरे में लगभग 12-15 दिन तक बैग को छोड़ देते हैं तो हम देखते हैं कि पूरा बैग सफ़ेद हो गया, मतलब उसमें पूरा माइसेलियम बहुत अच्छे से रन कर गया। और जब माइसेलियम अच्छे से रन कर जाता है तब हमारा केसिंग का जो अब केसिंग का आता है कि अब हम केसिंग करेंगे, तो ये तब अब हम ये केसिंग के लिए हम लोग जिस दिन से बिजाई किए हैं उस दिन से हम लोग केसिंग की तैयारी करते हैं। तो केसिंग एक तरह का मृदा आवरण है जो कि मशरूम का जो उत्पादन तकनीक है, जो विधि है, उसका एक चरण है कि ये चरण करने के बाद ही हमारा मशरूम प्राप्त होगा मिल्की में और बटन में। ये ऑयस्टर मशरूम में हम लोग केसिंग नहीं करते हैं लेकिन मिल्की और बटन मशरूम में केसिंग करते हैं, तो वह इसका एक चरण है। और इसके लिए हम लोग केसिंग के लिए 2 साल पुराना सरा हुआ गोबर लेते हैं या पुराना वर्मी कंपोस्ट लिए या फिर आजकल मार्केट में कोकोपीट आता है, कोकोपीट भी ले सकते हैं लेकिन वो थोड़ा महंगा होता है, इसीलिए आप 2 साल पुराना गोबर का खाद मिल जाए तो बेहतर है। और इसमें हम लोग इसके अलावा जो भी गोबर का खाद है इसके अलावा इसमें हम लोग मिलाते हैं क्या, तो पुराने बाग की मिट्टी मिलाते हैं, जो रेत वाली बालू नदी की पेटी का जो बालू होता है वो रेत जो होता है उसको मिलाते हैं, और जो धान जैसे चावल बनाने के बाद जो भूसा प्राप्त होता है उस भूसा का राख भी हम लोग आते हैं। तो यदि हम लोग बाग की मिट्टी और रेत का बात करें तो 3 भाग बाग की मिट्टी लेते हैं तो 1 भाग रेत लेते हैं। यदि हम लोग बाग की मिट्टी और 2 सरा हुआ गोबर लेते हैं दोनों बराबर बराबर मात्रा में लेते हैं। और यदि हम लोग सारी चीज़ को थोड़ा थोड़ा मान लीजिए लेते हैं तो हम लोग इसको एक टोकरी बाग की मिट्टी ले लिए, एक टोकरी हम लोग कंपोस्ट ले लिए, एक टोकरी रेत ले लिए, एक टोकरी आपका भूसा का राख ले लिए, ये सारा को मिला करके भी हम लोग इसका कर सकते हैं। यदि बेहतर होगा आपको यदि 2 सरा हुआ पुराना गोबर का खाद मिल जाता है तो वो आपका बेहतर ऑप्शन है, नहीं तो फिर इसमें से जो भी आप पास उपलब्ध हो उसको हम लोग लेते हैं। फिर इसको हम लोग निर्जीवीकृत करते हैं। ये जब पहले हम लोग ये इकट्ठा कर लिए, अब इसमें मान लीजिए कोई मेटेलिक कुछ चीज़ हो, पत्थर हो या घास फूस हो तो उसको हम लोग अच्छे से हटा लेते हैं, लेकिन इसको महीन करने की या चालने की आवश्यकता नहीं है। यदि मिट्टी का छोटा छोटा ढेला भी है तो उससे कोई नुकसान नहीं है, उसको बिल्कुल महीन से चालना नहीं है। लेकिन यदि उसमें पत्थर है, कंकर है, कुछ शीशा का टुकड़ा है, प्लास्टिक का टुकड़ा है या कुछ पत्ता है, ये सब है, तो वो सबको हम लोग को उसको हटा लेना है, ठीक है। इसके बाद अब इसको हम लोग निर्जीवीकृत करेंगे। निर्जीवीकृत करके इसमें हमारा लगभग नमी सही रहना चाहिए, लगभग 70% नमी रहना चाहिए। और नमी सही है हमारे केसिंग का ये जानने के लिए करते हैं। केसिंग का हम लोग हाथ में गोला बनाते हैं, उसको नीचे छोड़ते हैं। यदि वो टूट गया तो इसका मतलब हमारा केसिंग में नमी सही है, और नमी को केसिंग को निर्जीवीकृत करने के लिए हम लोग नुवान लेते हैं 2 ml, फॉर्मुलिन लेते हैं 5 ml, कार्बेंडाजिम 1 gram और 1 liter पानी, इसमें इसका घोल बना करके फिर पूरे केसिंग का जो मटेरियल हम तैयार किए हैं, मिट्टी तैयार किए हैं, उसमें इसको स्प्रे करके उसको निर्जीवीकृत करते हैं, फिर उसको प्लास्टिक की सीट से ढक देते हैं, लगभग 7 से 7 दिन उसको हम लोग छोड़ देते हैं। और ऐसे यदि आप केसिंग जिस दिन बिजाई किए हैं उस दिन से केसिंग की तैयारी करते हैं तो आप कल ऐसे ही 12 से 15 दिन के बाद केसिंग करते हैं, इतने दिन तक वो बड़े ही अच्छे से आपका केसिंग निर्जीवीकृत हो जाता है। फिर हम लोग जब माइसेलियम पूरा रन कर जाता है बैग में तब उसका केसिंग करते हैं, तो उसके लिए क्या करते हैं कि उसका ऊपरी सतह को पूरा खरोच देते हैं, जैसे कैसे लहसुन का को हम लोग थोड़ा चलाते हैं थोड़ा थोड़ा उसमें एरेशन, उस तरह से ऊपर का परत उसका हम लोग उसको खरोच देते हैं, और खरोच करके उसको बराबर करके हल्का सा उसमें हम लोग नमी दे देते हैं। नमी के देने के बाद उस पर हम लोग केसिंग की लगभग 3 से 4 cm मोटी परत डाल देते हैं, और ये हमारा जो बिजाई किए थे उससे 10 से 12 दिन के अंदर हम लोग केसिंग कर देते हैं, और केसिंग करने के बाद उसमें प्रतिदिन हम लोग को नमी देना होता है, और गर्मी के अनुसार कैसा इन्वायरमेंट उसके अनुसार हो सकता है कभी आपको 2 बार भी नमी देना पड़े या फिर कम से कम 1 बार तो प्रतिदिन देना होगा। लेकिन ध्यान क्या रखना चाहिए, जब हम लोग इसमें पानी दे रहे हैं नमी दे रहे हैं तो ये बिल्कुल फुहारे से देना है, और जो केसिंग मृदा है उससे नीचे जो कंपोस्ट हमारा वहाँ पानी नहीं जाना चाहिए, सिर्फ जो केसिंग का जो हम 3 से 4 cm मोटा परत दिए हैं सिर्फ वो उसमें ही पानी का मात्रा जाना चाहिए, इतनी सावधानी से हमें पानी देना है। इसके बाद केसिंग के लगभग 15 से 20 दिन के बाद हमारा फसल तैयार हो जाता है, और 5 से 7 दिन में फसल निकलने के 5 से 7 दिन के बाद इसे यह तुराई योग्य हो जाता है, और इन्हें हम लोग घुमा करके तोड़ लेते हैं।
17: मैम केसिंग के रूप में क्या क्या उपयोग कर सकते हैं?
16: केसिंग के रूप में जैसे मैंने बताया अनु, केसिंग के रूप में हम लोग 2 साल सड़ा हुआ गोबर यूज कर सकते हैं, या फिर उसके साथ हम लोग पुराने बाग की मिट्टी, पुराने बाग की मिट्टी, किसान भाइयों बहनों इसको ध्यान दीजिए, पुराने बाग की मिट्टी को हम लोग यूज करते हैं। इसके बाद रेत वाली जो बालू होती है नदी के पेटी में जो बालू पाया जाता है वो रेतीला रहता है उस बालू का उपयोग कर सकते हैं, प्लस जो धान का भूसा है उसको हम जलाकर उसका राख को यूज कर सकते हैं, प्लस कोकोपीट मार्केट में उपलब्ध है उसको हम लोग यूज कर सकते हैं। तो इन सब सामग्रियों को जैसे कि सिर्फ हम आपको रेशियो भी मैंने बताया कि यदि हमारे पास सिर्फ ना पुराने बाग की मिट्टी है और हम लोग रेत का यूज कर रहे हैं तो 3:1 हम लोग यूज करेंगे, 3 भागिये लेंगे 1 भागिये लेंगे, और यदि हमारे पास 2 साल से पुराना गोबर है और बगीचे की मिट्टी है तो बराबर बराबर ले सकते हैं, और यदि और सारे चीज लेंगे तो हम लोग वॉल्यूम से मिलाते हैं, मतलब केजी से नहीं लेते हैं, टोकरी से 1 टोकरी है तो फिर 1 टोकरी है, इस तरह से बराबर बराबर लेकर के हम लोग उसको मिलाते हैं, और फिर केसिंग हमारा उसका अगला प्रक्रिया निर्जीवीकृत करना ये हम लोग करते हैं, फिर उसका यूज करते हैं।
17: और अंत में मैम मिल्की मशरूम की खेती में क्या कुछ और आवश्यक है, कुछ सुझाव जो आप हमारे किसान भाइयों को देना चाहेंगे?
16: बिल्कुल, ये आपको बता दें मिल्की मशरूम की जो खेती होती है गर्मी में ये ताप सहिष्णु है, इसके लिए जो आवश्यक टेम्परेचर चाहिए वो लगभग 35 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक में भी यह इसकी खेती हो जाती है आराम से। तो हम आपका हमारा आपका ये नेचुरल एक्सपीरियंस भी अनुभव भी है कि गर्मी के दिनों में जो माइक्रोब्स का थोड़ा ग्रोथ ज़्यादा हो जाता है, जो जीवाणु होते हैं कीटाणु होते हैं, तो आप ठंडे में आप देखते होंगे एक दिन नहीं भी नहाते हैं तो बहुत प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन गर्मी में नहीं नहाते हैं तो स्किन में जलन खुजली होने लगता है। ये क्यों होता है? क्योंकि अभी माइक्रोब्स के जो जीवाणु है कीटाणु है उनके लिए भी फेवरेबल सिचुएशन है, तो यह हमारा मशरूम भी एक तरह का फंगस है तो उसके लिए जो हम लोग माहौल दे रहे हैं तो और दूसरा फंगस भी उसको ग्रो कर सकता है, तो इसके लिए हम लोग को क्या है कि बहुत ज़्यादा साफ सफाई ये सब चीज़ का या फिर जो हम लोग चयन करते हैं इनपुट वो सब पे बहुत सावधानी रखना पड़ता है। जो हम लोग भूसा या पुआल का चयन करें वो ताज़ा होना चाहिए, शुष्क होना चाहिए, कभी भी वो पानी खाया नहीं होना चाहिए, बाढ़ में डूबा नहीं होना चाहिए, भींगा नहीं होना चाहिए, सरा गला नहीं होना चाहिए। इसके बाद हम लोग वीकली जो क्रॉप हाउस है जो हमारा फसल कक्ष है उसमें 2% फॉर्मलिन और 0.1% कार्बेंडाजीम का घोल का वीकली हम लोग छिड़काव करें ताकि हमारा किसी तरह का कोई इन्फेक्शन किसी तरह का कोई संक्रमण होने की संभावना नहीं रहे। फिर जो कमरा है उसमें प्रकाश आने का और हवा का आवागमन का अच्छा व्यवस्था होना नीचे आवश्यकता होने पर हम खिड़की दरवाजा खोल दें तो धूप भी आए और हवा का भी आवागमन भी हो। और जब भी हम स्पॉन का प्रयोग करें, स्पॉन का चयन करें, वह भी हमारा शुद्ध होना चाहिए, ताज़ा होना चाहिए, वो उसमें किसी तरह का संक्रमण नहीं होना चाहिए। फिर जो चूहा छुछुंदर गिलहरी है ये सबसे हमको जब तक हमारा माइसिलियम पूरा रन नहीं कर जाता है, जो हमारा कोई भी मशरूम का स्पॉन रहता है वह किसी न किसी जो खाद्यान्न को आधार देके बनाया जाता है, चाहे वो मक्का हो सकता है, वो धान हो सकता है, वो गेहूं हो सकता है, और भी कोई खाद्यान्न हो सकता है, तो उसको खाने के लिए ये चूहा वगैरह आते हैं। तो जब माइसिलियम पूरा रन हो जाता है तब फिर चूहा डैमेज नहीं करता है, तो इस पीरियड में चूहा से गिलहरी से ये सबसे बचाना बहुत आवश्यक है। तो उसके लिए हमारे किसान भाई बहन को प्रयास करना चाहिए, उसके लिए अलग अलग तरीका है कि उनको अपना करके हम चूहे से बचाएं। प्लस एक चीज और है कि को प्राइमस निकलता है उसमें, आप देखेंगे काला ऐसा बिल्कुल धागा ऐसा पतला सा नीचे की गेहूं को जब हम लोग बोते हैं गेहूं का डिब्बी निकलता है वो उसी टाइप का पतला काला ऐसा निकलेगा और वो तेजी से लंबा होता है फिर वो गल जाता है। तो जैसे ही वो निकले उसको नोच करके जहाँ पर निकला है वहाँ का पुआल सहित उसको नोच करके ज़मीन के अंदर डाल देना है और उसको थोड़ा फॉर्मलिन से वेबेस्टिन के घोल से वहाँ पर ट्रीट भी कर देना है। और यदि ये नहीं करते हैं तो वो इतना फास्ट उसका स्पोर निकलेगा पूरा क्रॉप आपको बर्बाद कर देगा। तो को प्राइमस से बहुत सावधान रहिए। यदि यह आपके फसल में आ गया है निकल रहा है तो उसको हाथों से चुन चुन के उसको हटाइए और उसको जहाँ तहाँ नहीं फेंकिए बल्कि ज़मीन के अंदर गड्ढा खोद के उसके अंदर डाल दीजिए ताकि वह किसी भी तरह से और वो नुकसान नहीं कर पाए और वो फसल में आपको नहीं फैले। ये एक तरह का फसल का वीड है, खरपतवार है, जिससे कि हम लोग को मशरूम की खेती में बचाना आवश्यक है। इस तरह से इन सुझावों को, इन सावधानियों को जब हम अपनाएंगे तो अब हमारा फसल हमेशा अच्छा होगा।
17: जी, तो किसान भाइयों और हमारे श्रोताओं, मिल्की मशरूम की खेती आपने समझ ली होगी और क्या कुछ करना है आपको, इसमें क्या कुछ बातों का ध्यान रखना है, सारी बातें यहाँ पर मैडम ने आपको बताई हैं। तो आशा करते हैं आपको ज़रूर लाभ मिलेगा आज के इस वार्ता से। तो अगले दिन एक अलग विषय के साथ हम हाजिर होंगे इसी फ्रिक्वेंसी पर। नमस्कार।
18: उन्नत कृषि,

0: कितनी गंभीर बीमारी है। टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MRT का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुड़कुड़दास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
5: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
4: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है, और हुकुम सिंह भी। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।
6: हर घर सूर्य घर।
7: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टिको, क्यों है इतने जीरो?
1: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ, जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
7: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं, या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
7: तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा, सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है,
7: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
1: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
8: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर AC चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
4: PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।
6: हर घर सूर्य घर।
9: सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।
10: नमस्कार साथियों, आपने ट्यून किया है 90.8 MHz और आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। और आज उन्नत कृषि कार्यक्रम में हम फिर से एक खास विषय लेकर आए हैं। वैसे अगर बात करें तो ये बहुत छोटी सी चीज है, लेकिन कहते हैं ना कि देखन में छोटन लागे है घाव करे गंभीर, तो उसी प्रकार अगर ये छोटी सी चीज़ आपकी सब्जियों में डल जाए तो उसका टेस्ट ही कुछ अलग बना देता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ हरी मिर्च की। और हरी मिर्च हमारे इंडिया में, हमारे भारत देश में इसकी कितनी महत्ता है आप सभी जानते हैं जो भारतीय हैं। तो आज हरी मिर्च की खेती के बारे में हम जानेंगे, और इसकी उपयोगिता, कैसे पौध तैयार करें, और सिंचाई क्या कुछ कैसे किया जाता है, वो सारी बातें आज हमें बताएंगे डॉक्टर संगीता श्री मैम। मैं आपको बता दूं, ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। तो सबसे पहले तो स्वागत है मैम आपका हमारे इस कार्यक्रम में।
11: धन्यवाद अनु।
10: इन जो खेती कर रहे हैं विस्तृत तौर पर, तो उनके लिए बहुत जरूरी होता है कि हर बात की जानकारी उनके पास रहे इसकी खेती से जुड़े। तो हरी मिर्च की उपयोगिता सबसे पहले इसके बारे में थोड़ी जानकारी दें।
11: धन्यवाद अनु। आपने ठीक ही कहा कि इसको हम कहीं भी उगा सकते हैं, लेकिन अगर बात करें तो ये एक व्यावसायिक खेती के रूप में किया जा सकता है। मिर्च एक नकदी फसल है जिसकी व्यावसायिक खेती करके अधिक लाभ कमाया जा सकता है। मिर्च में विटामिन ए और सी और कुछ खनिज लवण भी बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं। मिर्च का इस्तेमाल अचार एवं मसालों में भी किया जाता है
10: जी।
11: मिर्च पर पाले का असर ज्यादा होता है, इसलिए जहां पाला पड़ता है उन इलाकों में इसकी अगेती फसल लेनी चाहिए। ज्यादा गर्मी होने पर फूलों व फलों का झड़ना शुरू हो जाता है। मिर्च की खेती के लिए 15 से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान उपयुक्त माना जाता है। 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान होने पर इसके फूल व फल गिरने लगते हैं। रात्रि तापमान 16 से 21 डिग्री सेंटीग्रेड फल विकास व परिपक्वता के लिए अत्यधिक उपयुक्त है। मिर्च की खेती यूं तो सभी प्रकार की भूमियों में की जा सकती है, परंतु अच्छे जल निकास वाली एवं कार्बनिक युक्त बलुई लाल दोमट मिट्टी जिसका पीएच मान 6 से 7 हो मिर्च की खेती के लिए उपयुक्त होती है। इस फसल की प्रमुख किस्में जिसको हम उन्नत किस्में कहते हैं वो है पूसा ज्वाला, पंत C1, G3, G5, पूसा सदाबहार, पंत C2, जवाहर 218, अर्का लोहित, अर्का सुफल, अर्का श्वेता, अर्का हरिता आदि। खरीफ की फसल के लिए मई से जून में व गर्मी की फसल के लिए फरवरी से मार्च में पौधशाला में बीजों की बुआई की जाती है। एक हेक्टेयर हेतु पौध तैयार करने के लिए 1 से 1.5 किलोग्राम बीज और संकर किस्मों के लिए 250 ग्राम बीज पर्याप्त होता है। नर्सरी वाली स्थान की गहरी जुताई करके खरपतवार रहित बनाकर 1 मीटर चौड़ी, 3 मीटर लंबी और 10 से 15 सेंटीमीटर जमीन से उठी हुई क्यारियां तैयार करें। बीजों की बुआई से पहले कप्तान या वेबस्टिन की 2 ग्राम प्रति किलोग्राम मात्रा से बीज की दर से उपचारित करें। बीजों की बुआई कतारों में करनी चाहिए और पौधशाला में कीड़ों की रोकथाम हेतु एसिफेट 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी का पौधों पर छिड़काव करें। नर्सरी में विषाणु रोगों से बचाव के लिए मिर्च की पौध को सफेद नायलॉन नेट से ढक कर रखें। नर्सरी में बुआई के 4 से 5 सप्ताह बाद पौध रोपण के लिए तैयार हो जाती है। गर्मी की फसल में पंक्ति से पंक्ति की दूरी 45 सेंटीमीटर व पौध से पौध की दूरी 30 से 45 सेंटीमीटर रखें। खरीफ फसल हेतु पंक्ति से पंक्ति की दूरी 60 सेंटीमीटर व पौध से पौध की दूरी 30 से 45 सेंटीमीटर रखें। रोपाई शाम के समय करें और रोपाई के तुरंत बाद सिंचाई कर दें। पौधों को 40 ग्राम एजोस्पायरलम 2 लीटर पानी के घोल में 15 मिनट डुबोकर रोपाई करें। खेत की अंतिम जुताई से पहले 20 से 25 टन प्रति हेक्टेयर अच्छी तरह सरी हुई गोबर की खाद खेत में डालकर अच्छी तरह मिला दें। इसके अलावा 70 किलोग्राम नत्रजन, 50 किलोग्राम फास्फोरस व 50 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से उर्वरकों का प्रयोग करें। नत्रजन की अधिक मात्रा खेत की तैयारी के समय व शेष बची हुई आधी मात्रा 30 व 45 दिनों के बाद ड्रॉप ड्रेसिंग द्वारा खेत में डालें एवं तुरंत सिंचाई कर दें। गर्मी में 5 से 7 दिनों के अंतर पर और बरसात में जरूरत के हिसाब से सिंचाई करनी चाहिए। मिर्च के फूल और फल लगने के समय भूमि में नमी होना अत्यंत जरूरी है, क्योंकि पानी की कमी से पौधों का विकास रुक जाता है। इसकी वजह से फलों के गिरने की संभावना बढ़ जाती है। खरपतवारों का रोकथाम हेतु समय समय पर निराई गुराई करनी चाहिए। 200 ग्राम ऑक्सीफ्लोरोफेन 600 से 700 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करना चाहिए। अब उपज की बात करें तो बताए गए तरीकों से खेती करेंगे तो हरी मिर्च के लिए तुराई फल लगने से 15 से 20 दिनों बाद कर सकते हैं। पहली तुराई से दूसरी तुराई का अंतर 12 से 15 दिनों तक रखें। हरी मिर्च की पैदावार 150 से 200 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तथा सूखी लाल मिर्च की उपज 15 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है।
10: तो ये सारी बातें तो खेती से जुड़ी हुई, लेकिन अब जो सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमारे किसान भाइयों को ध्यान देने योग्य है, अपनी फसलों को बचाना है बर्बाद होने से, तो वो है रोग और कीटों के प्रबंधन को जानना। तो इसके बारे में मैम बता दें कि कैसे किसान भाइयों को करना चाहिए।
11: जी हाँ, मिर्च फसल में रोग व कीट प्रबंधन का विशेष ध्यान रखना आवश्यक होता है। इसमें लगने वाले प्रमुख कीट हैं सफेद लट कीट की लटों पौधों की जड़ों को खाकर नुकसान पहुंचाती है। इनकी रोकथाम के लिए कार्बोफिरॉन 3G का 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से रोपाई से पहले जमीन में मिलाएं। सफेद मक्खी व थ्रिप्स, इन्हें रोकने के लिए मालाथियॉन 50 EC या इमिडाक्लोरपेट 3 मिलीलीटर प्रति 10 लीटर पानी की दर से छिड़काव करें। 15 से 20 दिनों के बाद दोबारा छिड़काव करना चाहिए। इन रसायनों के साथ नीम का तेल 5 मिलीलीटर प्रति लीटर भी मिश्रित कर सकते हैं। अब मिर्च फसल में लगने वाले प्रमुख रोग की बात करते हैं, तो प्रमुख रोग हैं आद्र गलन, श्याम वर्ण, पर्ण कुंचन व मोज़ेक विषाणु रोग। आद्र गलन रोग का प्रभाव छोटे पौधों पर होता है। इस रोग का प्रभाव जमीन की सतह पर स्थित तने का भाग काला पड़ जाता और कमजोर होकर गिर कर मरने लगते हैं। इस रोग की रोकथाम के लिए बीजों की बुआई से पहले थिरम या कप्तान 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित कर करें। श्याम वर्ण एक ऐसा रोग है जिसमें पत्तियों पर छोटे छोटे काले धब्बे बन जाते हैं और पत्तियां झड़ने लगती हैं। जब इसका असर ज्यादा होता है तो शाखाएं ऊपर से नीचे की तरफ सूखने लगती हैं। पके फलों पर भी बीमारी के लक्षण दिखाई देते हैं। इसकी रोकथाम के लिए मैनकोजेब 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर 2 से 3 बार छिड़काव 15 दिनों के अंतराल पर करें। पर्ण कुंचन व मोज़ेक विषाणु रोग बहुत ही घातक रोग है। पर्ण कुंचन रोग के असर से पत्ते सिकुड़कर छोटे रह जाते हैं और उन पर झुर्रियां पड़ जाती हैं। मोज़ेक विषाणु रोग के कारण पत्तियों पर गहरे व हल्का पीलापन लिए हुए धब्बे बन जाते हैं। रोगों को फैलाने में कीट सहायक होते हैं। इसकी रोकथाम के लिए रोग लगे पौधों को उखाड़कर जला देना चाहिए। रोग को आगे फैलने से रोकने के लिए डायमिथेट 3 EC का 0.1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के दर से छिड़काव करें। किसान भाई, अगर आप बताए गए विधि से मिर्च फसल की खेती करेंगे तो अवश्य ही अधिक मुनाफा कमा पाएंगे।
10: जी, तो इस प्रकार किसान भाइयों, हरी मिर्च की खेती आप कर सकते हैं। सारी बातें आपको आज के वार्ता में बताई गई हैं और आशा करते हैं कि आपको जरूर लाभ मिलेगा आज इस वार्ता को सुनकर। तो अगले दिन एक अलग विषय के साथ हम हाजिर होंगे इसी फ्रिक्वेंसी, याद रखें 90.8 MHz। नमस्कार।
4: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
6: हर घर सूर्य घर।
12: नमस्ते क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
13: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
12: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना है। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
14: सुनो सुनो सुनो सभी, एक जरूरी बात, आया मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण फिर एक बार। अगर आपके घर या पड़ोस में है 5 साल या उससे छोटे बच्चे जिनका कोई भी टीका छूट गया
0: गया हो तो सोचते क्या हो, जल्दी से आशा दीदी से करो बात। बच्चों को स्वास्थ्य केंद्र है लेकर जाना और उनका टीकाकरण है करवाना।
15: सुहाना सफर और ये मौसम हसी,
0: टीको ये मौसम है टीकाकरण करवाने का, तो सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
16: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
17: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
18: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
6: हर घर सूर्य घर।
19: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 ग्रीन FM।
9: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार और आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई में। दोस्तों आप तो जानते ही हैं कि सरकार ने HPV का टीका सभी 14 साल से ऊपर के बच्चियों के लिए मुफ्त कर दिया है। HPV का टीका लगाना शुरू तो हो गया है, लेकिन अभी भी बहुत सारे हमारे श्रोताओं के मन में बहुत सारे सवाल हैं। तो आज हम बात करेंगे HPV टीके की और कोशिश रहेगी कि आपके मन में जो भी सवाल हैं उनके जवाब भी हम दे सके। जब भी कोई पहल होती है खास तौर पर सेहत के मामले में, तो हमारे परिवारजनों के मन में डर रहता है और कई सारे सवाल भी रहते हैं, खासकर जब सोशल मीडिया हमारे पास है और सोशल मीडिया और मोबाइल पर चल रही बहुत सी बातें होती है, बहुत सी अफवाहें होती है, तो उन अफवाहों से लोगों के मन में उलझन और सवाल दोनों ही पैदा होते हैं। इसलिए आज हम कुछ आम सवाल उठाएंगे और आसान भाषा में उनके जवाब देंगे। तो बस आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए, आपको आज HPV टीकाकरण से जुड़े ढेर सारे सवाल मिलने वाले हैं। इसलिए क्योंकि हमने बहुत से सवाल इकट्ठे किए हैं और एक के बाद एक हम उन सवालों को पढ़ेंगे और जवाब भी देंगे। तो पहला सवाल है, HPV टीका किस लिए लगाया जाता है? दोस्तों HPV टीका सर्वाइकल कैंसर यानी बच्चेदानी के मुंह के कैंसर से बचाव में मदद करता है। ये कैंसर महिलाओं में होने वाली गंभीर बीमारियों में से एक है। अगर समय पर बचाव हो जाए तो बीमारी का खतरा काफी कम किया जा सकता है। इसलिए बहुत जरूरी होता है कि महिलाएं HPV टीका जरूर लगाएं। और दूसरा सवाल है कि क्या HPV टीका सुरक्षित है? जी हाँ, बिल्कुल सुरक्षित है। HPV टीका सुरक्षित माना जाता है और ये दुनिया के कई देशों में लगाया जा रहा है। ये कोई नई बात नहीं है। टीका लगने के बाद हाथ में हल्का दर्द, सूजन, हल्का बुखार, सिर दर्द या चक्कर आ सकते हैं और ये सामान्य बातें हैं। आमतौर पर जल्दी ठीक हो जाती है और कोई भी टीका आप लेते हैं तो ऐसी परेशानी थोड़ी बहुत होती है जो कि कुछ दिनों में ठीक भी हो जाती है। अब तीसरा सवाल, क्या इसका कोई बड़ा दुष्प्रभाव होता है? गंभीर दुष्प्रभाव बहुत दुर्लभ है, यानी कि गंभीर दुष्प्रभाव ना के बराबर होते हैं। इसलिए आप अफवाहों पर भरोसा ना करें कि अगर आप HPV टीका अपनी बच्ची को लगवाएंगे तो उन्हें कोई परेशानी हो जाएगी। और अगर आपके मन में फिर भी कोई सवाल बचते हैं, कोई चिंता होती है, तो आप आशा दीदी, ANM, CHO या फिर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में भी आप बात कर सकते हैं। वो आपको और भी अच्छी तरीके से समझाएंगे कि इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है और बहुत रेयर होता है। चौथा सवाल कि ये टीका बच्चियों को ही क्यों लगाया जा रहा है? देखिए, क्योंकि HPV संक्रमण आगे चलकर सर्वाइकल कैंसर का कारण बन सकता है और ये बीमारी महिलाओं में होती है, इसलिए किशोरियों को, बच्चियों को बीमारी आने से पहले ही सुरक्षा देने के लिए टीका लगाया जाता है। कहते हैं ना कि बाद में इलाज से बेहतर है कि आप पहले ही बचाव कर ले, तो ये टीका बचाव के लिए है। पांचवा सवाल जो बहुत सारे लोगों के मन में उठ रहे हैं और बहुत सारी लड़कियां इस सवाल से चिंतित है कि क्या इससे भविष्य में मां बनने पर असर पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा, ये बिल्कुल कोरी अफवाह है। HPV टीका माँ बनने की क्षमता पर कोई असर नहीं डालता। ये कैंसर से बचाव के लिए है। बांझपन या कमजोरी से इसका कोई संबंध नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ आपको कैंसर से बचाता है, सर्वाइकल कैंसर से बचाता है। छठा सवाल ये है कि क्या मोबाइल और सोशल मीडिया पर चल रही बातें सही है? बस यही बात तो आपको हम बताने आए हैं कि हर बात जो मोबाइल और सोशल मीडिया पर चल रही है वो सही नहीं होती। कई बार बिना जांचे परखे डर फैलाया जाता है और कई बार कुछ बातें ऐसी होती है जो किन्हीं तक एक पहुंची और उसने अपने पास वाले को दो बातें पहुंचाई, फिर तीन बातें, चार बातें, इस तरीके से बहुत बड़ी चढ़ी बात हम तक पहुंचती है। इसलिए कोई भी बात आप तक सोशल मीडिया या मोबाइल के जरिए पहुंचे तो उसे बिना जांचे परखे उस पर भरोसा ना करें। स्वास्थ्य से जुड़ी जो भी जानकारी होती है वो हमेशा आपको चाहिए कि प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मी या सरकारी स्वास्थ्य केंद्र से ही ले। आपको इन्हीं जगहों से सबसे भरोसेमंद जानकारी मिल सकती है। अब सातवां सवाल कि टीका कब और कहां लगेगा। जी हां, अगर आपके मन के जो भी सवाल हैं और जो उलझन है वो दूर हो गए हैं तो सबसे जरूरी सवाल कि टीका कब और कहां लगेगा, इसके लिए आप अपनी आशा, ANM या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। वहीं आपको सही तारीख, जगह और पात्र उम्र की जानकारी देंगे। तो साथियों याद रखिए, अफवाह से नहीं सही जानकारी से फैसला लें। HPV टीका बेटियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाने की दिशा में एक बहुत जरूरी कदम है। सेहत सही लाभ कई की ओर से ये संदेश जनहित में जारी है। आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें। फिलहाल मुझे यानी कि आपकी होस्ट और दोस्त उमा को दीजिए इजाजत, लेकिन जाने से पहले खास बात की स्वस्थ रहें, खुश रहें और अफवाहों से बचें। नमस्कार।

0: खसरा कितनी गंभीर बीमारी है। टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MRT का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हो तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
5: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
6: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
5: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
7: PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर। सूर्य घर
8: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टिको, क्यों है इतने जीरो?
9: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
8: लेकिन ऐसा क्यों?
9: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
8: तो इसका हल क्या है?
9: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा, सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
0: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
9: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।

0: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं? हाँ या ना?
1: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे।

0: से दो हस्बैंड जी,
1: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
0: और लाइट बिल के
1: अब 0 रुपए कैसे दूँ।
0: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 22 से 26 जुलाई के दौरान आसमान में घने बादल छाए रहेंगे और जिले में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी चलने और हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 26 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 90% और दोपहर में 70 से 80% रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए, जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दे, पिछले कुछ दिनों में हुई वर्षा का लाभ उठाइए और आगे भी संभावना है कि वर्षा होगी, तो ऐसी स्थिति में धान की रोपाई के लिए व्यवस्था सुनिश्चित कर ले। रोपाई से पहले प्रति हेक्टेयर 25 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस, 30 किलोग्राम पोटाश और 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट का प्रयोग करें। आपको बता दें कि निचली जमीन के चारों ओर मजबूत मेड़ यानी कि बांध बनाकर वर्षा जल का संचयन कर ले, ताकि जरूरत पड़ने पर आप वर्षा के जल का सिंचाई में उपयोग कर सके। जो किसान भाई बहन श्री अन्न की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दे, मोटे अनाजों की खेती के लिए उचास भूमि का चयन करें। मड़वा की वकुला KMR 316, GPU 67 और VL 379 राजेंद्र मड़वा RU 8 और RU 3। और आपको बता दे, कौनी की अनुशंसित किस्में हैं राजेंद्र कौनी 1, आप इन किस्मों की बुआई कर सकते हैं। मक्का की खेती करने वाले किसान भाई बहन ध्यान दे, खरीफ मक्का की बुआई आसमान साफ रहने पर ही करें। खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और ध्यान रखें कि बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नेत्रजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश जरूर डालें। अनुशंसित मक्का की किस्में जैसे सुवान देवकी, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, राजेंद्र संकर मक्का 3, गंगा 11 है। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दे, मिर्च, अगाध गोभी, टमाटर जैसी सब्जियों की नर्सरी तभी तैयार करें जब आसमान साफ हो। और बागवानी करने वाले भाई बहन ध्यान दें, जुलाई अगस्त आम के पौधों के रोपण के लिए सबसे उपयुक्त समय होता है। कलमी पौधों की रोपाई 10x10 मीटर और बीजू पौधों की रोपाई 12x12 मीटर की दूरी पर करें। सघन बागवानी के लिए 5x5 मीटर और अम्रपाली के लिए 2.5x2.5 मीटर की दूरी रखें। फलदार वृक्षों में प्रति वर्ष 1 किलोग्राम नाइट्रोजन, 30 किलोग्राम फास्फोरस, 700 किलोग्राम पोटाश और 80 से 100 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद जरूर डालें। आपको बता दें, इस समय केला के स्वस्थ सकर्स की रोपाई करें। लंबी किस्मों जैसे अल्पान, कंथली, मालभोग, चिनिया, G9 और बॉनी किस्में जैसे ग्रैंड नेन, रोबस्टा, बसराई का चयन करना सबसे फायदेमंद होता है। लंबी किस्मों के लिए 2x2 मीटर और बॉनी किस्मों के लिए 1.5x1.5 मीटर की दूरी रखें। प्रत्येक गड्ढे में 5 किलोग्राम गोबर की खाद, 500 ग्राम अरंडी की खली, 300 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट, 100 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश और 10 ग्राम कार्बोफ्यूरान मिलाना न भूलें। रोपाई से पहले सकर्स को कार्बन डाइजिंग 2 ग्राम प्रति लीटर पानी से उपचारित करें। किसान भाई बहनों, टिश्यू कल्चर पौधे का उपयोग अधिक उत्पादन के लिए लाभकारी होता है। पशुपालक भाई बहन ध्यान दें, पशुओं में PPR, MFD यानी कि खुरपका मुंहपका और HS यानी कि गला घोटू, इन रोगों का खतरा अधिक है, इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण करवाएं, उन्हें साफ और सूखा रखें और बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। रोग के लक्षण अगर दिखाई दे तो तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें और ध्यान रखें कि पशुओं की बिना जरूरत के आवाजाही पर नियंत्रण रखें। गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए जून माह में अगर टीके नहीं लगाए गए हों तो इस महीने में टीके जरूर लगवा दें। पशुओं को संतुलित और पौष्टिक आहार दें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: सुनिए, क्या आपने PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो PM सूर्य घर.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: कृषि विभाग द्वारा जारी पौधा संरक्षण सामयिक सूचना। खरीफ मौसम में ग्रास हॉपर के प्रकोप की संभावना रहती है। ग्रास हॉपर को किसान फुतका के नाम से भी जानते हैं। इसका व्यसक 1 से 7 सेंटीमीटर लंबा होता है। इसकी मादा पूरे मौसम में औसतन 200 अंडे देती है। अनुकूल वातावरण मिलने पर अंडे की संख्या 400 तक हो सकती है। व्यस्क मादा आधे से 2 इंच मिट्टी के अंदर अंडा देती है। अप्रैल मई में शिशु कीट 5 से 6 विकास की अवस्था के बाद 40 से 60 दिनों में व्यस्क बनते हैं। ग्रास हॉपर की संख्या को नियंत्रित रखने के लिए इसके प्राकृतिक शत्रुओं जैसे डिस्टर बिटिल, ग्राउंड बिटिल, चिड़िया, छिपकली, मेढक, मकड़ी इत्यादि का संरक्षण करना चाहिए। ग्रास हॉपर कीट फसल की पत्तियों को 1 या 2 किनारों से खाता है। इसके उग्र आक्रमण की दशा में सिर्फ मध्य शिरा ही बचा रह जाता है। फलस्वरूप पौधे की वानस्पतिक वृद्धि प्रभावित होती है। इसकी संख्या प्रति वर्ग मीटर 3 से 7 होने पर इसके जैविक या रासायनिक नियंत्रण के उपाय करने चाहिए। फुदका कीट का प्रबंधन आप इस प्रकार कर सकते हैं। खेत में जगह जगह पक्षी बैठक लगाना, जैविक कीटनाशी के रूप में यूवेरिया बेसिना 2.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और मेटारीजियम स्पी का 2.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और नीम तेल 1500 PPM का 3 से 5 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से फसल पर छिड़काव करना चाहिए। रासायनिक कीटनाशी के रूप में क्लोरपाइरीफास 20% EC की 2.5 से 3 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोलकर या फिर लैम्डा साही हेलोथ्रीन 5% EC की 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें या फिर डेल्टा मेथ्रीन 2.8% EC की 1 से 1.5 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल कर या फिर फिप्रोनील 5% SC का 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करना चाहिए। छिड़काव कार्य शाम के समय यानी कि दोपहर 4 बजे के बाद करना अच्छा होता है। विशेष सेवा या सुविधा के लिए अपने नजदीक के पौधा संरक्षण केंद्र या कृषि विज्ञान केंद्र अथवा पौधा संरक्षण सहायक निदेशक उद्यान या जिला कृषि कार्यालय से संपर्क करें। क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित BP जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं विमलेश। आप सबका स्वागत है उमंग कार्यक्रम में।
3: और मैं हूं अजीत। नमस्कार, आइए सुनते हैं आज का सुंदर विचार जिसे हमें भेजा है कस्बा बराड़ा जिला अंबाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश, प्रियंका, मन्नत, गुरकीरत और गुरशब्द सिंह राहुल जी ने। लिखते हैं,
2: झाड़ू जब तक एक सूत्र में बंधी होती है तब तक वह कचरा साफ करती है, लेकिन वही झाड़ू जब बिखर जाती है तो खुद कचरा हो जाती है। इसलिए हमेशा संगठित रहें और बिखर कर कचरा न बने।
3: आपका बहुत बहुत धन्यवाद एकता और संगठित रहने का सुंदर विचार भेजने के लिए। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। श्रोताओं, हमें पहला संदेश मिला है कोका भिलाई छत्तीसगढ़ से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी का। लिखते हैं,
2: डॉक्टर कामिल बुल के 24 तारीख को सुने, बेल्जियम में जन्मे कैसे भारत को अपना कर्मभूमि बना लिया, रामचरितमानस पर शोध किया और कामिल बुल के से कामिल बुल के बाबा बन गए। बहुत अच्छा लगा इतनी अच्छी जानकारी और प्रस्तुति के लिए। उमंग टीम को बहुत बहुत बधाई।
3: और अगला संदेश हमें मिला है डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव, तुषार देव, डॉली, बेबी, पूजा, राधिका, प्रभा देवी और मास्टर अल कबीर का।
2: भवानीगढ़ संगरूर पंजाब से परमिंदर सिंह रंधावा, लखनपाल रंधावा और सुरेंद्र कौर रंधावा जी का।
3: और गणेशवाड़ी कोल्हापुर महाराष्ट्र से संभाजी सुतार, चेतन सुतार और सारिका सुतार जी का।
2: पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग टेलर, तनुजा देवांगन और ईशांत देवांगन।
3: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं आप सबका संदेश भेजने के लिए। एक बार फिर से प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए के अंतर्गत आज की कड़ी। श्रोताओं, इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं भारत के अनूठे मेलों की,
2: ऐसे मेलों की जो प्रयास है समुदायों को उनकी संस्कृति से जोड़ने का। इनके बारे में लोगों को अधिक पता नहीं है, लेकिन वे अपने आप में सचमुच अद्भुत हैं, जीवंत हैं और प्रेरणा देने वाले भी। तो कल हमने चर्चा की थी असम राज्य के जॉनबील मेले की, जहां वस्तु विनिमय प्रणाली का आज भी प्रचलन है।
3: आज हम चलेंगे एक और सुंदर और मनोरम उत्तर पूर्वी भारत के पर्वतीय राज्य नागालैंड और जानेंगे एक और मेले के बारे में। इसे हॉर्नबिल मेले के नाम से जाना जाता है। तो विमलेश जी, अब चर्चा को आगे बढ़ाइए।
2: जी अजीत जी, श्रोताओं, हॉर्नबिल महोत्सव या मेला नागालैंड का सबसे प्रसिद्ध सांस्कृतिक मेला है। इसे त्योहारों का त्योहार यानी फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स भी कहा जाता है। अजीत जी, आप जानते हैं कि ये कब मनाया जाता है?
3: जी विमलेश जी, हॉर्नबिल मेला हर साल 1 से 10 दिसंबर तक मनाया जाता है।
2: जी,
3: ये कोहिमा के पास किसामा हेरिटेज विलेज में आयोजित किया जाता है। लेकिन विमलेश जी, एक स्वाभाविक प्रश्न मेरे मन में आता है और वो ये है कि इस उत्सव या मेले का नाम हॉर्नबिल क्यों पड़ा?
2: अजीत जी, बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है आपने।
3: जी,
2: इसका जवाब भी उतना ही सुंदर है। हॉर्नबिल एक पक्षी है जो अपनी सुंदरता के लिए जाना जाता है। ये जबरदस्त उड़ान भर सकता है। इसके पंख इतने शक्तिशाली होते हैं कि जब ये उड़ता है तो उसके पंखों की फू फू जैसी आवाज दूर दूर तक सुनाई देती है।
3: जी विमलेश जी, पूर्वोत्तर भारत में विशेषकर नागालैंड में इस पक्षी को यानी हॉर्नबिल पक्षी को साहस, सम्मान और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है।
2: जी, यही वजह है कि नगा परंपराओं में विशेषकर सर के आभूषणों में हॉर्नबिल पक्षी का प्रतिरूप अवश्य दिखाई देता है। आइए अब जानते हैं कि क्या होता है हॉर्नबिल मेले में।
3: श्रोताओं, इस मेले में रंग बिरंगे पारंपरिक नृत्य देखने को मिलते हैं।
2: जी,
3: जिनमें सबसे लोकप्रिय और आकर्षक है युद्ध नृत्य।
2: जी,
3: युद्ध नृत्य में पुरुष योद्धा पारंपरिक हथियार लेकर नृत्य करते हैं। तेज ड्रम की ताल, वॉर क्राई और तालबद्ध पैरों की गति के साथ ये नृत्य होता है।
2: जी
3: विमलेश जी, एक बहुत विशेष बात तो हम भूल ही गए थे, ये तो बता दें कि इस मेले के दौरान एक बड़ी खास प्रदर्शनी होती है जिसे मोरुंग कहते हैं। ये मोरुंग होता क्या है?
2: अजीत जी, मोरुंग नागालैंड की जनजातियों का युवा आवास हुआ करता था। ये बांस और लकड़ी से बना हुआ बड़ा सामुदायिक भवन होता था।
3: जी, प्रत्येक गांव में कम से कम एक मोरुंग अवश्य होता था। वहाँ जनजातीय इतिहास, युद्ध कौशल, वाद्य संगीत और लकड़ी के हस्त कौशल सिखाए जाते थे।
2: जी, यहाँ हस्तशिल्प, हैंडलूम यानी हस्तकरघा, स्थानीय व्यंजन इत्यादि प्रचुरता से मिलते हैं।
3: श्रोताओं, ये उत्सव नागालैंड की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का जीवंत प्रदर्शन है।
2: जी,
3: यहाँ आकर लोग असली नागा जनजातीय जीवन, आतिथ्य और उनकी परंपराओं की ऊर्जा को महसूस कर सकते हैं। तो श्रोताओं ये थी जानकारी नागालैंड के बेहद खास मेले हॉर्नबिल उत्सव की।
2: जी।
3: कभी नागालैंड जाएं तो इस मेले का आनंद जरूर लें।
2: जी।
3: तो अब प्रस्तुत है आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है,
2: मोरुंग किसे कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
3: मोरुंग किसे कहते हैं? 8800440559 है हमारा IVRS नंबर और audio@ciet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन पतों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं और अपने उत्तर व संदेश हमें भेज सकते हैं। और अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। तो श्रोताओं, हमारा पहला कार्यक्रम है सुंदरिया।
2: कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में एक प्यारी गाय सुंदरिया की कहानी बताई गई है और उसके माध्यम से बच्चों को संदेश दिया गया है कि पशुओं में भी भावनाएं और संवेदनाएं होती हैं।
4: एक समय की बात है, हरियाणा के एक गांव में एक किसान रहता था। नाम था हीरा सिंह। निर्धनता के कारण बड़ी मुश्किल से उसके परिवार का गुजारा चलता था। उसके पास एक गाय थी, नाम था सुंदरिया। उस गाय के कारण हीरा सिंह से गांव वालों को बड़ी ईर्ष्या होती थी। निर्धनता का ये हाल था कि हीरा सिंह सुंदरिया के लिए चारा भी नहीं जुटा पाता था। वो भी गाय को बहुत प्यार करता था। वो चाहता था कि किसी प्रकार गाय को अच्छा चारा मिल सके, लेकिन तंगी पीछा नहीं छोड़ती थी, इसलिए कई बार उसके मन में एक विचार आया।
5: अब तो सुंदरिया को पालना बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। कहां से आएगा उसके लिए चारा? यहां तो परिवार के खाने के लाले पड़े हुए हैं। सोचता हूं उसे किसी धनी किसान को बेच दूं, कम से कम अच्छा चारा तो मिलेगा उसे।
4: लेकिन हीरा सिंह अपने बड़े बेटे जवाहर सिंह से डरता था, क्योंकि उसे सुंदरिया गाय से बहुत लगाव था। जवाहर सिंह सुंदरिया को प्यार से मौसी बुलाता था। समय बीतता गया और आखिर परिवार की दरिद्रता समाप्त करने के लिए हीरा सिंह नौकरी की तलाश में दिल्ली आ गया। वहाँ एक सेठ के यहाँ उसे चौकीदार की नौकरी मिल गई। एक दिन सेठ ने कहा,
6: हीरा सिंह, शहर में आजकल दूध की बड़ी किल्लत हो रही है।
5: जी मालिक, ये बात तो है।
6: पता नहीं जो दूध तुम दुकानों से लाते हो वो ठीक भी है या नहीं, बहुत मिलावट चल रही है। तुम तो हरियाणा के हो, सुना है वहाँ की गायें बड़ी अच्छी और दुधारू होती हैं। एक काम करो, तुम हमारे लिए किसी अच्छी गाय का प्रबंध कर दो।
5: जी मालिक, कोशिश करता हूँ। वैसे एक गाय है मेरी निगाह में।
6: अच्छा,
5: ऐसी कि साक्षात कामधेनु। दूध भी 15 सेर से ज्यादा ही उतरता है और उसके 200 रुपए तक लग चुके हैं।
6: भाई, इतनी अच्छी गाय है तो 10 रुपए अधिक हम दे देंगे। ये लो 100 रुपए, बाकी तुम्हारे आने पर मिल जाएंगे।
5: जी मालिक।
4: दरअसल हीरा सिंह के मन में उसकी प्यारी गाय सुंदरिया ही थी। सोचने लगा, यहाँ आएगी तो अच्छा चारा भी मिलेगा और मैं उसकी सेवा भी कर लूंगा। हीरा सिंह उसी दिन गांव चला गया, जैसे तैसे अपने बेटे जवाहर को समझाया और गाय लेकर दिल्ली आ गया। सेठ जी ने गाय को देखा तो बड़े प्रसन्न हुए। ऐसी स्वस्थ सुंदर गाय उन्होंने पहले न देखी थी। दूसरे दिन सेठ जी ने पास के एक ग्वाले को बुलाया और गाय उसके सुपुर्द कर दी। हीरा सिंह का दिल भरा जा रहा था। उसने सेठ जी से कहा,
5: सेठ जी, गाय की नौकरी पर मुझे ही लगा दीजिए, चाहे पगार कम ही दीजिए।
6: ये नहीं हो सकता हीरा सिंह। भाई, हमें तुम जैसा दूसरा ईमानदार और मेहनती चौकीदार कहाँ मिलेगा? तुम्हें तो यहीं ड्योढ़ी पर ही रहना होगा।
4: ग्वाले ने सुंदरिया को ले जाने के लिए पूरा जोर लगा दिया, लेकिन गाय टस से मस नहीं हुई। अपनी भोली आंखों से वो हीरा सिंह को ही देख रही थी, मानो कह रही थी, तुम्हें छोड़कर मैं कहाँ जाऊँ? हीरा सिंह ने गाय को थपथपाया, पुचकारा और बोल उठा,
5: मेरी प्यारी सुंदरिया, अब चली जाओ ना, मैं यही तो हूँ तुम्हारे पास। तुम चिंता ना करो, अरे मैं तुम्हें देखने आता रहूंगा मेरी प्यारी सुंदरिया।
4: अनमने मन से सुंदरिया चल दी। लेकिन अगले ही दिन कुछ विचित्र हुआ। सेठ जी ने हीरा सिंह को बुलाया।
6: हीरा सिंह, तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? आज गाय का 5 सेर दूध भी नहीं उतरा। तुम तो कहते थे कि 15 सेर से भी ज्यादा दूध मिलेगा।
5: सेठ जी, कल ही तो मैंने पूरा 15 सेर दूध दुहकर आपको दिया था, भला मैं झूठ क्यों बोलने लगा?
6: ये बात तो है, लगता है कुछ गड़बड़ है। चलो कल फिर देखते हैं।
5: जी सेठ जी।
4: लेकिन दूसरे दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ। सेठ जी को गुस्सा आ गया, बोले,
6: हीरा सिंह, तुमने सचमुच मुझे धोखा दिया है। गाय को ले जाओ और मेरे पैसे वापस करो।
5: लेकिन मालिक, पैसे तो मैं गांव भेज चुका हूँ और उसमें से काफी मकान की मरम्मत में खर्च हो गए, अब पैसे कहाँ से लौटाऊं?
6: तो ठीक है, पैसा मैं तुम्हारी पगार से काट लूंगा।
4: अब रोज रोज यही शिकायत आने लगी। कभी गाय दूध बहुत कम देती, कभी चारे को मुंह तक नहीं लगाती। हाँ, एक बात जरूर थी, जब हीरा सिंह उसे देखने जाता तो बहुत प्रसन्न हो जाती और चारा भी खा लेती। अपनी बड़ी बड़ी आंखों से हीरा सिंह को निहारती रहती, मानो कह रही हो, मुझे वहाँ क्यों भेज दिया। एक रात की बात है, हीरा सिंह अपने कमरे में सो रहा था कि तभी
5: सुंदरिया, तुम मेरी प्यारी सुंदरिया।
4: वो अपराधी भाव से उसे देख रही थी, मानो कह रही हो, क्षमा करना, मेरा वहां मन नहीं लगा, इसलिए रस्सी तोड़ कर आई हूँ, मुझे तो तुम्हारे संग ही रहना है। उस मूक गाय की आंखों में वेदना थी। हीरा सिंह भाव विभोर हो उठा। वो सुंदरिया के गले से लिपट कर देर तक सिसकता रहा।
5: तू कहीं नहीं जाएगी, हम कहाँ चलेंगे? मैं अपराधी हूं कि मैंने तुम्हें बेच दिया, लेकिन सुंदरिया, वो तो तुम्हारे भले के लिए ही तो था। लेकिन अब हम साथ रहेंगे। हाँ, अब मैं तुम्हें कभी अपने से अलग नहीं करूंगा। मैं सुबह ही सेठ जी से बात करूंगा।
6: आओ हीरा सिंह, कुछ बात बनी? गाय कैसी?
5: सेठ जी, मैं गाय को आज ही गांव ले जाऊंगा।
6: लेकिन उसके लिए जो पैसे तुमने लिए हैं, उनका क्या होगा?
5: सेठ जी, मैं उसे चुकाने के लिए मुफ्त में आपकी चाकरी करने के लिए तैयार हूँ। रुपए जब चुकता हो जाएं, तो मुझे बता दीजिएगा, फिर मैं भी छुट्टी कर लूंगा। सुंदरिया का दुख मुझसे नहीं देखा जाता सेठ जी।
4: इतना कहकर उसने गाय की डोर थाम ली और कहा,
5: सेठ जी, गाय को गांव छोड़कर मैं आपकी सेवा में फिर आ जाऊंगा और रुपए वसूल होने तक मैं आपके यहाँ काम करूंगा। नमस्ते।
4: हीरा सिंह ने गाय को फुचकारा, थपथपाया और चलने लगा। सेठ जी का मन भी भर आया था, कहने लगे,
6: हीरा सिंह, इस प्यारी गैया के प्रति तुम्हारा प्रेम देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूं, अरे तुमसे यहाँ मुफ्त में काम करवा कर क्या मुझे पाप नहीं लगेगा? मान लो कि मेरे रुपए भी वसूल हो गए। जाओ हीरा सिंह, जाओ।
5: जी सेठ जी।
6: खुशी से जाओ हीरा सिंह, और हाँ, सुंदरिया का खूब ख्याल रखना, और जब कभी भी समय मिले हमसे मिलने जरूर आना।
5: जी, जी, जी। धन्यवाद सेठ जी।
3: अभी आपने सुना कार्यक्रम सुंदरिया। आशा है कि आपको जरूर ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम, शीर्षक है मेरा प्यारा दोस्त।
7: नमस्कार श्रोताओ, प्रेरक कहानियों की श्रृंखला में आपका स्वागत है।
8: ये कहानी है पूर्वोत्तर भारत के एक राज्य मेघालय की। लेकिन कहानी सुनने से पहले आइए लेते हैं मेघालय राज्य की थोड़ी जानकारी। मेघालय शब्द दो शब्दों के मेल या संधि से बना है, मेघ और आलय।
7: मेघ यानी बादल और आलय यानी घर, तो मेघालय का अर्थ हुआ बादलों का घर। साथियों, प्राकृतिक सुंदरता में मेघालय का कोई सानी नहीं है।
8: जी हाँ साथियों, यहाँ जब तब अनायास ही उमड़ते बादल, ऊंचे ऊंचे पर्वत, कल कल करती नदियाँ और हरे भरे जंगल पर्यटकों का मन मोह लेते हैं। गारो, खासी और जयंतिया यहाँ की मुख्य जनजातियाँ हैं।
7: मेघालय की राजधानी है शिलोंग। ये कहानी शिलोंग की है।
8: यूजीन लगभग 15 वर्ष का एक किशोर है। आज शिलोंग शहर के पुराने बाजार में यूजीन चला जा रहा था। उसकी आंखें लगातार दुकानों के साइन बोर्ड्स पर ही टिक रही थी। ऐसा लग रहा था मानो वो कोई खास दुकान खोज रहा हो।
9: यही कहीं तो थी वो दुकान। कहाँ है वो? अब ये तो रही वो फूल वालों की दुकान। उसके बाद हाँ, वो रही।
8: उसे वो दुकान मिल गई थी। साइन बोर्ड पर एक पिल्ले की सुंदर सी तस्वीर थी और उसके नीचे लिखा था पपीज फॉर सेल।
7: यूजीन को कुत्तों से बहुत लगाव था। उसकी बहुत इच्छा थी कि वो भी एक प्यारा सा कुत्ता पाले जो उसका दोस्त बन सके और उसके साथ खेल सके।
8: बात वास्तव में ये थी कि स्कूल में सहपाठी यूजीन के साथ रहने और खेलने से थोड़ा कतराते थे।
7: कुछ सोचकर वो दुकान में दाखिल हुआ।
9: हाँ, यहां से अंदर चलता हूं। अरे वाह, कितनी सुंदर दुकान है और ले प्यारे प्यारे पपीज भी हैं। आजा आजा।
8: उसने कई बार अपने घर में कहा था कि वो एक प्यारा सा पिल्ला पालना चाहता है, लेकिन उसकी सुनी नहीं गई थी। किसी पशु को पालना काफी जिम्मेदारी का काम होता है। एक पिल्ले को पालने के लिए यूजीन के माता पिता तैयार नहीं थे।
7: लेकिन अब यूजीन बड़ा हो गया है, अब वो खुद पिल्ले का ध्यान रख सकता है। इसीलिए आखिरकार वो मान ही गए। और आज
8: यूजीन पिल्ला खरीद सकता है अपनी पसंद का। यूजीन सीधा काउंटर पर दुकानदार के पास चला गया और बोला,
9: नमस्ते मैडम।
10: नमस्ते बेटा।
9: मेरा नाम यूजीन है, मैं एक पिल्ला खरीदना चाहता हूँ। क्या आप मुझे उसका दाम बताएंगी?
10: देखो बेटा यूजीन, हमारे पास तो ढेर सारे पपीज हैं, सभी नस्ल के।
9: ओह।
10: लेकिन बेटा ये बताओ, क्या तुम सच में खरीदना चाहते हो?
9: जी बिल्कुल, पर आप ऐसा क्यों पूछ रही हैं?
10: बेटा बात ये है कि तुम्हारे साथ कोई बड़ा तो है नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम बस देखो और चले जाओ?
9: नहीं,
10: क्योंकि यहाँ बहुत से ऐसे बच्चे आते हैं, देखने की जिद करते हैं, सारे बिल्ले देखते हैं और अंत में लिए बिना ही चले जाते हैं। इससे हमारा समय बर्बाद होता है ना, तो।
9: नहीं ऐसा नहीं है, मैं उन बच्चों की तरह नहीं हूँ, मैं सच में खरीदूंगा, आप उनके दाम बताइए तो सही।
10: यूजीन देखो बेटा, सबसे कम दाम के हमारे पास लगभग 2,000 रुपए के पिल्ले हैं, फिर 3,000 और ऐसे ही, मेरा मतलब नस्ल के हिसाब से और भी महंगे हैं।
9: अच्छा,
10: क्या तुम इतना पैसा दे पाओगे?
9: ओहो, अभी इस समय तो मेरे पास 1,500 रुपए ही हैं। अब ये तो मैं आपको अभी तुरंत दे सकता हूँ, बाकी पैसे आपको कल दे सकता हूँ। मैं पापा से बात कर चुका हूँ, वो मुझे मेरी पसंद का पिल्ला लेने के लिए कह रहे थे, आप मुझसे कल तक ले लीजिए।
10: बेटा ऐसे तो बात नहीं बनेगी ना, समझो मेरी बात। वो क्या है कि अगर अभी तुम्हें पपी चाहिए तो तुम्हें पूरा पैसा भी अभी ही चुकाना होगा, समझे ना?
9: ठीक है मैडम, पर आप मुझे पपी दिखाइए तो सही, मैं आपको इसका मूल्य चुका दूंगा आज ही शाम तक। अब आया हूं तो पसंद करके ही जाऊंगा, अभी 1,500 दूंगा और जब बाकी पैसे लाऊंगा तब मैं आपसे पिल्ला ले लूंगा।
10: ठीक है। शेल्बिलिन, शेल्बिलिन, अरे कहाँ हो भाई?
11: हाँ जी बताइए।
10: देखो सारे पपीज ले आओ, ग्राहक कब से खड़े हैं, ध्यान रखा करो।
11: हाँ हाँ अभी लाते हैं, बस एक मिनट।
7: थोड़ी ही देर में सामने एक छोटा सा दरवाजा खुला और 5-6 प्यारे प्यारे पिल्ले कूं कूं करते हुए सामने आए। वो ऐसे लग रहे थे मानो ऊन के गोले हों। सब के सब बहुत ही प्यारे लग रहे थे।
8: यूजीन ने देखा कि उनमें एक पिल्ला था जो उछल कूद नहीं मचा रहा था, उसके सामने के दोनों पांव तो काम कर रहे थे लेकिन पीछे के दोनों पांव घिसट रहे थे। वो धीरे धीरे घिसटता हुआ सबसे पीछे पीछे आ रहा था।
10: अरे शेल्बिलिन, तुमसे कितनी बार कहा है इसे मत लाया करो, तुम्हें ये छोटी सी बात समझ नहीं आती क्या? तुम फिर से इस पिल्ले को ले आए, हटाओ इसे।
11: ये तो बहुत शैतान है, पीछे पीछे आ ही जाता है, अभी ले जाता हूँ इसे, चलो शाबाश वापिस चलो।
9: एक मिनट, अब इसे क्या हुआ, ये ऐसे क्यों चल रहा है? आजा आजा इधर आ।
10: ये जन्म से ऐसा ही पैदा हुआ है, सही होता तो इसकी बहुत कीमत होती, अब तो बोझ ही है हमारे लिए।
9: मैं इसे खरीदना चाहता हूँ, कितनी कीमत होगी इसकी?
10: हैं? अब अच्छा समझ गई बेटा, समझ गई, मुझसे मजाक कर रहे हो ना? अरे ये देखो, ये वाला कितना सुंदर है, महंगा तो है लेकिन दूर दूर से लोग आते हैं इस वाले पिल्ले को खरीदने के लिए।
9: नहीं ये नहीं चाहिए मुझे, वो वाला कितने का है?
10: अरे बेटा कैसी बातें करते हो, ये बेकार है। अरे बिन पैर का पिल्ला, बहुत से लोग आते हैं इस दुकान में, हम तो इसे छुपाई देते हैं।
9: क्या?
10: वैसे भी ये भला किस काम का, कौन खरीदेगा इसे?
9: मैडम मैं खरीदूंगा इसे, मैं ऐसे ही खरीदूंगा।
10: मगर क्यों? तुम्हें पता है ये तुम्हारे साथ खेल नहीं पाएगा, तुम आखिर इसे क्यों खरीदना चाहते हो?
9: मुझे यही चाहिए।
10: देखो बेटा मुझे अच्छी तरह पता है कि तुम अभी जोश जोश में ऐसा कह रहे हो। शायद इसकी हालत पर तुम्हें दया आ रही होगी, है ना?
9: नहीं।
10: लेकिन सोचो, कुछ ही दिनों में अगर ये बीमार हो गया तो तुम इसे सड़कों पर या कहीं और छोड़ दोगे। और देखो, अगर ऐसा हुआ तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा।
9: जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा इसके साथ। मैं इसके साथ कुछ नहीं होने दूंगा। ये अपने इन्हीं कमजोर पैरों पर चलेगा। चलेगा ना मेरे साथ, बनेगा ना मेरा दोस्त। अल्ले।
10: अच्छा ठीक है, अगर ऐसी ही बात है तो फिर इसे यूं ही ले जाओ।
9: यूं ही?
10: हाँ, अब इसकी भला क्या कीमत।
9: क्या मतलब? अगर इसकी टांगे खराब हैं तो क्या इसकी कोई कीमत नहीं है?
10: अच्छा, समझी। स्वाभिमानी हो, मुफ्त में कुछ नहीं लोगे। अच्छी बात है, तो ऐसा करो, इसके तुम बस 50 रुपए दे दो। खुश?
9: 50 रुपए क्यों? ये तो इसका अपमान हुआ ना। इस नस्ल के दूसरे पिल्लों की जितनी कीमत है वो ही इसकी भी है। मैं आपको इसके पूरे पैसे दूंगा।
10: पर बेटा ये तो
9: बताइए ना, इसकी नस्ल की कितनी कीमत है?
10: बहुत महंगी है, अब 2000 रुपए। मेरा मतलब है कि
9: तो यही इसकी कीमत भी है। अब ये रहे 1500 रुपए। और अब ये मेरा हुआ, मेरा दोस्त है ना मेरा दोस्त, तू यूजीन का दोस्त। तुम्हें शाम तक ले जाऊंगा दोस्त।
10: देखो बेटा, मैं तुम्हारी भावनाओं और जानवरों के लिए तुम्हारे इस प्यार का बहुत सम्मान करती हूँ, लेकिन बेटा क्या मैं जान सकती हूँ कि आखिर तुमने इस पपी में ऐसा क्या देखा कि तुमने इसको ही चुना, वो भी इतनी कीमत देकर? आखिर क्यों बेटा?
9: आप पूछते हैं क्यों? ये देखिए मैडम।
7: यूजीन नीचे झुका और उसने धीरे धीरे अपनी पैंट ऊपर उठाई। दुकानदार ने देखा यूजीन का बायां पांव घुटने से कटा हुआ था, नीचे का आधा पैर कृत्रिम था, वहां धातु का पांव लगा हुआ था जिसके सहारे वो थोड़ा मुश्किल से लेकिन बिना सहारे के चल सकता था।
10: अरे बेटा, ये तुम्हारा?
9: जी मैडम, आधा पैर नहीं है मेरा। अब बताएं मेरी क्या कीमत है आप जैसे लोगों के बीच? मैं भी इस पपी की तरह कूद नहीं सकता, दौड़ नहीं सकता, तो हो गया ना मैं भी बेकार बोझ।
10: अरे नहीं बेटा, कैसी बातें करते हो, वो तो मैं
9: भी मौका मिलते ही सबसे खुलना मिलना चाहता हूँ, लेकिन शायद मेरी ये कटी टांग ने मुझे सबके बराबर नहीं होने दिया। और 5 साल की उम्र से जानता हूँ मेरे साथ कोई नहीं खेलता, ये सब मैं जानता हूँ, ये सब मुझे पता है
10: बेटा।
9: इसलिए मुझे लगता है कि ये पपी मुझे मेरी कटी टांग से नहीं पहचानेगा, मुझे मेरी दोस्ती और मेरे प्यार से पहचानेगा। मैं नहीं चाहता ये अभी से मेरी तरह आजादी को, प्यार को तरसे। आज से, अभी से ये मेरा हुआ। आजा मेरा दोस्त, आजा।
10: यूजीन बेटा, इस पपी को तुमसे बेहतर भला कौन समझेगा, और शायद ये किसी और के साथ उतना प्यार भी ना पा सके जो इसका अधिकार है। इसे तुम्हें सौंपकर मैं भी निश्चिंत रहूंगी। ये लो, ये अब तुम्हारा हुआ। लो।
9: आजा।
3: श्रोताओं, श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम मेरा प्यारा दोस्त, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अजीत को
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
12: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
13: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था, उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
14: हर घर सूर्य घर।
15: नमस्ते क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
16: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने, हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
15: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना है। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
17: सुनो सुनो सुनो सभी, एक जरूरी बात, आया मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण फिर एक बार। अगर आपके घर या पड़ोस में है 5 साल या उससे छोटे बच्चे जिनका कोई भी टीका छूट गया हो, तो सोचते क्या हो, जल्दी से आशा दीदी से करो बात। बच्चों को स्वास्थ्य केंद्र है लेकर जाना और उनका टीकाकरण है।

0: टीको, ये मौसम है टीकाकरण करवाने का, तो सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
2: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और साथ साथ 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in।
3: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
4: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
3: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
4: आपकी सेहत की बातें,
3: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
4: युवाओं के रोजगार करियर की बातें,
3: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
4: वो कहाँ पर?
3: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
4: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
3: उन्नत कृषि। किसान भाइयों, आप सभी को RJ अनु का प्यार भरा नमस्कार। आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन, बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से, और लेकर आए हैं हम आपके लिए, जी हां, सिर्फ आपके लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम, जो आपको देता है बहुत सारी उन्नत बातों की जानकारी। वैसे हर विषय में जो है हम कुछ खास बातें लेकर आते हैं। अभी फ़िलहाल रवि फसलों की बात, हम इस फसलों पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं, और जब रवि फसलों की बात होती है तो दलहनी फसलों को हम छोड़ नहीं सकते। जी हां, दलहनी फसलों की आज बात होगी, और ख़ास तौर पर आपकी आय से जुड़ी बात होगी। जी हाँ, आज आपको बता दें कि हमारा विषय है किसान की आय को दुगना करने के लिए रवि दलहन फसल की खेती में आधुनिक तकनीक का उपयोग। वैसे दोस्तों, हम बात करें किसान भाइयों की, तो किसान भाई हमेशा अपने मेहनत लगाते हैं इन दलहनी फसलों को उपजाने में, लेकिन जब आधुनिक तकनीक को उनसे जोड़ दिया जाए, उनकी मेहनत के साथ जोड़ दिया जाए, तो उनकी आय और भी ज़्यादा हो सकती है, दोगुना हो सकती है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर आपको बता दें कि इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर अनिल कुमार, और ये हैं बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सबौर से। और सबसे पहले डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इस कार्यक्रम में।
5: धन्यवाद।
3: और सबसे पहले तो जहाँ तक हमारा विषय है, तो हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे, वैसे तो पौष्टिकता की बात करें तो दाल जो है वो बहुत ज़रूरी है, हमारे खाने में इसे ज़रूर शामिल करना चाहिए, चाहे वो बच्चे हो, बूढ़े हो, जवान हो। अब मुझे लगता है कि दाल के बिना हमारा जो खाना है, हमारा जो आहार है, वो अधूरा रहता है। तो सबसे पहले इसके महत्व को हम जानना चाहेंगे, भारत में दालों का क्या महत्व है।
5: किसान बंधुओं नमस्कार। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत में दालें जो है मुख्य रूप से प्रोटीन स्रोत के रूप में भोजन का एक अभिन्न अंग है। इसके अलावा टिकाऊ कृषि हेतु भी मृदा की उर्वरा शक्ति को वृद्धि करने एवं आहार तथा चारे के विभिन्न रूपों में उपयोग आदि इन फसलों के लाभ हैं। आधुनिक तकनीकों को अपनाकर दलहन की वर्तमान उत्पादकता को दुगुना किया जा सकता है।
3: तो डॉक्टर साहब, ये तो महत्व जाना हमने कि कैसे, मतलब क्या इसके पौष्टिकता के महत्व हमने जाना कि प्रोटीन सबसे ज़्यादा इसमें पाया जाता है, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अगर हमारे जो गरीब हैं वो भी अगर दाल को अपने डाइट में शामिल करें, तो उन्हें जो अतिरिक्त उनके शरीर को पोषण मिलना चाहिए वो मिल जाता है। तो आय को दुगना करने के लिए कौन कौन सी तकनीक हमारे किसान भाइयों की मेहनत के साथ जोड़ा जा सकता है?
5: यदि हम उन्नत तकनीकियों की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले उन्नतशील प्रजातियों के चयन की बात आती है, तत्पश्चात फसल उत्पादन तकनीक की, ये बहुत महत्वपूर्ण भाग है, जिसमें सिंचाई, उर्वरक प्रबंधन, कृषि रसायनों का उपयोग, दलहन आधारित प्रमुख फसल चक्र, मृदा का चुनाव एवं खेत की तैयारी, बीजोपचार, उचित बीज दर एवं बुवाई का समय, पौधों की उचित संख्या, खरपतवार प्रबंधन, जल प्रबंधन, संसाधन संरक्षण, उन्नत कृषि यंत्रों का प्रयोग एवं फसल सुरक्षा प्रौद्योगिकी इत्यादि है।
3: अच्छा डॉक्टर साहब, अगर हम अपने क्षेत्र की बात करें, बिहार की बात करें, तो मुख्य रूप से बिहार में रवि दलहन फसलों में कौन कौन से प्रमुख दालों की हम बात कर सकते हैं?
5: देखिए, मुख्य रूप से जो जिनका क्षेत्रवार हम बात करते हैं, तो मुख्य रूप से हमारे बिहार में मसूर की जो खेती सबसे अधिक
3: जी
5: स्तर पे की जाती है, तत्पश्चात चने की खेती की जाती है। रबी फसलों की बात करें तो इसमें जो है कि विभिन्न दलहनी फसलों के जो व्यापक क्षेत्रों के अनुकूल उच्च उत्पादन क्षमता वाली प्रजातियों का विकास हुआ है, जिससे उत्पादकता में जो उतार चढ़ाव में कमी जो होती थी उसमें कमी आई है।
3: अच्छा।
5: तथा उत्पादकता में स्थायित्व तो आया है। अतः विभिन्न कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्रों में, जिसे हम एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स बोलते हैं, या गैर परंपरागत क्षेत्रों के लिए उन्नतशील प्रजातियां विकसित की जा चुकी हैं, अतः इनके प्रयोग से उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। जहां तक आपने बात की कौन कौन सी
3: तकनीक
5: दलहनी फसलें जो मुख्य रूप से हैं, उसमें चना और मसूर के बारे में बताया। मसूर में भी दो तरह की किस्में होती हैं, छोटे दाने वाली और बड़े दाने वाली। इसी प्रकार से चने में दो तरह की किस्में हैं, देसी चना और काबली चना।
3: अच्छा।
5: मसूर में यदि छोटे दाने वाले किस्मों की बात करें तो इसमें अरुण, हल 57, NDL1, KLS 218, PL 406, PL 639, PL 6, PL 7 और शिवालिक इत्यादि हैं। जबकि बड़े दानों में IPL 406, DPL 15, DPL 62, DPL 81 और K75, जिसे मल्लिका के नाम से भी जाना जाता है, का उपयोग हम कर सकते हैं। जबकि देसी चने में GCP 105, DCP 92-3, PUSA 256, JG 14, PUSA 362, PG 186 एंड PUSA 372 इत्यादि प्रमुख हैं। काबुली चने के बारे में यदि हम कहें तो इसमें उन्नत किस्मों में सुभरा, पूसा चमत्कार और GNG 1969 इत्यादि प्रमुख हैं।
3: अच्छा। और जहाँ तक तकनीक की बात हो रही थी डॉक्टर साहब, तो फसल उत्पादन तकनीक के बारे में भी हम जानना चाहेंगे कुछ।
5: जी, इन सभी तकनीकों के बारे में हम विस्तार से आपको बताते हैं, जिसमें हमने आपको उन्नतशील प्रजातियों के चयन के बारे में आप बताया। अब हम बात करेंगे फसल उत्पादन तकनीक के बारे में। इसमें महत्व है कि सिंचाई, उर्वरक तथा कृषि रसायनों के प्रयोग के बारे में यदि हमारे कृषक बंधु जागरूक हुएं तो दलहन की उत्पादकता को बढ़ा सकते हैं। सामयिक बुवाई के साथ साथ पर्याप्त पौधों की संख्या, राइजोबियम कल्चर तथा कवकनाशियों से बीजोपचार, खरपतवार प्रबंधन तथा संसाधन संरक्षण तकनीक जैसे बिना लागत के अथवा न्यूनतम निवेश वाले आदान भी उत्पादकता की वृद्धि करते हैं। इसी प्रकार से यदि हम दलहन आधारित प्रमुख फसल चक्र को अपनाएं, जैसा कि उत्तर पूर्वी मैदानों एवं उत्तर पूर्वी मैदानी क्षेत्रों में रबी ऋतु हेतु यदि आप चना ले रहे हैं या मसूर ले रहे हैं, इसके साथ आप सरसों, चाहे तो सूरजमुखी या अलसी प्रमुख रूप से इंटर क्रॉप के रूप में ले सकते हैं।
3: अच्छा।
5: और इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण है मृदा एवं खेत की तैयारी। तो प्रमुख ध्यान देने योग्य बात यह है कि उचित जल निकास वाले खेत जिनमें घुलनशील लवणों की मात्रा अधिक ना हो तथा पीएच मान 6.5 से 8.5 के बीच हो एवं बलुई दोमट से चिकनी दोमट मिट्टी दलहनी फसलों के आदर्श होती हैं। दलहनी फसलों को सामान्यतः बहुत अच्छे खेत की आवश्यकता नहीं होती है। एक गहरी जुताई के बाद क्रॉस हैरोइंग तथा पाटा लगाने से बुआई हेतु खेत तैयार हो जाता है। मसूर जैसी दलहनी फसलों को यूटेरा पद्धति से बुआई करने हेतु किसी भी प्रकार की कृषण क्रिया की आवश्यकता नहीं होती है।
3: अच्छा डॉक्टर साहब, हमने ये भी सुना है कि बीजों को पहले बीजोपचार करना जब बहुत ज़रूरी होता है, तो किन चीज़ों से बीजोपचार करें, कैसे करें, उसके बारे में बताएं।
5: जी, बुआई से पूर्व बीजों का उपचार करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि बुआई से पूर्व मृदा जनित रोगों से बचाव हेतु बीजों को कवकनाशी जैसे कैप्टॉन या थीरम 2-3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से तथा नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए एवं फास्फोरस की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए राइजोबियम एवं फास्फेट घुलनशील जीवाणु जिसे PSB कहते हैं 15-20 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करना चाहिए।
3: अच्छा, तो डॉक्टर साहब अभी देखा जाए हमारे बिहार क्षेत्र में रवि दलहनी फसलों की हम बात करते हैं, तो चना और मसूर जो है एक प्रमुख दलहनी फसल है हमारे बिहार क्षेत्र की, तो इसकी बीज दर क्या होती है ये जानना चाहेंगे हम, और बुआई का उचित समय क्या है इसका।
5: जी, बुआई हेतु बीज शुद्ध, रोग तथा भौतिक क्षति मुक्त तथा 90-95% अंकुरण क्षमता वाला होना चाहिए। चने की बात करेंगे यदि हम, तो इसमें छोटी दाने वाली प्रजातियाँ जिनके 100 दाने का वजन 12-15 ग्राम होता है की बीज दर 50-60 kg प्रति हेक्टेयर होती है, तथा मध्यम एवं बड़े दाने वाली प्रजातियाँ जिनके बीजों का 100 दाने का वजन 25 ग्राम तक होता है कि 80-85 kg प्रति हेक्टेयर उचित रहती है। बुआई का उचित समय उत्तर पूर्वी भारत के मैदानी क्षेत्रों में बरानी दशाओं में अक्टूबर का दूसरा पखवाड़ा तथा सिंचित दशाओं में नवम्बर का प्रथम पखवाड़ा है। मसूर की बात करते हैं तो छोटे दाने वाली प्रजातियां हेतु बीज की दर 40 से 45 केजी पर हेक्टेयर तथा बड़े दाने वाली प्रजातियां हेतु 55 से 60 केजी प्रति हेक्टेयर उचित होती है। उत्तर पूर्वी मैदानों में यह मध्य क्षेत्र में भी नवंबर का दूसरा पखवाड़ा बुआई का उचित समय है। यदि नमी की कमी है तो उस अवस्था में मध्य अक्टूबर बुआई का उचित समय होता है। बुआई में देरी की अवस्था में अथवा धान से खाली हुए क्षेत्रों में उटेरा पद्धति से बुआई हेतु बीज दर 15 से 20% बढ़ा देनी चाहिए।
3: अच्छा, इन फसलों की सस्य क्रियाओं की भी बात करते हैं हम, तो उनके बारे में बताएं हमें।
5: जी, सस्य क्रियाओं से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि चने में और मसूर में पौधों की प्रॉपर संख्या का होना आवश्यक है। अतः चने में 33 से 40 पौधे प्रति मीटर स्क्वायर तथा मसूर में 80 पौधे प्रति मीटर स्क्वायर उपयुक्त माने जाते हैं। सस्य क्रियाओं में सबसे पहले बात करते हैं हम उर्वरक प्रबंधन की। तो सामान्य दशाओं में जो नाइट्रोजन है आपका 15 से 20 किलोग्राम, फास्फोरस 40 किलोग्राम तथा पोटेशियम 20 किलोग्राम एवं गंधक 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर का बुआई से पूर्व आधारीय प्रयोग संस्तुत किया जाता है। फली बनते समय अथवा देर से बोई गई फसल में शाखाओं के बनते समय 2% यूरिया या DAP के घोल से छिड़काव करने से समुचित पैदावार मिलती है। मृदा में विशिष्ट सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी होने पर 15 से 20 केजी जिंक सल्फेट प्रति हेक्टेयर तथा 1 से 1.5 केजी अमोनियम मोलिब्डेट का प्रयोग की संस्तुति की जाती है। इसके बाद बात आती है खरपतवार प्रबंधन की। उत्पादकता में कमी को रोकने हेतु फसलों को खरपतवार से मुक्त रखना आवश्यक है। इसके लिए गुड़ाई एवं हाथ से निकाई जैसी कर्षण क्रियाओं के साथ खरपतवारनाशी रसायनों का प्रयोग उचित रहता है। खरपतवारों की आरंभिक वृद्धि पर नियंत्रण हेतु बुआई के तुरंत बाद 72 घंटे के अंदर पैंडी मिथिलिन 1 से 1.5 केजी AI प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए। जहां तक जल प्रबंधन की बात है तो हल्की मृदाओं में अधिकांशतः शीतकालीन दलहनी फसलों में शाखाएं निकलते समय तथा फली बनते समय 1 से 2 सिंचाई लाभप्रद पाई गई है। फूल आने की अवस्था में सिंचाई नहीं करनी चाहिए, अन्यथा फूलों के गिरने तथा अतिरिक्त वानस्पतिक वृद्धि होने की समस्या उत्पन्न हो सकती है। दलहनी फसलों में स्प्रिंकलर विधि से सिंचाई करना सर्वोत्तम है। संसाधन संरक्षण में धान मसूर फसल प्रणाली में इनके फसल अवशेष के समावेश से उत्पादकता में वृद्धि होती है। धान कटने के बाद नो टिल सीड ड्रिल की सहायता से चना की बुआई करने और धान की पुआल की पलवार खेत में छोड़ने पर मृदा में नमी का पर्याप्त संरक्षण होता है और चना की उपज में वृद्धि होती है।
3: जी।
5: यदि मक्का और चना फसल प्रणाली अपनाई गई है तो मक्का में 30 केजी फास्फोरस प्लस 5 टन गोबर की खाद तथा चना में 40 केजी फास्फोरस और PSB के प्रयोग से फास्फोरस की उपयोग क्षमता में वृद्धि होती है।
3: तो डॉक्टर साहब, अभी एक और जो दो चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण है वो है उन्नत कृषि यंत्र और फसल सुरक्षा प्रौद्योगिकी, तो इसका महत्व तो क्या है इसमें?
5: देखिए, उन्नत कृषि यंत्रों को अपनाकर आप अपनी आय को दुगना कर सकते हैं। इसमें उन्नत कृषि यंत्रों में जैसे मानव संचालित नो टिल सीड ड्रिल आता है। ये छोटे किसानों के लिए बहुत ही कम खर्च वाला तथा धान से खाली हुए खेतों में संचित नमी में लाइन से बुआई के लिए उपयुक्त होता है।
3: ये उन्नत कृषि यंत्र महंगे होते हैं या फिर मतलब नहीं, हमारे छोटे किसान भाई
5: कम खर्च वाले हैं और छोटे किसानों के लिए बहुत उपयोगी हैं।
3: अच्छा,
5: और इसकी बुआई क्षमता केवल 2 व्यक्तियों की सहायता से 0.05 हेक्टेयर प्रति घंटा की जा सकती है। इसके बाद बात आती है वर्टिकल थ्रेसर की। न्यूनतम समायोजन के साथ विभिन्न दलहनी फसलों के लिए उपयोगी है वर्टिकल थ्रेसर। और चना के लिए इसकी क्षमता जो है 300 केजी प्रति घंटा है।
3: अच्छा।
5: इसके बाद बिनुवर आता है, सक्शन बिनुवर। इसकी ओसाई क्षमता, ये ओसाई के लिए प्रमुख रूप से उपयोग की जाती है। इसकी ओसाई क्षमता जो है 150 केजी प्रति घंटा है। इसके द्वारा धूल मिट्टी और हल्के अपमिश्रण चूषण विधि द्वारा परिचालक की विपरीत दिशा में उड़ा दिए जाते हैं।
3: अच्छा।
5: जहाँ तक फसल सुरक्षा प्रौद्योगिकी की बात करें, क्योंकि दलहनी फसलों में जैविक और अजैविक दोनों तरह के कारक होते हैं जिसकी वजह से फसल को नुकसान होता है, तो उत्पादकता बढ़ाने के लिए फसलों का जैविक तथा अजैविक कारकों से बचाव अत्यंत आवश्यक है। समेकित रोग एवं कीट प्रबंधन, जिसमें रोगरोधी प्रजातियों के स्वस्थ बीजों का प्रयोग, कषण क्रियाओं में बदलाव, कवकनाशी तथा जीवनाशी तत्वों का प्रयोग सम्मिलित है, उत्पादकता को स्थिर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। चने की बात करें तो बुआई से पहले क्या करें, बुआई के समय क्या करें और खड़ी फसल में क्या करें, इसके बारे में आपको बताते हैं। बुआई के पूर्व रोगरोधी प्रजातियों का चयन करें, सूत्रकृमि जिसे हम नेमेटोड्स बोलते हैं, ग्रसित खेतों में गर्मी में गहरी जुताई तथा निबोली के चूर्ण का 50 केजी प्रति हेक्टर की दर से प्रयोग करें। बुआई के समय उचित समय से बुआई करना अत्यंत आवश्यक है। कार्बेंडाजिम प्लस थीरम, 1 ग्राम कार्बेंडाजिम प्लस 2 ग्राम थीरम प्रति किलोग्राम सीड अथवा ट्राइकोडर्मा 4 ग्राम और 1 ग्राम कार्बोक्सिन प्रति किलोग्राम सीड से बीज उपचार करें। नेमेटोड से ग्रसित मृदा में कार्बोसल्फान 1% से बीजों का उपचार करें। खड़ी फसल में फली भेदक चना में बहुत लगते हैं, तो फली भेदक कीट से होने वाली क्षति को कम करने के लिए पहली बात की 4 से 5 यौन आकर्षण जाल प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। नंबर 2, चिड़ियों को बैठने के लिए टी आकार के अड्डों का प्रावधान करें, इसमें 35 से 40 टी आकार के अड्डे प्रति हेक्टेयर लगाए जा सकते हैं। यदि फली भेदक का प्रकोप आर्थिक क्षति स्तर से अभिप्राय यह है कि 1 से 2 लार्वा प्रति मीटर पक्ति में पहुंच जाए तो कीटनाशी का छिड़काव करें। इसमें सबसे पहले निबोली के 5% शत का प्रथम छिड़काव करें। द्वितीय छिड़काव NPB न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रोसिस विषाणु का 250 लार्वा समतुल्य प्रति हेक्टेयर की दर से करें और अंत में आवश्यकता होने पर इंडेक्सोकार्ब 1 ml प्रति लीटर पानी का तृतीय छिड़काव करें। मसूर में बुआई के पूर्व क्या करें, बुआई के समय क्या करें और खड़ी फसल में क्या करें, इसके बारे में भी हम आपको जानकारी देते हैं। बुआई से पूर्व मृदा जनित रोगों तथा सूत्रकृमि से होने वाली क्षति से बचाव के लिए गर्मी में गहरी जुताई करें। बुआई के समय सामयिक बुआई से फसल को उकटा रोग से होने वाली हानि से बचाया जा सकता है। मृदा जनित रोगों पर नियंत्रण हेतु कार्बेंडाजिम प्लस थीरम अथवा ट्राइकोडर्मा प्लस कार्बोक्सिन से बीजोपचार करें। अलसी के साथ अंतःशस्य क्रियाएं एवं मिश्रित खेती से उकटा रोग का प्रकोप कम किया जा सकता है। खड़ी फसल में माहू का प्रकोप होने पर डाईमेथोएट 0.03% का छिड़काव करें।

तो आज के लिए बस इतना ही, अगले दिन अगले विषय के साथ हम हाजिर होंगे इसी फ्रिक्वेंसी 90.8 FM ग्रीन पर। तो सुनते रहे उन्नत कृषि।

0: खसरा कितनी गंभीर बीमारी है। टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MR टीका 9 से 12 महीने और दूसरा MR टीका 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MR टीका लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हो तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टिको क्यों है इतने जीरो?
1: जीरो नहीं बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थाई बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात, अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
0: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UPIN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
1: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
5: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
6: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
5: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है। और हुकुम सिंह भी। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
7: हर घर सूर्य घर।
8: कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 ग्रीन FM।

बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 22 से 26 जुलाई के दौरान आसमान में घने बादल छाए रहेंगे और जिले में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी चलने और हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 26 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 90 प्रतिशत और दोपहर में 70 से 80 प्रतिशत रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए। जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दें, पिछले कुछ दिनों में हुई वर्षा का लाभ उठाइए और आगे भी संभावना है कि वर्षा होगी, तो ऐसी स्थिति में धान की रोपाई के लिए व्यवस्था सुनिश्चित कर ले। रोपाई से पहले प्रति हेक्टेयर 25 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस, 30 किलोग्राम पोटाश और 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट का प्रयोग करें। आपको बता दें कि निचली जमीन के चारों ओर मजबूत मेड़ यानी कि बांध बनाकर वर्षा जल का संचयन कर ले, ताकि जरूरत पड़ने पर आप वर्षा के जल का सिंचाई में उपयोग कर सके। जो किसान भाई बहन श्री अन्न की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दें, मोटे अनाजों की खेती के लिए उचास भूमि का चयन करें। मड़वा की वकुला KMR 316 GPU

0: 67 और VL 379 राजेंद्र मड़वा RU 8 और RU 3। और आपको बता दे कौनी की अनुशंसित किस्में हैं राजेंद्र कौनी 1। आप इन किस्मों की बुआई कर सकते हैं। मक्का की खेती करने वाले किसान भाई बहन ध्यान दे, खरीफ मक्का की बुआई आसमान साफ रहने पर ही करें। खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें। और ध्यान रखें कि बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नेत्रजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश जरूर डालें। अनुशंसित मक्का की किस्में जैसे सुवान, देवकी, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, राजेंद्र शंकर मक्का 3, गंगा 11 है। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दे मिर्च, अगाध गोभी, टमाटर जैसी सब्जियों की नर्सरी तभी तैयार करें जब आसमान साफ हो। और बागवानी करने वाले भाई बहन ध्यान दे, जुलाई अगस्त आम के पौधों के रोपण के लिए सबसे उपयुक्त समय होता है। कलमी पौधों की रोपाई 10x10 मीटर और बीजू पौधों की रोपाई 12x12 मीटर की दूरी पर करें। सघन बागवानी के लिए 5x5 मीटर और आम्रपाली के लिए 2.5x2.5 मीटर की दूरी रखें। फलदार वृक्षों में प्रति वर्ष 1 किलोग्राम नाइट्रोजन, 30 किलोग्राम फास्फोरस, 700 किलोग्राम पोटाश और 80 से 100 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद जरूर डालें। आपको बता दें इस समय केला के स्वस्थ सकर्स की रोपाई करें। लंबी किस्मों जैसे अल्पान, कंथली, मालभोग, चिनिया, G9 और बोनी किस्में जैसे ग्रैंड नेन, रोबस्टा, बसराई का चयन करना सबसे फायदेमंद होता है। लंबी किस्मों के लिए 2x2 मीटर और बोनी किस्मों के लिए 1.5x1.5 मीटर की दूरी रखें। प्रत्येक गड्ढे में 5 किलोग्राम गोबर की खाद, 500 ग्राम अरंडी की खली, 300 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट, 100 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश और 10 ग्राम कार्बोफ्यूरान मिलाना ना भूलें। रोपाई से पहले सकर्स को कार्बन डाइजीम 2 ग्राम प्रति लीटर पानी से उपचारित करें। किसान भाई बहनों, टिश्यू कल्चर पौधे का उपयोग अधिक उत्पादन के लिए लाभकारी होता है। पशुपालक भाई बहन ध्यान दें, पशुओं में PPR, MFD यानी कि खुरपका मुंहपका और HS यानी कि गला घोटू, इन रोगों का खतरा अधिक है। इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण करवाएं, उन्हें साफ और सूखा रखें और बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। रोग के लक्षण अगर दिखाई दे तो तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें और ध्यान रखें कि पशुओं की बिना जरूरत के आवाजाही पर नियंत्रण रखें। गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए जून माह में अगर टीके नहीं लगाए गए हों तो इस महीने में टीके जरूर लगवा दें। पशुओं को संतुलित और पौष्टिक आहार दें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।
1: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा बेटा नाम ही है PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
0: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जाँच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन। सेहत सही लाभ गई।
4: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

0: स्वागत है साथियों, आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन और मैं हूँ आपकी दोस्त आपकी साथी RJ उमा। दोस्तों, गर्मी का मौसम शुरू होते ही एक चिंता हर घर में बढ़ जाती है, मच्छर, बुखार, कमजोरी और सबसे बड़ा डर मलेरिया। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये बीमारी जो सालों से हमारे आसपास है, क्या इसे खत्म किया जा सकता है? इन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए हमारी श्रृंखला सेहत सही लाभ कई के इस प्रोग्राम में आज हमारे साथ हैं हमारे अपने गांव-गांव में स्वास्थ्य की अलख जगाने वाले सेहतिया सिंह।
1: धन्यवाद RJ बाबू, और मेरे सभी प्यारे श्रोताओं का भी दिल से धन्यवाद।
0: दोस्तों, आज की शुरुआत मैं एक सच्ची कहानी के साथ करना चाहती हूँ। ये कहानी है भागलपुर के एक छोटे से गांव की, जहाँ रहने वाला 8 साल का बच्चा सोनू।
1: हाँ RJ बाबू, मैं भी उस बच्चे को जानता था।
0: गर्मी का मौसम था और गांव में पानी जमा था, मच्छर बहुत हो गए थे, पानी जमा था, इसलिए सोनू को हल्का बुखार आया। परिवार ने सोचा साधारण बुखार है, 2 दिन में ठीक हो जाएगा।
1: लेकिन वो कोई साधारण बुखार नहीं था, वो मलेरिया था।
0: 3 दिन बीते, बुखार बढ़ता गया और शरीर कमजोर होता गया। जब अस्पताल ले गए तब तक बहुत देर हो चुकी थी।
1: अगर समय पर जांच हो जाती, अगर शुरुआत में ही ध्यान दिया जाता, तो आज सोनू हमारे बीच होता।
0: दोस्तों, मलेरिया सिर्फ एक बीमारी नहीं है, ये लापरवाही और जानकारी की कमी की कीमत है। सेहतिया भैया, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपसे मलेरिया के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं, और हम मलेरिया दिवस भी मनाते हैं, विश्व मलेरिया दिवस मनाते हैं हर साल 25 अप्रैल को।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, विश्व मलेरिया दिवस हर साल 25 अप्रैल को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2008 में हुई थी, जब 2007 में विश्व स्वास्थ्य सभा में इसे तय किया गया। इस दिन का मकसद सिर्फ एक है, पूरी दुनिया को एक साथ लाकर मलेरिया जैसी गंभीर बीमारी को खत्म करना। ये दिन हमें याद दिलाता है कि मलेरिया सिर्फ एक बीमारी नहीं, एक चुनौती है जिसे हमें मिलकर हराना है।
0: तो भैया, जो हम मलेरिया दिवस मनाते हैं, इसके पीछे क्या सिर्फ जागरूकता ही एक वजह है, या फिर इसके पीछे और भी कोई उद्देश्य है?
1: नहीं, ये सिर्फ जागरूकता तक सीमित नहीं है। ये दिन सरकारों, डॉक्टरों, वैज्ञानिकों और आम लोगों को एक मंच पर लाता है, ताकि हम सब मिलकर मलेरिया को रोकने, उसका इलाज करने और अंत में उसे पूरी तरह खत्म करने के लिए काम कर सकें। इस दिन दुनिया भर में कई गतिविधियां होती हैं, जैसे लोगों को जानकारी देना, नई रिसर्च साझा करना, स्वास्थ्य कार्यक्रम चलाना और सरकारों से ये मांग करना कि वे इस बीमारी के खिलाफ लगातार निवेश और प्रयास करें।
0: और भैया, इस साल की थीम क्या है और उसका मतलब क्या है, ये भी आप हमें समझा दीजिए।
1: इस साल की थीम है ड्रिवन टू एंड मलेरिया, नाउ वी कैन, नाउ वी मस्ट। इसका मतलब है कि अब हमारे पास वो ज्ञान, वो तकनीक और वो संसाधन हैं जिनसे हम मलेरिया को खत्म कर सकते हैं। अब सवाल ये नहीं है कि क्या हम कर सकते हैं, बल्कि सवाल ये है कि हम कब करेंगे, और जवाब है अभी।
0: सेहतिया भैया, अगर आसान भाषा में बताएं तो मलेरिया आखिर क्या होता है?
1: देखिए, मलेरिया एक संक्रामक बीमारी है जो प्लाज्मोडियम नाम के परजीवी से होती है। ये परजीवी हमारे शरीर में तब आता है जब एक संक्रमित मादा एनोफिलीज मच्छर हमें काटती है। जब ये मच्छर काटता है तो ये परजीवी हमारे खून में चला जाता है और फिर सीधे हमारे लीवर और खून की कोशिकाओं पर हमला करता है।
0: मतलब ये शरीर के अंदर फैलता रहता है।
1: हाँ, और यही वजह है कि इसके लक्षण धीरे धीरे बढ़ते हैं, जैसे तेज बुखार, ठंड लगना, पसीना आना, सिर दर्द, उल्टी, और अगर समय पर इलाज ना मिले तो ये दिमाग तक भी पहुंच सकता है, जिसे सेरेब्रल मलेरिया कहते हैं, जो जानलेवा हो सकता है।
0: भैया, आपने कहा कि अब हमारे पास तकनीक है, तो क्या सच में मलेरिया खत्म किया जा सकता है?
1: हाँ बिल्कुल, आज विज्ञान ने बहुत तरक्की की है। अब मलेरिया के लिए वैक्सीन भी आ चुकी है, जो 25 देशों में दी जा रही है और हर साल लगभग 1 करोड़ बच्चों को सुरक्षा दे रही है। इसके अलावा नई दवाइयां आई हैं, लंबे समय तक असर करने वाले इंजेक्शन आए हैं, और यहां तक कि मच्छरों को नियंत्रित करने के लिए नई तकनीकें विकसित की जा रही हैं। अब जो मच्छरदानी इस्तेमाल हो रही हैं उनमें नई तकनीक है, और 2024 में जो नई मच्छरदानियां बांटी गईं, उनमें से 84% अगली पीढ़ी की थीं, जो ज्यादा असरदार हैं।
0: तो इसका मतलब दुनिया में मलेरिया कम हुआ होगा?
1: हाँ, पिछले 20 सालों में बहुत बड़ी प्रगति हुई है। 2000 के बाद से अब तक 2.3 अरब मलेरिया के मामले और 1.4 करोड़ मौतें रोकी जा चुकी हैं। 47 देश ऐसे हो चुके हैं जहां मलेरिया पूरी तरह खत्म हो चुका है। कई देशों में मामलों की संख्या बहुत कम हो गई है और कुछ क्षेत्रों में तो 90% तक कमी आई है।
0: कम हुआ है, लेकिन फिर भी मलेरिया अभी तक खत्म क्यों नहीं हुआ है?
1: यही सबसे बड़ी चिंता है। 2024 में अभी भी 28.2 करोड़ मलेरिया के मामले सामने आए और 6.1 लाख लोगों की मौत हुई। इसका मतलब है कि हमने प्रगति तो की है, लेकिन अभी लड़ाई खत्म नहीं हुई है।
0: और इसमें सबसे बड़ी चुनौती क्या है?
1: चुनौतियां कई हैं। पहली चुनौती है दवाइयों के प्रति प्रतिरोध। कुछ जगहों पर मलेरिया की दवाइयां पहले जितनी असरदार नहीं रही हैं। दूसरी चुनौती है मच्छरों का कीटनाशकों के प्रति प्रतिरोध। तीसरी समस्या है जांच में दिक्कत। कुछ मामलों में टेस्ट सही परिणाम नहीं दे पाते। और एक नई समस्या है नए तरह के मच्छर जो शहरों में भी फैल रहे हैं।
0: अच्छा, एक और सवाल जो मेरे मन में है कि क्या मलेरिया सभी जगह समान रूप से होता है?
1: नहीं, ये ज्यादातर गरीब और पिछड़े इलाकों में ज्यादा होता है। जहां साफ पानी की कमी है, स्वास्थ्य सुविधाएं कम हैं, वहां यह बीमारी ज्यादा फैलती है। इसीलिए इसे खत्म करना सिर्फ स्वास्थ्य का नहीं बल्कि समानता का भी सवाल है।
0: और क्या सिर्फ वैज्ञानिक समस्याएं हैं या और भी कोई दिक्कतें हैं?
1: नहीं, सामाजिक और आर्थिक चुनौतियां भी बहुत बड़ी हैं। 2024 में मलेरिया के लिए लगभग 3.9 अरब डॉलर का फंड मिला, जबकि जरूरत 9.3 अरब डॉलर की थी। मतलब आधे से भी कम पैसा मिल रहा है। इसके अलावा कई जगहों पर युद्ध, बाढ़, सूखा और जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याएं भी मलेरिया को बढ़ा रही हैं।
0: भैया, आपने पहले फंड की कमी की बात की थी, तो आप इसे आसान भाषा में समझाइए कि फंड की कमी कैसे आ रही है।
1: देखिए, मलेरिया से लड़ने के लिए दवाइयां चाहिए, मच्छरदानियां चाहिए, जांच मशीनें चाहिए, स्वास्थ्य कर्मचारी चाहिए, इन सबके लिए पैसे चाहिए। लेकिन अभी जितना पैसा मिल रहा है वह जरूरत से आधा भी नहीं है। इसका मतलब है कि कई जगहों पर जरूरी सुविधाएं पहुंच ही नहीं पा रही हैं।
0: भैया, आपने एक और बात कही थी जलवायु परिवर्तन की, तो जलवायु परिवर्तन का मलेरिया से क्या संबंध है?
1: बहुत गहरा संबंध है। आजकल मौसम तेजी से बदल रहा है, बारिश का समय बदल रहा है, गर्मी बढ़ रही है। इन सब कारणों से मच्छरों के पनपने की जगह और समय दोनों बढ़ गए हैं। पहले जो इलाके सुरक्षित माने जाते थे वहां भी अब मलेरिया के केस आने लगे हैं। मतलब ये सिर्फ एक बीमारी नहीं रही, ये पर्यावरण से जुड़ी समस्या भी बन चुकी है।
0: अब अगर हम अपने देश की बात करें भैया, तो हमारा भारत कहाँ खड़ा है इस सूची में?
1: भारत ने बहुत अच्छा काम किया है। 2015 से 2023 के बीच मलेरिया के मामलों और मौतों में 80% की कमी आई है। 2024 में भारत में लगभग 2.5 लाख मामले और 86 मौतें दर्ज की गईं। लेकिन अभी भी चुनौतियां हैं, खासकर दूरदराज इलाकों में, सीमावर्ती क्षेत्रों में और जहां स्वास्थ्य सेवाएं कम पहुंचती हैं।
0: जैसे कि आपने बताया कि स्वास्थ्य सेवाएं कुछ जगहों पर कम पहुंचती है, और इसके अलावा भारत में सबसे बड़ी समस्या कहाँ है?
1: सबसे ज्यादा चुनौती दूरदराज इलाकों में है, जैसे जंगल वाले क्षेत्र, पहाड़ी इलाके, वहां पहुंच पाना मुश्किल होता है। इसके अलावा सीमावर्ती इलाकों में लोग एक जगह से दूसरी जगह आते जाते रहते हैं, जिससे बीमारी फैलने का खतरा बढ़ जाता है।
0: तो इतनी समस्याएं हैं, ऐसे में भारत का लक्ष्य क्या है मलेरिया को लेकर?
1: भारत का लक्ष्य है कि 2027 तक देश में एक भी स्थानीय मलेरिया का मामला न हो और 2030 तक इसे पूरी तरह खत्म कर दिया जाए।
0: और सरकार इस पर काम कैसे कर रही है?
1: सरकार कई स्तर पर काम कर रही है। गांवों में आशा कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों को जागरूक कर रही हैं। पीएचसी और सब सेंटर में मुफ्त जांच और दवाइयां उपलब्ध हैं। इसके अलावा रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट RDT की मदद से तुरंत पता लगाया जा सकता है कि मलेरिया है या नहीं। और जो दवाइयां दी जाती हैं उन्हें ACT यानी आर्टिमिसिनिन बेस्ड कॉम्बिनेशन थेरेपी कहते हैं, जो बहुत प्रभावी है।
0: सिहतिया भैया, आपने बताया कि भारत मलेरिया को खत्म करने की दिशा में काम कर रहा है, लेकिन जरा विस्तार से बताइए कि देश में इसके लिए कौन कौन से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं।
1: बहुत अच्छा सवाल है आरजे, क्योंकि सिर्फ जानकारी से नहीं बल्कि मजबूत व्यवस्था और लगातार प्रयास से ही मलेरिया जैसी बीमारी को हराया जा सकता है। भारत में मलेरिया नियंत्रण के लिए एक बड़ा राष्ट्रीय कार्यक्रम चलता है, जिसे पहले राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम कहा जाता था और अब इसे राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र के तहत और मजबूत किया गया है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है मलेरिया के मामलों को कम करना, समय पर पहचान करना और सही इलाज देना।
0: तो क्या इसके लिए कोई खास योजना भी बनाई गई है, इसके बारे में भी बताइए।
1: हाँ बिल्कुल, भारत ने राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन रूपरेखा नेशनल फ्रेमवर्क फॉर मलेरिया एलिमिनेशन तैयार की है, जिसमें साफ तौर पर लक्ष्य तय किए गए हैं। पहले मलेरिया के मामलों को तेजी से कम करना, फिर स्थानीय स्तर पर संक्रमण रोकना और अंत में पूरे देश से मलेरिया को खत्म करना। इसी के तहत भारत ने राष्ट्रीय रणनीतिक योजना नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर मलेरिया एलिमिनेशन भी बनाई है, जिसमें हर जिले को उसकी स्थिति के हिसाब से अलग अलग श्रेणियों में बांटा गया है। कुछ जिले ऐसे हैं जहां मलेरिया ज्यादा है, वहां ज्यादा ध्यान दिया जाता है, ज्यादा संसाधन भेजे जाते हैं, और जहां कम है वहां निगरानी मजबूत की जाती है ताकि बीमारी दोबारा ना फैले।
0: ये तो बात हो गई योजना की, लेकिन आप ये बताइए भैया कि जमीन पर क्या होता है और क्या हो रहा है।
1: जमीन पर बहुत काम होता है, बस हमें उसका एहसास नहीं होता। गांवों में नियमित रूप से इंडोर रेसिडुअल स्प्रे IRS किया जाता है, यानी घरों की दीवारों पर दवा का छिड़काव, जिससे मच्छर मर जाते हैं। लोगों को लॉन्ग लास्टिंग इंसेक्टिसाइडल नेट LLIN यानी मच्छरदानी दी जाती है, जो कई सालों तक मच्छरों से बचाव करती है। स्वास्थ्य कार्यकर्ता घर घर जाकर बुखार वाले मरीजों की पहचान करते हैं और तुरंत जांच करवाते हैं। कई बार तो वही पहली व्यक्ति होती हैं जो किसी मलेरिया के केस को पकड़ती हैं।
0: मतलब ये कि लोग खुद जाएंगे तब ही जांच होती है?
1: नहीं, यही सबसे बड़ी बात है। अब सिस्टम खुद लोगों तक पहुंचता है, इसे एक्टिव सर्वेलेंस कहते हैं। अगर किसी इलाके में मलेरिया का केस मिलता है तो स्वास्थ्य टीम वहां जाकर आसपास के लोगों की भी जांच करती है, ताकि बीमारी फैलने से पहले ही रोकी जा सके।
0: लेकिन भैया, क्या सिर्फ सरकार से ये संभव है?
1: नहीं, बिल्कुल नहीं। सरकार जितना भी प्रयास कर ले, अगर समुदाय साथ नहीं देगा तो मलेरिया खत्म नहीं हो सकता। अगर लोग मच्छरदानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, अगर पानी जमा होने देंगे, अगर बुखार होने पर जांच नहीं कराएंगे, तो कोई भी योजना सफल नहीं हो सकती।
0: तो इसमें आम लोगों की भी भूमिका होगी?
1: सबसे बड़ी भूमिका आम लोगों की ही है। अगर हम अपने घर के आसपास पानी जमा नहीं होने देंगे, मच्छरदानी का इस्तेमाल करेंगे, समय पर जांच कराएंगे और पूरा इलाज करेंगे, तो मलेरिया को रोका जा सकता है।
0: भैया, गांव में ना कई तरह की बातें फैलती है, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि मलेरिया सिर्फ गंदे पानी से होता है, और कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि मलेरिया खुद ही ठीक हो जाता है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे?
1: यही सबसे खतरनाक बात है। मलेरिया सिर्फ गंदगी से नहीं बल्कि संक्रमित मच्छर के काटने से होता है, और अगर इसका इलाज समय पर न हो तो यह जानलेवा भी हो सकता है। इसलिए बुखार को हल्के में न लें।
0: लेकिन एक और बात है कि लोग अक्सर मलेरिया का इलाज या कोई किसी भी तरीके का इलाज बीच में ही छोड़ देते हैं, और खासतौर से मलेरिया का इलाज भी।
1: यही सबसे बड़ी गलती है। जब दवा पूरी नहीं ली जाती तो बीमारी अंदर ही अंदर बनी रहती है और फिर दोबारा उभरती है, और यही कारण है कि दवाओं के प्रति प्रतिरोध भी बढ़ता है। इसलिए अगर डॉक्टर ने 3 दिन या 7 दिन की दवा दी है तो उसे पूरा करना बहुत जरूरी है।
0: तो आखिर इसका समाधान क्या है?
1: समाधान बहुत स्पष्ट है। समय पर जांच, सही इलाज, मच्छरों से बचाव और सही जानकारी, और सबसे जरूरी, मिलकर काम करना।
0: तो भैया, ऐसे में सबसे बड़ा बदलाव कहाँ चाहिए?
1: सबसे बड़ा बदलाव सोच में चाहिए। हमें ये समझना होगा कि बुखार छोटा नहीं होता और इलाज अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। जब ये सोच हर घर तक पहुंच जाएगी तब मलेरिया अपने आप खत्म होने लगेगा।
0: सेहतिया भैया, क्या आपके पास कोई ऐसी कहानी है जहां सही समय पर इलाज से किसी की जान बची हो?
1: हाँ, और यही उम्मीद है। बिहार के एक गांव में एक महिला थी, सरिता। उसे तेज बुखार हुआ, लेकिन इस बार उसने इंतजार नहीं किया, वह तुरंत आशा दीदी के पास गई। जांच हुई, मलेरिया निकला। उसे समय पर दवा मिली, उसने पूरा कोर्स किया और आज वह पूरी तरह स्वस्थ है और खुद गांव में लोगों को जागरूक करती है।
0: मतलब फर्क सिर्फ एक फैसले का है।
1: हाँ, एक फैसला, समय पर जांच कराने का और पूरा इलाज करने का।
0: भैया, क्या आपको लगता है कि भारत मलेरिया को खत्म कर पाएगा?
1: हाँ बिल्कुल, क्योंकि हमारे पास योजना भी है, संसाधन भी है और अनुभव भी है। बस जरूरत है लगातार प्रयास, सही दिशा और लोगों की भागीदारी की। अगर सरकार, स्वास्थ्य कर्मी और आम जनता तीनों साथ आ जाएं, तो 2030 तक मलेरिया मुक्त भारत का सपना जरूर पूरा होगा।
0: सेहतिया भैया, आज आपने हमें बहुत कुछ सिखाया। दोस्तों, याद रखिए, मलेरिया कोई छोटी बीमारी नहीं है, लेकिन इसे हराया जा सकता है।
1: आज समय आ गया है कि हम सब मिलकर कहें, अब हम कर सकते हैं और अब हमें करना ही होगा।
0: दोस्तों, अब हमारे पास ज्ञान है, दवा है, साधन है, अब बहाना नहीं चलेगा।
1: अब हम कर सकते हैं और अब हमें करना ही होगा। मलेरिया खत्म होगा जब हम सब साथ होंगे।
0: तो इसी के साथ आज का शो खत्म होता है, पर जाने से पहले हम मिलकर लेंगे सेहत की शपथ।
2: हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे, अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है। सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे। साफ सफाई, स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके। नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे। महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे। जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा, तभी भारत समृद्ध बनेगा। सेहत सही तो लाभ।

0: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्ते क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
4: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने, हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
3: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना है। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
5: सुनो सुनो सुनो सभी, एक जरूरी बात, आया मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण फिर एक बार। अगर आपके घर या पड़ोस में है 5 साल या उससे छोटे बच्चे जिनका कोई भी टीका छूट गया हो, तो सोचते क्या हो, जल्दी से आशा दीदी से करो बात। बच्चों को स्वास्थ्य केंद्र है लेकर जाना और उनका टीकाकरण है कर...

0: टीको, ये मौसम है टीकाकरण करवाने का, तो सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
2: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।
5: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
6: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
5: और लाइट बिल के,
6: अब 0 रुपए कैसे दूं?
5: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
6: पक्का।
7: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन, और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपके विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। उन्नत कृषि में आज हम बात करने वाले हैं नैनो कीटनाशी के बारे में, यानी कि नैनो पेस्टिसाइड के बारे में। ये क्या है और आजकल क्यों कृषि विशेषज्ञ विशेष सलाह दे रहे हैं कि नैनो पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करना चाहिए। बहुत लंबे समय से किसान भाई बहन पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करते आ रहे हैं, लेकिन अब उन्हें कहा जाता है कि नैनो पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करें। तो आखिर अंतर क्या है नैनो पेस्टिसाइड और पेस्टिसाइड में, और ये क्यों इतना महत्वपूर्ण है, इसके बारे में विशेष रूप से चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर अभिषेक कुमार। आप हैं असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ मॉलिकुलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
8: जी, थैंक यू मैम।
4: सर, आपसे सबसे पहला सवाल, जो बहुत ही बेसिक सा सवाल है, कि नैनो पेस्टिसाइड यानी कि नैनो कीटनाशी क्या है?
8: नैनो पेस्टिसाइड, जिसको कि नैनो कीटनाशी भी बोलते हैं, यह उन्नत इंजीनियरिंग कृत फार्मूलेशन है जो नैनो तकनीकी का प्रयोग करके किया जाता है, और इसमें जो कीटनाशक तत्वों का आकार जो होता है वह 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के रेंज में समाहित रहता है, या डायरेक्ट इसमें या प्रत्यक्ष रूप से नैनो कण को यूज करते हैं, और साथ ही साथ या जो है ना कुशल एवं लक्षित होता है उसे नैनो कीटनाशी कहा जाता है। जैसे नैनो सिल्वर, नैनो कॉपर, नैनो जिंक ऑक्साइड इत्यादि इनके उदाहरण माने जाते हैं।
4: ये इतना ज़रूरी क्यों है?
8: ज़रूरी अभी के परिप्रेक्ष्य में जो किसान भाई, जैसे पहले परंपरागत जो कीटनाशी होते थे उसमें कुछ बहुत सारे महत्व बिंदु है जिसको कि इसमें नहीं समाहित किया गया है, जैसे कि उपयोग करने का तरीका, उसका मात्रा, यह सब इसमें कम हो गया है। तो जैसे मुख्य सब इनकी विशेषताएं हैं या महत्वपूर्ण बातें हैं कि यह लक्षित वितरण प्रणाली पे काम करता है, या जहाँ पे चाहिए जितना उतना ही यह काम करता है, इसका बड़ा मुख्य पहलू है कि नैनो कीटनाशी का। साथ ही साथ यह अत्यधिक कुशल होते हैं, जिसको कि कह सकते हैं कि यह अधिक प्रभावशाली होते हैं, कि जो परंपरागत जो हम कीटनाशी यूज करते थे उसके तुलना में यह अधिक प्रभावशाली होते हैं। और इसका जो और भी महत्वपूर्ण बात है कि जो अनावश्यक उपयोग जो आने वाले कीटनाशक रसायनों की मात्रा जो होती थी इसमें कम हो गया है, परंपरागत में ज़्यादा होती थी, और अगर मात्रा कम होगा तो यह पर्यावरण पर भी इसका जो है ना प्रभाव जो है ना पॉजिटिव होगा या निगेटिव कम होगा, और खेतों में नैनो कीटनाशी का अवशेष की मात्रा भी कम हो जाती है क्योंकि प्रारंभ में ही इसकी मात्रा कम होती है, और जब ये नियंत्रित जो करते हैं वह पूरा लक्ष्य बेस्ड काम करते हैं, और उपयोग में जो मात्रा होती है बहुत कम, लगभग जो है ना जो परंपरागत कीटनाशी थे उसका लगभग 10% अप्रॉक्स हम इसमें यूज करते हैं, और जो है यह धीरे धीरे काम करता है जिससे कि इसकी उपयोगिता और बढ़ जाती है और इसमें अवशिष्ट बचने का चांस कम हो जाते हैं। और निश्चित तौर पे है कि जब हम चीज़ को कम उपयोग करेंगे, कम खर्च होगा, तो इससे जो है ना किसान भाई का जो जो खर्च आता था कम हो जाते हैं, और जो है ना जो प्रतिरोधकता जो था कि बहुत सारे कीट जो है ना जो कीटनाशी थे उससे प्रतिरोधी हो गए थे, तो इसमें जो है ना प्रतिरोधकता जो है यह भी कम है नैनो कीटनाशी में, और इससे कृषि उपज को बढ़ाने में ज़्यादा संभावना बढ़ जाती है क्योंकि हम इसका उपयोग टारगेट वेस्ट करते हैं, और साथ ही साथ यह हम स्थिति परिस्थिति और बुद्धिमता से नैनो कीटनाशी का उपयोग करते हैं।
4: जैसे कि सर आपने बताया कि ये बिल्कुल टारगेटेड काम करता है और बहुत कम मात्रा में बेहतर काम करता है, तो सर आप ये बताइए कि काम कैसे करता है नैनो पेस्टिसाइड?
8: जो कीटनाशी होता है यह सर्वप्रथम जब हम उस पर जहाँ चाहिए जब कीट को मारने के लिए उपयोग करते हैं, तो यह सर्वप्रथम होता है कि कीट के जो शरीर का हिस्सा है, जो बॉडी का पार्ट है, उससे जो है ना चिपकता है, और धीरे धीरे उनके बॉडी पे जो क्यूटिकल्स वगैरह पाए जाते हैं इन कीड़ों पे, उसको जो है ना उससे इंट्रैक्ट करता है और धीरे धीरे कीटों के शरीर के अंदर जाता है, और जो कि जो शरीर जो कीट के शरीर में जो पानी रहता है उसकी मात्रा धीरे धीरे कम होने लगता है, और अंतोगत्वा शरीर में डिहाइड्रेशन इतना हो जाता है कि वह जो है ना कीट मरने लगता है, क्योंकि जो हम कीटनाशी का जो प्रयोग करते हैं ना इसका साइज बहुत छोटा होता है, बहुत ही छोटा होता है, जो हम अपने सूक्ष्म आँखों से देख नहीं पाते हैं, तो और उसका सतह क्षेत्रफल जो है ना बहुत ज़्यादा होता है, तो उसका कार्य क्षमता सतह क्षेत्रफल का ज़्यादा होना इसका मतलब है कि उसका कार्य क्षमता कई गुना बढ़ जाती है, और इसीलिए जो है ना इसका यह जो है ना कि वह टारगेटेड होते हुए काम करते हैं। तो ओवर ऑल अगर आप हम देखें तो यह क्या करता है कि जब हम डालते हैं तो लक्ष्य पे काम करता है, या पत्तियों के सतह पे जो कि चिपक जाते हैं तो वहाँ भी इंसेक्ट जब बैठ जाते हैं तो उससे उसका जो है ना इंट्रैक्शन बढ़ जाता है, और धीरे धीरे धीरे धीरे जो है ना सक्रिय तत्व इंसेक्ट के शरीर में जाते हैं और उसका शारीरिक क्रियाएं बाधित होती है और अंतोगत्वा उनका मृत्यु होने लगता है।
4: जी सर, आपने ये तो बताया कि नैनो पेस्टिसाइड काम कैसे करता है, अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि नैनो पेस्टिसाइड बनाया कैसे जाता है?
8: नैनो जो पेस्टिसाइड है या कीटनाशी है या मुख्यतः दो तरीके से बनाया जाता है, जिसमें कि हम प्रत्यक्ष नैनो कण का उपयोग करते हैं, जैसे कुछ धातुएं जैसे नैनो जिंक ऑक्साइड है, तो आप जिंक ऑक्साइड को हम प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट ही लेके उसको जो है ना छिड़काव करते हैं, जिससे कि जो है ना कीट जो होते हैं मरने लगते हैं, तो यह प्रत्यक्ष नैनो कणों का उपयोग है। और दूसरा क्या करते हैं कि जो है ना नैनो इनकैप्सुलेशन करते हैं, नैनो का कण लेते हैं, उसके अंदर जो कीटनाशी होता है परंपरागत कीटनाशी होता है उसको उसके अंदर में कैप्सूल की तरह रखते हैं, तो इसका क्या होता है कि कैप्सूल में बंद हो जाता है, तो इससे कीटनाशक जो है ना जो निकलता है कैप्सूल से धीरे धीरे निकलता है और इसका प्रभाव बढ़ जाता है। और कभी कभी जो है ना हम लोग कीटनाशक को नैनो इमल्सन के भी रूप में यूज करते हैं, जैसे कि कुछ ऑर्गेनिक चीज़ हुआ जैसे तेल वगैरह में नैनो के रूप में यूज करते हैं, जो सक्रिय मुख्य सूक्ष्म तत्व होते हैं जिससे कि जो है ना मिल के मुख्य सक्रिय तत्व और जो नैनो कण होते हैं या कीटनाशक को के तरह काम करते हैं, और जिससे कि अंतोगत्वा कीट का मृत्यु हो जाता है।
4: सर अब आप ये बताइए कि नैनो पेस्टिसाइड कितने प्रकार के होते हैं?
8: मुख्यतः जो है कीट नैनो कीटनाशी दो प्रकार के होते हैं, जिसको कि कार्बनिक एवं अकार्बनिक कहते हैं। तो कार्बनिक रूप में मुख्यतः क्या होता है कि इसमें हम कार्बनिक चीज़ों का प्रयोग करते हैं, जैसे कि विभिन्न तरह के तेल होते हैं और वह उसके लिए बड़ा उपयुक्त माना जाता है, तो उसको लेके हम यूज करते हैं। दूसरा है कि अकार्बनिक के रूप में, जैसे कि मतलब अकार्बनिक धातु के जो है ना जो होते हैं उसको डायरेक्ट हम जो है ना नैनोकन बनाते हैं। नैनोकन बनाने का मतलब हुआ कि उसका साइज 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर के रेंज में लाते हैं, फिर उसको डायरेक्ट हम यूज करते हैं और वह जो है ना धातु के रूप में होता है, जैसे जिंक ऑक्साइड वगैरह हुआ, जैसे नैनो सिल्वर हुआ, तो यह जो है ना उसमें बहुलता से कारगर सिद्ध होता है, क्योंकि वह प्रत्यक्ष रूप से काम करता है और वह प्रत्यक्ष रूप से लक्षित होता है जहाँ पे उसको मारना चाहिए।
4: जी सर, तो अभी आपने बताया कि ये कितने प्रकार के होते हैं, और जब नैनो पेस्टिसाइड की बात करते हैं तो ऐसे भी हम जब आम कीटनाशकों की भी बात करते हैं तो कुछ सुझाव दिए जाते हैं, तो नैनो पेस्टिसाइड के इस्तेमाल के वक्त भी हमें कुछ विशेष ध्यान रखना चाहिए?
8: जी, यहाँ मुख्य बात यह है कि यह जो हम पहले परंपरागत कीटनाशी यूज करते थे और बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज करते थे, तो मात्रा पे जरूर ध्यान रखेंगे। जो ऐसा माना जाता है कि जनरली जो परंपरागत है उसका दसवां हिस्सा ही इसमें हो जाता है, तो दसवां हिस्सा से मतलब जितना जरूरी हो उतना ही जो है ना इसका जो है ना उपयोग करें। दूसरी बात है कि जो हवा का जो वेग है, डायरेक्शन है, जो उसका बहने का जो हाँ रुख है, उसको देखते हुए जो है ना किसान भाई को इसका उपयोग करना चाहिए। और तीसरी बात है कि जो है ना जब आप नैनो कीटनाशी यूज करते हैं तो मास्क का जरूर यूज करें, क्योंकि वह इतने सूक्ष्म होते हैं कि इवन सूक्ष्म होता है और खुली आंखें के द्वारा दिख नहीं पाता और पता नहीं चलता है कि वह कहाँ चला गया, तो इससे हार्म होने का भी जो है ना विपरीत हेल्थ जो अपना स्वास्थ्य है उस पर जो है ना विपरीत प्रभाव पड़ने का डर रहता है, इसलिए जो है ना मास्क का भी जरूर यूज करना चाहिए और जितना ज़रूरत हो उतना ही इसका उपयोग करें। और मुख्यतः जो है इसका उपयोग जैसे हम पत्ते पे स्प्रे करके करना अच्छा माना जाता है, या दूसरा जहाँ पे देखें कि जो उसका व्यवहार जो होता है कीटों का, जो उसका एक्टिव फेज होता है जहाँ व्यवहार होता है लार्वा वगैरह जो है ना, वहाँ अगर कीट नैनो कीटनाशक का उपयोग करें तो इस तरह जो है ना बहुत कारगर माना जाता है, क्योंकि जहाँ ज़रूरत है वहीं पे हम उसका उपयोग कर रहे हैं। इस तरह से जो है ना कुछ कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिसमें जिसका कि ध्यान रख के ही किसान भाइयों का नैनो कीटनाशक का उपयोग करना चाहिए, नैनो हर्बिसाइड का उपयोग करना चाहिए।
4: यानी कि हवा का रुख आप विशेष रूप से ध्यान रखें और जी, जो अनुशंसित मात्रा है
8: जी जी जी जी,
4: और मास्क का भी इस्तेमाल करें, क्योंकि हो सकता है कि आपके शरीर के अंदर अगर वो प्रवेश कर गया तो परेशानी हो सकती है
8: जी।
4: तो इन कुछ बातों का ध्यान रखें, और उम्मीद है कि हमारी आज की ये चर्चा आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे स्टूडियो में आए और नैनो पेस्टिसाइड के बारे में आपने इतनी अच्छी बातें बताई।
8: बहुत बहुत धन्यवाद।
4: दोस्तों, आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। जाने से पहले कुछ खास बात की, अपना और अपनी मिट्टी का रखें खूब ख्याल और अपनी मिट्टी से करें ढेर सारा प्यार। नमस्कार।
0: उन्नत कृषि,

0: जानते हैं कि खसरा कितनी गंभीर बीमारी है? टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MRT का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और साथ साथ 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in।
5: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टिको क्यों है इतने जीरो?
1: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
5: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
5: तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात, अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
5: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
1: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
6: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खान पान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित BP जांच कराएं। स्वस्थ दिल स्वस्थ जीवन, सेहत सही लाभ कई।
7: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
8: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
9: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
8: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
4: PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
10: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
11: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
10: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
11: आपकी सेहत की बातें,
10: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
11: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
10: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
11: वो कहाँ पर?
10: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
11: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
10: उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों आप सभी को नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं खरीफ में मूंगफली की खेती के बारे में और इस बारे में हमारे साथ बात करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर दिव्या महतो। मैम आप हैं पौधा प्रजनन विभाग से, आप हैं असिस्टेंट प्रोफेसर कम जूनियर साइंटिस्ट। मैम आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
12: थैंक यू उमा।
10: मैम सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि बहुत बेसिक सा सवाल कि खरीफ मौसम में मूंगफली की खेती कब करें?
12: जी उमा, मूंगफली देखिए बहुत एक महत्वपूर्ण तिलहन फसल है जिससे विशेष रूप से कम लागत और अधिक लाभ के लिए जाना जाता है। यह फसल प्रमुख रूप से शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में सफलतापूर्वक उगाई जाती है और पारंपरिक फसलों में जैसे गेहूं, धान या मक्का की तुलना में मूंगफली की खेती में सिंचाई, खाद और कीटनाशकों की आवश्यकता अपेक्षाकृत कम होती है, जिससे किसानों की उत्पादन लागत घटती है। और इसके अतिरिक्त मूंगफली एक ऐसी फसल है जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण खुद से करता है, जिससे कि मृदा की उर्वरता को बनाए रखने में सहायक होता है। और खरीफ में इसकी खेती का सबसे उपयुक्त जो समय है वो जून के मध्य से जुलाई के पहले सप्ताह तक होता है।
13: तो मैम, मूंगफली का पौधा किस प्रकार का होता है?
12: जी, मूंगफली का जो पौधा होता है प्रमुख तौर से दो प्रकार के होते हैं, या इसे हम कह सकते हैं दो प्रकार के किस्म भी होते हैं, जिसमें पहला होता है फैलने वाली, यानी फैलने वाली मूंगफली। इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका जो पौधा होता है वो ज़मीन पर फैलता है। ये अधिक शाखाओं वाली मूंगफली होती हैं और इसमें फल और फूल ज़्यादा आते हैं और इसमें पकने की जो अवधि होती है वो 110 से 130 दिन की होती है। और दूसरा जो होता है प्रकार या किस्म कह सकते हैं वो होता है गुच्छेदार या खड़ी रहने वाली मूंगफली। इसे गुच्छेदार इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका पौधा खड़ा रहता है और गुच्छों में बढ़ता है और इसके जो पकने की अवधि है वो लगभग 90 से 100 दिन की होती है।
13: तो मैम, अब आप हमारे किसान भाई बहनों को ये बताइए कि मूंगफली की खेती कैसे करनी चाहिए?
12: जी, मूंगफली की खेती खरीफ में इसके लिए सबसे ज़रूरी जो फोरमोस्ट बात यह है कि तापमान इसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट बात है और इसकी बुआई का जो तापमान होना चाहिए वो होना चाहिए 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड और साथ ही इसकी बुआई हल्की दोमट या बलुई मिट्टी में करें या काली मिट्टी में करें। और इसकी बुआई बहुत चरणों में होती, कई चरणों में होती है, जिसमें कि पहला जो चरण होता है वो है खेत की तैयारी और इसके लिए 2 से 3 बार जुताई करें और पाटा चला दें और खेत को समतल कर दें। फिर आती है उचित प्रभेदों का चुनाव और उसमें जैसे आप प्रभेद जैसे कि DH86 जिसका जो उपज क्षमता होती है वो 15 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, VRI 10 जिसकी उपज क्षमता है 22 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, और एक आता है K1812 जिसकी उपज क्षमता है 30 से 40 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के आसपास होती है। और ये सभी जो किस्में मैंने बताई हैं ये हैं कम फैलने वाली गुच्छेदार प्रभेद। अब जैसे कि बात करें कि गुच्छेदार प्रभेद के बारे में, तो इसमें एक और प्रभेद आता है वो है AK2224 और इसकी जो बुआई का समय होता है वो होता है 15 जून से 10 जुलाई तक और इसकी जो पकने की अवधि होती है वो लमसम होती है 100 से 105 दिन तक और इसकी जो औसत उपज है वो है 14 से 16 क्विंटल प्रति हेक्टेयर और इसमें तेल की मात्रा लगभग की हमें 49% मिल जाती है। और इसी क्रम में गुच्छेदार प्रभेदों के क्रम में एक प्रभेद और आता है कुबेर नाम से, जिसकी बुआई का समय भी वही होता है 15 जून से 10 जुलाई तक और इसके पकने की अवधि भी लमसम 100 से 105 दिन की होती है और इसका जो औसत उपज है वो होता है 15 से 17 क्विंटल प्रति हेक्टेयर और तेल की जो मात्रा होती है वो होती है 48% तक इसकी जो है तेल की मात्रा होती है। और फिर आता है गुच्छेदार प्रभेदों में एक और प्रभेद, वो है JL24 जिसका जो है बुआई का समय भी वही सेम 15 जून से 10 जुलाई तक होता है और पकने की जो अवधि होती है वो है होती है लगभग 90 से 100 दिन के बीच में होती है और औसत जो इसमें उपज होती है वो होती है 18 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर और तेल की जो मात्रा होती है वो 46% होती है। अब एक एक जो उन्नत प्रभेद जो फैलने वाली जो किस्में होती हैं उसमें जो है एक उन्नत जो प्रभेद हम कह सकते हैं उसमें एक आता है M13 के नाम से, जिसका बुआई का समय भी वैसे ही होता है जैसे गुच्छेदार का होता है, मतलब कि 15 जून से 10 जुलाई तक इसकी बुआई कर सकते हैं। और इसकी जो पकने की अवधि होती है वो होती है 130 से 135 दिन तक, और जो है इसका जो औसत जो उपज है वो 15 से 18 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, और लगभग जो तेल की मात्रा इसमें आती है वो होता है 49% इसमें तेल की मात्रा मिलती है।
13: मैम, बीज उपचार बहुत ज़रूरी होता है, तो मूंगफली की खेती में बीज उपचार कैसे करें?
12: जी, बुआई से पहले बीज उपचार बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए बीज को ट्राइकोडर्मा या थीरम या कार्बेंडाजिम से उपचारित कर सकते हैं।
13: और मैम, मूंगफली की खेती में जैसे कि आपने बताया कि गुच्छेदार होते हैं और फैलने वाले प्रभेद भी होते हैं, तो इनकी बुआई में बीज दर, गहराई और दूरी कितनी रखनी चाहिए?
12: जी, इसमें जैसे कि अगर गुच्छेदार किस्म है तो उसके लिए जो बीज दर है वो 80 से 90 केजी प्रति हेक्टेयर है, और अगर फैलने वाली प्रभेद हैं तो उसके लिए जो बीज दर होना चाहिए वो 70 से 75 केजी प्रति हेक्टेयर होनी चाहिए। और बुआई की बात करें तो 4 से 6 सेंटीमीटर की गहराई की बुआई करनी उचित होती है ताकि बीज को उचित नमी मिल सके। इसके साथ साथ बुआई के समय फैलने वाले जो प्रभेद हैं उसमें पंक्ति से पंक्ति की दूरी 45 सेंटीमीटर रखनी चाहिए, और पौधे से पौधे की दूरी लगभग 15 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और अगर गुच्छेदार वाले प्रभेद है तो उसमें पंक्ति से पंक्ति की दूरी 30 सेंटीमीटर रखें और पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर तक रखें।
13: खाद और उर्वरक का प्रबंधन भी बहुत ज़रूरी होता है, तो मूंगफली की खेती में खाद और उर्वरक का प्रबंधन कैसे करना चाहिए?
12: जी, इसके लिए जैविक खाद के रूप में हम 8 से 10 टन गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर इस्तेमाल कर सकते हैं, और रासायनिक खाद की बात करें तो नाइट्रोजन 20 से 25 किलोग्राम पर हेक्टेयर, और फॉस्फोरस 40 से 50 किलोग्राम पर हेक्टेयर, और पोटाश हम दे सकते हैं 20 से 25 किलोग्राम पर हेक्टेयर। इसके अलावा यदि सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे कि कमी है तो जिंक, बोरॉन, कैल्शियम, सल्फर भी उपयोग कर सकते हैं आवश्यकता अनुसार, और बुआई के 20 से 25 दिन बाद निराई गुड़ाई अवश्य करें। इससे मिट्टी हल्की तथा ढीली हो जाती है तथा खोट यानी पेग जिसमें दाने बनते हैं उमा वो आसानी से ज़मीन में प्रवेश कर जाते हैं और फलियों का विकास बहुत अच्छा होता है।
13: और मैम, खरपतवार भी बहुत बड़ी समस्या होती है, तो मूंगफली की खेती में खरपतवार नियंत्रण कैसे करें, सिंचाई कैसे करें, और कीट रोगों की भी परेशानी होती है, तो कीट रोगों से कैसे बचें?
12: जी, खेत को खरपतवार से मुक्त रखना उपज के लिए अत्यधिक लाभकारी है। इसके लिए जैसे प्री इमर्जेंस खरपतवार नाशी ज़रूर इस्तेमाल करें जैसे कि पेंडीमेथिलीन। जहाँ तक सिंचाई का सवाल है तो इसमें ज़्यादा सिंचाई की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि खरीफ में आमतौर पर वर्षा होती ही है। बस इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि जल की निकासी सही हो, और यदि सूखा पड़ता है तो 2 से 3 सिंचाई विशेष कर फूल और फली बनने के समय तो ज़रूर करें। कीट रोग की बात करें तो आमतौर पे इसमें लगने वाले जो रोग और कीट हैं जैसे कि टिक्का, रतुआ, जड़ सड़न, मक्खी, माहू, थ्रिप्स, इन सभी का नियंत्रण उचित कीटनाशक या फफूंदी नाशक का छिड़काव करके कर सकते हैं, और जैसे कि मैंकोजेब या डाइमेथोएट का भी इस्तेमाल करके कर सकते हैं।
13: और मैम, हमने बहुत सारी बातें की लेकिन मूँगफली की कटाई और भंडारण इसका उचित समय क्या होता है?
12: इसका उचित समय तब है जब पत्ते पीले पड़ जाते हैं और ज़मीन में बिछ जाते हैं, और 70 से 80% जो फलियां हैं वो परिपक्व हो जाती हैं, तभी हमें कटाई करनी चाहिए। और कटाई के बाद फली को धूप में अच्छी तरह सुखाएं और फलियों को साफ बोरे में भरकर लकड़ी की जो तख्तियाँ होती है उसके ऊपर रखें। और यदि देखभाल अच्छी हो तो उमा खरीफ में मूंगफली की औसत जो उपज लगभग आती है वो है 20 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर।
13: तो मैम आपने इतनी सारी बातें बताई लेकिन अंत में अगर आप किसान भाई बहनों को कोई और सलाह देना चाहें तो?
12: जी, अंत में मैं किसान भाइयों और बहनों से यही कहना चाहूँगी, यदि वे समय पे बुवाई, उचित प्रभेदों का चुनाव एवं वैज्ञानिक तरीके से मूंगफली की खेती करें तो उन्हें निश्चित ही लाभ प्राप्त होना तय है।
13: मैम, जैसे कि अभी आपने बताया कि मूंगफली की खेती से लाभ होता है, साथ ही आपने शुरुआत में बताया कि इससे मिट्टी को भी काफ़ी लाभ होता है, तो उसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे?

0: बहुत फायदा होगा और उनकी मिट्टी को भी बहुत फायदा होगा। मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू उमा, थैंक यू सो मच उमा।
0: दोस्तों आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। आप अपना और अपने फसलों का रखें खूब ख्याल और अपनी मिट्टी से करें ढेर सारा प्यार। नमस्कार।
2: उन्नत कृषि।
3: नमस्ते क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
4: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने, हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
3: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना है। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए टीबी हारेगा देश जीतेगा।
5: सुनो सुनो सुनो सभी, एक जरूरी बात, आया मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण फिर एक बार। अगर आपके घर या पड़ोस में है 5 साल या उससे छोटे बच्चे जिनका कोई भी टीका छूट गया हो तो सोचते क्या हो, जल्दी से आशा दीदी से करो बात। बच्चों को स्वास्थ्य केंद्र है लेकर जाना और उनका टीकाकरण है करवाना।
6: सुहाना सफर और ये मौसम हसी,
5: टीको ये मौसम है टीकाकरण करवाने का, तो सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
7: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
8: सुनिए, क्या आपने PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
9: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
8: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो PM सूर्य घर.gov.in पर।
10: हर घर सूर्य घर।
11: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 ग्रीन FM।

बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 22 से 26 जुलाई के दौरान आसमान में घने बादल छाए रहेंगे और जिले में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी चलने और हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 26 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 90 प्रतिशत और दोपहर में 70 से 80 प्रतिशत रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए। जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दे, पिछले कुछ दिनों में हुई वर्षा का लाभ उठाइए और आगे भी संभावना है कि वर्षा होगी, तो ऐसी स्थिति में धान की रोपाई के लिए व्यवस्था सुनिश्चित कर ले। रोपाई से पहले प्रति हेक्टेयर 25 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस, 30 किलोग्राम पोटाश और 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट का प्रयोग करें। आपको बता दें कि निचली जमीन के चारों ओर मजबूत मेड़ यानी कि बांध बनाकर वर्षा जल का संचयन कर ले, ताकि जरूरत पड़ने पर आप वर्षा के जल का सिंचाई में उपयोग कर सके। जो किसान भाई बहन श्री अन्न की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दे, मोटे अनाजों की खेती के लिए उचास भूमि का चयन करें। मड़वा की वकुला KMR 316, GPU 67 और VL 379 राजेंद्र मड़वा RU 8 और RU 3। और आपको बता दे कौनी की अनुशंसित किस्में हैं राजेंद्र कौनी 1। आप इन किस्मों की बुआई कर सकते हैं। मक्का की खेती करने वाले किसान भाई बहन ध्यान दे, खरीफ मक्का की बुआई आसमान साफ रहने पर ही करें। खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और ध्यान रखें कि बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नेत्रजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश जरूर डालें। अनुशंसित मक्का की किस्में जैसे सुवान, देवकी, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, राजेंद्र, संकर मक्का 3, गंगा 11 है। जो

सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें मिर्च, अगाध गोभी, टमाटर जैसी सब्जियों की नर्सरी तभी तैयार करें जब आसमान साफ हो और बागवानी करने वाले भाई बहन ध्यान दें, जुलाई अगस्त आम के पौधों के रोपण के लिए सबसे उपयुक्त समय होता है। कलमी पौधों की रोपाई 10x10 मीटर और बीजू पौधों की रोपाई 12x12 मीटर की दूरी पर करें। सघन बागवानी के लिए 5x5 मीटर और अम्रपाली के लिए 2.5x2.5 मीटर की दूरी रखें। फलदार वृक्षों में प्रति वर्ष 1 किलोग्राम नाइट्रोजन, 30 किलोग्राम फास्फोरस, 700 किलोग्राम पोटाश और 80 से 100 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद जरूर डालें। आपको बता दें इस समय केला के स्वस्थ सकर्स की रोपाई करें। लंबी किस्मों जैसे अल्पान, कंथली, मालभोग, चिनिया, G9 और बोनी किस्में जैसे ग्रैंड नेन, रोबस्टा, बसराई का चयन करना सबसे फायदेमंद होता है। लंबी किस्मों के लिए 2x2 मीटर और बोनी किस्मों के लिए 1.5x1.5 मीटर की दूरी रखें। प्रत्येक गड्ढे में 5 किलोग्राम गोबर की खाद, 500 ग्राम अरंडी की खली, 300 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट, 100 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश और 10 ग्राम कार्बोफ्यूरान मिलाना ना भूलें। रोपाई से पहले सकर्स को कार्बन डाइजिंग 2 ग्राम प्रति लीटर पानी से उपचारित करें। किसान भाई बहनों, टिश्यू कल्चर पौधे का उपयोग अधिक उत्पादन के लिए लाभकारी होता है। पशुपालक भाई बहन ध्यान दें, पशुओं में PPR, MFD यानी कि खुरपका मुंहपका और HS यानी कि गला घोटू, इन रोगों का खतरा अधिक है। इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण करवाएं, उन्हें साफ और सूखा रखें और बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। रोग के लक्षण अगर दिखाई दे तो तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें और ध्यान रखें कि पशुओं की बिना जरूरत के आवाजाही पर नियंत्रण रखें। गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए जून माह में अगर टीके नहीं लगाए गए हों तो इस महीने में टीके जरूर लगवा दें। पशुओं को संतुलित और पौष्टिक आहार दें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: कृषि विभाग द्वारा जारी पौधा संरक्षण सामयिक सूचना। खरीफ मौसम में ग्रास हॉपर के प्रकोप की संभावना रहती है। ग्रास हॉपर को किसान फुतका के नाम से भी जानते हैं। इसका व्यसक 1 से 7 सेंटीमीटर लंबा होता है। इसकी मादा पूरे मौसम में औसतन 200 अंडे देती है। अनुकूल वातावरण मिलने पर अंडे की संख्या 400 तक हो सकती है। व्यस्क मादा आधे से 2 इंच मिट्टी के अंदर अंडा देती है। अप्रैल मई में शिशु कीट 5 से 6 विकास की अवस्था के बाद 40 से 60 दिनों में व्यस्क बनते हैं। ग्रास हॉपर की संख्या को नियंत्रित रखने के लिए इसके प्राकृतिक शत्रुओं जैसे ब्लिस्टर बीटल, ग्राउंड बीटल, चिड़िया, छिपकली, मेढक, मकड़ी इत्यादि का संरक्षण करना चाहिए। ग्रास हॉपर कीट फसल की पत्तियों को 1 या 2 किनारों से खाता है। इसके उग्र आक्रमण की दशा में सिर्फ मध्य शिरा ही बचा रह जाता है। फलस्वरूप पौधे की वानस्पतिक वृद्धि प्रभावित होती है। इसकी संख्या प्रति वर्ग मीटर 3 से 7 होने पर इसके जैविक या रासायनिक नियंत्रण के उपाय करने चाहिए। फुतका कीट का प्रबंधन आप इस प्रकार कर सकते हैं। खेत में जगह जगह पक्षी बैठक लगाना, जैविक कीटनाशी के रूप में यूवेरिया बेसिना 2.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और मेटारीजियम स्पी का 2.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और नीम तेल 1500 ppm का 3 से 5 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से फसल पर छिड़काव करना चाहिए। रासायनिक कीटनाशी के रूप में क्लोरपाइरीफास 20% ईसी की 2.5 से 3 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोलकर या फिर लैम्डा साही हेलोथ्रीन 5% ईसी की 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें या फिर डेल्टा मेथ्रीन 2.8% ईसी की 1 से 1.5 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोलकर या फिर फिप्रोनील 5% SC का 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करना चाहिए। छिड़काव कार्य शाम के समय यानी कि दोपहर 4 बजे के बाद करना अच्छा होता है। विशेष सेवा या सुविधा के लिए अपने नजदीक के पौधा संरक्षण केंद्र या कृषि विज्ञान केंद्र अथवा पौधा संरक्षण सहायक निदेशक उद्यान या जिला कृषि कार्यालय से संपर्क करें। आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: लेडीज फर्स्ट। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों आपका बहुत बहुत बहुत स्वागत है आपके विशेष कार्यक्रम लेडीज फर्स्ट में। लेडीज फर्स्ट में आज हम बातें करने वाले हैं बहुत सारी हमेशा की तरह। और अभी गर्मी की जो बात करें तो गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ रही है कि क्या ही कहने, अभी चिलचिलाती धूप में बाहर जाने की इच्छा ही नहीं होती है, पर क्या करें, काम है तो जाना ही पड़ता है। और ऐसे में हमारी सेहत के ऊपर जो असर होता है वो तो होता ही है, साथ ही हमारे स्किन के ऊपर भी बहुत ज़्यादा असर होता है और बुरा असर होता है। ज़रूरी है कि हम अपनी सेहत का अंदर से भी ध्यान रखें और बाहर से भी हम अपनी स्किन का, यानी कि अपनी जो हमारी ये प्यारी सी चमड़ी होती है ना, इसका भी थोड़ा थोड़ा हम ध्यान रखें। और अगर हम बात करें तो आप, बहुत ज़रूरी है कि इस मौसम में आप बहुत सारा पानी पिए और साथ ही जो भी अभी मौसमी फल हैं उसका सेवन ज़रूर करें। तरबूज है, उसमें भी बहुत प्रचुर मात्रा में पानी होता है, तो उसका भी सेवन करें। इस तरीके के मौसमी फलों का सेवन करना, खूब सारा पानी पीना और जो एक बैलेंस डाइट होता है उसे मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। और साथ ही ऊपर से भी हम अगर अपने स्किन के देखभाल की बात करें तो आज

कर ही ले। जी हाँ, यानी कि थोड़ी सी स्किन केयर कर ही ले। आइए आज मैं आपको बताती हूँ कुछ ऐसे फेस पैक के बारे में जो बहुत ही आसान है लेकिन आपके स्किन को वो प्राकृतिक रूप से ठंडा रख सकते हैं। और इसके लिए घर पर कुछ जो रखी चीजें हैं उन्हीं चीजों से आज मैं आपको बताने वाली हूँ किस तरीके से आप फेस पैक बना सकते इस भीषण गर्मी में भी, बढ़ते तापमान के बाद भी आप अपने स्किन को बिल्कुल फ्रेश और ठंडा रख सकते हैं। आइए सबसे पहले हम तरबूज और बेसन के फेस पैक के बारे में बात करें। तरबूज में ना पानी की बहुत ज्यादा मात्रा होती है, उसे तो खाना है ही ढेर सारा, लेकिन खाने के बाद जो एक दो टुकड़े बच जाए ना उससे आप अपने त्वचा को बिल्कुल हाइड्रेटेड रख सकते हैं। कैसे तो आपको मैं बताती हूँ। इसके साथ आपको चाहिए होगा बेसन भी। जी हाँ, बेसन ना हमारे जो त्वचा होती है उसकी गंदगी को साफ करने में और जो भी हमारे चेहरे में एक्स्ट्रा तेल होता है, अतिरिक्त तेल होता है, उसे हटाने में ये मदद करता है। और साथ ही ये हमारी त्वचा को लंबे समय तक हाइड्रेटेड रखने के साथ ही हमारी त्वचा की जो चमक है उसे भी बढ़ाता है। गर्मी में होने वाली जो ड्राइनेस होती है और गर्मी में कई बार चिपचिपाहट की भी परेशानी होती है उसे भी कम करने में ये मदद करता है। तो आपको चाहिए होगा दो चम्मच तरबूज का रस, एक चम्मच बेसन और एक चम्मच शहद। शहद हमारे स्किन के लिए बहुत ही कमाल का होता है। आइए अब हम जानते हैं कि अब इन तीनों का इस्तेमाल कैसे करना है। एक कटोरी में आप तरबूज का रस निकाल ले, इसे अच्छी तरीके से बेसन और शहद मिलाकर गाढ़ा एक पेस्ट तैयार कर ले। और जैसे ही आपका ये जो फेस पैक तैयार होता है इसे पूरे चेहरे पर, गर्दन पर, चाहे तो आप अपने हाथों पर भी लगा सकते हैं और इसे 15 मिनट के लिए खुला छोड़ दें। और इसके बाद आप हमारे साथ जुड़े रहें 15 मिनट के लिए कोई हमारा बहुत ही विशेष प्रोग्राम।

हद तक फ्रेश रखने के लिए बेहतरीन माना जाता है, और साथ ही हमारे हमारे स्किन को तुरंत ठंडक पहुंचाने के लिए ये फेस पैक आप लगा सकते हैं। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो सन टैन को भी ये कम करने में काफ़ी मददगार साबित होता है और हमारी स्किन को भी मुलायम और फ्रेश बनाने में काफ़ी मदद करता है। आपको चाहिए क्या? आपको चाहिए होगा

0: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
1: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
0: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
1: आपकी सेहत की बातें,
0: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
1: युवाओं के रोजगार करियर की बातें,
0: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
1: वो कहाँ पर?
0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
1: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 22 से 26 जुलाई के दौरान आसमान में घने बादल छाए रहेंगे और जिले में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी चलने और हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 26 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 90 प्रतिशत और दोपहर में 70 से 80 प्रतिशत रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए। जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दें, पिछले कुछ दिनों में हुई वर्षा का लाभ उठाइए और आगे भी संभावना है कि वर्षा होगी, तो ऐसी स्थिति में धान की रोपाई के लिए व्यवस्था सुनिश्चित कर ले। रोपाई से पहले प्रति हेक्टेयर 25 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस, 30 किलोग्राम पोटाश और 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट का प्रयोग करें। आपको बता दें कि निचली जमीन के चारों ओर मजबूत मेड़ यानी कि बांध बनाकर वर्षा जल का संचयन कर ले, ताकि जरूरत पड़ने पर आप वर्षा के जल का सिंचाई में उपयोग कर सके। जो किसान भाई बहन श्री अन्न की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दें, मोटे अनाजों की खेती के लिए उचास भूमि का चयन करें। मड़वा की वकुला KMR 316, GPU 67 और VL 379 राजेंद्र मड़वा RU 8 और RU 3। और आपको बता दें कौनी की अनुशंसित किस्में हैं राजेंद्र कौनी 1। आप इन किस्मों की बुआई कर सकते हैं। मक्का की खेती करने वाले किसान भाई बहन ध्यान दें, खरीफ मक्का की बुआई आसमान साफ रहने पर ही करें। खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और ध्यान रखें कि बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नेत्रजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश जरूर डालें। अनुशंसित मक्का की किस्में जैसे सुवान देवकी, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, राजेंद्र संकर मक्का 3, गंगा 11 है। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, मिर्च, अगात, गोभी, टमाटर जैसी सब्जियों की नर्सरी तभी तैयार करें जब आसमान साफ हो। और बागवानी करने वाले भाई बहन ध्यान दें, जुलाई अगस्त आम के पौधों के रोपण के लिए सबसे उपयुक्त समय होता है। कलमी पौधों की रोपाई 10x10 मीटर और बीजू पौधों की रोपाई 12x12 मीटर की दूरी पर करें। सघन बागवानी के लिए 5x5 मीटर और अम्रपाली के लिए 2.5x2.5 मीटर की दूरी रखें। फलदार वृक्षों में प्रति वर्ष 1 किलोग्राम नाइट्रोजन, 30 किलोग्राम फास्फोरस, 700 किलोग्राम पोटाश और 80 से 100 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद जरूर डालें। आपको बता दें इस समय केला के स्वस्थ सकर्स की रोपाई करें। लंबी किस्मों जैसे अल्पान, कंथली, मालभोग, चिनिया, G9 और बोनी किस्में जैसे ग्रैंड नेन, रोबस्टा, बसराई का चयन करना सबसे फायदेमंद होता है। लंबी किस्मों के लिए 2x2 मीटर और बोनी किस्मों के लिए 1.5x1.5 मीटर की दूरी रखें। प्रत्येक गड्ढे में 5 किलोग्राम गोबर की खाद, 500 ग्राम अरंडी की खली, 300 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट, 100 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश और 10 ग्राम कार्बोफ्यूरान मिलाना ना भूलें। रोपाई से पहले सकर्स को कार्बन डाइजीम 2 ग्राम प्रति लीटर पानी से उपचारित करें। किसान भाई बहनों, टिश्यू कल्चर पौधे का उपयोग अधिक उत्पादन के लिए लाभकारी होता है। पशुपालक भाई बहन ध्यान दें, पशुओं में PPR, MFD यानी कि खुरपका मुंहपका और HS यानी कि गला घोटू, इन रोगों का खतरा अधिक है। इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण करवाएं, उन्हें साफ और सूखा रखें और बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। रोग के लक्षण अगर दिखाई दे तो तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें और ध्यान रखें कि पशुओं की बिना जरूरत के आवाजाही पर नियंत्रण रखें। गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए जून माह में अगर टीके नहीं लगाए गए हो तो इस महीने में टीके जरूर लगवा दें। पशुओं को संतुलित और पौष्टिक आहार दें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

0: കൃഷി. बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन. मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा. दोस्तों आपका स्वागत है हमारे किसान भाई बहनों को संबोधित विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में. उन्नत कृषि में आज हम बात करने वाले हैं धान की फसलों में खरपतवार का प्रबंधन किस प्रकार किया जा सकता है, और इस बारे में हमें विस्तार से बताने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर एस के चौधरी सर. सर आप हैं सस्य विज्ञान विभाग से, सर आप हैं असिस्टेंट प्रोफेसर कम जूनियर साइंटिस्ट. सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में.
1: धन्यवाद मैडम.
0: सर सबसे पहला प्रश्न यही है कि धान में खरपतवार प्रबंधन क्यों जरूरी है?
1: धान में खरपतवार प्रबंधन क्यों जरूरी है, ये बहुत ही गंभीर सवाल है. और इस सवाल का जवाब देने से पहले सबसे पहले तो मैं इसकी भूमिका के बारे में बताना चाहूँगा. जो देश की बढ़ती हुई जनसंख्या के साथ खाद्यान्नों की मांग को पूरा करना एक गंभीर चुनौती बनी हुई है. धान हमारे देश की प्रमुख खाद्य फसल है और इसकी खेती विभिन्न भौगोलिक परिस्थितियों में लगभग 4,22,00,000 हेक्टेयर में की जाती है. आजकल धान का उत्पादन लगभग 9,00,000 टन तक पहुंच गया है. राष्ट्रीय स्तर पर धान की औसत उपज 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है तथा बिहार राज्य में इसकी खेती लगभग 31,00,000 हेक्टेयर में की जाती है तथा इसकी उपज 70,00,000 टन तक तथा उत्पादकता 22.45 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है, जो कि इसकी क्षमता से काफी कम है. इसके कारण कई कारण प्रमुख हैं, जैसे कि कीट एवं व्याधियों का प्रबंधन, बीज की गुणवत्ता में कमी, और भी इसके अलावा जो खरपतवार का प्रबंधन की समस्या और गलत शस्य क्रियाएं, इस सब कारणों से जो औसत उपज है वो बिहार राज्य में कम है. धान की उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए वैज्ञानिक विधि से धान की खेती को अपनाना होगा. हमारे देश तथा बिहार राज्य में मुख्यतः दो परिस्थितियों में धान की खेती की जाती है, पहला वर्षा आधारित और दूसरा संचित अवस्था में.
0: जी सर, अगर अब हम बात करें कि धान में अगर खर पतवार का प्रबंधन ना करें तो खर पतवार से किस प्रकार से हानि पहुंचता है हमारे धान के फसल को?
1: सबसे पहले तो खर पतवार प्रायः फसल से नमी, पोषक तत्व, सूर्य का प्रकाश तथा स्थान के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, जिससे मुख्य फसल में उत्पादन में कमी आ जाती है. धान की फसलों में खर पतवार से लगभग 15-85% तक का नुकसान होता है. कभी कभी यह नुकसान 100% तक पहुंच जाता है. सीधे बोए गए धान में खरपतवार से नुकसान रोपाई किए गए धान की तुलना में अधिक होता है. पैदावार में कमी के साथ साथ खरपतवार धान में लगने वाले रोगों के जीवाणु एवं कीट व्याधियों का भी आश्रय देता है. कुछ खरपतवार के बीज धान के बीज के साथ मिलकर उसकी गुणवत्ता को खराब कर देता है. इसके अतिरिक्त खरपतवार सीधे बोए गए धान में 20 से 40 किलोग्राम नत्रजन, 5 से 15 किलोग्राम स्फुर और 15 से 50 किलोग्राम पोटाश तथा रोपाई वाले धान में 4 से 12 किलोग्राम नत्रजन, 1 किलोग्राम स्फुर और 7 से 14 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से शोषित कर लेता है तथा धान की फसल में पोषक तत्व से वंचित कर देता है और यह डायरेक्टली जो उपज है उसको कम कर देता है.
0: तो धान के फसलों में कौन कौन से प्रमुख खरपतवार हैं जो उगाते हैं?
1: मुख्यतः धान में या कोई भी फसल में तीन तरह के खरपतवार पाए जाते हैं. पहला एक चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार, दूसरा है सकरी पत्ती वाले खरपतवार और एक होता है मोथा कुल के खरपतवार. उसमें से जो चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार है, जिसमें नाम है जो इक्लिप्टा अलवा जिसको कहते हैं, कैना भी नाम से जानते हैं, सिजुलिया एक्जेलरिस है, कोमेलिना बेंगेलसिस है, एजीटीटम कोनोजॉइट्स जो उस फैमिली का प्रजाति का जो घास है वो निकल आते हैं, और उस तरह से लाल साग को भी देखा गया है जो कभी कभी निकल आते हैं खरीफ मौसम धान के फसल में. इसके अलावा जो सकरी पत्ती वाले खरपतवार है, जिसको खास घास कुल के खरपतवार है, उसमें जो है छोटा सावक जिसको हम लोग इकाइनोकुलोना कुलोनम भी कहते हैं. उसके बाद एक सावक होता है जो इकाइनोकुलोना क्रुसिगेली होता है. इसके अलावा जो है मरुआ जिसको एलोसिन इंडिका. इसके अलावा एरगोटिस जेपोनिका जो मुरमुर नाम से जो खरपतवार है वो प्रायः सकरी पत्ती वाले खरपतवार है. इसके अलावा जो मोथा कुल के खरपतवार आते हैं उसमें से जो साइप्रस इरिया है, साइप्रस फैमिली के मुख्य खरपतवार आते हैं, जिसमें साइप्रस रोटेंडस, साइप्रस डिफॉर्मिस जो कि स्केपरस मेरिसिमस, इत्यादि ये जो जो खरपतवार है वो मोथा कुल के खरपतवार होते हैं।
0: तो सर कौन सी स्टेज पे किसान भाई बहन धान की फसलों में खरपतवार का प्रबंधन करना शुरू कर देते हैं?
1: धान की फसल में खरपतवार से होने वाले नुकसान, खरपतवारों की संख्या, धान की किस्म एवं फसल से प्रतिस्पर्धा के समय पर निर्भर करता है। घास के कुल के खरपतवार जैसे सावा, कोदो, फसल के प्रारंभिक एवं चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार जैसे कि सिजुलिया जिसको थुकचट्टा भी कहते हैं, इसके अलावा जो वन साग के जो एमरेंथस होता है, वो सब जो चौड़ी पत्ती के खरपतवार है वो फसल के लेट मतलब कि देरी से निकलते हैं। इसके अलावा जो है धान में बुआई के लगभग 15 से 45 दिन तथा रोपाई वाले धान में रोपाई के 35 से 45 दिन के धान में बाद समय में खरपतवार प्रतिस्पर्धा के दृष्टि से क्रांतिक या नाजुक दिन के बाद का समय खरपतवार प्रतिस्पर्धा के लिए आते हैं। इस दिनों में खरपतवार से मुक्त रखना आर्थिक दृष्टि से लाभदायक होता है तथा फसल के उत्पादन में भी अधिक प्रभावित नहीं करता है।
0: तो अब बात करते हैं कि खरपतवार का प्रबंधन कैसे करना चाहिए।
1: खरपतवार का प्रबंधन बहुत तरह से करते हैं, जिसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि खरपतवार को सही समय पर नियंत्रण किया जाना चाहिए, चाहे तरीका कोई भी हो। धान की फसल में खरपतवार की रोकथाम निम्न तरीके से की जा सकती है। पहला है निवारक विधि। इस विधि में वो सस्य क्रियाएं हैं जिनके द्वारा धान की खेती में खरपतवार के प्रवेश को रोका जा सकता है, जैसे कि प्रमाणिक बीजों का प्रयोग करके, अच्छी सरी गोबर की खाद जो हम खेत को तैयारी करते समय देते हैं उसको अपना करके, कंपोस्ट खाद का प्रयोग करके, सिंचाइयों की नाली साफ सफाई करके, खेत की तैयारी एवं बुआई में प्रयोग किए जाने वाले यंत्र की बुआई से पूर्व साफ सफाई करके। इसके अलावा जो है यांत्रिक विधि है, जो कि खरपतवार को पर काबू पाने के लिए एक सरल एवं प्रभावी विधि है। इस विधि में किसान अपने हाथ या खुरपी की सहायता से खरपतवार का नियंत्रण करते हैं। खेतों में हो चलाकर या पेडीवीडर चलाकर खरपतवार का रोकथाम करते हैं। समानता धान की खेती की फसल में दो निराई गुड़ाई, पहली बुआई रोपाई के 20 से 25 दिन बाद एवं दूसरी 40 से 45 दिन बाद करने से खरपतवारों को प्रभावी नियंत्रण किया जा सकता है तथा फसलों की पैदावार में काफी वृद्धि की जा सकती है। इसके अलावा जो सस्य क्रिया विधि है, उसमें भी परिवर्तन करके खरपतवार को आप अच्छी तरीके से प्रबंधन कर सकते हैं। इसमें सबसे अच्छा है बुआई से पूर्व खरपतवार को नष्ट करके, इसको स्टेल सीड बेड टेक्निक भी कहते हैं। इसमें कहते हैं खरीफ की पहली बारिश के बाद जब खरपतवार 2 से 3 पत्ती के हो जाए तो इसको शाकनाशी जैसे ग्लाइफोसेट पाराक्वाइट जो केमिकल जो शाकनाशी है उसके द्वारा स्प्रे करके, उसका एप्लीकेशन करके आप यांत्रिक विधि जोताई करके नष्ट कर सकते हैं, जिससे मुख्य फसल में खरपतवार के प्रकोप में काफी कमी आती है। इसके अलावा जो है गहरी जुताई करके भी आप खरपतवार का नियंत्रण कर सकते हैं। इसमें रबी की फसल की कटाई के तुरंत बाद गर्मी के मौसम में एक बार गहरी जुताई कर देने से खरपतवार के बीज एवं उसके कंद ऊपर आ जाते हैं तथा तेज धूप में जलकर ऊपरी अंकुरण क्षमता खो देते हैं। इस विधि से कीट एवं बीमारियों का भी प्रकोप कम हो जाता है। रोपाई वाले खेत में पडलिंग करके खरपतवार की समस्या को कम किया जा सकता है। पडलिंग एवं हैरो करने के बाद खेत में पाटा लगाकर खेत को समतल करके खेत में पानी भरकर लंबे समय तक खरपतवार को रोकथाम आसानी से कर सकते हैं। इसके अलावा जो है किस्मों को चयन, जो सही चयन करके आप उसका भी खरपतवार का नियंत्रण कर सकते हैं। इसमें क्या है, जहां पर खरपतवार के रोकथाम के साधनों की उपलब्धता में कमी हो वहां पर ऐसी धान की किस्म का चुनाव करना चाहिए जिनकी प्रारंभिक बढ़ावार खरपतवारों की तुलना में अधिक हो, ताकि ऐसी प्रजातियां खरपतवारों को आसानी से प्रतिस्पर्धा करके उन्हें नीचे दबा सकें। प्रायः यह देखा गया है कि किसान भाई असिंचित उपजाऊ भूमि में धान का छिटकवा विधि से बोते हैं। छिटकवा विधि से कतारों में बोई गई धान की तुलना में अधिक खरपतवार उगते हैं तथा उनके नियंत्रण में भी कठिनाई आती है। अतः धान को हम कतार में ही बोना लाभदायक होता है और उसमें खरपतवार की जो समस्या है वो छिटकवा विधि से कम होता है। इसके अलावा जो कतार की जो बीच की दूरी है उसको आप मेंटेन करके भी खरपतवार को अच्छे से प्रबंधन कर सकते हैं। इसमें करते हैं धान की कतारों के बीच की दूरी कम रखते हैं, खरपतवार उगने के लिए पर्याप्त स्थान नहीं मिल पाता है। इसी तरह बीज की मात्रा में वृद्धि करने से भी खरपतवार की संख्या एवं वृद्धि में कमी की जा सकती है। धान की कतारों को संकरा करने से लगभग 15 सेंटीमीटर एवं अधिक बीज की मात्रा देने से प्रयोग करने से खरपतवार को वृद्धि की दबाया जा सकता है। उचित फसल चक्र अपनाकर भी खरपतवार का प्रबंधन करते हैं। एक ही फसल को बार बार एक खेत में उगाने से भी खरपतवार की समस्या और भी जटिल हो जाती है तथा उसका जो रख रखाव है, जो एक ही इकोलॉजी का जो खरपतवार है वो ज्यादा उगते हैं। अतः आवश्यक है कि पूरे वर्ष एक ही खेत में एक ही फसल लेने की बजाय फसल के बाद उसमें दूसरी फसल जो पल्सेज है, ऑयल सीड है, अगर दूसरी कोई भी परिवार का फसल है उसको लेने से खरपतवार को कम किया जा सकता है। सिंचाई एवं जल का प्रबंधन करके भी खरपतवार का प्रबंधन करते हैं। रोपाई किए गए धान में पानी की उचित प्रबंधन करके खरपतवार को रोकथाम की जा सकती है। अनुसंधान के परिणामों में यह पाया गया है कि धान की रोपाई के 2-3 दिन बाद से 1 सप्ताह तक पानी 1-2 सेंटीमीटर खेत में समान रूप से रहना चाहिए। उसके बाद पानी का स्तर को 5-10 सेंटीमीटर तक समान रूप से रखने से खरपतवार की वृद्धि को आसानी से रोका जा सकता है। पडलिंग किए गए धान, सीधे बोए धान की खेत में जब फसल 30-40 दिन का हो जाए तो उसमें पानी भरकर खेत की विपरीत दिशा में जुताई, क्रॉस जुताई करके पाटा लगा देने से भी खरपतवार की रोकथाम की जा सकती है। उर्वरक का प्रयोग करके भी खरपतवार का प्रबंधन करते हैं। भूमि में पोषक तत्व की मात्रा, उर्वरक देने की विधि एवं समय के फसल एवं खरपतवार की वृद्धि पर प्रभाव पड़ता है। फसल एवं खरपतवार दोनों ही भूमि में निहित पोषक तत्व के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। खरपतवार नियंत्रण करने से पोषक तत्व की उपलब्धता फसल को ही मिले सुनिश्चित की जा सकती है। पोषक तत्व की अनुमोदित मात्रा को ठीक समय एवं उचित तरीके से देने पर धान की फसल इनका समुचित उपयोग कर पाता है। असिंचित उपजाऊ भूमि जहां खरपतवार समस्या अधिक होती है वहां नाइट्रोजन की आरंभिक मात्रा में बुआई समय न देकर पहली निराई गुड़ाई के बाद देना लाभदायक रहता है तथा नाइट्रोजन को धान में की लाइनों के पास डालना चाहिए जिससे कि इसका ज्यादा भाग फसल को मिल सके।
0: जी सर, ये तो आपने बताया अलग अलग तरीकों से किस प्रकार हमारे किसान भाई बहन धान की फसलों में खरपतवार का प्रबंधन कर सकते हैं। सर, अब आप हमें विस्तार से बताइए कि रासायनिक विधि से खरपतवार का प्रबंधन कैसे किया जा सकता है और इस विधि के दौरान कौन कौन से रसायनों का इस्तेमाल कर सकते हैं हमारे किसान भाई बहन।
1: निश्चित ही रासायनिक विधि बहुत ही कारगर, जितने भी विधि बताएं उसमें सबसे ज्यादा कारगर रासायनिक विधि को माना जाता है। धान की फसल में खरपतवारों की रोकथाम की यांत्रिक विधियां तथा हाथ से निराई गुड़ाई यद्यपि काफी प्रभावी पाई गई है लेकिन विभिन्न कारणों से इसका व्यापक प्रचलन नहीं हो पाया है। इनमें से मुख्य कारण यह है कि धान के पौधे एवं समय खरपतवार जैसे जंगली धान एवं सावा के पौधे में पुष्प अवस्था के पहले काफी समानता पाई जाती है, इसलिए पहले साधारण किसान निराई गुड़ाई के समय आसानी से इनको पहचान नहीं पाते हैं। बढ़ती हुई मजदूरी के कारण भी में विधियां आर्थिक दृष्टि से लाभदायक नहीं है। फसल खरपतवार प्रतिस्पर्धा के क्रांतिक समय में मजदूरों की उपलब्धता में कमी, खरीफ मौसम का असामान्य मौसम जिसके कारण कभी कभी खेत में अधिक नमी के कारण यांत्रिक विधि से निराई गुड़ाई संभव नहीं हो पाता है। अतः उपरोक्त परिस्थितियों में खरपतवार का शाकनाशियों द्वारा नियंत्रण करने से प्रति हेक्टेयर लागत मूल्य में कमी आती है तथा समय की भारी बचत होती है। लेकिन शाकनाशी रसायनों का प्रयोग करने के समय उचित मात्रा, उचित ढंग तथा उपयुक्त समय पर प्रयोग का सदैव ध्यान रखना चाहिए, अन्यथा लाभ के बजाय हानि की संभावना भी बनी रहती है। धान की फसल के प्रयोग की जाने वाली प्रमुख रासायनिक बहुत से हैं जिसमें कि जो हम शुरू के ही समय बताए थे, जो धान में मुख्यतः 3 तरह के खरपतवार पाई जाती है, चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार, सकरी पत्ती वाले खरपतवार और साथ ही साथ मोथा कुल के खरपतवार। उसको मारने के लिए चाहे उसका प्रबंधन करने के लिए निम्न रसायन का प्रयोग करना किसान के भाइयों के द्वारा उचित होता है। जिसमें से सबसे पहला है ब्यूटाक्लोर, जो कि बहुत अच्छी दवाई है, जिसको मिंचेट नाम से भी जाना जाता है, जो कि लगभग बुआई एवं रोपाई के 3 से 4 दिन के बाद करना अति आवश्यक है। ये लगभग में इसका जो मात्रा है वो कम से कम 1.5 से 2 लीटर सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर के हिसाब से देना चाहिए, जो कि सिर्फ घास कुल के खरपतवार को ये नियंत्रित करता है। इसके अलावा जो है एलिलोफॉस एलिलोगार्ड, जिसका मात्रा जो है 400 से 500 सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर है, ये भी प्री इमरजेंस जो है उसके लिए उपयोग करते हैं, वो भी बुआई के 2-3 से 4 दिन के बाद ही उसको देना लाभदायक है। ये भी घास एवं मोथा कुल के खरपतवार के लिए कारगर है। इसके अलावा जो है बिस्पेरीबैग सोडियम नाम का एक दवा है, जो कि इसका जो 10% इसी की मात्रा पाया जाता है, जो कि लगभग में 250 ml प्रति हेक्टेयर की दर से इसका दर होता है, और ये 25 से 30 दिन के बाद देना उपयुक्त होता है। ये चौड़ी पत्ती एवं घास कुल के खरपतवार के लिए कारगर होता है। इसके अलावा जो है एक ऑक्सीडाइजोन जो है कम से कम 750 से 1500 ग्राम ए प्रति हेक्टेयर की दर से है, जो कि घास और मोथा और चौड़ी पत्ती तीनों के लिए ये बहुत ही कारगर दवा है। इसके अलावा किसान भाइयों जो नर्सरी लगाते हैं उसमें भी बहुत से खरपतवार का प्रकोप रहता है, उसमें भी ये दवा जो है वो कारगर है, जैसे कि पेट्राक्लोर, जो कि 50% इसी का मात्रा पाया जाता है, जिसका डोज है 750 ml से 1000 ml AI प्रति हेक्टेयर। यह घास मोथा चौड़ी पत्ती कुल के खरपतवार के लिए बहुत ही कारगर है, जो कि आप इसको धान के नर्सरी में भी और जब रोपा करते हैं उस समय भी देना बहुत ही लाभदायक। जो कि एक और भी दवा है जो चौड़ी पत्ती के खरपतवार के लिए सबसे अच्छा माना जाता है, जो कि 2,4-D नाम का एक दवा है, जिसका जो डोज है 0.5 लीटर से 1 लीटर ग्राम AI प्रति हेक्टेयर के दर से है, रोपाई के 20 से 25 दिन के बाद देना कारगर पाया गया है, और ये सिर्फ चौड़ी पत्ती के खरपतवार के लिए उपयुक्त होता है। इसके अलावा जो है बहुत से दवा है, जैसे ऑल मिक्स जो दो हर्बिसाइड दो शाकनाशियों का कॉम्बिनेशन है, जिसमें क्लोरोमिरोन और मेटसल्फिरोन है, ऑल मिक्स करके आता है, वो 4 ग्राम AI प्रति हेक्टेयर के दर से पाया जाता है, जिसमें कि चौड़ी पत्ती मोथा कुल के खरपतवार के कारगर है। जिन किसान भाइयों को चौड़ी पत्ती और मोथा कुल के खरपतवार को मारना है, उसमें इथॉक्सी सल्फिरोन सनराइज के नाम से है, जो कि 100 ml प्रति AI प्रति हेक्टेयर के दर से है, जिसमें चौड़ी पत्ती और मोथा कुल के खरपतवार को खत्म करते हैं। इसके अलावा जो किसान भाइयों सिर्फ मोथा को ही मारना है, उसमें है एजीम सल्फिरोन नाम का एक है, जिसमें 50 ग्राम AI प्रति हेक्टेयर के दर से देते हैं, जो कि सिर्फ मोथा के ही घास जो कुल है उसको ये कारगर होता है। इसके अलावा जो भी और भी जो खरपतवार है, इतना अगर कोई भी अगर शाकनाशी अवेलेबल है उपलब्ध है, उसमें कोई भी खरपतवार नाशी अगर आप प्रयोग करते हैं, तो निश्चित ही आपको जो रासायनिक विधि से खरपतवार प्रबंधन में सहायता मिल सकता है।
0: जी सर, सर आप अंत में हमारे किसान भाई बहनों को कोई संदेश देना चाहेंगे?
1: संदेश यही है, जो अगर आपके खेत में खरपतवार से संबंधित कोई भी समस्या है, तो सबसे पहले तो उसका पहचान करना बहुत जरूरी है, उसके उपरांत ही आप कोई भी जो उसका उपाय है उसका आप उपयोग करें, नहीं तो लाभ के बदला हानि ही हो सकता है। और साथ साथ पहले आप उसकी पहचान करें, उसके बाद ही उस शाकनाशियों को उसके जो अगेंस्ट जो उसके में काम करें उसका प्रयोग करें।
0: बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो हमारे किसान भाई बहनों, जिस तरीके से सर ने बताया, उन तरीकों को अपनाकर आप धान की फसलों में खरपतवार का प्रतिबंधन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, लेकिन जाने से पहले खास बात की अपना और अपनी फसलों का रखें विशेष ध्यान और अपनी मिट्टी से करें ढेर सारा प्यार। नमस्कार। उन्नत कृषि
2: नमस्ते क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
3: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
2: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना है। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
4: सुनो सुनो सुनो सभी, एक जरूरी बात, आया मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण फिर एक बार। अगर आपके घर या पड़ोस में है 5 साल या उससे छोटे बच्चे जिनका कोई भी टीका छूट गया हो, तो सोचते क्या हो, जल्दी से आशा दीदी से करो बात। बच्चों को स्वास्थ्य केंद्र है लेकर जाना और उनका टीकाकरण है।

0: टीको, ये मौसम है टीकाकरण करवाने का, तो सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
2: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in।
3: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 ग्रीन FM।
4: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों आपका स्वागत है आपके कार्यक्रम लेडीज फर्स्ट में, और लेडीज फर्स्ट में आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, और ये विषय है खास तौर से उन महिलाओं के बारे में जो कामकाजी हैं। और आज के समय में हर दूसरी महिला कामकाजी हैं और होना भी चाहिए, क्योंकि ये उन्हें इंडिपेंडेंट बनाता है, आत्मविश्वासी बनाता है, लेकिन कई बार उनके साथ कुछ ऐसा घटित होता है कि उनका कॉन्फिडेंस, उनका आत्मविश्वास डगमगा जाता है, और ख़ास तौर से ये उसी जगह पर होता है जहां वो काम करने जाती हैं। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं कामकाजी महिलाओं के एक बेहद ही अच्छे साथी के बारे में, एक ऐसे साथी के बारे में जो उन्हें उनके कार्यस्थल पर उन्हें सुरक्षित महसूस कराता है। और उनका ये साथी है, या फिर कहें कि उनकी ये दोस्त है, शी बॉक्स। शी बॉक्स क्या है, आइए इसके बारे में हम जानते हैं। दोस्तों कई बार ना क्या होता है कि महिला अपने काम पे निकली, बहुत ही अच्छे से निकली, लेकिन वहाँ पर उन्हें असहज महसूस होता है, क्योंकि उनके साथ कोई अनुचित व्यवहार कर देता है या फिर कोई उनसे ऐसी अभद्र बातें कह देता है कि महिला को बहुत बुरा लगता है, या फिर किसी लड़की को बहुत अजीब महसूस होता है। ऐसे में वो परेशान हो जाती है कि किससे कहें, क्या कहें और कैसे कहें, इसका क्या निदान निकलेगा, इसका समाधान निकलेगा। और आज इन्हीं सारे सवालों का जवाब हम जानने वाले हैं। सबसे पहले तो हम जानेंगे कि महिलाओं का, कामकाजी महिलाओं का साथी या फिर कामकाजी महिलाओं की दोस्त कौन है, शी बॉक्स ये क्या है। अगर मैं आपको शी बॉक्स का पूरा नाम बताऊं तो वो है सेक्सुअल हरासमेंट इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स, यानी कि ये एक ऐसा बॉक्स है जहां पर आप यौन उत्पीड़न के बारे में बातें बता सकते हैं, शिकायत दर्ज करा सकते हैं। दोस्तों ये भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा शुरू किया गया है, और एक ये ऑनलाइन पोर्टल है, यानी कि आप घर बैठे बैठे या ऑफिस में ही आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। और इसका उद्देश्य बिल्कुल साफ है कि कामकाजी महिलाओं को सुरक्षित रखना। पता है सबसे जरूरी बात ये है कि अब चुप रहना नहीं है, डरना नहीं है, बल्कि जरूरी है कि आप अपनी आवाज उठाएं और आप इसे संबंधित विभाग तक पहुंचें, तभी आप खुद को सुरक्षित रख पाएंगे। और सिर्फ अपने आप को नहीं, बल्कि जिन्होंने आपके साथ गलत व्यवहार किया है ना, वो सिर्फ आपके साथ व्यवहार नहीं करेगा गलत, और लड़कियों के साथ भी वो गलत व्यवहार ही करेगा। इसलिए ज़रूरी होता है कि वैसे लोगों को जितनी जल्दी हो सके रोक दिया जाए। और आप आवाज़ उठाएंगे तो यकीन मानिए कि आपका डर ख़त्म होगा, लेकिन उस इंसान के अंदर डर ज़रूर आ जाएगा कि अब हमें ऐसी कोई भी घटना को अंजाम नहीं देना है जिससे किसी महिला को परेशानी हो। शी बॉक्स कैसे काम करता है और ये कानून से कैसे जुड़ा है, आइए इसके बारे में जानते हैं। अगर हम शी बॉक्स के कानून के बारे में बात करें तो सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ विमेन एट वर्कप्लेस एक्ट, यानी कि पॉश एक्ट 2013 में आया था, और इसी के तहत शी बॉक्स को लाया गया था। और अगर हम बात करें कि इस कानून के अनुसार क्या क्या होता है, तो सबसे पहले तो जरूरी है कि हर संस्था के अंदर शिकायत की जांच 90 दिनों के अंदर पूरी हो जानी चाहिए, और इसके साथ ही ये भी जरूरी होता है कि महिला अपनी पहचान को गोपनीय रख सकती है। अगर वो शिकायत कराती भी है तो ऐसे में उनकी पहचान बिल्कुल गोपनीय रहती है। और कौन शिकायत कर सकता है, तो जो भी सरकारी कर्मचारी है या फिर प्राइवेट कंपनी में भी अगर आप काम कर रही हैं तो भी आप शिकायत कर सकती हैं, यहाँ तक कि अगर आप इंटर्न हैं तो भी आप शिकायत कर सकती हैं। आप कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रही हैं या फिर आप अस्थायी कर्मचारी हैं और आपके साथ कोई दुर्व्यवहार हुआ है तो भी आप शिकायत कर सकती हैं। ये प्लेटफॉर्म बिल्कुल आपके लिए ही है, आपको सुरक्षित करने के लिए है, आपको ये बताने के लिए है कि आप अपने घर के बाहर, आप अपने वर्क प्लेस पे भी बिल्कुल सेफ हैं। दोस्तों, अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि हम शिकायत कैसे दर्ज कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको शी बॉक्स के आधिकारिक वेबसाइट पे जाना होगा। अगर हम शी बॉक्स के आधिकारिक वेबसाइट के बारे में आपको बताएं तो इसका आधिकारिक वेबसाइट है shebox.wcd.gov.in, यानी कि shebox.wcd.gov.in। इस वेबसाइट पर आप जाइए और आपकी जो भी शिकायत है आप दर्ज कराइए और यकीन मानिए 90 दिनों के अंदर आपको समस्या का समाधान मिल जाएगा और आपकी जो भी शिकायत है उसके बारे में बिल्कुल काम किया जाएगा और साथ ही आपकी पहचान भी गोपनीय रखी जाएगी। आप जैसे ही आधिकारिक वेबसाइट पर जाते हैं वहाँ पर आपसे आपका जो भी विवरण है वो पूछा जाएगा और आपके साथ जो घटना हुई है उसका भी विवरण वहाँ पर आपसे पूछा जाएगा और ये सारी चीज़ें आप वहाँ पर सबमिट कर देंगे। और ध्यान रखें कि ये प्रोसेस थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो उनमें छोटी सी छोटी जो डिटेल होती है ना वो भी बहुत ज़रूरी होती है। और अगर आप चाहते हैं कि आपको आपकी परेशानी का समाधान मिले तो जो भी वहाँ पर पूछा जा रहा है बिल्कुल ईमानदारी से लिख दीजिए, भले ही वो थोड़ा लंबा हो पर लिखिए ज़रूर। और इसके बाद आपको एक ट्रैकिंग नंबर मिलता है जिसे आप अपनी शिकायत की स्थिति देख सकते हैं कि आपने जो शिकायत की है वो अब कहाँ तक पहुँची है। दोस्तों, आखिर शी बॉक्स ज़रूरी क्यों है ये तो बिल्कुल आप समझ ही गई होंगी, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कई महिलाएं डर के कारण चुप रह जाती है कि लोग क्या कहेंगे, कहीं नौकरी चली गई तो क्या होगा। और साथ ही सबसे बड़ा जो हमारे मन में सवाल होता है वो ये होता है कि कोई विश्वास नहीं करेगा। कई बार लोग कहते हैं कि ये लड़की बहुत नाटक कर रही है, इनके तो बहुत नखरे हैं। ऐसी स्थिति भी उत्पन्न कर दी जाती है कि महिलाएं ये सारी बातें सोचकर ही चुप रह जाती है और उन्हें लगता है कि अगर बात करेंगे तो बात बढ़ेगी। जी नहीं, याद रखिए कि अगर आप बात करेंगे तो बात रुकेगी और आप अपने साथ साथ दूसरी महिलाओं को भी सुरक्षित करेंगी, क्योंकि आज जो आपके साथ कोई गलत कर रहा है ना तो वो कल दूसरों के साथ भी गलत करेगा और उसका मन लगातार बढ़ता जाएगा और आज वो छोटी सी घटना को अंजाम दे रहा है कल किसी बड़ी घटना को अंजाम दे सकता है। इसलिए ये मत सोचिए कि लोग क्या कहेंगे, आपकी नौकरी चली गई तो क्या होगा और कोई विश्वास नहीं करेगा तो क्या होगा। हो सकता है कि शुरुआत में आपके साथ बहुत कम लोग खड़े हों लेकिन आपका साथ देने के लिए शी बॉक्स है। और ध्यान रखिए कि आपकी नौकरी नहीं जाएगी क्योंकि आपकी जो पहचान है वो बिल्कुल गोपनीय रखी जाएगी। और लोग क्या कहेंगे ये हम क्यों सोचें, बस इतना सोचिए कि आप खुद को सुरक्षित रखिए और जब आप अपनी जगह पर सही होती हैं तो उसका परिणाम भी सही ही आता है। ध्यान रखिए कि कोई भी चुप्पी समस्या को ख़त्म नहीं करती है बल्कि उसे और मजबूत कर देती है। इसलिए शी बॉक्स महिलाओं को ये भरोसा देता है कि उनकी बात सुनी जाएगी। दोस्तों, कई बार हम ये समझ ही नहीं पाते हैं कि कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न क्या होता है। दोस्तों, यौन उत्पीड़न के अंतर्गत बहुत सारी घटनाएं आ सकती है। मान लीजिए आपके ऊपर किसी ने अनुचित टिप्पणी कर दी, मोबाइल पर आपको कोई अश्लील संदेश भेजता है या फिर किसी भी तरीके से आपको कोई अश्लील संदेश भेजता है या फिर आपको कोई बिना अनुमति के छूता भी है तो ये भी यौन उत्पीड़न का मामला होता है। अगर आपको किसी ने ऐसी कोई बात कह दी, आपके शरीर पर कोई टिप्पणी कर दी तो ये भी यौन उत्पीड़न ही है। और कई जगहों पर ये देखा जाता है कि प्रमोशन के बदले गलत प्रस्ताव दिए जाते हैं, प्रमोशन के बदले गलत फेवर मांगे जाते हैं तो ये भी यौन उत्पीड़न का ही मामला है। और आप बहुत विश्वास के साथ बिना डरे शी बॉक्स पर इन बातों के कंप्लेन कर सकते हैं। और अगर आपको कोई डरा रहा है, आपके ऊपर कोई दबाव बना रहा है किसी चीज़ के लिए तो भी आप शी बॉक्स पे कंप्लेन कर सकते हैं। अगर इनमें से कुछ भी हो रहा है आपके साथ तो ध्यान रखिए कि ये मजाक नहीं है, ये अपराध है। अगर कोई मजाक मजाक में भी आपसे कुछ अश्लील बातें कर रहा है या कोई ऐसी टिप्पणी कर रहा है, अगर उसे आपको असहज महसूस हो रहा है तो उसे कहिए, रोकिए कि मुझे बुरा लग रहा है। और अगर इसके बाद भी वो रुकता नहीं है और अपनी हरकतों को जारी रखता है तो आप कंप्लेन करने के लिए बिल्कुल आज़ाद हैं। और दोस्तों, जब तक हमारी नारी बोलेंगी नहीं ना तब तक व्यवस्था नहीं बदलेगी। और जब नारी बोलती है तो सबसे ज़रूरी होता है कि हम नारी ही उनका साथ दें, डटकर उनका साथ दें, तभी अन्याय खत्म होगा। क्योंकि आज लगभग हर जगह पर जहाँ भी महिलाएं काम कर रही है वहाँ कोई ना कोई एक ऐसा इंसान ज़रूर होता है जिसके इरादे गलत होते हैं, जिसकी सोच गलत होती है और कई बार ऐसे लोग मजाक मजाक में ऐसी बातें कह जाते हैं जो आपको बिल्कुल असहज कर देता है, और कुछ पल के लिए नहीं बल्कि वो बातें बहुत लंबे समय तक हमारे मन में रह जाती है और हम उस बारे में सोचते रहते हैं और खुद को समझाते रहते हैं कि मजाक ही तो था। जी नहीं, ये मजाक नहीं था। अगर आपको कोई बात असहज कर रही है तो आप साफ साफ कहिए कि मुझे ये बात नहीं पसंद है। अगर सामने वाला समझदार है और वो उसने जानबूझकर आपके साथ वो मजाक नहीं किया है तो वो समझ जाएगा कि हाँ इससे नहीं पसंद है तो आगे से मैं ऐसा नहीं करूंगा। लेकिन अगर उसने जानबूझकर किया है और आपको असहज महसूस कराने के लिए ही किया है तो वो नहीं रुकेगा और वो सिलसिला दोहराएगा, तो फिर आपको उसे रोकना होगा, आप उसके खिलाफ कंप्लेन कर सकती हैं। अच्छा, जो भी हमारी महिला मित्र सुन रही हैं या फिर जो पुरुष भी सुन रहे हैं, क्या आपके कार्यस्थल पर कोई इंटरनल कमिटी है जहां पर ऐसे परेशानियों का समाधान किया जाता है? क्या आप जिस संस्था में काम करते हैं वहां पर पोष की यानी कि POSH की ट्रेनिंग होती है? इस ट्रेनिंग में ये समझाया जाता है कि क्या सही है, क्या गलत है, यौन उत्पीड़न क्या है और क्या क्या व्यवहार अनुचित माना जाता है, मजाक और उत्पीड़न में क्या फर्क होता है, क्योंकि कई बार लोग मजाक और उत्पीड़न में फर्क भूल जाते हैं और कई बार लोग जानबूझकर ही ऐसी हरकतें करते हैं और उसे मजाक का नाम दे देते हैं। शिकायत कैसे दर्ज कर सकते हैं ये भी पोष की ट्रेनिंग में बताया जाता है, और IC की भूमिका क्या है यानी कि इंटरनल कमिटी की भूमिका क्या है ये भी आपको पोष ट्रेनिंग में बताया जाता है। और महिलाओं के बारे में तो हमने बात कर ली, उनके लिए शी बॉक्स है और महिलाएं खुद भी उनके लिए हैं, लेकिन पुरुषों का साथ भी बहुत जरूरी होता है। पुरुषों के लिए बस एक छोटा सा संदेश ये है कि ये जो मुद्दा है ना, ये सिर्फ महिलाओं का मुद्दा नहीं है। सम्मान देना दोस्तों हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है, क्योंकि अगर आप दूसरी महिला को सम्मान देंगे तो आपके घर के जो लड़के हैं ना वो भी यही सीखेंगे कि महिलाओं को कैसे सम्मान देना है। कहीं ना कहीं आप एक बेहतर समाज बनाने के लिए आप अपनी तरफ से एक छोटी सी कदम उठाते हैं तो आपके घर की लड़कियां भी सुरक्षित रहती है। तो दोस्तों ये सिर्फ महिलाओं की नहीं पुरुषों की भी जिम्मेदारी है कि अगर आपके सामने कोई दूसरा पुरुष ऐसी हरकतें कर रहा है जो कि उचित नहीं है तो आप उसे रोकिए। पता है आपके ऐसा करने से जिस महिला के साथ ये हो रहा है उसके मन में आपके लिए सम्मान तो बढ़ेगा ही, इसके साथ ही वो और भी ज्यादा सशक्त महसूस करेंगी, उनके अंदर एक विश्वास आएगा कि कोई है जो उनका साथ देने के लिए है, एक समाज है जो बेहतर है। उन्हें ये विश्वास होगा कि समाज में आज भी कुछ बेहतर लोग मौजूद हैं। दोस्तों तो जो जागरूक पुरुष हैं जो एक बेहतर समाज बनाना चाहते हैं वो ज़रूर अपने आसपास गलत होते हुए देखते होंगे तो रोकते होंगे। और दोस्तों शी बॉक्स सिर्फ एक वेबसाइट नहीं है, ये एक सुरक्षा कवच है और ये एक कदम है महिलाओं की गरिमा और सम्मान को बचाने के लिए। दोस्तों अगर आपके साथ या आपके किसी जानने वाले के साथ कार्यस्थल पर उत्पीड़न होता है तो चुप मत रहिए, शिकायत कीजिए, क्योंकि लेडीज फर्स्ट का मतलब ही है महिलाओं की सुरक्षा सबसे पहले, सम्मान पहले और अधिकार बराबर की। तो दोस्तों इन्हीं कुछ बातों के साथ मुझे यानी कि आपकी होस्ट आपके दोस्त उमा को दीजिए इजाजत। उम्मीद है कि आप चुप नहीं रहेंगी अगर आपके साथ कुछ भी गलत हो रहा है तो, और जो पुरुष भी सुन रहे हैं वो भी ये समझेंगे कि अगर आप एक बेहतर समाज बनाना चाहते हैं अपने आप के लिए, अपने घर की औरतों के लिए, तो फिर आपको भी आवाज उठाना ही पड़ेगा। आवाज उठाइए क्योंकि आपकी आवाज ही आपकी ताकत है। जाने से पहले खास बात की अपना और अपने अपनों का रखें खास ख्याल और खुद से करें ढेर सारा प्यार। नमस्कार, आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें क्योंकि हम हैं हरियाली से खुशहाली तक।
0: लेडीज फर्स्ट।

0: जानते हैं कि खसरा कितनी गंभीर बीमारी है? टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर हैं, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MRT का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हो तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टिको क्यों है इतने जीरो?
1: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात, अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
0: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
1: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
5: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
6: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा? बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा?
5: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
7: हर घर सूर्य घर।
8: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा, आपका स्वागत करती हूं किसान भाई बहनों को संबोधित हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। दोस्तों, उन्नत कृषि में आज हम बात करने वाले श्री अन्न के बारे में, और श्री अन्न एक खास किस्म के श्री अन्न के बारे में जिसे कहते हैं कुटकी। कुटकी जिसे अंग्रेजी में कहते हैं लिटिल मिलेट्स, क्योंकि ये बहुत छोटा होता है आकार में। कैसे इसकी खेती की जाती है और खेती करते वक्त किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए ताकि आपकी फसल अच्छी हो, आपका मुनाफा अच्छा हो, आइए इन सारी बातों के बारे में विस्तार से जानते हैं डॉक्टर आनंद कुमार से। सर, आप हैं अनुवांशिकी एवं पौधा प्रजनन विभाग से, आप हैं असिस्टेंट प्रोफेसर कम जूनियर साइंटिस्ट। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
9: किसान भाइयों को नमस्कार। आज हम लोग जो चर्चा करेंगे वह है कुटकी की वैज्ञानिक खेती एंड किस प्रकार जो आजकल जो हम लोग सदियों से जो मिलेट्स जिसको हम लोग श्री अन्न बोलते हैं, जैसे श्री अन्न में हम लोग मरुआ, चीना, कोदो, कंगनी, सामा एवं कुटकी हमारी जो खाद्य परंपरा रही का हिस्सा रही है। आज हम देख रहे हैं कि पूरे विश्व में पोषण, स्वास्थ्य एवं पर्यावरण के प्रति जैसे लोगों का जागरूकता बहुत तेजी से बढ़ रहा है, ऐसे में एक बार फिर से आवश्यकता पड़ रही है कि हमारी पारंपरिक फसलें जैसे कि हम लोग पहले हमारे जो पूर्वज जो श्री अन्न की खेती करते थे, जिसको आप आजकल हम लोग सुपर फूड्स मिलेट्स के बारे में भी जानते हैं, वे आजकल भविष्य की खेती है और पोषण सुरक्षा का आधार बनकर हम लोग के बीच में उभर रही है। आज के समय में सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम, दिक्कत, चैलेंज आ रही है वो है पानी की कमी और तथा क्लाइमेट चेंज, जो जलवायु परिवर्तन के साथ साथ साथ न्यूट्रिशन का भी एक बड़ा चैलेंज बनकर उभर रहा है। इसका एक ही सलूशन है, केवल एकमात्र विकल्प है कि फसल विविधीकरण के अंतर्गत हम लोग मिलेट्स की खेती को अपनाएं और किसान भाई अपना आय ज्यादा से ज्यादा इसके मार्फत बढ़ावे। बिहार में अलग अलग सुपर फूड्स न्यूट्रिशन को प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए मिलेट्स की खेती ही एक सक्षम उपाय है तथा किसानों की आय बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।
8: सर, अगर हम कुटकी फसल के बारे में बात करें तो कुटकी फसल के लिए भूमि की तैयारी कैसे की जाती है और साथ ही इसकी उन्नत किस्में कौन कौन सी है और बुआई का समय क्या है, बीज दर कितना होना चाहिए, बीज उपचार और बुआई के विधि के बारे में आप विस्तार से बता दीजिए।
9: पहले हम किसान भाई कुटकी के बारे में बताना चाहेंगे। कुटकी एक महत्वपूर्ण श्री अन्न फसल है। यह प्राचीन समय से भारत में उगाई जाती है। इसकी विशेषता यह है कि यह फसल कम वर्षा तथा सूखे की परिस्थितियों में भी, जैसे आजकल कम वर्षा हो रही है और सूखे की परिस्थिति है, ऐसे में अच्छा उपज देती है। तो यह जो कुटकी की खेती है वो कम बारिश और मध्यम वाले क्षेत्रों में, जहाँ जैसे जहाँ पर वर्षा वार्षिक वर्षा जो है 350 से 500 मिलीमीटर होती हो, उन क्षेत्रों में सफलता पूर्वक की जा सकती है। सबसे बड़ा इसमें गुण है कि इसमें जो कुटकी की फसल है वो कम पानी, जैसे कम उर्वरा भूमि भी हो या प्रतिकूल जलवायु भी हो, उसमें सफलतापूर्वक हम लोग कर सकते हैं। इसीलिए इसे जलवायु परिवर्तन के दौर में टिकाऊ और पोषण सुरक्षा फसल के रूप में विशेष महत्व दिया जा रहा है। सरकार का जो फोर्थ कृषि रोड मैप है उसमें फसल विविधीकरण के अंतर्गत ये मिलेट्स को, श्री अन्न फसल को लिया गया है, क्योंकि इससे किसान ज़्यादा से ज़्यादा अपने आय बढ़ा सकते हैं तथा वे स्वस्थ और पर्यावरण को भी स्वस्थ रख सकते हैं। और इसमें हम देखते हैं कि इसके जो बीज होते हैं, जैसे कुटकी के बीज हुए, उसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, आयरन, कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। यह ग्लूटेन फ्री अनाज है, इसलिए स्वास्थ्य की दृष्टि से एक लाभकारी फसल भी माना जाता है। जैसे अब हम बात करेंगे भूमि की तैयारी।
8: तो सर, ये तो बातें हो गई कुटकी के महत्व के बारे में। सर, आप हमें बताइए कि भूमि की तैयारी कैसे करें, साथ ही इसकी उन्नत किस्में कौन कौन सी है, बुआई का उचित समय क्या होता है, बीज दर कितना रखें और बीजोपचार भी क्या जरूरी है और बुआई किस प्रकार से करें, इन सारी बातों के बारे में सर आप हमें विस्तार से बता दीजिए।
9: किसान भाई, भूमि की तैयारी कुटकी खेती करने के लिए सबसे अच्छी जल निकास वाली दोमट मिट्टी पर यह बहुत अच्छी उपज देती है। यह जल भराव वाली मिट्टी या अत्यधिक सूखे की सहने की क्षमता इसमें कम रहती है। मानसून शुरू होने से पहले खेत को एक बार चाहिए कि मिट्टी पलटने वाले हल से या मोल्ड बोर्ड प्लाव, जिसको हम लोग कहते हैं, उससे एक बार मिट्टी पलट देना चाहिए। और मानसून जैसे ही शुरुआत हो उसके के साथ दो बार कल्टीवेटर से या ब्लेड वाले हैरो से अच्छी तरह से जुताई कर दें। और बुआई, कुटकी के बुआई का सबसे अच्छा समय, जैसे कि जून का अंतिम सप्ताह से आप लोग 15 जुलाई तक इसकी खेती कर दें तो आपको अच्छी उपज मिलेगी। और बीज दर, जो कुटकी के लिए बीज दर है वो 6 से 8 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, यदि आप जैसे आप करना चाहते हैं उसे 6 से 8 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। और यदि पंक्ति में करना चाहते हैं तब जैसे पंक्ति से पंक्ति की दूरी आपको रखनी है वो है 22.5 सेंटीमीटर और पौधा से पौधा 8 से 10 सेंटीमीटर रखनी है। यदि आप छिटकवा विधि से करना चाहते हैं तो आपको बीज दर थोड़ा सा बढ़ा देना होगा, ये 10 से 12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। जहाँ तक बीजोपचार का प्रश्न है तो किसान भाई, जहाँ भी हम लोग खेती करते हैं तो उसमें चाहिए कि बीजों को जो मृदा जनित जो रोग है उसे बचाव हेतु हम लोग को बीजोपचार कर देना है। तो कार्बेंडाजिम 3 ग्राम प्रति किलो बीज के दर से हम लोग को उपचारित करना चाहिए। जैसा कि बुआई की दूरी के बारे में जो हम बताएं कि कुटकी के लिए पंक्ति से पंक्ति दूरी 22.5 सेंटीमीटर से और पौधा से पौधा की दूरी 8 से 10 सेंटीमीटर रखनी है। और तथा ये बात को ध्यान रखना कि बुआई हेतु वांछित जो गहराई होनी चाहिए वो 3 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसके बाद हम लोग खाद एवं उर्वरक का प्रबंधन कैसे करें, इसके लिए हम लोग फसल को सामान्यतः बुआई से लगभग 2 से 3 सप्ताह पहले 5 से 10 टन पर हेक्टेयर गोबर की खाद दे दे तो बहुत अच्छा रहेगा। और कंगनी की अच्छी उपज के लिए 40 किलोग्राम नेत्रजन, 20 किलोग्राम फास्फोरस तथा 20 किलोग्राम पोटासियम प्रति हेक्टेयर उर्वरक की मात्रा अनुशंसित है। फास्फोरस पोटासियम उर्वरक की पूरी मात्रा तथा नेत्रजन की आधी मात्रा बुआई के समय तथा जो बची हुई शेष नाइट्रोजन की मात्रा जो होती है बुआई के 25 से 30 दिनों के बाद दें। किसान भाई, कुटकी की अच्छी उपज लेने के लिए चाहिए कि हम लोग जो भी प्रभेद का चुनाव करें वो अच्छे प्रभेद हो और जो कीट रोग व्याधियों के प्रति वो रेसिस्टेंट वैरायटी हो, तो उसमें जो उच्च उत्पादन क्षमता देने वाली प्रभेद है CLMV1, इसकी परिपक्वता अवधि है 85 से 90 दिन और इसकी औसत उपज 1416 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। इस प्रभेद के दानों में उच्च आयरन एवं जिंक की मात्रा होती है तथा यह जो प्रो मक्खी जिसको हम लोग सूट फ्लाई कहते हैं उसके प्रति प्रतिरोधी किस्म है। इसके साथ ही दूसरी सबसे अच्छी वैरायटी है BL6 जिसको हम लोग छत्तीसगढ़ कुटकी एक भी कहते हैं। इसकी परिपक्वता अवधि 90 से 95 दिन है। इसमें भी प्रचुर मात्रा में जिंक कैल्शियम की मात्रा होती है। इसकी औसत उपज 12 से 14 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। इसी तरह जो अन्य प्रभेद है वो BL4 है जिसको जो ये आगात किस्म है ये 75 से 80 दिन में तैयार हो जाती है। इसकी औसत उपज 13 से 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। इसी तरह एक और बहुत अच्छी प्रभेद है जिसको हम लोग DHLM 36-3, इसकी परिपक्वता अवधि 95 से 100 दिनों की है। इसकी औसत उपज 14 से 16 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। इसके अन्य प्रभेद भी बहुत अच्छे अच्छे प्रभेद है जैसे Phool 81 और LMV 602, ये भी बहुत अच्छा दे रही है, उपज दे रही है। किसान भाई ये सब प्रभेदों को यदि खेती करें तो उन्हें उपज के साथ साथ अच्छा आय भी बढ़ेगी।
8: जी सर, किसान भाई बहन एक और बात से परेशान होते हैं कि अक्सर फसल में कीट लग जाते हैं, रोग हो जाता है, तो कुटकी के कौन कौन से प्रमुख कीट होते हैं और रोग होते हैं और इसका रोकथाम कैसे किया जा सकता है?
9: कुटकी में जो कीट में सबसे ज्यादा जो ग्रसित होती है वो है प्रो मक्खी, उसका हम लोग प्रबंधन कैसे करें? तो प्रो मक्खी की हम लोग को निगरानी फिश मिल ट्रैप द्वारा हम लोग को करना चाहिए और यदि पौध मृत्यु दर की भरपाई के लिए हम लोग बीज दर जो है 1.5 गुना ज़्यादा अपनाना चाहिए। और जैसे कि यह समस्या यदि आती हो तो 4-8-10% ग्रेन्यूल्स होता है उसको मिट्टी में 8-10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से डाल देनी चाहिए और खेत की तैयारी के समय से पहले जो प्रो मक्खी की घटनाओं को कम करने के लिए कार्बोफ्यूरोन जो दवा आती है उसे 1.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर में मिट्टी में अच्छा तरह से मिला के उसमें डाल दें और किनोल फॉक्स एक दवा आती है 2 मिलीलीटर प्रति लीटर का छिड़काव, यदि प्रो मक्खी का संक्रमण ज़्यादा आपको दिखाई दे तो उस समय किनोल फॉक्स का छिड़काव कर सकते हैं। इसी तरह रोग में हम लोग देखते हैं कि मृदो मिल आसिता रोग इसमें पकड़ता है तो उसके लिए प्राथमिक संक्रमण से पौधों की पत्तियां पीली पड़ जाती है तथा सफेद हो जाती है, प्रभावित पौधों पर शायद कभी फूल आते हैं। जब संक्रमण हल्का होता है तो पौधों की बालियां विकसित हो सकती है लेकिन फूलों के हिस्से पर पत्तेदार संरचना में बदल जाते हैं जिसके लिए इसके नियंत्रण के लिए प्रतिरोधी किस्मों जैसे कि हम बताएं इसके पहले प्रतिरोधी किस्मों के बारे में तो किसान भाई वो लगा सकते हैं या संक्रमित पौधों के मलबे को एकत्र कर उसे तुरंत खेत से हटा देना चाहिए या दवा आती है रिडोमिल MZ72WP 3 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से उपचार करने से बीज जनित संक्रमण को खत्म करने में सहायता मिलती है। इस प्रकार हम रिडोमिल MZ 3 ग्राम प्रति लीटर पानी का छिड़काव रोग को नियंत्रित करने में से सफलतापूर्वक हम लोग इसके रोग को नियंत्रित कर सकते हैं।
8: तो किसान भाई बहनों, आप जिस तरीके से सर ने बताया उस प्रकार से आप अगर कुटकी मिलेट की खेती करते हैं तो आपको मुनाफा होगा और आपकी फसल अच्छी होगी। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाई बहनों, आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। आप अपना और अपनी फसलों का रखें विशेष ध्यान और अपनी मिट्टी से करें ढेर सारा प्यार। नमस्कार। उन्नत कृषि
10: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
11: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in।
12: हर घर सूर्य घर।
13: नमस्ते क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
14: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने, हाथ मिलाने

0: और उनका टीकाकरण है करवाना।
1: सुहाना सफर और ये मौसम हसी।
0: टीकू, ये मौसम है टीकाकरण करवाने का, तो सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
2: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
3: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
4: हर घर सूर्य घर।
5: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
6: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
5: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
6: आपकी सेहत की बातें,
5: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
6: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
5: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
6: वो कहाँ पर?
5: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
6: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
5: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 22 से 26 जुलाई के दौरान आसमान में घने बादल छाए रहेंगे और जिले में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी चलने और हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 26 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 90% और दोपहर में 70 से 80% रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए। जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दे, पिछले कुछ दिनों में हुई वर्षा का लाभ उठाइए और आगे भी संभावना है कि वर्षा होगी, तो ऐसी स्थिति में धान की रोपाई के लिए व्यवस्था सुनिश्चित कर ले। रोपाई से पहले प्रति हेक्टेयर 25 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस, 30 किलोग्राम पोटाश और 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट का प्रयोग करें। आपको बता दें कि निचली जमीन के चारों ओर मजबूत मेड़ यानी कि बांध बनाकर वर्षा जल का संचयन कर ले, ताकि जरूरत पड़ने पर आप वर्षा के जल का सिंचाई में उपयोग कर सके। जो किसान भाई बहन श्री अन्न की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दे, मोटे अनाजों की खेती के लिए उचास भूमि का चयन करें। मड़वा की वकुला KMR 316, GPU 67 और VL 379 राजेंद्र मड़वा RU 8 और RU 3। और आपको बता दे कौनी की अनुशंसित किस्में हैं राजेंद्र कौनी 1। आप इन किस्मों की बुआई कर सकते हैं। मक्का की खेती करने वाले किसान भाई बहन ध्यान दे, खरीफ मक्का की बुआई आसमान साफ रहने पर ही करें। खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और ध्यान रखें कि बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नेत्रजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश जरूर डालें। अनुशंसित मक्का की किस्में जैसे सुवान देवकी, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, राजेंद्र संकर मक्का 3, गंगा 11 है। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दे, मिर्च, अगाध गोभी, टमाटर जैसी सब्जियों की नर्सरी तभी तैयार करे जब आसमान साफ हो। और बागवानी करने वाले भाई बहन ध्यान दे, जुलाई अगस्त आम के पौधों के रोपण के लिए सबसे उपयुक्त समय होता है। कलमी पौधों की रोपाई 10x10 मीटर और बीजू पौधों की रोपाई 12x12 मीटर की दूरी पर करें। सघन बागवानी के लिए 5x5 मीटर और अम्रपाली के लिए 2.5x2.5 मीटर की दूरी रखें। फलदार वृक्षों में प्रति वर्ष 1 किलोग्राम नाइट्रोजन, 30 किलोग्राम फास्फोरस, 700 किलोग्राम पोटाश और 80 से 100 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद जरूर डालें। आपको बता दें इस समय केला के स्वस्थ सकर्स की रोपाई करें। लंबी किस्मों जैसे अल्पान, कंथली, मालभोग, चिनिया, G9 और बोनी किस्में जैसे ग्रैंड नेन, रोबस्टा, बसराई का चयन करना सबसे फायदेमंद होता है। लंबी किस्मों के लिए 2x2 मीटर और बोनी किस्मों के लिए 1.5x1.5 मीटर की दूरी रखें। प्रत्येक गड्ढे में 5 किलोग्राम गोबर की खाद, 500 ग्राम अरंडी की खली, 300 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट, 100 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश और 10 ग्राम कार्बोफ्यूरान मिलाना ना भूलें। रोपाई से पहले सकर्स को कार्बन डाइजिंग 2 ग्राम प्रति लीटर पानी से उपचारित करें। किसान भाई बहनों, टिश्यू कल्चर पौधे का उपयोग

0: अधिक उत्पादन के लिए लाभकारी होता है। पशुपालक भाई बहन ध्यान दें, पशुओं में PPR, MFD यानी कि खुरपका मुंहपका और HS यानी कि गला घोटू, इन रोगों का खतरा अधिक है। इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण करवाएं, उन्हें साफ और सूखा रखें और बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। रोग के लक्षण अगर दिखाई दे तो तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें और ध्यान रखें कि पशुओं की बिना जरूरत के आवाजाही पर नियंत्रण रखें। गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए जून माह में अगर टीके नहीं लगाए गए हो तो इस महीने में टीके जरूर लगवा दें। पशुओं को संतुलित और पौष्टिक आहार दें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।
1: सुनिए, क्या आपने PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो PM सूर्य घर.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
0: कृषि विभाग द्वारा जारी पौधा संरक्षण सामयिक सूचना। खरीफ मौसम में ग्रास हॉपर के प्रकोप की संभावना रहती है। ग्रास हॉपर को किसान फुतका के नाम से भी जानते हैं। इसका व्यसक 1-7 सेंटीमीटर लंबा होता है। इसकी मादा पूरे मौसम में औसतन 200 अंडे देती है। अनुकूल वातावरण मिलने पर अंडे की संख्या 400 तक हो सकती है। व्यस्क मादा आधे से 2 इंच मिट्टी के अंदर अंडा देती है। अप्रैल मई में शिशु कीट 5-6 विकास की अवस्था के बाद 40-60 दिनों में व्यस्क बनते हैं। ग्रास हॉपर की संख्या को नियंत्रित रखने के लिए इसके प्राकृतिक शत्रुओं जैसे ब्लिस्टर बिटिल, ग्राउंड बिटिल, चिड़िया, छिपकली, मेढक, मकड़ी इत्यादि का संरक्षण करना चाहिए। ग्रास हॉपर कीट फसल की पत्तियों को 1-2 किनारों से खाता है। इसके उग्र आक्रमण की दशा में सिर्फ मध्य शिरा ही बचा रह जाता है। फलस्वरूप पौधे की वानस्पतिक वृद्धि प्रभावित होती है। इसकी संख्या प्रति वर्ग मीटर 3-7 होने पर इसके जैविक या रासायनिक नियंत्रण के उपाय करने चाहिए। फुतका कीट का प्रबंधन आप इस प्रकार कर सकते हैं। खेत में जगह जगह पक्षी बैठक लगाना, जैविक कीटनाशी के रूप में यूवेरिया बेसिना 2.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और मेटारीजियम स्पी का 2.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और नीम तेल 1,500 PPM का 3-5 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से फसल पर छिड़काव करना चाहिए। रासायनिक कीटनाशी के रूप में क्लोरपाइरीफास 20% EC की 2.5-3 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोलकर या फिर लैम्डा साही हेलोथ्रीन 5% EC की 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें या फिर डेल्टा मेथ्रीन 2.8% EC की 1-1.5 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोलकर या फिर फिप्रोनील 5% SC का 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करना चाहिए। छिड़काव कार्य शाम के समय यानी कि दोपहर 4 बजे के बाद करना अच्छा होता है। विशेष सेवा या सुविधा के लिए अपने नजदीक के पौधा संरक्षण केंद्र या कृषि विज्ञान केंद्र अथवा पौधा संरक्षण सहायक निदेशक उद्यान या जिला कृषि कार्यालय से संपर्क करें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित BP जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई। क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।
5: अरे सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
6: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
6: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
7: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें। PM सूर्य घर .gov.in पर।

हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से 90.8 एफएम ग्रीन और मैं हूँ आपके साथ आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं युवाओं के करियर के बारे में और खास तौर से एग्रीकल्चर के फील्ड में आप अपना करियर कैसे बना सकते हैं, किस दिशा में आप जाकर अपना करियर बेहतर बना सकते हैं, इस बारे में हम बात करने वाले हैं। आपने बैंकिंग एग्जाम्स के बारे में तो जरूर सुना होगा और उन्हीं बैंकिंग एग्जाम्स में से एक एग्जाम होता है IBPS AFO, यानी कि IBPS के द्वारा जो बहुत सारे उनमें से एक होता है एग्रीकल्चरल फील्ड ऑफिसर। अगर हम IBPS AFO के बारे में बात करें तो अब तक आप समझ गए होंगे ये एग्जाम IBPS कंडक्ट करवाता है। IBPS यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन। आपको बता दें कि देश भर के सरकारी बैंकों में IBPS के द्वारा एग्रीकल्चरल फील्ड ऑफिसर यानी कि AFO के पद पर नियुक्ति की जाती है। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि IBPS AFO है क्या। ये परीक्षा एग्रीकल्चर ग्रेजुएट या फिर उनसे संबंधित छात्रों के लिए विशेष तौर पर ली जाती है और AFO का जो मुख्य काम होता है, मेन काम होता है, वो होता है किसानों और कृषि ग्राहकों के लिए बैंकिंग सेवाएं देना, किसान के ऋण का मूल्यांकन करना, ग्रामीणों को वित्तीय सलाह देना और फिर किसानों को वित्तीय सलाह देना और साथ ही कृषि ऋण सहायता देना, ऐसे जो भी काम होते हैं यानी कि किसानों से जुड़े हुए बैंक में जो भी काम होते हैं वो एक AFO देखते हैं। और अगर हम बात करें कि AFO का नोटिफिकेशन कब आता है, तो आमतौर पर AFO का नोटिफिकेशन जून से जुलाई के बीच आ जाता है। फिर ऑनलाइन आवेदन का जो लिंक होता है वो 1 से 3 हफ्ते तक ये खुला रहता है। तो अगर हम बात करें आगे आने वाले नोटिफिकेशन के बारे में, तो आप जून या जुलाई में इस नोटिफिकेशन की उम्मीद कर सकते हैं। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप IBPS AFO के लिए एलिजिबल है या नहीं, तो इसकी योग्यता क्या होती है, तो 4 साल का आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए और जाहिर सी बात है ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड एग्जाम है, पोस्ट है, तो इसके लिए आपके पास एग्रीकल्चर रिलेटेड डिग्री ही होनी चाहिए। आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री एग्रीकल्चर में हो सकती है, हॉर्टिकल्चर में हो सकती है, डेयरी साइंस में हो सकती है, फिशरी में हो सकती है, फॉरेस्ट्री में हो सकती है, या फिर आपने फूड टेक्नोलॉजी में किया हुआ है ग्रेजुएशन, या फिर आपने एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग भी की हुई है, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। वहीं अगर हम बात करें कि आपकी एज लिमिट क्या होनी चाहिए, तो मिनिमम आप 20 साल के होने चाहिए, अधिकतम आप 30 साल के होने चाहिए। और वहीं सरकारी नियमों के अनुसार OBC को अधिकतम वर्ष में 3 साल की छूट दी जाती है, वहीं ST या SC को 5 साल की छूट दी जाती है। और वहीं अगर आप पीपल विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के कैटेगरी में फॉर्म भरते हैं तो आपको 10 साल तक की छूट दी जाती है। और अब हम बात कर लेते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, यानी कि आपके एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है। तो आमतौर पर IBPS के जो भी एग्जाम्स होते हैं वो प्रीलिम्स, मेंस और फिर कई एग्जाम्स में इंटरव्यू भी होता है, तो इस एग्जाम में भी आपको इंटरव्यू फेस करना पड़ता है। लेकिन उससे पहले प्रीलिम्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो प्रीलिम्स एग्जाम ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है और ये ऑनलाइन कंडक्ट कराया जाता है। इसमें इंग्लिश के आपके 50 क्वेश्चन होते हैं, रीजनिंग के भी 50 क्वेश्चन होते हैं और वहीं क्वान्टिटिव एप्टीट्यूड के भी आपके 50 क्वेश्चन होते हैं। और आपको तीनों ही सेक्शन के लिए 40-40 मिनट का टाइम दिया जाता है, यानी कि टोटल 2 घंटे का आपका प्रीलिम्स होता है। और साथ ही अगर हम बात करें तो टोटल 150 क्वेश्चन होते हैं और 125 मार्क्स के लिए ये 150 क्वेश्चन होते हैं और हर एक गलत जवाब पर आपके 0.25 मार्क्स कट जाते हैं, यानी कि 1/4 मार्क्स आपके कट जाते हैं। और प्रीलिम्स एग्जाम के आगे की बात करें यानी कि मेंस के बारे में बात करें, तो मेंस का एग्जाम आपका 45 मिनट का होता है और ये भी ऑनलाइन होता है और ऑब्जेक्टिव बेस्ड ही होता है। तो अब हम बात करते हैं कि मेंस में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मेंस में आपके जो पूछे जाते हैं वो होते हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड, पूरी तरह से जो भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी प्रोफेशनल नॉलेज है वो आपके पास होनी चाहिए मेंस को क्वालिफाई करने के लिए। और मेंस के मार्क्स जो होते हैं ना वो फाइनल मेरिट में काम आते हैं। और मेंस अगर आपने क्वालिफाई कर लिया तो आप इंटरव्यू भी फेस करते हैं। इंटरव्यू जैसे कि आमतौर पर होता है एक क्वालिफाइंग पर्सनैलिटी टेस्ट होता है, लेकिन आपका जो फाइनल रिजल्ट बनता है यानी कि फाइनल मेरिट जो आपका बनता है उसमें इंटरव्यू का 20% और मेंस का 80% मार्क्स लिया जाता है। और इसके साथ ही अगर हम बात करें सिलेबस के बारे में क्या होता है, तो प्रीलिम्स का जो रीजनिंग का सिलेबस होता है जो आम तौर पर बैंकिंग एग्जाम्स के होते हैं, यानी कि पजल्स होते हैं, सिटिंग होते हैं, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, इनइक्वालिटीज जैसे टॉपिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस रीजनिंग में पूछे जाते हैं। वहीं अगर हम बात करें कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो नंबर सिस्टम, इसके बिना बैंकिंग का एग्जाम कैसे पूरा हो सकता है, रेशियो, टाइम एंड वर्क, परसेंटेज, DI, प्रॉफिट लॉस, ऐसे कई सारे टॉपिक्स
होते हैं जो अगर आपने बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी की है या कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल अच्छे से पता होगा। अगर नहीं कर रहे हैं तो फिर आप इन टॉपिक्स के बारे में बहुत अच्छे से जान लीजिए और एक एक करके हर एक टॉपिक को पढ़ना अभी से शुरू कर दीजिए। और इसके साथ ही इंग्लिश के बारे में अगर हम बात करें तो इंग्लिश में आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पूछा जाता है, क्लोज पूछा जाता है, एरर स्पॉटिंग होता है, पैराजिम्बल्स होता है, जैसे बहुत ही बेसिक से जो सवाल होते हैं वो पूछे जाते हैं। इसके साथ ही अगर हम बात करें कि मेंस में क्या पूछा जाता है तो मेंस में प्रोफेशनल नॉलेज देखी जाती है आपकी एग्रीकल्चर की कितनी है। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपने एग्रीकल्चर के बारे में जितनी पढ़ाई की है वो तो काम आने ही वाली है, और साथ ही एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स है वो भी आपको रटे हुए होने चाहिए, वो भी आपको पता होना चाहिए। अगर हम कुछ टॉपिक्स की बात करें जो मेंस में पूछे जाते हैं तो इंडिया में एग्रीकल्चर कैसा है इस बारे में पूछा जाता है, सॉइल साइंस होता है, और क्रॉप प्रोडक्शन होता है, हॉर्टिकल्चर होता है, एनिमल हस्बेंड्री होता है, ऐसे बहुत सारे जो टॉपिक्स होते हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड बेसिक टॉपिक्स होते हैं वो ज़रूर पूछे जाते हैं। और अगर अब तक आपने मन बना लिया है कि आपको IBPS AFO बनना है तो इसके लिए तैयारी कैसे करें, तो सबसे पहले तो आप अपने सिलेबस को बहुत ही अच्छी तरीके से समझें, सारे टॉपिक्स की लिस्ट बनाएं और कब कैसे किन टॉपिक्स की तैयारी करनी है, कहाँ से किसकी तैयारी करनी है ये भी आप अपने दिमाग में बिठा लें या नोट कर लें। और साथ ही आप एक स्टडी प्लान भी बना लें कि आपको हर रोज़ आपको कितने टॉपिक पढ़ने हैं या फिर एक हफ्ते में आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। इन तरीकों से आप अपना एक स्टडी प्लान बना लें और हर एक सब्जेक्ट के लिए एक प्रॉपर टाइम ज़रूर निर्धारित कर लें। आप एक दिन में अगर 3 सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना फिर आप इंग्लिश रीजनिंग के साथ या तो फिर इंग्लिश क्वांट के साथ जा सकते हैं। और साथ में आपको एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स आ रहे हैं आपको सारे करंट अफेयर्स पढ़ने होंगे, उनसे रिलेटेड जो भी नए रेगुलेशंस आते हैं, रूल्स आते हैं, और अगर कोई नई योजना आई हुई है तो उसके बारे में भी आपको जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इन चीज़ों के लिए बुक्स की हेल्प ले सकते हैं, और अभी तो हमारे पास सूचनाओं की, जानकारियों की बाढ़ है, और आप YouTube से भी तैयारी कर सकते हैं अगर आप कंफर्टेबल हैं तो। और अगर आपकी तैयारी हो जाती है तो आप प्रैक्टिस करें, रिवीजन करें, मॉक टेस्ट लगाएं। हर किसी का कोई ना कोई वीक एरिया होता है तो वीक एरिया पर आप ज़्यादा फोकस करें, और जहां गलती हो रही है मॉक टेस्ट में पता लग जाता है कि आपका कौन सा वीक एरिया है और कहां ज़्यादा आप गलतियां कर रहे हैं। कई बार हमारी तैयारी बहुत अच्छी होती है पर हम टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं, तो मॉक टेस्ट आपको इसके लिए हेल्प करता है। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रखें, और इसके साथ ही बैंकिंग अवेयरनेस, करंट अफेयर्स भी आप ज़रूर पढ़ें। जो भी कृषि योजनाएं आ रही है, किसान क्रेडिट कार्ड, गवर्नमेंट स्कीम्स वगैरह के बारे में पढ़ना आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रखें। और इसके साथ ही जैसे कि हमने आपको बताया कि आमतौर पर IBPS AFO का जून से जुलाई के बीच में नोटिफिकेशन आ जाता है, लेकिन आप रेगुलरली चेक करते रहें कि आपका नोटिफिकेशन कब आने वाला है और कहाँ से अप्लाई करना है, उसके लिए जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको लगनी है वो सारी चीज़ें आप इकट्ठी करके रखें। किसी भी एग्ज़ाम की या पोस्ट की तैयारी के लिए जो मोटिवेशन होता है ना, कई बार उस पोस्ट से मिलने वाली सैलरी भी होती है। और अगर हम IBPS AFO की सैलरी की बात करें तो इन हैंड सैलरी जो होती है ना वो 38,000 से 60,000 पर मंथ की हो सकती है, और डिपेंड करता है कि आपकी पोस्टिंग की लोकेशन क्या है। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक अगर आप इस एग्ज़ाम के लिए या फिर किसी भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो। और ऐसी ही ढेर सारी जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहें।

0: बेटा कितनी गंभीर बीमारी है। टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MRT का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टीको क्यों है इतने जीरो?
1: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात, अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
0: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
1: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
5: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले। कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
6: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
5: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
7: PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
8: कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 ग्रीन FM। उन्नत कृषि।
9: नमस्कार श्रोताओं, आपने ट्यून किया है 90.8 MHz हर रोज की तरह उन्नत कृषि कार्यक्रम में। एक बार फिर आपका स्वागत है और हमारे बीच एक खास एक्सपर्ट, जी हाँ, खेती बाड़ी से जुड़ी बातें होती हैं इस कार्यक्रम में। और आज हम बात करेंगे सब्जियों की, और सब्जियों में अगर गोभी वर्गीय फसलों की बात करें और इसकी खेती के बारे में बात करें, तो आज हमारे बीच आए हैं डॉक्टर RK शर्मा सर। मैं आप सभी को बता दूँ गोभी वर्गीय सब्जियों की खेती, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
10: धन्यवाद
9: डॉक्टर साहब। अगर गोभी वर्गीय फसल की बात करें तो क्या इसमें ये पत्ता गोभी और फूल गोभी आते हैं या इसके अलावे भी कोई और सब्जियां आती हैं?
10: आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि गोभी वर्गीय सब्जियों में मुख्यतः फूल गोभी, पत्ता गोभी, गांठ गोभी, ब्रोकली या हरी गोभी, तब दूसरा से स्प्राउट आती हैं। ये मुख्य रूप से हमारे इलाके में फूल गोभी, पत्ता गोभी या बंद गोभी को हम लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन गांठ गोभी, ब्रोकली, हरी गोभी, ब्रूसर पाउड जो है पहाड़ी इलाके में, हिमाचल प्रदेश के इलाके में, कश्मीर के इलाके में बहुत आयत रूप में होती है, लेकिन अब हमारे क्षेत्र में भी धीरे धीरे इन फसलों की मांग बढ़ती जा रही है।
9: डॉक्टर साहब, अगर जलवायु की बात करें तो इन सब्जियों के लिए किस प्रकार की जलवायु की आवश्यकता होती है और मिट्टी भी बहुत ज़रूरी होता है, तो क्या pH मान होना चाहिए मिट्टी का, किस प्रकार की मिट्टी होनी चाहिए इसकी खेती के लिए?
10: जैसा कि आपने आरंभ में कहा कि ये ठंडे मौसम की फसल है और ठंड के मौसम में ही हम लोग इस गोभी वर्गीय फसलों को मतलब लगाते हैं और इनका इस्तेमाल करते हैं। किसान भाइयों, गोभी वर्गीय सब्जियों के लिए ठंडी और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। यदि दिन अपेक्षाकृत छोटे हों तो फूल की बढ़ोतरी अधिक होती है। फूल तैयार होने के समय तापमान अधिक होने से फूल पत्तेदार और पीले रंग के हो जाते हैं। अगेती जातियों के लिए अधिक तापमान और बड़े दिनों की आवश्यकता होती है। जिस भूमि 5.5 से 7.5 के मध्य हो वह भूमि गोभी वर्गीय सब्जियों के लिए उपयुक्त मानी गई है। लवणीय भूमि में फफूंदी व जीवाणु से फैलने वाले रोग ज्यादा होते हैं। अगेती फसल के लिए अच्छे जल निकास वाली बलुई दोमट मिट्टी तथा पछेती के लिए दोमट या चिकनी मिट्टी उपयुक्त रहती है। साधारणतया गोभी वर्गीय सब्जियों की खेती विभिन्न प्रकार की भूमियों में की जा सकती है। भूमि जिसमें पर्याप्त अच्छी होती है, हल्की संरचना वाली भूमि में पर्याप्त मात्रा में जैविक खाद डालकर भी इसकी खेती की जा सकती है।
9: जी, ये बात तो हो गई जलवायु और मिट्टी की कैसी होनी चाहिए। अब बात करते हैं जो खेत की तैयारी है इसके लिए, गोभी वर्गीय सब्जियों के लिए खेत की तैयारी और साथ ही पौधशाला की तैयारी किस प्रकार करनी चाहिए किसान भाइयों को।
10: किसान भाइयों, हम जैसा जानते हैं कि बहुत सी हमारी जो सब्जी वाली जो फसल होती है उनके बीज काफ़ी छोटे होते हैं, इसलिए उन्हें हम डायरेक्ट जो है खेत में नहीं लगा करके पहले उनकी पौधशाला तैयार करते हैं। और पौधशाला में जब 4 से 6 सप्ताह के जो पौधे हो जाते हैं तब उन्हें हम अपने मुख्य खेत में स्थानांतरित करते हैं या प्रतिरोपण उनका करते हैं। किसान भाइयों, गोभी वर्गीय सब्जियों के लिए भूमि की जुताई 2 बार मिट्टी पलटने वाले हल से करें। इसके बाद 2 बार कल्टीवेटर चलाएं और प्रत्येक जुताई के बाद पाटा अवश्य लगाएं। गोभी वर्गीय सब्जियों की खेती के लिए पौधशाला में इनका बीज डालकर पौध तैयार कर लेना चाहिए। 2 से 3 ग्राम कैप्टान या ब्रेसिकोल प्रति किलोग्राम बीज की दर से बीजों को शोधित कर लेना चाहिए। 160 से 175 मिलीग्राम कैप्टान या ब्रेसिकोल को 2 दशमलव में मिलाकर प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से नर्सरी वाली भूमि का शोधन करना चाहिए। स्वस्थ पौधे तैयार करने के लिए भूमि तैयार होने पर 0.75 मीटर चौड़ी, 5 से 6 मीटर लंबी, 15 से 20 सेंटीमीटर ऊंची क्यारियां बना लेनी चाहिए। 2 क्यारियों के बीच में 40 से 50 सेंटीमीटर चौड़ी नाली पानी देने तथा अन्य सस्य क्रियाओं को करने के लिए रखनी चाहिए। पौध डालने से पहले 8 से 10 ग्राम यूरिया टॉप पोटास व 5 ग्राम यूरिया प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से क्यारियों में मिला देना चाहिए। बीज 5 सेंटीमीटर दूरी की कतारों में डालना चाहिए। क्यारियों में बीज बुआई के बाद सड़ी गोबर की खाद से बीज को ढक देना चाहिए। इसके 1 से 2 दिन बाद यदि नर्सरी में नमी की कमी हो तो हजारे या झरने से पानी क्यारियों में देना चाहिए।
9: जी डॉक्टर साहब, देखा जाता है कि जब किसान भाई पौधशाला से मुख्य खेत में पौधे को लगाते हैं तो उस समय कुछ सावधानियों की जरूरत होती है, वो क्या है? क्या
10: पौध तैयार करते हैं तो पौध को जो है उसके बाद जब हम उनको प्रतिरोपित करते हैं मुख्य खेत में तो इस बात की पूरी सावधानी बरतनी चाहिए कि 4 से 6 सप्ताह पुरानी पौध ही मुख्य खेत में रोपित करें। रोपनी के लिए पौधे निकालने के 3 से 4 दिन पहले से सिंचाई बंद कर देनी चाहिए और पौधों को निकालने से 2-3 घंटे पहले अच्छी तरह से सिंचाई करें जिससे जड़ों को नुकसान न हो। यथासंभव रोपाई शाम को करनी चाहिए। रोपाई से पूर्व जड़ों को बेविस्टिन 2 ग्राम प्रति लीटर या थाइरम 2 से 3 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से बने घोल में डुबाना चाहिए। रोपाई के तुरंत बाद सिंचाई अवश्य कर देनी चाहिए।
9: जी तो यहाँ पर बातें हो गई सावधानी की तैयारी हम कैसे करें, वो भी बातें हो गई। अब जो खास बात वो होता है कि उर्वरक मात्रा में देना चाहिए। डॉक्टर साहब, क्या कुछ मात्रा होनी चाहिए उर्वरकों की?
10: किसान भाइयों, गोभी वर्गीय सब्जियों की खेती के लिए खेत में 20 से 25 टन सड़ी हुई गोबर की खाद या कंपोस्ट खाद रोपाई के 3 से 4 सप्ताह पूर्व खेत में अच्छी तरह मिला देनी चाहिए। इसके अलावा 120 किलोग्राम नाइट्रोजन फॉस्फोरस वो 40 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर की दर की 1/3 मात्रा वो फॉस्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा अंतिम जुताई या रोपण से पूर्व खेत में अच्छी नाइट्रोजन की मात्रा को 2 बराबर भागों में बांटकर खड़ी फसल में 30 से 45 दिन बाद।
9: अब बात करते हैं कि खरपतवार नियंत्रण, ये भी बहुत जरूरी होता है और साथ ही पौधों की देखभाल।
10: और ये बता दूं आपको कि सब्जी वाली फसल में अगर खरपतवार का नियंत्रण हम सही रूप से बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि खरपतवार ही विशेष रूप से सब्जी वाली फसलों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। किसान भाइयों, गोभी वर्गीय सब्जियों में पौध रोपण से लेकर फूल तैयार होने तक 2 या 3 निकाई गुड़ाई से खरपतवार की रोकथाम हो जाती है। क्योंकि गोभी वर्गीय सब्जियां उथली जड़ वाली फसल हैं इसलिए उनकी निकाई गुड़ाई ज़्यादा गहरी न करें और खरपतवार को उखाड़ कर नष्ट कर दें। खरपतवार नाशी स्टाम्प 3.3 लीटर को 1000 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर का छिड़काव रोपाई से पूर्व काफ़ी लाभप्रद होता है। पौधों की जड़ों के पास मिट्टी चढ़ाने से पौधे सुरक्षित रहते हैं। पौध रोपण के 4 से 6 सप्ताह पश्चात पौधों में मिट्टी चढ़ा दें, जिससे फूलों के भार से पौधे टेढ़े न हो जाएं।
9: जी, और अब यहाँ पर बात आती है कि सिंचाई कितने दिनों के अंतराल पर करनी चाहिए गोभी वर्गीय सब्जियों के लिए?
10: किसान भाइयों, पौधों को अच्छी वृद्धि के लिए मिट्टी में पर्याप्त मात्रा में नमी का होना अत्यंत आवश्यक है। सितंबर के बाद 10 या 15 दिन के अंतराल पर आवश्यकता अनुसार सिंचाई करते रहना चाहिए। ग्रीष्म ऋतु में 5 से 7 दिन के अंतर पर सिंचाई करें, रोपाई के तुरंत बाद सिंचाई करें। अगेती फसल में बाद में 1 सप्ताह के अंतर से, देर वाली फसल में 10 से 15 दिन के अंतर से सिंचाई करें। यह ध्यान रहे कि फूल निर्माण के समय भूमि में नमी की कमी नहीं होनी चाहिए। अगेती किस्मों की अपेक्षा पिछेती किस्मों को अधिक जल की आवश्यकता होती है, सिंचाई प्रातःकाल करनी चाहिए।
9: जी, अब डॉक्टर साहब उन्नत प्रजातियों के बारे में बता दें, फूल गोभी की कौन कौन सी उन्नत प्रजाति है?
10: हाँ किसान भाइयों, फूल गोभी की अगेती प्रजातियों में पूसा दीपाली, अरली, हाजीपुर अगात आदि हैं। मध्यम प्रकार की प्रजातियों में अगहनी, पूसी, पटना मेन, पंत शुभ्रा, नरेंद्र गोभी 1, अरली स्नोबॉल, पूसा हाइब्रिड 2, पूसा अगहनी एवं पटना मध्यम है। पचेती प्रजातियों में पूसा स्नोबॉल 16, पूसा स्नोबॉल 1, पूसा स्नोबॉल 2, पूसा विश्व भारती, ज्वाइंट स्नोबॉल आदि हैं।
9: जी, फूल गोभी की अगेती मध्यम और पछेती किस्मों के बीजों को अगर पौधशाला में गिराते हैं तो क्या उपयुक्त समय है, और मुख्य खेत में कब और कितनी दूरी पर इनका रोपण करना चाहिए, साथ ही बीज दर क्या होना चाहिए डॉक्टर साहब?
10: किसान भाइयों, अगेती में मध्य जून से जुलाई के प्रथम सप्ताह तक पौधशाला में बीज डालकर पौध तैयार करके 30 दिन बाद मुख्य खेत में 45 सेंटीमीटर × 45 सेंटीमीटर की दूरी पर पौध की रोपाई करनी चाहिए। मध्यम फसल में अगस्त के मध्य में पौधशाला में बीज डालकर पौध तैयार करके 30 दिन बाद मुख्य खेत में 50 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रोपाई करनी चाहिए। पचेती फसल में मध्य अक्टूबर से मध्य नवंबर तक पौधशाला में बीज डालकर पौध तैयार कर लेना चाहिए और 30 दिन बाद मुख्य खेत में 60 सेंटीमीटर से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर रोपाई करनी चाहिए। 1 हेक्टेयर खेत के लिए 450 ग्राम से 500 ग्राम बीज की बुवाई करनी नर्सरी में करनी चाहिए।
9: जी, अगर फूलगोभी की बात हो रही तो सूक्ष्म तत्वों का क्या महत्व है इसमें, और साथ ही ये ब्लांचिंग क्या होता है इसके बारे में बताएं।
10: बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने, पड़ती है सूक्ष्म तत्वों की कमी से कई बार क्या होता है इनमें फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर हो जाता है, जिसे आप लोग समझते हैं कोई रोग हो गया, बल्कि ये कोई रोग नहीं होता है, ये मतलब सूक्ष्म तत्वों की कमी से उत्पन्न होने वाला एक तरह का डिसऑर्डर है। किसान भाइयों, फूल गोभी में सूक्ष्म तत्वों के प्रयोग से उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि होती है। इसमें बोरोन और मोलिब्डेनम प्रमुख हैं। बोरोन की कमी को दूर करने के लिए 10 से 50 किलो बोरेक्स प्रति हेक्टेयर की दर से खेत तैयार करते समय मिट्टी में मिला देना चाहिए। मोलिब्डेनम की कमी अम्लीय भूमि में हो जाती है, अर्थात मोलिब्डेनम अनुपलब्ध रूप में हो जाता है, उपलब्ध नहीं हो पाता पौधों को, जिससे पौधे इस तत्व का अवशोषण नहीं कर पाते हैं और विप टेल के लक्षण दिखाई देते हैं। विप टेल भी एक फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर ही है गोभी में। अतः अम्लीयता कम करने के उद्देश्य से 50 से 75 क्विंटल बूझा चूना प्रति हेक्टेयर खेत की तैयारी के समय भूमि में मिला देना चाहिए। इसके साथ ही पौध रोपण के पहले 2.5 से 5 किलो सोडियम मोलिब्डेट प्रति हेक्टेयर भूमि में मिला देना चाहिए, अथवा खड़ी फसल में 0.05% घोल का पौधों पर छिड़काव करना चाहिए। फूलों का रंग आकर्षक सफ़ेद बनाने के लिए पौधों की चारों ओर फैली हुई पत्तियों को फूल के ऊपर समेट कर बांध देने को ही ब्लांचिंग कहते हैं। अच्छा। ब्लांचिंग का मतलब होता है कि जो जब डायरेक्ट सूर्य की धूप में मतलब फूल गोभी के जब जो है फल आते हैं या तो उस समय क्या होता है उनका रंग जो है सफ़ेद से पीला पड़ जाता है, जिससे उनके क्वालिटी में जो है कमी आ जाती है। इसलिए उसके चारों ओर फैली हुई जो पत्तियां हैं उनको फूल के ऊपर जो है समेट कर बांध देना चाहिए और इस प्रोसेस को हम ब्लांचिंग कहते हैं। धूप से फूल का रंग पीला जाता है, ये क्रिया फूल तैयार हो जाने के 8 से 10 दिन पहले ही कर देनी चाहिए।
9: जी, फूल गोभी की बात हो गई डॉक्टर साहब, अब बंद गोभी की बात करें तो बंद गोभी की कौन कौन सी उन्नत प्रजातियां हैं ये भी बता दें।
10: किसान भाइयों, बंद गोभी की अगेती किस्में हैं प्राइड ऑफ इंडिया, मीनाक्षी, गोल्डन एकर, अर्ली ड्रम हेड, और पिछेती किस्में लेट ड्रम हेड, पूसा ड्रम हेड, अर्ली सोलिड ड्रम हेड, लॉर्ड माउंटेन हेड, कैबेज लेट, सेलेक्टेड डब्लू, डायमंड सेलेक्शन आठ और पूसा मुक्ता।
9: जी डॉक्टर साहब, देखा जाता है कि जो कोई भी फसल हम लगाते हैं तो कीटों के प्रकोप से हमारी फसल को हानि पहुंचती है, तो गोभी वर्गीय फसलों में जो कीट लगते हैं उनसे कैसे रोकथाम करें?
10: बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने, क्योंकि कीटों से बहुत ज़्यादा फसलों को नुकसान होता है, तो इसमें हम लोग जो है किसान भाइयों, कीट पिछेती फसल में लगते हैं जैसे एफिड्स हैं, कैटरपिलर हैं, तो इसमें यदि एफिड्स का प्रकोप हो तो इमीडा क्लोप्रिड एक दवाई आती है, इमीडा क्लोप्रिड का 1 मिलीलीटर 3 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए। बीमारी में अधिकतर पत्तियों पर धब्बे हो जाते हैं जो काले भूरे रंग के बन जाते हैं, इनकी रोकथाम के लिए फफूंदी नाशक डाइथेनम 45 का 2 ग्राम प्रति लीटर का घोल बनाकर छिड़काव करें। कैटरपिलर का प्रकोप होने पर एक दवाई है साइपरमेथ्रिन, उसका 1.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल करें, इसमें छिड़काव करना चाहिए। इस प्रकार हम अगर इनकी रोकथाम करेंगे तो हमारी फसल अच्छी होगी और हमारी उपज भी ज़्यादा होगी।
9: जी बिल्कुल सही कहा आपने डॉक्टर साहब, और किसान भाइयों आशा करते हैं आज पूरी जानकारी आपको मिली है गोभी वर्गीय सब्जियों की खेती के बारे में, और आशा करते हैं कि आप अगर खेती कर रहे हैं तो आज के इस वार्ता को सुनकर आपको लाभ मिलेगा। इसी के साथ अगले दिन आपसे मुलाकात होगी एक अलग विषय के साथ, याद रखें इसी फ्रिक्वेंसी 90.8 MHz। नमस्कार। उन्नत कृषि,
11: नमस्ते क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है, और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
12: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है, टीबी छूने हाथ मिलाने से नहीं फैलता, टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
11: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना है। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
13: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है, जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए, 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार, 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
14: हर घर सूर्य घर।
15: सुनो सुनो सुनो सभी, एक जरूरी बात, आया मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण फिर एक बार। अगर आपके घर या पड़ोस में है 5 साल या उससे छोटे बच्चे जिनका कोई भी टीका छूट गया हो तो सोचते क्या हो, जल्दी से आशा दीदी से करो बात, बच्चों को स्वास्थ्य केंद्र है लेकर जाना और उनका टीकाकरण है करवाना।
16: सुहाना सफर और ये मौसम हसी,
15: टीको ये मौसम है टीकाकरण करवाने का, तो सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम, टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
17: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी

0: जानते हैं कि खसरा कितनी गंभीर बीमारी है? टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MRT का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टीको क्यों है इतने जीरो?
5: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
5: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थाई बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: तो इसका हल क्या है?
5: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात, अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
0: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
5: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
6: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित BP जांच कराएं। स्वस्थ दिल स्वस्थ जीवन, सेहत सही लाभ कई। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।
7: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
8: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
7: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है। और हुकुम सिंह भी। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
9: हर घर सूर्य घर।
6: उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन, और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। और दोस्तों आज के टाइम पे ना हर चीज़ स्मार्ट हो रही है, फिर चाहे हम हो या हमारा फ़ोन हो या फिर हमारे आसपास की लगभग सारी ही चीज़ें, तो ऐसे में हमारी कृषि क्यों पीछे रहे, उसे भी स्मार्ट होना चाहिए। और स्मार्ट फार्मिंग आज के टाइम पे कहें तो ज़रूरत बन गई है, और इस विषय में हमें विस्तार से बताने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर आदित्य सिन्हा। आप हैं सहायक प्राध्यापक कृषि प्रसार शिक्षा विभाग से। सर आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
10: नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इनवाइट करने के लिए।
6: सर सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि स्मार्ट फार्मिंग क्या है।
10: तो स्मार्ट फार्मिंग ऐसी फार्मिंग को कहते हैं जिसमें कि हम डेटा का यूज़ करें। जैसे कि नॉर्मल कृषि होती है उसमें हम लोग डेटा पर उतना ध्यान नहीं देते हैं। डेटा मतलब कोई भी ऐसा चीज़ जिसका हम यूज़ कर सकते हैं कृषि में। डेटा आजकल हर चीज़ में डेटा है। अगर आप मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं तो आप अपना कुछ ना कुछ सर्च कर रहे हैं, तो वो भी एक डेटा है। कैसे हम डेटा को बेहतर बना सकते हैं, कैसे हम डेटा को यूज़ कर सकते हैं कृषि में, तो हम ऐसे चीज़ों को स्मार्ट कृषि कह सकते हैं। तो आप देखते होंगे अभी नया तकनीक, बहुत सारी तकनीकें आ गई हैं कृषि में, जो भी तकनीक जो डेटा को यूज़ करके आपको अच्छा डिसीजन लेने में मदद करे, ऐसी कृषि को हम स्मार्ट खेती कह सकते हैं।
6: तो सर भारत में स्मार्ट फार्मिंग क्यों ज़रूरी है?
10: क्योंकि देखिए सबसे पहली बात तो यह है कि भारत में हमारे छोटे जोत के किसान सबसे ज़्यादा भारत में ही हैं, इसीलिए। और उनको आप देख रहे होंगे कि आजकल क्लाइमेट चेंज का बहुत ज़्यादा बात है, कभी वर्षा आ जाती है कभी सुखाड़ आ जाता है, तो अगर हम अब हमारे किसान स्मार्ट कृषि का उपयोग नहीं करेंगे तो बहुत सारा प्रॉब्लम वो फेस कर सकते हैं, क्योंकि अगर स्मार्ट कृषि करेंगे तो वो अपने संसाधन का अच्छे से उपयोग कर सकते हैं। आप जानते ही होंगे कि अभी कितना लेबर भी मिलना कितना मुश्किल हो गया है, अभी हर इनपुट का भी कॉस्ट जो है वो बहुत बढ़ गया है, बहुत सारे युवा हैं हमारे वो कृषि से बाहर जा रहे हैं। इसीलिए अगर वो स्मार्ट कृषि करेंगे और बहुत अच्छे से, बहुत ये डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन बहुत लोगों को इससे डर लगता है कि हम कैसे यूज़ करें, बहुत आसान है ये समझना। अगर वो एक छोटा सा ट्रेनिंग कर लें इसके ऊपर कि कैसे हम मोबाइल या उपकरण को कैसे यूज़ करें, तो आराम से उसको सम्मिलित कर सकते हैं अपने कृषि में और अपना पैदावार भी बढ़ा सकते हैं, अपना दाम भी उनको कम लगेगा और ज़्यादा अच्छा पैदावार भी होगा, और जो अभी जो करेंट टाइम्स है उसको भी वो अच्छे से डील कर पाएंगे।
6: सर, जैसे कि आपने कहा कि बहुत सारे लोगों को डर लगता है कि ये बहुत मुश्किल है,
10: बिल्कुल,
6: और उनके मन में ये भी बात आती है कि ये बड़े किसानों के लिए है, जो छोटे लेवल पर खेती गृहस्थी कर रहे हैं उन्हें लगता है कि ये उनके लिए है ही नहीं, क्या ये सच है?
10: बिल्कुल ये सच नहीं है। एक्चुअली अगर मान लीजिए कोई भी किसान जो एक स्मार्टफोन यूज़ करता है, आप जानते होंगे कि एक स्मार्टफोन में आजकल 15 से 18 सेंसर लगे रहते हैं, तो वो सेंसर भी जो है एक तरह से वो स्मार्ट डिवाइस ही है, जो आपका स्मार्टफोन है उसको स्मार्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसमें बहुत सारे सेंसर लगे हुए हैं। जैसे कि आप बहुत तेज़ चलते हैं तो आपका स्टेप्स वो काउंट कर लेता है, मान लीजिए आप उसको बहुत गर्म जगह में मोबाइल फ़ोन को ले जाते हैं तो फिर वो अपने आप बोलता है कि आप इसको किसी ठंडे जगह में ले जाइए। तो ये सब सेंसर का है जो प्रयोग है जो मोबाइल फ़ोन में होता है। ऐसे ही सेंसर हम अपने ज़मीन में भी लगा सकते हैं। आप जानते होंगे बहुत अमेजोन जैसी वेबसाइट पे बहुत कम दाम में सेंसर मिलता है, 1500 रुपये में सॉयल मॉइस्चर सेंसर आप खरीद सकते हैं। तो वो सेंसर अगर आप ज़मीन में लगा देंगे, अपने मिट्टी में लगा देंगे, तो वो बता देगा कि आपकी मिट्टी को कब सिंचाई चाहिए, ऐसे हम कितना पानी जो है वो वेस्ट होता है सिंचाई के चक्कर में। अगर वो आप डिवाइस लगा देंगे 1500 रुपये का, तो आपको बता देगा कि आपको कब आपकी ज़मीन को सिंचाई चाहिए, तो आप इसमें अपना कितना कम पानी लागत आपको कितना कम हो जाएगा अगर आपको कम सिंचाई करनी पड़े। तो बहुत सारे रिसर्च हुए हैं, बहुत सारे शोध में ये पता चला है कि 30-40% जो है आप सिंचाई का पानी बचा सकते हैं। तो मान लीजिए इतना पानी आप बचा लिए तो आपको कितनी लागत कम हो जाएगी कृषि में। तो ये तो एक एग्जाम्पल था, इसलिए बहुत आसान है यूज़ करना, बस थोड़ा सा धैर्य रखना है किसान को कि हम थोड़ा सा छोटा मोटा चीज़ करके ट्राई करें। एक बार वो ट्राई करेंगे तो उनको इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि वो उसको बड़े वृहद स्तर पे कर पाएंगे।
6: ये बहुत अच्छी बात कही सर आपने। तो स्मार्ट फार्मिंग की मुख्य तकनीकें कौन कौन सी है?
10: तो स्मार्ट फार्मिंग की मुख्य तकनीकें, तो जैसा अभी मैं बता रहा था कि सेंसर जो है इसको हम IoT भी बोलते हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स इसका फुल फॉर्म है। तो सेंसर के माध्यम से आप बहुत सारा काम कर सकते हैं कृषि में, जैसे कि आपका टेम्परेचर, मान लीजिए कि कब आपका टेम्परेचर कब रहेगा, क्या रहेगा, ये भी आप देख सकते हैं। आपके सॉइल के मिट्टी जो है उसमें नमी कितनी हद तक है, ये सभी आप सेंसर के माध्यम से देख सकते हैं। तो एक तो कैटेगरी हो गया इसका जिसको हम IoT बोलते हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। दूसरा कैटेगरी जो है वो ड्रोन्स हो गया आपका, ड्रोन के माध्यम से भी हम बहुत सारा सिंचाई कर सकते हैं, उसमें स्प्रे कर सकते हैं, स्प्रे कर सकते हैं हम, और भी उससे हम डेटा निकाल के ये भी देख सकते हैं कि कैसे हमारा चेंज आ रहा है ओवर द ईयर्स, कैसे चेंज आ रहा है। इसके अलावा हमारा मोबाइल ऐप भी है, मोबाइल ऐप में आप देखते होंगे कितने सारे आजकल मोबाइल एप्लीकेशन है। एक बहुत अच्छा मोबाइल एप्लीकेशन है मौसम, जिसके तहत आप देख सकते हैं कि आपके स्पेसिफिक लोकेशन में, मतलब आपके जगह पे क्या मौसम का हाल रहेगा, अगले 7 दिन में क्या रहेगा, इस महीने क्या रहेगा। तो बहुत अच्छे अच्छे तकनीक हैं मोबाइल फ़ोन का, बहुत सारा ऐप एप्लीकेशंस भी हैं। अभी हाल ही में कृषि मंडपम में एक बहुत अच्छा ऐप लॉन्च हुआ है जो कहते हैं भारत विस्तार। उस ऐप के माध्यम से भी आप अपने लोकेशन के हिसाब से अनेक भारतीय भाषा में देख सकते हैं, कुछ भी कुछ सवाल पूछ सकते हैं कृषि के आधारित, आपको तुरंत जवाब मिलेगा। तो ऐसे बहुत सारे पॉसिबिलिटी हैं जो कि हमारे स्मार्ट कृषि के तहत हो सकता है।
6: तो सर, क्या बिहार में स्मार्ट फार्मिंग के कुछ एग्जाम्पल है, कुछ उदाहरण हैं?
10: हाँ बिल्कुल, अभी बिहार में जो है बहुत सारे ऐसे मॉडल चल रहे हैं जिसमें स्मार्ट कृषि का उपयोग किया जा रहा है। जैसे आप मंडी का रेट्स जो है, जो बिहार में डिफरेंट डिफरेंट मंडी है उसका रेट्स भी आप कितना, उसमें क्या भाव चल रहा है, ये भी आप मोबाइल ऐप में देख सकते हैं। ये भी एक तरह से स्मार्ट कृषि का ही जरिया है। आप ये भी जानते होंगे एक बहुत अच्छा योजना है जिसको कहते हैं हम नमो ड्रोन दीदी योजना। तो इस योजना के माध्यम से भी आप ड्रोन का किसान अपने खेत पे उस पर स्प्रे करवा सकते हैं, लागत उससे कम कर सकते हैं। और भी सिंचाई के लिए सेंसर बहुत अच्छे वृहद तरीके पे यूज़ हो रहा है। सैटेलाइट के से भी बहुत सारा डेटा अभी अर्जित हो रहा है सैटेलाइट के माध्यम से, जिससे कि हम बहुत सारा डिसीजन लेने में हमें आसानी पड़ता है। अभी तो और भी ऐसे ऐसे मॉडल आ गए हैं जैसे कि पॉली हाउस में, ग्रीन हाउस में, जिसमें कि अपने घर बैठे बैठे आप अपना पूरा फार्म को चला सकते हैं। अभी हाइड्रोपोनिक्स बहुत सारे लोग जो आप दिल्ली में देखेंगे या फिर बड़े बड़े शहरों महानगरों में देखेंगे कि हाइड्रोपोनिक्स मैक्सिमम स्मार्ट कृषि के तहत हो रहा है, जिसमें कि मैक्सिमम जो काम है वो आप अपने घर बैठे अपने मोबाइल डिवाइस से पूरा कंट्रोल कर सकते हैं अपने पूरे सेटअप को। तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी है जो कि बिहार में भी अभी हो रहा है।
6: तो अगर इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे किसान भाई बहनों को इससे क्या फ़ायदा होगा?
10: सबसे बड़ा फ़ायदा तो इससे ये होगा कि लागत में बहुत कमी आएगी, क्योंकि अभी लेबर भी मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। अभी खेत गांव में भी आप जाएंगे तो आपको लेबर का में कठिनाई होती है मिलने में। इसके अलावा आप देखेंगे कि मौसम पे हमें बहुत ज़्यादा निर्भर रहना पड़ रहा है। अभी ये नहीं कह सकते हैं आपकी मानसून के समय आपको बारिश होगा ही, कभी गर्मी के समय में बारिश नहीं होती है, कभी बहुत ज़्यादा सुखाड़ पड़ जाता है, कभी बाढ़ आ जाता है। ये सब चीज़ से आप अच्छा डिसीजन ले सकते हैं, तो आपका कृषि को आप उसी माहौल में ढला सकते हैं और इस हिसाब से आप अच्छी कमाई भी कर सकते हैं। तो इसीलिए हर किसान को ये कहना चाहेंगे कि आप छोटे चीज़ से उसको यूज़ करें, कोई बहुत बड़ा सेटअप मत लगा लें क्योंकि वो बहुत कॉस्टली होता है। छोटा छोटा एक्सपेरिमेंट करें अपने खेत पे, कोई सेंसर ले लें, कोई मोबाइल डिवाइस का यूज़ करें, देखिए कि बहुत सारा चीज़ आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, बहुत सारा चीज़ आपको मतलब आपको मिल जाएगा पॉसिबिलिटी उससे।
6: सर जैसे कि अभी आप बता रहे थे कि मोबाइल में बहुत सारे सेंसर्स लगे होते हैं जो हमारे स्टेप्स को भी काउंट करते हैं, तो क्या ऐसे कोई सेंसर होते हैं जो कि कृषि के क्षेत्र में किसान भाई बहन इस्तेमाल कर सकते हैं मोबाइल फोन में?
10: मोबाइल फोन में डायरेक्टली तो इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, लेकिन ऐसे सेंसर जो हैं वो बहुत आसानी से उपलब्ध हैं। आप देखेंगे कोई भी वेबसाइट पे जाके, सबसे सिंपल सेंसर जो है जो यूज़ कर सकते हैं वो है सॉयल मॉइस्चर सेंसर। उसको आप आराम से खरीद सकते हैं और अपने मोबाइल डिवाइस में ही उसको इंटीग्रेट करके देख सकते हैं कि हमारे सॉयल का जो है, हमारे मिट्टी का जो है, उसमें क्या नमी का मात्रा है। अगर वो नमी का मात्रा कम हो जाएगा तो अपने आप आपके मोबाइल पे मैसेज आ जाएगा या फिर एक अलार्म बजने लगेगा कि अब आपको सिंचाई की ज़रूरत है। तो इससे एक शुरू करने के लिए अच्छा जरिया हो सकता है। डायरेक्ट मोबाइल का तो एप्लीकेशन नहीं है, लेकिन मोबाइल का ही सेंसर जो है वो यूज़ हो सकता है स्मार्ट कृषि में भी।
6: अभी AI के बारे में बहुत बातें हो रही है, AI काफ़ी चर्चा में है, तो क्या AI स्मार्ट फार्मिंग में किसी तरीके से मदद कर सकता है?
10: हाँ बिल्कुल, स्मार्ट कृषि में AI का बहुत महत्व है, क्योंकि जो भी आपको डिसीजन जो आप लेते हैं, जो भी किसान को मान लीजिए डिसीजन, तो फाइनल जो डिसीजन लेना है वो किसान को ही लेना है। AI आपको बहुत सारा बता सकता है ऑप्शन, जैसे कि आपको क्या कहते हैं, जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है जिसमें कि आपको चार मिलते हैं ऑप्शंस, तो आपको AI चार पांच ऑप्शन बता सकता है, उसमें जो सही है वो आपको ही चूज़ करना है। तो अभी AI का मॉडल जो है बहुत सारा डेवलप हो रहा है, अभी बहुत सटीक नहीं है ये जानकारी, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे मॉडल हैं जिसपे कि आप रिलाई कर सकते हैं। जो भारत विस्तार है वो भी एक बहुत अच्छा माध्यम है जिसको हर लोग यूज़ कर सकते हैं। और AI से क्या होगा कि फ्यूचर में जितना ये मॉडल डेवलप होते जाएंगे, अभी तो ये हर दिन मॉडल अपने आप डेवलप हो रहे हैं, अगर आप फ्यूचर में देखेंगे कि इतना अच्छा ये मॉडल डेवलप हो जाएगा कि वो अपने से वो भी वो डिसीजन ले पाएगा। इसीलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से को यूज़ करेंगे अगर आप, तो बहुत अच्छा कृषि कर सकते हैं। और ऐसे बहुत सारे आपको मिल जाएंगे मोबाइल पे एप्लीकेशन, जो एप्लीकेशन में आप अपना खेत को मैप कर सकते हैं। मान लीजिए आपका एक हेक्टेयर का खेत है, उसको आप मैप कर सकते हैं, उसके लोकेशन को आपको बार बार उसमें जानकारी आती रहेगी कि कब वर्षा हुआ आपके खेत में, आपको खेत में सबसे अच्छा क्या लगाना चाहिए, इस सीज़न में आपको क्या लगाना चाहिए, किसकी डिमांड ज़्यादा है मार्केट में। तो इस तरह ये सब ऐप का यूज़ करके आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके और भी अच्छा खेती कर सकते हैं और भी अच्छी कमाई कर सकते हैं।
6: मतलब इतनी सारी सुविधाएं हैं, लेकिन कैसे शुरू कैसे करें स्मार्ट फार्मिंग?
10: हाँ बिल्कुल, तो शुरू करने के लिए सबसे अच्छा तो रहेगा कि अगर आप स्मार्टफोन यूज़ करते हैं तो स्मार्टफोन में कुछ ना कुछ ऐप जो है, कुछ ऐप जो है वो आप जरूर यूज़ कीजिए। जैसे भारत विस्तार के बारे में मैं बता रहा था, वो जरूर यूज़ कीजिए। एक मौसम नाम का ऐप है, वो भी जरूर यूज़ कीजिए, उससे आपको मौसम आधारित जानकारी मिलेगी। ई नैम का ऐप है जिसमें कि आपको मंडी का रेट्स मिलता है कि किस किस मंडी में क्या क्या रेट चल रहा है हमारे कृषि के प्रोडक्ट का। तो ये सब अगर आप इससे शुरुआत करेंगे तो आपको एक अंदर में कॉन्फिडेंस आएगा कि हम और भी आगे इसको बढ़ा सकते हैं। उसके बाद आपको बहुत सारी जानकारी उसी ऐप के माध्यम से मिलेगी कि हम और इसको कैसे आगे बड़े स्तर पे हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक माध्यम हो सकता है शुरुआत करने के लिए। उसके बाद फिर आप छोटा छोटा एक्सपेरिमेंट कीजिए, जैसे कि मान लीजिए आप सेंसर ले लिए, उस सेंसर को लगा के आप देखिए कि सच में ये काम कर रहा है कि नहीं, ये हमको हेल्प कर रहा है कि नहीं। मान लीजिए आपको एक गमला, आपके घर में आप गार्डनिंग करते हैं अपने घर में ही, और आपके घर में मान लीजिए आप 5 दिन के लिए घर के बाहर जा रहे हैं, तो आप वो सेंसर खरीद लीजिए और उस सेंसर को लगा लीजिए अपने गमले में लगा लीजिए। तो हो सकता है जब आपको मोबाइल पे अलार्म आने लगेगा कि अब आपके गमले को पानी की आवश्यकता है, तो आप किसी को घर पे बोल दीजिए या फिर पड़ोस में कि आपके गमले में पानी दे दें। तो इस तरह से आप शुरुआत कर सकते हैं ताकि आपको भरोसा बने कि ये सच में हमारे लिए कारगर साबित हो सकता है।
6: मतलब बहुत छोटे लेवल पर शुरुआत कर सकते हैं, जैसे जैसे कॉन्फिडेंस आता जाएगा तो आप बड़े स्तर पर जा सकते हैं।
10: बिल्कुल हाँ, तभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि अगर आप शुरू से बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कर दिए और आप नहीं अच्छे से समझ पाए सारा चीज़ को तो फिर आपको दिक्कत हो सकता है। इसलिए बेहतर है कि थोड़ा थोड़ा स्टेप वाइज आप सीखिए। हमारी यूनिवर्सिटी में बहुत सारी ट्रेनिंग होती है, हर साल यहाँ पे डिजिटल एग्रीकल्चर के ऊपर एक ट्रेनिंग होती है, 2 दिन का ट्रेनिंग होता है जिसमें कि हम लोग हर चीज़ बताते हैं, कैसे आप यूज़ कर सकते हैं, कैसे वीडियो बना सकते हैं, कैसे आप डिफरेंट ऐप्स को यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी आप ऐसी ट्रेनिंग को आप अगर अटेंड करते हैं तो आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी, आपको खुद कॉन्फिडेंस आएगा कि हम कैसे यूज़ करें।
6: सर अभी आप ट्रेनिंग के बारे में बता रहे थे, तो किस तरीके से किसान भाई बहन इस ट्रेनिंग से जुड़ सकते हैं और ये कब होता है?
10: तो ये ट्रेनिंग जो है इसके आप अपने नियरेस्ट जो आपका आत्मा है, हर जिले में बिहार में एक आत्मा होता है एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी, वहाँ पर जाके आप इसमें इनरोल कर सकते हैं। आप अगर कहेंगे कि हम डिजिटल कृषि के ट्रेनिंग को अटेंड करना चाहते हैं तो हमारी यूनिवर्सिटी जो है वो साल में एक बार करवाती है, लेकिन और सब भी जो है यूनिवर्सिटी जो है, जैसे कि हमारे राजेंद्र प्रसाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, हमारा बिहार एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी है पटना में, वो लोग भी करवाते हैं। तो आप कह सकते हैं कि हम कहाँ पे करना चाहते हैं ट्रेनिंग, तो वो आपको रजिस्टर कर लेंगे, उसके बाद वो हमारे पास इन्फॉर्मेशन आएगा, फिर हम वो ट्रेनिंग करवाते हैं। हर साल एक बार तो ये ट्रेनिंग जरूर हमारे विश्वविद्यालय में होती है। अभी जनवरी के महीने में यहाँ पर वो ट्रेनिंग आयोजित की गई थी।
6: तो मतलब अपने पास के आत्मा केंद्र पे जाकर आप इनरोल करा सकते हैं खुद को।
10: बिल्कुल।
6: तो सर आप लगातार सेंसर के बारे में बात कर रहे हैं, IoT के बारे में भी आपने बताया, तो ये कैसे काम करते हैं?
10: तो IoT जो है, IoT का मतलब होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, और ये काम करता है, ये आपके मोबाइल से इंटीग्रेटेड रहता है। तो मान लीजिए कि कुछ भी मेज़र करना हो, मान लीजिए ह्यूमिडिटी मेज़र करना हो, ह्यूमिडिटी मतलब आर्द्रता जिसको बोलते हैं, और मान लीजिए तापमान मेज़र करना हो, ये सब चीज़ को हम IoT से कर सकते हैं। अभी आप देखते होंगे कि बहुत सारे सेंसर हैं, कितने सारे गैरेज आप देखेंगे, गैरेज आजकल ऐसे बन रहे हैं जिसमें कि आप एक बटन दबाएंगे तो, या फिर कोई भी आसपास गाड़ी आ रही है तो वो गैरेज अपने आप खुल जाएगा, उसको पता चल जाएगा कि कोई ऑनर उसका आ रहा है, या वो गैरेज छोड़िए मान लीजिए बल्ब भी आजकल आने वाला है, सेंसर वाला बल्ब आने लगा है, कोई भी आदमी पास करेगा उस बल्ब के रास्ते तो वो बल्ब अपने आप जलने लगेगा। तो ये सब सेंसर है। IoT जनरली ऐसे ही काम करता है कि वो डिसीजन लेता है आपके मूवमेंट को देख के, या फिर आपके टेम्परेचर को देख के, या फिर आपका ह्यूमिडिटी को देख के। तो ये सब चीज़ IoT के अंदर आता है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के अंदर।
6: और स्मार्ट सिंचाई कैसे काम करता है?
10: स्मार्ट सिंचाई में भी IoT का ही एक माध्यम है। स्मार्ट सिंचाई में आप ये कर सकते हैं कि मान लीजिए आपने डिफरेंट सेंसर, बहुत सारे सेंसर लगा दिए अपने पूरे खेत में, तो वो एक सारे सेंसर मिलके एक डिसीजन ले लेंगे कि आपके खेत को सिंचाई की ज़रूरत है, और फिर वो आपको अलार्म आ जाएगा मोबाइल पे, आपको मैसेज आ जाएगा कि अब आपको पहली सिंचाई कर देनी चाहिए। तो इस तरह आप क्या करेंगे, जब ज़रूरत है खेत को सिंचाई की तभी आप सिंचाई देंगे, ये नहीं कि कभी भी सिंचाई दे दिए, उससे बहुत वेस्टेज होता है पानी का भी, संसाधन का भी। आप जानते होंगे डीजल का भी यूज़ होता है जनसेट चलाने में, पंप चलाने में, तो ये सब आपका 30-40% आपका जो है बचत हो सकता है अगर आप ये का यूज़ करें तो।
6: तो सर AI और डेटा एनालिटिक्स का कैसे उपयोग कर सकते हैं किसान भाई बहन?
10: तो AI और डेटा एनालिटिक्स का अगर आपको बेसिक यूज़ करना है तो आप बहुत सारे ऐसे ऐप हैं, बहुत सारे प्राइवेट कंपनी ने भी ऐसा ऐप बनाया हुआ है, जैसे कि आप देहात नाम की एक कंपनी है, उसने भी एक ऐप बनाया है, एक डिजिटल नाम ग्रीन नाम की एक कंपनी है, उसने भी एक ऐप बनाया है। तो ये सब ऐप जो है, अभी ये सब ऐप उतने उन्नत नहीं हुए हैं, अभी बेसिक ही हैं, लेकिन आप कोशिश कर सकते हैं कि ये सब ऐप से आप कुछ सीखें और बड़ा करें। जैसे भारत विस्तार ऐप जो है ज़रूर आप यूज़ करना चाहें। एक और ऐप है किसान.ai, ये भी एक बहुत अच्छा ऐप है जिसमें कि आप सिर्फ कुछ भी आप बोलिए और वो आपको उसका जवाब देगा, आपको सिर्फ किसी भी भारतीय भाषा में आपको वो बोलना है और आपको जवाब आएगा। तो ये सब यूज़ करके किसान भाई जो है वो शुरुआत कर सकते हैं, और एक अच्छा शुरुआत रहेगा तो फिर वो आगे इसको बड़े स्तर पे कर सकते हैं।
6: तो AI का इस्तेमाल ऐसे भी किया जा सकता है कि कोई फोटो आपने भेजी और आपको उसके रोग के बारे में पता करना हो, तो ये भी हो सकता है कि AI?
10: बिल्कुल हाँ, ऐसा बहुत सारा एप्लीकेशन है उसके ऊपर भी। जैसे कि आप जानते होंगे एक प्लांटिक्स ऐप है, एक हमारी यूनिवर्सिटी ने भी एक ऐप बनाया है ई-निरोग ऐप, ये सब ऐप का भी आप यूज़ करके मान लीजिए कोई भी फसल में आपको प्रॉब्लम है तो उसका फोटो अगर आप अपलोड कर दीजिए तो AI वो एनालाइज कर लेगा कि कौन सा रोग है उसमें, और फिर आपको जवाब देगा। ऐसे भी आप AI का यूज़ कर सकते हैं।
6: तो सर अभी बहुत सारे लोग स्मार्ट खेती कर रहे होंगे, तो क्या भारत में कोई सफल उदाहरण है जिन्होंने स्मार्ट खेती की है या ऐसा कुछ?
10: हाँ, बहुत सारे सफल उदाहरण हैं। आप देखेंगे कि बहुत सारे ग्रीन हाउस अभी ऐसे लग रहे हैं भारत में जो कि पूरा पूरा AI से कंट्रोल्ड है, पूरा IoT से कंट्रोल्ड है। तो ज़्यादातर आप अगर देखेंगे कि दक्षिण भारत में और ख़ासकर आप देखेंगे ऐसे स्टेट जो हैं महाराष्ट्र गुजरात, उस समय बहुत सारे लोग ऐसे ग्रीन हाउस में ये सब काम कर रहे हैं और अच्छा सफल हो रहे हैं। अगर आप ये यूज़ करते हैं स्विगी का इंस्टामार्ट आप देखे होंगे, या फिर जो भी ग्रॉसरी का डिलीवरी ऐप होता है जैसे कि आप किराना का सामान मंगा सकते हैं, उसमें देखे होंगे अलग सेक्शन होता है ऑर्गेनिक फार्मिंग का, जिसमें कि आपको आप लेट्यूस या जो कैबेज है ब्रोकोली है ये सब खरीद सकते हैं जो पूरा ऑर्गेनिक माध्यम से बना है, और उसका दाम बहुत ज़्यादा रहता है मार्केट प्राइस से। और आप देखेंगे कि 12 बजते हर दिन के 12 दोपहर के 12 बजते वो बिक जाता है, इतना डिमांड है उसका, क्योंकि लोगों को पता है कि ये हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है।

0: अभी भी हमारे किसान बंधु जो हैं वो सोचते हैं कि मोबाइल फ़ोन जो है वो उतना सेफ़ नहीं है यूज़ करने में, आजकल बहुत सारे स्कैम हो रहे हैं, फ्रॉड हो रहे हैं, तो जनरली लोगों को एक डर रहता है स्मार्टफोन यूज़ करने में। तो आपको थोड़ा सा सीखना पड़ेगा कि कैसे हम मोबाइल फ़ोन को यूज़ करते हैं, कैसे मैसेज करते हैं, कैसे हम व्हाट्सअप पे चैट करते हैं या फेसबुक कैसे यूज़ करते हैं। छोटा छोटा चीज़ का से शुरुआत कीजिए तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। इसके अलावा आप मोबाइल के अलावा और भी चीज़ से आप जानकारी ले सकते हैं, जैसे कि आप जब भी जाएं किसी ट्रेनिंग में तो वहाँ पे लोगों से पूछें कि अभी क्या कौन सी नई ऐप है जो आपकी यूनिवर्सिटी ने बनाया है, या फिर अगर मान लीजिए ये रेडियो का जो प्रसारण है, ये मान लीजिए मेरे पास रेडियो नहीं है तो हम कैसे इसको और सुन सकते हैं, वेबसाइट के माध्यम से सुन सकते हैं क्या। तो ये अगर आप थोड़ा सा अपना दिमाग वैसा रखेंगे कि जानने का जागरूकता रहेगा तो आप जरूर सीख जाएंगे। अभी बहुत सारे लोग हैं जो बहुत मतलब वृद्ध हैं लेकिन तब भी वो बहुत अच्छा मोबाइल फ़ोन यूज़ कर लेते हैं, और बहुत सारे ट्रेनिंग में हम ऐसे लोगों को, ऐसे किसान को देखते हैं जो कि बिल्कुल मोबाइल फ़ोन यूज़ ही नहीं करते हैं, स्मार्टफोन सब फीचर फ़ोन यूज़ करते हैं जो छोटा वाला फ़ोन आता है। तो थोड़ा सा ये तकनीक सीखिए, क्योंकि नई तकनीक सीखेंगे तो बहुत पीछे रह जाएंगे। तो अभी ज़रूरत है कि आप तकनीक को अपना दोस्त बनाइए, तभी आप सफल हो पाएंगे।
1: ये बात तो बहुत सही कही आपने कि नई चीज़ों को सीखते रहना चाहिए और तकनीक को अपना दोस्त बनाने की ज़रूरत है, ना कि उसे अपना दुश्मन समझना चाहिए। तो सर अंत में किसानों के लिए आप कोई संदेश देना चाहेंगे?
0: तो मेरा संदेश यही होगा किसानों को कि आप सबसे पहले एक्सपेरिमेंट करते रहिए, मतलब आप छोटा छोटा शोध करते रहिए अपने जगह पर। ये देखिए कि हम कैसे मोबाइल फ़ोन का अगर हम यूज़ कर रहे हैं, मान लीजिए किसी ऐप का यूज़ कर रहे हैं जैसे भारत विस्तार का मैंने बताया, आप उसको यूज़ करके देखिए कि सच में वो आपको फ़ायदा पहुँचा रहा है कि नहीं। ऐसा हो सकता है कि आपको बहुत खास फ़ायदा ना दिखे उसमें, तो कम से कम यूज़ कीजिए तो आपको खुद पता चलेगा कि वो सच में कारगर है या नहीं। या मान लीजिए वो सेंसर है, IoT वाला सेंसर है, वो आप देखिए कि सच में वो काम कर रहा है कि नहीं, कारगर है कि नहीं। तो घबराइए मत, मतलब आपको हमेशा तकनीक का इस्तेमाल जो है वो करते रहना है, और ये देखना है कि सच में आपके ज़िंदगी में कुछ चेंज आ रहा है कि नहीं उस तकनीक को यूज़ करने के बाद। तो मेरा ये संदेश रहेगा कि आप हमेशा अपना दिमाग खुला रखिए और नई तकनीक को अपनाने के लिए हमेशा तैयार रहिए।
1: तो बिल्कुल नई तकनीकों को अपनाने के लिए तैयार रहिए, और अगर संभव हो सके, संभव या फिर ज़रूरी है कि आप ट्रेनिंग लीजिए और छोटे छोटे ऐप्स का इस्तेमाल कीजिए। सर आपने बहुत सारी अच्छी बातें बताई और उम्मीद है कि आज का ये कार्यक्रम हमारे किसान भाई बहनों के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहा होगा। सर आप हमारे कार्यक्रम में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद उमा जी, थैंक यू मुझे बुलाने के लिए।
1: दोस्तों आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें, क्योंकि हम हैं हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि
2: सुनो सुनो सुनो सभी, एक जरूरी बात, आया मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण फिर एक बार। अगर आपके घर या पड़ोस में है 5 साल या उससे छोटे बच्चे जिनका कोई भी टीका छूट गया हो तो सोचते क्या हो, जल्दी से आशा दीदी से करो बात। बच्चों को स्वास्थ्य केंद्र है लेकर जाना और उनका टीकाकरण है कर...

0: टीको, ये मौसम है टीकाकरण करवाने का, तो सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
2: नमस्ते क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
3: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने, हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
2: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना है। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
4: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
5: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
4: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो PM सूर्य घर.gov.in पर।
6: हर घर सूर्य घर,
7: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM।

0: ग्रीन
1: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
0: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
1: आपकी सेहत की बातें,
0: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
1: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
0: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
1: वो कहाँ पर?
0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
1: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।
0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 22 से 26 जुलाई के दौरान आसमान में घने बादल छाए रहेंगे और जिले में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी चलने और हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 26 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 90 प्रतिशत और दोपहर में 70 से 80 प्रतिशत रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए। जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दें, पिछले कुछ दिनों में हुई वर्षा का लाभ उठाइए और आगे भी संभावना है कि वर्षा होगी, तो ऐसी स्थिति में धान की रोपाई के लिए व्यवस्था सुनिश्चित कर ले। रोपाई से पहले प्रति हेक्टेयर 25 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस, 30 किलोग्राम पोटाश और 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट का प्रयोग करें। आपको बता दें कि निचली जमीन के चारों ओर मजबूत मेड़ यानी कि बांध बनाकर वर्षा जल का संचयन कर ले, ताकि जरूरत पड़ने पर आप वर्षा के जल का सिंचाई में उपयोग कर सके। जो किसान भाई बहन श्री अन्न की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दें, मोटे अनाजों की खेती के लिए उचास भूमि का चयन करें। मड़वा की वकुला KMR 316, GPU 67 और VL 379 राजेंद्र मड़वा RU 8 और RU 3। और आपको बता दें कौनी की अनुशंसित किस्में हैं राजेंद्र कौनी 1। आप इन किस्मों की बुआई कर सकते हैं। मक्का की खेती करने वाले किसान भाई बहन ध्यान दें, खरीफ मक्का की बुआई आसमान साफ रहने पर ही करें। खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और ध्यान रखें कि बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नेत्रजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश जरूर डालें। अनुशंसित मक्का की किस्में जैसे सुवान, देवकी, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, राजेंद्र संकर मक्का 3, गंगा 11 है। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, मिर्च, अगाध गोभी, टमाटर जैसी सब्जियों की नर्सरी तभी तैयार करें जब आसमान साफ हो। और बागवानी करने वाले भाई बहन ध्यान दें, जुलाई अगस्त आम के पौधों के रोपण के लिए सबसे उपयुक्त समय होता है। कलमी पौधों की रोपाई 10x10 मीटर और बीजू पौधों की रोपाई 12x12 मीटर की दूरी पर करें। सघन बागवानी के लिए 5x5 मीटर और अम्रपाली के लिए 2.5x2.5 मीटर की दूरी रखें। फलदार वृक्षों में प्रति वर्ष 1 किलोग्राम नाइट्रोजन, 30 किलोग्राम फास्फोरस, 700 किलोग्राम पोटाश और 80 से 100 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद जरूर डालें। आपको बता दें इस समय केला के स्वस्थ सकर्स की रोपाई करें। लंबी किस्मों जैसे अल्पान, कंथली, मालभोग, चिनिया, G9 और बोनी किस्में जैसे ग्रैंड नेन, रोबस्टा, बसराई का चयन करना सबसे फायदेमंद होता है। लंबी किस्मों के लिए 2x2 मीटर और बोनी किस्मों के लिए 1.5x1.5 मीटर की दूरी रखें। प्रत्येक गड्ढे में 5 किलोग्राम गोबर की खाद, 500 ग्राम अरंडी की खली, 300 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट, 100 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश और 10 ग्राम कार्बोफ्यूरान मिलाना ना भूलें। रोपाई से पहले सकर्स को कार्बन डाइजिंग 2 ग्राम प्रति लीटर पानी से उपचारित करें। किसान भाई बहनों, टिश्यू कल्चर पौधे का उपयोग अधिक उत्पादन के लिए लाभकारी होता है। पशुपालक भाई बहन ध्यान दें, पशुओं में PPR, MFD यानी कि खुरपका मुंहपका और HS यानी कि गला घोटू, इन रोगों का खतरा अधिक है, इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण करवाएं, उन्हें साफ और सूखा रखें और बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। रोग के लक्षण अगर दिखाई दे तो तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें और ध्यान रखें कि पशुओं की बिना जरूरत के आवाजाही पर नियंत्रण रखें। गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए जून माह में अगर टीके नहीं लगाए गए हों तो इस महीने में टीके जरूर लगवा दें। पशुओं को संतुलित और पौष्टिक आहार दें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और साथ साथ 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खान पान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल स्वस्थ जीवन, सेहत सही लाभ कई। क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।

0: കൃഷി. नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो 90.8 एफएम ग्रीन. मैं हूं अनु और आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे हर रोज़ के खास कार्यक्रम. जी हां, किसान भाइयों को समर्पित हमारा यह कार्यक्रम उन्नत कृषि कार्यक्रम. तो इसमें बातें होती हैं उन्नत खेती बाड़ी की और आज हम लेकर आए हैं धान के बारे में कुछ बातें. जी हाँ, आज हम जानेंगे कैसे इनके रोगों का प्रबंधन करें, धान में लगने वाले रोग का प्रबंधन हम ससमय कैसे कर पाएं. तो इस विषय को लेकर आज हमारे बीच हैं डॉक्टर अमरेंद्र कुमार. मैं आपको बता दूं, ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं प्लांट पैथोलॉजी डिपार्टमेंट बिहार एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी सबौर से. डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम.
1: धन्यवाद
0: डॉक्टर साहब. सबसे पहले तो बिहार क्षेत्र की हम बात करते हैं, तो बिहार क्षेत्र में जो लगने वाले धान हैं उनमें कौन कौन से रोग लग सकते हैं, उनके बारे में थोड़ी जानकारी दें.
1: बिहार में मुख्यतः जो है कुछ फफूंद से रोग लगते हैं, कुछ बैक्टीरिया से लगते हैं, कुछ विषाणु से. लेकिन मुख्यतः यहाँ कुछ रोग हैं जो कि किसान भाई जानते भी होंगे. जैसे कि अगर फफूंद से जो रोग होते हैं उसमें आजकल फाल्स मट काफ़ी ज़्यादा आ रहा है. फाल्स मट की जिसको कई जगह कलिया बीमारी भी कहा जाता है. अच्छा. इसके साथ बैक्टीरिया से जो बीमारी होता है या जीवाणु से जो बीमारी होता है उसको हम लोग जीवाणु पर्णअंगमारी या अंग्रेजी में उसको बैक्टीरियल लिप ब्लाइट कहते हैं, जो कि बैक्टीरिया से होता है. इसके साथ ही जो है ब्राउन स्पॉट, जो कि भूरा धब्बा, पत्तियों पे भूरा धब्बा आ जाता है. साथ ही साथ जो है इसमें शीत ब्लाइट होता है. शीत ब्लाइट में जो होता है वो पत्तों पे जो है जैसे सांप के ऊपर जो होता है चकता चकता होता है, उस तरह से चकता चकता हो जाता है.
0: अच्छा.
1: इसके साथ ही जो है कुछ न्यूट्रिएंट से कमी के कारण बीमारी होता है, जैसे कि जिसको कि खैरा बीमारी कहते हैं. किसान भाई जानते होंगे कि जिंक के कमी से, और ऐसा कहा भी जाता है कि 3 साल के अंतराल पे आप अपने खेत में जो है एक बार जरूर जिंक का इस्तेमाल करें, क्योंकि ये जिंक के कमी होने के कारण से बिचड़ा जब आप लगाते हैं उसके बाद जो है इसका जो है सिम्टम दिखाई देने लगता है. तो ये जो प्रमुख रोग हैं मुख्यतः जो है आज के ज़माने में, आज के स्थिति में, आज के परिस्थिति में ये बीमारी आ रहे हैं. लेकिन किसान भाई को मैं ये कहूँगा कि फाल्स मट जो है अभी इमर्जिंग प्रॉब्लम है, जिसको कि उसमें आप जानते हैं कि जब धान पक जाता है उसके बाली में जो है पीले रंग का जो हल्दी के समान अब जब खेत में के अंदर जाते हैं तो आपके कपड़ों पर वो चीज़ लग जाता है.
0: अच्छा.
1: और ये बीमारी काफ़ी ज़्यादा आजकल देखा जाता है. तो इसको किसान भाइयों को पहले से इसका प्रबंधन करना पड़ेगा, नहीं तो फिर इसका प्रबंधन अगर पहले से नहीं करेंगे तो इससे बचाव आप नहीं कर सकते. इसलिए ये प्रमुख रोग हैं जो कि बिहार के विभिन्न भागों में किसानों के द्वारा बताए हुए और हम लोगों के द्वारा भी जो है किसान जो जगह जगह रिपोर्ट करते हैं उसके अनुसार ये प्रमुख रोग हैं. लेकिन मुख्यतः किसान भाई आप लोग फाल्स मट या कलिया बीमारी पर आप लोग विशेष कर ध्यान देंगे, और ये मोस्टली आप देखेंगे कि जो हाइब्रिड धान है उसमें इसका बीमारी का प्रकोप होने का ज़्यादा चांसेस रहता है. और हाइब्रिड में क्योंकि आप नत्रजन नाइट्रोजन या जो आप फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करते हैं वो ज़्यादा मात्रा में करते हैं, और हाइब्रिड में जो है ये इस बीमारी का प्रकोप ज़्यादा होता है. अगर पिछले साल किसी किसान भाई के खेत में ये बीमारी आया हो तो उसका प्रबंधन के लिए अभी से तैयारी कर लें, क्योंकि आने के बाद आप इससे बचाव आप करना मुश्किल होता है. इसके बचाव करने के लिए आप कॉपर ऑक्सीकोलाइट का 3 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से आप जो है जब फ्लावर आ जाए या फूल बन जाए या 50% फ्लावर आ जाए उस समय एक छिड़काव जरूर कर दें. अगर आपके विगत वर्ष में ये बीमारी आपके खेत में या कहीं भी किसान अपने गांव में या कहीं भी आया हो, क्योंकि इसके फफूंद जो हैं 11 महीने तक मिट्टी में जो है जीवित रह सकते हैं.
0: जी डॉक्टर साहब, ये तो बातें हो गई हैं बिहार क्षेत्र में लगने वाले धान में रोग, और रोग प्रबंधन के लिए अभी इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए?
1: जैसे किसान भाई अभी तो लगा रहे होंगे, जैसे कि अभी तैयारी कर रहे होंगे धान का, गेहूं तो अभी हो गया होगा, खेत आपका खाली होगा, और अभी के स्थिति में क्योंकि अभी आपका उत्तम समय है आप उसको कर सकते हैं, प्रबंधन कर सकते हैं. क्योंकि जानते हैं कि आपके खेत में जो है बहुत सा बैक्टीरिया, मिट्टी जनित कुछ बैक्टीरिया होते हैं, कुछ फफूंद मिट्टी जनित होते हैं, तो मिट्टी का अब बाद के अवस्था में क्योंकि उसके जो कारक हैं वो मिट्टी में हमेशा रहते हैं, तो उस कारक को आपको मारना होगा. अगर उसका जीवन चक्र अगर आप रोक देंगे तो वो जो है आप उससे बचाव कर सकते हैं,
0: खुद ब खुद मर जाएगा.
1: जी, अभी का स्थिति में ये है कि अब अभी जो उत्तम समय, क्योंकि मौसम भी काफ़ी ज़्यादा गर्म है, तो आप अगर गहरी जुताई करेंगे, क्योंकि हम लोग बताते भी हैं लेकिन अभी समय है, क्योंकि अभी के समय में उपयुक्त यही है, क्योंकि धान तो आप अभी आप लगाने की तैयारी कर रहे होंगे तो अभी का उपयुक्त, क्योंकि खेत आपका खाली होगा, तो आप गहरी जुताई कर दें। गहरी जुताई करने से जो नीचे का मिट्टी है ऊपर आ जाता है, और जिससे जितने भी आपके फफूंद के कारक होंगे या जीवाणु के कारक होंगे, या इवन जीवाणु और फफूंद ही नहीं, आप कीट भी जो होंगे वो ऊपर के सतह पर आ जाएंगे।
0: अच्छा।
1: और धूप लगने के कारण से वो जो है मर जाएंगे। तो अभी का समय काफ़ी उत्तम है, किसान भाई अगर इसको करेंगे तो न केवल धान के रोग से, आप उसके कीट से भी बचाव कर सकते हैं
0: गहरी जुताई से।
1: जी
0: जी डॉक्टर साहब, रोग प्रबंधन के लिए क्या बीजोपचार बहुत ज़रूरी है?
1: जैसे कि हम जानते हैं कि बीमारी कई तरह से होता है, जो फफूंद जो है, जैसे कि पहले मैं कहा भी कि कुछ फफूंद जो है मिट्टी जनित होते हैं, कुछ फफूंद जो है बीज जनित होते हैं, कुछ जो है हवा के द्वारा आते हैं।
0: अच्छा।
1: तो आपको जो है आपको ऐसा बीज का इस्तेमाल करना है कि वो जो है उसमें जो है रोग लगने का चांसेस कम रहेगा। तो आजकल सरकार का भी ये है कि हमको बीज उपचार करना है। बीज उपचार करने से ये फ़ायदा है कि आप जो है एक आवरण बन जाता है, और आप बाज़ार में काफ़ी मात्रा में उपलब्ध है फफूंद नाशक, जो कि कॉन्टैक्ट फंजीसाइड और सिस्टेमिक फंजीसाइड का मिश्रण का जो मिलता है बाज़ार में, जिसमें कि मैनकोजेब होता है और कार्बेंडाजिम होता है, उसका मात्रा जो है आप 2 ग्राम मात्रा लेकर आप जो है बीज उपचार बीज लगाने के पहले, क्योंकि आप जब बिचड़ा लगाते हैं कि एक बार पैसा आप इतना लगाते हैं, बीज खरीदते हैं, फिर उसका बीज स्थल तैयार करते हैं, तो बीज लगाने के पहले आप बीज उपचार अवश्य करें। बीज उपचार करने से फ़ायदा क्या है, जो 2 फफूंद नाशक हैं जो कि एक कॉन्टैक्ट फंजीसाइड हैं, वो क्या करता है कि आपके ऊपरी आवरण से जो भी फफूंद लगेगा, जैसे कि ब्राउन स्पॉट होने का चांसेस ज़्यादा रहता है, बिचड़ा में ब्राउन स्पॉट बहुत देखा जाता है, कहीं कहीं ब्लास्ट भी देखा जाता है, झोंका बीमारी भी देखा जाता है, और ख़ासकर जो है देखेंगे कि जो सेंटेड राइस है, जो सुगंधित धान है, उसमें होने का बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है। इसलिए जो 2 फफूंद नाशक है उसमें 1 फफूंद नाशक जो है आपके आवरण को जो भी बीमारी लगेगा उसको रोकेगा, और दूसरा जो फफूंद नाशक है जो कि सिस्टेमिक फंजीसाइड है, वो बाद के अवस्था में भी जब पौधा आपका बड़ा हो जाता है तो वो जो है उससे रोगों से आपको बचाव करेगा। इसलिए किसान भाई का मेरा सलाह है कि जब भी आप बिचड़ा लगाएं, बीज उपचार जो है 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के दर से आप कार्बेंडाजिम और मैनकोजेब का जो फफूंद नाशक का जो मिश्रण आता है, इसका 2 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज की दर से आप इस्तेमाल करें, और उसके बाद ही उसको आप लोग अपने खेत में बिचड़ा लगाएं।
0: एक जो सवाल है किसान भाइयों की तरफ से आता है डॉक्टर साहब, कि कम पानी और अधिक पानी की स्थिति में कौन से रोग लगते हैं और उनका हम कैसे निवारण करें, ये जानना चाहते हैं हमारे किसान।
1: जैसे कि हम जानते हैं कि कोई कोई एरिया में जो है ऊपरी सतह होता है, जिसको कि अपलैंड कहा जाता है, कोई कोई जो है लोलैंड होता है। अपलैंड में क्या होता है कि पानी उसमें ठहरता नहीं, और लोलैंड में जो है पानी लगा रहता है,
0: अधिक जमा हो जाता है।
1: जी, तो अपलैंड की स्थिति में दूसरा बीमारी लगता है, और उसका बचाव के लिए आपको अलग से, क्योंकि पहचान जब तक आपको होगा नहीं तब तक आप जान नहीं पाएंगे, और लोलैंड की स्थिति में दूसरे बीमारी का लगता है। तो ऊपरी सतह पे या अपलैंड की स्थिति में प्रमुख रूप से 2 बीमारी हैं जो कि देखा जाता है प्रायः बिहार में। पहला जो है भूरी चित्ती, जिसको अंग्रेजी में ब्राउन स्पॉट कहा जाता है, और दूसरा जो है ब्लास्ट है, जिसको कि झोंका कहा जाता है। अब इसको जो है, जो भूरी चित्ती है, आप देखेंगे कि जैसे ही बिचड़ा लगाते हैं पत्तियों पे भूरे रंग के छोटे छोटे धब्बे बन जाते हैं, और बाद के दिनों में जो है ये धब्बे आपस में मिल जाते हैं। तो ये मुख्यतः जो है अपलैंड की स्थिति में होता है। तो ऐसी स्थिति में बीज उपचार तो ज़रूर करें आप, उसके बाद जो है आप कार्बेंडाजिम का 2 ग्राम मात्रा, अगर मान लीजिए कि आपके अगर बिचड़ा में आ जाए या खड़ी फसल में आ जाए, तो कार्बेंडाजिम का 2 ग्राम मात्रा आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा जो बीमारी है, जिसको कि हम लोग झोंका या ब्लास्ट कहते हैं, पूरा का पूरा पौधा आपका ब्लास्टेड, मतलब पूरा जला हुआ दिखाई देगा, और ख़ासकर आप देखेंगे कि आप जो सेंटेड है उसमें ये ज़्यादा लगता है। उसके लिए, उसके बचाव के लिए आपको करना क्या है कि ये भी ऊपरी ज़मीन में होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। इसके लिए ट्राईसाइक्लाजोल नाम का एक फफूंद नाशक आता है, उसका जो है 0.5 ग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की प्रति लीटर में आप पानी में डाल के, या 500 ग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जो दूसरा जो बीमा जो दूसरा आपका प्रश्न था जिसमें कि कहा गया कि निचली सतह में दो बीमारी होने का चांसेस रहता है जो बिहार में मुख्यतः देखा जाता है। पहला जो है बैक्टीरियल लिप ब्लाइट है जिसको कि पर्णअंगमारी कहा जाता है, वो जीवाणु के द्वारा होने वाला बीमारी है। ये बीमारी दो अवस्था में होता है। पहली अवस्था में जब आप बिचड़ा लगाते हैं तो उस स्थिति में पूरा पौधा आपका जला हुआ दिखाई देता है, और दूसरा स्टेज है जब आपका टिलरिंग स्टेज होता है उसमें आपको ये ज़्यादा दिखाई देने लगता है। तो उस स्थिति में आपके लिए जो है बैक्टीरियासाइड का इस्तेमाल करना है। लेकिन ध्यान देने योग्य ये बात है इसमें कि आपको बैक्टीरियासाइड के साथ एक फफूंदनाशक का कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का इस्तेमाल करना है। अगर ये बीमारी आ जाता है तो आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का 3 किलोग्राम मात्रा और स्ट्रिप्टोसाइक्लिन का 50 ग्राम मात्रा प्रति 1000 लीटर पानी में मिलाकर 1 हेक्टेयर के रूप में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जो दूसरा जो बीमारी है जिसको कि कहा गया शीत ब्लाइट, मैं पहले भी आपको बताया था शीत ब्लाइट के बारे में
0: जी।
1: जब पानी ज़्यादा रहता है तो इसमें सतह जो शीत रीजन है वहाँ पे ये पहले बीमारी का कारण दिखाई देना शुरू करता है, और बाद में जब पत्तियों पे ये सांप के ऊपर जैसे चकता होता है उस तरह से धब्बे बन जाते हैं। और ये बीमारी ऐसा है कि दोनों बीमारी अगर एक खेत का पानी बैक्टीरियल लिप ब्लाइट में भी और इसमें भी एक खेत का पानी दूसरे खेत में जाता है तो वो भी खेत जो है आक्रांत हो जाता है। तो इस बीमारी से बचाव करने के लिए शीत ब्लाइट के बचाव करने के लिए आप वेलिडामाइसिन का आप जो है अब 2 कंसंट्रेशन में आता है तो उसका जो है 1 ml मात्रा प्रति लीटर पानी में डाल के आप उसका छिड़काव कर सकते हैं।
0: तो यहाँ पर किसान भाइयों और हमारे श्रोताओं, आपने जाना कि धान में कौन कौन से रोग लगते हैं, आप उनका प्रबंधन कैसे कर सकते हैं, सारी जानकारी आपको मिल गई होगी। तो आशा करते हैं ये ज़रूर आपके लिए मददगार साबित होगा आज का ये वार्ता। तो आज के लिए इतना ही, अगले दिन एक अलग विषय के साथ फिर से हाजिर होंगे हम इसी फ्रिक्वेंसी, याद रखें 90.8 MHz। नमस्कार। उन्नत कृषि
2: हर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
3: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
2: और लाइट बिल के
3: अब 0 रुपए कैसे दूं?
2: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
4: पक्का। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

0: खसरा कितनी गंभीर बीमारी है। टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MRT का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टीकू क्यों है इतने जीरो?
1: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात, अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
0: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
1: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
5: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
6: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था, उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in।
7: हर घर सूर्य घर।
8: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 ग्रीन FM। उन्नत कृषि।
9: किसान भाइयों, एक बार फिर से जुड़ चुके हैं हम आप सभी के साथ। लेकर आई हूं मैं आप सभी के लिए उन्नत कृषि, और आज भी आप सभी के लिए कुछ उपयोगी बातें होंगी यहां पर, और आप सभी को कुछ अच्छी बातें, कुछ अच्छी नॉलेज के साथ मैं लेकर आई हूं यहां पर डॉक्टर संजय कुमार जी को, जो है सह प्राध्यापक सस्य विज्ञान विभाग बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में।
10: धन्यवाद।
9: और डॉक्टर साहब, हमेशा देखा गया है जब खेती की बात आती है और कहीं ना कहीं जल उसका एक मुख्य, यूं कहें जैसे हम खाना बनाते हैं तो इंग्रेडिएंट्स बोलते हैं, तो खेती का कहीं ना कहीं ये एक इंग्रेडिएंट्स के तौर पर काम आता है। और अभी आप देख रहे हैं कि वर्षा जो है वो सामान्य से कम हो रही है, और इस सिचुएशन में जल जो है प्रबंधन करना हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। तो सर, सबसे पहले तो जल प्रबंधन के तरीके हमारे किसान भाइयों को जानना चाहिए, तो उन सारी बातों को हम यहाँ पर रखेंगे, अपने किसान भाइयों के सामने रखेंगे। लेकिन सबसे पहले सर, हम ये आपसे पूछना चाहेंगे कि जल प्रबंधन होता क्या है?
10: एक्चुअल जल एक ऐसा प्राकृतिक बहुमूल्य संसाधन है जिसके बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती।
9: जी,
10: जल पौधों की समस्त जीवन क्रियाओं एवं वृद्धि के लिए आवश्यक है, अतः कृषि उत्पादन बढ़ाने में फसलों की सामयिक एवं पर्याप्त मात्रा में जलापूर्ति आवश्यक है। हम अगर जल प्रबंधन की बात करें तो जल प्रबंधन का तात्पर्य असिंचित क्षेत्रों में अब जो अपवाह जल नियंत्रण है, जल संरक्षण, जल भंडारण तथा उचित कृषि विधियां अपनाकर इसके दक्षतापूर्ण उपयोग करने से है। वहीं जहां पे वर्षा अधिक हो रही है या वाटर लॉक सिचुएशन है, वहां पे अधिक पानी के निकास एवं उचित कृषि पद्धति अपनाने से है, तथा सिंचित क्षेत्रों में फसलों की आवश्यकता अनुसार सिंचाई करने अंतःस्रवण, अपवाह एवं बाष्पन से होने वाली जनहानि के नियंत्रण से है, जिससे लगातार सिंचाई से भूमि पर विशेष कुप्रभाव हुए बिना उपलब्ध जल से अधिकतम उत्पादन लिया जा सके। और ये हम कह सकते हैं कि सिंचाई जल की व्यवस्था वास्तविक रूप से मृदा पर निर्भर करती है। मृदा किस तरह से गठित है, मृदा की संगति क्या है, मृदा में पोरोसिटी क्या है, सिंचाई हमें कितनी सिंचाई देनी है, सिंचाई की क्या गहराई होनी चाहिए एवं सिंचाई की कौन सी विधि हम अपना रहे हैं, इन सब चीज़ों पर जल का प्रबंधन निर्भर करता है।
9: तो सर ने बताया कि सिंचाई की विधि भी इस पर ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है जल प्रबंधन के लिए। तो सर आपने बताया जल प्रबंधन क्या है, और उसके बाद हम जानना चाहेंगे सर कि जल प्रबंधन का उद्देश्य क्या है।
10: देखिए, जल प्रबंधन का अगर हम उद्देश्य की बात करें तो जल ऐसा चीज है जो पौधों को हमेशा जरूरत पड़ती है। तो पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक जल की आपूर्ति हम करते हैं उस पौधे को सूखे से बचाने के लिए, अगर ठंडा का दिन है तो उसे पाले से बचाने के लिए, मृदा एवं वायुमंडल को ठंडा रखने के लिए, एवं वो मिट्टी जहाँ पे लवण की मात्रा बहुत ज़्यादा है उस मिट्टी को लवण से दूर, लवण की मात्रा को कम करने के लिए भी हम जल देने का एक उद्देश्य होता है। इसके साथ ही साथ हम भूमि की सतह को मुलायम करते हैं, जिसके कारण है जो कि हमारे जुताई में आसानी हो।
9: तो यहाँ पर किसान भाइयों, डॉक्टर साहब ने आपको बताया कि मृदा को लवण से दूर करने के लिए, साथ ही मिट्टी को मुलायम करने के लिए, ताकि किसान भाइयों को जुताई करने में आसानी हो, तो ये उद्देश्य है जल प्रबंधन का। आगे और भी बातें होंगी डॉक्टर साहब से, हम आगे जानना चाहेंगे कि धान की खेती में सबसे पहले कि सर हम आपसे जानना चाहेंगे कि सिंचाई की विधि कैसी होनी चाहिए, जिस तरीकों को अपना कर हमारे किसान भाई आसानी से जल प्रबंधन कर सके।
10: सामान्यतः धान की फसल में वर्षा न होने पे या कम होने पे, जब मृदा में नमी सैचुरेशन की अवस्था से कम होने लगे, मतलब संतृप्त अवस्था से कम होने लगे, तो सिंचाई करना आवश्यक होता है। वर्षा के पानी के अच्छे उपयोग के लिए हमें चाहिए कि धान की खेत की मेड़ खूब मजबूत होनी चाहिए। अब हम सिंचाई की विधियों की बात करें तो एक विधि है कंटिन्यूस फ्लडिंग की, जहाँ पे जल प्लावन की स्थिति हम लगातार बनाते हैं। इस विधि में खेत में सदैव पानी को हम भर के रखते हैं ताकि मृदा संतृप्त रहे। मृदा अपचयन के कारण खाद्य तत्वों की उपलब्धता इस स्थिति में बढ़ जाती है और खरपतवार नहीं बढ़ पाते हैं, जिसके कारण है जो कि फसल का डेवलपमेंट ज़्यादा अच्छा होता है। मृदा की सतह पे हम सामान्यतः 2.5 से 5 सेंटीमीटर पानी को रोपनी से फसल के पकने तक की अवधि के लिए हम इसमें रखते हैं। विशेष परिस्थिति में जहाँ जीवांश की मात्रा अधिक होती है वहाँ, और जहाँ जल निकास नहीं होती है वहाँ, अगर ज़्यादा दिन तक ठहरा हुआ पानी रहता है तो उस स्थिति में पौधों में कुछ रोग लगने के कारण होते हैं। इस स्थिति में सामान्यतः देखा गया कि पानी के स्तर अधिक होने के कारण कभी कभी कल्लों की संख्या कम होती है और पौधे की ऊंचाई ज़्यादा हो जाती है, जिससे उसके गिरने की संभावना बढ़ती है और फसल का उत्पादन कम होता है। दूसरी अवस्था है जहाँ कंटिन्यूस फ्लडिंग हो, लेकिन साथ ही साथ हम ड्रेनेज जल निकास की सुविधा रखते हैं। इस विधि में फसल की सभी अवस्थाओं में पानी भरा रहता है, लेकिन बीच में हम एक दो बार जल निकास करके मृदा को असंतृप्त करते हैं। इस प्रकार के जल निकास से मृदा के घोर अपचयन की अवस्था में सुधार होता है, विषैले पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है तथा रोगों में कमी आती है, जड़ों का विकास में सहायता मिलती है तथा फसलों के गिरने की संभावना कम होती है, जिसके कारण फसल का उत्पादन अच्छा होता है। एक तीसरी विधि होती है कंटिन्यूस सैचुरेशन का, जहां पे हम लगातार जल संतृप्त अवस्था में रखते हैं। इस विधि में फसल के दौरान जल मृदा को संतृप्त अवस्था से नीचे नहीं जाने देते। इस विधि में फसल की जल मांग पूरी हो जाती है, लेकिन इसका जो सबसे बड़ा अवगुण है कि इस स्थिति में खरपतवार की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिस कारण श्रम की मांग बढ़ती है, और श्रम की मांग जब ज़्यादा बढ़ेगी तो वहाँ देखा जाता है कि उपज जो लागत है, लागत में वृद्धि होती है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि संतृप्त जल प्लावन और या हम कहें कंटिन्यूस फ्लडिंग जहाँ हो और साथ ही साथ बीच में जल निकास की व्यवस्था हो, वो विधि जल प्रबंधन के लिए सबसे उपयुक्त।
9: तो सर ने बताया किसान भाइयों यहाँ पर कि जल निकास की व्यवस्था जहाँ पर होगी वहाँ पर अच्छी तरीके से जल प्रबंधन किया जाएगा। धान की खेती में सिंचाई की विधि थी ये। और इसके बाद सर यहाँ पर कुछ बातें होती है ध्यान देने योग्य, बातें जो कुछ छोटी मोटी बातें होती है जिससे अगर ध्यान में रखा जाए तो कहीं भी रुकावटें नहीं आती है जल प्रबंधन में। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि जल प्रबंधन के दौरान कुछ ऐसी बातें होती हैं क्या जो जिसे हमें ध्यान में रखना चाहिए।
10: देखिए जल प्रबंधन में जल धान है जो कि पूरी तरह से हम जानते हैं कि जल की उपलब्धता पर निर्भर करती है। संपूर्ण जीवन काल में हम कहते हैं कि खेत में जल का खड़ा रहना अति आवश्यक है
9: जी।
10: और ये अनौक्सीकृत स्थिति होती है, इस कारण स्फूर लोहा और मैग्नीज जैसे पोषक तत्व की उपलब्धता बढ़ जाती है, खरपतवार की संख्या में कमी आती है, इससे हम धान को एक सही वातावरण देते हैं। सामान्यतः हम देखते हैं कि धान के लिए दैनिक जल की आवश्यकता 6 से 10 मिलीमीटर प्रतिदिन है। इस प्रकार हम कहते हैं कि धान के संपूर्ण जीवन काल में 1200 से 1500 मिलीमीटर जल की आवश्यकता होती है। और सामान्यतः ये पाया गया कि अगर हमको 1 किलोग्राम धान की का उत्पादन करना है तो हमें 2000 से 2500 लीटर जल की आवश्यकता होती है। अगर हम जल की आवश्यकता की बात करें कि कब कब जल की आवश्यकता होती है, तो ये देखा गया कि जनरली हम पौधशाला तैयार करने के लिए हमें 50 से 60 मिलीमीटर जल की आवश्यकता होती है, लेकिन खेत की तैयारी के दौरान 200 से 250 मिलीमीटर एवं रोपाई से पैनिकल निकलने तक 400 से 550 मिलीमीटर जल की आवश्यकता होती है। इसी तरह से हम देखते हैं कि पैनिकल निकलने से फूल होने तक सामान्यतः 400 से 450 मिलीमीटर जल की आवश्यकता होती है एवं पुष्पन से पकने तक 100 से 150 मिलीमीटर। अगर हम गहराई की बात करें तो सामान्यतः हम कहते हैं कि जब आप धान लगाते हैं तो जल की गहराई 2 से 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और ये अवस्था हमको शुरू के 7 दिनों तक कम से कम मेंटेन रखना चाहिए। पुनः हम कहते हैं कि कल्ला निकलने के समय 22 से 45 दिन तक भी जल की स्थिति जल ज़्यादा नहीं रखना चाहिए, लेकिन जब हम बात करें बाली निकलने की या पुष्पन की अवस्था उस समय हम 4 से 5 सेंटीमीटर जल की गहराई रखें तो वो उपयुक्त होती है। लेकिन हम देखते हैं कि पकने की अवस्था में हमें जल पकने की अवस्था या कहें पुष्पन की अवस्था के 3 सप्ताह के बाद हमको खेत से पानी पूरी तरह से निकाल देना चाहिए एवं उसको केवल संतृप्त अवस्था में ही रहने देना चाहिए।
9: तो कुल मिलाकर बातें हुई यहाँ पर डॉक्टर साहब की हमें जल की मात्रा पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। इसके बाद हम डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहेंगे कि धान की क्रांतिक अवस्थाएँ क्या होती हैं।
10: देखिए क्रांतिक अवस्था वो अवस्था होती है जिस समय फसल को उस चीज की आवश्यकता विशेष कर हो। जल की क्रांतिक अवस्था का मतलब हो गया कि उस अवस्था में यदि नमी की कमी होगी तो फसल के उत्पादन पे इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा तथा उपज
9: नमी रहना अनिवार्य है
10: या बहुत जरूरी है नमी रहना। अगर नमी की मात्रा घट जाएगी तो उपज में कहीं ना कहीं गिरावट आएगी। अब जब धान की क्रांतिक अवस्था की बात करें तो कल्ला निकलने का समय पहली क्रांति का अवस्था है, दूसरा हम कहें बाली निकलने की अवस्था, फिर हम कह सकते हैं बाली निकलने के समय एवं फूल लगने के समय। ये 4 अवस्था है जो जहाँ पे नमी की स्थिति कम से कम संतृप्त अवस्था में होनी चाहिए। सामान्यतः देखा गया कि अगर सक्रिय कल्ले निकलने की अवस्था में नमी की मात्रा घट जाती है तो उपज में 30 से 40% की कमी आती है, वहीं अगर रिप्रोडक्शन स्थिति में नमी की कमी हो जाती है तो हम उपज में 50-60% की कमी भी दर्ज कर सकते हैं।
9: तो किसान भाइयों आप इस बात का खास ख्याल रखें कि नमी में बिल्कुल भी कमी नहीं होनी चाहिए अगर आप धान की अच्छी तरीके से खेती करना चाहते हैं तो। और इसके बाद सर हम आपसे जानना चाहेंगे कि जल की दक्षता बढ़ाने के लिए हमारे किसान भाइयों को किन बातों पर ध्यान देना चाहिए।
10: सामान्यतः जल की दक्षता बढ़ाने का मतलब हुआ कि हम किस तरह से कम पानी का इस्तेमाल करके ज़्यादा उपज ले सकें। सामान्यतः हम देखते हैं जितना जल देते हैं जल का बहुत सारा भाग है जो कि या तो बह के निकल जाता है या कहीं एक जगह पे जमा हो जाता है। तो दक्षता बढ़ाने के लिए सबसे पहली बात है कि हमें कदवा एवं समतलीकरण करें अपने खेतों की। अगर खेत समतलीकरण करेंगे तो खेत में एक समान पानी रहेगा और उस स्थिति में हमें जल की आवश्यकता कम होगी। सामान्यतः हमको जब खेत की तैयारी करें तो हमको ट्रैक्टर चालित केज व्हील सहित एमबी प्लाउ से जुताई करनी चाहिए। सामान्यतः एमबी प्लाई से एक जुताई एवं डिस्क हैरो से दो बार पडलिंग करने से फसल की स्थापना अच्छी होती है। सामान्यतः ये भी करें कि रोपा के समय खेतों में 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा पानी न रखें, क्योंकि अगर पानी अधिक रहेगा तो रोपाई की गहराई ज़्यादा होगी, परिणाम स्वरूप कल्ला कम निकल सकता है। रोपाई के बाद अगले 7 दिनों तक हम 2 सेंटीमीटर खड़ा जल रहना रखें अवश्य रखें। उसके बाद पूरी फसल की अवस्था तक आप चाहें तो 5 सेंटीमीटर खड़ी जल रख सकते हैं। जड़ विकास एवं कल्ला निकलने के समय जल की कमी होने से कल्ला कम निकलता है, जिसके कारण पौधों की संख्या में कमी आएगी और अंततः उत्पादन पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा। बूटिंग और पकने की स्थिति में 5 सेंटीमीटर और उससे ज़्यादा खड़ी जल रहने की अवस्था में जल की हानि होगी, जड़ की हानि होती है एवं लीफ में सेनेसेंस हो सकता है, जिसके कारण बाली में भरे हुए दानों की संख्या कम होगी, मतलब आपका उत्पादकता पे असर पड़ेगा। समय के अनुसार हमको जल निकास की अवस्था भी रखनी चाहिए एवं कटाई के 10-15 दिन पहले हमको सिंचाई रोक देनी चाहिए। तो हम धान के जल प्रबंधन में इन सब बातों को ध्यान रखेंगे तो हमारी जल की दक्षता बढ़ेगी।
9: तो किसान भाइयों, डॉक्टर साहब ने आप सभी को बताया कि रोपाई की गहराई ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, नहीं तो कल्ला कम आएगा। और भी बहुत सारी बातें डॉक्टर साहब ने यहाँ पर बताया आप सभी को, और आशा करते हैं हमारे किसान भाइयों और बहनों की डॉक्टर साहब द्वारा दिए गए सुझावों को आप अपनाएंगे और धान में जल प्रबंधन आप अच्छे तरीके से करेंगे और धान की खेती बहुत ही अच्छी मात्रा में आप कर पाएंगे। तो डॉक्टर साहब, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
10: धन्यवाद।
9: आगे और भी बातें होती रहेंगी हमारे किसान भाइयों से। अगले विषय, अगले चर्चा के साथ आप सभी से यूं ही मिलती रहूंगी मैं। तब तक के लिए नमस्कार। उन्नत कृषि।
11: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर 0 अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना 0 बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
12: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
13: हर घर सूर्य घर।
14: नमस्ते क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
15: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने, हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
14: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना है। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
16: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल 0 आ सकता है। मैंने कहा बेटा, नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल 0 आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
13: हर घर सूर्य घर।
8: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।
1: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

0: हम लोग धान रोपाई में जो धन रोपनी जो धान रोपती है और कभी कभी सुखार पड़ जाते हैं, इसलिए पानी का जो अभाव होता है, इसलिए गंगा माँ से निवेदन करके रोपनी गाती है और कहती है कि कैसे मेरा धान का खेती उदास पड़ा हुआ है।
1: जैसे हम लोग गोछी लेते हैं तो उसमें सब देवी देवता को पूजन करते हैं, सबको सुमर करके गीत गाते हैं।
2: FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।
3: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा और आप सुन रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि। उन्नत कृषि जहां हम बात करते हैं विभिन्न फसलों के बारे में और उनसे जुड़ी बातें। आज हम बात करने वाले हैं कौनी मिलेट के बारे में और किस तरीके से इसकी खेती करनी चाहिए, क्या विशेष बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, इस बारे में हमें विस्तार से बताने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर महेश कुमार सिंह। सर, आप हैं एसोसिएट प्रोफेसर कम सीनियर साइंटिस्ट, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
4: बहुत बहुत धन्यवाद।
3: सर, जब हम बात कर रहे हैं कौनी मिलेट की, तो क्या कौनी मिलेट जलवायु के अनुकूल होता है?
4: देखिए, कौनी जिसको हम लोग इंग्लिश में फॉक्सटेल बोलते हैं, इटालियन मिलेट के नाम से भी जानते हैं, ऐसी मान्यता है कि सभी मिलेट्स का जो उत्पत्ति स्थान है वो भारत है। सिर्फ ये कौनी ही एक ऐसी फसल है जिसका एशिया में उत्पादन जन्म स्थान है जो कि चाइना हो जाता है। तो इसको हम सेटारिया टेलकर के नाम से जानते हैं और इंग्लिश में फॉक्सटेल, फॉक्स मतलब लोमड़ी, टेल मतलब पूंछ। तो इसकी जो बालियां होती हैं लोमड़ी की पूंछ की तरह बिल्कुल लटकी रहती हैं। 25 से 30 सेंटीमीटर अलग अलग प्रजातियों की लंबाई होती है बालियों की, मतलब कुछ बालियां जैसे SI 3156 है, इसकी बाली सबसे लंबी होती है, 32 सेंटीमीटर तक लंबाई होती है, अर्थात 1 फीट की लंबाई हो जाती है इसकी बालियों की। तो ये सभी फसलें चूँकि कम पानी चाहने वाली फसलें हैं, अधिक तापमान में को भी सह करके उत्पादन दे देती हैं। हमारे बिहार राज्य में खरीफ मौसम में भी उगाई जा सकती हैं, गर्मी के मौसम में भी उगाई जा सकती हैं। हमारे किसानों के लिए तो बहुत एक अल्टरनेटिव, सच कहा जाए तो जो मूंग होता है, मूंग का एक अल्टरनेटिव फसल है गर्मी के लिए। वहीं बरसात के लिए जिन क्षेत्रों में सुखाड़ की स्थिति है वहां तो ये बहुत ही रामबाण साबित हो रही हैं, क्योंकि मात्र 90 दिनों में पककर तैयार होने वाली ये कौनी आपको प्रति एकड़ 10 से 11 क्विंटल तक उत्पादन क्षमता दे रही है। और इसका चावल मार्केट में देखिए तो 150 रुपये किलो तक का चावल है और वो भी समय पर मिल नहीं पा रहा है। हमारे ऋषि मुनि इन सभी फसलों का सेवन करके 200 साल तक जीवित रहा करते थे। तो इस जलवायु अनुकूल फसल को उगाना तो हमारे लिए बहुत ही लाभकारी है ही। हम पूरे पारिस्थितिकी इकोसिस्टम को भी संतुलित कर सकते हैं इन सब की खेती को बढ़ावा दे करके।
3: जी सर, और अगर हम बात करें कि कब हमें कौनी मिलेट की खेती करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए?
4: तो कौनी की जो उपयुक्त समय होती है बुआई का, खरीफ मौसम में हम लोग 15 मई से लेकर के 15 जुलाई तक, जब कभी भी खेत हमको खाली मिल जाए और खेत में सफिशियंट मॉइस्चर हो, नमी हो, उस समय हम इसकी बुआई कर सकते हैं। क्योंकि ये 85 से 90 दिनों में पककर तैयार होती है, 3 महीने में पककर तैयार हो जाती है। तो अब देखा जाए कि अगर हम, कुछ हमारे किसान भाई हैं जो कि इसकी बुआई लोग क्या करते हैं कि इनका सरसों है, मसूर है, चना है, इसकी कटाई करने के बाद बुआई मार्च के प्रथम सप्ताह में कर देते हैं। तो जब मार्च के प्रथम सप्ताह में करते हैं तो इनकी फसल जून के प्रथम सप्ताह में पक करके तैयार होती है। फिर दूसरी फसल 15 जून तक बरसात मिल जाता है या कभी कभी 20 जून तक बरसात का पानी मिलता है, तुरंत उसमें दूसरी फसल दे देते हैं इसी कौनी की। तो 20 जून को बुआई करते हैं तो पुनः 3 महीने, जुलाई, अगस्त, 20 सितंबर तक पक के तैयार हो जाती है। तो हम देखा जाए तो गर्मी और खरीफ में एक एक फसल बड़े आराम से इसकी ले सकते हैं और अच्छे उत्पादन दे देती है। तो खरीफ मौसम में सबसे बेस्ट टाइमिंग हम बात करें तो 15 मई से लेकर के आप 15 जून या लेट कंडीशन में 15 जुलाई तक भी इसकी बुआई आप कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और भी अगर आपको खेत खाली हो रहा है तो आप 30 जुलाई तक भी कर रहे हैं तो भी उत्पादन में कोई कमी नहीं होती है, हम लोग ऐसा रिसर्च करके देख चुके हैं। तो इसका हम यूँ कर सकते हैं 15 मई से लेकर 30 जुलाई तक जब भी आपको मौका मिले खेती कर सकते हैं। 30 जुलाई से 15 अगस्त के बीच में जब बुआई करेंगे तो थोड़ा सा 5 से 10% उत्पादन में कमी आ जाती है। तो कहीं कोई घबराने की जरूरत नहीं है, आपके पास बहुत लंबा विंडो है। 15 मार्च से लेकर 10 मार्च से लेकर के आप देखा जाए तो 30 अगस्त तक जब भी आपका खेत खाली है आप बुआई कर सकते हैं, आपके लिए बहुत ही एक लाभकारी फसल है। अब प्रश्न उठता है कि इसकी खेती कैसे करें। तो जैसे हम बाकी मिलेट्स या दूसरे फसलों की खेती के लिए खेत की तैयारी करते हैं, वैसे ही इसकी भी खेत की तैयारी करनी होगी। 2 से 3 बार जुताई करके पटा कर दें, खेत अच्छे से तैयार हो जाए। तो खरीफ मौसम में अगर हम रेज बेड पे लगाते हैं तो ज़्यादा लाभ होगा। रेज बेड के पीछे हमारा कहने का मतलब ये है कि फसल के बीज के पास कभी भी जल का जमाव नहीं होना चाहिए। ऊपरी और मध्यम ऊपरी ज़मीन में ही इसकी खेती करें, जहाँ कहीं बरसात का पानी न जमा होने पाए वहीं खेती करें इसकी। तो अच्छे से तैयार खेत में हम रेज बेड या ब्रॉड बेड एंड फरो मेथड से बेड बनाकर खेती करें। वो सुविधा नहीं है तो हम फ्लैट मेथड्स में सीधा बुआई कर सकते हैं, कतार से कतार की दूरी 9 से 10 इंच रख सकते हैं। बीज की गहराई किसी भी दशा में 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा गहरा न रखें, अन्यथा ज़्यादा गहराई पर जाने पर बीज का जमाव नहीं होता है। अब बात आती है इसमें उपयुक्त प्रजातियों की, क्योंकि जो भी प्रजातियाँ हैं अगर हम परंपरागत अपनी पुरानी प्रजातियां लेंगे तो उत्पादन में गिरावट आएगी, तो आप कहिएगा कि धान की तुलना में प्रॉफिट कम हो रहा है। लेकिन निश्चित तौर पे अगर आप जो अभी हम बताने जा रहे हैं उन प्रजातियों का प्रयोग करेंगे तो धान से ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा। जैसे कि कौनी का एक प्रजाति है SIA 3156, दूसरा है SIA 326 और तीसरा प्रजाति है SIA 3088, चौथा है श्री लक्ष्मी। ये चारों प्रजातियाँ हम ले सकते हैं। एक प्रजाति हमारा राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी से निकली हुई है, राजेंद्र कौनी 1, इसको भी ले सकते हैं। SIA 3156 सबसे अच्छी प्रजाति है, इसका हम लोग अपने रिसर्च स्टेशन पर 11 क्विंटल प्रति एकड़ तक उत्पादन ले चुके हैं। जब हम लोग इसको BBF पर लगाते हैं, ब्रॉड बेड फरो पर लगाता है, फील्ड में पानी का जमाव कभी नहीं होता है, तब अच्छे कंडीशन में 11 क्विंटल उत्पादन दे देती है। किसान भाइयों के पास सुविधा है तो आप BBF पे बुआई करें, रेज बेड बनाकर बुआई करें, नहीं तो कतारों की दूरी 9 इंच रखते हुए 10 इंच रखते हुए आप फ्लैट मेथड में बुआई कर सकते हैं। अगर आपके पास ऐसा कोई बुआई का इक्विपमेंट नहीं है तो आप इसकी ब्रॉडकास्टिंग भी कर सकते हैं, छिटकवा विधि से भी बो सकते हैं, लेकिन छिटकवा विधि में आपको बीज दर थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। तो प्रति एकड़ इसका जो बीज दर है वो 4 किलोग्राम पर्याप्त हो जाता है, लेकिन आप छिटकवा विधि से लगा रहे हैं तो वहां पे बीज दर 25% बढ़ाना होगा, अर्थात आपको 5 किलोग्राम बीज प्रति एकड़ लेना पड़ेगा। तो छिटकवा

0: दाओ तभी गर्मी की खेती करें, 15 मार्च 10 मार्च को बुआई करें, नहीं तो सिर्फ खरीफ फसल की बुआई करें अगर सिंचाई की सुविधा नहीं है तो। जब बरसात का पानी मिलता है आपको मई के अंतिम सप्ताह में या 15 जून तक, जब भी सिंचाई का बरसात का पानी मिलता है आप इसकी बुआई कर सकते हैं। कभी कभी लेट मानसून आता है तो आप लेट से भी बुआई कर सकते हैं, जैसा हमने पहले बताया इसकी बुआई हम लोग 15 अगस्त तक भी अगर करते हैं तो भी कहीं कोई खास दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से हम इसकी विभिन्न टाइम पर विभिन्न विधियों से बुआई कर सकते हैं। किसी कारणवश हमको इंटेंसिफिकेशन करना है तो हम इसकी नर्सरी डाल करके रोपाई भी कर सकते हैं। लगभग 22 से 25 दिन का बिचड़ा जो है हम 25 सेंटीमीटर की दूरी पर कतारों में मेंटेन करते हुए 20-20 सेंटीमीटर की दूरी पर रोपाई कर सकते हैं और बहुत अच्छा लाभ मिलता है। रोपाई में जितना खर्च होता है उतना हमारा निराई में खर्चा बच जाता है, क्योंकि जब हम रोपाई करेंगे तो एक निराई का खर्चा बच जाएगा। अब खरपतवार प्रबंधन भी एक बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि अगर समय पर हम खरपतवार का प्रबंधन नहीं करते हैं तो इतना ज़्यादा खरपतवार हो जाते हैं कि फसल का उत्पादन, जैसा हमने बताया 10 से 11 क्विंटल तक उत्पादन क्षमता है, लेकिन अच्छे कंडीशन में अगर ज़्यादा खरपतवार, बहुत हैवी खरपतवार लग जा रहा है तो आपको 5 क्विंटल से ऊपर प्रति एकड़ उत्पादन नहीं मिलने वाला है। इसलिए समय पर विशेषकर बुआई से 15 दिन से लेकर के 35 दिन तक खेत आपका खरपतवार से फ्री होना चाहिए। अब खरपतवार को हटाने के लिए, खरपतवार को न आने देने के लिए, खरपतवार प्रबंधन के लिए आपको बहुत सी विधियां हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं, इन फसलों को लगाना है तो कहीं कहीं जहां हमारे पास हर्बिसाइड नहीं है वहां हम गर्मी की गहरी जुताई कर देते हैं, जो भी परेनियल खरपतवार हैं वो नष्ट हो जाते हैं, खरपतवार के बीज भी नीचे चले जाते हैं तो खरपतवार कम आते हैं, तो वो विधि भी लगाई सकती है। दूसरा है कि हम बहुत से हमारे पास आजकल पावर बीडर आ गए हैं, पावर बीडर का प्रयोग करके हम लोग कतारों के बीच में मशीन चला करके खरपतवार नियंत्रण कर सकते हैं। दूसरा है मैनुअल बीडर, आजकल मैनुअली जो मानव चालित यंत्र हैं उसका भी कतारों के बीच में प्रयोग करके हम लोग खरपतवार का नियंत्रण कर सकते हैं, जो थोड़ा बहुत पौधों के किनारे पर खरपतवार उसको हम मैनुअली लेबर से निकाल सकते हैं। तीसरा मेथड हम यूज कर सकते हैं रसायन का, इसके लिए पेंडीमिथिलीन 1 किलोग्राम सक्रिय तत्व पर्याप्त हो जाता है, अर्थात यूं कहें कि 1 से 1.25 लीटर बाजार का पेंडीमिथिलीन प्रति एकड़ हमें प्रयोग करना है बुआई के तुरंत बाद, बुआई के 24 घंटे के अंदर दे देना है। दवा देते समय ध्यान रखना चाहिए कि अगले 24 घंटे तक बरसात न होने की संभावना हो। अगर आपका कृषि वैज्ञानिक से सलाह मिली है कि बरसात होने वाली है तो कदापि प्रयोग न करें। पेंडीमिथिलीन का प्रयोग आपको तभी करना है जब मौसम साफ सुथरा रहे और अगले 24 घंटे तक बरसात न होने की संभावना रहे, तभी प्रयोग करें। क्योंकि इन सब का बीज की बुआई हम लोग उथला करते हैं, 2 सेंटीमीटर हमने बताया गहराई पर करते हैं, और अगर पेंडीमिथिलीन हम देते हैं और उसके तुरंत बाद 10 घंटे बाद बरसात हो जाती है तो क्या होगा कि पेंडीमिथिलीन रिस करके बीज के संपर्क में चला जाएगा और इसके कौनी के बीज को भी जमने नहीं देता है, तो ये सावधानी थोड़ा बरतनी पड़ती है। किसान भाइयों की सुविधा के लिए बता दें कि आप 30 ml पेंडीमिथिलीन दवा प्रति टंकी के दर से प्रयोग कर सकते हैं और 1 एकड़ में लगभग 10 टंकी पानी जरूरत पड़ती है इस तरह से। लेकिन ध्यान रखना होगा बुआई के तुरंत बाद करें या 24 घंटे के अंदर कर लें तो ज्यादा बेहतर है, बशर्ते बरसात होने की संभावना नहीं होना चाहिए। दूसरा, इसमें हर्बिसाइड हमारे पास अभी तक जो मार्केट में उपलब्ध है इन सब फसलों के लिए केवल 2,4-D ही है, और 2,4-D जो हमारा 58% का है उसका भी प्रयोग कर सकते हैं, 2,4-D 80% का भी प्रयोग कर सकते हैं, 2,4-D एक लो कंसंट्रेशन का आता है उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। 58% का अगर दवा है तो उसका जनरली 25 ml प्रति टंकी पानी के दर से व्यवहार करें तो आपकी फसल में जो चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार है वो मर जाते हैं, लेकिन जो सक्रिय पत्ती और बाकी खरपतवार है वो बचे रहते हैं, तो उनको आपको लेबर लगा करके ही निराई करवानी पड़ेगी। तो इस तरह से खरपतवार का प्रबंधन कर सकते हैं, और इस तरह से अगर खेती करते हैं तो निश्चित तौर पे आपको प्रति एकड़ 8 से 10 क्विंटल कौनी बीज उपलब्ध हो जाएगा, उत्पादन मिल जाएगा।
1: सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ही अच्छी तरीके
0: से। किसान भाइयों के लिए एक और मेरे पास एक ऑफर है, जो हम लोग एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस मिलेट वैल्यू चेन प्रोजेक्ट चला रहे हैं, उसके तहत हम लोग बीज उपलब्धता के अनुसार पर 25 से 30 किसानों को हम लोग निःशुल्क इसका बीज वितरित करेंगे। जो भी इच्छुक किसान हैं, प्रगतिशील किसान हैं, वो हमारे यूनिवर्सिटी के डायरेक्टोरेट ऑफ सीड एंड फार्म से संपर्क कर सकते हैं या मुझसे भी डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं, उनको निःशुल्क हम लोग बीज उपलब्ध करा देंगे 2 kg प्रति फार्मर्स। जिन किसानों को ज़्यादा एरिया में लगाना है वो लोग बिहार सरकार के जो उनके ब्लॉक में कृषि पदाधिकारी हैं उनसे संपर्क करके रजिस्ट्रेशन करा करके वो लोग इस फसल की उत्पादन कर सकते हैं। उसके लिए बिहार सरकार इनको 4,000 रुपये तक का अनुदान दे रही है, 2,000 रुपये इनके खाते में डाल देती है, जबकि 2,000 रुपये का विभिन्न प्रकार के इनपुट्स इनको उपलब्ध करके देती है।
1: तो किसान भाई बहनों आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत।

0: खसरा कितनी गंभीर बीमारी है। टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MRT का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हो तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है PM सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। PM सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्यघर.gov.in।
5: हर घर सूर्य घर।
6: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टिको क्यों इतने जीरो?
1: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
6: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
6: तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात, अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
0: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
1: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
7: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 ग्रीन FM।

बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 22 से 26 जुलाई के दौरान आसमान में घने बादल छाए रहेंगे और जिले में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी चलने और हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 26 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 90% और दोपहर में 70 से 80% रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए। जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दे, पिछले कुछ दिनों में हुई वर्षा का लाभ उठाइए और आगे भी संभावना है कि वर्षा होगी, तो ऐसी स्थिति में धान की रोपाई के लिए व्यवस्था सुनिश्चित कर ले। रोपाई से पहले प्रति हेक्टेयर 25 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस, 30 किलोग्राम पोटाश और 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट का प्रयोग करें। आपको बता दें कि निचली जमीन के चारों ओर मजबूत मेड़ यानी कि बांध बनाकर वर्षा जल का संचयन कर ले, ताकि जरूरत पड़ने पर आप वर्षा के जल का सिंचाई में उपयोग कर सके। जो किसान भाई बहन श्री अन्न की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दे, मोटे अनाजों की खेती के लिए उचास भूमि का चयन करें। मड़वा की वकुला KMR 316, GPU 67 और VL 379 राजेंद्र मड़वा RU 8 और RU 3। और आपको बता दे, कौनी की अनुशंसित किस्में हैं राजेंद्र कौनी 1, आप इन किस्मों की बुआई कर सकते हैं। मक्का की खेती करने वाले किसान भाई बहन ध्यान दे, खरीफ मक्का की बुआई आसमान साफ रहने पर ही करें। खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और ध्यान रखें कि बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलो

किलोग्राम नेत्रजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश जरूर डालें। अनुशंसित मक्का की किस्में जैसे सुवान, देवकी, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, राजेंद्र संकर मक्का 3, गंगा 11 है। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, मिर्च, अगाध गोभी, टमाटर जैसी सब्जियों की नर्सरी तभी तैयार करें जब आसमान साफ हो। और बागवानी करने वाले भाई बहन ध्यान दें, जुलाई अगस्त आम के पौधों के रोपण के लिए सबसे उपयुक्त समय होता है। कलमी पौधों की रोपाई 10x10 मीटर और बीजू पौधों की रोपाई 12x12 मीटर की दूरी पर करें। सघन बागवानी के लिए 5x5 मीटर और अम्रपाली के लिए 2.5x2.5 मीटर की दूरी रखें। फलदार वृक्षों में प्रति वर्ष 1 किलोग्राम नाइट्रोजन, 30 किलोग्राम फास्फोरस, 700 किलोग्राम पोटाश और 80 से 100 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद जरूर डालें। आपको बता दें, इस समय केला के स्वस्थ सकर्स की रोपाई करें। लंबी किस्मों जैसे अल्पान, कंथली, मालभोग, चिनिया, G9 और बॉनी किस्में जैसे ग्रैंड नेन, रोबस्टा, बसराई का चयन करना सबसे फायदेमंद होता है। लंबी किस्मों के लिए 2x2 मीटर और बॉनी किस्मों के लिए 1.5x1.5 मीटर की दूरी रखें। प्रत्येक गड्ढे में 5 किलोग्राम गोबर की खाद, 500 ग्राम अरंडी की खली, 300 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट, 100 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश और 10 ग्राम कार्बोफ्यूरान मिलाना न भूले। रोपाई से पहले सकर्स को कार्बन डाइजिंग 2 ग्राम प्रति लीटर पानी से उपचारित करें। किसान भाई बहनों, टिश्यू कल्चर पौधे का उपयोग अधिक उत्पादन के लिए लाभकारी होता है। पशुपालक भाई बहन ध्यान दें, पशुओं में PPR, MFD यानी कि खुरपका मुंहपका और HS यानी कि गला घोटू, इन रोगों का खतरा अधिक है। इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण करवाएं, उन्हें साफ और सूखा रखें और बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। रोग के लक्षण अगर दिखाई दे तो तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें और ध्यान रखें कि पशुओं की बिना जरूरत के आवाजाही पर नियंत्रण रखें। गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए जून माह में अगर टीके नहीं लगाए गए हों तो इस महीने में टीके जरूर लगवा दें। पशुओं को संतुलित और पौष्टिक आहार दें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।
2: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
4: हर घर सूर्य घर।
1: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खान पान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूँ आपके साथ आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, लेडीज फर्स्ट कार्यक्रम में आज हम बात करने वाले हैं उन महिलाओं के बारे में जो घर से दूर अकेली रहती हैं या फिर कई बार उन्हें अकेले यात्रा करनी पड़ती है। एक जमाना हुआ करता था जब महिलाएं लड़कियां घर पर रहती थी, लेकिन बदलते समय के साथ महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। ऐसे में उन्हें बाहर निकलकर काम भी करना पड़ता है और कई बार स्थिति ऐसी भी होती है कि उन्हें बाहर अकेले यात्रा भी करनी पड़ती है। तो ऐसे में उनकी प्राथमिकता जो होनी चाहिए वो उनकी सुरक्षा होनी चाहिए। अगर आप घर से दूर अकेली रह रही हैं तो आपने अपने लिए कोई घर जरूर देखा होगा, कोई फ्लैट देखा होगा। तो सबसे पहली चीज का जो आप ध्यान रखें, एक ऐसे सुरक्षित जगह पर फ्लैट लें जहां सुरक्षित वातावरण हो। आप एक बार अपने आसपास जरूर देख लें कि वहां कैसे लोग रहते हैं। अब आपने अपना घर ले लिया है, आसपास के लोगों को भी देख लिया है, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि आप अभी जिस घर में रहने जा रही हैं उस घर में आपसे पहले कौन रहता था। आप उन्हें ना जानती हो, लेकिन अभी आपके घर के लॉक को शायद वो जानते हैं। तो जैसे ही आप अपने नए घर को तय कर लेती हैं, तो दूसरा काम ये करें कि आप अपने घर के लॉक को बदलें। इससे होता ये है कि आपके पहले जो भी किराएदार वहां रहते थे उनका एक्सेस वहां खत्म हो जाता है और हो सकता है कि इसके पहले जो लॉक लगा हुआ था उसके बारे में किसी को जानकारी हो या फिर उसकी एक चाबी किसी के पास हो। तो इसलिए आप जैसे ही नए घर में जाते हैं उसका लॉक बदलना जरूरी हो जाता है। इसके आगे ये कोशिश करें कि अगर हो सके जिस एरिया में आप रहती हैं वहाँ अगर कोई कैमरा है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो अपने घर के एंट्री पॉइंट पर कैमरा लगवा सकती हैं तो जरूर लगवाएं। अगर आपने अपने घर के एंट्री पॉइंट पर कैमरा नहीं लगवाया है या फिर ये अलाउड नहीं है, तो एक और काम आप कर सकते हैं। सबसे पहले तो एक पीप होल लगाएं या तो फिर वीडियो डोरबेल लगाएं। सबसे पहले जानते हैं कि पीप होल क्या होता है। आपके घर के मेन दरवाजे पर एक छोटा सा छिद्र बना होता है जिसे आप देख सकते हैं कि आपके दरवाजे पर कौन खड़ा है, या तो फिर वीडियो डोरबेल लगवाएं। जैसे ही आपके घर पर कोई घंटी बजाएगा आप अपने कमरे में बैठे बैठे ये देख पाएंगे कि दरवाजे पर कौन खड़ा है। ये जानना बहुत जरूरी होता है जब आप अकेली रह रही होती हैं कि आपके घर के अंदर कौन आ रहा है। किसी भी अजनबी को घर के अंदर बुलाने से पहले एक बार जरूर सोचें। और कई बार ये होता है कि आपके घर पर कोई परेशानी हो गई और किसी अजनबी को, किसी मैकेनिक को या ऐसे ही किसी और को बुलाना पड़ जाता है। तो इस वक्त आप ध्यान रखें कि आपने किसे बुलाया है, कब बुलाया है, इस बात की जानकारी अपने किसी परिचित को जरूर दें। आप एक काम और कर सकती हैं, कुछ ऐसे पालतू जानवर आप पाल सकती हैं जो आपकी सुरक्षा को सुनिश्चित करता हो। जैसे कि अगर आप कुत्ता पालती हैं तो वो किसी भी अनजान व्यक्ति को देखकर शोर करने लगता है। ये खास तौर से रात के लिए फायदेमंद होता है। रात को अगर कोई आपके घर के अंदर चोरी चुपके से घुसने की कोशिश करता है तो कुत्ता शोर करने लगता है और ऐसे में आप बिल्कुल अलर्ट हो जाते हैं। इसके साथ ही कुत्ता पालने का एक और फायदा होता है कि ये आपके मूड को बहुत अच्छा बनाए रखता है। आप अकेली रहती है, अकेले रहने वाले लोगों को डिप्रेशन का ज्यादा खतरा होता है। अगर ऐसे में आपके पास कोई क्यूट सा पालतू जानवर होगा तो आपका मूड भी अच्छा बना रहेगा। ये तो बातें हो गई घर के अंदर की। आपके घर के आसपास कैसे लोग हैं ये आपने घर लेने से पहले देख लिया था। अब आपको ये भी करना होता है कि आप अपने घर के आसपास के लोगों से अच्छे रिश्ते बना कर रखें। इससे ये होगा कि वो भी आपकी सुरक्षा का ध्यान रखेंगे, वो भी आपका ध्यान रखेंगे। आप जब घर पर रहती हैं तब की सुरक्षा की बात तो हो गई, लेकिन जब आप घर से बाहर जाते हैं तो आप क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम घर की सुरक्षा की बात करते हैं। कई बार आप घर से बाहर जाते हैं और आपके पीछे घर से बहुत कीमती सामान की चोरी हो जाती है। इससे बचने के लिए आप क्या करें कि आपने तो अगर कैमरा लगवाया हुआ है तो बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा आप ये भी कर सकते हैं कि आप स्मार्ट होम डिवाइसेस खरीद सकते हैं, स्मार्ट लाइट्स खरीद सकते हैं। ये शाम होते ही जल जाएंगे और लोगों को लगेगा कि आप घर पर ही हैं और चोर उचक्के आपके घर से दूर रहेंगे। घर से निकलने से पहले आप इस बात का ध्यान जरूर रखें कि आपने घर का दरवाजा अच्छे से बंद किया है और एक स्पेयर की जो आप रखते हैं, यानी कि एक एक्स्ट्रा चाबी जो आप रखते हैं, उसे आपने अच्छे से छुपाया है या नहीं, इस बात का भी आप ध्यान रखें कहीं ये किसी और के हाथ में न लग जाए। ये सोशल मीडिया का जमाना है और हर कोई अपनी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात को सोशल मीडिया पर अपडेट करता है। ऐसे में आप इस बात का ध्यान जरूर रखें कि आप कहाँ जा रही हैं। इसे सोशल मीडिया पर तुरंत अपडेट करने की जरूरत नहीं है। अगर आप कहीं गई हैं, घूमने गई हैं, तो वहां से आने के बाद आपको जो भी अपडेट करना है वो करें, लेकिन वहां होते हुए आप अपडेट करने से बचें। बाहर वालों को अपडेट करना बिल्कुल जरूरी नहीं है, लेकिन घर वालों को अपडेटेड रखना बहुत जरूरी है कि आप कहाँ हैं, किस हाल में हैं, किन के साथ हैं। ये आपके सुरक्षा को सुनिश्चित करती है। इसके लिए आप अपने फोन की लोकेशन भी हमेशा ऑन रखें, जिससे कि आपके परिवार को आपके लोकेशन की जानकारी मिलती रहे। और खास तौर से अगर आप किसी नई जगह जा रही हैं तो ये जरूर करें, किसी करीबी के साथ अपने लोकेशन साझा कर दे और किसी एक करीबी को ये जरूर बता दे कि आप कहाँ और कब जा रही हैं। अपने पास कुछ इमरजेंसी नंबर लिखकर जरूर रखें। आजकल हमारे पास सब कुछ फोन में होता है, लेकिन कई बार हमारा फोन गुम हो जाता है। ऐसे में आप अपने कुछ करीबियों का नंबर याद करके रखें या फिर नोट करके रखें, और कुछ ऐसे इमरजेंसी नंबर्स भी रखें जो आपको तुरंत सहायता पहुंचाती है। जैसे हमारे बिहार में 112 है, अगर आप किसी परेशानी में फंसती हैं तो 112 पर कॉल करने से आपको जल्दी से जल्दी सुरक्षा मुहैया कराई जाती है। आपको अपने साथ पर्स में कुछ सेफ्टी टूल्स भी रखने चाहिए, जैसे कि आप पेपर स्प्रे रखें, फोल्डिंग चाकू रखें। ऐसी ही कुछ छोटी छोटी चीजें आप अपने साथ जरूर रखें, यह आपकी सुरक्षा को सुनिश्चित करता है। ये आपकी परेशानी में आपका सबसे बड़ा साथी साबित होता है। अगर आप रात को कैब से ट्रेवल कर रही हैं तो अपने किसी करीबी को अपना लोकेशन जरूर शेयर करें, और साथ ही कैब की जानकारी अगर हो सके तो किसी के साथ शेयर करके रखें। और साथ ही आप ये भी ध्यान रखें कि कैब वाला आपको किस रास्ते से लेकर जा रहा है, ये कोई अनजान या सुनसान रास्ता तो नहीं है। और अगर सुनसान रास्ता है और यही एक रास्ता है आपके मंजिल तक पहुंचने का, तो आप उस दौरान अपने किसी परिचित से हो सके तो बात करते रहें, ये आपकी सुरक्षा के लिए जरूरी हो जाता है। और ये भी ध्यान रखें कि देर रात आप घर लौट रही हैं या कहीं जा रही हैं तो कोई अनजान रास्ता चुनने से जितना हो सके बचें, और मोबाइल फोन को पर्स में रखने की जगह अपने हाथ में रखें ताकि कोई परेशानी हो तो फटाक से आप किसी को फोन कर सकते हैं। अगर हो सके तो अपने फोन में आप वुमेन सेफ्टी ऐप भी इंस्टॉल करके रखें। अगर इन सारी चीजों का आप ध्यान रखते हैं तो बाहर आप अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित करते हैं। तो लेडीज फर्स्ट में आज इतना ही, आप जुड़े रहिए 90.8 एफएम ग्रीन के साथ।
1: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
2: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
1: और लाइट बिल के,
2: अब 0 रुपए कैसे दूं?
1: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
3: पक्का। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
4: हर घर सूर्य घर।
5: नमस्ते क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
6: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने, हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
5: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना है। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
7: सुनो सुनो सुनो सभी, एक जरूरी बात, आया मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण फिर एक बार। अगर आपके घर या पड़ोस में है 5 साल या उससे छोटे बच्चे जिनका कोई भी टीका छूट गया हो तो सोचते क्या हो, जल्दी से आशा दीदी से करो बात। बच्चों को स्वास्थ्य केंद्र है लेकर जाना और उनका टीकाकरण है करवाना।
8: सुहाना सफर और ये मौसम हसी,
7: टीको ये मौसम है टीकाकरण करवाने का, तो सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
9: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
10: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल 0 आ सकता है। मैंने कहा बेटा, नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल 0 आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
4: हर घर सूर्य घर।
0: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
11: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
0: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
11: आपकी सेहत की बातें,
12: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
11: युवाओं के रोजगार करियर की बातें,
12: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
11: वो कहाँ पर?
12: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 एफएम ग्रीन पर।
11: एफएम ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।
13: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और साथ साथ 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
14: उन्नत कृषि
15: नमस्कार श्रोताओं, आप सभी का स्वागत है 90.8 मेगाहर्ट्ज़ से यानी एफएम ग्रीन, और ये बिहार कृषि विश्वविद्यालय का अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन है जहाँ पर आपके लिए बातें होती हैं उन्नत कृषि कार्यक्रम में खेती बाड़ी की। तो आज बहुत ही खास विषय लेकर आए हैं, और आज जो विषय है जी हाँ, मिल्की मशरूम की खेत। प्रजातियों की बात करें तो इसमें भी जो अलग अलग प्रजातियाँ हैं तो उनके बारे में भी आज हम जानेंगे। और मशरूम की जहाँ तक बात है तो आज महिलाएँ और व्यवसायी जो हैं व्यावसायिक तौर पर मशरूम की खेती कर रहे हैं और आज आत्मनिर्भर बन रहे हैं इसकी खेती करके। तो आज थोड़ा विस्तार से जानेंगे मिल्की मशरूम के बारे में। मैम सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
16: धन्यवाद अनु।
15: मैम बिहार में वैसे कौन कौन सी प्रजातियां हैं मशरूम के जिसका हमारे किसान भाई खेती कर सकते हैं?
16: हमारे बिहार की जो जलवायु है उसके अनुकूलता के अनुसार चार तरह की मशरूम जो है उसकी खेती हम लोग प्राकृतिक रूप से कर सकते हैं। ऑयस्टर मशरूम, बटन मशरूम, मिल्की मशरूम और पेडिस्ट्रा मशरूम, ये चारों प्रजाति हम लोग करके सालों भर मशरूम की खेती हम लोग बिहार में कर सकते हैं।
15: अच्छा, तो मिल्की मशरूम की आज हम बात कर रहे हैं, और मिल्की मशरूम की खेती कब करें, कैसे करें, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं।
16: मिल्की मशरूम को हम लोग श्वेत दुधिया मशरूम भी कहते हैं, इसको दूध छाता भी कहते हैं, और ऐसे इसका नाम कैलोशाइबा इंडिका है, और यह दूध के जैसा सफ़ेद दिखता है इसलिए इसको हम लोग दूध छाता भी कहते हैं। और इसकी खेती जो है प्राकृतिक रूप से हम लोग मार्च अप्रैल से लेके सितंबर अक्टूबर यहाँ तक कि कभी कभी नवंबर तक भी इसकी खेती हम लोग कर सकते हैं, और ऐसे अक्टूबर तक जनरली सितंबर अक्टूबर तक हम लोग इसकी खेती करते हैं, क्योंकि उसके बाद हमारा ऑयस्टर और बटन का समय आ जाता है। तो जो हमारा पहले जो मशरूम ऑयस्टर और बटन मशरूम की खेती जनरली होती थी, तो जो हमारा पीरियड था कि जिसमें मशरूम का कोई खेती ही नहीं होता था, जिसमें हम लोग कहते थे कि बस मार्च आ गया मशरूम की खेती ख़त्म हो गया, फिर सितंबर अक्टूबर आएगा तो फिर मशरूम लगाएंगे, तो ये जो पीरियड था इस पीरियड का में हम लोग बड़े ही अच्छे से आराम से मिल्की मशरूम की श्वेत दुधिया मशरूम की खेती करेंगे। और ये विश्व समुदाय को श्वेत दुधिया मशरूम जो है वो हमारे देश का देन है, हमारे NRC सोलन में ही इसका इजाद किया गया था, इसकी खेती का जो तकनीकी है उसका ये किया गया था। और ये जो मिल्की मशरूम है यह ऑयस्टर मशरूम और बटन मशरूम दोनों के बीच का है, इसका कुछ करैक्टर या इसका जो तकनीकी है उत्पादन विधि कुछ स्टेप आपका ऑयस्टर के समान होता है और कुछ स्टेप जो है वो हमारा बटन के समान होता है।
15: तो ये केसिंग के बारे में, इसमें एक शब्द जो है मैम केसिंग आता है, तो उसके बारे में हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे।
16: अब इसकी जो तकनीकी है मिल्की मशरूम की खेती में, उसमें एक स्टेप आता है केसिंग। हम लोग इसकी तकनीकी की चर्चा पहले कर लें फिर उसके हम लोग केसिंग पर आते हैं। तो जैसे कि हम जो किसान भाई ऑयस्टर मशरूम की खेती करते होंगे तो बस ऑयस्टर मशरूम के लिए जो जो स्टेप आप करते हैं उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले आप पोषाधार का चयन करते हैं। तो मिल्की मशरूम के लिए भी आप पोषाधार का चयन करेंगे, इसका पोषाधार आपका गेहूं का भूसा हो सकता है, पुआल की कुट्टी हो सकता है, या और भी कोई कृषि अवशेष हो सकता है। तो जो भी पोषाधार का हम चयन करें वो उसका चयन कर लें, उसके बाद उसका हम लोग निर्जीवीकरण करते हैं। तो इसके निर्जीवीकरण के लिए सबसे बेहतर है आप भाप उपचार करें, भूसे को पहले फुला दें, रात भर भूसा फुला दें, सुबह उसको निकाल करके एक बर्तन में उसको छान करके पानी से छान कर उसको डालते हैं, फिर उसको जूट के बोरे से उसके मुँह को बंद कर देते हैं, ऊपर से पानी उसमें डाल देते हैं और उसको आग पर चढ़ा देते हैं। जब पूरे से बहुत अच्छे से भाप निकलने लगे तो उसके बाद करीब 15-20 मिनट तक और रहने देते हैं, फिर उसको हम लोग किसी बर्तन में डलिया वगैरह हो या कोई सतह हो, साफ निर्जीव सतह हो, उस सतह पर उसको हम लोग पलट देते हैं। उसका अतिरिक्त नमी जब निकल जाता है उसको छांव में फैला देते हैं। अतिरिक्त नमी निकलने के बाद फिर उसमें हम लोग भूसा के अनुसार स्पॉन डालते हैं। यदि भीगा भूसा का बात करें तो 4-5% उसमें हम लोग स्पॉन डालेंगे। स्पॉन डाल करके फिर पीपी बैग लेते हैं। पीपी बैग में हम लोग इसकी बिजाई करते हैं। बिजाई करने के लिए हम लोग या तो भूसा और स्पॉन को पूरा एक दूसरे मिला देंगे, एक विधि है, उसको मिलाकर फिर उसको पीपी बैग में पैक करते हैं। दूसरा तरीका है कि हम लोग परत में करते हैं। जैसे पहले भूसा देंगे 4 इंच के बाद फिर उसमें पूरे सतह पे बीज देते हैं, फिर 4 इंच भूसा देते हैं, फिर बीज देते हैं, फिर 4 इंच भूसा देते हैं, फिर बीज देते हैं। इस तरह से बैग का 12 इंच हम लोग ऊंचाई रखते हैं। उसके बाद फिर उसको भूसा से ढक करके फिर बैग को पैक कर देते हैं। एक ही उसके बाद ये दो तरीके में से या तो हम लोग पूरे भूसा और बीज को मिला करके पैक कर देते हैं या फिर परत विधि से करके पैक करके हम लोग तैयार करते हैं। और जैसे ऑस्टर मशरूम के बैग में हम लोग छेद करते हैं तो इसमें पूरे बैग में छेद की, ये चूंकि ऊपरी सतह से निकलता है, जैसे बटन जो है ऊपरी सतह से निकलता है वैसे ये निकलता है, तो इसमें अलग से साइड में छेद करने की आवश्यकता नहीं। सिर्फ नीचे पैंदा में 2 छेद हम लोग कर देते हैं ताकि जो एक्स्ट्रा नमी वगैरह है वो हमारा निकलता है। और लगभग 12-15 दिन इसको हम लोग छोड़ देते हैं कमरे में, जो स्टरलाइज निर्जीवीकृत किया हुआ कमरा हो, जहाँ जिस कमरे में इसको हम लोग बैग को रखते हैं उसको 24 घंटा पहले हम लोग निर्जीवीकृत कर देते हैं और फिर उसको कमरे को बंद कर देते हैं। उस कमरे में फिर इस बैग को हम लोग रखते हैं। उस कमरे में लगभग 12-15 दिन तक बैग को छोड़ देते हैं तो हम देखते हैं कि पूरा बैग सफ़ेद हो गया, मतलब उसमें पूरा माइसेलियम बहुत अच्छे से रन कर गया। और जब माइसेलियम अच्छे से रन कर जाता है तब हमारा केसिंग का जो अब केसिंग का आता है कि अब हम केसिंग करेंगे। तो ये तब अब हम ये केसिंग के लिए हम लोग जिस दिन से बिजाई किए हैं उस दिन से हम लोग केसिंग की तैयारी करते हैं। तो केसिंग एक तरह का मृदा आवरण है जो कि मशरूम का जो उत्पादन तकनीक है, जो विधि है, उसका एक चरण है कि ये चरण करने के बाद ही हमारा मशरूम प्राप्त होगा मिल्की में और बटन में। ये ऑयस्टर मशरूम में हम लोग केसिंग नहीं करते हैं लेकिन मिल्की और बटन मशरूम में केसिंग करते हैं, तो वह इसका एक चरण है। और इसके लिए हम लोग केसिंग के लिए 2 साल पुराना सड़ा हुआ गोबर लेते हैं या पुराना वर्मी कंपोस्ट लिए या फिर आजकल मार्केट में कोकोपीट आता है, कोकोपीट भी ले सकते हैं लेकिन वो थोड़ा महंगा होता है, इसीलिए आप 2 साल पुराना गोबर का खाद मिल जाए तो बेहतर है। और इसमें हम लोग इसके अलावा जो भी गोबर का खाद है इसके अलावा इसमें हम लोग मिलाते हैं क्या, तो पुराने बाग की मिट्टी मिलाते हैं, जो रेत वाली बालू नदी की पेटी का जो बालू होता है वो रेत जो होता है उसको मिलाते हैं, और जो धान जैसे चावल बनाने के बाद जो भूसा प्राप्त होता है उस भूसा का राख भी हम लोग लाते हैं। तो यदि हम लोग बाग की मिट्टी और रेत का बात करें तो 3 भाग बाग की मिट्टी लेते थे, 1 भाग रेत लेते हैं। यदि हम लोग बाग की मिट्टी और 2 सरा हुआ गोबर लेते हैं दोनों बराबर बराबर मात्रा में लेते हैं। और यदि हम लोग सारी चीज़ को थोड़ा थोड़ा मान लीजिए लेते हैं तो हम लोग इसको एक टोकरी बाग की मिट्टी ले लिए, एक टोकरी हम लोग कंपोस्ट ले लिए, एक टोकरी रेत ले लिए, एक टोकरी आपका भूसा का राख ले लिए, ये सारा को मिला करके भी हम लोग इसका कर सकते हैं। यदि बेहतर होगा आपको यदि 2 सरा हुआ पुराना गोबर का खाद मिल जाता है तो वो आपका बेहतर ऑप्शन है, नहीं तो फिर इसमें से जो भी आप पास उपलब्ध हो उसको हम लोग लेते हैं। फिर इसको हम लोग निर्जीवीकृत करते हैं। ये जब पहले हम लोग ये इकट्ठा कर लिए, अब इसमें मान लीजिए कोई मेटेलिक कुछ चीज़ हो, पत्थर हो या घास फूस हो तो उसको हम लोग अच्छे से हटा लेते हैं, लेकिन इसको महीन करने की या चालने की आवश्यकता नहीं है। यदि मिट्टी का छोटा छोटा ढेला भी है तो उससे कोई नुकसान नहीं है, उसको बिल्कुल महीन से चालना नहीं है। लेकिन यदि उसमें पत्थर है, कंकर है, कुछ शीशा का टुकड़ा है, प्लास्टिक का टुकड़ा है या कुछ पत्ता है, ये सब है, तो वो सबको हम लोग को उसको हटा लेना है, ठीक है। इसके बाद अब इसको हम लोग निर्जीवीकृत करेंगे। निर्जीवीकृत करके इसमें हमारा लगभग नमी सही रहना चाहिए, लगभग 70% नमी रहना चाहिए। और नमी सही है हमारे केसिंग का ये जानने के लिए करते हैं। केसिंग का हम लोग हाथ में गोला बनाते हैं, उसको नीचे छोड़ते हैं। यदि वो टूट गया तो इसका मतलब हमारा केसिंग में नमी सही है, और नमी को केसिंग को निर्जीवीकृत करने के लिए हम लोग नुवान लेते हैं 2 ml, फॉर्मुलिन लेते हैं 5 ml, कार्बनडाजिम 1 gram और 1 liter पानी, इसमें इसका घोल बना करके फिर पूरे केसिंग का जो मटेरियल हम तैयार किए हैं, मिट्टी तैयार किए हैं, उसमें इसको स्प्रे करके उसको निर्जीवीकृत करते हैं, फिर उसको प्लास्टिक की सीट से ढक देते हैं, लगभग 7 से 7 दिन उसको हम लोग छोड़ देते हैं। और ऐसे यदि आप केसिंग जिस दिन बिजाई किए हैं उस दिन से केसिंग की तैयारी करते हैं तो आप कल ऐसे ही 12 से 15 दिन के बाद केसिंग करते हैं तो इतने दिन तक वो बड़े ही अच्छे से आपका केसिंग निर्जीवीकृत हो जाता है। फिर हम लोग जब माइसेलियम पूरा रन कर जाता है बैग में तब उसका केसिंग करते हैं, तो उसके लिए क्या करते हैं कि उसका ऊपरी सतह को पूरा खरोच देते हैं, जैसे कैसे लहसुन का को हम लोग थोड़ा चलाते हैं थोड़ा थोड़ा उसमें एरेशन, उस तरह ऊपर का परत उसका हम लोग उसको खरोच देते हैं, और खरोच करके उसको बराबर करके हल्का सा उसमें हम लोग नमी दे देते हैं। नमी के देने के बाद उस पर हम लोग केसिंग की लगभग 3 से 4 cm मोटी परत डाल देते हैं, और ये हमारा जो बिजाई किए थे उससे 10 से 12 दिन के अंदर हम लोग केसिंग कर देते हैं, और केसिंग करने के बाद उसमें प्रतिदिन हम लोग को नमी देना होता है, और गर्मी के अनुसार कैसा इन्वायरमेंट उसके अनुसार हो सकता है कभी आपको 2 बार भी नमी देना पड़े या फिर कम से कम 1 बार तो प्रतिदिन देना होगा। लेकिन ध्यान क्या रखना चाहिए, जब हम लोग इसमें पानी दे रहे हैं नमी दे रहे हैं तो ये बिल्कुल फुहारे से देना है, और जो केसिंग मृदा है उससे नीचे जो कंपोस्ट हमारा वहाँ पानी नहीं जाना चाहिए, सिर्फ जो केसिंग का जो हम 3 से 4 cm मोटा परत दिए हैं सिर्फ वो उसमें ही पानी का मात्रा जाना चाहिए, इतनी सावधानी से हमें पानी देना है। इसके बाद केसिंग के लगभग 15 से 20 दिन के बाद हमारा फसल तैयार हो जाता है, और 5 से 7 दिन में फसल निकलने के 5 से 7 दिन के बाद यह तुराई योग्य हो जाता है, और इन्हें हम लोग घुमा करके तोड़ लेते हैं।
17: मैम केसिंग के रूप में क्या क्या उपयोग कर सकते हैं?
16: केसिंग के रूप में जैसे मैंने बताया अनु, केसिंग के रूप में हम लोग 2 साल सड़ा हुआ गोबर यूज कर सकते हैं, या फिर उसके साथ हम लोग पुराने बाग की मिट्टी, पुराने बाग की मिट्टी, किसान भाइयों बहनों इसको ध्यान दीजिए, पुराने बाग की मिट्टी को हम लोग यूज करते हैं। इसके बाद रेत वाली जो बालू होती है नदी के पेटी में जो बालू पाया जाता है वो रेतीला रहता है, उस बालू का उपयोग कर सकते हैं, प्लस जो धान का भूसा है उसको हम जलाकर उसका राख को यूज कर सकते हैं, प्लस कोकोपीट मार्केट में उपलब्ध है उसको हम लोग यूज कर सकते हैं। तो इन सब सामग्रियों को जैसे सिर्फ हम आपको रेशियो भी मैंने बताया कि यदि हमारे पास सिर्फ ना पुराने बाग की मिट्टी है और हम लोग रेत का यूज कर रहे हैं तो 3:1 हम लोग यूज करेंगे, 3 भागिये लेंगे 1 भागिये लेंगे, और यदि हमारे पास 2 साल से पुराना गोबर है और बगीचे की मिट्टी है तो बराबर बराबर ले सकते हैं, और यदि और सारे चीज लेंगे तो हम लोग वॉल्यूम से मिलाते हैं, मतलब केजी से नहीं लेते हैं, टोकरी से 1 टोकरी है तो फिर 1 टोकरी है, इस तरह से बराबर बराबर लेकर के हम लोग उसको मिलाते हैं, और फिर केसिंग हमारा उसका अगला प्रक्रिया निर्जीवीकृत करना ये हम लोग करते हैं, फिर उसका यूज करते हैं।
17: और अंत में मैम मिल्की मशरूम की खेती में क्या कुछ और आवश्यक है, कुछ सुझाव जो आप हमारे किसान भाइयों को देना चाहेंगे?
16: बिल्कुल, ये आपको बता दें मिल्की मशरूम की जो खेती होती है गर्मी में ये ताप सहिष्णु है, इसके लिए जो आवश्यक टेम्परेचर चाहिए वो लगभग 35 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक में भी यह इसकी खेती हो जाती है आराम से। तो हम आपका हमारा आपका ये नेचुरल एक्सपीरियंस भी अनुभव भी है कि गर्मी के दिनों में जो माइक्रोब्स का थोड़ा ग्रोथ ज़्यादा हो जाता है, जो जीवाणु होते हैं कीटाणु होते हैं, तो आप ठंडे में आप देखते होंगे एक दिन नहीं भी नहाते हैं तो बहुत प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन गर्मी में नहीं नहाते हैं तो स्किन में जलन खुजली होने लगता है। ये क्यों होता है? क्योंकि अभी माइक्रोब्स के जो जीवाणु है कीटाणु है उनके लिए भी फेवरेबल सिचुएशन है, तो यह हमारा मशरूम भी एक तरह का फंगस है तो उसके लिए जो हम लोग माहौल दे रहे हैं तो और दूसरा फंगस भी उसको ग्रो कर सकता है, तो इसके लिए हम लोग को क्या है कि बहुत ज़्यादा साफ सफाई ये सब चीज़ का या फिर जो हम लोग चयन करते हैं इनपुट वो सब पे बहुत सावधानी रखना पड़ता है। जो हम लोग भूसा या पुआल का चयन करें वो ताज़ा होना चाहिए, शुष्क होना चाहिए, कभी भी वो पानी खाया नहीं होना चाहिए, बाढ़ में डूबा नहीं होना चाहिए, भींगा नहीं होना चाहिए, सरा गला नहीं होना चाहिए। इसके बाद हम लोग वीकली जो क्रॉप हाउस है जो हमारा फसल कक्ष है उसमें 2% फॉर्मलिन और 0.1% कार्बनडाजिम का घोल का वीकली हम लोग छिड़काव करें ताकि हमारा किसी तरह का कोई इन्फेक्शन किसी तरह का कोई संक्रमण होने की संभावना नहीं रहे। फिर जो कमरा है उसमें प्रकाश आने का और हवा का आवागमन का अच्छा व्यवस्था होना नीचे आवश्यकता होने पर हम खिड़की दरवाजा खोल दें तो धूप भी आए और हवा का भी आवागमन भी हो। और जब भी हम स्पॉन का प्रयोग करें, स्पॉन का चयन करें, वह भी हमारा शुद्ध होना चाहिए, ताज़ा होना चाहिए, वो उसमें किसी तरह का संक्रमण नहीं होना चाहिए। फिर जो चूहा छुछुंदर गिलहरी है ये सबसे हमको जब तक हमारा माइसिलियम पूरा रन नहीं कर जाता है, जो हमारा कोई भी मशरूम का स्पॉन रहता है वह किसी न किसी जो खाद्यान्न को आधार देके बनाया जाता है, चाहे वो मक्का हो सकता है, वो धान हो सकता है, वो गेहूं हो सकता है, और भी कोई खाद्यान्न हो सकता है। तो उसको खाने के लिए

0: या चूहा वगैरह आते हैं, तो जब जब माइसिलियम पूरा रन हो जाता है तब फिर चूहा डैमेज नहीं करता है। तो इस पीरियड में चूहा से, गिलहरी से, ये सबसे बचाना बहुत आवश्यक है। तो उसके लिए हमारे किसान भाई बहन को प्रयास करना चाहिए, उसके लिए अलग अलग तरीका है कि उसको अपना करके हम चूहे से बचाएं। प्लस एक चीज़ और है कि को प्राइमस निकलता है उसमें, आप देखेंगे काला ऐसा बिल्कुल धागा ऐसा पतला सा नीचे, कि गेहूं को जब हम लोग बोते हैं गेहूं का डिब्बी निकलता है वो उसी टाइप का पतला काला ऐसा निकलेगा, और वो तेजी से लंबा होता है फिर वो गल जाता है। तो जैसे ही वो निकले उसको नोच करके जहाँ पर निकला है वहाँ का पुआल सहित उसको नोच करके जमीन के अंदर डाल देना है, और उसको थोड़ा फॉर्मलिन से वेबेस्टिन के घोल से वहाँ पर ट्रीट भी कर देना है। और यदि ये नहीं करते हैं तो वो इतना फास्ट उसका स्पोर निकलेगा पूरा क्रॉप आपको बर्बाद कर देगा। तो कोप्राइमस से बहुत सावधान रहिए। यदि यह आपके फसल में आ गया है, निकल रहा है, तो उसको हाथों से चुन चुन के उसको हटाइए, और उसको जहाँ तहाँ नहीं फेंकिए बल्कि ज़मीन के अंदर गड्ढा खोद के उसके अंदर डाल दीजिए, ताकि वह किसी भी तरह से और वो नुकसान नहीं कर पाए और वो फसल में आपको नहीं फैले। ये एक तरह का फसल का वीड है, खरपतवार है, जिससे कि हम लोग को मशरूम की खेती में बचाना आवश्यक है। इस तरह से इन सुझावों को, इन सावधानियों को जब हम अपनाएंगे तो अब हमारा फसल हमेशा अच्छा होगा।
1: जी, तो किसान भाइयों और हमारे श्रोताओं, मिल्की मशरूम की खेती आपने समझ ली होगी और क्या कुछ करना है आपको, इसमें क्या कुछ बातों का ध्यान रखना है, सारी बातें यहाँ पर मैडम ने आपको बताई हैं। तो आशा करते हैं आपको ज़रूर लाभ मिलेगा आज के इस वार्ता से। तो अगले दिन एक अलग विषय के साथ हम हाजिर होंगे इसी फ्रिक्वेंसी पर। नमस्कार।
2: उन्नत कृषि,

0: जानते हैं कि खसरा कितनी गंभीर बीमारी है? टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MRT का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हो तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
5: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा? बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा?
4: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है, और हुकुम सिंह भी। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
6: हर घर सूर्य घर।
0: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टिको, क्यों है इतने जीरो?
1: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
0: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
0: तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा, सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
0: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
1: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
7: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर AC चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने

0: पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।
4: नमस्कार साथियों, आपने ट्यून किया है 90.8 मेगाहर्ट्ज़ और आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो एफएम ग्रीन। और आज उन्नत कृषि कार्यक्रम में हम फिर से एक खास विषय लेकर आए हैं। वैसे अगर बात करें तो ये बहुत छोटी सी चीज़ है, लेकिन कहते हैं ना ये देखन में छोटन लागे है, घाव करे गंभीर। तो उसी प्रकार अगर ये छोटी सी चीज़ आपकी सब्जियों में डल जाए तो उसका टेस्ट ही कुछ अलग बना देता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ हरी मिर्च की। और हरी मिर्च हमारे इंडिया में, हमारे भारत देश में इसकी कितनी महत्ता है आप सभी जानते हैं जो भारतीय हैं। तो आज हरी मिर्च की खेती के बारे में हम जानेंगे और इसकी उपयोगिता, कैसे पौध तैयार करें और सिंचाई क्या कुछ कैसे किया जाता है, वो सारी बातें आज हमें बताएंगे डॉक्टर संगीता श्री मैम। मैं आपको बता दूं ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। तो सबसे पहले तो स्वागत है मैम आपका हमारे इस कार्यक्रम में।
5: धन्यवाद अनु।
4: इन जो खेती कर रहे हैं विस्तृत तौर पर, तो उनके लिए बहुत जरूरी होता है कि हर बात की जानकारी उनके पास रहे इसकी खेती से जुड़े। तो हरी मिर्च की उपयोगिता सबसे पहले इसके बारे में थोड़ी जानकारी दी।
5: धन्यवाद अनु। आपने ठीक ही कहा कि इसको हम कहीं भी उगा सकते हैं, लेकिन अगर बात करें तो ये एक व्यावसायिक खेती के रूप में किया जा सकता है। मिर्च एक नकदी फसल है जिसकी व्यावसायिक खेती करके अधिक लाभ कमाया जा सकता है। मिर्च में विटामिन ए और सी और कुछ खनिज लवण भी बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं। मिर्च का इस्तेमाल अचार एवं मसालों में भी किया जाता है
4: जी।
5: मिर्च पर पाले का असर ज्यादा होता है, इसलिए जहां पाला पड़ता है उन इलाकों में इसकी अगेती फसल लेनी चाहिए। ज्यादा गर्मी होने पर फूलों व फलों का झड़ना शुरू हो जाता है। मिर्च की खेती के लिए 15 से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान उपयुक्त माना जाता है। 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान होने पर इसके फूल व फल गिरने लगते हैं। रात्रि तापमान 16 से 21 डिग्री सेंटीग्रेड फल विकास व परिपक्वता के लिए अत्यधिक उपयुक्त है। मिर्च की खेती यूं तो सभी प्रकार की भूमियों में की जा सकती है, परंतु अच्छे जल निकास वाली एवं कार्बनिक युक्त बलुई लाल दोमट मिट्टी जिसका पीएच मान 6 से 7 हो मिर्च की खेती के लिए उपयुक्त होती है। इस फसल की प्रमुख किस्में जिसको हम उन्नत किस्में कहते हैं वो है पूसा ज्वाला, पंत C1, G3, G5, पूसा सदाबहार, पंत C2, जवाहर 218, अर्का लोहित, अर्का सुफल, अर्का श्वेता, अर्का हरिता आदि। खरीफ की फसल के लिए मई से जून में व गर्मी की फसल के लिए फरवरी से मार्च में पौधशाला में बीजों की बुआई की जाती है। एक हेक्टेयर हेतु पौध तैयार करने के लिए 1 से 1.5 किलोग्राम बीज और संकर किस्मों के लिए 250 ग्राम बीज पर्याप्त होता है। नर्सरी वाली स्थान की गहरी जुताई करके खरपतवार रहित बनाकर 1 मीटर चौड़ी, 3 मीटर लंबी और 10 से 15 सेंटीमीटर जमीन से उठी हुई क्यारियां तैयार करें। बीजों की बुआई से पहले कप्तान या वेबस्टिन की 2 ग्राम प्रति किलोग्राम मात्रा से बीज की दर से उपचारित करें। बीजों की बुआई कतारों में करनी चाहिए और पौधशाला में कीड़ों की रोकथाम हेतु एसिफेट 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी का पौधों पर छिड़काव करें। नर्सरी में विषाणु रोगों से बचाव के लिए मिर्च की पौध को सफेद नायलॉन नेट से ढक कर रखें। नर्सरी में बुआई के 4 से 5 सप्ताह बाद पौध रोपण के लिए तैयार हो जाती है। गर्मी की फसल में पंक्ति से पंक्ति की दूरी 45 सेंटीमीटर व पौध से पौध की दूरी 30 से 45 सेंटीमीटर रखें। खरीफ फसल हेतु पंक्ति से पंक्ति की दूरी 60 सेंटीमीटर व पौध से पौध की दूरी 30 से 45 सेंटीमीटर रखें। रोपाई शाम के समय करें और रोपाई के तुरंत बाद सिंचाई कर दें। पौधों को 40 ग्राम एजोस्पायरलम 2 लीटर पानी के घोल में 15 मिनट डुबोकर रोपाई करें। खेत की अंतिम जुताई से पहले 20 से 25 टन प्रति हेक्टेयर अच्छी तरह सरी हुई गोबर की खाद खेत में डालकर अच्छी तरह मिला दें। इसके अलावा 70 किलोग्राम नत्रजन, 50 किलोग्राम फास्फोरस व 50 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से उर्वरकों का प्रयोग करें। नत्रजन की अधिक मात्रा खेत की तैयारी के समय व शेष बची हुई आधी मात्रा 30 व 45 दिनों के बाद ट्रॉप ड्रेसिंग द्वारा खेत में डालें एवं तुरंत सिंचाई कर दें। गर्मी में 5 से 7 दिनों के अंतर पर और बरसात में जरूरत के हिसाब से सिंचाई करनी चाहिए। मिर्च के फूल और फल लगने के समय भूमि में नमी होना अत्यंत जरूरी है, क्योंकि पानी की कमी से पौधों का विकास रुक जाता है। इसकी वजह से फलों के गिरने की संभावना बढ़ जाती है। खरपतवारों का रोकथाम हेतु समय समय पर निराई गुराई करनी चाहिए। 200 ग्राम ऑक्सीफ्लोरोफेन 600 से 700 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करना चाहिए। अब उपज की बात करें तो बताए गए तरीकों से खेती करेंगे तो हरी मिर्च के लिए तुराई फल लगने से 15 से 20 दिनों बाद कर सकते हैं। पहली तुराई से दूसरी तुराई का अंतर 12 से 15 दिनों तक रखें। हरी मिर्च की पैदावार 150 से 200 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तथा सूखी लाल मिर्च की उपज 15 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है।
4: तो ये सारी बातें तो खेती से जुड़ी हुई, लेकिन अब जो सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमारे किसान भाइयों को ध्यान देने योग्य है, अपनी फसलों को बचाना है बर्बाद होने से, तो वो है रोग और कीटों के प्रबंधन को जानना। तो इसके बारे में मैम बता दें कि कैसे किसान भाइयों को करना चाहिए।
5: जी हाँ, मिर्च फसल में रोग व कीट प्रबंधन का विशेष ध्यान रखना आवश्यक होता है। इसमें लगने वाले प्रमुख कीट हैं सफेद लट कीट की लटों पौधों की जड़ों को खाकर नुकसान पहुंचाती है। इनकी रोकथाम के लिए कार्बोफिरॉन 3G का 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से रोपाई से पहले जमीन में मिलाएं। सफेद मक्खी व थ्रिप्स, इन्हें रोकने के लिए मालाथियॉन 50 ईसी या इमिडाक्लोरपेट 3 मिलीलीटर प्रति 10 लीटर पानी की दर से छिड़काव करें। 15 से 20 दिनों के बाद दोबारा छिड़काव करना चाहिए। इन रसायनों के साथ नीम का तेल 5 मिलीलीटर प्रति लीटर भी मिश्रित कर सकते हैं। अब मिर्च फसल में लगने वाले प्रमुख रोग की बात करते हैं, तो प्रमुख रोग हैं आद्र गलन, श्याम वर्ण, पर्ण कुंचन व मोज़ेक विषाणु रोग। आद्र गलन रोग का प्रभाव छोटे पौधों पर होता है। इस रोग का प्रभाव जमीन की सतह पर स्थित तने का भाग काला पड़ जाता और कमजोर होकर गिर कर मरने लगते हैं। इस रोग की रोकथाम के लिए बीजों की बुआई से पहले थिरम या कप्तान 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित कर करें। श्याम वर्ण एक ऐसा रोग है जिसमें पत्तियों पर छोटे छोटे काले धब्बे बन जाते हैं और पत्तियां झड़ने लगती हैं। जब इसका असर ज्यादा होता है तो शाखाएं ऊपर से नीचे की तरफ सूखने लगती हैं। पके फलों पर भी बीमारी के लक्षण दिखाई देते हैं। इसकी रोकथाम के लिए मैनकोजेब 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर 2 से 3 बार छिड़काव 15 दिनों के अंतराल पर करें। पर्ण कुंचन व मोज़ेक विषाणु रोग बहुत ही घातक रोग है। पर्ण कुंचन रोग के असर से पत्ते सिकुड़कर छोटे रह जाते हैं और उन पर झुर्रियां पड़ जाती हैं। मोज़ेक विषाणु रोग के कारण पत्तियों पर गहरे व हल्का पीलापन लिए हुए धब्बे बन जाते हैं। रोगों को फैलाने में कीट सहायक होते हैं। इसकी रोकथाम के लिए रोग लगे पौधों को उखाड़कर जला देना चाहिए। रोग को आगे फैलने से रोकने के लिए डायमिथेट 3 EC का 0.1 ml प्रति लीटर पानी के दर से छिड़काव करें। किसान भाई, अगर आप बताए गए विधि से मिर्च फसल की खेती करेंगे तो अवश्य ही अधिक मुनाफा कमा पाएंगे।
4: जी, तो इस प्रकार किसान भाइयों, हरी मिर्च की खेती आप कर सकते हैं। सारी बातें आपको आज के वार्ता में बताई गई हैं और आशा करते हैं कि आपको जरूर लाभ मिलेगा आज इस वार्ता को सुनकर। तो अगले दिन एक अलग विषय के साथ हम हाजिर होंगे इसी फ्रिक्वेंसी, याद रखें 90.8 MHz। नमस्कार।
1: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
6: नमस्ते क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
7: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने, हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
6: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना है। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
8: सुनो सुनो सुनो सभी, एक जरूरी बात, आया मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण फिर एक बार। अगर आपके घर या पड़ोस में है 5 साल या उससे छोटे बच्चे जिनका कोई भी टीका छूट गया हो, तो सोचते क्या हो, जल्दी से आशा दीदी से करो बात। बच्चों को स्वास्थ्य केंद्र है लेकर जाना और उनका टीकाकरण है करवाना।
9: सुहाना सफर और ये मौसम हसी,
8: टीको ये मौसम है टीकाकरण करवाने का। तो सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
10: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
11: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर 0 अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना 0 बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
12: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 ग्रीन FM।
4: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार और आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई में। दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि सरकार ने HPV का टीका सभी 14 साल से ऊपर के बच्चों के लिए मुफ्त कर दिया है। HPV का टीका लगाना शुरू तो हो गया है, लेकिन अभी भी बहुत सारे हमारे श्रोताओं के मन में बहुत सारे सवाल हैं। तो आज हम बात करेंगे HPV टीके की और कोशिश रहेगी कि आपके मन में जो भी सवाल हैं उनके जवाब भी हम दे सके। जब भी कोई पहल होती है, खास तौर पर सेहत के मामले में, तो हमारे परिवारजनों के मन में डर रहता है और कई सारे सवाल भी रहते हैं, खासकर जब सोशल मीडिया हमारे पास है और सोशल मीडिया और मोबाइल पर चल रही बहुत सी बातें होती है, बहुत सी अफवाहें होती है। तो उन अफवाहों से लोगों के मन में उलझन और सवाल दोनों ही पैदा होते हैं, इसलिए आज हम कुछ आम सवाल उठाएंगे और आसान भाषा में उनके जवाब देंगे। तो बस आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए, आपको आज HPV टीकाकरण से जुड़े ढेर सारे सवाल मिलने वाले हैं, इसलिए क्योंकि हमने बहुत से सवाल इकट्ठे किए हैं और एक के बाद एक हम उन सवालों को पढ़ेंगे और जवाब भी देंगे। तो पहला सवाल है, HPV टीका किस लिए लगाया जाता है? दोस्तों, HPV टीका सर्वाइकल कैंसर यानी

भी टीका आप लेते हैं तो ऐसी परेशानी थोड़ी बहुत होती है जो कि कुछ दिनों में ठीक भी हो जाती है। अब तीसरा सवाल, क्या इसका कोई बड़ा दुष्प्रभाव होता है? गंभीर दुष्प्रभाव बहुत दुर्लभ है, यानी कि गंभीर दुष्प्रभाव ना के बराबर होते हैं। इसलिए आप अफवाहों पर भरोसा ना करें कि अगर आप HPV टीका अपनी बच्ची को लगवाएंगे तो उन्हें कोई परेशानी हो जाएगी। और अगर आपके मन में फिर भी कोई सवाल बचते हैं, कोई चिंता होती है, तो आप आशा दीदी, ANM CHO या फिर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में भी आप बात कर सकते हैं। वो आपको और भी अच्छी तरीके से समझाएंगे कि इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है और बहुत रेयर होता है। चौथा सवाल कि ये टीका बच्चियों को ही क्यों लगाया जा रहा है? देखिए, क्योंकि HPV संक्रमण आगे चलकर सर्वाइकल कैंसर का कारण बन सकता है और ये बीमारी महिलाओं में होती है, इसलिए किशोरियों को, बच्चियों को बीमारी आने से पहले ही सुरक्षा देने के लिए टीका लगाया जाता है। कहते हैं ना कि बाद में इलाज से बेहतर है कि आप पहले ही बचाव कर ले, तो ये टीका बचाव के लिए है। पांचवा सवाल जो बहुत सारे लोगों के मन में उठ रहे हैं और बहुत सारी लड़कियां इस सवाल से चिंतित है कि क्या इससे भविष्य में मां बनने पर असर पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा, ये बिल्कुल कोरी अफवाह है। HPV टीका मां बनने की क्षमता पर कोई असर नहीं डालता, ये कैंसर से बचाव के लिए है। बांझपन या कमजोरी से इसका कोई संबंध नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ आपको कैंसर से बचाता है, सर्वाइकल कैंसर से बचाता है। छठा सवाल ये है कि क्या मोबाइल और सोशल मीडिया पर चल रही बातें सही है? बस यही बात तो आपको हम बताने आए हैं कि हर बात जो मोबाइल और सोशल मीडिया पर चल रही है वो सही नहीं होती। कई बार बिना जांचे परखे डर फैलाया जाता है और कई बार कुछ बातें ऐसी होती है जो किन्हीं तक एक पहुंची और उसने अपने पास वाले को दो बातें पहुंचाई, फिर तीन बातें, चार बातें, इस तरीके से बहुत बड़ी चढ़ी बात हम तक पहुंचती है। इसलिए कोई भी बात आप तक सोशल मीडिया या मोबाइल के जरिए पहुंचे तो उसे बिना जांचे परखे उस पर भरोसा ना करें। स्वास्थ्य से जुड़ी जो भी जानकारी होती है वो हमेशा आपको चाहिए कि प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मी या सरकारी स्वास्थ्य केंद्र से ही ले। आपको इन्हीं जगहों से सबसे भरोसेमंद जानकारी मिल सकती है। अब सातवां सवाल कि टीका कब और कहां लगेगा? जी हां, अगर आपके मन के जो भी सवाल हैं और जो उलझन है वो दूर हो गए हैं तो सबसे जरूरी सवाल कि टीका कब और कहां लगेगा, इसके लिए आप अपनी आशा, ANM या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। वहीं आपको सही तारीख, जगह और पात्र उम्र की जानकारी देंगे। तो साथियों, याद रखिए, अफवाह से नहीं, सही जानकारी से फैसला लें। HPV टीका बेटियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाने की दिशा में एक बहुत जरूरी कदम है। सेहत सही, लाभ कई की ओर से ये संदेश जनहित में जारी है। आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें। फिलहाल मुझे यानी कि आपकी होस्ट और दोस्त उमा को दीजिए इजाजत, लेकिन जाने से पहले खास बात की स्वस्थ रहें, खुश रहें और अफवाहों से बचें। नमस्कार।

0: जानते हैं कि खसरा कितनी गंभीर बीमारी है? टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MRT का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले। कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
5: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
4: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
6: PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर। सूर्य घर
7: जीरो के आगे जीरो जीरो के।

0: पीछे जीरो, आगे जीरो, पीछे जीरो। टिकू क्यों इतने जीरो?
1: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
0: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
0: तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात, अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
0: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
1: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
2: नाटक देखो आओ सारे नाटक देखो, खसरा और रुबेला की कुछ जरूरी बातें सुन लो। नाटक देखो
3: आओ। क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं, हाँ या ना?
0: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
3: हाँ, इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
0: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
4: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
1: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
5: क्या क्या क्या?
0: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
5: अच्छा,
1: तो सबकी समझ में आ गया ना? खसरा रुबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाए जड़ तक।
6: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
7: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
6: और लाइट बिल के।
7: अब 0 रुपए कैसे दूं?
6: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
8: पक्का। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
9: हर घर सूर्य घर।
10: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 22 से 26 जुलाई के दौरान आसमान में घने बादल छाए रहेंगे और जिले में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी चलने और हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 26 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 90% और दोपहर में 70 से 80% रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए, जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दें, पिछले कुछ दिनों में हुई वर्षा का लाभ उठाइए और आगे भी संभावना है कि वर्षा होगी, तो ऐसी स्थिति में धान की रोपाई के लिए व्यवस्था सुनिश्चित कर ले। रोपाई से पहले प्रति हेक्टेयर 25 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस, 30 किलोग्राम पोटाश और 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट का प्रयोग करें। आपको बता दें कि निचली जमीन के चारों ओर मजबूत मेड़ यानी कि बांध बनाकर वर्षा जल का संचयन कर ले, ताकि जरूरत पड़ने पर आप वर्षा के जल का सिंचाई में उपयोग कर सके। जो किसान भाई बहन श्री अन्न की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दें, मोटे अनाजों की खेती के लिए उचास भूमि का चयन करें। मड़वा की वकुला KMR 316, GPU 67 और VL 379 राजेंद्र मड़वा RU 8 और RU 3। और आपको बता दें कौनी की अनुशंसित किस्में हैं राजेंद्र कौनी एक, आप इन किस्मों की बुआई कर सकते हैं। मक्का की खेती करने वाले किसान भाई बहन ध्यान दें, खरीफ मक्का की बुआई आसमान साफ रहने पर ही करें। खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और ध्यान रखें कि बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नेत्रजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश जरूर डालें। अनुशंसित मक्का की किस्में जैसे सुवान, देवकी, शक्तिमान एक, शक्तिमान दो, राजेंद्र शंकर मक्का तीन, गंगा 11 है। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, मिर्च, अगाध गोभी, टमाटर जैसी सब्जियों की नर्सरी तभी तैयार करें जब आसमान साफ हो। और बागवानी करने वाले भाई बहन ध्यान दें, जुलाई अगस्त आम के पौधों के रोपण के लिए सबसे उपयुक्त समय होता है। कलमी पौधों की रोपाई 10x10 मीटर और बीजू पौधों की रोपाई 12x12 मीटर की दूरी पर करें। सघन बागवानी के लिए 5x5 मीटर और आम्रपाली के लिए 2.5x2.5 मीटर की दूरी रखें। फलदार वृक्षों में प्रति वर्ष 1 किलोग्राम नाइट्रोजन, 30 किलोग्राम फास्फोरस, 700 किलोग्राम पोटाश और 80 से 100 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद जरूर डालें। आपको बता दें, इस समय केला के स्वस्थ सकर्स की रोपाई करें। लंबी किस्मों जैसे अल्पान, कंथली, मालभोग, चिनिया, G9 और बॉनी किस्में जैसे ग्रैंड नेन, रोबस्टा, बसराई का चयन करना सबसे फायदेमंद होता है। लंबी किस्मों के लिए 2x2 मीटर और बॉनी किस्मों के लिए 1.5x1.5 मीटर की दूरी रखें। प्रत्येक गड्ढे में 5 किलोग्राम गोबर की खाद, 500 ग्राम अरंडी की खली, 300 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट, 100 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश और 10 ग्राम कार्बोफ्यूरान मिलाना ना भूलें। रोपाई से पहले सकर्स को कार्बन डाइजिंग 2 ग्राम प्रति लीटर पानी से उपचारित करें। किसान भाई बहनों, टिश्यू कल्चर पौधे का उपयोग अधिक उत्पादन के लिए लाभकारी होता है। पशुपालक भाई बहन ध्यान दें, पशुओं में PPR, MFD यानी कि खुरपका मुंहपका और HS यानी कि गला घोटू, इन रोगों का खतरा अधिक है। इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण करवाएं, उन्हें साफ और सूखा रखें और बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। रोग के लक्षण अगर दिखाई दे तो तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें और ध्यान रखें कि पशुओं की बिना जरूरत के आवाजाही पर नियंत्रण रखें। गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए जून माह में अगर टीके नहीं लगाए गए हों तो इस महीने में टीके जरूर लगवा दें। पशुओं को संतुलित और पौष्टिक आहार दें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: सुनिए, क्या आपने PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो PM सूर्य घर.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: कृषि विभाग द्वारा जारी पौधा संरक्षण सामयिक सूचना। खरीफ मौसम में ग्रास हॉपर के प्रकोप की संभावना रहती है। ग्रास हॉपर को किसान फुटका के नाम से भी जानते हैं। इसका व्यसक 1 से 7 सेंटीमीटर लंबा होता है। इसकी मादा पूरे मौसम में औसतन 200 अंडे देती है। अनुकूल वातावरण मिलने पर अंडे की संख्या 400 तक हो सकती है। व्यस्क मादा आधे से 2 इंच मिट्टी के अंदर अंडा देती है। अप्रैल मई में शिशु कीट 5 से 6 विकास की अवस्था के बाद 40 से 60 दिनों में व्यस्क बनते हैं। ग्रास हॉपर की संख्या को नियंत्रित रखने के लिए इसके प्राकृतिक शत्रुओं जैसे ब्लिस्टर बिटिल, ग्राउंड बिटिल, चिड़िया, छिपकली, मेढक, मकड़ी इत्यादि का संरक्षण करना चाहिए। ग्रास हॉपर कीट फसल की पत्तियों को 1 या 2 किनारों से खाता है। इसके उग्र आक्रमण की दशा में सिर्फ मध्य शिरा ही बचा रह जाता है। फलस्वरूप पौधे की वानस्पतिक वृद्धि प्रभावित होती है। इसकी संख्या प्रति वर्ग मीटर 3 से 7 होने पर इसके जैविक या रासायनिक नियंत्रण के उपाय करने चाहिए। फुदका कीट का प्रबंधन आप इस प्रकार कर सकते हैं। खेत में जगह जगह पक्षी बैठक लगाना, जैविक कीटनाशी के रूप में यूवेरिया बेसिना 2.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और मेटारीजियम स्पी का 2.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और नीम तेल 1500 PPM का 3 से 5 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से फसल पर छिड़काव करना चाहिए। रासायनिक कीटनाशी के रूप में क्लोरपाइरिफास 20% EC की 2.5 से 3 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोलकर या फिर लैम्डा साही हेलोथ्रीन 5% EC की 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें या फिर डेल्टा मेथ्रीन 2.8% EC की 1 से 1.5 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोलकर या फिर फिप्रोनील 5% SC का 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करना चाहिए। छिड़काव कार्य शाम के समय यानी कि दोपहर 4 बजे के बाद करना अच्छा होता है। विशेष सेवा या सुविधा के लिए अपने नजदीक के पौधा संरक्षण केंद्र या कृषि विज्ञान केंद्र अथवा पौधा संरक्षण सहायक निदेशक उद्यान या जिला कृषि कार्यालय से संपर्क करें। क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित BP जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

0: उमंग CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं विमलेश, आप सबका स्वागत है उमंग कार्यक्रम में।
0: और मैं हूं अजीत। नमस्कार, आइए सुनते हैं आज का सुंदर विचार जिसे हमें भेजा है कस्बा बराड़ा जिला अंबाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश, प्रियंका, मन्नत, गुरकीरत और गुरशब्द सिंह राहुल जी ने। लिखते हैं,
2: झाड़ू जब तक एक सूत्र में बंधी होती है तब तक वह कचरा साफ करती है, लेकिन वही झाड़ू जब बिखर जाती है तो खुद कचरा हो जाती है। इसलिए हमेशा संगठित रहें और बिखर कर कचरा न बने।
0: आपका बहुत बहुत धन्यवाद एकता और संगठित रहने का सुंदर विचार भेजने के लिए। आइए सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। श्रोताओं, हमें पहला संदेश मिला है कोका भिलाई छत्तीसगढ़ से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी का। लिखते हैं,
2: डॉक्टर कामिल बुल के 24 तारीख को सुने, बेल्जियम में जन्मे कैसे भारत को अपना कर्मभूमि बना लिया, रामचरितमानस पर शोध किया और कामिल बुलके से कामिल बुलके बाबा बन गए। बहुत अच्छा लगा इतनी अच्छी जानकारी और प्रस्तुति के लिए। उमंग टीम को बहुत बहुत बधाई।
0: और अगला संदेश हमें मिला है डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव, तुषार देव, डॉली बेबी, पूजा, राधिका, प्रभा देवी और मास्टर अल कबीर का।
2: भवानीगढ़ संगरूर पंजाब से परमिंदर सिंह रंधावा, लखनपाल रंधावा और सुरेंद्र कौर रंधावा जी का।
0: और गणेशवाड़ी कोल्हापुर महाराष्ट्र से संभाजी सुतार, चेतन सुतार और सारिका सुतार जी का।
2: पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग टेलर, तनुजा देवांगन और ईशांत देवांगन।
0: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं आप सबका संदेश भेजने के लिए। एक बार फिर से प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए के अंतर्गत आज की कड़ी। श्रोताओं, इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं भारत के अनूठे मेलों की,
2: ऐसे मेलों की जो प्रयास है समुदायों को उनकी संस्कृति से जोड़ने का। इनके बारे में लोगों को अधिक पता नहीं है, लेकिन वे अपने आप में सचमुच अद्भुत हैं, जीवंत हैं और प्रेरणा देने वाले भी। तो कल हमने चर्चा की थी असम राज्य के जॉनबिल मेले की, जहां वस्तु विनिमय प्रणाली का आज भी प्रचलन है।
0: आज हम चलेंगे एक और सुंदर और मनोरम उत्तर पूर्वी भारत के पर्वतीय राज्य नागालैंड और जानेंगे एक और मेले के बारे में। इसे हॉर्नबिल मेले के नाम से जाना जाता है। तो विमलेश जी, अब चर्चा को आगे बढ़ाइए।
2: जी अजीत जी, श्रोताओं, हॉर्नबिल महोत्सव या मेला नागालैंड का सबसे प्रसिद्ध सांस्कृतिक मेला है। इसे त्योहारों का त्योहार यानी फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स भी कहा जाता है। अजीत जी, अब जानते हैं कि ये कब मनाया जाता है?
0: जी विमलेश जी, हॉर्नबिल मेला हर साल 1 से 10 दिसंबर तक मनाया जाता है।
2: जी,
0: ये कोहिमा के पास किसामा हेरिटेज विलेज में आयोजित किया जाता है। लेकिन विमलेश जी, एक स्वाभाविक प्रश्न मेरे मन में आता है और वो ये है कि इस उत्सव या मेले का नाम हॉर्नबिल क्यों पड़ा?
2: अजीत जी, बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है आपने।
0: जी,
2: इसका जवाब भी उतना ही सुंदर है। हॉर्नबिल एक पक्षी है जो अपनी सुंदरता के लिए जाना जाता है। ये जबरदस्त उड़ान भर सकता है। इसके पंख इतने शक्तिशाली होते हैं कि जब ये उड़ता है तो उसके पंखों की फू फू जैसी आवाज दूर दूर तक सुनाई देती है।
0: जी विमलेश जी, पूर्वोत्तर भारत में विशेषकर नागालैंड में इस पक्षी को यानी हॉर्नबिल पक्षी को साहस, सम्मान और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है।
2: जी, यही वजह है कि नगा परंपराओं में विशेषकर सर के आभूषणों में हॉर्नबिल पक्षी का प्रतिरूप अवश्य दिखाई देता है। आइए अब जानते हैं कि क्या होता है हॉर्नबिल मेले में।
0: श्रोताओं, इस मेले में रंग बिरंगे पारंपरिक नृत्य देखने को मिलते हैं।
2: जी,
0: जिनमें सबसे लोकप्रिय और आकर्षक है युद्ध नृत्य।
2: जी,
0: युद्ध नृत्य में पुरुष योद्धा पारंपरिक हथियार लेकर नृत्य करते हैं। तेज ड्रम की ताल, वॉर क्राई और तालबद्ध पैरों की गति के साथ ये नृत्य होता है।
2: जी
0: विमलेश जी, एक बहुत विशेष बात तो हम भूल ही गए थे, ये तो बता दें कि इस मेले के दौरान एक बड़ी खास प्रदर्शनी होती है।
2: जी,
0: जिसे मोरुंग कहते हैं।
2: जी,
0: ये मोरुंग होता क्या है?
2: अजीत जी, मोरुंग नागालैंड की जनजातियों का युवा आवास हुआ करता था। ये बांस और लकड़ी से बना हुआ बड़ा सामुदायिक भवन होता था।
0: जी, प्रत्येक गांव में कम से कम एक मोरुंग अवश्य होता था। वहाँ जनजातीय इतिहास, युद्ध कौशल, वाद्य संगीत और लकड़ी के हस्त कौशल सिखाए जाते थे।
2: जी, यहाँ हस्तशिल्प, हैंडलूम यानी हस्तकरघा, स्थानीय व्यंजन इत्यादि प्रचुरता से मिलते हैं।
0: श्रोताओं, ये उत्सव नागालैंड की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का जीवंत प्रदर्शन है।
2: जी,
0: यहाँ आकर लोग असली नागा जनजातीय जीवन, आतिथ्य और उनकी परंपराओं की ऊर्जा को महसूस कर सकते हैं। तो श्रोताओं, ये थी जानकारी नागालैंड के बेहद खास मेले हॉर्नबिल उत्सव की।
2: जी।
0: कभी नागालैंड जाएं तो इस मेले का आनंद जरूर लें।
2: जी।
0: तो अब प्रस्तुत है आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है,
2: मोरुंग किसे कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: मोरुंग किसे कहते हैं? 8800440559 है हमारा IVRS नंबर और audio@cieet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन पतों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं और अपने उत्तर व संदेश हमें भेज सकते हैं। और अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। तो श्रोताओ, हमारा पहला कार्यक्रम है सुंदरिया।
2: कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में एक प्यारी गाय सुंदरिया की कहानी बताई गई है और उसके माध्यम से बच्चों को संदेश दिया गया है कि पशुओं में भी भावनाएं और संवेदनाएं होती हैं।
3: एक समय की बात है, हरियाणा के एक गांव में एक किसान रहता था। नाम था हीरा सिंह। निर्धनता के कारण बड़ी मुश्किल से उसके परिवार का गुजारा चलता था। उसके पास एक गाय थी, नाम था सुंदरिया। उस गाय के कारण हीरा सिंह से गांव वालों को बड़ी ईर्ष्या होती थी। निर्धनता का ये हाल था कि हीरा सिंह सुंदरिया के लिए चारा भी नहीं जुटा पाता था। वो भी गाय को बहुत प्यार करता था। वो चाहता था कि किसी प्रकार गाय को अच्छा चारा मिल सके, लेकिन तंगी पीछा नहीं छोड़ती थी, इसलिए कई बार उसके मन में एक विचार आया।
4: अब तो सुंदरिया को पालना बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। कहां से आएगा उसके लिए चारा? यहां तो परिवार के खाने के लाले पड़े हुए हैं। सोचता हूं उसे किसी धनी किसान को बेच दूं, कम से कम अच्छा चारा तो मिलेगा उसे।
3: लेकिन हीरा सिंह अपने बड़े बेटे जवाहर सिंह से डरता था, क्योंकि उसे सुंदरिया गाय से बहुत लगाव था। जवाहर सिंह सुंदरिया को प्यार से मौसी बुलाता था। समय बीतता गया और आखिर परिवार की दरिद्रता समाप्त करने के लिए हीरा सिंह नौकरी की तलाश में दिल्ली आ गया। वहाँ एक सेठ के यहाँ उसे चौकीदार की नौकरी मिल गई। एक दिन सेठ ने कहा,
5: हीरा सिंह, शहर में आजकल दूध की बड़ी किल्लत हो रही है।
4: जी मालिक, ये बात तो है।
5: पता नहीं जो दूध तुम दुकानों से लाते हो वो ठीक भी है या नहीं। बहुत मिलावट चल रही है। तुम तो हरियाणा के हो, सुना है वहां की गायें बड़ी अच्छी और दुधारू होती हैं। एक काम करो, तुम हमारे लिए किसी अच्छी गाय का प्रबंध कर दो।
4: जी मालिक, कोशिश करता हूँ। वैसे एक गाय है मेरी निगाह में।
5: अच्छा,
4: ऐसी कि साक्षात कामधेनु। दूध भी 15 सेर से ज्यादा ही उतरता है और उसके 200 रुपए तक लग चुके हैं।
5: भाई, इतनी अच्छी गाय है तो 10 रुपए अधिक हम दे देंगे। ये लो 100 रुपए, बाकी तुम्हारे आने पर मिल जाएंगे।
4: जी मालिक।
3: दरअसल हीरा सिंह के मन में उसकी प्यारी गाय सुंदरिया ही थी। सोचने लगा, यहाँ आएगी तो अच्छा चारा भी मिलेगा और मैं उसकी सेवा भी कर लूंगा। हीरा सिंह उसी दिन गांव चला गया। जैसे तैसे अपने बेटे जवाहर को समझाया और गाय लेकर दिल्ली आ गया। सेठ जी ने गाय को देखा तो बड़े प्रसन्न हुए। ऐसी स्वस्थ सुंदर गाय उन्होंने पहले न देखी थी। दूसरे दिन सेठ जी ने पास के एक ग्वाले को बुलाया और गाय उसके सुपुर्द कर दी। हीरा सिंह का दिल भरा जा रहा था। उसने सेठ जी से कहा,
4: सेठ जी, गाय की नौकरी पर मुझे ही लगा दीजिए, चाहे पगार कम ही दीजिए।
5: ये नहीं हो सकता हीरा सिंह भाई, हमें तुम जैसा दूसरा ईमानदार और मेहनती चौकीदार कहाँ मिलेगा। तुम्हें तो यहीं ड्योढ़ी पर ही रहना होगा।
3: ग्वाले ने सुंदरिया को ले जाने के लिए पूरा जोर लगा दिया, लेकिन गाय टस से मस नहीं हुई। अपनी भोली आंखों से वो हीरा सिंह को ही देख रही थी, मानो कह रही थी, तुम तुम्हें छोड़कर मैं कहाँ जाऊँ? हीरा सिंह ने गाय को थपथपाया, पुचकारा और बोल उठा,
4: मेरी प्यारी सुंदरिया, अब चली जाओ ना, मैं यही तो हूँ तुम्हारे पास। तुम चिंता ना करो, अरे मैं तुम्हें देखने आता रहूंगा मेरी प्यारी सुंदरिया।
3: अनमने मन से सुंदरिया चल दी। लेकिन अगले ही दिन कुछ विचित्र हुआ। सेठ जी ने हीरा सिंह को बुलाया।
6: हीरा सिंह, तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? आज गाय का 5 सेर दूध भी नहीं उतरा। तुम तो कहते थे कि 15 सेर से भी ज्यादा दूध मिलेगा।
4: सेठ जी, कल ही तो मैंने पूरा 15 सेर दूध दोहकर आपको दिया था, भला मैं झूठ क्यों बोलने लगा?
6: ये बात तो है, लगता है कुछ गड़बड़ है। चलो कल फिर देखते हैं।
4: जी सेठ जी।
3: लेकिन दूसरे दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ। सेठ जी को गुस्सा आ गया, बोले,
6: हीरा सिंह, तुमने सचमुच मुझे धोखा दिया है। गाय को ले जाओ और मेरे पैसे वापस करो।
4: लेकिन मालिक, पैसे तो मैं गांव भेज चुका हूँ और उसमें से काफी मकान की मरम्मत में खर्च हो गए, अब पैसे कहाँ से लौटाऊं?
6: तो ठीक है, पैसा मैं तुम्हारी पगार से काट लूंगा।
3: अब रोज रोज यही शिकायत आने लगी। कभी गाय दूध बहुत कम देती, कभी चारे को मुंह तक नहीं लगाती। हाँ, एक बात जरूर थी, जब हीरा सिंह उसे देखने जाता तो बहुत प्रसन्न हो जाती और चारा भी खा लेती। अपनी बड़ी बड़ी आंखों